0: हुआ सीज फायर, तेहरान का जवाब हम भी हैं तैयार। श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रह गया बल्कि अब हमारे देश भर में गूंज रहा है। और श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे को विपक्ष ने जिस तरह से जकड़ा है पकड़ा है, अब सीएम योगी चढ़ावा चोरी की काट खोजने में जुट गए क्योंकि 2027 यूपी विधानसभा चुनाव है। विपक्ष चढ़ावा चोरी में पॉलिटिकल माइलेज देख रहा है। ऐसे में सीएम योगी अयोध्या पहुंचते हैं, सबको लगा कि वो चढ़ावा चोरों पर एक्शन के बारे में कुछ बोलेंगे, लेकिन सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज का मुद्दा उठाकर हिंदुत्व की एक नई पॉलिटिक्स खेल दी।
1: सीएम योगी ने अयोध्या में चढ़ावा चोरी कांड की गांठ ढूंढ ली। विपक्ष चढ़ावा चोरी पर सवार, योगी बोले हनुमानगढ़ी में पढ़वाई नमाज। चढ़ावा चोरी की लड़ाई नमाज और कब्रिस्तान तक आई। समाजवादी और कांग्रेस पर योगी की चढ़ाई, कांवड़ वाले चैलेंज तक आई। चढ़ावा चोरी के मुद्दे से विपक्ष को मिलेगा माइलेज या योगी मैनेज कर लेंगे। जब राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव से लेकर चढ़ावा चोरी में गिरफ्तार हुए 8 आरोपियों पर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, बात यहां तक आ रही है कि आरोपियों ने चढ़ावा चोरी की रकम को शेयर बाजार, ब्याज और करोड़ों की जमीन में इन्वेस्ट कर रकम दोगुनी करने का बिजनेस प्लान बनाया था। चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार हो चुका है। इतना ही नहीं, अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का केस अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में चढ़ावा चोरी विवाद के बीच सीएम योगी दूसरी बार अयोध्या पहुंचते हैं। हर कोई यही सोचता है कि मुख्यमंत्री चढ़ावा चोरों पर कुछ बोलेंगे, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की SIT रिपोर्ट पर कुछ बोलेंगे, लेकिन सीएम योगी जब बोले तो अयोध्या से हिंदुत्व की सियासत का नया चैप्टर ही खोल दिया।
2: जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमान गढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था?
1: अब सवाल ये है कि क्या सीएम योगी चढ़ावा चोरी पर बरसने वाले विपक्ष की काट हिंदुत्व से निकाल रहे हैं? जब विपक्ष चढ़ावा चोरी के आरोप में राम मंदिर ट्रस्ट से लेकर BJP, संघ और सरकार सबको घसीट रहा है, तो सीएम योगी विपक्ष को मजहबी मोर्चे पर पस्त करने वाले आजमाए हुए फॉर्मूले पर चल रहे हैं।
2: डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, कोई रोक नहीं पाया। इन्होंने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने का पाप किया था और हम लोगों ने अयोध्या को स्वच्छ और सुंदर बनाकर के सनातन धर्म की एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में फिर से उसकी स्थापना के साथ जोड़ा ही है। जोड़ने के साथ आज अयोध्या को सरयू जी की आरती और राम जी की पेड़ी भी मिली है और नए घाट से लेकर के गुप्तार घाट तक घाटों की एक लंबी श्रृंखला भी अयोध्या धाम को देकर के अयोध्या को एक नई पहचान दिलाई है।
3: राम मंदिर के अंदर जो डकैती हुई है, करोड़ों लोगों की आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुई है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, BJP की सरकार और आरएसएस की नेताओं के बिना ये संभव नहीं है। इसमें सब शामिल हैं। अगर जांच ईमानदारी के साथ हो तो इसमें न जाने किन किन बड़े लोगों के नाम आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश की एसआईटी एसआईटी नहीं है, नेताओं को बचाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है।
1: सीएम योगी ने चढ़ावा चोरी वाली सियासत के बीच हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज का नया चैप्टर खोला है। असल में सीएम योगी ने अयोध्या के बीकापुर की रैली में हनुमानगढ़ी की जिस घटना का जिक्र किया उसके बारे में जो तथ्य सामने आए हैं वो भी आपको बता देते हैं। ये घटना 27 अक्टूबर 2003 से 25 नवंबर 2003 के बीच रमजान के महीने की है। तब हनुमानगढ़ी के चार पट्टियों में से एक सागरिया पट्टी के महंत ज्ञानदास थे, जिनकी बाबरी मामले के पक्षकार हाशिम अंसारी से मित्रता थी। ज्ञानदास इफ्तार कराया करते थे, उस साल भी इफ्तार आयोजित किया था और चटाइयां मंदिर के बाहर सीढ़ियों के पास बिछी थी, लेकिन खुफिया रिपोर्ट के हवाले से तत्कालीन एसएसपी ने इसे हटवा दिया था। फिर इफ्तार मंदिर के सामने से हटाकर दूसरी जगह कराया गया था।
4: हनुमानगढ़ी नहीं, हनुमानगढ़ी के पीछे उनका जो मकान है वो अपने मकान में बुला करके मुसलमानों के रोजा इफ्तार के समय था, कहा था उसी समय उन्होंने बुला करके भोजन कराए, नमाज पढ़वाए, तो इस पर हम लोगों ने विरोध किया। पहले तो जानकारी नहीं भया, अगला साल एक साल उसके बाद में दूसरे साल जब कराने के तैयार किए तो उसके पहले हमने लोगों ने खड़ा हो गए, पेपर में निकाले कि हम इस साल भी पढ़वाएंगे, तब हम लोग कोर्ट में गए।
1: बाद में ये मामला उज्जैनिया पट्टी के महंत धर्मदास की ओर से हाई कोर्ट पहुंचा और मंदिर परिसर में इफ्तार पर रोक लग गई। लेकिन अब जब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई है तो सवाल उठाने वाले समाजवादी पार्टी नेताओं को सीएम योगी हनुमानगढ़ी की वो घटना याद दिला रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर सिर्फ इतना लिखा है, पराजय काल विपरीत बुद्धि।
5: ये लोग राम के विरोधी है और हनुमान के विरोधी है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसी धरती पर आए थे उनके सामने जो है हनुमान जी को नचाया जा रहा है।
0: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही बीजेपी और संघ को श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर घेर रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी और संघ श्रीराम मंदिर ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके जवाब में बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी के पुराने बयानों को फिर से सबके सामने लाना शुरू कर दिया है। अब एक तरफ समाजवादी पार्टी का सॉफ्ट हिंदुत्व है और दूसरी तरफ योगी का हार्ड हिंदुत्व।
1: अब नागपुर से आई इन तस्वीरों को देखिए। अयोध्या चंदा चोरी के विरोध में कांग्रेस ने नागपुर के पोद्दारेश्वर राम मंदिर के सामने ढोल मजीरे और सफेद टोपी पहनकर विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रघुपति राघव राजा राम के भजन गाए।
6: प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर में जिस प्रकार की डकैती पिछले कई दिनों से हो रही है उन सारे दोषियों को सजा देने के लिए सजा मिलना चाहिए यह मांग लेकर आज हम प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर में उनको उनसे प्रार्थना करने के लिए यहां आए हैं।
1: जबकि समाजवादी पार्टी खुद को सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर ले जाते हुए सनातन की समाजवादी परिभाषा तक गढ़ रही है। लखनऊ में तो पार्टी दफ्तर के बाहर समाजवादी पार्टी ने पोस्टर तक लगा दिया है कि सनातन ही समाजवाद है।
7: आपकी कावड़ यात्रा निकलती है तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कावड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको लगता है कोई उनको बुलावा दे दे तो वो भी जाएं पुष्प वर्षा करें।
1: और अब समाजवादी के सनातन के चक्कर में सीएम योगी रोज की रैली में समाजवादियों के पुराने पन्ने पलट रहे हैं।
8: पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, नहीं मार सकता, फिर भी मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की वो गुंबद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके।
1: बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर समाजवादी पार्टी नेताओं के ऐसे पुराने बयान और अयोध्या कांड की तस्वीरें लगातार पोस्ट की जा रही हैं।
9: सरकार कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन हम जब मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक हमारी लाश का भी मस्जिद नहीं गिराई जाएगी।
10: अयोध्या ने वह करके दिखाया है जो 500 वर्षों में नहीं हो पाया था। जो कहते थे अयोध्या के बारे में कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आज वे देख रहे हैं अयोध्या में लाखों लोग आ रहे हैं।
1: लेकिन अखिलेश यादव चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर पूरी तरह से पकड़े और जकड़े हुए हैं।
11: प्रभु श्री राम माफ कर देंगे, अपना सीसीटीवी बंद कर दो और आंख बंद कर लो। जो जितना चढ़ावा ले गया है, रात के अंधेरे में वापस प्रभु श्री राम जी पे चढ़ा दो, प्रभु श्री राम अपने आप माफ कर देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम से भी नहीं माफी मांगना चाहते हैं।
1: आपको बता दें कि 19 जून को भी सीएम योगी अयोध्या में मिल्कीपुर दौरे पर गए थे और वहां से उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करने का ऐलान किया था।
12: हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर SIT जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि SIT जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं।
1: लेकिन अब चढ़ावा चोरी मामले में एक्शन होने के बाद, SIT की पूरी रिपोर्ट सामने आने के बाद सीएम योगी दूसरी बार अयोध्या आए तो उन्होंने चढ़ावा चोरी मामले को लेकर कुछ नहीं बोला, बल्कि हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ने का मुद्दा उठाकर अखिलेश यादव की PDA पॉलिटिक्स पर भी प्रहार किया।
10: महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या के साथ और देश के सभी प्रमुख शहरों के साथ अयोध्या का एयरपोर्ट जोड़ चुका है। आज जो अयोध्या का विरोध समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, वे इसलिए विरोध कर रहे हैं, वे नहीं कर पाए थे इसलिए बुरा लग रहा है कि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर क्यों हो गया। अयोध्या में रेन बसेरा निषाद राज के नाम पर हो गए, निषाद राज गुहा के नाम पर, उनको यही बुरा लगता है।
1: अब सवाल यह है कि क्या सीएम योगी हिंदुत्व के पिच पर अपना आजमाया हुआ फॉर्मूला इसलिए अपना रहे हैं ताकि राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड पर विपक्ष 2027 के विधानसभा चुनावों में माइलेज ना ले सके और सीएम योगी चढ़ावा चोरी के जवाब में नमाज और कब्रिस्तान को ले आए हैं।
10: बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था। उनको कब्रिस्तान प्यारा है, इसलिए वे राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम और मां विंध्यवासिनी धाम और नैमी सारण्य और चित्रकूट धाम के विकास का विरोध करते हैं।
13: उनके लिए खतरा तो ये कि दान या चंदा बंद ना हो जाए, क्योंकि ये चुनाव के लिए बड़ी ताकत बनकर के आ रही है संसाधन, और भ्रष्टाचार करके ही सरकार बनाना और फिर सरकार बना के भ्रष्टाचार करना, तो ये लोकतंत्र को बड़ा खतरा पैदा हो रहा है।
1: सीएम योगी ने अयोध्या के बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में 432 करोड़ से अधिक की 217 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, लेकिन विपक्ष को घेरने के लिए सीएम योगी सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की पिच पर ही बैटिंग कर रहे हैं। कुमार अभिषेक, बीकापुर, अयोध्या, आज तक।
0: और अब खबर श्री राम मंदिर को लेकर हो रही जांच की, जहां रोज नए खुलासे हो रहे हैं। चोरी के पैसों को इन्वेस्टमेंट को लेकर भी अब नई नई जानकारी सामने आ रही है, जहां पैसों को प्रॉपर्टी और शेयर मार्केट में लगाया गया था।

0: राम मंदिर में भक्तों के चढ़ावे का चोरों ने बिजनेस चला रखा था। राम मंदिर से चुराई गई रकम का शेयर बाजार में निवेश हो रहा था। इस धंधे में अनुकल्प मिश्रा और अविनाश शुक्ला का नाम सबसे आगे है। ये भी पता चला है कि चोरी की रकम उधार देकर ब्याज वसूली हो रही थी। सूत्रों की माने तो आरोपी बड़े ही शातिराना अंदाज में चोरी के पैसे को काले से सफेद बनाने में लगे थे। बैंक और वित्तीय एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए आरोपी चोरी के पैसे पहले रिश्तेदारों के खाते में डालते, रिश्तेदारों के खाते से पैसे आरोपियों के खाते में ट्रांसफर होते। चंद चोरों की वजह से अब ट्रस्ट के बाकी कर्मचारियों के लिए भी काम करना मुश्किल हो रहा है। मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारियों के मुताबिक दान की गिनती से जुड़े 2 दर्जन कर्मचारी इस्तीफा देकर चले गए हैं। काम का दबाव इतना बढ़ा है कि पहले 2 शिफ्टों में होने वाला काम अब 1 शिफ्ट में कराया जा रहा है, जिससे ड्यूटी का समय 6 घंटे से बढ़ाकर 9 घंटे कर दिया गया। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक कर्मचारियों का आरोप है कि उनका मासिक वेतन भी घटा दिया गया है और अलग अलग कर्मचारियों को अलग अलग वेतन दिया जा रहा है। उनकी मासिक छुट्टियों में भी कटौती कर दी गई है। इसका विरोध करते हुए ट्रस्ट के ईमानदार कर्मचारियों ने SBI तुलसी उद्यान शाखा और संबंधित सुरक्षा एजेंसी को मांग पत्र के साथ इस्तीफे सौंप दिए। उधर बैंक सूत्रों के अनुसार नए कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, लेकिन चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद कड़े सत्यापन के कारण उन्हें समय लग सकता है। वैसे चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद कर्मचारियों पर ही नहीं, अब ट्रस्ट के पूर्व पदाधिकारियों के भी अधिकार और जिम्मेदारियों में तब्दीली आई है। और ये नए बदलाव के तहत चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की वो ID निरस्त कर दी गई है जिसका इस्तेमाल करके VIP पास जारी किए जाते थे। उसके बदले ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़ा के प्रतिनिधि दीनेन्द्र दास को VIP पास जारी करने वाली ID दे दी गई है। ट्रस्ट सूत्रों का कहना है कि 22 जुलाई के बाद राम मंदिर की व्यवस्थाओं में व्यापक बदलाव लागू करने की तैयारी है, जिसमें दर्शन व्यवस्था, पूजा पद्धति, राग भोग, चढ़ावा प्रबंधन, सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालु सुविधाओं में तब्दीलियां की जाएंगी। इसके लिए संतों और रामानंदीय परंपरा के विद्वानों का सुझाव लिया जा रहा है। तैयारी है कि 22 जुलाई को होने वाली बैठक में ट्रस्ट के नए महासचिव और रिक्त पदों पर नए सदस्यों के चयन पर भी फैसला होना है। आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
1: खबर कुदरत के कोहराम की, पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मानसून की बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। आसमान से बरस रही आफत से पहाड़ों पर लैंडस्लाइड के चलते जिंदगी पटरी से उतर चुकी है, तो मैदानी इलाकों में लोगों को बारिश ने हाउस अरेस्ट कर दिया है।

0: कहीं ढह गई इमारत, कहीं बह गई सड़कें, उत्तराखंड से हिमाचल तक मचा हाहाकार, यूपी से गुजरात तक बारिश का ब्रेक फेक, नदियों का जलस्तर डेंजर जोन से ऊपर, बाढ़ बारिश पर मौसम विभाग की चेतावनी, मानसूनी बारिश जारी, अगले 48 घंटे भारी, पहाड़ से मैदान तक कुदरत का कोहराम, सिक्किम में सैलाब का संकट, तबाही की ये तस्वीरें नेशनल हाईवे 10 की हैं। ये वही हाईवे है जो सिक्किम की लाइफलाइन है, बंगाल के सिलीगुड़ी से शुरू होकर गैंगटॉक तक जाता है, लेकिन मानसून की बारिश के चलते ये हाईवे भूस्खलन से प्रभावित है। भारी लैंडस्लाइड के चलते गैंगटॉक जाने वाला हाईवे पूरी तरह बंद है। आप देख सकते हैं एक ट्रक लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। हाईवे से मलबा हटाने का काम जारी है, लेकिन भारी बारिश से मरम्मत का काम भी ठप है। वडोदरा में मगरमच्छ, तस्वीरें विश्वामित्री नदी की हैं। वडोदरा में भारी बारिश के चलते एक दो नहीं बल्कि 11 मगरमच्छ नजर आए हैं। नदी किनारे रहने वाले लोगों में दहशत है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इस बारे में जानकारी दी है। वहीं प्रशासन ने लोगों से नदी के पानी से दूर रहने की अपील की है। नदी में डूब गई थार, तस्वीरें हरिद्वार की हैं। यहां काले रंग की एक थार का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आप देख सकते हैं कि नदी की उफनती धारा के बीच थार फंसी हुई है और जेसीबी से थार को बाहर निकालने का ऑपरेशन चल रहा है। करीब आधे घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद थार को बाहर निकाल लिया गया है। पुलिस के मुताबिक थार चालकों ने व्हील बनाने के लिए एसयूवी को नदी में उतार दिया था, लेकिन पानी ज्यादा होने की वजह से थार फंस गई। गनीमत रही कि कार में सवार लोग बच गए। व्हील के चक्कर में फंसी थार को पुलिस ने सीज कर दिया है। उधम सिंह नगर में आफत बना मानसून, क्या घर, क्या सड़कें और क्या खेत खलिहान, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सैलाब का कब्जा है। लगातार हो रही बारिश ने उधम सिंह नगर के लोगों की जिंदगी पटरी से उतार दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि घर में रखा सामान खराब हो गया, जबकि फसल भी खराब हो गई।
1: पानी देख ही रहे हो जैसे कि भर जाता है। सरकार से यही मांग है कि नाला बन जाए और दूर दूर तक जो है पानी भरा हुआ है और जो है बार बार फसलें खराब हो जाती हैं। अभी तो शुरुआती बारिश है तो ये हाल है। अब आगे आप समझ सकते हो क्या हाल होगा।
2: अभी तो थोड़ी बारिश ही पड़ी है, ये अब और पड़ेगी तो बहुत दिक्कत आ जाती है बच्चों को आने जाने में भी। नाला बन, हमारी समस्या यही है कि नाला प्रशासन से कि नाला बन जाए, पानी की निकासी हो जाए।
0: उत्तरकाशी में हाईवे बहा, आसमानी आफत का कहर यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर टूटा, करीब 100 मीटर सड़क बह गई, लिहाजा तीर्थयात्रियों को एहतियातन रोक दिया गया है। सियानी चट्टी पर आवाजाही पूरी तरह बंद है तो हनुमान चट्टी और फूल चट्टी के पास भी हाईवे ब्लॉक है।
3: ये सियाना चट्टी में एहतियातन अभी तीर्थयात्रियों को सुरक्षित रोका गया है, क्योंकि इससे ऊपर भी सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, जिसके चलते ये सड़क जो है पूरी वॉश आउट हो गई है। एक बार कैमरामैन अगर चाहें देखें कि अगर जूम हो सकता है तो ये वो स्थान है सियाना चट्टी का, जहां पर जो है कल 100 मीटर से भी अधिक सड़क वॉश आउट हो गई और यात्रा पूरी तरह से अभी थमी हुई है। एहतियातन तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। सियाना चट्टी में भी 50 से भी अधिक तीर्थयात्रियों के वाहनों को रोका गया है।
0: बड़ी बात यह है कि बीते साल भी सियाना चट्टी पर कुदरत ने रौद्र रूप दिखाया था। इस साल भी सियाना पट्टी में सैलाब सब कुछ डुबो देने पर आमादा है।
3: मानसूनी बारिश का कहर अब पहाड़ों में भी बरपने लगा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सियाना चट्टी में। सियाना चट्टी ये वही स्थान है जहाँ 2025 में भीषण त्रासदी आई थी, जिसके चलते ये पूरा जो सियाना चट्टी वाला जो कस्बा है यहाँ पर एक झील बन गई थी यमुना नदी की वजह से, और उससे यहाँ पर जो है स्थानीय लोगों को त्रासदी झेलनी पड़ी। कमोबेश वही 2025 की स्थिति अब फिर दोबारा से 2026 में बनती हुई दिखाई दे रही है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा एक बार दिखाएं किस तरह से होटल एक बार दोबारा से जलमग्न होने लगे हैं। निचली मंजिल पूरी तरह से यमुना नदी के आगोश में समाने लगी है। इतना ही नहीं, आप दूसरी तरफ आप देखेंगे ये होटल्स और सामने एक जो है विद्यालय भी है जो यमुना नदी के प्रभाव से प्रभावित हो सकता है। हालांकि अभी यमुना नदी का जल स्तर उतना नहीं बढ़ा, लेकिन मानसून बारिश जैसे जैसे अपने पूरे सबाब पर होगी वैसे ही यमुना का जल स्तर बढ़ता चला जाएगा।
0: किन्नौर में कुदरत का कोहराम। हिमाचल में किन्नौर जिले की लिप्पा पंचायत में भारी बारिश ने भारी तबाही मचाई। लिप्पा गांव को जोड़ने वाले पुल का करीब 100 फुट हिस्सा जलमग्न है। पुल पर आवाजाही रोक दी गई है जिससे लिप्पा गांव का दूसरे इलाकों से संपर्क पूरी तरह कट चुका है। आप देख सकते हैं कि पहाड़ों से बाढ़ के साथ आए पत्थर और मलबा रिहायशी इलाकों में घुस गया। कई घरों में मलबा भरने से नुकसान हुआ है। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। भारी मलबे के चलते पैदल मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गया है। शिमला में सैलाब का सितम। शिमला में भी बीते 24 घंटों से ज्यादा वक्त से मूसलाधार बारिश हो रही है। शिमला में जगह जगह भूस्खलन से कुछ एक गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 12 से 18 घंटों के बीच शिमला में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने सैलानियों और स्थानीय लोगों को ट्रैकिंग और भूस्खलन संभावित इलाकों में नहीं जाने की अपील की है। बारिश में बेहाल नैनीताल। लगातार 8 घंटे हुई मूसलाधार बारिश के बाद नैनीताल के कई इलाकों में सड़कें बह गईं, जिससे आसपास रहने वाले लोगों में दहशत है। मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बीते कुछ घंटों में 60 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। रुद्रप्रयाग में बारिश का रौद्र रूप। रुद्रप्रयाग जिले में बीते 48 घंटे से भारी बारिश जारी है। बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा को भी कई बार रोकना पड़ रहा है और मौसम कुछ हद तक साफ होने पर यात्रियों को आगे भेजा जा रहा है। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर भी यात्रियों को ज्यादा बारिश होने पर सुरक्षित रोका जा रहा है। यही नहीं, रुद्रप्रयाग में एहतियातन स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है।
4: लोगों को सुरक्षा की दृष्टिगत ये बार बार बताया जा रहा है, अनाउंस किया जा रहा है कि नदियों के समीप न जाएं। नदियों का जल स्तर कभी भी बढ़ सकता है क्योंकि जो रेनफॉल है वो हिली एरिया में काफ़ी तेजी से हो रही है और वहाँ से धीरे धीरे करके जल कई बार एकत्रित होकर काफ़ी कम समय में नदियों तक पहुँचता है, तो जल स्तर बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही साथ जो खतरे के निशान को है उसको भी मॉनिटर किया जा रहा है। जो हमारी नगर पालिका, जिला पंचायत, NHPWD सभी को निर्देशित किया गया है कि वो अपने अपने ड्यूटी पॉइंट्स पर, अपने अपने क्रिटिकल पॉइंट्स पर मुस्तैदी से रहें।
0: जूनागढ़ में जल तांडव। जूनागढ़ और पोरबंदर जिलों के करीब 106 गांव मानसून की बारिश से बुरी तरह प्रभावित हैं। कुछ इलाके पूरी तरह डूब चुके हैं तो कुछ इलाकों में पानी का कब्जा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि हर तरफ पानी ही पानी है। बिजनौर में बारिश का कहर। बिजनौर में बीते 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश और पहाड़ से आ रहे पानी के चलते गंगा और सहायक नदियां उफान पर हैं। कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। आलम यह है कि बिजनौर मेरठ मार्ग पहले से बंद था और अब बिजनौर हरिद्वार रूट भी सैलाब के चलते बंद करना पड़ा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह जान जोखिम में डालकर लोग पंखियों के सहारे रास्ता पार करने को मजबूर हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आधे हिंदुस्तान में अगले 72 घंटों तक भारी बारिश की आशंका है, मतलब मानसून की बारिश का कहर अभी और टूटेगा। आज तक ब्यूरो।
5: खबर दुनिया की, जहां ईरान और अमेरिका के बीच तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई सुपुर्द खाक हो चुके हैं, लेकिन अमेरिका को लगता है कि जनता का गुस्सा सड़कों पर उतर पड़ा है।
0: युद्ध से पहले खामिनेई के खिलाफ जो गुस्सा ईरान की सड़कों पर दिख रहा था, आज खामिनेई की विदाई के बाद ईरान की तस्वीरें बदली हुई हैं। लोगों की आंखें नम हैं। वहीं अमेरिका के खिलाफ जमकर गुस्सा नजर आ रहा है। खामेनेई को सुपुर्दे खाक किए जाने का कार्यक्रम करीब हफ्ते भर चला। इस दौरान सहानुभूति की लहर दिखी। शोक के इस कार्यक्रम का आयोजन इस्लामी निजाम की ओर से किया गया और इस वजह से वहां डेथ टू ईरान और डेथ टू ट्रंप के नारे भी लगे। ट्रंप का पुतला भी जलाया गया। इस गम और गुस्से के बीच अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ता जा रहा है। मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के उस दावे को झूठा बताया है जिसमें ये कहा गया है कि ईरान के तय हुए रास्ते से ही जहाज गुजर सकते हैं। अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस ने एक बेहद सनसनीखेज और खौफनाक दावा किया है। एक्सियोस के मुताबिक अमेरिका अब किसी छोटी मोटी झड़प की नहीं बल्कि कई दिनों और कई हफ्तों तक चलने वाली एक भीषण जंग की तैयारी कर रहा है। व्हाइट हाउस का पूरा फोकस अब सिर्फ और सिर्फ हॉर्मुज को ईरान के चंगुल से छुड़ाने पर टिक गया है। वहीं ईरान भी अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नहीं है। आज तक ब्यूरो।
5: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक,
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

ऑकलैंड में पीएम मोदी का भव्य स्वागत, पीएम क्रिस्टोफर लक्सन ने गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा। 40 साल बाद किसी भारतीय पीएम का न्यूजीलैंड दौरा, आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। पटना के बांकीपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक सिन्हा ने नामांकन वापस लिया, कहा पारिवारिक वजहों से फैसला, नीरज सिन्हा बने नए प्रत्याशी। अयोध्या से योगी का विपक्ष पर हल्ला, बोल कहा हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने वाले कर रहे हैं आस्था की बात। अखिलेश का पोस्ट, पराजय काल विपरीत बुद्धि। मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने पर भारी विरोध, बीजेपी जिलाध्यक्ष समेत सभी पार्षदों ने दिया इस्तीफा, समर्थकों ने हाईवे किया जाम। खामनेई के सुपुर्दे खाक के बाद ट्रंप ने फिर दोहराया अपना ऐलान, कहा ईरान के साथ बातचीत रहेगी जारी लेकिन खत्म हो गया है युद्ध विराम, तेहरान का जवाब, हम भी तैयार।

नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूजीलैंड दौरे का आज बहुत अहम दिन। ऑकलैंड के गवर्नमेंट हाउस में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक और पारंपरिक स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें भारत न्यूजीलैंड संबंधों को और मजबूत करने समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। स्वागत समारोह माओरी परंपरा के अनुरूप आयोजित किया गया। वहीं आज दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री मोदी ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे, जहां बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों के जुटने की उम्मीद है। आज ऑकलैंड में पीएम मोदी का भारतीय लोगों से संवाद होगा।

0: देखिए, इससे पहले इंडोनेशिया भी रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिर ऑस्ट्रेलिया भी गए और अब न्यूजीलैंड में आखिरी पड़ाव न्यूजीलैंड, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में रणनीतिक डील हुई, इंडोनेशिया में हमने देखा रक्षा संस्कृति सूत्र बंधन को और ज्यादा मजबूत किया गया, तो अब महासागर की अजय कूटनीति को आगे बढ़ाने की तैयारी है। और ऑस्ट्रेलिया में जहां 30,000 भारतीयों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया था, अपनी बात रखी थी, तो यहां पर बताया जा रहा है 37,000 से 40,000 लोगों से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड में बात करेंगे। और इंडोनेशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, ये सभी जगह भारत के संबंधों को मजबूत करने से इसका असर महासागर में अजय कूटनीति के तौर पर पड़ेगा, जहां पर कहा जा रहा है कि चीन कि चुनौती का सामना किया जा सकेगा एक मजबूत रिश्ते बनाते हुए। तो जकार्ता टू मेलबर्न भारत की डिप्लोमेसी कैसी रही है संबंधों को मजबूत करने की, वो इन तस्वीरों से स्पष्ट दिखता है। अब एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, मध्य प्रदेश की दतिया उपचुनाव से जुड़ी हुई, जहां बीजेपी उम्मीदवार के ऐलान के बाद पार्टी के भीतर बगावत खुलकर सामने आ गई। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बनाए जाने के विरोध में समर्थकों ने नेशनल हाईवे 44 पर जाम लगा दिया। और ऐसा वैसा जाम नहीं लगाया, बताया जा रहा है कि 10 से 12 किलोमीटर का यह जाम लग गया था, एक तरफ झांसी, दूसरी तरफ ग्वालियर, बीच में दतिया और सब जाम। बीजेपी जिलाध्यक्ष समेत कई पदाधिकारियों और सभी बीजेपी पार्षदों ने इस्तीफा भी दे दिया। अब प्रदर्शन जारी है, समर्थकों ने दिल्ली जाकर केंद्रीय नेतृत्व से टिकट बदलने की मांग करने का ऐलान किया। ये देखिए ऐसे प्रदर्शन हुआ। नरोत्तम मिश्रा जो मध्य प्रदेश की राजनीति में एक कद्दावर नेता है, एक बड़ा चेहरा, एक बड़ी शख्सियत, और नरोत्तम मिश्रा जब गृहमंत्री भी रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, लेकिन जब पिछली बार चुनाव हारे तो उसके बाद अब दतिया में नरोत्तम मिश्रा का जब पत्ता कटा, टिकट कटा, तो अब उनके समर्थकों ने विरोध जताया। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब देश भर में गूंज रहा है। और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे को विपक्ष ने जिस तरह से जकड़ा है, अब सीएम योगी चढ़ावा चोरी की काट खोजने में जुट गए हैं, क्योंकि 2027 यूपी विधानसभा चुनाव है, विपक्ष चढ़ावा चोरी में पॉलिटिकल माइलेज दिख रहा है। अब ऐसे में सीएम योगी अयोध्या पहुंचते हैं, सबको लगा कि वो चढ़ावा चोरों पर एक्शन के बारे में कुछ बोलेंगे, लेकिन सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज का मुद्दा उठाया, हिंदुत्व की नई पॉलिटिक्स खेल दी। तो आइए देखते हैं चढ़ावा चोरी की लड़ाई कैसे नमाज तक पहुंच गई।
1: सीएम योगी ने अयोध्या में चढ़ावा चोरी कांड की काट ढूंढ ली। विपक्ष चढ़ावा चोरी पर सवार, योगी बोले हनुमानगढ़ी में पढ़वाई नमाज। चढ़ावा चोरी की लड़ाई नमाज और कब्रिस्तान तक आई। समाजवादी और कांग्रेस पर योगी की चढ़ाई, कांवड़ वाले चैलेंज तक आए। चढ़ावा चोरी के मुद्दे से विपक्ष को मिलेगा माइलेज या योगी मैनेज कर लेंगे।
0: और अब आपको सीधे न्यूजीलैंड लिए चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और ये वो तस्वीरें देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड में पहुंचे हुए हैं, पहले स्वागत समारोह उनका रखा गया, गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया, आज भारतीय लोगों को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान कई समझौते हैं वो भी यहां पर देखे जाएंगे, जिससे भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। और वो तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं जब गार्ड ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया, और फिर आपको बता रहे हैं कि 40 साल बाद न्यूजीलैंड में भारतीय प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, ऑकलैंड में मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया, वो तस्वीरें आपने देखी। और आज उस पल का इंतजार रहेगा जब न्यूजीलैंड में रहने वाले भारतीयों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संदेश देंगे, संबोधित करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में एंथनी एल्बनीजी के सामने जो एक बड़ा शो रखा गया था, एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया था, उसमें हमने देखा था कि कैसे भारतीय लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया था जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सामने देखा, उनकी बातों को सुना। और आज कुछ ऐसी ही तस्वीरें दोहराई जाएंगी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में, जहां भारत न्यूजीलैंड रिश्तों को एक नई रफ्तार मिलती हुई दिखाई दे रही है।

0: तो पहले इंडोनेशिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं और उसके बाद वो तस्वीरें सबने देखी जहां दो देशों के रिश्तों को मजबूत किया गया। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया में एक शानदार दौरा, एक शानदार कार्यक्रम, वो तस्वीरें भी सबने देखी जहां भव्य स्वागत किया गया पीएम मोदी का। और उसके बाद अब पीएम न्यूजीलैंड पहुंचे तो न्यूजीलैंड में भी वही तस्वीरें। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही बीजेपी और संघ को राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर घेर रही और आरोप ये लगा रही हैं कि बीजेपी और संघ राम मंदिर ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके जवाब में बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी के पुराने बयानों को फिर से सबके सामने लाना शुरू कर दिया है। अब एक तरफ समाजवादी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रही है तो सीएम योगी हार्ड हिंदुत्व से विपक्ष को घेर रहे हैं।
1: अब नागपुर से आई इन तस्वीरों को देखिए। अयोध्या चंदा चोरी के विरोध में कांग्रेस ने नागपुर के पोद्दारेश्वर राम मंदिर के सामने ढोल मजीरे और सफेद टोपी पहनकर विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रघुपति राघव राजा राम के भजन गाए।
2: प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर में जिस प्रकार की डकैती पिछले कई दिनों से हो रही है उन सारे दोषियों को सजा देने के लिए सजा मिलना चाहिए ये मांग लेकर आज हम प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर में उनको उनसे प्रार्थना करने के लिए यहाँ आए हैं।
1: जबकि समाजवादी पार्टी खुद को सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर ले जाते हुए सनातन की समाजवादी परिभाषा तक गढ़ रही है। लखनऊ में तो पार्टी दफ्तर के बाहर समाजवादी पार्टी ने पोस्टर तक लगा दिया है कि सनातन ही समाजवाद है।
3: आपकी कावड़ यात्रा निकलती है तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कावड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको लगता है कोई उनको बुलावा दे दे तो वो भी जाएं पुष्प वर्षा करें।
1: और अब समाजवादी के सनातन के चक्कर में सीएम योगी रोज की रैली में समाजवादियों के पुराने पन्ने पलट रहे हैं। बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर समाजवादी पार्टी नेताओं के ऐसे पुराने बयान और अयोध्या कांड की तस्वीरें लगातार पोस्ट की जा रही हैं।
4: सरकार कुर्बान कर सकते हैं लेकिन हम जब मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक हमारी लाश का भी मस्जिद नहीं गिराई जाएगी।
5: अयोध्या ने वह करके दिखाया है जो 500 वर्षों में नहीं हो पाया था। जो कहते थे अयोध्या के बारे में कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आज वे देख रहे हैं अयोध्या में लाखों लोग आ रहे हैं।
1: लेकिन अखिलेश यादव चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर पूरी तरह से पकड़े और जकड़े हुए हैं।
6: प्रभु श्री राम माफ कर देंगे, अपना सीसीटीवी बंद कर दो और आंख बंद कर लो। जो जितना चढ़ावा ले गया है रात के अंधेरे में वापस प्रभु श्री राम जी पे चढ़ा दो, प्रभु श्री राम अपने आप माफ कर देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम से भी नहीं माफी मांगना चाहते हैं।
1: आपको बता दें कि 19 जून को भी सीएम योगी अयोध्या में मिल्कीपुर दौरे पर गए थे और वहां से उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करने का ऐलान किया था।
7: हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर SIT जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि SIT जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं।
1: लेकिन अब चढ़ावा चोरी मामले में एक्शन होने के बाद, SIT की पूरी रिपोर्ट सामने आने के बाद सीएम योगी दूसरी बार अयोध्या आए तो उन्होंने चढ़ावा चोरी मामले को लेकर कुछ नहीं बोला, बल्कि हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ने का मुद्दा उठाकर अखिलेश यादव की PDA पॉलिटिक्स पर भी प्रहार किया।
7: महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या के साथ और देश के सभी प्रमुख शहरों के साथ अयोध्या का एयरपोर्ट जोड़ चुका है। आज जो अयोध्या का विरोध समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं वे इसलिए विरोध कर रहे हैं, वे नहीं कर पाए थे इसलिए बुरा लग रहा है कि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर क्यों हो गया। अयोध्या में रेन बसेरा निषाद राज के नाम पर हो गए, निषाद राज गुहा के नाम पर, उनको यही बुरा लगता है।
1: अब सवाल यह है कि क्या सीएम योगी हिंदुत्व की पिच पर अपना आजमाया हुआ फॉर्मूला इसलिए अपना रहे हैं ताकि राम मंदिर चहावा चोरी कांड पर विपक्ष 2027 के विधानसभा चुनावों में माइलेज ना ले सके और सीएम योगी चढ़ावा चोरी के जवाब में नमाज और कब्रिस्तान को ले आए हैं।
3: बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था। उनको कब्रिस्तान प्यारा है इसलिए वे राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम और मां विंध्यवासिनी धाम और नैमी सारण्य और चित्रकूट धाम के विकास का विरोध करते हैं।
8: उनके लिए खतरा तो ये कि दान या चंदा बंद ना हो जाए, क्योंकि ये चुनाव के लिए बड़ी ताकत बनकर के आ रही है संसाधन, और भ्रष्टाचार करके ही सरकार बनाना और फिर सरकार बना के भ्रष्टाचार करना, तो ये लोकतंत्र को बड़ा खतरा पैदा हो रहा है।
1: सीएम योगी ने अयोध्या के बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में 432 करोड़ से अधिक की 217 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, लेकिन विपक्ष को घेरने के लिए सीएम योगी सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की पिच पर ही बैटिंग कर रहे हैं। कुमार अभिषेक, बीकापुर, अयोध्या, आज तक।
0: देखिए, राम मंदिर को लेकर जो जांच हो रही है उसकी बात करते हैं, जहां रोज नए खुलासे हो रहे हैं और चोरी के पैसों के इन्वेस्टमेंट को लेकर भी अब नई जानकारी सामने आ रही है, जहां पैसों को प्रॉपर्टी और शेयर मार्केट में लगाया जा रहा था।

राम मंदिर में भक्तों के चढ़ावे का चोरों ने बिजनेस चला रखा था। राम मंदिर से चुराई गई रकम का शेयर बाजार में निवेश हो रहा था। इस धंधे में अनुकल्प मिश्रा और अविनाश शुक्ला का नाम सबसे आगे है। ये भी पता चला है कि चोरी की रकम उधार देकर ब्याज वसूली हो रही थी। सूत्रों की माने तो आरोपी बड़े ही शातिराना अंदाज में चोरी के पैसे को काले से सफेद बनाने में लगे थे।

0: करना मुश्किल हो रहा है। मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारियों के मुताबिक दान की गिनती से जुड़े 2 दर्जन कर्मचारी इस्तीफा देकर चले गए हैं। काम का दबाव इतना बढ़ा है कि पहले 2 शिफ्टों में होने वाला काम अब 1 शिफ्ट में कराया जा रहा है, जिससे ड्यूटी का समय 6 घंटे से बढ़ाकर 9 घंटे कर दिया गया। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक कर्मचारियों का आरोप है कि उनका मासिक वेतन भी घटा दिया गया है और अलग अलग कर्मचारियों को अलग अलग वेतन दिया जा रहा है। उनकी मासिक छुट्टियों में भी कटौती कर दी गई है। इसका विरोध करते हुए ट्रस्ट के ईमानदार कर्मचारियों ने SBI तुलसी उद्यान शाखा और संबंधित सुरक्षा एजेंसी को मांग पत्र के साथ इस्तीफे सौंप दिए। उधर बैंक सूत्रों के अनुसार नए कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, लेकिन चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद कड़े सत्यापन के कारण उन्हें समय लग सकता है। वैसे चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद कर्मचारियों पर ही नहीं, अब ट्रस्ट के पूर्व पदाधिकारियों के भी अधिकार और जिम्मेदारियों में तब्दीली आई है और ये नए बदलाव के तहत चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की वो ID निरस्त कर दी गई है जिसका इस्तेमाल करके VIP पास जारी किए जाते थे। उसके बदले ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़ा के प्रतिनिधि दीनेन्द्र दास को VIP पास जारी करने वाली ID दे दी गई है। ट्रस्ट सूत्रों का कहना है कि 22 जुलाई के बाद राम मंदिर की व्यवस्थाओं में व्यापक बदलाव लागू करने की तैयारी है, जिसमें दर्शन व्यवस्था, पूजा पद्धति, राग भोग, चढ़ावा प्रबंधन, सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालु सुविधाओं में तब्दीलियां की जाएंगी। इसके लिए संतों और रामानंदीय परंपरा के विद्वानों का सुझाव लिया जा रहा है। तैयारी है कि 22 जुलाई को होने वाली बैठक में ट्रस्ट के नए महासचिव और रिक्त पदों पर नए सदस्यों के चयन पर भी फैसला होना है। आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
1: और आइए बात करते कुदरत के कोहराम की। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मानसून की बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। आसमान से बरस रही आफत से पहाड़ों पर लैंडस्लाइड के चलते जिंदगी पटरी से उतर चुकी है, तो मैदानी इलाकों में लोगों को बारिश ने हाउस अरेस्ट कर दिया।

कहीं ढह गई इमारत, कहीं बह गई सड़कें। उत्तराखंड से हिमाचल तक मचा हाहाकार। यूपी से गुजरात तक बारिश का ब्रेक फेक। नदियों का जलस्तर डेंजर जोन से ऊपर। बाढ़ बारिश पर मौसम विभाग की चेतावनी। मानसूनी बारिश जारी, अगले 48 घंटे भारी। पहाड़ से मैदान तक कुदरत का कोहराम। 2 दिन में सैलाब का संकट। तबाही की ये तस्वीरें नेशनल हाईवे 10 की हैं। ये वही हाईवे है जो सिक्किम की लाइफलाइन है। बंगाल के सिलीगुड़ी से शुरू होकर गैंगटॉक तक जाता है, लेकिन मानसून की बारिश के चलते ये हाईवे भूस्खलन से प्रभावित है। भारी लैंडस्लाइड के चलते गैंगटॉक जाने वाला हाईवे पूरी तरह बंद है। आप देख सकते हैं एक ट्रक लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। हाईवे से मलबा हटाने का काम जारी है, लेकिन भारी बारिश से मरम्मत का काम भी ठप है। वडोदरा में मगरमच्छ। तस्वीरें विश्वामित्री नदी की हैं। वडोदरा में भारी बारिश के चलते एक दो नहीं बल्कि 11 मगरमच्छ नजर आए हैं। नदी किनारे रहने वाले लोगों में दहशत है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इस बारे में जानकारी दी है। वहीं प्रशासन ने लोगों से नदी के पानी से दूर रहने की अपील की है। नदी में डूब गई थार। तस्वीरें हरिद्वार की हैं। यहां काले रंग की एक थार का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आप देख सकते हैं कि नदी की उफनती धारा के बीच थार फंसी हुई है और जेसीबी से थार को बाहर निकालने का ऑपरेशन चल रहा है। करीब आधे घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद थार को बाहर निकाल लिया गया है। पुलिस के मुताबिक थार चालकों ने रील बनाने के लिए एसयूवी को नदी में उतार दिया था, लेकिन पानी ज्यादा होने की वजह से थार फंस गई। गनीमत रही कि कार में सवार लोग बच गए। रील के चक्कर में फंसी थार को पुलिस ने सीज कर दिया है। उधम सिंह नगर में आफत बना मानसून। क्या घर, क्या सड़कें और क्या खेत खलिहान, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सैलाब का कब्जा है। लगातार हो रही बारिश ने

0: उधम सिंह नगर के लोगों की जिंदगी पटरी से उतार दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि घर में रखा सामान खराब हो गया, जबकि फसल भी खराब हो गई।
1: पानी देख रहे हो जैसे कि भर जाता है, सरकार से यही मांग है कि नाला बन जाए और दूर दूर तक जो है पानी भरा हुआ है और जो है बार बार फसलें खराब हो जाती हैं। अभी तो शुरुआती बारिश है तो ये हाल है, अब आगे आप समझ सकते हो क्या हाल होगा।
2: अभी तो थोड़ी बारिश ही पड़ी है, ये अब और पड़ेगी तो बहुत दिक्कत आ जाती है बच्चों को आने जाने में भी।
3: नाला बन,
2: हमारी समस्या यही है कि नाला प्रशासन से कि नाला बन जाए, पानी की निकासी हो जाए।
0: उत्तरकाशी में हाईवे बहा, आसमानी आफत का कहर, यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर टूटा, करीब 100 मीटर सड़क बह गई, लिहाजा तीर्थ यात्रियों को एहतियातन रोक दिया गया है। स्यानी चट्टी पर आवाजाही पूरी तरह बंद है तो हनुमान चट्टी और फूल चट्टी के पास भी हाईवे ब्लॉक है।
4: ये स्याना चट्टी में एहतियातन अभी तीर्थयात्रियों को सुरक्षित रोका गया है, क्योंकि इससे ऊपर भी सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, जिसके चलते ये सड़क जो है पूरी वॉश आउट हो गई है। एक बार कैमरामैन अगर चाहें देखें कि अगर जूम हो सकता है तो ये वो स्थान है स्याना चट्टी का, जहां पर जो है कल 100 मीटर से भी अधिक सड़क वॉश आउट हो गई और यात्रा पूरी तरह से अभी थमी हुई है। एहतियातन तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। स्याना चट्टी में भी 50 से भी अधिक तीर्थयात्रियों के वाहनों को रोका गया है।
0: बड़ी बात यह है कि बीते साल भी स्याना चट्टी पर कुदरत ने रौद्र रूप दिखाया था, इस साल भी स्याना पट्टी में सैलाब सब कुछ डुबो देने पर आमादा है।
4: मानसूनी बारिश का कहर अब पहाड़ों में भी बरपने लगा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्याना चट्टी में। स्याना चट्टी ये वही स्थान है जहाँ 2025 में भीषण त्रासदी आई थी, जिसके चलते ये पूरा जो स्याना चट्टी वाला जो कस्बा है यहाँ पर एक झील बन गई थी यमुना नदी की वजह से, और उससे यहाँ पर जो है स्थानीय लोगों को त्रासदी झेलनी पड़ी। कमोबेश वही 2025 की स्थिति अब फिर दोबारा से 2026 में बनती हुई दिखाई दे रही है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा एक बार दिखाएं किस तरह से होटल एक बार दोबारा से जलमग्न होने लगे हैं, निचली मंजिल पूरी तरह से यमुना नदी के आगोश में समाने लगी है। इतना ही नहीं, आप दूसरी तरफ आप देखेंगे ये होटल्स और सामने एक जो है विद्यालय भी है जो यमुना नदी के प्रभाव से प्रभावित हो सकता है। हालांकि अभी यमुना नदी का जल स्तर उतना नहीं बढ़ा, लेकिन मानसून बारिश जैसे जैसे अपने पूरे सबाब पर होगी वैसे ही यमुना का जल स्तर बढ़ता चला जाएगा।
5: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
7: शनि की कौन सी राशि बड़ी चालाक और बड़ी धनवान होती है? शनि की कौन सी राशि सबसे ज्यादा आलसी होती है? और शनि की किस राशि वालों को डिप्रेशन होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है? कौन सी हैं शनि की राशियां और क्या है उनकी विशेषता, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र।
8: When it comes to your favorite podcasts, missing an episode isn't an option. Luckily, TuneIn's got you covered. Start by creating a free TuneIn account and keep everything synced across your devices. Then favorite the shows you love. We'll bring new episodes right to your homepage, so they're always easy to find. And with notifications turned on, you'll get a heads up when new episodes drop. Stay in the loop effortlessly.
9: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, और वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें ईपेपर.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड को अभी स्कैन करें।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and non-stop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
2: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
1: Big 12 Radio.
3: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
1: and
3: down.
1: Talk sports.
4: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
1: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
5: जय हिंद फ्रेंड्स, ईसाइत, सोना, मसाला या विस्तार, 1498 में क्या थी वास्को डिगामा की मंशा? मधुमक्खी जैसे गोरे जो शहद लेकर आ रहे थे, भारत को डंक मारना शुरू कर दिया और बेवकूफ राजाओं का फायदा उठाकर इस देश को गुलाम बना दिया। लेकिन मीर जाफर और मीर कासिम ने अगर सर झुकाया तो रानी लक्ष्मीबाई ने सर उठाया और गोरों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कैसी थी लड़ाई, कौन थे इसके महानायक, तलवारें चली या भजन चला? अगर बचपन में नहीं समझ में आया, नोटबुक निकाल लीजिए। मैं अवध ओझा जल लेकर आ रहा हूं मास्टर जी इन द न्यूज रूम, सिर्फ ललन टॉप पर।
6: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: कौन सी राशि बड़ी चालाक और बड़ी धनवान होती है? शनि की कौन सी राशि सबसे ज्यादा आलसी होती है? और शनि की किस राशि वालों को डिप्रेशन होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है? कौन सी हैं शनि की राशियां और क्या है उनकी विशेषता, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

ऑकलैंड में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। पीएम क्रिस्टोफर लक्सन ने गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा। 40 साल बाद किसी भारतीय पीएम का न्यूजीलैंड दौरा। आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। पटना के बांकीपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक सिन्हा ने नामांकन वापस लिया। कहा, पारिवारिक वजहों से फैसला, नीरज सिन्हा बने नए प्रत्याशी। अयोध्या से योगी का विपक्ष पर हल्ला बोल। कहा, हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने वाले कर रहे हैं आस्था की बात। अखिलेश का पोस्ट, पराजय काल विपरीत बुद्धि। मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने पर भारी विरोध। बीजेपी जिलाध्यक्ष समेत सभी पार्षदों ने दिया इस्तीफा। समर्थकों ने हाईवे किया जाम। खमनेई के सुपुर्दे खाक के बाद ट्रंप ने फिर दोहराया अपना ऐलान। कहा, ईरान के साथ बातचीत रहेगी जारी, लेकिन खत्म हो गया है युद्ध विराम। तेहरान का जवाब, हम भी तैयार।

आपके साथ हिमांशु दीक्षित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूजीलैंड दौरे का आज अहम दिन है। ऑकलैंड के गवर्नमेंट हाउस में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक और पारंपरिक स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें भारत न्यूजीलैंड संबंधों को और मजबूत करने समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। स्वागत समारोह माओरी परंपरा के अनुरूप आयोजित किया गया। वहीं आज दोपहर 1 बजे पीएम मोदी ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे, जहां बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों के जुटने की उम्मीद है।

0: तो आज भारतीय लोगों को संबोधित करेंगे, न्यूजीलैंड में रह रहे भारतीय जनता को पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और बकायदा इस कार्यक्रम का नाम दिया गया है। और इससे पहले इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के दौरे आपने देखे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे थे वहां पर संबंधों को और ज्यादा मजबूत किया गया और अब बारी न्यूजीलैंड की। तो देखिए, जैसे आपको बताया कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया पहुंचते हैं, प्रम्बालन मंदिर की वो तस्वीरें पूरे देश और पूरी दुनिया ने देखी थी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उनका अगला पड़ाव ऑस्ट्रेलिया की ओर आता है तो एंथनी एल्बनीज के साथ रणनीतिक डील वहां पर की जाती है और मेलबर्न में एक बड़ा कार्यक्रम होता है जहां पर 30,000 भारतीय इकट्ठे होते हैं और पीएम नरेंद्र मोदी उनको संबोधित करते हैं। और अब आखिरी पड़ाव है न्यूजीलैंड का जो आप यहां पर देख रहे हैं और आज वो दिन है जो बहुत अहम है। ऑकलैंड में कई कार्यक्रम होने वाले हैं, संबंधों को मजबूत करने के लिए कई डील भी की जाएगी। 40 साल बाद कोई पीएम भारत का न्यूजीलैंड पहुंचा है और यहां पर बताया जा रहा है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में 30,000 भारतीय जुड़े थे, न्यूजीलैंड में इससे ज्यादा भारतीयों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। अब एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव से जुड़ी हुई, जहां बीजेपी उम्मीदवार के ऐलान के बाद पार्टी के भीतर बगावत खुलकर सामने आ गई। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बनाए जाने के विरोध में समर्थकों ने नेशनल हाईवे 44 पर जाम लगा दिया। और ऐसा वैसा जाम नहीं लगाया, बताया जा रहा है कि 10 से 12 किलोमीटर का यह जाम लग गया था, एक तरफ झांसी, दूसरी तरफ ग्वालियर, बीच में दतिया और सब जाम। बीजेपी जिलाध्यक्ष समेत कई पदाधिकारियों और सभी बीजेपी पार्षदों ने इस्तीफा भी दे दिया। अब प्रदर्शन जारी है, समर्थकों ने दिल्ली जाकर केंद्रीय नेतृत्व से टिकट बदलने की मांग करने का ऐलान किया। ये देखिए, ऐसे प्रदर्शन हुआ। नरोत्तम मिश्रा जो मध्य प्रदेश की राजनीति में एक कद्दावर नेता है, एक बड़ा चेहरा, एक बड़ी शख्सियत, और नरोत्तम मिश्रा जब गृहमंत्री भी रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, लेकिन जब पिछली बार चुनाव हारे तो उसके बाद अब दतिया में नरोत्तम मिश्रा का जब पत्ता कटा, टिकट कटा, तो अब उनके समर्थकों ने विरोध जताया। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रह गया बल्कि अब देश भर में गूंज रहा है। और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे को विपक्ष ने जिस तरह से जकड़ा है, अब सीएम योगी चढ़ावा चोरी की काट खोजने में जुट गए, क्योंकि 2027 यूपी विधानसभा चुनाव है, विपक्ष चढ़ावा चोरी में पॉलिटिकल माइलेज देख रहा है। ऐसे में सीएम योगी अयोध्या पहुंचते हैं, सबको लगा कि वह चढ़ावा चोरों पर एक्शन के बारे में कुछ बोलेंगे, लेकिन सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज का मुद्दा उठाकर हिंदुत्व की नई पॉलिटिक्स खेल दी। आइए देखते हैं चढ़ावा चोरी की लड़ाई कैसे नमाज तक आई।
1: सीएम योगी ने अयोध्या में चढ़ावा चोरी कांड की काट ढूंढ ली। विपक्ष चढ़ावा चोरी पर सवार, योगी बोले हनुमानगढ़ी में पढ़वाई नमाज। चढ़ावा चोरी की लड़ाई नमाज और कब्रिस्तान तक आई। समाजवादी और कांग्रेस पर योगी की चढ़ाई, कांवड़ वाले चैलेंज तक आए। चढ़ावा चोरी के मुद्दे से विपक्ष को मिलेगा माइलेज या योगी मैनेज कर लेंगे। जब राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, चंपत राय के ड्राइवर तेनू यादव से लेकर चढ़ावा चोरी में गिरफ्तार हुए 8 आरोपियों पर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, बात यहां तक आ रही है कि आरोपियों ने चढ़ावा चोरी की रकम को शेयर बाजार, ब्याज और करोड़ों की जमीन में इन्वेस्ट कर रकम दोगुनी करने का बिजनेस प्लान बनाया था। चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार हो चुका है। इतना ही नहीं, अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का केस अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में चढ़ावा चोरी विवाद के बीच सीएम योगी दूसरी बार अयोध्या पहुंचते हैं। हर कोई यही सोचता है कि मुख्यमंत्री चढ़ावा चोरों पर कुछ बोलेंगे, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की एसआईटी रिपोर्ट पर कुछ बोलेंगे, लेकिन सीएम योगी जब बोले तो अयोध्या से हिंदुत्व की सियासत का नया चैप्टर ही खोल दिया।
2: जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमान गढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था?
1: अब सवाल ये है कि क्या सीएम योगी चढ़ावा चोरी पर बरसने वाले विपक्ष की काट हिंदुत्व से निकाल रहे हैं, जब विपक्ष चढ़ावा चोरी के आरोप में राम मंदिर ट्रस्ट से लेकर बीजेपी, संघ और सरकार सबको घसीट रहा है, तो सीएम योगी विपक्ष को मजहबी मोर्चे पर पस्त करने वाले आजमाए हुए फॉर्मूले पर चल रहे हैं।
2: डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, कोई रोक नहीं पाया। इन्होंने हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने का पाप किया था, और हम लोगों ने अयोध्या को स्वच्छ और सुंदर बनाकर के सनातन धर्म की एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में फिर से उसकी स्थापना के साथ जोड़ा ही है। जोड़ने के साथ आज अयोध्या को सरयू जी की आरती और राम जी की पेड़ी भी मिली है, और नए घाट से लेकर के गुप्तार घाट तक घाटों की एक लंबी श्रृंखला भी अयोध्या धाम को दे करके अयोध्या को एक नई पहचान दिलाई है।
3: राम मंदिर के अंदर जो डकैती हुई है, करोड़ों लोगों की आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुई है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, बीजेपी की सरकार और आरएसएस की नेताओं के बिना ये संभव नहीं है। इसमें सब शामिल हैं, अगर जांच ईमानदारी के साथ हो तो इसमें न जाने किन किन बड़े लोगों के नाम आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश की एसआईटी एसआईटी नहीं है, नेताओं को बचाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है।
1: सीएम योगी ने चढ़ावा चोरी वाली सियासत के बीच हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज का नया चैप्टर खोला है। असल में सीएम योगी ने अयोध्या के बीकापुर की रैली में हनुमानगढ़ी की जिस घटना का जिक्र किया, उसके बारे में जो तथ्य सामने आए हैं वो भी आपको बता देते हैं। ये घटना 27 अक्टूबर 2003 से 25 नवंबर 2003 के बीच रमजान के महीने की है। तब हनुमानगढ़ी के चार पट्टियों में से एक सागरिया पट्टी के महंत ज्ञानदास थे, जिनकी बाबरी मामले के पक्षकार हाशिम अंसारी से मित्रता थी। ज्ञानदास इफ्तार कराया करते थे, उस साल भी इफ्तार आयोजित किया था और चटाइयां मंदिर के बाहर सीढ़ियों के पास बिछी थी, लेकिन खुफिया रिपोर्ट के हवाले से तत्कालीन एसएसपी ने इसे हटवा दिया था। फिर इफ्तार मंदिर के सामने से हटाकर दूसरी जगह कराया गया था।
4: हनुमानगढ़ी नहीं, हनुमानगढ़ी के पीछे उनका जो मकान है, वो अपने मकान में बुला करके मुसलमानों के रोजा इफ्तार के समय था, कहा था, उसी समय उन्होंने बुला करके भोजन कराए, नमाज पढ़वाए, तो इस पर हम लोगों ने विरोध किया। पहले तो जानकारी नहीं भया, अगला साल एक साल उसके बाद में दूसरे साल जब कराने के तैयार किए तो पहले हम लोगों ने खड़ा हो गए, पेपर में निकाले कि हम इस साल भी पढ़वाएंगे, तब हम लोग कोर्ट में गए।
1: बाद में ये मामला उज्जैनिया पट्टी के महंत धर्मदास की ओर से हाई कोर्ट पहुंचा और मंदिर परिसर में इफ्तार पर रोक लग गई। लेकिन अब जब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई है तो सवाल उठाने वाले समाजवादी पार्टी नेताओं को सीएम योगी हनुमानगढ़ी की वो घटना याद दिला रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर सिर्फ इतना लिखा है, पराजय काल विपरीत बुद्धि।
5: ये लोग राम के विरोधी है और हनुमान के विरोधी है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसी धरती पर आए थे, उनके सामने जो है हनुमान जी को नचाया जा रहा है।
0: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही बीजेपी और संघ को राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर घेर रही है और आरोप लगा रही है कि बीजेपी और संघ राम मंदिर ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रहा है। अब इसके जवाब में बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी के पुराने बयानों को फिर से सबके सामने लाना शुरू कर दिया। अब एक तरफ समाजवादी पार्टी की सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स तो दूसरी तरफ सीएम योगी की हार्ड हिंदुत्व की पॉलिटिक्स विपक्ष को घेर रही है।
1: अब नागपुर से आई इन तस्वीरों को देखिए। अयोध्या चंदा चोरी के विरोध में कांग्रेस ने नागपुर के पोद्दारेश्वर राम मंदिर के सामने ढोल मजीरे और सफेद टोपी पहनकर विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रघुपति राघव राजा राम के भजन गाए।
6: प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर में जिस प्रकार की डकैती पिछले कई दिनों से हो रही है उन सारे दोषियों को सजा देने के लिए सजा मिलना चाहिए ये मांग लेकर आज हम प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर में उनको उनसे प्रार्थना करने के लिए यहाँ आए हैं।
1: जबकि समाजवादी पार्टी खुद को सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर ले जाते हुए सनातन की समाजवादी परिभाषा तक गढ़ रही है। लखनऊ में तो पार्टी दफ्तर के बाहर समाजवादी पार्टी ने पोस्टर तक लगा दिया है कि सनातन ही समाजवाद है।
7: आपकी कावड़ यात्रा निकलती है तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कावड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको लगता है कोई उनको बुलावा दे दे तो वो भी जाएं पुष्प वर्षा करें।
1: और अब समाजवादी के सनातन के चक्कर में सीएम योगी रोज की रैली में समाजवादियों के पुराने पन्ने पलट रहे हैं।
8: पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, नहीं मार सकता। फिर भी मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की वो गुंबद पर चल तो गए लेकिन उतर नहीं सके।
1: बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर समाजवादी पार्टी नेताओं के ऐसे पुराने बयान और अयोध्या कांड की तस्वीरें लगातार पोस्ट की जा रही हैं।
9: सरकार कुर्बान कर सकते हैं लेकिन हम जब मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक हमारी लाश का भी मस्जिद नहीं गिराई जाएगी।
10: अयोध्या ने वह करके दिखाया है जो 500 वर्षों में नहीं हो पाया था। जो कहते थे अयोध्या के बारे में कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आज वे देख रहे हैं अयोध्या में लाखों लोग आ रहे हैं।
1: लेकिन अखिलेश यादव चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर पूरी तरह से पकड़े और जकड़े हुए हैं।
11: प्रभु श्री राम माफ कर देंगे, अपना सीसीटीवी बंद कर दो और आंख बंद कर लो। जो जितना चढ़ावा ले गया है रात के अंधेरे में वापस प्रभु श्री राम जी पे चढ़ा दो, प्रभु श्री राम अपने आप माफ कर देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम से भी नहीं माफी मांगना चाहते हैं।
1: आपको बता दें कि 19 जून को भी सीएम योगी अयोध्या में मिल्कीपुर दौरे पर गए थे और वहां से उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करने का ऐलान किया था।
12: हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर SIT जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि SIT जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं।
1: लेकिन अब चढ़ावा चोरी मामले में एक्शन होने के बाद SIT की पूरी रिपोर्ट सामने आने के बाद सीएम योगी दूसरी बार अयोध्या आए तो उन्होंने चढ़ावा चोरी मामले को लेकर कुछ नहीं बोला बल्कि हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ने का मुद्दा उठाकर अखिलेश यादव की PDA पॉलिटिक्स पर भी प्रहार किया।
10: महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या के साथ और देश के सभी प्रमुख शहरों के साथ अयोध्या का एयरपोर्ट जोड़ चुका है। आज जो अयोध्या का विरोध समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं वे इसलिए विरोध कर रहे हैं, वे नहीं कर पाए थे इसलिए बुरा लग रहा है कि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर क्यों हो गया। अयोध्या में रेन बसेरा निषाद राज के नाम पर हो गए, निषाद राज गुहा के नाम पर, उनको यही बुरा लगता है।
1: अब सवाल ये है कि क्या सीएम योगी हिंदुत्व की पिच पर अपना आजमाया हुआ फॉर्मूला इसलिए अपना रहे हैं ताकि राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड पर विपक्ष 2027 के विधानसभा चुनावों में माइलेज ना ले सके और सीएम योगी चढ़ावा चोरी के जवाब में नमाज और कब्रिस्तान को ले आए हैं।
7: बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था। उनको कब्रिस्तान प्यारा है इसलिए वे राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम और मां विंध्यवासिनी धाम और नैमिषारण्य और चित्रकूट धाम के विकास का विरोध करते हैं।
13: उनके लिए खतरा तो ये कि दान या चंदा बंद ना हो जाए क्योंकि ये चुनाव के लिए बड़ी ताकत बनकर के आ रही है संसाधन और भ्रष्टाचार करके ही सरकार बनाना और फिर सरकार बना के भ्रष्टाचार करना तो ये लोकतंत्र को बड़ा खतरा पैदा हो रहा है।
1: सीएम योगी ने अयोध्या के बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में 432 करोड़ से अधिक की 217 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया लेकिन विपक्ष को घेरने के लिए सीएम योगी सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की पिच पर ही बैटिंग कर रहे हैं। कुमार अभिषेक, बीकापुर, अयोध्या, आज तक।
0: कुदरत के कोहराम के पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मानसून की बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। आसमान से बरस रही आफत से पहाड़ों पर लैंडस्लाइड के चलते जिंदगी पटरी से उतर चुकी है तो मैदानी इलाकों में लोगों को बारिश ने हाउस अरेस्ट कर दिया।

0: कहीं ढह गई इमारत, कहीं बह गई सड़कें, उत्तराखंड से हिमाचल तक मचा हाहाकार, यूपी से गुजरात तक बारिश का ब्रेक फेक, नदियों का जलस्तर डेंजर जोन से ऊपर, बाढ़ बारिश पर मौसम विभाग की चेतावनी, मानसूनी बारिश जारी, अगले 48 घंटे भारी, पहाड़ से मैदान तक कुदरत का कोहराम, सिक्किम में सैलाब का संकट, तबाही की ये तस्वीरें नेशनल हाईवे 10 की हैं। ये वही हाईवे है जो सिक्किम की लाइफलाइन है, बंगाल के सिलीगुड़ी से शुरू होकर गैंगटॉक तक जाता है, लेकिन मानसून की बारिश के चलते ये हाईवे भूस्खलन से प्रभावित है। भारी लैंडस्लाइड के चलते गैंगटॉक जाने वाला हाईवे पूरी तरह बंद है। आप देख सकते हैं एक ट्रक लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। हाईवे से मलबा हटाने का काम जारी है, लेकिन भारी बारिश से मरम्मत का काम भी ठप है। वडोदरा में मगरमच्छ, तस्वीरें विश्वामित्री नदी की हैं। वडोदरा में भारी बारिश के चलते एक दो नहीं बल्कि 11 मगरमच्छ नजर आए हैं। नदी किनारे रहने वाले लोगों में दहशत है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इस बारे में जानकारी दी है। वहीं प्रशासन ने लोगों से नदी के पानी से दूर रहने की अपील की है। नदी में डूब गई थार, तस्वीरें हरिद्वार की हैं। यहाँ काले रंग की एक थार का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आप देख सकते हैं कि नदी की उफनती धारा के बीच थार फंसी हुई है और जेसीबी से थार को बाहर निकालने का ऑपरेशन चल रहा है। करीब आधे घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद थार को बाहर निकाल लिया गया है। पुलिस के मुताबिक थार चालकों ने व्हील बनाने के लिए एसयूवी को नदी में उतार दिया था, लेकिन पानी ज्यादा होने की वजह से थार फंस गई। गनीमत रही कि कार में सवार लोग बच गए। व्हील के चक्कर में फंसी थार को पुलिस ने सीज कर दिया है। उधम सिंह नगर में आफत बना मानसून, क्या घर, क्या सड़कें और क्या खेत खलिहान, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सैलाब का कब्जा है। लगातार हो रही बारिश ने उधम सिंह नगर के लोगों की जिंदगी पटरी से उतार दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि घर में रखा सामान खराब हो गया, जबकि फसल भी खराब हो गई।
1: पानी देख ही रहे हो जैसे कि भर जाता है। सरकार से यही मांगे कि नाला बन जाए और दूर दूर तक जो है पानी भरा हुआ है और जो है बार बार फसलें खराब हो जाती हैं। अभी तो शुरुआती बारिश है तो ये हाल है। अब आगे आप समझ सकते हो क्या हाल होगा।
2: अभी तो थोड़ी बारिश ही पड़ी है, ये अब और पड़ेगी तो बहुत दिक्कत आ जाती है बच्चों को आने जाने में भी। नाला बन, हमारी समस्या यही है कि नाला प्रशासन से कि नाला बन जाए, पानी की निकासी हो जाए।
0: उत्तरकाशी में हाईवे बहा, आसमानी आफत का कहर यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर टूटा, करीब 100 मीटर सड़क बह गई, लिहाजा तीर्थ यात्रियों को एहतियातन रोक दिया गया है। सियानी चट्टी पर आवाजाही पूरी तरह बंद है तो हनुमान चट्टी और फूल चट्टी के पास भी हाईवे ब्लॉक है।
3: ये सियाना चट्टी में एहतियातन अभी तीर्थयात्रियों को सुरक्षित रोका गया है, क्योंकि इससे ऊपर भी सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, जिसके चलते ये सड़क जो है पूरी वॉश आउट हो गई है। एक बार कैमरामैन अगर चाहें देखें कि अगर जूम हो सकता है तो ये वो स्थान है सियाना चट्टी का, जहां पर जो है कल 100 मीटर से भी अधिक सड़क वॉश आउट हो गई और यात्रा पूरी तरह से अभी थमी हुई है। एहतियातन तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। सियाना चट्टी में भी 50 से भी अधिक तीर्थयात्रियों के वाहनों को रोका गया है।
0: बड़ी बात यह है कि बीते साल भी सियाना चट्टी पर कुदरत ने रौद्र रूप दिखाया था। इस साल भी सियाना पट्टी में सैलाब सब कुछ डुबो देने पर आमादा है।
3: मानसूनी बारिश का कहर अब पहाड़ों में भी बरपने लगा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सियाना चट्टी में। सियाना चट्टी ये वही स्थान है जहाँ 2025 में भीषण त्रासदी आई थी, जिसके चलते ये पूरा जो सियाना चट्टी वाला जो कस्बा है यहाँ पर एक झील बन गई थी यमुना नदी की वजह से, और उससे यहाँ पर जो है स्थानीय लोगों को त्रासदी झेलनी पड़ी। कमोबेश वही 2025 की स्थिति अब फिर दोबारा से 2026 में बनती हुई दिखाई दे रही है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा एक बार दिखाएं किस तरह से होटल एक बार दोबारा से जलमग्न होने लगे हैं, निचली मंजिल पूरी तरह से यमुना नदी के आगोश में समाने लगी है। इतना ही नहीं, आप दूसरी तरफ आप देखेंगे ये होटल्स और सामने एक जो है विद्यालय भी है जो यमुना नदी के प्रभाव से प्रभावित हो सकता है। हालांकि अभी यमुना नदी का जल स्तर उतना नहीं बढ़ा, लेकिन मानसून बारिश जैसे जैसे अपने पूरे सबाब पर होगी वैसे ही यमुना का जल स्तर बढ़ता चला जाएगा।
4: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
6: कौन सी राशि बड़ी चालाक और बड़ी धनवान होती है? शनि की कौन सी राशि सबसे ज्यादा आलसी होती है? और शनि की किस राशि वालों को डिप्रेशन होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है? कौन सी है शनि की राशियां और क्या है उनकी विशेषता, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
6: कौन सी राशि बड़ी चालाक और बड़ी धनवान होती है? शनि की कौन सी राशि सबसे ज्यादा आलसी होती है? और शनि की किस राशि वालों को डिप्रेशन होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है? कौन सी है शनि की राशियां और क्या है उनकी विशेषता, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र।
7: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
8: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
5: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, Complete Oral Health Ka Sach.

ऑकलैंड में भारत न्यूजीलैंड की द्विपक्षीय बैठक, दोनों देशों में कई अहम समझौते। दोपहर 1 बजे भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी में विद्रोह, जिलाध्यक्ष समेत कई नेताओं ने दिया इस्तीफा, घंटों लगा रहा जाम। पटना के बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी ने बदला उम्मीदवार, अभिषेक की जगह नीरज सिन्हा को टिकट। प्रशांत किशोर बोले, मुकाबले से पहले घबरा गई बीजेपी। अयोध्या से योगी का विपक्ष पर हल्ला बोल, कहा हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने वाले कर रहे हैं आस्था की बात। अखिलेश का पोस्ट, पराजय काल विपरीत बुद्धि। ईरान अमेरिका में फिर बड़ी तनातनी, ट्रंप बोले खत्म हुआ संघर्ष विराम, लेकिन तेहरान से जारी रहेगी बातचीत।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे शनि देव की राशियों के बारे में। शनि की राशियां कौन कौन सी हैं, इनका प्रभाव क्या है और इन राशि के लोग अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और ये भी बताएंगे कि आज का दिन कितना विशेष है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 11 जुलाई 2026 दिन शनिवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, प्रातः 11:03 तक चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 से 10:30 तक पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं शनि की राशियों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि शनि की राशियां कौन सी हैं और इन राशियों की विशेषता क्या है। देखिए, शनि वायु तत्व का सबसे प्रमुख ग्रह है, वायु तत्व का स्वामी है। शनि दो राशियों के स्वामी हैं। शनि की दो राशियां हैं मकर और कुंभ। मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है। मकर राशि में जो शनि का रोल होता है वो धन और संपन्नता के लिए होता है, जबकि कुंभ राशि के लिए शनि ज्ञान और आध्यात्म देता है। वैसे तो मकर और कुंभ दोनों ही राशियां शनि की हैं, लेकिन शनि कुंभ राशि के ज्यादा निकट माने जाते हैं और दोनों के स्वामी शनि होने के बावजूद इन दोनों राशियों के गुणों में, इनकी विशेषताओं में, इनके प्रभाव और स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर पाया जाता है। शनि की राशियों पर चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका ठीक बना रहेगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर में परिवर्तन हो सकता है। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें,
दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, मानसिक तनाव हो सकता है, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। तो आपको बताया कि शनि की दो राशियां हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। शनि की जो पहली राशि है मकर, उसकी विशेषताएं क्या हैं? देखिए, मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और इस राशि के स्वामी हैं शनि। मकर राशि पर दो ग्रहों का प्रभाव ज्यादा होता है, एक शनि का क्योंकि शनि स्वामी है और दूसरा बुध का प्रभाव भी होता है। मकर राशि वाले बुध की वजह से सामान्यतः बुद्धिमान होते हैं, सामान्यतः इंटेलिजेंट होते हैं। मकर राशि के जो लोग होते हैं वो चालाक, मौका परस्त और धनवान होते हैं। मकर राशि के लोग, जो उनका सब्जेक्ट है, जो उनका करियर है, उसमें पूरी तरह एक्सपर्ट होते हैं। अपने करियर के बारे में इनकी जानकारी और इनका ज्ञान बहुत ज्यादा होता है। मकर राशि करियर और रोजगार को सीधा प्रभावित करती है। मकर राशि को देख करके, इसकी डिग्री को देख करके आप किसी व्यक्ति के करियर का अनुमान लगा सकते हैं। देखिए, मकर राशि का मतलब होता है आपके पैर, काफ का जो एरिया है वो मकर राशि का एरिया है। और इसके अलावा आपके शरीर के जो मसल्स हैं, जिनके पैरों में चलने में दर्द हो या रात में सोते समय पैरों में दर्द की दिक्कत होती हो, उनकी कुंडली में मकर राशि प्रभावित होगी। मकर राशि वाले मेहनती भी बहुत हैं, ज्ञानवान भी बहुत हैं, लेकिन कभी कभी चालाकी के चक्कर में मारे जाते हैं। मकर राशि की सबसे बड़ी कमजोरी है कि ये अहंकारी होते हैं, इनके अंदर अहंकार बहुत होता है। मकर राशि वालों को सलाह लेकर के एक पन्ना पहनना चाहिए, अपनी बुद्धि और अपने दिमाग को ठीक रखने के लिए। और मकर राशि वाले अपनी लंबी आयु के लिए और अपने स्वास्थ्य के लिए अगर सूर्य देव की उपासना करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा।
शनि की दूसरी राशि कुंभ पर भी बात करेंगे और साथ में आगे आपको बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, चिंताओं से आपको राहत मिलेगी, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

आपके योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्या हल होगी, संतान की चिंता समाप्त होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा।

बनाए रखें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न नूतन जी ने हमें लिखा है और नूतन जी पटना बिहार से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 अप्रैल 1989। जन्म का समय सुबह के 7:30। जन्म स्थान है हाजीपुर पटना बिहार। ये कह रही हैं कि मेरी शादी का एक मुकदमा चल रहा है और काफी समय से मैं और मेरे परिवार वाले कोशिश कर रहे हैं लेकिन डिवोर्स नहीं हो पा रहा है। तो मेरा डिवोर्स कब तक होगा? क्या मेरी कुंडली में दूसरे विवाह की संभावना बनती है? नूतन जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके डिवोर्स का समय चल रहा है। साल 2027 के आरंभ तक आपका डिवोर्स होगा। अगले साल के शुरुआत तक आपको छुटकारा मिलेगा। साल 2027 के आखिरी तक आपका विवाह अपने परिवार वालों की सहमति से होगा और दूसरा विवाह आपका कुल मिला जुला के सफल रहेगा। आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा करके पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहने। सुबह और शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें, आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं शनिदेव की दूसरी राशि के बारे में जिसका नाम है कुंभ, एक्वेरियस। कुंभ राशि के स्वामी भी शनि ही हैं और ये वायु तत्व की राशि है। चूंकि ये शनि की बड़ी प्रिय राशि है और शनि के गुण कुंभ राशि में ज्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए इनका जीवन शनि पर ही निर्भर करता है। कुंभ राशि वालों के अंदर आध्यात्म, अंतर्ज्ञान और कला के गुण जरूर होते हैं। कुंभ राशि के लोग अगर सही दिशा में चलें तो समाज के एक बड़े वर्ग को सीधा प्रभावित कर सकते हैं। सही गुरु मिल जाए, सही गाइड, सही मेंटोर मिल जाए इनको, सही दिशा मिले तो ये जीवन में विशेष हो जाते हैं। कुंभ राशि का इलाका पंजों के ऊपर और काफ के नीचे का इलाका है। आपके शरीर में नसों में झुनझुनाहट होना या हाथ पैर का कंपन होना, उसमें कुंभ राशि की बड़ी भूमिका होती है। कुंभ राशि जिनकी कुंडली में निगेटिव होती है उनको पार्किंसंस होने की संभावना काफी होती है। कुंभ राशि की सबसे बड़ी कमजोरी है इनकी लापरवाही और इनका आलस्य। लापरवाही और आलस्य के चक्कर में जीवन के बड़े बड़े मौके इनके हाथ से फिसल जाते हैं। अगर आपकी राशि कुंभ है और आप जीवन

भगवान शिव की उपासना करिएगा। नियमित रूप से अगर आप शिव जी की उपासना करें आपको शक्ति मिलेगी। कुंभ वाले बहुत जल्दी नशे के, डिप्रेशन के, गलत खान पान के शिकार हो जाते हैं, तो कुंभ वालों को गलत आदतों में पड़ने से बचना चाहिए। मकर और कुंभ राशि पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग हो सकती है, चोट चपेट से बचाव करें, महत्वपूर्ण काम टाल दें। काले चने का अगर दान कर दें तो मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक चिंता समाप्त होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब अगर आपकी राशि मकर राशि है, आपको स्वास्थ्य की दिक्कत है, पैसे रुपए में उतार चढ़ाव है, जीवन का मुश्किल समय चल रहा है, तो क्या उपाय करेंगे? इनको हमेशा, मकर वालों को, अपने करियर में और अपने परिवार में संतुलन बनाए रखना चाहिए। केवल करियर की तरफ भागेंगे तो पारिवारिक जीवन खराब होगा और शरीर में अगर ज्यादा दर्द होता है या चलने फिरने में दिक्कत होती है, स्वास्थ्य के मामलों में लापरवाही मत करिएगा। मकर राशि वालों के जीवन में रिस्क हमेशा निगेटिव होता है, इसीलिए मकर वालों को जीवन में बड़े जोखिम लेने से हमेशा बचना चाहिए। अगर आपकी राशि मकर है और आप जीवन की समस्याओं से बचना चाहते हैं तो अधिक से अधिक शनि मंत्र का जप आपको करना चाहिए। ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का रोज शाम को जप जरूर करें और जितना संभव हो गरीबों को शरीर से, पैसे से उनकी सहायता करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपकी राशि कुंभ है, आप

एकदम से किल्लत आ गई है, यानी अगर आपकी राशि कुंभ है और जीवन में समस्या आ रही है तो क्या करेंगे? कुंभ राशि वालों को जीवन में आलस्य से और लापरवाही से हमेशा बचना चाहिए। एक साथ बहुत सारे काम में आपको हाथ नहीं डालना चाहिए। एक बार में एक ही काम में अगर प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर होगा। कुंभ राशि वाले जीवन में जितना आध्यात्मिक होंगे, जितना मंत्र जप करेंगे, जितना ध्यान करेंगे, जितनी पूजा करेंगे, उतना ही उनके लिए उत्तम होगा। कुंभ राशि वाले सही मार्ग पर चलने का प्रयास करें, नियमित रूप से उपवास रखें और नियमित रूप से अगर दान करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की बाधाएं दूर होंगी, परिवार में कोई शुभ कार्य होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला।

रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। मीन राशि, चिंताओं से मुक्ति मिलेगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि शनिवार के दिन तेल नहीं खरीदना चाहिए, क्या ऐसा है? देखिए, शनिवार का दिन शनि ग्रह से संबंधित है और जो तेल है उसको भी शनि से जोड़ा जाता है, तो लोग ऐसा मानते हैं कि अगर शनिवार को तेल खरीदोगे तो शनिदेव नाराज होंगे, आपको नुकसान होगा। वास्तव में शनिवार को तेल खरीदने से आपकी कुंडली के या आपके जीवन के शनि पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर आप शनिवार को तेल खरीदेंगे तो इससे जीवन में अशुभता आएगी या जीवन में नुकसान होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जब आप मन में ये सोच लेते हैं कि नुकसान होगा तब भले नुकसान हो जाए, अन्यथा शनिवार को तेल खरीदने से कोई नुकसान नहीं होता, कोई अशुभता नहीं होती। जितना चाहे तेल आप शनिवार को खरीद सकते हैं। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 2, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 3, करियर में कुछ बदलाव होगा। नंबर 4, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। नंबर 5, परिवार में शुभ कार्य होंगे। नंबर 6, धन की स्थिति में सुधार होगा। नंबर 7, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 8, व्यर्थ की दौड़ भाग हो सकती है। नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि भाग्य पहर में आज का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में जितना संभव हो अधिक से अधिक ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। ऐसा करने से करियर से जुड़ी हुई समस्याएं समाप्त होंगी। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है,
कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज कोई परीक्षा है तो लौंग खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, घी खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ दो लौंग रख करके जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास जाना है इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए, तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो नीला रुमाल साथ में रखिएगा, लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा।

के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा। कर्क राशि वालों के लिए धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा। तुला राशि वालों को स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज द्वादशी तिथि है। आज शुभ और मंगल कार्य आप कर सकते हैं। द्वादशी तिथि के स्वामी भगवान विष्णु हैं, इसलिए आज भगवान विष्णु की उपासना आप कर सकते हैं। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: factors.
1: और आइए अब आपके लिए चलते हैं न्यूजीलैंड के ऑकलैंड, जहां पीएम मोदी अपनी बात रख रहे हैं।
2: ये लॉन्च पैड फॉर ग्लोबल ग्रोथ, भारत में बन रहे इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए हमने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम शुरू की है, पीएलआई। इसके अंतर्गत फूड प्रोसेसिंग से लेकर टेक्सटाइल जैसे 14 सेक्टर्स में लगभग $20 बिलियन का सपोर्ट दिया जा रहा है। मैं आप सभी को इस मैन्युफैक्चरिंग मोमेंटम का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत में एयरपोर्ट्स, रीजनल कनेक्टिविटी, एयर कार्गो और टूरिज्म तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है। हम मिलकर कार्गो कॉरिडोर्स, फ्लाइट कनेक्टिविटी और जॉइंट टूरिज्म पैकेजेस बना सकते हैं। कीवी, एप्पल्स, हनी और सी फूड के लिए पेरिसेबल कार्गो सॉल्यूशंस विकसित किए जा सकते हैं। न्यूजीलैंड के पास हॉर्टिकल्चर, डेयरी साइंस और फॉरेस्ट्री में विशाल एक्सपर्टीज है। भारत के पास कंज्यूमर मार्केट, फूड पार्क्स और एग्रीटेक टैलेंट की ताकत है। हम मिलकर फार्म टू मार्केट वैल्यू चेन्स और ग्लोबल एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। फिनटेक में आज भारत ग्लोबल लीडर है। आज दुनिया की 50% रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स भारत में होती है। हम डिजिटल पेमेंट्स के साथ साथ ग्रीन बॉन्ड्स में भी आगे बढ़ सकते हैं। हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोल दिया है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस स्टार्टअप है और अब तो एक यूनिकॉर्न भी बन गई है। दोनों देशों की कंपनियां भारत के स्पेस इकोसिस्टम के साथ मिलकर स्मॉल सैटेलाइट्स, रिमोट सेंसिंग और ओशन मॉनिटरिंग में काम कर सकते हैं। भारत में स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत 100 सिटीज में 8,000 से अधिक प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। हम मिलकर अर्बन मोबिलिटी, वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं माओरी बिजनेस लीडर्स का विशेष अभिनंदन करता हूं। भारत की सभ्यता और माओरी ट्रेडिशन दोनों में प्रकृति, समुदाय और सस्टेनेबिलिटी के प्रति गहरा सम्मान है। हमारे एफटीए में भी माओरी बिजनेसेस के लिए अवसरों को विशेष स्थान दिया गया है। हमारी इन साझा मूल्यों को जोड़कर हम इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ट्रेड का नया मॉडल बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा सुझाव है कि हम मिलकर एक बहुत ही एम्बिशियस बिजनेस रोडमैप बनाएं। अपनी स्ट्रेंथ को जोड़ते हुए हम कम से कम 5 फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स की पहचान करें और उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए रिव्यू मैकेनिज्म बनाए, तभी हम अपने संबंधों के पूरे पोटेंशियल को रियलाइज कर सकेंगे और दोनों देशों के लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं पर खरे उतर सकेंगे। मैं आप सभी को इस यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए आमंत्रित करता हूं। लेट अस मेक अवर पार्टनरशिप अ प्लेटफॉर्म फॉर प्रॉस्पेरिटी, ए ब्रिज फॉर इनोवेशन एंड ए फोर्स फॉर ग्लोबल गुड। और मैं चाहता हूं कि न्यूजीलैंड और भारत मिलकर के एक नई शक्ति के रूप में उभरे। और मेरा एक और आग्रह है, जैसा अभी आपने बताया कि खेल के हमारे संबंधों के 100 साल हो रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण इवेंट है, इसको तो हम मनाएंगे मनाएंगे, लेकिन क्या कभी ये सोच सकते हैं कि 35 से कम उम्र के बिजनेसमैन, ऐसा एक बड़ा डेलीगेशन भारत आए और भारत से भी 35 से नीचे की उम्र का एक बिजनेस डेलीगेशन न्यूजीलैंड आए, ताकि हम एक नई पीढ़ी को हम तैयार करें। इसी एक शुभकामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप ऑकलैंड में सुन रहे थे और पीएम मोदी ने ये बात भी कही कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को और मजबूत करना है, दोनों के व्यापारिक जो संबंध है उनको और ज़्यादा मजबूत करना है। 35 साल से कम के जो बिजनेसमैन हैं उनका एक डेलीगेशन न्यूजीलैंड की तरफ से भारत आए और भारत का एक डेलीगेशन न्यूजीलैंड जाए। अब वक्त चला है नॉन स्टॉप 100 का,
0: प्रेजेंटेड

0: नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटते ही नेशनल हाईवे 44 जाम, जिला अध्यक्ष समेत कई नेताओं और पार्षदों के इस्तीफे। दिल्ली तक पहुंचेगा दतिया का विरोध, नरोत्तम समर्थकों का केंद्रीय नेतृत्व से टिकट बदलने की मांग, बीजेपी की आधिकारिक चुप्पी बरकरार। बीजेपी में इस्तीफों की झड़ी, जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाहा समेत कई पदाधिकारियों और सभी बीजेपी पार्षदों ने पद छोड़ दिया। दतिया में विरोध का बाजार पर असर, कई व्यापारियों ने बंद रखी दुकानें, बीजेपी कार्यालय के बाहर देर शाम तक जारी रहा प्रदर्शन। पटना की बागीपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक सिन्हा ने नामांकन वापस लिया, पारिवारिक वजहों से लिया फैसला, 13 जुलाई नामांकन का आखिरी दिन। बागीपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी बने नीरज सिन्हा, उम्मीदवार बनने के बाद पार्टी दफ्तर पहुंचकर जताया आभार। मुर्शिदाबाद के बहरामपुर में सीएम शिवबिंदु ने जनसभा को संबोधित किया, कहा मुर्शिदाबाद के विकास पर सरकार का पूरा फोकस है। बहरामपुर में हुमायूं कबीर पर गरजे सीएम शिवबिंदु, बोले मैं ममता बनर्जी की तरह कमजोर सीएम नहीं, जनप्रतिनिधियों की गैर जिम्मेदाराना और आपत्तिजनक टिप्पणियां किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। ईडी की ओर से टीएमसी के बैंक खाते फ्रीज करने पर ममता गुट पहुंचा कलकत्ता हाईकोर्ट, 13 जुलाई को अगली सुनवाई। बस्ती दौरे पर सीएम योगी ने अखिलेश प्रसाद का निशाना, कहा एसपी सरकार कांवड़ यात्रा पर लगाती थी रोक, वहीं बीजेपी ने फूल बरसाकर किया स्वागत। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी, 432 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण। अयोध्या दौरे पर योगी का विपक्ष पर हमला, कहा हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने वाले कर रहे हैं राम जन्मभूमि को बदनाम। सीएम योगी के हनुमानगढ़ी वाले बयान पर अखिलेश का पलटवार, पोस्ट में लिखा पराजय काल विपरीत बुद्धि। तीन देशों की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर न्यूजीलैंड पहुंचे पीएम मोदी, 40 साल बाद किसी भारतीय पीएम का न्यूजीलैंड दौरा। पीएम लक्सन ने किया पीएम मोदी का स्वागत, द्विपक्षीय वार्ता पर आज चर्चा हुई। न्यूजीलैंड में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए उमड़ा जनसैलाब, हाथों में तिरंगा लिए नजर आए लोग। ऑकलैंड में कम्युनिटी वेलकम के दौरान देखने को मिली भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक, कलाकारों ने पेश की भव्य कार्यक्रम। भारत के तिरंगे के रंग में रंगा नजर आया ऑकलैंड का मशहूर स्काई टावर, प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के सम्मान में की गई जगमग रोशनी। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को लेकर गृह मंत्रालय के निर्देश जारी, गायन में सही शब्दों और उच्चारण का पालन अनिवार्य। विशाखापट्टनम पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नेवल बेस पर नौसेना कर्मियों से की बातचीत, आज आईएनएस महेंद्रगिरी की कमिश्निंग कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। विशाखापट्टनम नेवल बेस पर रक्षा मंत्री बड़ा खाना में हुए शामिल, नौसेना कर्मियों के साथ बैठकर खाया खाना। भारतीय नौसेना की ताकत में होगा इजाफा, आज स्वदेशी स्टील की युद्धपोता आईएनएस महेंद्रगिरी को अपने बेड़े में शामिल करेगी भारतीय नौसेना। तमिलनाडु के करूर पहुंचे मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय, करूर भगदड़ में पीड़ित 31 परिवारों को सौंपे सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र। पंजाब कांग्रेस में उथल पुथल के बीच पार्टी में सियासी हलचल तेज है, राज्य प्रभारी भूपेश बघेल से पूर्व सीएम चन्नी आज करेंगे मुलाकात, मौजूदा अध्यक्ष वड़िंग से नाराजगी है। लखनऊ अग्निकांड में 15 लोगों की मौत वाली बिल्डिंग को किया जाएगा ध्वस्त, एलडीए को कोर्ट ने इमारत गिराने का आदेश दिया। कानपुर में राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर पप्पू यादव का बड़ा बयान, बोले इतनी बड़ी घटना पर प्रधानमंत्री चुप क्यों है। पप्पू यादव का राज्य सरकार पर बड़ा हमला, बोले बीजेपी ने देश के 170 करोड़ लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया, राम मंदिर चंदा में चोरी में बड़ी मछली कौन है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राम मंदिर चढ़ावा घोटाले की निंदा की, बोले जिसने की राम भक्तों के साथ आस्था के साथ खिलवाड़ भ्रष्टाचार किया उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। भारत की अध्यक्षता में नागपुर में तीसरी ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक, इंडोनेशियाई डेलीगेशन ने अन्य सदस्य देशों के साथ परिवहन सहयोग को मजबूत करने के लिए चर्चा की। महाराष्ट्र में शिवसेना पार्षद रमेश मात्रे की डॉक्टरों से मारपीट केस में कल्याण कोर्ट में पेशी, 13 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में। पुणे प्लांट हादसे के 3 दिन बाद भी 8 लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, हादसे को लेकर सियासत तेज। महाराष्ट्र के वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर का सरकार पर हमला, विपक्ष को राजनीतिक रूप से मृत करार दिया, बोले विधानसभा मानसून सत्र में पूरे हादसे पर कोई चर्चा नहीं हो रही। वहीं प्रकाश अंबेडकर ने घातक गैस प्रबंधन पर सवाल उठाया, ठेकेदार पर केस दर्ज करने और पीड़ितों को मुआवजे की मांग की। 1 अगस्त से दिल्ली की बसों में मुफ्त यात्रा के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड अनिवार्य, 31 जुलाई तक पेपर पिंक टिकट की व्यवस्था रहेगी जारी। बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेगी 12% से ज्यादा अल्कोहल वाली दवाएं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। एक्टर राजपाल यादव की फिर बड़ी मुश्किल है, दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस केस के 7 मामलों में सुनाई 3 महीने जेल की सजा। कर्नाटक के रायचूर में आंगनबाड़ी और मिड डे मील कर्मियों का वेतन वृद्धि, बेहतर सामाजिक सुरक्षा और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन। वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिमों की नियुक्ति को लेकर भोपाल में मुस्लिम समुदाय का प्रदर्शन, काली पट्टी बांधी। साईं बाबा मंदिर के वीआईपी प्रोटोकॉल, दर्शन शुल्क में हुई बढ़ोतरी, 100 रुपए की बढ़ोतरी के साथ अब वीआईपी दर्शन के लिए हर भक्त को देने होंगे 300 रुपए। पुणे में संत ज्ञानेश्वर महाराज और संत तुकाराम महाराज की पवित्र पालकियों का भव्य स्वागत, लाखों श्रद्धालु विट्ठल नाम का जयघोष करते दिखे। कई घंटों की मशक्कत के बाद खुला कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग, पहले दल ने लिपुदर्रा पार कर तिब्बत में किया प्रवेश, यात्रा में 48 यात्रियों सहित 52 लोग शामिल। अमरनाथ यात्रा का आज 9वां दिन, श्रद्धालुओं ने सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए बालटाल रूट के बेहतरी रख रखाव के लिए बीआरओ की तारीफ की। अमरनाथ यात्रा के सुचारू रूप से चलने के लिए एलजी मनोज सिन्हा ने तीर्थयात्रियों से मुलाकात की, यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। गाजियाबाद में करंट से 8 साल के मासूम की मौत, ट्रांसफार्मर के पास हुआ हादसा, परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। 24 घंटे में करंट से दूसरी मौत, उठे सुरक्षा पर सवाल, एफआईआर और निष्पक्ष जांच की मांग। पुंछ में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, नदियां नाले उफान पर, निचले इलाकों में पानी भरा, लोग परेशान। मेंढर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, पुलिस ने पानी में फंसे 25 लोगों को सुरक्षित निकाला, प्रशासन अलर्ट पर। पालघर में बाढ़ का कहर, आधी रात घर में घुसा पानी, परिवार ने खिड़की तोड़कर छत पर जाकर बचाई जान, 8 घंटे तक जिंदगी की जंग चली। मानसून में रुक रुक कर हो रही बारिश में भी चार धाम यात्रियों का जोश आई, लगातार बड़ी संख्या में दर्शन को पहुंच रहे भक्त। बद्रीनाथ धाम यात्रा मार्ग पर बीआरओ ने बनाया 70 मीटर लंबा मोटर पुल, लाम बगड़ नाला पार करना आसान होगा। मानसून की बारिश में उफान पर अलकनंदा नदी अलर्ट पर, सभी रेस्क्यू टीमें यात्रा मार्गों की लगातार की जा रही निगरानी। हिमाचल में लगातार हो रही तेज बारिश, मौसम विभाग का आज के लिए कांगड़ा मंडी शिमला सोलान सिरमौर जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। पिथौरागढ़ में बारिश, भूस्खलन के बाद नदी नालों में भारी उफान, जान जोखिम में डाल, लकड़ी के लट्ठों के सहारे नदी पार कर रहे लोग। देहरादून में भारी बारिश से यमुना नदी उफान पर, विकास नगर में बाढ़ का खतरा। उत्तरकाशी में यमुनोत्री गंगोत्री हाईवे बंद, सियाना चट्टी के पास भूस्खलन के कारण पत्थर गिरे, मलबा गया। बिजनौर हरिद्वार मार्ग पर मालन नदी का पानी आने से आवागमन बंद किया गया, कई गांव जल मुख्यालय से कट गए हैं। जालंधर में भारी बारिश के कारण ओवरफ्लो होने से नहर का बांध टूटी और रिहायशी कॉलोनियों में पानी भरा, स्थानीय लोगों ने बोरियों की मदद से मरम्मत की। विंबलडन फाइनल में सिनर की दमदार एंट्री, नंबर वन यानिक सिनर ने नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में हरा के लगातार दूसरी बार बनाई जगह। विंबलडन को आज मिलेगी नई महिला चैंपियन, कैरोलिना मुचोवा और लिंडा नोस्कोवा के बीच होगा खिताबी मुकाबला। फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस का दमदार प्रदर्शन, मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह, जीत के बाद लंदन में हिंसा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Chogan Perfumes, the French edition for him and her.
4: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. 2 taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
5: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
6: Today's Match Day Preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here.
7: Norway will take on England in Miami, and Argentina will face Switzerland in Kansas City. Many are expecting England and Norway to be a close match. The draw is plus 280. Meanwhile, Argentina is favored to qualify for the next round at minus 300.
6: This has been your official Odyssey Sports Match Day Preview, brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
8: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
9: Jack, you're killing me.
8: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
10: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
11: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स, और अब लाइन लाइना डेट्स।
12: इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
13: लायन लाइना प्रीमियम डेट्स।
14: In association with
15: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
16: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
17: Vimal, bolo zubaan kesri. Hint, bade aaram se.
18: Aaj tak la raha hai aapke liye video wala paper. Har roz subah aapke mobile par, wo bhi aapke purane newspaper se pehle. इसे पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर ईपेपर.aajtak.in टाइप करें या फिर स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड को स्कैन करें।
19: जय हिंद फ्रेंड्स। ईसाइत, सोना, मसाला या विस्तार, 1498 में क्या थी वास्को डिगामा की मंशा? मधुमक्खी जैसे गोरे जो शहद लेकर आ रहे थे, भारत को डंक मारना शुरू कर दिया और बेवकूफ राजाओं का फायदा उठाकर इस देश को गुलाम बना दिया। लेकिन मीर जाफर और मीर कासिम ने अगर सर झुकाया तो रानी लक्ष्मीबाई ने सर उठाया और गोरों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कैसी थी लड़ाई, कौन थे इसके महानायक, तलवारें चली या भजन चला? अगर बचपन में नहीं समझ में आया, नोटबुक निकाल लीजिए। मैं अवध ओझा जल लेकर आ रहा हूं मास्टर जी इन द न्यूज रूम, सिर्फ ललन टॉप पर।
20: जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमान गढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? कौन करवा रहा था ये? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की, राम के नाम पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया, राम भक्तों पर गोलियां चलाए, अयोध्या के नाम पर पहचान का संकट खड़ा किया। ये डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, कोई रोक नहीं पाया।

0: अयोध्या में चोरों ने राम जी का चढ़ावा क्या चुराया, राजनीति को ऐसी आग लगी है कि लपटे कम नहीं होती। एक तरफ विपक्ष है जो चढ़ावा चोरी के आरोप में ट्रस्ट से लेकर बीजेपी संघ सरकार सबको खींचता है, दूसरी तरफ सीएम योगी जिन्होंने सवाल उठा रहे विपक्षी दलों को मजहबी मोर्चे पर पस्त करने के लिए चारों तरफ से घेर रखा है। पिछले एक हफ्ते से सीएम योगी ने राम मंदिर चोरी का सवाल उठा रहे विपक्षी दलों पर जितने हमले किए उसमें नया चैप्टर हनुमानगढ़ी का खुला है।
1: इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? कौन करवा रहा था? ये
0: पुलिस करा रही थी। दावा यही है कि सरकार के इशारे पर हनुमानगढ़ी के बाहर नमाज की कोशिश तब की गई थी। सीएम योगी ने अयोध्या के बीकापुर की रैली में हनुमानगढ़ी की जिस घटना का जिक्र किया उसके बारे में तथ्य सामने आए कि ये घटना 27 अक्टूबर 2003 से 25 नवंबर 2003 के बीच रमजान की है। तब हनुमानगढ़ी के चार पट्टियों में से एक सागरिया पट्टी के महंत ज्ञानदास थे, जिनकी बाबरी मामले के पक्षकार हाशिम अंसारी से दोस्ती थी। ज्ञानदास इफ्तार कराया करते थे। उस साल भी इफ्तार आयोजित की गई और चटाइयां हनुमानगढ़ी के बाहर सीढ़ियों के पास बिछी, लेकिन खुफिया रिपोर्ट के हवाले से तत्कालीन फैजाबाद के एसएसपी ने इसे हटवा दिया। फिर इफ्तार मंदिर के सामने से हटाकर दूसरी जगह कराई गई। बाद में यह मामला उज्जैनिया पट्टी के महंत धर्मदास की तरफ से हाई कोर्ट पहुंचा और मंदिर परिसर में इफ्तार पर रोक लग गई। लेकिन अब जब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई तो सवाल उठाने वाले समाजवादी पार्टी के नेताओं को मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ी की वो घटना याद दिलाई।
2: ये लोग राम के विरोधी है और हनुमान के विरोधी है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसी धरती पर आए थे उनके सामने जो है हनुमान जी को नचाया जा रहा था। वो हनुमान जी को राम जी को जानने वाले कौन लोग हैं? आस्था के नाम पर चंदा सुनना, चंदा की चोरी करना इनका काम है। हनुमान जी का नाम उन्होंने कब लिया? कब की बात बता रहे हैं आप? हनुमान जी के विषय में उन्होंने कब रामायण हनुमान चालीसा बातें कही?
0: दरअसल अयोध्या के कांड को समाजवादी पार्टी आस्था को चोट का मुद्दा बनाती है और खुद को सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर ले जाते हुए सनातन की समाजवादी परिभाषा तक गढ़ती है। लखनऊ में तो पार्टी दफ्तर के बाहर समाजवादी पार्टी ने पोस्टर तक लगा लिया है कि सनातन ही समाजवाद है, और इसी सनातन के चक्कर में सीएम योगी रोज की रैली में समाजवादियों के पुराने पन्ने पलट रहे हैं। बीजेपी तो सोशल मीडिया पर समाजवादी सनातन के इतिहास के पन्ने तक दिखा रही है।
3: बाबरी मस्जिद पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, नहीं मार सकता। फिर भी मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की वो गुंबद पर चल तो गए लेकिन उतर नहीं सके, ये रिकॉर्ड। और इस बात का समाजवादी पार्टी और उसके नेता को न कभी अफसोस था और न रहा है, रहेगा।
0: बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर समाजवादी पार्टी नेताओं के ऐसे पुराने बयान और अयोध्या कांड की तस्वीरें लगातार पोस्ट की जा रही हैं।
4: सरकार कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन हम जब मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक हमारी लाश का भी मस्जिद नहीं गिराई जाएगी।
0: इन बयानों और इतिहास की घटित अघटित घटनाओं का हवाला देकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव और राहुल गांधी की पार्टी को हिंदू विरोधी ठहराने की कोशिश करते हैं, ताकि इन चुनाव से पहले चढ़ावा चोरी के कांड पर बीजेपी बैकफुट पर ना आ सके। आज तक

0: 40 साल बाद प्रधानमंत्री के दौरे से न्यूजीलैंड के 7 रिश्तों को मिली रफ्तार। दोनों देशों में कई अहम समझौते। पीएम मोदी बोले 2030 तक दोगुना द्विपक्षीय कारोबार। मध्य प्रदेश के दतिया से पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने से बीजेपी में विद्रोह। सड़कों पर उतरे समर्थक, तोड़फोड़, पथराव, जाम। जिलाध्यक्ष समेत कई नेताओं ने दिया इस्तीफा। बीजेपी में एक दिन ही बदला पटना के बाकीपुर का उम्मीदवार। अभिषेक की जगह नीरज सिन्हा को टिकट। प्रशांत किशोर बोले मुकाबले से पहले घबरा गई बीजेपी। सीएम योगी ने अयोध्या पर विपक्ष पर हमले की बौछार की। कब्रिस्तान प्रेम हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज के बाद कांवड़ यात्रा पर गिरा अखिलेश का पोस्ट। पराजय काल विपरीत बुद्धि। और हॉर्मुज पर ईरान अमेरिका में बड़ी तनातनी। सुप्रीम लीडर के करीबी वित्तीय नेटवर्क, कई एक्सचेंज हाउस और अमेरिका ने लगाए प्रतिबंध। ट्रंप बोले खत्म हो गया सीज फायर। बातचीत को लेकर जताई सहमति। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। सुबह 8 बजे के बुलेटिन में सबसे पहले बात दो राज्यों में उपचुनाव के प्रत्याशियों के ऐलान पर छिड़े सियासी संग्राम की करेंगे। पहली खबर मध्य प्रदेश की दतिया से, जहां उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा तो समर्थकों ने क्या किया, सड़क पर हंगामा कर दिया। वहीं बिहार के बांकीपुर में बीजेपी ने एक दिन पहले अपना प्रत्याशी बदल लिया और वहां भी काफी हलचल देखने को मिल रही है। एक दिन में प्रत्याशी बदल लिया गया। दो तस्वीरें हैं, एक तस्वीर मध्य प्रदेश के दतिया की, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटता है, दूसरे को टिकट दिया जाता है, उसके बाद हंगामा हो जाता है। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के ऐलान के बाद पार्टी के भीतर जो बगावत थी वो खुलकर सामने आ गई। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बनाया गया। अब इसका विरोध हुआ। समर्थकों ने नेशनल हाईवे 44 जाम कर दिया। देर रात नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने गाड़ियों पर भी पथराव किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। इलाके में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। हालांकि पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में भी किया। उधर नरोत्तम मिश्रा को टिकट न मिलने पर बीजेपी जिलाध्यक्ष समेत कई पदाधिकारियों और सभी बीजेपी पार्षदों ने दतिया के इस्तीफा दे दिया। प्रदर्शन अब भी जारी है और समर्थकों ने दिल्ली जाकर केंद्रीय नेतृत्व से टिकट बदलने की मांग करने का ऐलान किया है। झांसी ग्वालियर हाईवे, नेशनल हाईवे 44, उसको जाम कर दिया गया।
1: दतिया में बीजेपी की पहली सूची जारी होते ही पार्टी के भीतर विरोध तेज हो गया। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से नाराज समर्थक बड़ी संख्या में नेशनल हाईवे 44 पर पहुंच गए और सड़क जाम कर दी। प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और टिकट बदलने की मांग उठाई। हाईवे जाम होने से झांसी और ग्वालियर की ओर जाने वाला यातायात पूरी तरह प्रभावित हुआ। पुलिस ने दोनों तरफ से आने वाले वाहनों को बाईपास मार्ग से डाइवर्ट किया, लेकिन कई वाहन चालक 2 घंटे से अधिक समय तक जाम में फंसे रहे। देर शाम तक पुलिस और प्रशासन प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय के सामने और हाईवे पर डटे रहे। विरोध सड़क तक ही सीमित नहीं रहा। बीजेपी जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाहा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
2: चुनाव में जैसे ही टिकट का निर्णय हुआ, हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय पर तालाबंदी करने का प्रयास, तालाबंदी की, बाहर कार्यकर्ताओं ने जाम लगा दिया है। मैं बाहर भी नहीं जा पाया, बाहर देखा तो बता रहे हैं मीडिया के माध्यम से, इत्यादि के माध्यम से पता पड़ा कि हजारों की संख्या में बाहर कार्यकर्ता है, बहुत बड़ा जाम लगा लिया है। सारे कार्यकर्ताओं ने अंदर गेट खोलकर प्रवेश किया और उन्होंने सामूहिक रूप से सभी दायरपान पदाधिकारी हों, चाहे वो जिले के पदाधिकारी हों, चाहे वो मंडल के पदाधिकारी हों, मंडल अध्यक्ष हों, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, पार्षद हो, सभी लोगों ने यहाँ आकर सामूहिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का इस्तीफा दिया।
1: रघुवीर सिंह कुशवाहा के साथ संगठन के कई पदाधिकारियों ने भी इस्तीफे सौंप दिए। दतिया नगर के सभी बीजेपी पार्षदों ने भी सामूहिक इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा जिला पंचायत और जनपद पंचायत से जुड़े कई पदाधिकारियों ने भी संगठन छोड़ने का ऐलान किया। दतिया शहर में विरोध का असर बाजारों पर भी देखने को मिला। कई व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे, जबकि कुछ इलाकों में सामान्य कारोबार जारी रहा। प्रदर्शन के बीच नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने ऐलान किया कि वो दिल्ली जाकर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और आशुतोष तिवारी की जगह डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को उम्मीदवार बनाए जाने की मांग करेंगे। दूसरी ओर बीजेपी की ओर से अब तक इस पूरे विवाद पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन दतिया में जिस तरह पार्टी के भीतर खुलकर असंतोष सामने आया है, उसने उपचुनाव से पहले बीजेपी के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि केंद्रीय नेतृत्व इस नाराजगी को कैसे संभालता है और क्या उम्मीदवार को लेकर कोई पुनर्विचार होगा। दतिया से अशोक शर्मा के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
0: देखिए, एक बात तो बहुत तय है, जमकर हंगामा हुआ है कल से लेकर आज तक दतिया में। हमारे सहयोगी रवीश पाल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवीश, ये बताइए अभी हालात क्या हैं, क्या सब कुछ नॉर्मल हो गया है या नहीं हुआ है? बहुत सारे जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा की एक तरह से राजनीतिक हत्या कर दी गई है। क्यों? क्योंकि उनको टिकट उनका काट दिया गया है, उनको साइडलाइन कर दिया गया है।
3: देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होगा हमारे दर्शकों को कि दतिया का मतलब क्या है और नरोत्तम मिश्रा और दतिया का संबंध क्या है। यही वजह है कि अचानक से जहां नरोत्तम मिश्रा जो नामांकन पत्र खरीद कर बैठे हुए थे, आखिरकार उन्हीं नरोत्तम मिश्रा का नाम कट जाता है और आशुतोष तिवारी का नाम आ जाता है। तो दतिया के लोगों के लिए, खासतौर से उनके समर्थकों के लिए, ये किसी बहुत बड़े झटके से कम नहीं था। आपको बता दें कि नरोत्तम मिश्रा लगातार दतिया से 3 बार के विधायक रह चुके थे। इससे पहले वो डबरा से चुनाव लड़ते थे, वहां से 3 बार जीत करके आए थे और इस बार अगर वो चुनाव लड़ते तो हालात इस तरीके के थे कि नरोत्तम मिश्रा ने वहां इतने लंबे समय तक रहते हुए अपना जबरदस्त प्रभाव जमा लिया था और न केवल भाजपा में बल्कि संगठन के भीतर भी दतिया में ब्लॉक स्तर से लेकर के जिला स्तर तक नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का दबदबा है। और यही वजह है कि कल जब नरोत्तम मिश्रा का नाम काट के आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया तो इस्तीफों की झड़ी लग गई है पूरे दतिया जिले में। जिला अध्यक्ष से लेकर के पूरी जो जिला कार्यकारिणी है, पूरा ब्लॉक स्तर तक है, पार्षद जितने भी है नगर पालिका के, सभी ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। अभी की स्थिति की बात करें तो देखिए, जो नेशनल हाईवे 44 पे जाम लगा हुआ था ग्वालियर से झांसी के बीच में, उसे फिलहाल पुलिस ने खुलवा लिया है क्योंकि वहां पे पुलिस बल मौजूद था। हालांकि सुबह 4:30 बजे बताया जा रहा है कि वहां पे पुलिस के ऊपर हल्का पथराव किया गया था नरोत्तम समर्थकों की तरफ से, लेकिन पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके वहां पे हालात को काबू कर लिया। लेकिन बताया जा रहा है कि जो सर्वे करवाया गया था भाजपा की तरफ से और संगठन की तरफ से, उसमें नरोत्तम मिश्रा के लिए खतरे की घंटी थी और इसीलिए ऐन वक्त पर बीजेपी ने अपना फैसला बदला और नरोत्तम की जगह आशुतोष तिवारी को टिकट दिया।
0: और बिल्कुल 2023 में भी ऐसा हुआ था जब नरोत्तम मिश्रा यहां पर राजेंद्र भारती से चुनाव हारे थे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखिए, दतिया की बात की जा रही है, हंगामा बहुत हुआ, जाम लगाया, पत्थरबाजी भी की गई। अब कानून व्यवस्था को संभाल रहे मयूर खंडेलवाल जो वहां के पुलिस अधीक्षक हैं, उनकी तरफ से क्या कहा गया वो आपको सुनवाते हैं।
4: लगभग 3,000 से ज्यादा हुड़दंगियों ने यहाँ पर कल पूरे दतिया शहर की जो फिजा है उसको खराब करने की कोशिश की है। उन्होंने कोशिश की कि बाजार को बंद कर दिया जाए कैसे भी। साथ में यहाँ पे चक्का जाम के लिए लगभग शाम को 6 बजे से ये सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनको बार बार कलेक्टर साहब और मेरे द्वारा समझाइश दी गई है कि यहाँ से चले जाएं और चक्का ये जो जाम किया है उसको पूरा खोल दिया जाए जिससे यातायात का आवागमन हो सके। इस कारण से कई सारे जो महिलाएं और बच्चे हैं उन लोगों ने बहुत सफ़र किया, लगभग 15 किलोमीटर से अधिक का जाम लगा जिससे सीमावर्ती जो जिले हैं उनको भी बहुत अफेक्ट होना पड़ रहा है। इसकी वजह से इनको बार बार समझाइश दी जा रही थी। इसी क्रम में लगभग 4 बजे समझाइश देने के पश्चात इन्होंने अचानक पुलिस पे
0: बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार के बागीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ने अपना नाम वापस ले लिया। बीजेपी के अभिषेक कुमार ने कल ही नामांकन भरा, लेकिन अब पारिवारिक कारण की वजह से नामांकन वापस लेने की बात कही गई। अब सबसे बड़ी बात, कल ही नामांकन से पहले अभिषेक ने परिवार का आशीर्वाद लिया था जो कि बहुत खुश थे, भावुक थे, दिख रहे थे। बीजेपी ने अब नीरज सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई थी, तो बीजेपी के लिए तो बहुत अहम सीट है ये। लेकिन जन स्वराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं यहां से, और वो ये कह रहे हैं कि पहले ही बीजेपी के नेता भाग खड़े हुए, विपक्ष इसे बीजेपी के अंदरूनी खींचतान बता रहा है। जन स्वराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने इसे बीजेपी की बड़ी राजनीतिक हार करार दिया।
5: विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। मैं कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा।
6: तो मैं ऐसा देख रहा हूं कि मुझे एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी इस जगह पर पहुंचाई है। मैं तो कल्पना भी नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ तक अभी पहुंच पाऊंगा जो मेरा उम्र है अभी। लेकिन मैंने अपनी कार्य क्षमता से, मैं बूथ अध्यक्ष का काम करता था, वहाँ पर उस पर्ची बांट रहा था, मुझे जानकारी मिली, तो अभी मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ।
7: वहाँ उनके प्रत्याशी हार के डर से नामांकन के बाद भी नाम वापस ले रहे हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में इतना अंतरकला है, इतना द्वंद है, वो डिसीजन कर ही नहीं पाते कि उनका प्रत्याशी कौन जीत सकता है।
0: तो देखिए, अजब स्थिति बनी हुई है। बीजेपी के लिए साख वाली बात है, क्योंकि उनके जो अध्यक्ष नितिन नवीन, उनकी ये सीट खाली हुई है, और ऐसे में बीजेपी को ये जीतना ही है। प्रशांत किशोर ने भी एड़ी चोटी का जोर यहां पर लगा दिया है, निशाना भी साधा जा रहा है। अब क्या हुआ, क्यों हुआ, क्यों प्रत्याशी बदला, विपक्ष कैसे निशाना साध रहा है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
1: बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी का दांव अचानक बदल गया। गुरुवार को पार्टी उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल करने वाले अभिषेक कुमार सिन्हा ने अगले ही दिन चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को पत्र लिखकर कहा कि पारिवारिक कारणों से वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पहले की तरह काम करते रहेंगे। दिलचस्प बात यह है कि नामांकन से पहले अभिषेक अपने परिवार का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। उस दौरान परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही पूरा राजनीतिक घटनाक्रम बदल गया।
5: पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। मैं कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा।
0: आइए एक बार फिर आपको लिए चलते हैं न्यूजीलैंड के ऑकलैंड। पीएम मोदी अपनी बात रख रहे हैं।
8: पिछले कुछ वर्षों में हमने हमारे संबंधों को अभूतपूर्व गति प्रदान की है। आज की बैठक में हमने हमारे सहयोग को नई गहराई और व्यापकता देने पर विस्तार से चर्चा की। हमने भारत न्यूजीलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत हम हर क्षेत्र में स्पष्ट लक्ष्यों और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ेंगे। इस वर्ष हमने रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। इस उपलब्धि से दोनों देशों के उद्योगों, किसानों और युवाओं के लिए नए द्वार खुलेंगे। हमें ट्रेड के साथ साथ ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी और टैलेंट का ब्लूप्रिंट हम तैयार कर रहे हैं। पिछले 3 वर्षों में हमारे व्यापार में 50% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। हमें विश्वास है कि एफटीए अगले 5 वर्षों में हमारे व्यापार को 2 गुना करने का मजबूत आधार बनेगा। न्यूजीलैंड द्वारा भारत में $20 बिलियन के इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट का भी हम विशेष रूप से स्वागत करते हैं। यह न्यूजीलैंड की कंपनीज को भारत की ग्रोथ स्टोरी में लॉन्ग टर्म पार्टनर बनने का अवसर देगा। फ्रेंड्स, हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को सार्थक बनाने के लिए हम दोनों देशों की स्ट्रेंथ को प्रैक्टिकल कोऑपरेशन में बदल रहे हैं। फिनटेक के क्षेत्र में हम भारत के यूपीआई और न्यूजीलैंड के पेमेंट सिस्टम को जोड़ने पर आगे बढ़ रहे हैं। एग्रीकल्चर, डेयरी और फूड प्रोसेसिंग

0: दोनों देशों के आर्ट, कल्चर, हेरिटेज तथा क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में एक्सचेंज को गति देगा। न्यूजीलैंड भारतीय स्टूडेंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन रहा है। हम न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटीज को भारत में कैंपस खोलने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस वर्ष हम दोनों देशों के बीच खेल संबंधों की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। 100 साल पहले मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में हॉकी टीम ने यहां आकर जो इतिहास रचा था, वह हमारी खेल साझेदारी को आज भी प्रेरित कर रहा है। इस उपलक्ष्य पर हम दोनों देशों में कई स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं। क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों में भी सहयोग बढ़ाने के लिए हमने स्पोर्ट्स ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया है। हाल ही में भुवनेश्वर में न्यूजीलैंड रग्बी और रग्बी इंडिया के कोचिंग प्रोग्राम से अच्छी शुरुआत हुई है। फ्रेंड, वैश्विक मंच पर भी भारत और न्यूजीलैंड भरोसेमंद साझेदार और करीबी मित्र है। हमारा मानना है कि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए यूएन सहित अन्य वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म आवश्यक है। आतंकवाद के विषय पर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने के लिए आज हमने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का गठन किया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच सहयोग इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को माओरी नववर्ष मातृकी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरह तारा समूह को यहां मातृकी नाम दिया गया है, जैसा आपने भी बताया, उसे भारत में प्राचीन काल से कृतिका नक्षत्र के रूप में जाना जाता है। मुझे विश्वास है कि मातृकी का यह वर्ष हमारे संबंधों को इन्हीं सितारों की तरह जगमगाने की प्रेरणा देगा। प्राइम मिनिस्टर लक्सन, आपकी मित्रता, आपकी प्रतिबद्धता और मेरी न्यूजीलैंड यात्रा को यादगार बनाने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। जैसे रग्बी में टीम वर्क और भरोसा जरूरी होता है, वैसे ही हम भी आपसी विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। हम एक ही टीम में हैं, इसलिए टैकल केवल चुनौतियों को करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: पीएम नरेंद्र मोदी अपनी बात रख रहे थे और बताया कि कैसे न्यूजीलैंड और भारत के रिश्तों को और मजबूती दी जा सकती है, कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। लगातार बारिश हो रही है और बारिश से जो अड़ी कस्बे सगलैड क्षेत्र है, मेंढर से होकर गुजरने वाली नदी का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ गया। कई नदियां नाले उफान पर आ गए, जिसके चलते निचले इलाकों में पानी भर गया, लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। हालात बिगड़ने के बाद पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, बचाव अभियान शुरू किया। पुलिस ने पानी के बीच फंसे करीब 25 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। एसडीएम मेंडर ने बताया कि कई खेतों और कुछ घरों में पानी घुसा है। प्रशासन अलर्ट पर है, लोगों को भी अलर्ट पर रहने को कहा गया है। ये देखिए पानी का तेज बहाव, अपना रास्ता बनाता जा रहा है पानी, कुदरती रास्ता जिसे कहा जाता है। जम्मू में बहुत ज़्यादा भारी बारिश हो रही है, पहाड़ से मैदान तक इसी तरह के हालात हैं। घरों में पानी घुस गया है, लोगों से कहा गया है कि भाई सावधानी बरतिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि छोटी सी लापरवाही जान पर बन सकती है। वहीं महाराष्ट्र के पालघर में भी भारी बारिश हुई, लोगों की परेशानी बढ़ी। केलवे पूर्व के मायखोप इलाके में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया। देवीपाड़ा के रहने वाले दिनेश बाबर के परिवार ने मौत को बहुत करीब से देखा। आधी रात पानी घर

में भरने लगा, जिसके बाद उन्होंने खिड़की तोड़कर पत्नी, दो बच्चों और परिवार को छत पर पहुंचाया। मूसलाधार बारिश के बीच पूरा परिवार करीब 8 घंटे तक छत पर ही बैठा रहा। चारों तरफ बाढ़ का पानी और ऊपर लगातार बरसता आसमान। हर पल जिंदगी बचाने की जद्दोजहद जारी रही। तो वहीं सोनीपत के रोहट गांव में भी कुछ ऐसी तस्वीरें दिखी, लेकिन कुदरत के कोहराम की पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक मानसून की बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। आसमान से बरस रही आफत से पहाड़ पर लैंडस्लाइड के चलते जिंदगी पटरी से उतर चुकी है। मैदानी इलाकों में लोगों को बारिश ने हाउस अरेस्ट कर दिया।

0: कहीं ढह गई इमारत, कहीं बह गई सड़कें, उत्तराखंड से हिमाचल तक मचा हाहाकार, यूपी से गुजरात तक बारिश का ब्रेक फेक, नदियों का जलस्तर डेंजर जोन से ऊपर, बाढ़ बारिश पर मौसम विभाग की चेतावनी, मानसूनी बारिश जारी अगले 48 घंटे भारी, पहाड़ से मैदान तक कुदरत का कोहराम, सिक्किम में सैलाब का संकट, तबाही की ये तस्वीरें नेशनल हाईवे 10 की हैं। ये वही हाईवे है जो सिक्किम की लाइफलाइन है, बंगाल के सिलीगुड़ी से शुरू होकर गैंगटॉक तक जाता है, लेकिन मानसून की बारिश के चलते ये हाईवे भूस्खलन से प्रभावित है। भारी लैंडस्लाइड के चलते गैंगटॉक जाने वाला हाईवे पूरी तरह बंद है। आप देख सकते हैं एक ट्रक लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। हाईवे से मलबा हटाने का काम जारी है, लेकिन भारी बारिश से मरम्मत का काम भी ठप है। वडोदरा में मगरमच्छ, तस्वीरें विश्वामित्री नदी की हैं। वडोदरा में भारी बारिश के चलते एक दो नहीं बल्कि 11 मगरमच्छ नजर आए हैं। नदी किनारे रहने वाले लोगों में दहशत है। स्थानीय लोगों ने
1: जरूरी है बारिश के मौसम में आप लोग सावधानी जरूर बरते। रुकेंगे ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
3: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
6: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
7: Looking for an app to hear all of your favorite music, news, sports, and more? We've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like Que Bueno, ESPN Radio.
8: How they looked after game one.
9: I mean, they were frustrated.
7: The Daily.
10: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
7: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
11: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
12: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
13: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
2: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
3: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
4: In association with
5: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: जय हिंद फ्रेंड्स। ईसाइत, सोना, मसाला या विस्तार, 1498 में क्या थी वास्को डिगामा की मंशा? मधुमक्खी जैसे गोरे जो शहद लेकर आ रहे थे, भारत को डंक मारना शुरू कर दिया और बेवकूफ राजाओं का फायदा उठाकर इस देश को गुलाम बना दिया। लेकिन मीर जाफर और मीर कासिम ने अगर सर झुकाया तो रानी लक्ष्मीबाई ने सर उठाया और गोरों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कैसी थी लड़ाई, कौन थे इसके महानायक, तलवारें चली या भजन चला? अगर बचपन में नहीं समझ में आया, नोटबुक निकाल लीजिए। मैं अवध ओझा जल लेकर आ रहा हूं मास्टर जी इन द न्यूज रूम, सिर्फ ललन टॉप पर।
7: हम इस वक्त मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर। आप देख सकते हैं कि ये मालगाड़ी रिलीफ के लिए इस्तेमाल की जा रही है। हम मौजूद हैं मंकी हिल, जहां पर भूस्खलन हुई है, क्योंकि यहां पर 327 mm से ज्यादा पिछले 4 घंटों में बरसात हुई है। करीब 85 से ज्यादा रेल सर्विसेज इफेक्ट हुए हैं, बहुत सी ट्रेनें कैंसिल हुई। ऐसे 3 और स्थल हैं और आज तक वो इकलौता चैनल है जो इस स्पॉट तक पहुंचा है। कैमरा पर्सन स्वराज दीक्षित के साथ दिव्येश सिंह, लोनावला आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

40 साल बाद प्रधानमंत्री के दौरे से न्यूजीलैंड के साथ रिश्तों को मिली रफ्तार। दोनों देशों में कई अहम समझौते। पीएम मोदी बोले, 2030 तक दोगुना द्विपक्षीय कारोबार। मध्य प्रदेश के दतिया से पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने से बीजेपी में विद्रोह। सड़कों पर उतरे समर्थक, तोड़फोड़, पथराव, जाम। जिलाध्यक्ष समेत कई नेताओं ने दिया इस्तीफा। बीजेपी में एक दिन में ही बदला। पटना के बाकीपुर का उम्मीदवार अभिषेक की जगह नीरज सिन्हा को टिकट। प्रशांत किशोर बोले, मुकाबले से पहले घबरा के बीजेपी। सीएम योगी ने अयोध्या पर विपक्ष पर हमले की बौछार की। कब्रिस्तान प्रेम, हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज के बाद कांवड़ यात्रा पर गिरा अखिलेश का पोस्ट। पराजय काल विपरीत बुद्धि। और हॉर्मुज पर ईरान अमेरिका में बड़ी तनातनी। सुप्रीम लीडर के करीबी वित्तीय नेटवर्क, कई एक्सचेंज हाउस और अमेरिका ने लगाए नए प्रतिबंध। ट्रंप बोले, खत्म हो गया सीज फायर। बातचीत को लेकर जताई सहमति।

नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटते ही नेशनल हाईवे 44 जाम, जिलाध्यक्ष समेत कई नेताओं और पार्षदों के इस्तीफे। दिल्ली तक पहुंचेगा दतिया का विरोध, नरोत्तम समर्थकों का केंद्रीय नेतृत्व से टिकट बदलने की मांग, बीजेपी की आधिकारिक चुप्पी बरकरार। बीजेपी में इस्तीफों की जड़ी, जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाहा समेत पदाधिकारी और सभी बीजेपी पार्षदों ने इस्तीफा दिया। दतिया में विरोध का बाजार पर असर, कई व्यापारियों ने बंद रखी दुकानें, बीजेपी कार्यालय के बाहर देर शाम तक जारी रहा प्रदर्शन। दतिया में बवाल, पथराव से बड़ा तनाव, बीजेपी उम्मीदवार के विरोध में उग्र प्रदर्शन, कई पुलिसकर्मी घायल। पटना की बागीपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक सिन्हा ने नामांकन वापस लिया, पारिवारिक वजह बताई, 13 जुलाई नामांकन का आखिरी दिन। बागीपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी बने नीरज सिन्हा, उम्मीदवार बनने के बाद पार्टी दफ्तर पहुंचकर आभार जताया। मुर्शिदाबाद के बहरामपुर में सीएम शुभेंदु ने जनसभा को किया संबोधित, कहा मुर्शिदाबाद के विकास पर सरकार का पूरा फोकस, रजीनगर उपचुनाव में वोट देने की अपील। बहरामपुर में हुमायूं कबीर पर गरजे सीएम शुभेंदु अधिकारी, बोले मैं ममता बनर्जी की तरह कमजोर सीएम नहीं, जनप्रतिनिधियों की गैर जिम्मेदाराना और आपत्तिजनक टिप्पणियां किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। ईडी की ओर से टीएमसी के बैंक खाते फ्रीज करने पर ममता गुट पहुंचे कलकत्ता हाईकोर्ट, 13 जुलाई को सुनवाई। बस्ती दौरे पर सीएम योगी ने अखिलेश प्रसाद निशाना, कहा एसपी सरकार कांवड़ यात्रा पर लगाती थी रोक, वही बीजेपी ने फूल बरसाकर किया स्वागत। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी, 432 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण। अयोध्या दौरे पर योगी का विपक्ष पर हमला, कहा हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने वाले कर रहे हैं राम जन्मभूमि को बदनाम, हमने बदली अयोध्या की सूरत। सीएम योगी के हनुमानगढ़ी वाले बयान पर अखिलेश का पलटवार, पोस्ट में लिखा पराजय काल विपरीत बुद्धि। तीन देशों की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर न्यूजीलैंड पहुंचे पीएम मोदी, 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्सन ने किया पीएम मोदी का स्वागत, द्विपक्षीय वार्ता पर चर्चा हुई, आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। न्यूजीलैंड में भी पीएम मोदी से मिलने के लिए उमड़ा जनसैलाब, हाथों में तिरंगा लिए नजर आए लोग, पीएम मोदी ने हाथ मिलाकर अभिवादन किया। ऑकलैंड में कम्युनिटी वेलकम के दौरान देखने को मिली भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक, कलाकारों ने पेश किया कार्यक्रम। ऑकलैंड में पीएम मोदी के संबोधन का, भारत सिर्फ बाजार नहीं वैश्विक विकास का सबसे बड़ा आधार। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को लेकर गृह मंत्रालय के निर्देश जारी, गायन में सही शब्दों और उच्चारण का पालन अनिवार्य। विशाखापट्टनम पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नेवल बेस पर नौसेना कर्मियों की बातचीत, आज आईएनएस महेंद्रगिरी कमिश्निंग कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। विशाखापट्टनम नेवल बेस पर रक्षा मंत्री बड़ा खाना में हुए शामिल, नौसेना कर्मियों के साथ बैठकर खाया खाना। भारतीय नौसेना की ताकत में होगा इजाफा, आज स्वदेशी स्टील युद्धपोत आईएनएस महेंद्रगिरी को अपने बेड़े में शामिल करेगी भारतीय नौसेना। तमिलनाडु के करूर पहुंचे मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय, करूर भगदड़ के पीड़ित 31 परिवार को सौंपे सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र। पंजाब कांग्रेस में उथल पुथल के बीच पार्टी में सियासी हलचल तेज, राज्य प्रभारी भूपेश बघेल से पूर्व सीएम चन्नी आज करेंगे मुलाकात। लखनऊ अग्निकांड में 15 लोगों की मौत वाली बिल्डिंग को किया जाएगा ध्वस्त, एलडीए को कोर्ट ने इमारत गिराने का आदेश दिया। कानपुर में राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर पप्पू यादव का बड़ा बयान, बोले इतनी बड़ी घटना पर प्रधानमंत्री चुप क्यों है। पप्पू यादव का राज्य सरकार पर बड़ा हमला, बोले बीजेपी ने देश के 170 करोड़ लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया, बड़ी मछली कौन है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राम मंदिर चढ़ावा घोटाले की निंदा की, बोले जिसने भी राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया, भ्रष्टाचार किया, उसे कड़ी सजा मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में नागपुर में तीसरी ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक, इंडोनेशियाई डेलीगेशन ने अन्य सदस्य देशों के साथ परिवहन सहयोग और मजबूत करने के लिए चर्चा की। महाराष्ट्र में शिवसेना पार्षद रमेश मात्रे की डॉक्टरों से मारपीट केस में कल्याण कोर्ट में पेशी, 13 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजे गए। पुणे प्लांट हादसे के 3 दिन बाद भी 8 लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, हादसे को लेकर सियासत तेज। महाराष्ट्र में वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर का सरकार पर हमला, विपक्ष को राजनीतिक रूप से मृत करार दिया। प्रकाश आंबेडकर ने घातक गैस प्रबंधन पर सवाल उठाया, ठेकेदारों पर केस दर्ज करने और पीड़ितों को मुआवजे की मांग की। 1 अगस्त से दिल्ली की बसों में मुफ्त यात्रा के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड अनिवार्य, 31 जुलाई तक पेपर पिंक टिकट की व्यवस्था जारी रहेगी। बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेगी 12% से ज्यादा अल्कोहल वाली दवाएं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। एक्टर राजपाल यादव की फिर बड़ी मुश्किल, दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस केस के 7 मामले में सुनाई 3 महीने जेल की सजा। कर्नाटक के रायचूर में आंगनवाड़ी और मिड डे मील कर्मियों का वेतन वृद्धि, बेहतर सामाजिक सुरक्षा और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन। वक्त बोर्ड में 2 गैर मुस्लिमों की नियुक्ति को लेकर भोपाल में मुस्लिम समुदाय का प्रदर्शन, काली पट्टी बांधकर विरोध जताया।
साईं बाबा मंदिर की वीआईपी प्रोटोकॉल, दर्शन शुल्क में हुई बढ़ोतरी, 100 रुपए की बढ़ोतरी, अब वीआईपी दर्शन के लिए देने होंगे 300 रुपए। पुणे में संत ज्ञानेश्वर महाराज और संत तुकाराम महाराज की पवित्र पालकियों का भव्य स्वागत, लाखों श्रद्धालु विट्ठल नाम की जयघोष करते दिखे। कई घंटों की मेहनत के बाद खुला कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग, पहले दल ने लिए लिपू दर्रा पार कर तिब्बत में किया प्रवेश, यात्रा में 48 यात्रियों सहित 52 लोग शामिल। अमरनाथ यात्रा का आज 9वां दिन, श्रद्धालुओं ने सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए बालटाल रूट के लिए बेहतरीन रखरखाव के लिए बीआरओ को धन्यवाद कहा। अमरनाथ यात्रा के सुचारू रूप से चलने के लिए एलजी मनोज सिन्हा ने तीर्थयात्रियों से मुलाकात की, यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। गाजियाबाद में करंट से 8 साल की मासूम की मौत, ट्रांसफार्मर के पास हादसा, परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। 24 घंटे में करंट से दूसरी मौत, उठी सुरक्षा पर सवाल, FIR निष्पक्ष जांच की मांग। पुंछ में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, नदी नाले उफान पर, निचले इलाकों में पानी भरा। मेंढर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, पुलिस ने पानी में फंसे 25 लोगों को सुरक्षित निकाला, प्रशासन अलर्ट पर। पालघर में बाढ़ का कहर, आधी रात घर में घुसा पानी, परिवार ने खिड़की तोड़कर छत पर रहकर बचाई जान। मानसून में रुक रुक कर हो रही बारिश से चार धाम यात्रियों का जोश हाई है, लगातार बड़ी संख्या में दर्शन करने पहुंच रहे भक्त। बद्रीनाथ धाम यात्रा मार्ग पर बीआरओ ने लगाया 70 मीटर लंबा मोटर पुल, लामबगड़ नाला पार करने में आसानी होगी। मानसून की बारिश में उफान पर अलकनंदा नदी, अलर्ट पर सभी रेस्क्यू टीम, यात्रा मार्ग की लगातार निगरानी हो रही है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही तेज बारिश, मौसम विभाग का आज के लिए कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिले में येलो अलर्ट। पिथौरागढ़ में बारिश, भूस्खलन के बाद नदी नालों में भारी उफान, जान जोखिम में डाल लकड़ी के लट्ठों के सारे नदी पार कर रहे लोग। देहरादून में भारी बारिश से यमुना नदी उफान पर, विकासनगर में बढ़ गया है बाढ़ का खतरा। उत्तरकाशी में यमुनोत्री गंगोत्री हाईवे बंद, सियाना चट्टी के पास भूस्खलन के कारण गिरे पत्थर और मलबा, अलर्ट पर प्रशासन। बिजनौर हरिद्वार मार्ग पर मालन नदी का पानी आने से आवागमन बंद किया, कई गांव जिला मुख्यालय से कट गए। जालंधर में भारी बारिश के कारण ओवरफ्लो होने से नहर का बांध टूटा, रिहायशी कॉलोनियों में पानी भर गया, लोग परेशान। विंबलडन फाइनल में सिनर की दमदार एंट्री, नंबर वन यानिक सिनर ने नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में हराकर लगातार दूसरी बार जगह बनाई। विंबलडन को आज मिलेगी नई महिला चैंपियन, कैरोलिना मुचोवा और लिंडा नोस्कोवा के बीच खिताबी मुकाबला। फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस का दमदार प्रदर्शन, मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह, जीत के बाद लंदन में हिंसा। स्पेन का सेमीफाइनल टिकट पक्का, बेल्जियम 2-1 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप में बढ़ाया खिताब की ओर कदम। भारत की साख बचाने की चुनौती, इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी T20 मैच आज, मेजबान टीम 3-0 से आगे, सीरीज पहले ही गंवा दी है। नोएडा में पिछले 2 दिनों से हुई बारिश के बीच 2 हादसे, कहीं सड़क धसी तो कहीं गिरी दीवार, वाहन क्षतिग्रस्त, कोई जनहानि नहीं। मिर्जापुर में बारिश के बीच बड़ा हादसा, अचानक धसी सड़क, चलती बाइक समेत घंटे में गिरे 2 लोग, स्थानीय लोगों ने जान बचाई। हरिद्वार में युवकों को गंगा नदी में थार उतार के स्टंट करना भारी पड़ा, पुलिस ने क्रेन की मदद से गाड़ी बाहर निकाली और फिर सीज कर दी। ऊधम सिंह नगर के नेशनल हाईवे 74 पर काली गाड़ियों के काफिले ने मचाया हड़दंग, वायरल वीडियो में हाईवे पर कब्जा जमा अन्य वाहनों को आगे नहीं निकलने देता दिखा काफिला। झांसी में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म, हाथी दिखाने के बहाने ले गया युवक, शख्स को पकड़ लोगों ने चप्पलों से पीटा, पुलिस के हवाले किया। जयपुर में स्कॉर्पियो कार से सीधे जा टकराई तेज रफ्तार स्कूटी, हवा में उछले शख्स की मौत, 2 घायल, स्कूटी सवारों की गलती। अलवर में मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने के बहाने पहुंचे शातिर चोर, पलक झपकते ही उड़ाए 2 मोबाइल फोन, वारदात सीसीटीवी में कैद। पाली में क्लास में घुसा 5 फीट लंबा कोबरा, सांप देख छात्रों में अफरा तफरी मच गई। कौशाम्बी के एक स्कूल में TC लेने गए अभिभावक और टीचर के बीच विवाद, शिक्षिका ने शख्स को चप्पलों से पीटा। मुजफ्फरपुर के टॉप 10 वांछित कुख्यात अपराधी गोलू चौधरी गिरफ्तार, 2021 की लूट गोलीकांड का था आरोपित। रांची में मादक पदार्थों की तस्करी का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार, 15 ग्राम ब्राउन शुगर, 1,70,000 रुपये बरामद। झारखंड के पलामू में गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन के AC कोच में सांप ने महिला को काटा, महिला की तबीयत बिगड़ी। सहारनपुर में यमुना नदी किनारे बाढ़, सुरक्षा कार्य के दौरान मिट्टी धंसने से नदी में गिरी कार, 2 की मौत, 1 घायल। मुजफ्फरनगर में बारिश से बचने के लिए दुकान की छत पर चढ़ा आवारा सांड, 3 शेड पर पैर रखते ही गिरा। समस्तीपुर में करीब 1 महीने से लापता हुए छात्र का शव 12 फीट नीचे गड्ढे से बरामद, परिजनों ने आरोपित के घर शव रखकर किया हंगामा। महाराष्ट्र के सतारा में हाईवे पर चलती कार में अचानक लगी आग, पूरी तरह जल गई।
महाराष्ट्र में नागपुर एटीएस का बड़ा एक्शन, गैंगस्टर शहजाद भट्टी से संपर्क के शक में 10 लोगों को हिरासत में लिया। नागपुर में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देव व्यापार के अड्डे पर क्राइम ब्रांच का छापा, ये गिरफ्तार। गुजरात के अहमदाबाद में स्कूल बस ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, दुर्घटना में युवक की मौत। गुजरात के गिर सोमनाथ में टीचर ने 500 रुपए देकर सातवीं के छात्र से मंगवाई शराब, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर प्रिंसिपल ने टीचर को सस्पेंड किया। ऑस्ट्रेलिया की माइंड ब्लोइंग फिल्म्स के साथ मिलकर आमिर बनाएंगे उत्तराखंड के सिल्कियारा टनल रेस्क्यू मिशन पर आधारित फिल्म, सिल्कियारा 41 होगा नाम, कबीर खान करेंगे डायरेक्ट। एक बार फिर भूषण कुमार की फिल्म में नजर आएंगे आदित्य रॉय कपूर, बेहद इमोशनल म्यूजिकल लव स्टोरी होगी फिल्म, मिलाप मिलन जवेरी करेंगे डायरेक्ट। विवादों के बीच फिल्म काला हिरण का दूसरा पोस्टर आउट, 17 जुलाई को रिलीज होगा टीजर। अनिल देवगन की फिल्म धमाल 4 रिलीज हो गई है, इंद्र कुमार के डायरेक्शन में बनी धमाल फ्रेंचाइजी की चौथी एडवेंचर फिल्म। अक्षय खन्ना, सनी देओल, दिया मिर्जा और तिलोत्तमा श्रोम स्टारर कोर्टरूम ड्रामा इक्का नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो गई। पीएम आवास योजना 2.0 के तहत होम लोन के पहले 8 लाख रुपए पर मिलेगी इंटरेस्ट सब्सिडी, 4% सब्सिडी से 1,80,000 रुपए की बचत। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में खुला लंदन का टोनी एंड गाय एसोसिएशन, बॉलीवुड अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर ने किया भव्य उद्घाटन। ट्रू कॉलर जैसे कॉल मैनेजमेंट एप्स पर सख्ती की तैयारी में ट्राई, आईटी मंत्रालय से मांगी मंजूरी, फर्जी और स्पैम कॉल्स रोकने के लिए आएंगे नए नियम। यूजर नेम फीचर्स पर सरकार के नोटिस का व्हाट्सएप ने दिया जवाब, आईटी मंत्रालय कर रहा है जांच, ऑनलाइन फ्रॉड्स और इम्परसोनेशन को लेकर जताई चिंता। भारत के बेंगलुरु में नई इलेक्ट्रिक बाइक रॉर ईवो की डिलीवरी शुरू हुई, रिकॉर्ड मांग के बाद आने वाले हफ्तों में यह बाइक देशभर के 150 शोरूम में उपलब्ध होगी। रूस यूक्रेन जंग पर रूस का बड़ा बयान, क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पोस्कोव ने कहा यूक्रेन के साथ बातचीत के लिए तैयार है पुतिन। अमेरिका ने दक्षिणी ईरान के कई इलाकों पर किया हवाई हमले, बशेहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर भी हमला, आईआरजीसी ने अमेरिका के 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागने का दावा किया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामनेई को पुश्तैनी शहर मशहद में शिया समुदाय के सबसे पवित्र स्थल इमाम रजा दरगाह में शुक्रवार को दफनाया गया। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग ने सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी की बैठक में परमाणु ताकत बढ़ाने का फैसला लिया। सऊदी अरब का दौरा पूरा कर जेद्दा से रवाना हुए कनाडाई पीएम मार्क कार्निंग।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे शनि देव की राशियों के बारे में। शनि की राशियां कौन कौन सी हैं, इनका प्रभाव क्या है और इन राशि के लोग अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और ये भी बताएंगे कि आज का दिन कितना विशेष है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 11 जुलाई 2026 दिन शनिवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, प्रातः 11:03 तक चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 से 10:30 तक पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं शनि की राशियों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि शनि की राशियां कौन सी हैं और इन राशियों की विशेषता क्या है। देखिए, शनि वायु तत्व का सबसे प्रमुख ग्रह है, वायु तत्व का स्वामी है। शनि दो राशियों के स्वामी हैं। शनि की दो राशियां हैं मकर और कुंभ। मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है। मकर राशि में जो शनि का रोल होता है वो धन और संपन्नता के लिए होता है, जबकि कुंभ राशि के लिए शनि ज्ञान और आध्यात्म देता है। वैसे तो मकर और कुंभ दोनों ही राशियां शनि की हैं, लेकिन शनि कुंभ राशि के ज्यादा निकट माने जाते हैं और दोनों के स्वामी शनि होने के बावजूद इन दोनों राशियों के गुणों में, इनकी विशेषताओं में, इनके प्रभाव और स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर पाया जाता है। शनि की राशियों पर चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका ठीक बना रहेगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर में परिवर्तन हो सकता है। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें,
दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, मानसिक तनाव हो सकता है, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। तो आपको बताया कि शनि की दो राशियां हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। शनि की जो पहली राशि है मकर, उसकी विशेषताएं क्या हैं? देखिए, मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और इस राशि के स्वामी हैं शनि। मकर राशि पर दो ग्रहों का प्रभाव ज्यादा होता है, एक शनि का क्योंकि शनि स्वामी है और दूसरा बुध का प्रभाव भी होता है। मकर राशि वाले बुध की वजह से सामान्यतः बुद्धिमान होते हैं, सामान्यतः इंटेलिजेंट होते हैं। मकर राशि के जो लोग होते हैं वो चालाक, मौका परस्त और धनवान होते हैं। मकर राशि के लोग, जो उनका सब्जेक्ट है, जो उनका करियर है, उसमें पूरी तरह एक्सपर्ट होते हैं। अपने करियर के बारे में इनकी जानकारी और इनका ज्ञान बहुत ज्यादा होता है। मकर राशि करियर और रोजगार को सीधा प्रभावित करती है। मकर राशि को देख करके, इसकी डिग्री को देख करके आप किसी व्यक्ति के करियर का अनुमान लगा सकते हैं। देखिए, मकर राशि का मतलब होता है आपके पैर, काफ का जो एरिया है वो मकर राशि का एरिया है। और इसके अलावा आपके शरीर के जो मसल्स हैं, जिनके पैरों में चलने में दर्द हो या रात में सोते समय पैरों में दर्द की दिक्कत होती हो, उनकी कुंडली में मकर राशि प्रभावित होगी। मकर राशि वाले मेहनती भी बहुत हैं, ज्ञानवान भी बहुत हैं, लेकिन कभी कभी चालाकी के चक्कर में मारे जाते हैं। मकर राशि की सबसे बड़ी कमजोरी है कि ये अहंकारी होते हैं, इनके अंदर अहंकार बहुत होता है। मकर राशि वालों को सलाह लेकर के एक पन्ना पहनना चाहिए, अपनी बुद्धि और अपने दिमाग को ठीक रखने के लिए। और मकर राशि वाले अपनी लंबी आयु के लिए और अपने स्वास्थ्य के लिए अगर सूर्य देव की उपासना करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा।
शनि की दूसरी राशि कुंभ पर भी बात करेंगे और साथ में आगे आपको बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, चिंताओं से आपको राहत मिलेगी, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी, संतान की चिंता समाप्त होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा।

बनाए रखें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न नूतन जी ने हमें लिखा है और नूतन जी पटना बिहार से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 अप्रैल 1989। जन्म का समय सुबह के 7:30। जन्म स्थान है हाजीपुर पटना बिहार। ये कह रही हैं कि मेरी शादी का एक मुकदमा चल रहा है और काफी समय से मैं और मेरे परिवार वाले कोशिश कर रहे हैं लेकिन डिवोर्स नहीं हो पा रहा है। तो मेरा डिवोर्स कब तक होगा? क्या मेरी कुंडली में दूसरे विवाह की संभावना बनती है? नूतन जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके डिवोर्स का समय चल रहा है। साल 2027 के आरंभ तक आपका डिवोर्स होगा। अगले साल के शुरुआत तक आपको छुटकारा मिलेगा। साल 2027 के आखिरी तक आपका विवाह अपने परिवार वालों की सहमति से होगा और दूसरा विवाह आपका कुल मिला जुला के सफल रहेगा। आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा करके पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहने, सुबह और शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें, आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं शनिदेव की दूसरी राशि के बारे में जिसका नाम है कुंभ, एक्वेरियस। कुंभ राशि के स्वामी भी शनि ही हैं और ये वायु तत्व की राशि है। चूंकि ये शनि की बड़ी प्रिय राशि है और शनि के गुण कुंभ राशि में ज्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए इनका जीवन शनि पर ही निर्भर करता है। कुंभ राशि वालों के अंदर आध्यात्म, अंतर्ज्ञान और कला के गुण जरूर होते हैं। कुंभ राशि के लोग अगर सही दिशा में चलें तो समाज के एक बड़े वर्ग को सीधा प्रभावित कर सकते हैं। सही गुरु मिल जाए, सही गाइड, सही मेंटोर मिल जाए, इनको सही दिशा मिले तो ये जीवन में विशेष हो जाते हैं। कुंभ राशि का इलाका पंजों के ऊपर और काफ के नीचे का इलाका है। आपके शरीर में नसों में झुनझुनाहट होना या हाथ पैर का कंपन होना, उसमें कुंभ राशि की बड़ी भूमिका होती है। कुंभ राशि जिनकी कुंडली में निगेटिव होती है उनको पार्किंसंस होने की संभावना काफी होती है। कुंभ राशि की सबसे बड़ी कमजोरी है इनकी लापरवाही और इनका आलस्य। लापरवाही और आलस्य के चक्कर में जीवन के बड़े बड़े मौके इनके हाथ से फिसल जाते हैं। अगर आपकी राशि कुंभ है और आप जीवन में तरक्की करना चाहते हैं तो नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करिएगा। नियमित रूप से अगर आप शिव जी की उपासना करें आपको शक्ति मिलेगी।
कुंभ वाले बहुत जल्दी नशे के, डिप्रेशन के, गलत खान पान के शिकार हो जाते हैं। तो कुंभ वालों को गलत आदतों में पड़ने से बचना चाहिए। मकर और कुंभ राशि पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग हो सकती है, चोट चपेट से बचाव करें, महत्वपूर्ण काम टाल दें, काले चने का अगर दान कर दें तो मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक चिंता समाप्त होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब अगर आपकी राशि मकर राशि है, आपको स्वास्थ्य की दिक्कत है, पैसे रुपए में उतार चढ़ाव है, जीवन का मुश्किल समय चल रहा है, तो क्या उपाय करेंगे? इनको हमेशा, मकर वालों को, अपने करियर में और अपने परिवार में संतुलन बनाए रखना चाहिए। केवल करियर की तरफ भागेंगे तो पारिवारिक जीवन खराब होगा और शरीर में अगर ज्यादा दर्द होता है या चलने फिरने में दिक्कत होती है, स्वास्थ्य के मामलों में लापरवाही मत करिएगा। मकर राशि वालों के जीवन में रिस्क हमेशा निगेटिव होता है, इसीलिए मकर वालों को जीवन में बड़े जोखिम लेने से हमेशा बचना चाहिए। अगर आपकी राशि मकर है और आप जीवन की समस्याओं से बचना चाहते हैं तो अधिक से अधिक शनि मंत्र का जप आपको करना चाहिए। ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का रोज शाम को जप जरूर करें और जितना संभव हो गरीबों को शरीर से, पैसे से उनकी सहायता करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपकी राशि कुंभ है, आप डिप्रेशन

एकदम से किल्लत आ गई है, यानी अगर आपकी राशि कुंभ है और जीवन में समस्या आ रही है तो क्या करेंगे? कुंभ राशि वालों को जीवन में आलस्य से और लापरवाही से हमेशा बचना चाहिए। एक साथ बहुत सारे काम में आपको हाथ नहीं डालना चाहिए। एक बार में एक ही काम में अगर प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर होगा। कुंभ राशि वाले जीवन में जितना आध्यात्मिक होंगे, जितना मंत्र जप करेंगे, जितना ध्यान करेंगे, जितनी पूजा करेंगे, उतना ही उनके लिए उत्तम होगा। कुंभ राशि वाले सही मार्ग पर चलने का प्रयास करें, नियमित रूप से उपवास रखें और नियमित रूप से अगर दान करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की बाधाएं दूर होंगी, परिवार में कोई शुभ कार्य होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोज।

चिंताओं से मुक्ति मिलेगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि शनिवार के दिन तेल नहीं खरीदना चाहिए, क्या ऐसा है? देखिए, शनिवार का दिन शनि ग्रह से संबंधित है और जो तेल है उसको भी शनि से जोड़ा जाता है, तो लोग ऐसा मानते हैं कि अगर शनिवार को तेल खरीदोगे तो शनिदेव नाराज होंगे, आपको नुकसान होगा। वास्तव में शनिवार को तेल खरीदने से आपकी कुंडली के या आपके जीवन के शनि पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर आप शनिवार को तेल खरीदेंगे तो इससे जीवन में अशुभता आएगी या जीवन में नुकसान होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जब आप मन में ये सोच लेते हैं कि नुकसान होगा तब भले नुकसान हो जाए, अन्यथा शनिवार को तेल खरीदने से कोई नुकसान नहीं होता, कोई अशुभता नहीं होती। जितना चाहे तेल आप शनिवार को खरीद सकते हैं। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 2, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 3, करियर में कुछ बदलाव होगा। नंबर 4, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। नंबर 5, परिवार में शुभ कार्य होंगे। नंबर 6, धन की स्थिति में सुधार होगा। नंबर 7, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 8, व्यर्थ की दौड़ भाग हो सकती है। नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि भाग्य पहर में आज का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में जितना संभव हो अधिक से अधिक ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। ऐसा करने से करियर से जुड़ी हुई समस्याएं समाप्त होंगी। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज कोई परीक्षा है तो लौंग खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, घी खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी।
अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ दो लौंग रख करके जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास जाना है इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए, तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो नीला रुमाल साथ में रखिएगा, लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा।

तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: This is the sound of Lucy staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries, it's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
3: मिल गया।
4: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
6: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
3: लायन लाइना प्रीमियम डेट्स।
4: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: in association with Sharda University. The world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
0: विमल बोलो जुबां केसरी हिंद बड़े आराम से।
2: जय हिंद फ्रेंड्स। ईसाइत सोना मसाला या विस्तार, 1498 में क्या थी वास्को डिगामा की मंशा? मधुमक्खी जैसे गोरे जो शहद लेकर आ रहे थे, भारत को डंक मारना शुरू कर दिया और बेवकूफ राजाओं का फायदा उठाकर इस देश को गुलाम बना दिया। लेकिन मीर जाफर और मीर कासिम ने अगर सर झुकाया तो रानी लक्ष्मीबाई ने सर उठाया और गोरों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कैसी थी लड़ाई, कौन थे इसके महानायक, तलवारें चली या भजन चला?

अगर बचपन में नहीं समझ में आया नोटबुक निकाल लीजिए, मैं अवध ओझा जल लेकर आ रहा हूं मास्टर जी इन द न्यूज रूम, सिर्फ ललन टॉप पर।

भारतीय रेलवे से सफर करने वाले करोड़ों यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अक्सर त्योहारों या छुट्टियों के मौसम में कंफर्म टिकट पाना किसी जंग जीतने जैसा लगता है। खासकर तत्काल बुकिंग के समय IRCTC की वेबसाइट या फिर ऐप का हैंग होना हर आम आदमी की सबसे बड़ी सिरदर्दी है। लेकिन रेल सफर को आसान बनाने वाली तकनीकी संस्था सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी क्रिस ने इस परेशानी का एक बेहतरीन तोड़ निकाला है। क्रिस ने अपने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम को पूरी तरह से अपग्रेड करने का फैसला किया है, जिसके बाद रेलवे का नया एडवांस सिस्टम हर एक मिनट में 1.25 लाख टिकट बुक कर पाएगा। फिलहाल पुराना सिस्टम भारी लोड के समय एक मिनट में 25,000 टिकट ही प्रोसेस कर पाता है। इस बड़े बदलाव के साथ ही रेल यात्रियों की लगातार बढ़ती डिमांड को बेहद आसानी से और कम समय में पूरा किया जा सकेगा। इसके साथ ही पिछले साल लॉन्च हुए रेलवे के सुपर ऐप रेल वन को 4.35 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। टिकट बुकिंग से लेकर दूसरी सुविधाओं वाले इस ऐप पर हर दिन करीब 10 लाख ट्रांजेक्शन दर्ज हो रहे हैं। इस नए डिजिटल अवतार को प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। इसमें मोबाइल नंबर और OTP वेरिफिकेशन के बाद यात्री MPIN या फिंगरप्रिंट की मदद से सुरक्षित लॉगिन कर सकते हैं। इसके आर वॉलेट में रुपए ऐड करके तुरंत पेमेंट की सुविधा भी मिलती है। साथ ही इसके जरिए ट्रेन अलर्ट, PNR स्टेटस और रिफंड की जानकारी समय पर मिल जाती है। टिकट बुकिंग की रफ्तार बढ़ाने के साथ ही रेलवे अपने पूरे नेटवर्क को सुरक्षित बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा ले रहा है। तकनीक के इस दौर में AI का इस्तेमाल ट्रेनों के संचालन को एक नए स्तर पर ले जाएगा, जिससे ट्रेन के मेंटेनेंस का काम किसी भी खराबी के आने से पहले ही पूरा किया जाएगा। समय रहते तकनीकी खामियों का पता चलने से रेल हादसों पर लगाम लगेगी और यात्रियों की सुरक्षा मजबूत होगी। इन नए बदलावों की वजह से मालगाड़ियों की ट्रैकिंग, लाइव लोकेशन और टेंडर जैसी आंतरिक प्रक्रियाओं में भी बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। क्रिस मैनेजमेंट का साफ कहना है कि इन आधुनिक AI तकनीकों को लाने की सबसे बड़ी वजह देश के आम नागरिकों को बेहतर और सुरक्षित सफर का फायदा देना है। रेलवे के इस नए और 5 गुना तेज इंफ्रास्ट्रक्चर के पूरी तरह शुरू हो जाने के बाद आम लोगों का घंटों का काम कुछ ही सेकंड्स में मुमकिन हो पाएगा। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
3: एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, ईरान अमेरिका से जुड़ी हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है, फिर से धमकी दी है। 1000 अमेरिकी मिसाइलें लॉक एंड लोडेड हैं, ये ट्रंप कह रहे हैं। अगर ईरान ने ट्रंप की हत्या करने की कोशिश की तो एक साथ हमला होगा। ट्रंप ने लिखा है कि ईरान पर ऐसा हमला करेंगे कि सब कुछ तबाह हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ऑर्डर पहले से दिया जा चुका है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी ही कही जाएगी। और कहा है कि ईरान को तबाह कर देंगे, नष्ट कर देंगे, 1000 अमेरिकी मिसाइलें हमले के लिए तैयार हैं, लॉक एंड लोडेड, और पहले से ही ऑर्डर दिया हुआ है। अगर ट्रंप की हत्या करने की कोशिश की या फिर कुछ भी हुआ तो फिर एक साथ सारी मिसाइलें दाग दी जाएंगी। तो एक बार फिर से भड़कती हुई आग कहा जा सकता है, क्योंकि तनाव पहले से ही है वेस्ट एशिया में और अब वो तनाव और ज्यादा बढ़ रहा है। ट्रंप की तरफ से बहुत स्पष्ट कह दिया गया है कि अब कोई समझौता नहीं, जो सीज फायर की बात कही थी वो सीज फायर खत्म हो गया। हालांकि बातचीत जरूर हो सकती है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी भी दी गई है। इससे पहले आपने देखा होगा कि क्या सुपुर्द खाक का कार्यक्रम चल रहा था आयतुल्ला अली खामनेई का, तो डेथ टू ट्रंप, डेथ टू अमेरिका के कई पोस्टर्स देखे गए थे जगह जगह, जिनको लेकर नेतन्याहू की तरफ से भी बयान आया था। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधी चेतावनी धमकी ईरान को दी है।
4: But if I go, you go, right?
5: But was there a specific
4: perhaps someday you want to change professions.
3: जो बयान आप सुन रहे थे, ये कुछ दिन पहले का बयान था जब उन्होंने कहा, उनकी तरफ से दिया गया था कि वो हिट लिस्ट में सबसे ऊपर है। सुमित चौधरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, 1000 अमेरिकी मिसाइलें लॉक एंड लोडेड हैं, मुझे कुछ हुआ तो ऑर्डर दे दिया गया है, ईरान को तबाह कर दिया जाएगा, इस बयान को कैसे देखें?
6: देखिए, ये बात तो सही है बिल्कुल कि डोनाल्ड ट्रंप को इस समय जो हेट्रेड है या फिर जो नफरत है वो ना सिर्फ लीडरशिप में ईरान की बल्कि पूरे ईरान के लोगों में भी है। ऐसा हमने खुद उनके जो फ्यूनरल सेरेमनी थे वो खुद देखा। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि क्या वो एक सीरियस लेवल पर जा चुका है, क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप की जब मुलाकात हुई थी इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ, तभी कहा जा रहा है कि उनको कुछ सीरियस इनपुट इसराइल की तरफ से भी शेयर किए गए, कुछ बताया गया कि आखिरकार ये एक बहुत सीरियस लेवल पर है। और अभी उसके संकेत भी मिलने लगे, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नए विमान को छोड़कर अपने पुराने विमान के अंदर एयरफोर्स वन के अंदर उड़ान भरी और वो लगातार इस बात को बहुत गंभीरता से जाहिर कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये वो संकेत दे रहे हैं अगर कि मुझे कुछ हुआ, अगर ईरान की तरफ से कोई प्लॉटिंग हुई किसी भी तरफ से, तो निश्चित तौर पर उसका जो बदला है वो अमेरिका लेगा। और ये एक अगर अलग लेवल पे जा रहा है, क्योंकि हिमांशु ये भी आप इसको मान के चलिए कि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप कोई बड़ा कदम उठा ले, खासतौर पर ना सिर्फ अपनी सुरक्षा को लेकर बल्कि अमेरिका की सुरक्षा को लेकर, और ईरान पर कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई भी वो कर सकता है। शायद उसी के संकेत आज उनके सोशल मीडिया ट्रुथ पर भी नजर आ रहे हैं।
3: और ये हमने पहले भी देखा था जब परमाणु की बात कही थी ईरान की तरफ से और कहा था कि परमाणु खतरा है, और फिर अमेरिका ने हमला किया था, और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। तो आगे क्या कदम उठा सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कोई नहीं जानता, लेकिन बस कयास लगाए जा रहे हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर यानी हेडलाइंस का,
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

और मुझ पर फौरदी जंग के बाद ईरान अमेरिका में बड़ी तनातनी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा 1000 मिसाइलें ईरान के लिए लॉक एंड लोडेड, कई प्रतिबंध लगाए। चालीस साल बाद प्रधानमंत्री के दौरे से न्यूजीलैंड के साथ रिश्तों को मिली रफ्तार, दोनों देशों में कई अहम समझौते। पीएम मोदी बोले 2030 तक दोगुना द्विपक्षीय कारोबार। मध्य प्रदेश के दतिया से पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने से बीजेपी में विद्रोह, सड़कों पर उतरे समर्थक, तोड़फोड़ किया, पथराव और जाम लगाया, जिलाध्यक्ष समेत कई नेताओं ने दिया इस्तीफा। बीजेपी में एक दिन में ही बदला पटना के बाकीपुर का उम्मीदवार, अभिषेक की जगह नीरज सिन्हा को टिकट। प्रशांत किशोर बोले मुकाबले से पहले घबरा गई बीजेपी। और सीएम योगी ने अयोध्या पर विपक्ष पर हमले की बौछार की, कब्रिस्तान प्रेम हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज के बाद कांवड़ यात्रा पर गिरा, अखिलेश का पोस्ट, पराजय काल विपरीत बुद्धि।

गाजियाबाद में करंट से 8 साल के मासूम की मौत, ट्रांसफार्मर के पास हुआ हादसा, परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। 24 घंटे में करंट से दूसरी मौत, सुरक्षा पर सवाल उठे, FIR और निष्पक्ष जांच की मांग, हादसे के बाद बिजली विभाग के खिलाफ लोगों में गुस्सा। पुंछ में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, नदियां नाले उफान पर, निचले इलाकों में पानी भरा। मेंढर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, पुलिस ने पानी में से 25 फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाला। पालघर में बाढ़ का कहर, आधी रात में घर में घुसा पानी, परिवार ने खिड़की तोड़कर छत पर पहुंचकर बचाई जान, 8 से 9 घंटे तक जिंदगी की जंग चलती रही। मानसून में रुक रुक कर हो रही बारिश में भी चारधाम यात्रियों का जोश हाई है, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। बद्रीनाथ धाम यात्रा मार्ग पर BRO ने लगाया 70 मीटर लंबा वाटर पुल, लामबगड़ नाला पार करने में आसानी होगी। मानसून की बारिश में उफान पर अलर्ट नंदा नदी, अलर्ट पर सभी रेस्क्यू टीमें, यात्रा मार्ग की लगातार निगरानी हो रही है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही तेज बारिश, मौसम विभाग के लिए आज कंगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर जिले में येलो अलर्ट। पिथौरागढ़ में बारिश, भूस्खलन के बाद नदी नालों में भारी उफान, जान जोखिम में डालकर लकड़ी के लट्ठों के सहारे पार कर रहे नदी। देहरादून में भारी बारिश से यमुना नदी उफान पर, विकासनगर में बढ़ रहा बाढ़ का खतरा। उत्तरकाशी में यमुनोत्री गंगोत्री हाईवे बंद, सियाना चट्टी के पास भूस्खलन के कारण पत्थर गिरे। बिजनौर हरिद्वार मार्ग पर मालन नदी का पानी आने से आवागमन बंद किया गया, कई गांव जिला मुख्यालय से कट गए हैं। जालंधर में भारी बारिश के कारण ओवरफ्लो होने से नहर का बांध टूट गया, रिहायशी कॉलोनियों में पानी भर गया। नरोत्तम मिश्र का टिकट कटते ही नेशनल हाईवे 44 जाम, जिलाध्यक्ष समेत कई नेताओं और पार्षदों के इस्तीफे। दिल्ली तक पहुंचेगा दतिया का विरोध, नरोत्तम समर्थकों का केंद्रीय नेतृत्व से टिकट बदलने की मांग, बीजेपी की आधिकारिक चुप्पी बरकरार। बीजेपी में इस्तीफों की झड़ी, जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाहा समेत कई पदाधिकारियों और सभी बीजेपी पार्षदों ने पद छोड़ा। दतिया में विरोध का बाजार पर असर हुआ, कई व्यापारियों ने बंद रखी दुकानें, बीजेपी कार्यालय के बाहर देर शाम तक जारी रहा प्रदर्शन। दतिया में बवाल, पथराव से बड़ा तनाव, बीजेपी उम्मीदवार के विरोध में उग्र प्रदर्शन, 6 पुलिसकर्मी घायल। पटना की बाकीपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक सिन्हा ने नामांकन लिया वापस, पारिवारिक वजहों से लिया फैसला, 13 जुलाई नामांकन का आखिरी दिन। बाकीपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी बने नीरज सिन्हा, उम्मीदवार बनने के बाद पार्टी दफ्तर पहुंचकर आभार जताया। मुर्शिदाबाद के बहरामपुर में सीएम शिवबिंदु ने जनसभा को संबोधित किया, कहा मुर्शिदाबाद के विकास पर सरकार का पूरा फोकस है। बहरामपुर में हुमायूं कबीर पर गरजे सीएम शिवबिंदु, बोले मैं ममता बनर्जी की तरह कमजोर सीएम नहीं, जनप्रतिनिधियों की गैर जिम्मेदाराना और आपत्तिजनक टिप्पणियां किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। ईडी की ओर से टीएमसी के बैंक खाते फ्रीज करने पर ममता गुट पहुंचा कलकत्ता हाईकोर्ट, 13 जुलाई को सुनवाई। बस्ती दौरे पर सीएम योगी ने अखिलेश पर साधा निशाना, कहा SP सरकार कांवड़ यात्रा पर लगाती थी रोक, वहीं बीजेपी ने फूल बरसाकर किया स्वागत। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी, 432 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण। अयोध्या दौरे पर सीएम का विपक्ष पर हमला, का हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने वाले कर रहे हैं राम जन्मभूमि को बदनाम। सीएम योगी के हनुमानगढ़ी वाले बयान पर अखिलेश का पलटवार, पोस्ट में लिखा पराजय काल विपरीत बुद्धि। 3 देशों की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर न्यूजीलैंड पहुंचे पीएम मोदी, 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड दौरा। प्रधानमंत्री लक्सर ने किया पीएम मोदी का स्वागत, द्विपक्षीय वार्ता पर होगी चर्चा, माओरी समुदाय को भी संबोधित। न्यूजीलैंड में भी प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए उमड़ा जन सैलाब, पीएम बोले दोनों देशों के गहरे संबंध। पीएम मोदी और क्रिस्टोफर लक्सन की अहम मुलाकात, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साथ काम करने पर सहमति। ऑकलैंड में पीएम मोदी का संबोधन, का वेस्ट एशिया तनाव पर भारत न्यूजीलैंड चिंतित, बढ़ते तनाव को लेकर चिंता जताई। पंजाब कांग्रेस में उथल पुथल के बीच पार्टी में सियासी हलचल तेज, राज्य प्रभारी भूपेश बघेल से पूर्व सीएम चन्नी आज करेंगे मुलाकात, मौजूदा अध्यक्ष अमरिंदर वारिंग से नाराजगी। लखनऊ अग्निकांड में 15 लोगों की मौत वाली बिल्डिंग को किया जाएगा ध्वस्त, LDA को कोर्ट ने इमारत गिराने का आदेश दिया। कानपुर में राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर पप्पू यादव का बड़ा बयान, बोले इतनी बड़ी घटना पर प्रधानमंत्री चुप क्यों है। पप्पू यादव का राज्य सरकार पर बड़ा हमला, बोले बीजेपी ने देश के 170 करोड़ लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, बड़ी मछली कौन है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राम मंदिर चढ़ावा घोटाले की निंदा की, बोले जिसने भी राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया उसे सजा मिलेगी।
भारत की अध्यक्षता में नागपुर में तीसरी ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक। इंडोनेशियाई डेलीगेशन ने अन्य सदस्य देशों के साथ परिवहन सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। महाराष्ट्र में शिवसेना पार्षद रमेश मात्रे की डॉक्टरों से मारपीट केस में कल्याण कोर्ट में पेशी। 13 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में। पुणे प्लांट हादसे में 3 दिन बाद भी 8 लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर का सरकार पर हमला। विपक्ष को राजनीतिक रूप से मृत करार दिया। प्रकाश आंबेडकर ने घातक गैस प्रबंधन पर सवाल उठाया। ठेकेदार पर केस दर्ज करने और पीड़ितों को मुआवजे की मांग की। 1 अगस्त से दिल्ली की बसों में मुफ्त यात्रा के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड अनिवार्य। 31 जुलाई तक पेपर पिंक टिकट की व्यवस्था जारी रहेगी। बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेगी 12% से ज्यादा अल्कोहल वाली दवाएं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। एक्टर राजपाल यादव की फिर बड़ी मुश्किलें। दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस केस के 7 मामलों में सुनाई 3 महीने जेल की सजा। कर्नाटक के रायचूर में आंगनबाड़ी और मिड डे मील कर्मियों का वेतन वृद्धि। बेहतर सामाजिक सुरक्षा और नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन। वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिमों की नियुक्ति को लेकर भोपाल में मुस्लिम समुदाय का प्रदर्शन। काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को लेकर गृह मंत्रालय के निर्देश जारी हैं। गायन में सही शब्दों और उच्चारण का पालन करना अनिवार्य। विशाखापट्टनम पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। नेवल बेस और नौसेना कर्मियों से की बातचीत। आज INS महेंद्रगिरी की कमिश्निंग कार्यक्रम में शामिल होंगे। विशाखापट्टनम नेवल बेस पर रक्षा मंत्री बड़ा खाना में शामिल हुए। नौसेना कर्मियों के साथ खाना खाया। भारतीय नौसेना की ताकत में होगा इजाफा। आज स्वदेशी स्टील के युद्धपोत INS महेंद्रगिरी को अपने बेड़े में शामिल करेगी भारतीय नौसेना। तमिलनाडु के करूर पहुंचे मुख्यमंत्री सी जोसेफ। विजय करूर भगदड़ मामले में पीड़ित 31 परिवारों को सौंपी सरकार नियुक्ति के पत्र। विंबलडन फाइनल में सिनर की दमदार एंट्री। नंबर 1 यानिक सिनर ने नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में हराकर लगातार दूसरी बार बनाई जगह। विंबलडन को आज मिलेगी नई महिला चैंपियन। कोरोलिना मुचोवा और लिंडा नोस्कोवा के बीच मुकाबला। फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस का दमदार प्रदर्शन। मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। जीत के बाद लंदन में हिंसा। स्पेन का सेमीफाइनल टिकट पक्का। बेल्जियम को 2-1 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप में बढ़ाया खिताब की ओर कदम। आज फीफा वर्ल्ड कप में 2 बड़े क्वार्टर फाइनल। नॉर्वे इंग्लैंड और अर्जेंटीना स्विट्जरलैंड के बीच। भारत की साख बचाने की चुनौती। इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी T20। आज मेजबान टीम 3-0 से आगे चल रही है। सीरीज पहले ही गंवा चुकी है टीम। नोएडा में पिछले 2 दिनों में हुई बारिश के बीच 2 हादसे। कहीं सड़क धसी तो कहीं गिरी दीवार। कई वाहन क्षतिग्रस्त। कोई जनहानि नहीं। मिर्जापुर में बारिश के बीच बड़ा हादसा। अचानक धसी सड़क। चलती बाइक समेत गड्ढे में गिरे 2 लोग। हरिद्वार में युवकों को गंगा नदी में थार उतारना महंगा पड़ा। पुलिस ने क्रेन से गाड़ी बाहर निकाली और फिर सीज कर दी। उधम सिंह नगर के NH-74 पर काली गाड़ियों के काफिले ने मचाया हुड़दंग। वायरल वीडियो में हाईवे पर कब्जा जमा कर अन्य वाहनों को आगे नहीं निकलने दिया। झांसी में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म। हाथी दिखाने के बहाने ले गया शख्स। जमकर पिटाई की आम लोगों ने चप्पलों से। फिर पुलिस के हवाले कर दिया। जयपुर में स्कॉर्पियो कार से सीधे जा टकराई तेज रफ्तार स्कूटी। हवा में उछले शख्स की मौत। 2 घायल। अलवर में मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने के बहाने पहुंचे छात्र। चोर पलक झपकते ही उड़ाए 2 मोबाइल फोन। सीसीटीवी में कैद। पाली में क्लास में घुसा 5 फीट लंबा कोबरा। सांप देख छात्रों में डर। स्नेक कैचर को बुलाया, रेस्क्यू किया। कौशाम्बी के एक स्कूल में टीसी लेने गए अभिभावक और टीचर के बीच विवाद। शिक्षिका ने शख्स को चप्पलों से पीटा। मुजफ्फरपुर के टॉप 10 वांछित कुख्यात अपराधी में से एक गोलू चौधरी गिरफ्तार। 2021 के लूट गोलीकांड का था आरोपित। रांची में मादक पदार्थों की तस्करी का भंडाफोड़। 2 गिरफ्तार। 15 ग्राम ब्राउन शुगर 1,70,000 रुपये बरामद। झारखंड के पलामू में गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन की एसी कोच में सांप ने महिला को काटा। महिला की तबीयत बिगड़ी। रेलवे पर सवाल उठे। सहारनपुर में यमुना नदी किनारे बढ़ा सुरक्षा कार्य के दौरान मिट्टी धंसने से नदी में गिरी कार। 2 की मौत 1 की हालत गंभीर। मुजफ्फरनगर में बारिश से बचने के लिए दुकान की छत पर चढ़ा आवारा सांड। टीन शेड पर पैर रखते ही गिरा। फिर बाद में रेस्क्यू किया। समस्तीपुर में करीब 1 महीने से लापता हुए छात्र का शव 12 फीट नीचे गड्ढे में बरामद। परिजनों ने आरोपित के घर के बाहर शव रखकर हंगामा किया। महाराष्ट्र की सतारा में हाईवे पर चलती कार में अचानक लगी आग। कार जल गई। महाराष्ट्र में नागपुर ATS का बड़ा एक्शन।
गैंगस्टर शहजाद भट्टी से संपर्क के शक में 10 लोगों को हिरासत में लिया। नागपुर में इस्पात सेंटर की आड़ में चल रहे देव व्यापार के अड्डे पर क्राइम ब्रांच का छापा, एक गिरफ्तार। गुजरात के अहमदाबाद में स्कूल बस में स्कूटी सवार को मारी टक्कर, दुर्घटना में युवक की मौत। गुजरात के गिर सोमनाथ में टीचर ने 500 रुपए देकर सातवीं के छात्र से मंगवाई शराब, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर प्रिंसिपल ने टीचर को सस्पेंड किया। ऑस्ट्रेलिया की माइंड ब्लोइंग फिल्म्स के साथ मिलकर आमिर बनाएंगे उत्तराखंड के सिल्कियारा टनल रेस्क्यू मिशन पर आधारित फिल्म, सिल्कियारा 41 होगा नाम, कबीर खान करेंगे डायरेक्ट। एक बार फिर भूषण कुमार की फिल्म में नजर आएंगे आदित्य रॉय कपूर, बेहद इमोशनल म्यूजिकल लव स्टोरी होगी फिल्म, मिलाप मिलन जवेरी करेंगे डायरेक्ट। विवादों के बीच फिल्म काला हिरण का दूसरा पोस्टर आउट हुआ, 17 जुलाई को टीजर रिलीज होगा। अजय देवगन की फिल्म धमाल 4 रिलीज हो गई है, इंद्र कुमार के डायरेक्शन में बनी धमाल फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है। अक्षय खन्ना, सनी देओल, दिया मिर्जा की कोर्टरूम ड्रामा इक्का नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो गई। पीएम आवास योजना 2.0 के तहत होम लोन के तहत 8 लाख रुपए पर मिलेगी इंटरेस्ट सब्सिडी, 4% सब्सिडी से 1,80,000 रुपए की बचत होगी। लगातार बारिश और जलभराव से एक हफ्ते के दौरान मुंबई में 1150 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ। ट्रू कॉलर जैसे कॉल मैनेजमेंट एप्स पर सख्ती की तैयारी में ट्राई। यूजर नेम फीचर पर सरकार के नोटिस का व्हाट्सएप ने दिया जवाब, आईटी मंत्रालय कर रहा है ऑनलाइन फ्रॉड्स और इम्प्रेशनेशन को लेकर चिंता जताई गई थी। भारत के बंगलुरु में नई इलेक्ट्रिक बाइक रॉर ईवो की डिलीवरी शुरू हुई, रिकॉर्ड मांग के बाद आने वाले हफ्तों में यह बाइक देशभर में 150 शोरूम में उपलब्ध रहेगी। स्पेन के जंगल की आग का तांडा, भीषण अग्निकांड में 12 लोगों की मौत, 23 अब भी लापता। अमेरिका ने दक्षिण ईरान के कई इलाकों में हवाई हमले किए, बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर भी हमला, IRGC ने भी अमेरिका ठिकानों पर 10 बैलिस्टिक मिसाइल दागने का दावा किया। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग ने 70 वर्कर्स पार्टी की बैठक में परमाणु ताकत बढ़ाने का फैसला लिया। सऊदी अरब का दौरा पूरा कर जेद्दा से रवाना हुए कनाडाई पीएम मार्क कार्नी, 26 साल बाद किसी कनाडाई पीएम ने की सऊदी यात्रा।

0: एक बड़ी खबर आपको बता दें, उड़ीसा के बालासोर से आ रही है, जहां थार से एटीएम लूट की घटना सामने आई है। लुटेरों ने महिंद्रा थार से एटीएम मशीन को रस्सी से बांधा, खींचा और फिर घसीटते हुए उखाड़ ले गए। इसके बाद उन्होंने मशीन को तोड़कर उसमें रखी नकदी निकाल ली और फरार हो गए। एटीएम में कितना कैश था, लुटेरे कौन थे, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। ये देखिए, ये उड़ीसा के बालासोर की घटना है। उड़ीसा में एटीएम चोरी हुआ, थार से खींच के ले गए। और एक वेब सीरीज हाल ही में आई है, प्रीतम एंड पेड्रो, उसमें भी कुछ ऐसा ही सीन बताया गया है। हालांकि वो जो लुटेरे थे उनको जल्दी गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अब इनकी तलाश की जा रही है। बिल्कुल वेब सीरीज वाले अंदाज में जंजीर से देखिए, एटीएम को बांधा जाता है और उसके बाद खींचा जाता है। और फिर तीन लोग दिख रहे हैं, एक गाड़ी में मौजूद है, यही चार लोग इसके बाद इस एटीएम मशीन को अपने साथ ले जाते हैं। तो ओडिशा से ये तस्वीरें सामने आई हैं। वेब सीरीज में बिल्कुल ऐसा ही एक सीन दिखाया गया था और अब उसको हकीकत में बदल दिया है। हालांकि अब जांच भी चल रही है, वेब सीरीज में अपराधी पकड़े जाते हैं और यहां पर अपराधियों की तलाश की जा रही है, सबूतों को जुटाकर अब आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
3: Tune in how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Tune in is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
5: Sokudo.

0: अयोध्या में चोरों ने राम जी का चढ़ावा क्या चुराया, राजनीति को ऐसी आग लगी है कि लपटे कम नहीं होते। एक तरफ विपक्ष है जो चढ़ावा चोरी के आरोप में ट्रस्ट से लेकर बीजेपी संघ सरकार सबको खींचता है, दूसरी तरफ सीएम योगी है जिन्होंने सवाल उठा रहे विपक्षी दलों को मजहबी मोर्चे पर पस्त करने के लिए चारों तरफ से घेर रखा है। पिछले एक हफ्ते से सीएम योगी ने राम मंदिर चोरी का सवाल उठा रहे विपक्षी दलों पर जितने हमले किए उसमें नया चैप्टर हनुमानगढ़ी का खुला है।
1: इन्होंने तो हमारे पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? कौन करवा रहा था ये?
0: पुलिस करा रही थी। दावा यही है कि सरकार के इशारे पर हनुमानगढ़ी के बाहर नमाज की कोशिश तब की गई थी। सीएम योगी ने अयोध्या के बीकापुर की रैली में हनुमानगढ़ी की जिस घटना का जिक्र किया उसके बारे में तथ्य सामने आए कि ये घटना 27 अक्टूबर 2003 से 25 नवंबर 2003 के बीच रमजान की है। तब हनुमानगढ़ी के चार पट्टियों में से एक सागरिया पट्टी के महंत ज्ञानदास थे जिनकी बाबरी मामले के पक्षकार हाशिम अंसारी से दोस्ती थी। ज्ञानदास इफ्तार कराया करते थे। उस साल भी इफ्तार आयोजित की गई और चटाइयां हनुमानगढ़ी के बाहर सीढ़ियों के पास बिछी, लेकिन खुफिया रिपोर्ट के हवाले से तत्कालीन फैजाबाद के एसएसपी ने इसे हटवा दिया। फिर इफ्तार मंदिर के सामने से हटाकर दूसरी जगह कराई गई। बाद में यह मामला उज्जैनिया पट्टी के महंत धर्मदास की तरफ से हाईकोर्ट पहुंचा और मंदिर परिसर में इफ्तार पर रोक लग गई। लेकिन अब जब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई तो सवाल उठाने वाले समाजवादी पार्टी के नेताओं को मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ी की वो घटना याद दिलाई।
2: ये लोग राम के विरोधी है और हनुमान के विरोधी है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसी धरती पर आए थे उनके सामने जो है हनुमान जी को नचाया जा रहा है। वो हनुमान जी को राम जी को जानने वाले कौन लोग हैं? आस्था के नाम पर चंदा सोना, चंदा की चोरी करना इनका काम है। हनुमान जी का नाम उन्होंने कब लिया? कब की बात बता रहे हैं आप? हनुमान जी के विषय में उन्होंने कब रामायण हनुमान चालीसा बातें कही?
0: दरअसल अयोध्या के कांड को समाजवादी पार्टी आस्था को चोट का मुद्दा बनाती है और खुद को सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर ले जाते हुए सनातन की समाजवादी परिभाषा तक गढ़ती है। लखनऊ में तो पार्टी दफ्तर के बाहर समाजवादी पार्टी ने पोस्टर तक लगा लिया है कि सनातन ही समाजवाद है, और इसी सनातन के चक्कर में सीएम योगी रोज की रैली में समाजवादियों के पुराने पन्ने पलट रहे हैं। बीजेपी तो सोशल मीडिया पर समाजवादी सनातन के इतिहास के पन्ने तक दिखा रही है।
3: बाबरी मस्जिद पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, तो नहीं मार सकता। फिर भी मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की वो गुंबद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके, ये रिकॉर्ड। और इस बात का समाजवादी पार्टी और उसके नेता को न कभी अफसोस था और न है, रहेगा।
0: बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर समाजवादी पार्टी नेताओं के ऐसे पुराने बयान और अयोध्या कांड की तस्वीरें लगातार पोस्ट की जा रही हैं।
4: सरकार कुर्बान कर सकते हैं लेकिन हम जब मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक हमारी लाश का भी मस्जिद नहीं गिराई जाएगी।
0: इन बयानों और इतिहास की घटित अघटित घटनाओं का हवाला देकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव और राहुल गांधी की पार्टी को हिंदू विरोधी ठहराने की कोशिश करते हैं ताकि इन चुनाव से पहले चढ़ावा चोरी के कांड पर बीजेपी बैकफुट पर ना आ सके। आज तक

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमान गढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? कौन करवा रहा था ये? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की, राम के नाम पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया, राम भक्तों पर गोलियां चलाए, अयोध्या के नाम पे पहचान का संकट खड़ा किया। ये डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, कोई रोक नहीं पाया।

क्या दुनिया इतिहास के सबसे बड़े तेल संकट की ओर बढ़ रही है? ईरान और अमेरिका के बीच पिछले महीने हुआ शांति समझौता महज चंद दिनों में बारूद की तरह उड़ गया। वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसे ईरान ने अमेरिका के खिलाफ अपना ब्रह्मास्त्र बना लिया है। तेहरान का एक ही सूर हॉर्मुज पर अब ईरान का नया नियम मानना ही होगा। बीते 4-5 दिनों के भीतर हॉर्मुज की लहरें खून से लाल हो चुकी हैं। तेहरान की मर्जी के बिना गुजर रहे जहाजों पर ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। पहले एक अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल कार्गो शिप पर ईरान ने सीधे गोलियां बरसाई, इसके बाद एक और तेल टैंकर को ईरानी नौसेना ने घेर कर निशाना बनाया। जवाब में अमेरिकी सेना ने जवाबी गोलीबारी की तो ईरान ने भी पीछे हटने के बजाय अमेरिकी युद्ध पोतों पर मिसाइलें तान दी। दोनों देशों के बीच सीधे युद्ध शुरू हो चुका है। इस बीच अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस ने एक बेहद सनसनीखेज और खौफनाक दावा किया है। एक्सियोस के मुताबिक अमेरिका अब किसी छोटी मोटी झड़प की नहीं बल्कि कई दिनों तक और कई हफ्तों तक चलने वाली एक भीषण जंग की तैयारी कर रहा है। व्हाइट हाउस का पूरा फोकस अब सिर्फ और सिर्फ हॉर्मुज को ईरान के चंगुल से छुड़ाने पर टिक गया है। साफ है कि जो परमाणु मुद्दा पिछले जंग की वजह था वो अब पीछे छूट चुका है। हॉर्मुज ही इस महायुद्ध का ग्राउंड जीरो बन गया है। ईरान इस गोल्डन वेपन से अपना कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है और अमेरिका इसे ईरान के नियंत्रण में जाने नहीं देगा। ईरान ने जिद नहीं छोड़ी और अमेरिकी आक्रमण नहीं थमे तो दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था का ठप होना और महाविनाश तय है। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

हॉर्मुज पर बारूदी जंग के बाद ईरान अमेरिका में बड़ी तनातनी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा 1000 मिसाइलें ईरान के लिए लॉक एंड लोडेड। कई नए प्रतिबंध भी लगाए। चालीस साल बाद प्रधानमंत्री के दौरे से न्यूजीलैंड के साथ रिश्तों को मिली रफ्तार। दोनों देशों में कई अहम समझौते। पीएम मोदी बोले 2030 तक दोगुना द्विपक्षीय कारोबार। मध्य प्रदेश के दतिया से पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने से बीजेपी में विद्रोह। सड़कों पर उतरे समर्थक। तोड़फोड़, पथराव, जाम। जन अध्यक्ष समेत कई नेताओं ने दिया इस्तीफा। बीजेपी में एक दिन में ही बदला पटना के बाकीपुर का उम्मीदवार। अभिषेक की जगह नीरज सिन्हा को टिकट। प्रशांत किशोर बोले मुकाबले से पहले घबरा गई बीजेपी। और सीएम योगी ने अयोध्या पर विपक्ष पर अमले की बौछार की। कब्रिस्तान प्रेम हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज के बाद कांवड़ यात्रा पर घेरा। अखिलेश का पोस्ट पराजय काल विपरीत बुद्धि।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। और हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत अब एक और बड़ी छलांग लगाने जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी देर में भारतीय नौसेना के बेड़े में जल्द शामिल होगा स्वदेशी स्टिल्थ युद्धपोत INS महेंद्रगिरी। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की सोच को मजबूती देने वाला ये युद्धपोत आधुनिक है, तकनीक से युक्त है, अत्याधुनिक हथियारों और बेहतरीन निगरानी क्षमता से लैस है। INS महेंद्रगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किया गया सातवां और आखिरी स्टेल्थ फ्रिगेट है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि दुश्मन के रडार पर इसकी पहचान बेहद मुश्किल हो। मिसाइल, टॉरपीडो, एडवांस्ड रडार, एयर डिफेंस सिस्टम और मल्टी रोल ऑपरेशन की क्षमता से लैस यह युद्धपोत समुद्र में हर तरह की चुनौती का सामना करने में सक्षम होगा। हिंद महासागर से लेकर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी तक भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में INS महेंद्रगिरी अहम भूमिका निभाएगा। बढ़ती समुद्री चुनौतियां और क्षेत्रीय सुरक्षा के बीच ये युद्धपोत भारतीय नौसेना की ऑपरेशनल क्षमता को और ज्यादा मजबूत करेगा। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि INS महेंद्रगिरी सिर्फ एक नया युद्धपोत नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी रक्षा निर्माण और मजबूत नौसैनिक शक्ति का एक नया प्रतीक बनने जा रहा है। तो कम रडार सिग्नेचर, ज्यादा सर्वाइवल क्षमता INS महेंद्रगिरी को खास बनाती है और मजबूत बनाती है। और अब हिंद महासागर में हिंदुस्तान का एक नया सुरक्षा कवच तैयार है। भारतीय नौसेना में कमीशन होगा महेंद्रगिरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और अत्याधुनिक तकनीक से लैस है, अत्याधुनिक हथियारों से ये लैस है। समुद्र का जिसे नया महायोद्धा कहा जा रहा है। नौसैनिक शक्ति का एक नया प्रतीक बनने जा रहा है INS महेंद्रगिरी। भारतीय नौसेना को यह मजबूती देगा। समुद्री चुनौतियां जो लगातार बढ़ती जा रही हैं वक्त के साथ साथ, उनमें भी एक अहम भूमिका निभाएगा उनका सामना करने में। और अब आपको एक बड़ी खबर बताते हैं मध्य प्रदेश की दतिया से, जहां उपचुनाव के लिए बीजेपी ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया तो उनके समर्थकों ने वहां पर बवाल शुरू कर दिया। नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया, पथराव भी किया। हालात बिगड़े तो भारी संख्या में पुलिस बलों ने मोर्चा संभाला। समर्थकों ने तब भी किसी को नहीं छोड़ा। अब भी बीजेपी नेतृत्व के खिलाफ वो नाराज हैं। उनका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। और ये देखिए, टिकट नहीं मिलने पर समर्थकों ने कैसे हंगामा किया, कई जगह पत्थरबाजी की, जाम लगा दिया। झांसी और ग्वालियर हाईवे जाम कर दिया, जिससे कई किलोमीटर, बताया जा रहा है 10 से 12 किलोमीटर का लंबा जाम लग गया। इस दौरान कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की, पथराव भी किया गया। नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला, इसीलिए यह हंगामा।
1: टिकट कटा तो बीजेपी की टेंशन बढ़ गई। नाराज बीजेपी कार्यकर्ता नेशनल हाईवे पर उतर गए, पत्थरबाजी शुरू कर दी। विरोध में नारेबाजी तक कर दी। मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ नारे लगाए और बीजेपी नेतृत्व से फैसला बदलने की मांग की। ये सियासी हंगामा और बवाल मध्य प्रदेश के दतिया में हुआ है। ये गुस्सा पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद फूटा है। शुक्रवार को ही बीजेपी ने मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया। नरोत्तम मिश्रा को उम्मीद थी कि उन्हें टिकट मिलेगी। उनके समर्थकों को भी पूरा भरोसा था कि टिकट पक्का है, लेकिन बीजेपी ने चिट्ठी जारी की तो उम्मीदवार के रूप में नाम था आशुतोष तिवारी का। यहीं से बवाल शुरू हो गया। सैकड़ों की संख्या में नरोत्तम मिश्रा के समर्थक नेशनल हाईवे 44 पर पहुंच गए और गाड़ियों की आवाजाही रोक दी। हाईवे जाम होने से झांसी और ग्वालियर की ओर जाने वाली गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। पुलिस ने दोनों तरफ से आने वाले वाहनों को बाईपास मार्ग से डाइवर्ट किया, लेकिन कई गाड़ियां 2 घंटे से अधिक समय तक जाम में फंसी रही। नरोत्तम मिश्रा के समर्थक पूरी रात नेशनल हाईवे पर जमे रहे। तड़के नाराज समर्थकों ने पुलिस पर पथराव भी किया। पत्थरबाजी की वजह से कई गाड़ियों के शीशे टूटकर बिखर गए। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। झड़प के दौरान 6 पुलिस वाले घायल बताए जा रहे हैं।
2: शुक्रवार शाम जैसे ही नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा, उनके समर्थकों में भारी नाराजगी की लहर दौड़ गई। नरोत्तम मिश्रा का प्रभाव दतिया में जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक है, और यही वजह है कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद इस्तीफों की बौछार लग गई। यही नहीं, दतिया में नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने करीब 11 घंटे तक गुजरने वाले नेशनल हाईवे 44 को बंधक बनाए रखा। शनिवार सुबह समर्थकों ने जब पुलिस पर पथराव किया तो पुलिस ने भी हल्का बल प्रयोग कर समर्थकों को हाईवे से खदेड़ा, और उसके बाद से अब हाईवे 44 पर गाड़ियों की आवाजाही सामान्य हो चुकी है। नेशनल हाईवे 44 ग्वालियर और झांसी के बीच में एक महत्वपूर्ण हाईवे माना जाता है, और इसीलिए हजारों गाड़ियां इन 11 घंटों के जाम के दौरान वहां फंसी रही। लेकिन अब वहां पे मौके पर पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है और हाईवे को खुलवा लिया गया है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा के समर्थक अभी भी वहां के स्थानीय भाजपा कार्यालय में डटे हुए हैं और टिकट बदलने की मांग कर रहे हैं।
1: नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों के प्रदर्शन की वजह से दतिया में नेशनल हाईवे पर करीब 15 किलोमीटर का जाम लगा था। पुलिस के मुताबिक 3,000 लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। वहां पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है।
3: समझाइश देने के पश्चात इन्होंने अचानक पुलिस पर पथराव शुरू किया। पथराव के बाद पुलिस ने तत्काल ही एक्टिव होकर अश्रु गैस का उपयोग किया, और इसके बाद इन्होंने और भी अधिक पथराव किया, जिसमें लगभग हमारे 6 से अधिक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। साथ में मुझे, एडिशनल एसपी को, सभी को चोट आई है। इस पर हम लोगों ने अश्रु गैस का और इनको पूरा डोमिनेट करके इनको भगाया है, और अभी ये लोग छुप गए हैं, और अभी इनको कहा गया है कि या तो अपनी गिरफ्तारी दें या फिर ये शांतिपूर्वक चले जाएं, पर किसी भी कीमत पर चक्का जाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये प्रशासन का स्पष्ट संदेश।
1: नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से सियासी हलचल तेज है। समर्थकों के साथ साथ दतिया में बीजेपी की अंदरूनी कलह भी तेज है। आशुतोष तिवारी को टिकट दिए जाने से नाराज बीजेपी जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाहा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
4: चुनाव में जैसे ही टिकट का निर्णय हुआ, हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय पर तालाबंदी करने का प्रयास तालाबंदी की। उन्होंने सामूहिक रूप से सभी दायित्वान पदाधिकारी हो, चाहे वो जिले के पदाधिकारी हो, चाहे वो मंडल के पदाधिकारी हो, मंडल अध्यक्ष हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, पार्षद हो, सभी लोगों ने यहाँ आकर सामूहिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने इस्तीफा दिया।
1: रघुवीर सिंह कुशवाहा के साथ संगठन के कई पदाधिकारियों ने भी इस्तीफे सौंप दिए। दतिया नगर के सभी बीजेपी पार्षदों ने भी सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया। अब नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने ऐलान किया है कि वो दिल्ली जाकर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और फैसले पर विचार करने की मांग करेंगे। दतिया से अशोक शर्मा के साथ रविश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
0: रविश पाल सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। रविश, दतिया में जो प्रदर्शन चल रहा है उस पर पुलिस प्रशासन का जो रवैया है उसको देखकर तो यही लग रहा है कि नरोत्तम के लिए जो सरकार है उनके विचार उत्तम नहीं है।
2: बिल्कुल, और अगर विचार उत्तम होते तो स्वाभाविक सी बात है टिकट नहीं कटता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और संगठन के पास जो सर्वे रिपोर्ट आई थी नरोत्तम मिश्रा को लेकर के, उसने चिंता बढ़ा दी थी पहले ही। एन वक्त पर यह टिकट क्यों काटा गया, इसके पीछे की बड़ी वजह है, दरअसल 2-3 जो खास वजह सामने आई है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि एक नया पावर सेंटर बने मध्य प्रदेश में, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जब भी सरकार में रहे हैं तो एक कद्दावर मंत्री रहे हैं, एक पावर सेंटर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में भाजपा की स्थिति क्या है, अभी पहले से इतने सारे पावर सेंटर हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, लेकिन इसके अलावा प्रहलाद सिंह पटेल, शिवराज सिंह चौहान भले ही केंद्र में चले गए हैं लेकिन उन 16.5 सालों तक मुख्यमंत्री रहे हैं, तो वहां पे एक अलग पावर सेंटर है। राकेश सिंह है पीडब्ल्यूडी मंत्री, कैलाश विजयवर्गीय है नगरी प्रशासन मंत्री, इन सबके अपने अपने पावर सेंटर है। नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष भले ही बन गए लेकिन उनकी ग्वालियर चंबल में तूती चलती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया है, इतने सारे पावर सेंटर के बीच में नरोत्तम मिश्रा एक नया पावर सेंटर सरकार में रह करके बनते, तो स्वाभाविक सी बात है एक चिंता की बात भाजपा के सामने भी थी और वो इस मुद्दे को यहाँ खत्म करना चाहती थी। दूसरी बड़ी वजह थी कि संगठन ने जो सर्वे करवाया था उसमें बहुत आशाजनक नतीजे नहीं थे नरोत्तम मिश्रा को लेकर के, और इसीलिए संगठन ने ऐन वक्त पर तय किया कि संघ से ही जुड़े हुए शख्स को टिकट दिया जाए ताकि आरएसएस के कार्यकर्ता भी जी लगा के काम करें और बीजेपी के लिए भी एक अच्छा मौका रहे वहां पे। यही वजह रही कि संगठन प्रभारी जो रह चुके थे संभागीय आशुतोष तिवारी, उनको चुना गया। दतिया से ही है वो, एक तरीके से देखा जाए तो स्थानीय है, दतिया शहर से भले ना हो लेकिन दतिया जिले से ताल्लुक है उनका। ग्वालियर चंबल के वो संगठन प्रभारी रह चुके हैं संभागीय, ऐसे में उनका वहां पे अपना नेटवर्क भी है। और दूसरा, नरोत्तम मिश्रा ब्राह्मण थे, एक ब्राह्मण का टिकट काटा गया तो दूसरे ब्राह्मण को ही टिकट दिया गया है, तो ऐसे में जातिगत समीकरणों को भी साधा गया है भाजपा की तरफ से। तो ऐसी कई सारी वजहें थी जिससे नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया, लेकिन ये प्रदर्शन बता रहा है कि नरोत्तम मिश्रा जो लंबे समय तक दतिया को जिन्होंने अपना गढ़ बनाया था और अपना एक नेटवर्क खड़ा किया था, वो तमाम लोग काफी ज्यादा आहत है इस बात से कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया।
0: लेकिन रवीश, ये भी सच्चाई है कि नरोत्तम मिश्रा बागी बनकर यहां बगावत करेंगे या आत्मसमर्पण कर देंगे आलाकमान के सामने, ये जरूर सब जानना चाहते हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों में टिकट नहीं मिलने पर नाराजगी है, अब उनके समर्थक क्या कह रहे हैं वो भी सुनते हैं।
5: आज हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से ये मांग कर रहे थे कि दतिया का जो टिकट हुआ है वो पुनः वापस लिया जाए और नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट दिया जाए। नरोत्तम मिश्रा जी दतिया की आमजन की आवाज है, जनता की आवाज है, हम सब की आवाज है, दतिया के विकास के विरोधा है। हम संवैधानिक रूप से अपनी मांग रख रहे थे, हम लोगों ने पूरी रात राम धुन गा के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मांग की है कि हमारा टिकट हुआ है, नरोत्तम मिश्रा जी को पुनः टिकट दिया जाए। लेकिन पुलिस प्रशासन, पुलिस अधीक्षक, दतिया कलेक्टर की बर्बरता देखिए, हम लोगों को दतिया के देश के इतिहास में, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को भाजपा कार्यालय में पुलिस प्रशासन ने कैद कर दिया। लेकिन हम सब लोग आज भी सड़कों पे हैं। जब तक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट नहीं मिलेगा हम लोग चक्का जाम करेंगे, हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, भाजपा जिंदाबाद, नरोत्तम मिश्रा जिंदाबाद।
0: और इस वक्त दतिया में बीजेपी दफ्तर के बाहर तनाव है, लिहाजा वहां पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं वहां से हमारे संवाददाता अशोक शर्मा।
6: इस समय खड़ा हूं भाजपा कार्यालय के बाहर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भाजपा कार्यालय के बाहर सन्नाटा है, सारे कार्यकर्ता अंदर हैं, छतों के बाहर झांक रहे हैं। पुलिस इनको ना तो अंदर जाने दे रही है ना ही बाहर आने की इनको इजाज़त है, क्योंकि रात को जो बवाल हुआ, जो जिस तरह चक्का जाम हुआ, लोग परेशान रहे, एम्बुलेंस तक जो है जाम में फंसी रही। इसके बाद पुलिस ने सुबह 5 बजे करीब पुलिस बल ने बल प्रयोग करके इन लोगों को यहां से हटाया। उसके बाद कुछ अंदर हैं जबकि कुछ कार्यकर्ता भागकर अपने घर पहुंच गए हैं, लेकिन पुलिस बल अभी भी मोर्चा संभाले हुए है। सारे पुलिस के अधिकारी यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, एडिशनल एसपी, एसडीओपी सारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि ये रात भर से थे और काफ़ी थकान महसूस करते रहे हैं। इसके बाद ये सारे अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं। पुलिस का कहना है किस भी तरह की कोई भी ना तो चक्का जाम होने दिया जाएगा ना ही लॉ एंड ऑर्डर की कोई स्थिति बन पाएगी।
0: तो दतिया के पुलिस अधीक्षक ने कहा है, यानी एसपी ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एसपी मयूर खंडेलवाल ने आज तक से खास बातचीत की, वो आपको सुनाते हैं।
6: बताइए क्या क्या हो रहा है यहाँ कार्यालय?
7: यहाँ पर ये लोग बार बार पथराव पुलिस पर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जबकि ये हुआ है कि बार बार पुलिस समझाइश दे रही है कि आप या तो गिरफ्तारी दें या फिर यहाँ क्षेत्र यहाँ पे छोड़ के चले जाएं, किसी भी सूरत में यहाँ पे जाम ना करें, परंतु ये लोग नहीं मान रहे हैं, अभी भी पथराव कर रहे हैं। इसलिए तत्काल इन पे कुछ लोगों को गिरफ्तारी कर ली गई है। अभी भी इनको फिर समझाइश दी जाएगी बार बार, या तो गिरफ्तारी दें या शांति से यहाँ से चले जाएं।
8: वो लोग कह रहे हैं लाठी चार्ज भी हुआ था अभी सुबह, क्या?
7: नहीं नहीं, किसी तरह का लाठी चार्ज नहीं हुआ है। पूरा इन्होंने बहुत पथराव किया जिसमें लगभग हमारे 6 से अधिक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। खुद मुझे एडिशनल एसपी को चोट लगी है और इसके अलावा इन्होंने कई गाड़ियां तोड़ी है, हमारी कुछ गाड़ियों को पलटा दिया है। इसके बाद भी हम लोगों ने सिर्फ अश्रु गैस का उपयोग किया है और अपना डोमिनेंस दिखाया है, परंतु इनके द्वारा लगातार।
0: तो उपचुनाव से जुड़ी हलचल बिहार में भी है। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक कुमार ने अपना नामांकन वापस लेने का फैसला कर लिया, सभी को हैरान कर दिया। अब बीजेपी ने वहां पर नीरज सिन्हा को टिकट थमा दिया, लेकिन हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि आशुतोष कुमार ने अपनी उम्मीदवारी ऐन वक्त पर वापस ले ली।
9: जिस पारंपरिक सीट पर बीजेपी उम्मीदवार की जीत पक्की थी, वहां से बीजेपी के उम्मीदवार अभिषेक सिन्हा बंटी ने जो फैसला लिया, जिसकी बदौलत बीजेपी बैकफुट पर आ गई। 7 जुलाई को ही अभिषेक सिन्हा बंटी का टिकट कंफर्म हुआ। दिल्ली से हरी झंडी मिली तो 9 जुलाई को नामांकन भी करा लिया था। माता पिता से आशीर्वाद लेकर विजेता की तरह नामांकन के लिए निकले थे अभिषेक सिन्हा बंटी, लेकिन नामांकन के अगले ही दिन उन्होंने बीजेपी को झटका दे दिया। ऐलान कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, पारिवारिक कारणों का हवाला दिया, नामांकन वापस लिया। पटना में सियासी हलचल तेज हुई तो बीजेपी ने भी बगैर देर किए अभिषेक सिन्हा की जगह नीरज कुमार सिन्हा को नया उम्मीदवार घोषित कर दिया।

0: तो मैं ऐसा देख रहा हूँ कि मुझे एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी इस जगह पर पहुँचाई है। मैं तो कल्पना भी नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ तक अभी पहुँच पाऊँगा जो मेरा उम्र है अभी। लेकिन मैंने अपनी कार्य क्षमता से, मैं बूथ अध्यक्ष का काम करता था, वहाँ पर उस पर्ची बांट रहा था, मुझे जानकारी मिली तो अभी मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ।
1: बांकीपुर उपचुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 13 जुलाई है। अब नीरज सिन्हा वहां से अपना पर्चा दाखिल करेंगे। शशि भूषण कुमार के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक।
2: रोहित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से, सीधे उनसे बात करते हैं। रोहित, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव पर ये जो सियासी सस्पेंस वाली जो मूवी इस वक्त चल रही है, इसके डायरेक्टर राइटर कौन है, क्या आपके सूत्र बता रहे हैं?
3: नहीं देखिए, एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रहा है हिमांशु, कि प्रशांत किशोर के उम्मीदवारी के बाद वहाँ पर बांकीपुर, जो कि बीजेपी का 35 सालों से गढ़ रहा है, वहाँ से बीजेपी चुनाव नहीं हारी है पिछले 35 सालों से, वहाँ पर बीजेपी कहीं ना कहीं नर्वस नज़र ज़रूर आ रही है। एक के बाद एक लगातार गलतियाँ। पहली गलती जिसका जिक्र कल ही हुआ, हम लोग खबर भी चला रहे हैं कि अभिषेक बंटी को नामांकन वापस लेना पड़ा, क्योंकि उन्होंने जो है कुछ जानकारियाँ उसको उनको लेकर ऐसी आई कि उनके पिता चारा घोटाले में लिप्त पाए गए थे और दोषी भी करार दिए गए थे, और भी जानकारी थी जिसके कारण नामांकन को वापस लेना पड़ा बीजेपी ने आनंद फानंद में। उसके बाद नीरज सिन्हा को प्रत्याशी बना दिया। अब नीरज सिन्हा को लेकर भी जो है कुछ जो डिस्क्रिपेंसी बोलिए, जो गलतियां सामने आई हैं, क्योंकि जैसे ही नीरज सिन्हा को कल बनाया गया था प्रत्याशी, उसके बाद बीजेपी की तरफ से एक बायोडेटा उनका जारी किया गया। उस बायोडेटा में उनकी जन्म तिथि 1994 बताई गई और बीजेपी ज्वाइन करने की तारीख 2006 बताई गई। तो क्या केवल 12 साल की उम्र में ही नीरज सिन्हा ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया था? फिर आनंद फानंद में ये गलती जब पकड़ी गई तो एक नया बायोडेटा नीरज सिन्हा का जारी किया गया बीजेपी की तरफ से।
2: मतलब बैकफुट पर है बीजेपी, यहाँ पर ये कहा जा सकता है, लेकिन बहुत सोच समझ के ये कदम उठाना चाहिए था जो बीजेपी ने यहाँ पर नहीं उठाया है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रोहित, जानकारी के लिए भी। वहीं अयोध्या की बात कर लेते हैं। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जारी जांच के बीच राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बहुत अहम बयान दिया। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर में इस तरह की घटना हम सब अपने में छोटा महसूस करते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि व्यवस्था में सुधार होगा। नृपेंद्र मिश्रा के मुताबिक सीईओ नियुक्ति के लिए उच्चतम स्तर की कमेटी बनाई गई है, ट्रस्ट उस पर अंतिम निर्णय लेगा। ऐसी घटना से हम अपने में छोटा महसूस करते हैं। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि व्यवस्था में सुधार होगा। नृपेंद्र मिश्रा,
4: मैं उसको पूरी तरीके से चढ़ावा चोरी अपने में, आप जानते हैं हमारे कोषाध्यक्ष महोदय जो स्वामी गोविंद देव गिरी जी हैं, उन्होंने भी आप सभी से वार्ता की और बताया कि यह अपने में एक तरीके का कलंक है। एक तरीके से राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं।
2: और रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
7: डाई हार्ड म्यूजिक फैन, क्वेलो कॉन्सर्ट्स ब्रिंग्स यू थाउजेंड्स ऑफ फुल लेंथ कॉन्सर्ट फिल्म्स एंड बिहाइंड द सीन्स म्यूजिक डॉक्यूमेंट्रीज। फ्रॉम टुडेज आइकॉन्स टू यस्टरडेज लेजेंड्स, वी हैव इट ऑल। क्वेलो कॉन्सर्ट्स बाय स्टिंगरे, नाउ अवेलेबल फॉर फ्री ऑन प्लूटो टीवी। स्ट्रीम नाउ, पे नेवर।
6: सवारी
8: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
9: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स

0: रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
1: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।
2: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
3: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
4: In association with
5: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: जय हिंद फ्रेंड्स। ईसाइत, सोना, मसाला या विस्तार, 1498 में क्या थी वास्को डिगामा की मंशा? मधुमक्खी जैसे गोरे जो शहद लेकर आ रहे थे, भारत को डंक मारना शुरू कर दिया और बेवकूफ राजाओं का फायदा उठाकर इस देश को गुलाम बना दिया। लेकिन मीर जाफर और मीर कासिम ने अगर सर झुकाया तो रानी लक्ष्मीबाई ने सर उठाया और गोरों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कैसी थी लड़ाई, कौन थे इसके महानायक, तलवारें चली या भजन चला? अगर बचपन में नहीं समझ में आया, नोटबुक निकाल लीजिए। मैं अवध ओझा जल लेकर आ रहा हूं मास्टर जी इन द न्यूज रूम, सिर्फ ललन टॉप पर।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
2: मध्य प्रदेश के छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना का विरोध अब बढ़ता जा रहा है। गांव वाले 8 दिनों से यहां प्रदर्शन पर डटे हुए हैं और पूरा मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। विरोध के 8वें दिन प्रभावित गांव वालों ने सांकेतिक फांसी सत्याग्रह के बीच चिताओं पर लेटकर प्रदर्शन किया। अब इस बीच प्रशासन के कई अधिकारी गांव वालों को समझाने के लिए पहुंचे, लेकिन मांगे पूरी होने तक प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। चिता पर लेटकर सांकेतिक तौर पर फांसी पर लटक कर विरोध जताया जा रहा है। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
3: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897. Built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
4: Hey, it's Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
5: Third period comes to an end, game two. Overtime.
4: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of the action.
5: They score!
4: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
6: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
0: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: जो मिसिंग लिंक है उस पर जो लैंडस्लाइड हुआ था, ये लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि तकरीबन 6.5 करोड़ रुपए के बाद उसको एक्सपेंड करने के बाद, काफी सालों की मेहनत करने के बाद उसको वो सर्वे करेंगे और उसके बाद पता चलेगा कि डैमेज, इस तरह का हादसा फिर से ना हो उसको रोकने की कोशिश करेंगे वो। कैमरामैन महेश मोरे के साथ विद्या, पुणे आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

हॉर्मुज पर बारूदी जंग के बाद ईरान अमेरिका में बड़ी तनातनी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, 1000 मिसाइलें ईरान के लिए लॉक एंड लोडेड, कई प्रतिबंध भी लगाए। चालीस साल बाद प्रधानमंत्री के दौरे से न्यूजीलैंड के साथ रिश्तों को मिली रफ्तार। दोनों देशों में कई अहम समझौते। पीएम मोदी बोले, 2030 तक दोगुना द्विपक्षीय कारोबार। मध्य प्रदेश के दतिया से पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने से बीजेपी में विद्रोह। सड़कों पर उतरे समर्थक, तोड़फोड़, पथराव, जाम। जिलाध्यक्ष समेत कई नेताओं ने दिया इस्तीफा। बीजेपी ने एक ही दिन में बदला पटना के बाघेपुर का उम्मीदवार। अभिषेक की जगह नीरज सिन्हा को टिकट। प्रशांत किशोर बोले, मुकाबले से पहले घबरा गई बीजेपी। और सीएम योगी ने अयोध्या पर विपक्ष पर हमले की बौछार की। कब्रिस्तान प्रेम, हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज के बाद कांवड़ यात्रा पर घेरा। अखिलेश का पोस्ट, पराजय काल विपरीत बुद्धि।

0: और आपको सीधे लिए चलते हैं INS महेंद्रगिरी के कमीशन कार्यक्रम में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी बात रख रहे हैं।
1: यानी एक ही समय में हवा में आने वाले खतरे, सतह पर मौजूद शत्रु और पानी के नीचे छिपे हुए सबमरीन्स, तीनों के विरुद्ध यह इफेक्टिव साबित होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह एक ब्लू वाटर शिप है, यानी यह केवल तट के पास ही नहीं बल्कि दूर और गहरे महासागरों में हफ्ते तक भारत की समुद्री हितों की रक्षा कर सकता है। यानी हमारे देश भारत ने अब तक समुद्र के माध्यम से अपनी दिशा तय की है, पर अब हमारा देश समुद्र की दिशा तय करने की क्षमता भी अपने अंदर विकसित कर रहा है। और साथियों, INS महेंद्रगिरी का क्रेस्ट भी अपने आप में एक गहरा संदेश देता है। इसके क्रेस्ट पर महेंद्रगिरी पर्वत के शिखर पर विराजमान गोशाक यानी बाज का चित्र अंकित है, और यह गोशाक पक्षी अपनी तेज दृष्टि, अद्भुत धैर्य और सही समय पर निर्णायक प्रहार करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। समुद्र में भी एक बार शिप से यही अपेक्षा होती है, वह हर समय अलर्ट रहे, दूर तक देख सके, हर परिस्थिति का सही आकलन करे और आवश्यकता पड़ने पर निर्णायक कार्रवाई करने में भी वह सक्षम हो। यह क्रेस्ट अपने आप में INS महेंद्रगिरी की कैपेबिलिटी का प्रतीक है। साथियों, INS महेंद्रगिरी की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक यह भी है कि इसमें 75% से अधिक इंडिजिनस कंटेंट का उपयोग किया गया है। यह आंकड़ा भारत की डिजाइन कैपेबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सलेंस और डिफेंस इकोसिस्टम की बढ़ती हुई ताकत का यह प्रमाण है, ऐसा मैं मानता हूं। साथियों, INS महेंद्रगिरी में हमारे ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल फिट हो सकती हैं, जो दुनिया की सबसे तेज और सबसे घातक क्रूज मिसाइल्स में से एक है, और इसमें मल्टीफंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है, जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टारपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें INS महेंद्रगिरी को महेंद्रगिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं। देवियों व सज्जनों, INS महेंद्रगिरी का नाम भी अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा के सबसे ऊंचे शिखरों में से एक है, और हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि यह पर्वत भगवान परशुराम की तपह स्थली रही है। भगवान परशुराम एक योद्धा के साथ साथ वह एक ऋषि भी रहे हैं। उनमें आक्रामकता थी और शांति भी थी, उनमें युद्ध की वीरता भी है, और एक जो तपस्वी का धैर्य होना चाहिए वह भी भगवान परशुराम में तपस्वी का धैर्य भी है। उनके हाथ में भले ही परशु हो यानी फावड़ा हो, पर उनका मन प्रशांत है, शांत है, और यह जो बैलेंस है यही हमारी आर्म फोर्सेस का आदर्श है। हमारे पास शक्ति भी है, संयम भी है, हमारे पास पराक्रम भी है और विवेक भी है। INS महेंद्रगिरी इसी परशुराम भाव को समुद्र के जल पर साकार करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। देवियों और सज्जनों, आज पूरी दुनिया में वारफेयर का स्वरूप आप जानते हैं तेजी से बदल रहा है। हर दिन नई नई टेक्नोलॉजी सामने आ रही है, ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वारफेयर, स्पेस बेस्ड कैपेबिलिटीज, हाइपरसोनिक वेपन और अनमैन सिस्टम्स की चर्चा आज हर डिफेंस फोरम में होती है। स्वाभाविक है, इन नई टेक्नोलॉजी ने युद्ध के तौर तरीकों में बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया है, इसे सभी स्वीकार करेंगे। उदाहरण के लिए यदि हम ड्रोन्स को ही देखें तो पिछले कुछ वर्षों में ड्रोन ने वारफेयर को एक नई दिशा दी है। आज एक छोटा सा ड्रोन भी सर्विलेंस से लेकर प्रिसीजन स्ट्राइक तक अपनी भूमिकाएं निभा सकता है। इसलिए बहुत से लोग यह मानने लगे हैं कि फ्यूचर वार फेवर केवल नई टेक्नोलॉजी के आधार पर ही लड़ा जाएगा।
0: और अब हम आपको बताएंगे मैदान से लेकर पहाड़ कैसे बचा है हाहाकार।

पूरे देश पर मानसून के बादल छाने के बाद मैदान से पहाड़ तक अब परेशानियों में इजाफा हो रहा है। पहाड़ों पर भारी बारिश से जहां एक ओर पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कों पर मलबों का अंबार लग रहा है, वहीं दूसरी ओर नदी नाले भी इस वक्त उफान पर हैं। पूरे उत्तराखंड के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी है। हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में कुछ ऐसे ही हालात है। 24 घंटे बहुत ज्यादा भारी बारिश हो सकती है।

0: मैदानी इलाकों को डुबोने के बाद भारी बारिश अब पहाड़ों पर कहर बरपा रही है। खास तौर पर उत्तराखंड और हिमाचल में लगातार बारिश हो रही है, जिससे जगह जगह सड़कें टूट गई, पेड़ उखड़ गए, फ्लैश फ्लड आ रहा है। उत्तराखंड में तो चारधाम यात्रा को कई जगह रोका भी गया है। इस वक्त उत्तरकाशी सबसे ज्यादा प्रभावित लग रहा है। गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों ही धार्मिक यात्राओं पर असर पड़ा है। यमुनोत्री में यमुना नदी के वेग को आप महसूस कर पा रहे होंगे। भारी बारिश के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। ये तस्वीरें यमुनोत्री मंदिर के पास की है, जहां कल रात से जलस्तर बढ़ा हुआ है। यमुना नदी के वेग ने पैदल पुल को छू लिया है, अब इस पुल के बहने का खतरा बढ़ गया है। उधर यमुनोत्री धाम में शाम ढलते ही यमुना नदी अपने उद्गम क्षेत्र से विकराल रूप से बह रही है, जिससे स्थानीय लोगों और यात्रियों में दहशत का माहौल है। सियानाचट्टी कस्बे में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से कई होटलों की निचली मंजिलें पानी की चपेट में आ गई।
1: मानसूनी बारिश का कहर अब पहाड़ों में भी बरपने लगा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सियानाचट्टी में। सियानाचट्टी ये वही स्थान है जहाँ 2025 में भीषण त्रासदी आई थी, जिसके चलते ये पूरा जो सियानाचट्टी वाला जो कस्बा है, यहाँ पर एक झील बन गई थी यमुना नदी की वजह से, और उससे यहाँ पर जो है स्थानीय लोगों को त्रासदी झेलनी पड़ी। कमोबेश वही 2025 की स्थिति अब फिर दोबारा से 2026 में बनती हुई दिखाई दे रही है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा एक बार दिखाएं किस तरह से होटल एक बार दोबारा से जलमग्न होने लगे हैं। निचली मंजिल पूरी तरह से यमुना नदी के आगोश में समाने लगी है। इतना ही नहीं, आप दूसरी तरफ आप देखेंगे ये होटल्स, और सामने एक जो है विद्यालय भी है जो यमुना नदी के प्रभाव से प्रभावित हो सकता है। हालांकि अभी यमुना नदी का जल स्तर उतना नहीं बढ़ा, लेकिन मानसून बारिश जैसे जैसे अपने पूरे स्वभाव पर होगी, वैसे ही यमुना का जल स्तर बढ़ता चला जाएगा।
0: यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सबसे अधिक नुकसान सियानाचट्टी क्षेत्र में हुआ है, जहां करीब 100 मीटर सड़क वॉशआउट हो गई है। इसके अलावा हनुमान चट्टी और फूल चट्टी के पास भी लगातार भूस्खलन होने से कई बार सड़क बंद हो रही है।
1: एक बार दोबारा से मकान डूब गए?
2: जी जी, बहुत बड़ी दिक्कत है सर यहाँ पे। हाँ। पिछले बार सिंचाई विभाग द्वारा जो काम किया गया था यहाँ पे, हाँ। अगर उसका मुहाना खोल देते तो आज ये स्थिति नहीं आनी थी। हाँ। तो इसलिए जो है बड़ी समस्या हो रही है, और या फिर डूबने के कगार में आ रखे हैं यहाँ के होटल। मैं समझता हूँ कि सारी जो है ये सिंचाई विभाग की कमी है। अगर उस टाइम मुहाना खुला होता तो आज जो है नदी का प्रभाव जैसा चल रहा तो आज सुरक्षित महसूस।
3: बहुत बुरी स्थिति है सर हम लोगों के लिए। एक तो यमुना जी का भी है और ऊपर से NH का भी है, जो तो उन्होंने कटिंग की थी उसके चक्कर से भी हम लोगों को बहुत भारी सामना करना पड़ रहा है।
1: इसका तीर्थ यात्रियों पर भी असर पड़ रहा है, उनको रोका गया है यहाँ पे?
3: बहुत ही ज्यादा हो रहा है सर, और हम लोगों के जो आगामी के जो ग्रुप है वो भी कैंसिल होने जा रहे हैं सर। हम इतना डर भाई बैठ गया है लोगों के अंदर।
0: गंगोत्री नेशनल हाईवे भी नालूपानी क्षेत्र में भूस्खलन के कारण प्रभावित है। यहाँ मार्ग खुलने और बंद होने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रशासन और BRO की टीम मलबा हटाने में जुटी है। एहतियातन यात्री वाहनों को बहुत संभाल कर आगे भेजा जा रहा है। यात्रा रुक रही है फिर शुरू हो जाती है। कुल मिलाकर हालात बहुत कठिन बने हुए हैं।
4: तो ऑरेंज अलर्ट के हिसाब से गंगोत्री हाईवे में हमारा नालूपानी और नगुन और नैताला, ये तीन जगह पे दिक्कत आई है। लेकिन मशीन होने की वजह से वो ऐसा नहीं आया कि कंटिन्यूस बंद है। आधा घंटा पौन घंटे का एक गैप आ जा रहा है, जब भी स्लाइड आ रहा है तो हम ट्रैफिक नहीं चला रहे हैं, उसके बाद उसको खोल के वापस स्टार्ट कर रहे हैं। अब बात आती है यमुनोत्री वैली की। यमुनोत्री में सारी गाड़ में थोड़ा दिक्कत है, पर लेकिन वो रोड ओपन हो जा रही है। मेन इश्यू इस समय सियानाचट्टी के ऊपर गाँव के करीब 500 मीटर ऊपर जो बैंड पे बड़ा स्लाइड आया है, उस वजह से वो बाईपास बनाने के लिए अब हम लोग प्रोसेस कर दिए हैं। और NH से जो मेरा अभी सुबह डिस्कस हुआ था तो मैं कल वहाँ विजिट भी करूँगा, तो उसमें मेन ये है कि एक बाईपास उन्होंने बनाने के लिए रिक्वेस्ट करी है कि बाईपास लगभग 250 मीटर का बना के उस स्लाइड जोन को बाईपास ही कर दें।
0: पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, तो ऐसी तस्वीरें अब दिखने लगी। ये पिथौरागढ़ के मुनस्यारी का वीडियो है, जहां लगातार बारिश के बाद बिलजू पागल नाला पूरी तरह से उफान पर आ गया है। गांव वालों के लिए ये नाला पार करना मुश्किल हो रहा है, इसीलिए लोगों ने लकड़ी के दो डंडों के सहारे से एक अस्थायी पुल बना दिया और इसी के सहारे लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इसे आर पार कर रहे हैं। यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, हाथ फिसला या पैर फिसला तो सीधे इस नाले के वेग में लोग बह सकते हैं। हालात हिमाचल के भी खराब होने शुरू हो गए हैं। ये हिमाचल प्रदेश का किन्नौर है, देखिए किस तरह से अचानक से ये फ्लैश फ्लड आ गया। ये किन्नौर के लिप्पा पंचायत का पेजर नाला है जिसमें भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई। पानी का जलस्तर इतना बढ़ा हुआ था कि 100 फुट लंबे लोहे के पुल के ऊपर पानी आ गया। पुल पर आवाजाही रोक दी गई है जिससे लिप्पा गांव का अन्य क्षेत्रों से संपर्क पूरी तरह से कट गया। बाढ़ के साथ भारी मात्रा में पत्थर और मलबा भी आया है। ये पूरा मलबा आसपास के रिहायशी इलाकों में घरों के अंदर घुस गया। शिमला में भी ठीक ठाक बारिश हो रही है जिसकी वजह से यहाँ काफी नुकसान हुआ है। यहाँ शिमला में बानमोर इलाके में भारी बारिश के बाद एक पेड़ उखड़कर सड़क पर गिर गया जिससे पूरी सड़क ही ब्लॉक हो गई। ये बहुत बड़ा पेड़ है जो अपने साथ बिजली के तारों को भी तोड़ता चला गया।
5: शिमला शहर में काफी अब नुकसान देखने को मिला है, काफी जब लक्कड़ बाजार में भी काफी नुकसान हुआ है, डंगे वगैरह काफी गिरे हुए हैं। बाकी हमारे यहाँ सब डिविजन 2 बैनमोर में भी एक पेड़ से काफी क्षति पहुंची है, जैसे कि यहाँ पे एक डंगा गिर चुका है और पेड़ भी गिर चुका है। और नीचे हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी कन्वे कर दिया, पुलिस ऑफिशियल्स को भी कन्वे कर दिया है कि यहाँ पे गाड़ी की आवाजाही थोड़ी रोकी जाए ताकि हम पेड़ को प्रॉपर वे में काट के इसको रिमूव कर सकें यहाँ से।
0: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, शिमला और सोलन जिलों में बीते 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है और आगे भी मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। शिमला में जगह जगह भूस्खलन से कुछ गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई हैं। राज्य भर में 250 से ज्यादा सड़कें भूस्खलन की वजह से बंद हो गई, 200 से ज्यादा बिजली के ट्रांसफार्मर ठप हो गए जिन्हें दुरुस्त करने का काम भी जोरों से चल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 12 से 18 घंटों के बीच राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है।
6: पहाड़ों पर मॉनसून की सक्रियता देखी जा रही है लगातार, और पिछले 24 घंटों से ज्यादा समय ऐसा है जिसमें मूसलाधार बारिश हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में देखी जा रही है। मेरी इस समय मौजूदगी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर है, आप तस्वीरें जरा देखिए। ये हल्की इस समय बारिश जरूर यहाँ पर हुई है, दिन का समय है और ऐसे में अब लोगों की चहल पहल जो है वो दिखाई दे रही है। ताज़ा बारिश के बाद तापमान में थोड़ी गिरावट जरूर हुई है और बावजूद इसके इस समय मौसम बेहद सुहावना बना हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 12 से 18 घंटे तक इसी तरह का मौसम राज्य के कई जिलों में बना रहेगा। खास तौर पर जो पूर्वी हिमाचल का हिस्सा है जिसमें जिला सिरमौर, जिला शिमला और सोलन के कुछ एक इलाके जहां पर भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया है।
0: पहाड़ों पर हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ये ऋषिकेश की तस्वीरें हैं जहाँ गंगा नदी बहुत आवेग में नजर आ रही है। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर गंगा का पानी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा है और इसी बढ़े हुए जलस्तर में थार वाले अपनी गाड़ियों का इंजन भी टेस्ट कर रहे हैं। यह हरिद्वार के कनखल में बैरागी कैंप की तस्वीरें हैं। यहाँ कुछ युवकों ने थार कार के इंजन की क्षमता जांचने के लिए गाड़ी को गंगा की मुख्य धारा में उतार दिया। अब कार उतार तो दी मगर नदी के बीच में जाकर कार फंस गई और गाड़ी को गंगा से बाहर निकालना मुश्किल हो गया। जब थार गंगा में डूबने लगी तो युवकों के हाथ पैर फूल गए, उन्होंने मदद की गुहार लगाई जिस पर काफी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठे हो गए और पुलिस भी पहुंच गई। उसके बाद जेसीबी बुलाकर थार को बड़ी मुश्किल से गंगा की धारा से बाहर निकाला गया और बाहर निकालते ही पुलिस ने थार सीज कर दी। इधर उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से बिजनौर की गंगा और सहायक नदियां उफान पर आ गई। अब यहाँ बिजनौर हरिद्वार मार्ग पर पानी आ गया है जिसकी वजह से ये मेन सड़क बंद करनी पड़ी, लेकिन लोग कहाँ मान रहे हैं। इतने ज्यादा पानी में भी लोग अपनी मोटरसाइकिल ले जाने या पार करने के लिए बुग्गियों का सहारा ले रहे हैं। मोटरसाइकिल को बुग्गियों में रखकर लोग इस रास्ते को पार कर रहे हैं। जबरन बुग्गियों में जुटे बैलों को इस पानी में उतारा जा रहा है। आज तक ब्यूरो
7: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
8: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
10: No.
11: Oh, no.
10: Welcome
9: to Get Real.
10: I got something to say.
9: A weekly talk show for the reality TV obsessed.
10: Oh my God.
11: It's got to be deliciously desperate.
12: Why do these girls forgive him?
13: She has a soft spot for troubled men.
11: Boo bloody hoo.
9: This is your show. Search Get Real on TuneIn to listen.
10: Love runs deeper than we know.
9: And stream new episodes Thursdays on Hulu and Hulu on Disney+.
14: Sokudo.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897. Built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: This is the sound of Lucy, staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
2: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
3: Today's Match Day Preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here.
4: Norway will take on England in Miami, and Argentina will face Switzerland in Kansas City. Many are expecting England and Norway to be a close match. The draw is plus 280. Meanwhile, Argentina is favored to qualify for the next round at minus 300.
3: This has been your official Odyssey Sports Match Day Preview, brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
5: Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
6: Schwarber to right field, and it will lead.
5: From the first pitch of the season to the stretch run.
6: And that's the ball game.
5: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
7: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि विरोधियों को मंदिर के विकास, मंदिर के सौंदर्यीकरण पर पैसे खर्च करना पसंद नहीं आता। वो अक्सर विरोधियों पर मंदिर बनाम कब्रिस्तान का सवाल उठाकर हमले करते रहते हैं, लेकिन राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के खुलासे के बाद तस्वीर बदली बदली दिखने लगी है। जिस राम मंदिर के निर्माण में अकूत पैसे खर्च किए गए, उसी राम मंदिर के भीतर चढ़ावे में सेंधमारी को लेकर हैरान करने वाली खबरें आ रही हैं। अब ये पता चला है कि कैसे चढ़ावे की चोरी करने वाले एक को 11 बनाने में लगे थे। पता चला है कि राम मंदिर से चुराई गई रकम का शेयर बाजार में निवेश हो रहा था। इस धंधे में अनुकल्प मिश्रा और अविनाश शुक्ला का नाम सबसे आगे है। ये भी पता चला है कि चोरी की रकम उधार देकर ब्याज वसूली हो रही थी। सूत्रों की माने तो आरोपी बड़े ही शातिराना अंदाज में चोरी के पैसे को काले से सफेद बनाने में लगे थे। बैंकों और वित्तीय एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए आरोपी चोरी के पैसे पहले रिश्तेदारों के खाते में डालते, रिश्तेदारों के खाते से पैसे आरोपियों के खाते में ट्रांसफर होते। मशहूर कहावत है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। चढ़ावा चोरों को लगता था कि हुकूमत में अपने लोग बैठे हैं तो उनका बाल बांका नहीं हो सकता। उन्हें ये भी लगता है कि बड़े लोगों से नजदीकियां उन्हें किसी भी संकट से बचा लेंगी, लेकिन वो गलत थे, गफलत में थे। जब पाप का घड़ा फूटा तो जेल पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। जांच एजेंसी ने करीब 30 खातों को फ्रीज कर दिया है और पैसों की धोखाधड़ी की जांच शुरू कर दी है। इस हाई प्रोफाइल लूटकांड में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, अपराध की कलई खुलती जा रही है। पता चल रहा है कि कैसे चोरी के धन से आरोपी धन्ना सेठ बनने में लगे थे। चोरी के पैसे से जमीन, चोरी के पैसे से जेवरात, चोरी के पैसे से कार, चोरी के पैसे से शेयर खरीदे जा रहे थे। यानी कि आरोपियों के जबरदस्त वारे न्यारे हो रहे थे। अनुकल्प मिश्रा के घर की तलाशी के दौरान करीब 1 एकड़ जमीन के दस्तावेज बरामद हुए। दस्तावेजों के मुताबिक जमीन करीब 6,70,000 रुपए में खरीदी गई थी, जबकि वर्तमान बाजार मूल्य इससे कई गुना अधिक है। यानी आरोपी अपनी मर्जी और बेफिक्री से चढ़ावे की चोरी करते, जायदाद बनाते रहे और ट्रस्ट के पदाधिकारी चैन की नींद सोते रहे। वैसे उन्हें इतने बड़े सिंडिकेट का पता नहीं चला, उन्हें कोई भनक नहीं लगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। समर्थ श्रीवास्तव के साथ आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।

हॉर्मुज पर बारूदी जंग के बाद ईरान अमेरिका में बड़ी तनातनी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा 1000 मिसाइलें ईरान के लिए लॉक एंड लोडेड। चालीस साल बाद प्रधानमंत्री के दौरे से न्यूजीलैंड के साथ रिश्तों को मिली रफ्तार। दोनों देशों में कई अहम समझौते। पीएम मोदी बोले 2030 तक दोगुना द्विपक्षीय कारोबार। मध्य प्रदेश के दतिया से पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने से बीजेपी में विद्रोह। सड़कों पर उतरे समर्थक, तोड़फोड़, पथराव, जाम। जिलाध्यक्ष समेत कई नेताओं ने दिया इस्तीफा। बीजेपी ने एक ही दिन में बदला। पटना के बाकीपुर का उम्मीदवार अभिषेक की जगह नीरज सिन्हा को टिकट। प्रशांत किशोर बोले मुकाबले से पहले घबरा गई बीजेपी। और भारतीय नौसेना के साथ जुड़ गया नया योद्धा आईएनएस महेंद्र गिरी। मेक इन इंडिया स्ट्रेल्थ तकनीक और अत्याधुनिक हथियारों से लैस युद्धपोत से समुद्र में मिली नई ताकत। तो सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। ऑपरेशन टाइगर की तस्वीरें सामने आ गई हैं। आज तक 17 जून की ये वो तस्वीरें मिली हैं जिसमें उद्धव गुट के सांसदों ने की थी स्पीकर से मुलाकात। और इस मुलाकात के दौरान शिंदे गुट के सांसद श्रीकांत शिंदे भी मौजूद थे। ये वो तस्वीरें देखिए, 17 जून को स्पीकर से मिले थे उद्धव के बागी सांसद। अब वो तस्वीरें सामने आई हैं। अब इन तस्वीरों में आपको बिरला दिखाई दे रहे हैं और ये जो आप सांसद जो हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे देख रहे हैं ये उद्धव गुट के सांसद हैं जिनकी मुलाकात स्पीकर से हुई थी। 17 जून को ये मुलाकात हुई थी और उसके बाद से ये खबरें सामने आई थी कि महाराष्ट्र में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है। और इसको लेकर संजय राउत की तरफ से कई तल्ख टिप्पणियां भी की गई, बयान भी सामने आए थे। और अब आपको दिखाते हैं शतक आज तक।

अमेरिका ईरान में तनाव के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, बोले 1000 मिसाइलें निशाने पर, लॉक एंड लोडेड। तनाव के बीच ईरान के शक्ति प्रदर्शन, सेना को सतर्क रहने का संदेश, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। ईरान विदेश मंत्री का अमेरिका पर निशाना, बोले समझौते का पालन सिर्फ एक तरफा नहीं हो सकता। और मंजल डमरू बंद में हमलों के बाद अमेरिका की बड़ी कार्रवाई, ईरान पर लगाए नए प्रतिबंध। अमेरिका ने ईरान के वित्तीय नेटवर्क पर कसा शिकंजा, दुबई स्थित कारोबारी भी प्रतिबंधित। तीन देशों की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर न्यूजीलैंड पहुंचे पीएम मोदी, 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड दौरा। पीएम लक्स ने किया प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत, द्विपक्षीय वार्ता पर हुई चर्चा, माओरी समुदाय को भी संबोधित किया। न्यूजीलैंड में भी प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए उमड़ा जनसैलाब, पीएम बोले दोनों देशों के संबंध गहरे। पीएम मोदी और क्रिस्टोफर लक्सन की अहम मुलाकात, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थिरता और समृद्धि के लिए साथ काम करने पर सहमति। ऑकलैंड में पीएम मोदी के संबोधन का वेस्ट एशिया तनाव पर भारत न्यूजीलैंड चिंतित। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटते ही नेशनल हाईवे 44 जाम, जिलाध्यक्ष समेत कई नेताओं ने और पार्षदों ने इस्तीफा दिया। दिल्ली तक पहुंचेगा दतिया का विरोध, नरोत्तम समर्थकों का केंद्रीय नेतृत्व से टिकट बदलने की मांग, बीजेपी की आधिकारिक चुप्पी बरकरार। बीजेपी में इस्तीफों की झड़ी लग गई है, जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाहा समेत कई पदाधिकारियों ने पद छोड़ दिया। दतिया में विरोध का बाजार पर असर हुआ, कई व्यापारियों ने बंद रखी दुकानें। दतिया में बवाल, पथराव से बड़ा तनाव, बीजेपी उम्मीदवार के विरोध में उग्र प्रदर्शन, 6 पुलिसकर्मी घायल। पटना के बागीपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक सिन्हा ने नामांकन वापस लिया, पारिवारिक वजह बताई। बाकीपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी बने नीरज सिन्हा, उम्मीदवार बनने के बाद पार्टी दफ्तर पहुंचकर आभार जताया। मुर्शिदाबाद के बहरामपुर में सीएम शुभेंदु ने जनसभा को संबोधित किया, कहा मुर्शिदाबाद के विकास पर सरकार का पूरा फोकस है। बहरामपुर में हुमायूं कबीर पर गर्जे सीएम शुभेंदु, बोले मैं ममता बनर्जी की तरह कमजोर सीएम नहीं, जनप्रतिनिधियों की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। ईडी की ओर से टीएमसी के बैंक खाते फ्रीज करने पर ममता गुट पहुंचा कलकत्ता हाईकोर्ट, 13 जुलाई को सुनवाई। पंजाब कांग्रेस मुतल पुतल के बीच पार्टी में सियासी हलचल तेज, राज्य प्रभारी भूपेश बघेल से पूर्व सीएम चन्नी आज करेंगे मुलाकात। लखनऊ अग्निकांड में 15 लोगों की मौत वाली बिल्डिंग को किया जाएगा ध्वस्त, एलडीए को कोर्ट ने इमारत गिराने का आदेश दिया। कानपुर में राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर पप्पू यादव का बड़ा बयान, बोले इतनी बड़ी घटना पर प्रधानमंत्री चुप क्यों है। पप्पू यादव का राज्य सरकार पर बड़ा हमला, बोले बीजेपी ने देश के 170 करोड़ लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया, राम मंदिर चंदा चोरी में बड़ी मछली कौन है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राम मंदिर चढ़ावा घोटाले की निंदा की, बोले जिसने भी राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया उसे कड़ी सजा मिले।

राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को लेकर गृह मंत्रालय के निर्देश जारी, गायन में सही शब्दों और उच्चारण का पालन अनिवार्य। विशाखापत्तनम पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नेवल बेस पर नौसेना कर्मियों से बातचीत की। विशाखापट्टनम नेवल बेस पर रक्षा मंत्री बड़ा खाना में हुए शामिल, नौसेना कर्मियों में के साथ में बैठकर खाना खाया। भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा, आज स्वदेशी स्टील तो युद्धपोत INS महेंद्रगिरी कमीशन हुआ। तमिलनाडु के करूर पहुंचे मुख्यमंत्री C. Joseph विजय, भगदड़ के पीड़ित 31 परिवारों को सौंपे सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र। 1 अगस्त से दिल्ली की बसों में मुफ्त यात्रा के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड अनिवार्य, 31 जुलाई तक पेपर पिंक टिकट की व्यवस्था जारी रहेगी। बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेगा 12% से ज्यादा अल्कोहल वाली दवाएं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। एक्टर राजपाल यादव की फिर बड़ी मुश्किल, दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस केस में 7 मामलों में सुनाई 3 महीने जेल की सजा। कर्नाटक के रायचूर में आंगनवाड़ी और मिड डे मील कर्मियों का वेतन वृद्धि, बेहतर सामाजिक सुरक्षा और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन। पुणे से दुबई जाने वाली स्पाइसजेट फ्लाइट घंटों लेट, फंसे 80 यात्रियों के लिए NRI ने कराया भोजन और पानी का इंतजाम। हिमाचल के रामपुर में बारिश का कहर, आसमानी आफत से सड़कें क्षतिग्रस्त, सड़कें टूटने से कई पंचायतों का संपर्क टूटा, जान जोखिम में डालकर आवाजाही को मजबूर हुए ग्रामीण। बांदा में बारिश से बढ़ा केन नदी का जल स्तर, नदी किनारे जाने से लोगों को रोका। पालघर में भारी बारिश के चलते बाढ़ का कहर, घरों में घुसा बाढ़ का पानी। घर में बाढ़ से बचने के लिए 2 मासूम बच्चे समेत परिवार ने 8 घंटे छत पर गुजारे। गाजियाबाद में करंट से 8 साल की मासूम की मौत, ट्रांसफार्मर के पास हुआ हादसा, परिजनों ने बिजली विभाग पर आरोप लगाया। 24 घंटे में करंट से दूसरी मौत, उठे सुरक्षा पर सवाल। पुंछ में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, नदी नाले उफान पर, निचले इलाकों में पानी भरा। मेंढर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, पुलिस ने पानी में फंसे 25 लोगों को सुरक्षित निकाला, अलर्ट पर प्रशासन। पालघर में बाढ़ का कहर, आधी रात घर में घुसा पानी। मानसून में रुक रुक कर हो रही बारिश से भी चार धाम यात्रियों का जोश हाई है, लगातार बड़ी संख्या में दर्शन पहुंच रहे हैं भक्त। बद्रीनाथ धाम यात्रा मार्ग पर BRO ने बनाया 70 मीटर लंबा बॉर्डर पुल, लामबगड़ नाला पार करने में आसानी होगी। मानसून की बारिश में उफान पर अलकनंदा नदी, अलर्ट पर सभी रेस्क्यू टीमें। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही तेज बारिश, मौसम विभाग का आज के लिए कंगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिले के लिए येलो अलर्ट। पिथौरागढ़ में बारिश, भूस्खलन के बाद नदी नालों में भारी उफान, जान जोखिम में डाल, लकड़ी के लट्ठों के सहारे नदी पार कर रहे लोग। देहरादून में भारी बारिश से यमुना नदी उफान पर, विकासनगर में बड़ा बाढ़ का खतरा। उत्तरकाशी में यमुनोत्री गंगोत्री हाईवे बंद, सियान चट्टी के पास भूस्खलन के कारण गिरे पत्थर। बिजनौर हरिद्वार मार्ग पर मालर नदी का पानी आने से आवागमन बंद किया गया, कई गांव जिला मुख्यालय से कटे। जालंधर में भारी बारिश के कारण ओवरफ्लो होने से नहर का बांध टूटा, रिहायशी कॉलोनियों में भरा पानी। विंबलडन फाइनल में सिनर की दमदार एंट्री, नंबर 1 यानिक सिनर ने नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में हराया, दूसरी बार जगह बनाई। विंबलडन को आज मिलेगी नई महिला चैंपियन, कैरोलिना मुचोवा और लिंडा नोकोस्कोवा के बीच खिताबी मुकाबला। फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस का दमदार प्रदर्शन, मोरक्को को 2-0 से हराया, सेमीफाइनल में बनाई जगह। स्पेन का सेमीफाइनल टिकट पक्का, बेल्जियम को 2-1 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप में बढ़ाया खिताब की ओर एक और कदम। भारत की साख बचाने की चुनौती, इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी T20 आज, मेजबान टीम 3-0 से आगे। स्पेन में जंगल की आग का तांडव, भीषण अग्निकांड में 12 लोगों की मौत, 23 अब भी लापता है। अमेरिका ने दक्षिणी ईरान के कई इलाकों में किया हवाई हमले, बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर भी हमला। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग ने सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी की बैठक में परमाणु ताकत बढ़ाने का लिया फैसला, संख्या और क्षमता दोनों स्तर पर परमाणु ताकत बढ़ाने का ऐलान। सऊदी अरब का दौरा पूरा कर जेद्दा से रवाना हुए कनाडाई PM मार्क कार्नी, 26 साल बाद किसी कनाडाई PM ने की सऊदी यात्रा। नोएडा में पिछले 2 दिनों में हुई बारिश के बीच 2 हादसे, कहीं सड़क धसी तो कहीं गिरी वाहन दीवार, गिरी कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए। मिर्जापुर में बारिश के बीच बड़ा हादसा हुआ, अचानक धसी सड़क, चलती बाइक समेत गड्ढे में गिरे 2 लोग। हरिद्वार में युवकों को गंगा नदी में धार उतारना, स्टंट करना भारी पड़ गया, पुलिस ने क्रेन से गाड़ी बाहर निकाली और सीज कर दी।
उधम सिंह नगर के NH-74 पर काली गाड़ियों की काफिले ने हुड़दंग मचाया। वायरल वीडियो में हाईवे पर कब्जा जमाया, अन्य वाहनों को आगे नहीं निकलने दिया। झांसी में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म, हाथी दिखाने के बहाने ले गया युवक, शख्स को पकड़कर लोगों ने चप्पलों से पीटा, पुलिस के हवाले किया। जयपुर में स्कॉर्पियो कार से सीधे टकराई थी रफ्तार स्कूटी, हवा में उछले शख्स की मौत, 2 घायल। अलवर में मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने के बहाने पहुंचे छात्र चोर, पलक झपकते ही उड़ाए 2 मोबाइल। पाली में क्लास में घुसा 5 फीट लंबा कोबरा, सांप देख छात्रों में अफरा तफरी, स्नेक कैचर ने रेस्क्यू किया। कौशाम्बी के एक स्कूल में टीसी लेने गए अभिभावक और टीचर के बीच विवाद, शिक्षिका ने शख्स को चप्पलों से पीटा। मुजफ्फरपुर के टॉप 10 वांछित कुख्यात अपराधियों में एक गोलू चौधरी गिरफ्तार, 2021 लूट गोलीकांड का आरोपित था। रांची में मादक पदार्थों की तस्करी का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार, 15 ग्राम ब्राउन शुगर, 1,70,000 रुपए बरामद। झारखंड के पलामू में गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच में सांप ने महिला को काटा, महिला की तबीयत बिगड़ी। सहारनपुर में यमुना नदी किनारे बाढ़ सुरक्षा कार्य के दौरान मिट्टी धंसने से नदी में गिरी कार, 2 की मौत, 1 घायल। मुजफ्फरनगर में बारिश से बचने के लिए दुकान की छत पर चढ़ा आवारा सांड, 3 शेड पर पैर रखते ही गिरा, नीचे रेस्क्यू किया। समस्तीपुर में करीब 1 महीने से लापता हुए छात्र का शव 12 फीट नीचे गड्ढे से बरामद, परिजनों ने आरोपित के घर पर शव रखकर हंगामा किया। महाराष्ट्र के सतारा में हाईवे पर चलती कार में अचानक आग लग गई, पूरी तरह से गाड़ी जल गई। महाराष्ट्र में नागपुर एटीएस का बड़ा एक्शन, गैंगस्टर शहजाद भट्टी के संपर्क के शक में 10 लोगों को हिरासत में लिया। नागपुर में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देव व्यापार अड्डे पर क्राइम ब्रांच का छापा, गिरफ्तार। गुजरात के अहमदाबाद में स्कूल बस में स्कूटी सवार को मारी टक्कर, दुर्घटना में युवक की मौत। गुजरात के गिर सोमनाथ में टीचर ने 500 रुपए देकर 7वीं के छात्र से शराब मंगवाई, सीसीटीवी के आधार पर टीचर सस्पेंड।

0: और अब एक बड़ी खबर पंजाब कांग्रेस की कला से जुड़ी हुई। चंडीगढ़ में भूपेश बघेल और चरणजीत सिंह चन्नी की बैठक। थोड़ी देर में चन्नी से मिलेंगे भूपेश बघेल, जिनको की प्रभारी बनाया गया है। राजा वडिंग को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से चन्नी नाराज हैं और उनके साथी भी नाराज हैं, उनके समर्थक भी नाराज हैं। भूपेश बघेल पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हैं और वो पिछले 5 दिनों से चंडीगढ़ में डेरा डाले हुए हैं कांग्रेस की अंदरूनी कला को शांत करने के लिए। कांग्रेस नेताओं में सुलह कराने की कोशिश कर रहे हैं भूपेश बघेल, और आज इसी कड़ी में वो चरणजीत सिंह चन्नी से मिलेंगे, उनके गुट से मिलेंगे।
1: कांग्रेस के लिए खड़े हैं हम, पंजाब के लिए खड़े हैं हम, मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए खड़े हैं। जो भी रणनीति उस संदर्भ में कारगर साबित होगी और जो भी चर्चाएं चल रही हैं, हम लोग जमीनी हकीकत के बारे में अपने जो पंजाब के प्रभारी हैं भूपेश बघेल जी, जो विशेषकर इस मकसद के लिए आज 5 दिन के दौरे पे पंजाब आए हैं कि जहां की जमीनी हकीकत को पढ़ा जाए, उसके अनुसार केंद्र सरकार जब जो केंद्रीय नेतृत्व है उससे बातचीत करके जो संकट जो दिखाई दे रहा है, हालांकि संकट को इशारा ज्यादा जा रहा है, इतना बड़ा संकट है नहीं, कांग्रेस के सभी लोग कांग्रेस के प्रति प्रतिबद्ध हैं।
0: असीम बसी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। असीम, क्या माना जाए आज भूपेश बघेल और चन्नी गुट की जो बैठक होगी सब सुलझ जाएगा या फिर उलझा रहेगा?
2: देखिए ये डिफिकल्ट है बताना अभी, लेकिन एक पेज पे आते हैं नहीं, लेकिन एक है कि एक टेबल पे तो जरूर आए हैं। भूपेश बघेल पिछले 6 दिन से चंडीगढ़ में है, मीटिंग नहीं हो रही थी, वडिंग से और वडिंग ग्रुप से मिल रहे थे, लेकिन अभी तक चन्नी से और चन्नी का जो ग्रुप जो मोरिंडा में इकट्ठा हुआ था 60-70 लीडर, उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। लेकिन फाइनली आज राणा गुरजीत के घर पे, ये मिनिस्टर राणा गुरजीत का घर है जहां पर ये मीटिंग हो रही है। चरणजीत चन्नी जो है ऑलरेडी मीटिंग के लिए पहुंच चुके हैं, लेकिन भूपेश बघेल जो है वो यहां नहीं पहुंचे हैं। जिस दिन से कांग्रेस ने लिस्ट निकाली थी कि वडिंग प्रधान रहेंगे पंजाब कांग्रेस के, उसी दिन से ये जो मुश्किल थी वक्त कांग्रेस का शुरू हो गया, डिवीजन था, वर्टिकल डिवीजन स्प्लिट नजर आया। और अभी भी कुछ लीडर्स जो अंदर गए, उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि हाँ जो हमारा मोरिंडा में स्टैंड था वही स्टैंड है, और बड़ी क्लैरिटी से बता के गए। लेकिन उन्होंने बोला कि उम्मीद है कि डेडलॉक टूटेगा। वहीं राजा वडिंग से हमने कल बात की थी, उन्होंने बोला कि डेडलॉक टूट सकता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि राजा वडिंग जो कि पंजाब कांग्रेस के प्रधान है वो इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि डेफिनेटली जो चन्नी फैक्शन है उनकी नाराजगी राजा वडिंग के साथ है। तो इस यही कारण है कि राजा वडिंग यहां नहीं होंगे और वो बघेल के साथ जो है पूरी डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये बड़ी अब लिटमस टेस्ट है आज भूपेश बघेल के लिए भी, क्योंकि पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हैं, और अगर ये सारा कुछ खराब हो रहा है कांग्रेस के लिए पंजाब में, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी किसी ना किसी को लेनी पड़ेगी। क्यों भी, कौन अकाउंटेबल है?

0: शामिल हो रहा है। इसकी मारक क्षमता की बात करें तो ये एंटी शिप, एंटी सबमरीन और एंटी एयरक्राफ्ट शिप है, जो सभी तरह के हथियारों, खासतौर से सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर और टॉर्पीडो और दूसरे तमाम आधुनिक हथियारों से लैस है। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मजीत नेगी, INS महेंद्रगिरी, विशाखापट्टनम, आज तक।
1: रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद भारत।
3: Take it easy with Soft Hits. Soft Hits brings together relaxing pop favorites from the 70s, 80s and 90s. Familiar songs, easy melodies and a sound that lets you slow down. Perfect for stepping back and catching your breath. Explore the new Stingray music collection with stations like this. Just search Soft Hits to start listening now.
4: अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
3: आगे आगे
4: अरे उधर
3: उधर
4: करेक्ट करेक्ट
5: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी
7: से बना
8: नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग। एकदम सॉलिड।

0: in association with Sharda University. The world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
0: विमल बोलो जुबां केसरी हिंद बड़े आराम से.
2: वी मस्ट राइज वी मस्ट फाइट. दरअसल ईरान की सड़कों पर ऐसे पोस्टर तो आपने देखे होंगे, लेकिन आपको याद होगा कि ये सिंबॉलिक जो हाथ आप देख रहे हैं ये पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई का है. लेकिन अब ये हाथ जो है जिसमें उनकी अंगूठी हमेशा नजर आती थी, जो एक पावर का साइन था, वो अब ईरान में खासतौर पर तेहरान के इन इलाकों में नजर आएगा, आजादी स्क्वेयर पर नजर आएगा. आप देखते रहिए आज तक.
3: जय हिंद फ्रेंड्स. ईसाइयत सोना मसाला या विस्तार, 1498 में क्या थी वास्को डिगामा की मंशा? मधुमक्खी जैसे गोरे जो शहद लेकर आ रहे थे, भारत को डंक मारना शुरू कर दिया और बेवकूफ राजाओं का फायदा उठाकर इस देश को गुलाम बना दिया. लेकिन मीर जाफर और मीर कासिम ने अगर सर झुकाया तो रानी लक्ष्मीबाई ने सर उठाया और गोरों को सोचने पर मजबूर कर दिया. कैसी थी लड़ाई, कौन थे इसके महानायक, तलवारें चली या भजन चला? अगर बचपन में नहीं समझ में आया, नोटबुक निकाल लीजिए. मैं अवध ओझा जल लेकर आ रहा हूं मास्टर जी इन द न्यूज रूम, सिर्फ ललन टॉप पर.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
2: एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से बड़ी खबर, जाए खाली स्कूल वैन में आग लग गई। गाजियाबाद के नंदीग्राम में चलती स्कूल बस में आग लगी है। हालांकि बस खाली थी, इसलिए कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ये बस दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद की थी। चालक ने अभी समय रहते बस से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई, बड़ा हादसा टल गया। सबसे अच्छी बात यह है कि यह बस खाली थी, कोई छात्र इस बस में मौजूद नहीं था। लेकिन उसके बावजूद अगर स्कूल बस में ऐसे अचानक आग लगती है तो सवाल उठते हैं, क्योंकि अभी इसमें कोई छात्र नहीं था, ये अच्छी बात थी। लेकिन अगर छात्रों को पिक या ड्रॉप करते वक्त ये आग लगी होती तो बहुत से सवाल उठते, बहुत बड़ा खतरा होता। गाजियाबाद में स्कूल बस में ये आग लगती है। हालांकि फायर ब्रिगेड बाद में पहुंची, आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन बीच रोड पर स्कूल बस में इस तरह से आग लगना चिंता का विषय। रुकेंगे एक और बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
1: भारत। We hope you're loving TuneIn, but are you ready to love it even more? Upgrade to TuneIn Premium for the ultimate listening experience. Remove ads from top news stations.
3: The climate disaster-related death rate. Tornadoes, hurricanes.
1: Enjoy nonstop music with absolutely no commercials. And hit the field for live sports play-by-play from the biggest leagues.
4: Williams keeps it. First down. Touchdown.
1: Ready to upgrade your listening? Sign up for TuneIn Premium now.
5: अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

और मुझ पर बारूदी जंग के बाद ईरान अमेरिका में बड़ी तनातनी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, 1000 मिसाइलें ईरान के लिए लॉक एंड लोडेड। चालीस साल बाद प्रधानमंत्री के दौरे से न्यूजीलैंड के साथ रिश्तों को मिली रफ्तार। दोनों देशों में कई अहम समझौते। पीएम मोदी बोले, 2030 तक दोगुना द्विपक्षीय कारोबार। मध्य प्रदेश के दतिया से पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने से बीजेपी में विद्रोह। सड़क पर उतरे समर्थक, तोड़फोड़, पथराव, जाम। जिलाध्यक्ष समेत कई नेताओं ने दिया इस्तीफा। बीजेपी ने एक ही दिन में बदला पटना के बाकीपुर का उम्मीदवार। अभिषेक की जगह नीरज सिन्हा को टिकट। प्रशांत किशोर बोले, मुकाबले से पहले घबरा गई बीजेपी। भारतीय नौसेना के साथ जुड़ा नया योद्धा आईएनएस महेंद्र गिरी। मेक इन इंडिया स्टेल्थ तकनीक और अत्याधुनिक हथियारों से लैस युद्धपोत से समुद्र में मिली नई ताकत।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। सुबह 11:30 बज गए हैं और बुलेटिन में बात चार बड़ी खबरों पर करेंगे। पहली खबर अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई है, जिसकी जांच के बीच उत्तर प्रदेश की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। तो उधर मध्य प्रदेश के दतिया के उपचुनाव में सूबे के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया, उसके बाद बवाल जो शुरू हुआ तो वो थम नहीं रहा। तो वहीं बिहार में क्या हो रहा है, बिहार के बांकीपुर में बीजेपी प्रत्याशी बदलने के बाद विपक्ष ने हल्ला बोल दिया है। अब विपक्ष कह रहा है कि अब तो बीजेपी वाले वापस भाग रहे हैं। और इसके साथ ही बात करेंगे पंजाब की, जहां पर कांग्रेस की कला भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। भूपेश बघेल वहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं और आज एक बैठक भी है चरणजीत सिंह चन्नी के गुट के साथ। तो क्या आज बात हो पाएगी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच के बीच एक बड़ी खबर जो आ रही है उससे करते हैं। और यह पता चला है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी की घटना सामने आने के बाद मंदिर में काम करने वाले पूर्व सैनिकों पर कुछ भी बोलने पर पाबंदी लगा दी गई है। मंदिर में काम करने वाले सभी पूर्व सैनिकों को व्हाट्सएप ग्रुप पर संदेश भेजा गया है कि कोई कुछ भी पूछे आपको कुछ नहीं बोलना है। चढ़ावा चोरी की घटना सामने आने के बाद भी हर तरह से मामले को छिपाने की कोशिश की गई थी। ये देखिए, अब ये वो पोस्ट है जिसके बारे में लिखा गया है कि मंदिर पर कार्य हम कर रहे हैं, हमें कोई जानकारी नहीं, आपको किसने बता दिया कि ऐसा हो रहा है, इस तरह से आपको बोलना है। ये एक ग्रुप है अयोध्या धाम पूर्व सैनिक सेवा समूह, 34 मेंबर हैं इसमें। संतोष हमारे सहयोगी, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन आप समझिए कि कैसे दबाने की कोशिश की गई। पूर्व सैनिकों को कुछ ना बोलने का निर्देश दिया गया। चोरी तो हो ही रही थी, चंदे की दान की चोरी हो रही थी, फर्जी रसीदें बनाई जा रही थी, शेयर मार्केट में पैसा लगाया जा रहा था, गाड़ियां भी खरीदी जा रही थी। संतोष हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। संतोष, और क्या खुलासे हो रहे हैं अब?
1: देखिए, इस पूरे मामले से तो बात साफ हो गई कि जब यह चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया तो किस तरीके से लोगों को हिदायत दी जा रही थी, जो राम मंदिर में काम करने वाले लोग थे, चाहे वो सेवादार हों, ट्रस्ट की तरफ से अपॉइंटेड लोग हों, या फिर उसकी सुरक्षा में तैनात सैनिक पूर्व सैनिक रहे हों। और ये जो जानकारी जो सोशल मीडिया पर जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि इसमें ये एक स्क्रीनशॉट है कि पूर्व सैनिकों के जो अयोध्या धाम राम मंदिर के लिए सुरक्षा में लगाए गए थे, उनका है कि 7 जून का ये व्हाट्सएप चैट है जिसमें साफ तौर पर हिदायत दी जा रही है उन पूर्व सैनिकों को कि अगर चढ़ावा चोरी पर कोई बाहर का आदमी पूछता है तो उसको कुछ नहीं बताना है, बोलना है कि हमें कोई जानकारी नहीं है, आपको ये बात किसने बताई। ये एक बड़ी बात है कि चढ़ावा चोरी का मामला यानी कि राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर सभी को पता था, लेकिन उस पर न तो FIR दर्ज करने की कोशिश की गई और उस पर से जो उस समय के पूर्व अब पूर्व हो चुके हैं चंपत राय जो महासचिव रहे उनके तरफ से बयान दिया गया कि कुछ ऐसा नहीं है। तो ये जो चीजें हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक हर आदमी को मुंह बंद करने के लिए कहा गया था, और ये जो स्क्रीनशॉट एक व्हाट्सएप चैट का हमारे पास है ये इस बात की तस्दीक कर रहा है कि
0: आप बने रहिए संतोष हमारे साथ। कितना ही मुंह बंद करने के लिए क्यों ना कह दिया जाए, लेकिन अब सच्चाई सबके सामने आ रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर ये है कि अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के 2 और आरोपियों को पुलिस बहुत जल्द रिमांड पर लेगी। नाम रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव से पुलिस पूछताछ करेगी। टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई गई है और यह बताया जा रहा है कि पुलिस ने टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव की 7 दिनों की कस्टडी मांगी है। संतोष बने हुए हमारे साथ। संतोष, 2 अहम किरदार टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, बाकी ने भी कहा कि टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव थे तो किसी बात का डर नहीं, सब बहुत आसानी से हो जाता था। अब इनकी 7 दिनों की कस्टडी मांगी गई है, तो यानी और भी कई खुलासे अभी होने बाकी हैं।
1: देखिए, इस पूरे केस में पुलिस सिलसिलेवार लोगों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर ले रही है। सबसे पहले अविनाश पांडे को लिया, अविनाश शुक्ला को लिया जिसके पास से 20 लाख रुपए नकद मिले। उसके बाद दूसरी शिफ्ट में उसने 3 लोगों को लिया, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे को। अब तीसरी जो चरण है, जो थर्ड बारी है, वो उन 2 लोगों की है जो इस पूरे जो चढ़ावा चोर जो गैंग था उसके कहा जाए कि सीनियर थे इनके ग्रुप में, राम मंदिर ट्रस्ट में काम करने वाले के तौर पर ये सर्वे सर्वा थे। एक नाम है सुभाष चंद्र का, ये रिटायर्ड बैंक कर्मी है। इनके ऊपर ट्रस्ट की तरफ से जिम्मेदारी दी गई थी कि उस काउंटिंग रूम की निगरानी करने की, काउंटिंग व्यवस्था की, ये ट्रस्ट की तरफ से ऑथराइज किए गए थे। जो अनिल मिश्रा ने एमओयू किया उसमें सुभाष चंद्र शिवा और एसआईटी ने भी ये बात अपनी रिपोर्ट में कही कि अनिल मिश्रा के तरफ से सुभाष चंद्र को ही जिम्मेदार बताया गया था, उनको ऑथराइज किया गया था कि वो उस काउंटिंग रूम में सारी चीजों की निगरानी रखेंगे, व्यवस्था भी देखेंगे और चोरी ना होने पाए, लेकिन चोरी हो गई। उसके बाद रामशंकर यादव, टिन्नू यादव कैरेक्टर इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो दान पेटियां थी, जो हुंडी थी जो जिसमें दान चढ़ रहा था, उनमें जो ताले लगे थे वो लॉक डबल की लॉक थे, यानी कि एक चाबी बैंक के पास रहती थी और दूसरी चाबी जो ट्रस्ट के किसी पदाधिकारी के पास होनी चाहिए थी वो रामशंकर यादव टिन्नू के पास होती थी।
0: इसलिए ये दोनों बहुत अहम कड़ी साबित होती है और पूछताछ में और भी कई खुलासे होंगे। बने रहिए, दोबारा जुड़ते हैं आपसे। एक और बड़ी खबर आ रही है, राम मंदिर में चढ़ावे की गर्दा के लिए एक नया टाइम टेबल लागू कर दिया गया है। पहले दो पालियों में होने वाली निगरानी अब एक ही शिफ्ट में की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चढ़ावे की गिनती होगी। नई समय सारणी लागू होने के बाद कुछ गर्दा कर्मियों ने काम छोड़ भी दिया है। नई व्यवस्था के तहत चढ़ावे की गर्दा प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की कोशिश की जा रही है। संतोष बने हुए हमारे साथ। संतोष, नया सिस्टम लागू किया है लेकिन यह भी खबर आ रही है कि अब जो बहुत से कर्मचारी थे उन्होंने काम छोड़ दिया, कह रहे करे कोई भरे कोई।
1: देखिए, ये चूंकि जो पूरी शिफ्टिंग की गई है, जो एक सिंगल शिफ्ट में बात आ रही है वो इसीलिए क्योंकि अब चढ़ावा चोरी का मामला खुलासा हुआ तो पता चला कि दो शिफ्ट में काउंटिंग होती थी, तो अब उसको सिंगल शिफ्ट में रख दिया गया। और ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुबह 9 से 6 बजे, यानी कि 9 बजे से 6 बजे के बीच में ही काउंटिंग का काम होता था। ये वो टाइमिंग है जब बैंक भी खुले होते थे। तो इस तरीके से ये व्यवस्था लागू की गई कि काउंटिंग रूम में जो काउंटिंग होगी उसको उसी दिन ट्रस्ट की तरफ से अब ये कोशिश की जा रही है, स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है कि जो काउंटिंग का कैश आएगा उसको उसी दिन बैंक में रख दिया जाए। पहले दो शिफ्ट में काउंटिंग होती थी, उस दो शिफ्ट की काउंटिंग में अगर कोई पैसा रह गया और बैंक में जमा नहीं हो पाए तो काउंटिंग रूम में ही रहता था। तो ऐसे में एक वो खतरा भी रहता था कि कहीं काउंटिंग रूम से आज तो ये कर्मचारी चोरी कर रहे हैं, कल के दिन एक अगर मान लीजिए काउंटिंग रूम से ही बॉक्स चोरी हो गया तब क्या। तो उसको ध्यान में रखते हुए सिंगल शिफ्ट में काउंटिंग की व्यवस्था लागू की गई है और इस सिंगल शिफ्ट में काउंटिंग व्यवस्था सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक होगी। रही बात कर्मियों को छोड़ने की, तो जब ये इतना बड़ा मामला सामने आया तो शुरू में भी तमाम कर्मी छोड़ रहे थे, अप्रैल के पहले भी छोड़ के जा चुके थे, अब छोड़ रहे हैं। दूसरी एक इसकी वजह मानी जा सकती है कि अब पुलिस ने और इसका वेरिफिकेशन कराएगी, जो ट्रस्ट की नई व्यवस्थाएं है उसमें जो भी कर्मचारी काम करेंगे उनका करेक्टर वेरिफिकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन होगा। तो अब पुलिस वेरिफिकेशन अगर होगा तो उनके बैकग्राउंड चेक होंगे, तो हो सकता है कि ऐसे लोग इसलिए भी छोड़ रहे हैं या तमाम लोगों इसलिए कि अब यहाँ पे काम करने से बदनामी हो रही है,
0: तो इसलिए बहुत कुछ बदलाव किए गए हैं। लेकिन इन बदलावों से सब कुछ ठीक होगा इसकी उम्मीद करना थोड़ा जल्दबाजी होगी। उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करते हैं, जहां विधानसभा चुनाव से पहले राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा सियासत का इस वक्त केंद्र बन गया है। विपक्ष इसे हिंदुओं की आस्था पर सबसे बड़ी चोट बताकर बीजेपी पर हमला बोल रहा है। तो उधर बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल रखा और सीएम योगी चढ़ावा विवाद के बीच चुनावी समर की दिशा फिर से उस ओर मोड़ रहे हैं जो साल 2017 और 2022 में यूपी में बीजेपी का विनिंग फॉर्मूला रहा। अपनी हर सभा में योगी अपने बयानों से हिंदुत्व वाली राजनीति को धार दे रहे हैं।

0: यूपी की सियासत में राम मंदिर चढ़ावा चोरी की गूंज है। चुनाव से ठीक पहले विपक्षी दल इसे बड़ा मुद्दा बनाने में जुटे हैं। वहीं सीएम योगी हिंदुत्व को फ्रंटलाइन पर रखकर जवाबी हमला बोल रहे हैं। यूं तो विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच पहले से ही योगी के तेवर दिखने शुरू हो गए थे, लेकिन जब से राम मंदिर चढ़ावा विवाद को विपक्ष ने हमले के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, योगी का अंदाज और भी आक्रामक हो गया।
1: याद करिए, हम विरासत का संरक्षण करने के लिए जो पैसा आज हमारे जनप्रतिनिधिगण मंदिरों के सुंदरीकरण के कार्य के लिए प्रदान करते हैं, ये पैसा समाजवादी पार्टी पैसा तो आपका, अंतर यही है बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है, और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था। उनको कब्रिस्तान प्यारा है, इसलिए वे राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम और मां विंध्यवासिनी धाम और नैमिषारण्य और चित्रकूट धाम के विकास का विरोध करते हैं।
0: यूपी में चुनाव नजदीक है। अयोध्या चंदा चोरी का विवाद सियासी फिजा में गूंज रहा है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंदिर बनाम कब्रिस्तान वाले हमले को एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। चढ़ावा चोरी विवाद के बीच शुक्रवार को दूसरी बार अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी में नमाज का जिक्र कर समाजवादी पार्टी पर हमला बोल दिया और फिर बस्ती की जनसभा में इसमें कांवड़ यात्रा वाला चैप्टर जोड़ दिया।
1: जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारे पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आपको देखते हुए आप जब अयोध्या धाम में दर्शन करने के लिए जाते हैं, आपकी कांवड़ यात्रा निकलती है, तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कांवड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको लगता है कोई उनको बुलावा दे दे तो वो भी जाएं पुष्प वर्षा करें।
0: उधर मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी पहले ही पीडीए वाली रणनीति के जरिए चुनावी तैयारी को आगे बढ़ा रही है। अब चढ़ावा चोरी ने समाजवादी पार्टी के हमलों को नई धार दे दी है।
2: एसआईटी क्या लीपापोती है? लीपापोती एसआईटी किससे मनाई है? और सुनने में आया कि एसआईटी में भी सवाल खड़े हो गए हैं। एसआईटी में जो कोई सदस्य है उन पे 420 का मुकदमा है। अब बताइए वही रहेंगे एसआईटी में? ये लड़ाई बड़ी है, आप नहीं समझ पा रहे हो, ये दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है।
0: यूपी के चुनावी रण से पहले ये विवाद बीजेपी के लिए इसलिए भी बेहद संवेदनशील है क्योंकि अयोध्या, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकुंभ और धार्मिक पर्यटन जैसे मुद्दे पार्टी की राजनीतिक पहचान और विकास मॉडल का अहम हिस्सा रहे हैं। लेकिन अब चढ़ावा विवाद सामने आने के बाद विपक्षी लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं, लिहाजा सीएम योगी न केवल विपक्ष पर जवाबी हमला बोल रहे हैं बल्कि समाजवादी पार्टी की पीडीए वाली रणनीति पर भी काउंटर अटैक कर रहे हैं।
1: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की, राम के नाम पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया, राम भक्तों पर गोलियां चलाए, अयोध्या के नाम पे पहचान का संकट खड़ा किया। ये डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, कोई रोक नहीं पाया। आज आस्था आती है, लाखों लोग अयोध्या आते हैं, अभिभूत होकर के जाते हैं। इन्होंने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने का पाप किया था और हम लोगों ने अयोध्या को स्वच्छ और सुंदर बनाकर के सनातन धर्म की एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में फिर से उसकी स्थापना के साथ जोड़ा ही है। जोड़ने के साथ आज अयोध्या को सरयू जी की आरती और राम जी की पेड़ी भी मिली है और नए घाट से लेकर के गुप्तार घाट तक घाटों की एक लंबी श्रृंखला भी अयोध्या धाम को देकर के अयोध्या को एक नई पहचान दिलाई है।
0: राम मंदिर चढ़ावा विवाद सामने आने के बाद सीएम योगी ने फौरन ही जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई, पड़ताल तेजी से आगे बढ़ रही है और इस बीच सियासी जंग भी बढ़ती जा रही है। आज तक ब्यूरो।
3: राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा एक बार फिर अयोध्या पहुंचे और इस दौरान नृपेंद्र मिश्रा ने कहा है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण कलंक है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मंदिर व्यवस्था में सुधार होगा, साथ ही सीईओ की नियुक्ति पर ट्रस्ट अंतिम निर्णय लेगा।
4: मैं उसको पूरी तरीके से चढ़ावा चोरी अपने में आप जानते हैं, हमारे कोषाध्यक्ष महोदय जो स्वामी गोविंद देव गिरी जी हैं, उन्होंने भी आप सभी से वार्ता की और बताया कि यह अपने में एक तरीके का कलंक है। एक तरीके से राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है, व्यवस्था में सुधार होगा मुझे पूरा विश्वास है, और इस प्रकार की घटनाएं दोहराई नहीं जाएंगी।
5: जिन 8 लोगों की सर गिरफ्तारी हुई है, आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन का दर्जा?
4: इसके बारे में मैं कोई भी किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करूंगा।
6: अन्य ट्रस्टी भी मौजूद रहेंगे?
4: नहीं, ये तो निर्माण समिति की बैठक है। तो निर्माण समिति में L&T, TC, राजकीय निर्माण निगम, इंजीनियर इंडिया लिमिटेड इत्यादि इत्यादि के लोग आते हैं।
7: बाबू जी, इसके अलावा राम मंदिर में सीईओ की नियुक्ति की बात सामने आ रही है, आप कैसे?
6: काफी चर्चा है, समस्या आप कमेटी भी गठित की है।
4: हां, तो वो
6: ये रिकमेंडेशन एक तरीके से कहा भी था कि इस तरह से
4: नहीं, मेरा कोई भी इसमें किसी प्रकार की संस्तुति का प्रश्न नहीं है। ये तो एक उच्चतम स्तर की समिति बनाई गई है, उसमें आपको मालूम है न्यायाधीश उसके अध्यक्ष हैं संभवतः, वह अपना निर्णय संस्तुति सीधे ट्रस्ट को देगी और ट्रस्ट विचार करेगा।
3: चढ़ावे विवाद के बीच राम मंदिर ट्रस्ट जल्द सीईओ की नियुक्ति करने जा रहा है, जिसके लिए समिति का भी गठन कर दिया गया। सीईओ को मंदिर के प्रशासन और वित्तीय प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जिसका उद्देश्य मंदिर के संचालन को अधिक पेशेवर, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। इसके साथ ही सीईओ चढ़ावे के प्रबंधन, श्रद्धालुओं की सुविधाओं, आधारभूत ढांचे के रखरखाव और प्रशासनिक व्यवस्था की भी निगरानी करेंगे, देखभाल करेंगे। अब खबर है मध्य प्रदेश के दतिया से, जहां उपचुनाव के लिए बीजेपी ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को टिकट काट दिया। उसके बाद समर्थकों ने जमकर हमला कर दिया, हाईवे पर हमला कर दिया, अब गाड़ियों में तोड़फोड़ की, चक्का जाम कर दिया, पथराव भी किया। हालात बिगड़े तो भारी संख्या में पुलिस बल ने मोर्चा संभाला। समर्थकों में अब भी बीजेपी नेतृत्व के खिलाफ नाराजगी है। ये देखिए नेशनल हाईवे पर कैसे गाड़ियों का जाम लगा रहा, और करीब 10 से 12 किलोमीटर का ये जाम लगा रहा। क्यों? क्योंकि नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया गया, जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। रुकेंगे यहां पर बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
10: Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
11: Schwarber,

0: to right field, and it will leave.
1: From the first pitch of the season to the stretch run,
0: and that's the ball game.
1: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: Sokudo.
3: जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमान गढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? कौन करवा रहा था? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की, राम के नाम पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया, राम भक्तों पर गोलियां चलाई, अयोध्या के नाम पे पहचान का संकट खड़ा किया। ये डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, कोई रोक नहीं पाया।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या दुनिया इतिहास के सबसे बड़े तेल

0: संकट की ओर बढ़ रही है। ईरान और अमेरिका के बीच पिछले महीने हुआ शांति समझौता महज चंद दिनों में बारूद की तरह उड़ गया। वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसे ईरान ने अमेरिका के खिलाफ अपना ब्रह्मास्त्र बना लिया है। तेहरान का एक ही सूर हॉर्मुज पर अब ईरान का नया नियम मानना ही होगा। बीते 4-5 दिनों के भीतर हॉर्मुज की लहरें खून से लाल हो चुकी हैं। तेहरान की मर्जी के बिना गुजर रहे जहाजों पर ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। पहले एक अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल कार्गो शिप पर ईरान ने सीधे गोलियां बरसाई, इसके बाद एक और तेल टैंकर को ईरानी नौसेना ने घेर कर निशाना बनाया। जवाब में अमेरिकी सेना ने जवाबी गोलीबारी की तो ईरान ने भी पीछे हटने के बजाय अमेरिकी युद्ध पोतों पर मिसाइलें तान दी। दोनों देशों के बीच सीधे युद्ध शुरू हो चुका है। इस बीच अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस ने एक बेहद सनसनीखेज और खौफनाक दावा किया है। एक्सियोस के मुताबिक अमेरिका अब किसी छोटी मोटी झड़प की नहीं बल्कि कई दिनों तक और कई हफ्तों तक चलने वाली भीषण जंग की तैयारी कर रहा है। व्हाइट हाउस का पूरा फोकस अब सिर्फ और सिर्फ हॉर्मुज को ईरान के चंगुल से छुड़ाने पर टिक गया है। साफ है कि जो परमाणु मुद्दा पिछले जंग की वजह था वो अब पीछे छूट चुका है। हॉर्मुज ही इस महायुद्ध का ग्राउंड जीरो बन गया है। ईरान इस गोल्डन वेपन से अपना कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है और अमेरिका इसे ईरान के नियंत्रण में जाने नहीं देगा। ईरान ने जिद नहीं छोड़ी और अमेरिकी आक्रमण नहीं थमे तो दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था का ठप होना और महाविनाश तय है। आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

और मुल्क पर बारूदी जंग के बाद ईरान अमेरिका में बड़ी तनातनी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा 1000 मिसाइलें ईरान के लिए लॉक एंड लोडेड, कई प्रतिबंध फिर से लगाए। 40 साल बाद प्रधानमंत्री के दौरे से न्यूजीलैंड के साथ रिश्तों को मिली रफ्तार, दोनों देशों में कई अहम समझौते। पीएम मोदी बोले 2030 तक दोगुना द्विपक्षीय कारोबार। मध्य प्रदेश के दतिया से पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने से बीजेपी में विद्रोह, सड़कों पर उतरे समर्थक, तोड़फोड़ पथराव जाम, जिलाध्यक्ष समेत कई नेताओं ने दिया इस्तीफा। बीजेपी ने एक ही दिन बदला पटना के बाकीपुर का उम्मीदवार, अभिषेक की जगह नीरज सिन्हा को टिकट। प्रशांत किशोर बोले मुकाबले से पहले घबरा गई बीजेपी। और भारतीय नौसेना के साथ जुड़ा नया योद्धा INS महेंद्र गिरी, मेक इन इंडिया स्टेल्थ तकनीक और अत्याधुनिक हथियारों से लैस युद्धपोत से समुद्र को मिली नई ताकत।

0: जिसमें कि मेरी एवरेज जो पहले जितनी आती थी उससे कम एवरेज अभी आ रही है सर।
1: माइलेज पर कितना असर दिख रहा है आपको?
2: सर 5-10% का।
1: इतना गिरा है? सरकार कह रही है कि 3-5% मैक्सिमम हो सकता है लोग जो इस पर।
2: 5-10% है सर।
1: नहीं चल रहा है कोई किसी तरह की कंप्लेन माइलेज में, इंजन में, किसी तरह की?
3: पूरी तरीके से एथेनॉल आज देश के गाड़ियों को बर्बाद कर रहा है, बाइक बर्बाद।
4: सच पर पर्दा डालने का काम तो सिर्फ नेतृत्व करता है। लॉबी से प्लांट करवा रहे, कार मेकर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे, कितना झूठ बोलो के भाई। आम आदमी परेशान।
5: पॉलिटिकल एक मुझे बदनाम करने के लिए और इथेनॉल को बदनाम करने के लिए एक प्रयास है।
6: ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, दे आर द पीपल हु सर्विस द कार्स, दे ऑल से देयर इज नो डिफिकल्टी। नाउ व्हाई दिस सडन इंटरेस्ट?

0: नमस्कार, हल्ला बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पेट्रोल में इथेनॉल का सच क्या है? आप पिछले कुछ दिनों से सुन रहे होंगे कि आपके पेट्रोल में इथेनॉल मिला हुआ है। अब देखिए क्या है ये E20 पेट्रोल, यानी 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को लेकर घमासान छिड़ा रहा है। सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा कहा कि हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसके लिए करना जरूरी है, क्योंकि हम कच्चे तेल का बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 90% जो है वो हम आयात करते हैं, बाहर के देशों से लाते हैं, हमारे पास नहीं है कच्चा तेल। ऐसे में हमें अगर हम उसमें इथेनॉल मिलाएंगे तो हमें फायदा होगा। तो सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए E20 पेट्रोल की नीति लागू की थी। वैसे तो ब्लेंडेड पेट्रोल की नीति मोदी सरकार से पहले की है, लेकिन साल 2013-14 में 1.5% ब्लेंडेड पेट्रोल के मुकाबले अब 20% ब्लेंडेड पेट्रोल यानी E20 बिकता है। लेकिन इस मसले पर विरोध पिछले कुछ दिनों में बहुत तेज हो गया है। विरोध में गाड़ी की माइलेज घटने, इंजन पर असर पड़ने जैसे तमाम दावे किए जाते हैं। इस बीच ARAI यानी ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, अब ये संस्थान क्यों जरूरी है? क्योंकि इसको सरकार ने भी पहले कोट किया था कि वो 20% एथेनॉल मिलाने को लेकर पहले साथ थी सरकार के इस E20 को रोल आउट में। लेकिन अब इसी संस्थान की एक अप्रकाशित रिपोर्ट जिनको अखबारों ने छापा है, ये अनपब्लिश्ड रिपोर्ट है, उसमें एक तरह से आप समझ लीजिए आग में घी का काम किया है। ARAI वो संस्था है जिसने E20 रोल आउट को सही ठहराया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि E20 पेट्रोल को E10 कंप्लायंट गाड़ियों, यानी मोटे तौर पर समझिए कि पुराने इंजन वाली गाड़ियों में डालने से इंजन के रबड़ वाले हिस्से जैसे होजेस, गैस्केट्स और सील्स जो है, ओरिंग्स हैं, वो खराब होते हैं, यानी एक तरह से जो सामान इस्तेमाल होता है गाड़ी में उस पर असर पड़ता है। इसीलिए आज हम हल्ला बोल में ये सवाल उठा रहे हैं कि एथेनॉल वाला पेट्रोल क्या फायदे का सौदा है या नहीं, ब्लेंडेड पेट्रोल के फायदे बनाम नुकसान में कौन कितना सच बोल रहा है, यही आज हल्ला बोल का विषय है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे चर्चा के लिए, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। गाड़ी कितना माइलेज देती है? भारत में कार मोटरसाइकिल चलाने वालों का सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा है। इस सवाल को गाड़ी बनाने वाली कंपनियों ने भी अपने विज्ञापनों में खूब भुनाया है, लेकिन अब यही सवाल राजनीति की बहस में है। वजह बना है E20 पेट्रोल, यानी पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिला हुआ गाड़ी का ईंधन। पहले सोशल मीडिया, फिर विपक्ष ने E20 पेट्रोल पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। सवाल गाड़ी की माइलेज पर है, चिंता गाड़ी के इंजन की सेहत पर है, वार पलटवार E20 लागू करने के तरीके पर है, आरोप एथेनॉल के नाम पर चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने की नीयत पर है, और पूछा ये भी जा रहा कि अगर 20% एथेनॉल मिला हुआ है तो पेट्रोल पंप पर कीमतें क्यों नहीं घटी हैं? सरकार की E20 नीति पर विपक्ष ने सबसे ज्यादा परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी पर निशाना साधने की कोशिश की है। दोनों मंत्रियों ने आरोपों और चिंताओं को खारिज किया है।
1: देखिए, देर आर 20 crore टू व्हीलर्स ऑन द रोड, देर आर 20 lakh फोर व्हीलर्स यूजिंग दैट फ्यूल ऑन द रोड, देर आर द ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, देर आर द पीपल हु सर्विस द कार्स, दे ऑल से देर इज नो डिफिकल्टी। नाउ व्हाई दिस सडन इंटरेस्ट?
2: क्या इथेनॉल से नुकसान हो रहा है सर गाड़ियों?
3: पहली बात मैं आपको एक प्रश्न पूछता, क्या आपके नजरों में, आप भी पेट्रोल गाड़ी यूज करती है, अब 20% आपके गाड़ी में भी इथेनॉल है
2: जी,
3: आपको कोई तकलीफ हुई
2: अभी तक?
3: आपके पेट्रोल की गाड़ी जिसकी इथेनॉल के कारण बिगड़ी हुई है, ऐसे दो लोगों के नाम बता सकती आप मुझे?
2: अपना पर्सनल जान पहचान के?
3: हाँ, कोई भी बताओ, जो भी देश का बताओ, कुछ भी बताओ।
2: नहीं, यूट्यूब पे वीडियोस देखे।
3: अभी मैं आपको बताता हूँ, ये पेट्रोल की गाड़ियां, इसमें जो गाड़ियां जा रही है, ये जो फ्लेक्स इंजन, इसमें 40% शेयर मारुति सुजुकी का, उनके पास एक भी कंप्लेंट नहीं है, टोयोटो के पास एक भी कंप्लेंट नहीं है, अभी कोई टाटा महिंद्रा किसी के पास कोई कंप्लेंट नहीं है। दूसरी बात, इसका इंश्योरेंस कवर है, गारंटी कंपनी दे रही है, कोई गारंटी में फर्क नहीं पड़ा।
0: E20 पेट्रोल पर शुरू हुई बहस पर पेट्रोलियम मंत्रालय फैक्ट शीट जारी कर चुका है। सरकार की सबसे बड़ी दलील है कि E20 से कच्चे तेल के आयात पर देश की निर्भरता कम होती है और किसानों की आय बढ़ती है। साथ ही E20 नीति को टेस्टिंग के बाद ही लागू किया गया है। लेकिन विपक्ष सरकार को घेरने में नहीं चूक रहा। विपक्ष के पास अखबारों में छपी ARAI की एक अप्रकाशित रिपोर्ट भी है, जिसमें माइलेज पर असर पड़ने की बात कही गई है।
4: 30 करोड़ व्हीकल्स इनका कबाड़ा हो जाएगा, 30 करोड़ व्हीकल्स का। मेरी हाथ जोड़ के विनती है मोदी जी से, जिद मत करो, मान जाओ। एक ही चीज मांग रही है जनता की, ऑप्शन दे दो।
5: पूरी तरीके से इथेनॉल आज देश के गाड़ियों को बर्बाद कर रहा है, बाइक बर्बाद हो रही है, मोटरसाइकिलें पर कंपनी के लोग, जो कंपनी की गाड़ी है, लोग उसको गालियां दे रहे हैं। पर गड़बड़ी कहां है ये सरकार, जो पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है।
6: सच पे पर्दा डालने का काम तो सिर्फ नेतृत्व करता है। लॉबी से प्लांट करवा रहे हैं, कार मेकर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। कितना झूठ बोलोगे भाई, आम आदमी परेशान है, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लीक हो गया परीक्षा में, टंकी लीक हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। वोट लाने का एक मंत्र आपने डेवलप कर लिया।
0: E20 नीति के विरोधियों का सवाल इस बात पर भी है कि उपभोक्ताओं को अपनी पसंद का ईंधन चुनने का विकल्प क्यों नहीं दिया गया। वैसे जब E20 पर सरकार को घेरा जा रहा, तब इस बात को भी खारिज नहीं किया जा सकता कि ब्लेंडेड पेट्रोल की नीति न तो नई है और न अकेले भारत में लागू की गई है। इसीलिए असली सवाल यही है कि पेट्रोल में एथेनॉल का सच क्या है। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रदीप भंडारी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभय दुबे जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं हमारे साथ। दिलीप पटेल जुड़ रहे हैं, जो कि चेयरमैन एंड MD है पटेल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के। टूटू धवन ऑटोमोबाइल विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं। मनीष कश्यप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष कश्यप के ही एक वीडियो के इर्द गिर्द ये पूरा बवाल शुरू हुआ था। वो एक एक्टिविस्ट भी हैं, इसी के साथ राजनीति से भी उनका वास्ता है। लेकिन मनीष कश्यप ने गाड़ियों में E20 के इस्तेमाल को लेकर सोशल मीडिया पर सबसे पहले वीडियो डाला और बहुत बवाल मचाया। योगेंद्र प्रताप, सीनियर एडिटर ऑटो टुडे के, भी हमारे साथ इस चर्चा में जो रहे। सबसे पहले प्रदीप भंडारी जी, आपका पक्ष जानने के लिए आ रहे हैं। अब देखिए, मनीष कश्यप जैसे लोग तो सामने डाल रहे हैं वीडियो, वो कह रहे हैं हमारी गाड़ी खराब हो रही है। और आपने भी देखा होगा किस तरह से अचानक एक जबरदस्त गुस्सा 20% एथेनॉल के पेट्रोल में मिलाए जाने को लेकर जनता में दिख रहा है। सबसे पहले आपका जवाब सुन लेते हैं कि आपका जवाब क्या है इस पर। क्या लोगों के पास ये चॉइस नहीं होना चाहिए कि वो क्या खरीदना चाहते हैं?
7: देखिए अंजना जी, देश में 20 करोड़ टू व्हीलर्स पेट्रोल से चलते हैं और करीबन 40 लाख फोर व्हीलर्स पेट्रोल से चलती हैं। हाँ। पिछले 3 सालों से भले वो 20 करोड़ ऑन एन एवरेज टू व्हीलर या 40 लाख फोर व्हीलर गाड़ियां इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से चल रही है, भले वो 15% 3 साल पहले हो गई या 19% 2 साल पहले हो गई या पिछले 1 साल से 20% हो गई। तो अगर ऑन एन एवरेज भी आप उठा के देखेंगी तो 20 करोड़ गाड़ियों में से कहीं भी कोई स्टडी ये नहीं कोट करती कि फेलियर रेट 0.00001% भी है। पॉइंट नंबर टू, ये कहना कि गाड़ी का मेंटेनेंस खराब हो जाता है, बढ़ जाता है, सब गलत है। क्योंकि अगर आप डेटा उठा के देखेंगे कि ये सिर्फ यही नहीं, ARAI का आज का ही ये चीफ का इंटरव्यू है कि ए, गाड़ी का एक्सेलरेशन बेहतर होता है, बी, गाड़ी का एंटी नॉकिंग इफेक्ट बेहतर होता है, और 3, 40% कार्बन एमिशन कम होते हैं। तो गाड़ी बेहतर होती है ना कि खराब होती है, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, अब मैं आना चाहता हूं, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इससे वाटर इंटेंसिटी क्रॉप्स की जो है ग्राउंड वाटर लेवल कम हो जाएगा। देश के अंदर लगभग 40% जो इथेनॉल प्रोड्यूस होता है वो मक्के के किसान के रेसिड्यू से प्रोड्यूस होता है। इथेनॉल के लिए अलग से किसान कोई खेती नहीं करता है, इथेनॉल रेसिड्यू से बनता है। तो मान लीजिए जो चावल सड़ रहा है FCI के गोडाउन से, उसको यूज करने के लिए इथेनॉल बनता है। मान लीजिए शुगर केन और मोलासेस का जो बचा हुआ रेसिड्यू है उससे बनता है। तो इथेनॉल के लिए अलग से कोई पानी नहीं चाहिए रहता है। तो देश के अंदर मेजोरिटी 40% इथेनॉल मक्के के किसान से होता है, जिसमें वाटर इंटेंसिटी बिल्कुल नहीं रहती, जिसका रेट 1200 से बढ़कर 2400 हो चुका है, किसानों को फायदा हुआ है। तो ओवरऑल अगर आप उठा के देखेंगी, भले वो किसान की बात करूं, मिडिल क्लास की बात करूं, इकोनॉमी की बात करूं या गाड़ी की बात करूं, ये पूरा का पूरा जो चला जा रहा है कि भाई इससे खराब होने वाला है, कहीं तथ्यात्मक नहीं है। इसीलिए जब लोग जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट की बात आई थी, 25 लोग प्रोटेस्ट पे नहीं आए थे, 10 सेकंड अपनी बात कंप्लीट करूंगा। अब इससे फायदा क्या होगा? गाड़ी को तो फायदा होगी, किसान को फायदा होगा, मिडिल क्लास को फायदा होगा, पर बड़ी बात मैं आपको बताता हूं फायदा क्या होगा। 1,90,000 करोड़ जो हमारा बिल है वो कम होगा। साथ में कोई भी गाड़ी अंजना जी जो सड़क पर आती है वो ऐसे नहीं है कि किसी ने बोल दी गाड़ी सड़क पर आ जाओ आ जाओ। 1,00,000 किलोमीटर से ज्यादा कोई भी ब्लेंडेड पेट्रोल हो, कोई भी इंजन पार्ट हो, उसकी टेस्टिंग होती है, ब्रेक टेस्टिंग होती है, कंपोनेंट टेस्टिंग होती है, मेंटेनेंस टेस्टिंग होती है, तमाम रिपोर्ट बनती है। जो रिपोर्ट को भी कोट किया जा रहा है, उस रिपोर्ट का फाइनल रिकमेंडेशन देखिए, वो फाइनल रिकमेंडेशन ये कहता है कि अप्रैल 2025 तक E20 ब्लेंडेड पेट्रोल हो जाना चाहिए। तो जो इसका विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल बात नहीं कर रहे, या फिर उनका कोई दूसरा एजेंडा हो सकता है। अगर तथ्यात्मक यहां बात करें तो ये देश के हित में, देश के मिडिल क्लास के हित में, देश का फ्यूल है।
0: ठीक है मनीष कश्यप जी, वो कह रहे हैं मिडिल क्लास के हित में है, एजेंडा है क्या आपका कोई? इसके बाद अभय जी फौरन आ रही हूं।
8: मैं इनसे कहना चाहता हूं कि किसान बिल जब आया था तब भी ये लोग यही कह रहे थे कि किसान बिल का जो विरोध कर रहे हैं वो उनका कुछ एजेंडा होगा, लेकिन किसान बिल जब इन लोगों ने वापस लिया तो बोला क्या कि मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, किसान बिल वापस ले लिया गया। जो 20% इथेनॉल की ये लोग बात कर रहे हैं, 20% इथेनॉल के वजह से गाड़ियों में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, एक तो 25-30% माइलेज कम हो रहा है, दूसरा उसका रबर पार्ट्स में प्रॉब्लम आ रहा है, तीसरा गाड़ी झटका ले रहा है इंजन के स्पार्क प्लग में, फ्यूल इंजेक्टर में, और फ्यूल सप्लाई चेन जो है पूरी तरीके से बाधित हो रहा है, चौथा जो इथेनॉल है जिसके वजह से बताया जा रहा है कि इम्पोर्ट ड्यूटी कम होगा, इम्पोर्ट ड्यूटी कम हो रहा है, तो भाई हम इथेनॉल अमेरिका से क्यों मंगा रहे हैं? हमें नहीं मंगाना चाहिए इथेनॉल अमेरिका से। और जब 30% माइलेज कम हो जाएगा गाड़ियों का, या 20% माइलेज कम हो जाएगा गाड़ियों का, तो ऐसे भी हमें पेट्रोल ज्यादा मंगाना पड़ेगा। और बाकायदा एआरआई ने माना कि भाई गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है, टोयोटा ने भी माना कि गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है, और बड़ी बड़ी ऑटो एक्सपोर्ट वाले लोग भी कह रहे हैं कि गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है। तो गाड़ी का जब माइलेज कम हो रहा है, गाड़ी की को समस्याएं हो रही है, तो भाई इस चीज को अभी इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का उतना मजबूत नहीं है कि E20 को झेल सके, अभी E10 चलने देना चाहिए था।
0: डेटा कहां से दे रहे हैं कश्यप जी, आवाज आ रही है? मनीष जी ये कहां से आप डेटा दे रहे हैं, क्योंकि मैंने भी ARAI का ही डेटा अपने हाथ में रखा है, इनका लिखा जो एग्जैक्ट लाइन है मैं पढ़ रही हूं, इट हैज ऑल्सो कंक्लूडेड दैट फ्यूल कंजम्पशन ऑफ व्हीकल्स With E20 increased 2-6% compared to E10, यानी 2-6% का इजाफा फ्यूल में हो सकता है, वो भी कुछ गाड़ियों में, ऐसा ARAI की रिपोर्ट मेरे हाथ में है। आपके पास कोई और रिपोर्ट है तो दिखा दीजिए।
8: मेरे पास, मैंने गूगल पे सर्च मारा है और वो चीजें मैं दिखा रहा हूं, पहला चीज। दूसरा चीज, ARAI मेरी गाड़ी का, मेरा जो टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस है उसका एवरेज कहता है कि 23 का एवरेज देता है, जबकि रियल लाइफ में गाड़ी जो है वो 17-18 एवरेज देता है। ARAI कहता है कि 23 का एवरेज देता है, रियल लाइफ में गाड़ी 17-18 का एवरेज देता है। भारत में कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो ARAI जितना एवरेज कहे उतना देता हो, उसे कम देता है। लेकिन अभी 20% मिक्स एथेनॉल पे गाड़ी का एवरेज 12-13 आ गया है और उससे कम आ गया है। तो ARAI अगर कह रहा है कि 3-6% अगर डाउन हो रहा है, तो भाई इतना ही बता दिया जाए कि 3-6% क्यों डाउन हो रहा है, पहला चीज। दूसरा चीज ये बता दिया जाए 20% अगर मिक्स किया गया तो पेट्रोल का रेट कम क्यों नहीं किया गया? कस्टमर को तो डबल लॉस हो रहा है, एक तो उसका एवरेज 6% डाउन हो जा रहा है, ARAI के हिसाब से 6% डाउन हो रहा है।
0: अब प्रदीप भंडारी जी,
8: 20% मिक्स किया जा रहा है तो उससे ज्यादा, ठीक है, उससे सस्ता क्यों नहीं दिया जा रहा पेट्रोल को?
0: ठीक है, और एथेनॉल वापस बाहर से क्यों ला रहे हैं?
7: अंजना जी,
0: ठीक है, तीन उनके स्पेसिफिक सवाल है, जवाब दीजिए। हाँ
7: अंजना जी, मैं पहली बात तो ये व्यक्ति का जो वीडियो है उस व्यक्ति के अंदर ऑलरेडी रिबट हो गया। अब ये कोई व्यक्ति घासलेट करके दिखाएगा इथेनॉल या एडल्ट्रेटेड पेट्रोल यूज करेगा, उसके लिए आप कह नहीं सकते कि वो E20 है। तो पहले वो वीडियो उन्होंने जो चलाया है वो पूरी फेक न्यूज हो चुकी है, फर्जी वीडियो। अब दूसरा, ये आपके यहाँ पे भी सरेआम झूठ बोल रहे हैं। मैं डिबेट के अंदर सार्वजनिक रूप से माफी मांगूंगा, अगर ARAI की रिपोर्ट कहती है 20% माइलेज कम होता है, आज का स्टेटमेंट है ARAI के चीफ राजी मिथानी, और मैं कोट करना चाहता हूं, अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन द रिडक्शन टिपिकली 2-6%, हाउएवर माइलेज डिपेंड्स ऑन। अरे भाई मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप कोई राजनीतिक शख्स नहीं है ना कोई आप इथेनॉल के एक्सपर्ट है, आप अपने बारी के अंदर बोलिए अपना, आपको टिकट में चुनाव हार चुके हो तो यहाँ पे इसका फायदा मत उठाओ। मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो, अपनी बारी में बोल लेना। अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन द रिडक्शन इज टिपिकली 2-6%, रियल वर्ल्ड माइलेज डिपेंड्स ऑन ट्रैफिक, ड्राइविंग स्टाइल, रोड कंडीशंस एंड व्हीकल मेंटेनेंस। टू से दैट इट रिड्यूसेस माइलेज इज रॉन्ग। ये आज के हिंदू बिजनेस लाइन का है। तो मैं वापस से अपने आप को करेक्ट करने के लिए तैयार हूं कि अगर एआरआई की रिपोर्ट 20% माइलेज की बात करिए, सरेआम झूठ है, वो एक्सेलरेशन बढ़ने की बात करिए, 40% कार्बन एमिशन कम की बात करिए। दूसरी चीज अंजना जी, आज नहीं आया 20% ब्लेंडेड पेट्रोल, एक साल से 20 करोड़ टू व्हीलर देश के ग्राउंड पे चल रहे हैं, कितना फेलियर रेट है बताइए? 20 करोड़ टू व्हीलर में से क्या 100 गाड़ी का फेलियर रेट ये बता सकते हैं या 50 गाड़ी का बता सकते हैं? और उसका कारण सिर्फ इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है, एक साल से इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल चल रहा है। अब इनने प्रोडक्शन की बात करी, 600 करोड़ लीटर इथेनॉल प्रोडक्शन देश का था, वो बढ़ के 1200 करोड़ लीटर होने वाला है। तो कोई बाहर से नहीं मंगाया जा रहा है, किसान का फायदा होने वाला है, किसान को 190,000 करोड़ रुपए ज्यादा मिला हुआ है। तो तथ्यात्मक बात करो, बताओ किसने कहा माइलेज कम हुआ है, बताओ कि एक्सेलरेशन कम कैसे होता है, बताओ किसान का फायदा कैसे नहीं होगा, फैक्चुअल बात करो, इधर उधर की बात सोशल मीडिया पर डाल देना।
0: ठीक है, दो तीन बातें जो बिल्कुल फैक्चुअल है वो पहले रखते हुए अभय जी आपसे सवाल पूछूंगी। वही एआरएआई जिसने E20 के रोल आउट को सपोर्ट किया था, उसकी एक अनपब्लिश रिपोर्ट कुछ अखबारों में छपी है जिसमें यह कहा गया है कि 2 से 6% माइलेज जो है वो कुछ गाड़ियों में कम हो सकती है। उसी में लिखा गया है कि जो रबर पार्ट्स हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो स्टील या मेटल के अन्य पार्ट्स हैं उन पर असर नहीं हो रहा है। अब इसको जिस तरह से सोशल मीडिया पर या जिस तरह से आक्रमण हो रहा है एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर, आपको लगता है कि वो जस्टिफाइड है? और अगर है तो अपनी दलील दीजिए।
9: बिल्कुल, मैं टेक्निकली भी बात करूंगा। एक छात्र ने मुझे अभी आते वक्त मैसेज भेजा कि वो गाड़ी में पेट्रोल डलाकर मंदिर गया था ताकि उसका पेपर अच्छा, एग्जाम अच्छी हो जाए, इधर पेपर लीक हो गया, उधर गाड़ी खराब हो गई और उधर मंदिर से चंदा चोरी हो गया। और उसने आगे लिखा है मैसेज में कि सबका मालिक एक गटपुरी महाराज, गटकरी जी और पुरी साहब दोनों ने बंटा ढार कर दिया इस देश का। अब मैं अंजना जी, ऐसे डिबेट नहीं होगी, ये फ्रस्ट्रेटेड आदमी है भाई, क्या बात करते हैं आप।
0: अंजना बोले बोले
9: अंजना जी एक अब मनीष कश्यप जी ने कहा और आपने भी कहा एवरेज कम। आप जानती हैं पेट्रोल का, 1 लीटर पेट्रोल की एनर्जी होती है 34 मेगा जूल और इथेनॉल की होती है 21 मेगा जूल, मतलब सीधे सीधे 30% का अंतर है। दूसरा बात, मनीष कश्यप जी ने कही कि मिस फायर कर रही है, झटके ले रही है गाड़ी, गाड़ी बंद हो जाती। क्यों हो जाती? क्योंकि इथेनॉल हाइड्रोस्कोपिक है, इथेनॉल एटमॉस्फेयर से भी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, कम मात्रा में हो तो इथेनॉल उसको कंटेन करके रखता है, मिक्स हो जाता है, लेकिन अधिक हो जाए तो चूंकि वाटर की डेंसिटी सबसे अधिक है तो वो सेटल हो जाता है, उसके बाद कम डेंसिटी इथेनॉल की है और सबसे कम डेंसिटी पेट्रोल की है, तो ये फेज सेपरेशन हो जाता है, तीनों अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए गाड़ी मिसफायर करती है, बंद हो जाती है। उसके बाद हरदीप पुरी जी ने कहा कि साहब वो तो रेसिंग कार्स में भी यूज होता है इथेनॉल। हाँ होता है साहब, बरसों से होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी ऑक्टेन रेटिंग 109 से 110 है, बहुत अधिक है, लेकिन उसका फ्यूल कंप्रेशन और इंजन का डिजाइन स्पेसिफिकली कन्वर्ट किया जाता है। हरदीप पुरी साहब, इस तरह कैसे नहीं होता है? ये कमिटी ने रिकमेंड किया था कि इसकी कीमत कम रखें, 1 लाख पेट्रोल पंपों पर 2023 के पहले की 17 करोड़ गाड़ियां हैं जो चल रही है। और इसी एआरएआई ने, जिसका जिक्र आप कर रही हैं, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन, वो कह रहा है कि फ्यूल होज, फ्यूल पाइप, ओरिंग, गास्केट, सील, डायफ्राम, ये सब 2023 के गाड़ियों के चेंज करने की आवश्यकता है। इंजन के लिए वो कहता है फ्यूल इंजेक्शन के लिए

0: पर भी टेस्टिंग हो चुकी थी और उसमें कोई दिक्कत नहीं पाई थी। मारुति सुजुकी ने 2,80,00,000 गाड़ियों पर टेस्टिंग करी पुरानी और साथ में 1,50,00,000 जो है और पुरानी गाड़ियों के ऊपर टेस्टिंग करी है। तो आप कह रहे हो कि जो करोड़ों गाड़ियों पे लाखों गाड़ियों पे टेस्टिंग हो चुकी है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से फर्जी है। एक फर्जी सोशल मीडिया पे वीडियो डाल दिया किसी ने अपनी पॉपुलैरिटी पाने के लिए जो करने साबित हो गया तो देश का मूड है। कुछ तो साइंटिफिक बात करो यार, कुछ तो लॉजिकल बात करो। किसानों का विरोध कर रहे हो जी, कांग्रेस किसानों का विरोध कर रही है ये कहते हुए कि किसान के फ्यूल को नहीं यूज करना चाहिए। मक्के के किसान को 2,400 रुपए क्विंटल मिला दिक्कत हो रही है, शुगर केन फार्मर को ज्यादा पैसा मिल रहा दिक्कत हो रही है, धान के किसान की बचत को फायदा हो रहा है तो दिक्कत हो रही है। कितने किसान के विरोधी
1: मनीष कश्यप पर ज्यादा हमला है।
2: बहुत छोटा
1: जल्दी
2: बहुत छोटा सा अंजना जी, इनके लिए किसान दो ही है, बाबा रामदेव और अडानी, उसके अलावा देश के नागरिक कोई किसान नहीं है। ये जो स्टडी है इंटरनेशनली अगर आप देखेंगे ना तो वो आपको आपको पता लग जाएगा जितनी बातें मैंने की है, जहां जहां इसको उपयोग किया है, जहां जहां
1: दिखाइए इथेनॉल, अन्य मेहमानों को भी दिखाइए। आज तो इथेनॉल भी कंफ्यूज होगा योगेंद्र प्रताप, इथेनॉल भी कंफ्यूज होगा कि मेरा केमिकल कॉम्पोजिशन है क्या। जब यूपीए में मेरी चर्चा हो रही थी तो क्या मेरा केमिकल कॉम्पोजिशन कुछ और था, क्या इंडिया आते आते कुछ और हो गया। लेकिन फैक्ट्स पर चर्चा करते हैं, फैक्ट्स पर क्या है फैक्ट्स इस मुद्दे को लेकर, और क्या वाकई कार्स को खतरा है, सीधी भाषा में, सरल भाषा में, जो हमारे दर्शक समझे।
3: जो कार्स जिस फ्यूल के लिए डिजाइन की गई है उसी पे चलनी चाहिए। जो E10 के लिए डिजाइन करी है वो E10 पर चलनी चाहिए, जो E20 के लिए है वो E20, जो फ्लेक्स फ्यूल के लिए है वो पूरा E85 तक चल सकती है। ब्राजील में एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ, उनका बहुत पुराना हिस्ट्री है एथेनॉल ब्लेंडिंग का, ओवर 50 इयर्स, और वो लोग डिपेंडिंग ऑन द प्राइस कि जब एथेनॉल का प्राइस कम होता है या गैसोलीन का प्राइस कम होता है पेट्रोलियम का, तो वो ब्लेंडिंग बढ़ाते रहते थे और कम करते रहते थे एथेनॉल की। उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि E25 हम यूज करेंगे, फिर एथेनॉल के प्राइसेस और कम हो गए, पेट्रोलियम के प्राइसेस और बढ़ गए, तो उन्होंने सोचा कि ठीक है इसे E25 को E30 ले जाते हैं। पर उन्होंने जो टेस्टिंग की, E25 की कार्स E30 पर नहीं चल रही थी, तो उन्होंने E25 से बढ़ा के टेस्टिंग करी तो E26 पे चली, E27 पे चली, उससे ऊपर पे नहीं चल रही थी ठीक, तो उन्होंने E27 स्टैंडर्ड सेट किया। हमारे देश में हम इससे ये सीख सकते हैं कि जब हमारा पूरा कारपूल E10 पे अडेप्टेड है तो या तो हम सब कार कंपनी से कहें कि इन सब कार्स को रीट्यून करें, इन सब कार्स के कंपोनेंट्स जो खराब होते हैं एथेनॉल से वो चेंज करें, और फिर इनको E20 पे चल राइट E20 पे चलाएं। एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, हाँ हमें एथेनॉल ब्लेंडिंग करने में फायदा है ठीक, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम होता है, हमारे इम्पोर्ट बजट्स कम होते हैं, फॉरेन करेंसी आउटगोज कम होते हैं, तो ओवरऑल इट्स अ विन सिचुएशन। बट जिस तरह से कर रहे हैं वो थोड़ा लॉजिकल और साइंटिफिक करना चाहिए। तो बस यही कहना चाहूंगा कि एक तो फ्लेक्स फ्यूल कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा है, फ्लेक्स फ्यूल कार्स लाएं, E85 E100 तक भी कर सकते हैं वो करें, उसका प्राइसिंग मार्केट फोर्सेस पे छोड़ें कि किस प्राइस पे बिकना चाहिए, तो लोग बाग डिसाइड कर सकते हैं वो E10 डालना चाहते हैं, E25 डालना चाहते हैं, E85 डालना चाहते हैं, क्योंकि वेरी क्लियरली फ्यूल एफिशिएंसी कम होती है एथेनॉल मिक्स करने से। और जो ये रेस कार्स वगैरह में कह रहे हैं कि यूज करते हैं, इट्स अ स्मॉल ब्लेंड, E10 यूज करते हैं फॉर्मूला 1 में, ऐसा नहीं है कि E85 पे चला रहे हैं, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स अलग होते हैं उसमें, रेस कार्स में यूज करने का ऑब्जेक्टिव अलग है, उससे जो बेनिफिट्स होते हैं वो अलग होते हैं। रेस कार्स को एफिशिएंसी के लिए नहीं चलाते हैं, रेस कार्स को पैसे बचाने के लिए नहीं चलाते हैं, फॉर्मूला 1 रेसिंग इज नॉट फॉर प्रूविंग एफिशिएंसी है ना। सो काफी सारी चीजें जो अभय दुबे ने कही वो भी ठीक थी, जो बीजेपी के प्रवक्ता ने कही ओवरऑल वो भी ठीक है, बट हमें फेज मैनर में करना चाहिए इतनी।
1: और सबसे बड़ी है कि आप तैयारी कीजिए कि भाई E10 की तैयारी है आपके पास, तो E10 रोल आउट कीजिए, E20 की तैयारी हो जाएगी हाँ तो फिर उस पे कीजिए। टूटू धवन जी एक सेकंड, मैं सबको पहले बोल लें एक बार, ये लोग चेहरा देखने तो आए नहीं है। टूटू धवन जी आप इसको कैसे देख रहे हैं, और आप कास और उस पर E20 के असर पर क्या कहना चाहेंगे?
4: देखिए मेरे को तो यही समझ आती है कि गवर्नमेंट की तरफ

0: से थोड़ी सी जल्दबाजी हुई, जबकि हमारे को पब्लिक को, कंज्यूमर को टेस्ट रिपोर्ट नहीं दिखाई गई और सडनली उनको कह दिया कि ये पहली अप्रैल से आपको E20 ही डलवाना पड़ेगा। जब आपको E20 ही डलवाना था तो बाकी की जो आपको उसमें जो पैसे की तब्दीली है, जो कम पैसे खर्च होते हैं एथेनॉल डालने के बाद, तो वो भी तो आपको आगे पास ऑन करने चाहिए टू द कंज्यूमर टू बी एबल टू सेटिस्फाई हिम। ऑन टॉप ऑफ दैट जो आपके पास और जो विकल्प थे पेट्रोल के, जो बगैर एथेनॉल के जो चल रहे थे ऑलरेडी, वो भी आपको रहने देने चाहिए थे जिसको नहीं इस्तेमाल करना E20, और वो ही इज वेरी हैप्पी विद स्पेंडिंग मोर मनी और हाई ऑक्टेन डालेगा, 95 ऑक्टेन डालेगा, 100 ऑक्टेन डालेगा, एट व्हाट एवर प्राइस इट इज अवेलेबल, तो आप उनके साथ रहने दीजिए। बाकी जो एथेनॉल जो आपने वाला पेट्रोल डाल रहे हैं, तो उसका जो बेनिफिट है ऑफ कॉस्टिंग, वो आपको कंज्यूमर को जरूर पास ऑन करना चाहिए टू बी एबल टू बी जस्टिफाई द फैक्ट कि आपको ये पेट्रोल सस्ता मिल रहा है। ARAI की रिपोर्ट और ICAT की रिपोर्ट एंड ऑल्सो अदर टेस्ट हाउसेज जो गवर्नमेंट के हैं उनकी तरफ से जो रिपोर्ट आती हैं, दैट शुड बी मेड पब्लिक टू बी एबल टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द कंज्यूमर। और एक बार ही कॉन्फिडेंस विन हो जाता है तो देन द चॉइस लाइज विद द कंज्यूमर हिमसेल्फ कि वो
1: ठीक है,
0: E10 या E20 वाला पेट्रोल
1: डाले
0: डालना चाहता
1: डाले
0: है या
1: जिसको भी
0: हाई
1: डालना चाहे।
0: ऑक्टेन।
1: बिल्कुल दिलीप पटेल जी, अब मैं आपके पास आ रही हूँ। आप पटेल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं और आपका पूरा पर्पस है कि हम वर्ल्ड फूड और एनर्जी इश्यूज को सॉल्व करने की। आप इसको कैसे देख रहे हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग को, E20 जो सरकार लाई है?
2: नमस्कार सबको, मैं बिहार से हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि अभी जो चल रहा है यहाँ पे सोशल मीडिया पे, उसमें मैं देख रहा हूँ 80% फेक, 90% फेक, मजाक बना लिया लोगों ने, कुछ लोगों ने चीटी तक दिखा दिया उसमें। वो चीटी दिखा रहे हैं, आप समझिए कि एक एल्कोहल को स्प्रे कर देंगे तो सारा चीटी मर जाएगा, उसमें चीटी लगा दिया लोगों ने। तो 99% तो इसमें पूरा फेक न्यूज लग रहा है, कोई भी तथ्य की बातें नहीं हो रही है। जितने भी सोशल मीडिया पे TRP के लिए हो रहा है और जो भी चीज हो रहा है, सोशल बेनिफिट क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट बेनिफिट क्या हो रहा है, इंजन को क्या लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है, किसी ने बोला 30% तक इसका वो गिर रहा है, माइलेज गिर रहा है। 30% किसका 30% गिर रहा है ये पहले क्लियर होना चाहिए। 80% उसमें पेट्रोल है, उसका 30% तो नहीं गिर रहा है। 20% इथेनॉल है, उसका 30% हो रहा है। एवरेज माइलेज जितनी भी भारत में गाड़ियां आ रही है कार की, वो 20 किलोमीटर का माइलेज का आ रहा है। अगर 20 20 किलोमीटर में से आप 80% पेट्रोल हटा दें तो 16 किलोमीटर तो उसकी आ गई, ठीक है, पेट्रोल की 16 किलोमीटर आ गए। 20% जो माइलेज है, जो वो सॉरी 4 किलोमीटर जो माइलेज है वो डिपेंडेंट है इस पे, इथेनॉल पे। वो 4% का 30% कम करेंगे आप, 4 किलोमीटर का 30%, तो आपको 1.2 किलोमीटर और 20 किलोमीटर में। तो ये पूरी समझने वाली नहीं है, ये मिथ फैला के और वो करके और मिसगाइड करके लोगों को, पब्लिक को भड़का देना, थोड़ा सा TRP ले लेना, सस्ता जिसको बोलते हैं चीप, वो तो ये सब चीज के कारण थोड़ा सा
1: पब्लिसिटी कहिए, क्योंकि सोशल मीडिया
2: अच्छी
1: से पब्लिसिटी
2: पब्लिसिटी,
1: डिसाइड हो सकती है, वहां से
2: चीप
1: टीआरपी नहीं मिलती
2: पब्लिसिटी,
1: है। लेकिन मनीष
2: चीप
1: कश्यप जी,
2: पब्लिसिटी।
1: देखिए सब घूम फिर कर आप ही पर आ रहा है, और ये सच है, कई लोगों ने फेक न्यूज फैलाई है। जिस तरह से उन्होंने चींटियां दिखा दी, मतलब इसमें जो रेसिड्यूअल शुगर्स होते हैं, जो चीनी का मात्र, वो सब हटा दिया जाता है ये सब, लेकिन ऐसे भ्रम फैलाया जा रहा है। वो सीधा कह रहे हैं कि आपने पब्लिसिटी के लिए किया है। आपका जवाब इस पर?
3: देखिए, चींटी वाला जो न्यूज था वो तो 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले से चल रहा है, और चींटी को तो मैं भी नहीं मानता हूं कि चींटी लगेगा इस पे। लेकिन ये जो पटेल जी कह रहे हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि पहले अपने गिरेबान में झांक लें और उसके बाद से दूसरे पे उंगली उठाएं। ये एनवायरमेंट को इको फ्रेंडली और भी बहुत सारी चीजें ये बातें कह रहे हैं। जहां पे एथेनॉल का प्लांट लगाया जाता है वहां के लोगों की स्थिति क्या है पहले ये बता दे। मेरे मझवलिया में एक एथेनॉल का प्लांट लगा हुआ है, वहां पे लोग कितने परेशान हैं, ग्राउंड वाटर लेवल कितना प्रदूषित हो जा रहा है। और अभी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने दिखाया भी, कहीं का एक एथेनॉल प्लांट था और वहां के लोग कितने परेशान हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ये एथेनॉल तो इको फ्रेंडली है नहीं, वर्तमान समय में जो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो। दूसरा चीज, एथेनॉल से माइलेज डाउन हो रहा है, ये देश के लोग जवाब दे रहे हैं, अलग अलग जगहों पे सोशल मीडिया पे वीडियो डाल रहे हैं। जर्मनी सबसे हाईटेक गाड़ी बनाता है, जापान सबसे रिलायबल गाड़ी बनाता है, चाइना सबसे कम दाम में सबसे अच्छा गाड़ी बनाने का दावा करता है, और अमेरिका में गाड़ी सबसे महंगा बनता है। ये चारों देश में एथेनॉल कितना परसेंट पेट्रोल में मिलाया जाता है, जरा ये बता दे। दूसरा चीज, जब 2030 में एथेनॉल 20% आने वाला था, तो उसे 2026 में क्यों लाया गया? तो ये सारी चीजें ये लोग बता दे, और 2023 के पहले की गाड़ियों का क्या होगा, ईमानदारी से ये लोग बता दे।
1: ठीक है, मिस्टर पटेल जल्दी से जवाब दे। फिर प्रदीप भंडारी जवाब देंगे।
3: चैनल पे कह रहा हूँ
2: ईवीपी 20 प्रोग्राम आने से पहले गाड़ियों को एक लिमिटेड किलोमीटर पे टेस्ट किया गया है, वो टेस्ट का रिपोर्ट भी ये लोग चाहेंगे तो 100 रुपया का एक वो बनता है, और उसपे डाउनलोड करके उनको मिल जाएगा, पूरा डेटा मिल जाएगा कि ईवीपी 20 प्रोग्राम क्या है, उसको पूरा केयरफुली कोई स्टडी करेगा, उसके बाद अगर बात करें, उससे बहस करेंगे तो दोनों को थोड़ा एक लेवल लगेगा।
1: ठीक है, प्रदीप भंडारी जी अब बॉल आपके कोर्ट में, वो सीधा सीधा कह रहे हैं मनीष कश्यप की आप लोग इसको भी वापस लेंगे।
4: देखिए, मैं वापस से तथ्यात्मक बात करूंगा। इनने जो वीडियो डाला था, ये वीडियो से तो सामने आ गया था कि इनने झूठा वीडियो डाला था। इनने खुद ने पेट्रोल के अंदर अडल्ट्रेटेड पेट्रोल को आप सामने दिखाया था, दिखाते हुए कि भाई ये E20 पेट्रोल है, जो सब सामने एक्सपोज हुआ, पूरी तरीके से झूठ हुआ। तो इन्होंने तो देश के किसान का नुकसान किया, बिहार का नुकसान किया, क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा तो बिहार के किसान को हो रहा है, क्योंकि मक्का में बिहार तो सबसे आगे टॉप मोस्ट राज्य है। तो आज बिहार के किसान को 1200 रुपए के बजाय 2400 रुपए मिल रहा है, तो पता नहीं ये जो लोग बैठे हुए इनको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा तो किसान का। दूसरा बोला गया 2030 क्यों नहीं 2000 अभी, भाई जब देश के किसान का जो पिल्फरेज है उसका प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ गया, अगर वो चीज हो गई तो उसमें दिक्कत क्या है? ये तो नीति आयोग की रिपोर्ट की फाइनल रिकमेंडेशन है कि 2025 अप्रैल तक आपको E20 करना चाहिए। तीसरी चीज अंजना जी, मैं वापस से साइंटिफिक बात करूंगा, आज नहीं आया E20 ब्लेंडेड पेट्रोल, इनफैक्ट E15 पे गाड़ी पिछले 3 साल से चल रही है। तो आज ही हम डिबेट 2026 में कर रहे हैं, मतलब 2023, 24, 25, 26 तब से लेके आपका जो पेट्रोल है वो ऑटोमेटिकली E15 ब्लेंडेड है, या E19 ब्लेंडेड है, E20 ब्लेंडेड है। मतलब पिछले 3 साल में देश पे 60 करोड़ टू व्हीलर जो है वो सड़क पर चल चुके हैं, 60 लाख से ज्यादा 4-व्हीलर इसको यूज कर चुके हैं, कहां किसी को कोई दिक्कत आई है? 0.00001% भी फेलियर रेट नहीं है। तो ये कहना कि सबकी गाड़ी खराब हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा रॉन्ग एजेंडा है, इससे हमारे देश को ना, देश के किसान को ना, मिडिल क्लास को फायदा होगा। अब ARAI की रिपोर्ट की बात करते हैं, मैं कह रहा हूं अनपब्लिश रिपोर्ट को कोई दिखा दे उसकी कोई वेरासिटी नहीं है। जो आज ऑन रिकॉर्ड पब्लिक स्टेटमेंट है वो ARAI चीफ का है, और कोई भी अंजना जी गाड़ी आती है वो कोई एक टेस्टिंग से थोड़ी जाती है, उसकी ब्रेक टेस्ट होता है, उसका क्रैश टेस्ट होता है, उसकी तमाम टेस्टिंग होती है, और वो टेस्ट की रिपोर्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मीट की जाती है, और उसके बाद उसको अप्रूवल मिलता है। तो किसी गाड़ी का अगर एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो उसकी माइलेज पे फर्क नहीं पड़ेगा, अगर किसी गाड़ी के अंदर 40% कार्बन एमिशन कम होंगे उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो यह कहना कि अलग से इंजन को बनाना पड़ेगा, यह सरेआम झूठ है। मैं वापस से कहूंगा, क्या टोयोटा, ह्युंडई, जितनी भी तमाम देश की टॉप कंपनीज हैं, क्या उनने 40 लाख 50 लाख 2-2.5 करोड़ गाड़ियों पे जब टेस्टिंग करी, जिसमें अधिकतर गाड़ी पुरानी गाड़ी है, उसके बाद ये फ्यूल को ब्लेंड किया, आज नहीं 1 साल पहले, तो क्या वो सब झूठ बोल रहे हैं? वो सब अपना खुद का नुकसान करना चाहेंगे, लाखों गाड़ी मार्केट में लाके जिससे चीज हो?
3: कोरिया की है, टोयोटा जापान की है।
4: अरे भैया सब में तुमको नहीं पता कुछ, ह्युंडई 2-व्हीलर के अंदर है। अरे भाई तुम जाके मेरे भाई तुम पहले बताओ 30% माइलेज की रिपोर्ट की वेरासिटी बताओ। इसी बात आज तक के चैनल पे तुम अपने सोचने नहीं, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ। अरे भैया तुम मेरे छोटे उम्र के हो, तुमको तुम बोलूंगा। चलो आप मनीष कश्यप जी, जरा मुझे आप बताइए, आपने जो 20% माइलेज कम की रिपोर्ट है जरा दिखाइए, किसने कोर्ट करनी, वरना माफी मांगिए। आप या तो झूठ नहीं फैला सकते, आप बताइए 20% माइलेज कम की रिपोर्ट कोर्ट करिए, किसकी आपने कोर्ट करी?
3: या मेरी गाड़ी को देश के नाम से टेस्ट कर लीजिए, मेरे पास 3 हाइब्रिड गाड़ी है।
4: गाड़ी में तुम अगर घासलेट नहीं लोगे और
3: मेरे पास 3 हाइब्रिड गाड़ी है,
4: थोड़ी E20 हो जाएगा।
3: मेरी एक गाड़ी को लेकर जाइए देश के नाम पे टेस्ट कर लीजिए, 1 महीना टेस्ट कीजिए, और उसके बाद से कह दीजिएगा मनीष कश्यप झूठा था।
1: ऐसे टीवी और ड्रामा और सोशल मीडिया वीडियो से तो तय नहीं होगा ना। ऑटो टुडे की तरफ से योगेंद्र प्रताप ने भी रखा, लेकिन फैक्ट्स रखा उन्होंने, कुछ भी सेल्फ वेरीफाइड हम चैलेंज करते हैं, 30 दिन का कर लीजिए, और ऐसे ऐसे। मेरा आपसे ये सवाल है कि अल्टीमेटली ये 30% फ्यूल एफिशिएंसी में डिक्रीज है माइलेज में, इसका आधार क्या है?
3: अरे हो रहा है, रियल आधार यही है। रियल आधार यही। अब ये लोग चैलेंज कर रहे हैं कि भाई AI ने बोला है कि 2-6% डाउन हो रहा है, लेकें रियल वर्ल्ड में 20-30% एवरेज डाउन हो रहा है।
1: योगेंद्र प्रताप, योगेंद्र प्रताप, क्या इसका कोई आधार है? 30%
5: बिल्कुल, तो एग्जैक्टली 30% या कितना, ठीक है, जैसे दिलीप पटेल ने बोला कि खाली हम लोग E10 में 10% एथेनॉल था, 20 में 20% है, बाकी तो सारा 80% है, पर इफ द कार्स आर नॉट ट्यून्ड फॉर दैट E20 देन द कार्स आर नॉट गोइंग टू रन वेल, राइट? इफ यू आर रनिंग अ E10 कार ऑन E20 एंड ब्राजील का लड़ाई, तो बहुत ही
1: पूरी लड़ाई पेट्रोल की माइलेज पर है। वो कह रहे हैं कि ARAI की अब रिपोर्ट कह रही है कि E10 के लिए जो गाड़ियां तैयार थी वो अगर E20 पर चल रही हैं तो 2-6% की डेफिशिएंसी का अनपब्लिश रिपोर्ट कोट हो रहा है, लेकिन 30% रिडक्शन माइलेज में, ये कहां से आया?
5: E10 से E20 में 30% नहीं होना चाहिए, थोड़ा कम होना चाहिए रिडक्शन, बट ओवरऑल रिडक्शन तो होगा ही। अगर गैसोलीन से आप पेट्रोल से आप एथेनॉल पे जाएंगे, रिडक्शन होगा ही। सो E85 पे तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने 80 रुपीज 82 पे बेच रहे हैं E85, एंड उस पे भी जो हम लोगों ने टेस्टिंग करी, इट डजंट मेक सेंस टू स्विच टू
4: E85।
5: हमने टेस्ट की है, हमारी मैगजीन
4: E85 इज नॉट इवन गॉन इन द टेक्निकल इवोल्यूशन।
5: E85 का पेट्रोल
4: डिस्पेंसिंग है, अरे व्हाई आर यू स्प्रेडिंग अ फेक न्यूज़? E85 रिक्वायर्स अ फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, इट इज नॉट इवन गॉन टू टेस्टिंग।
1: अच्छा, बारी बारी बारी बारी, हिंदी में गुस्से में अंग्रेजी मत ना बोले। हाँ योगेंद्र,
5: दिल्ली में पेट्रोल पंप है जो E85 डिस्पेंस कर रहा है, हमने मोटरसाइकिल पे E85 डालकर फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल पर हमने टेस्टिंग करी, और जो हमारी,
1: लेकिन वो जाहिर तौर पर योगेंद्र जी, वो जाहिर तौर पर योगेंद्र, वो फ्लेक्सी फ्यूल कार्स के लिए है, और अभी जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं उसी पर रहे तो सीमित तो ठीक होगा, क्योंकि अब E85 कोट करके अचानक से फिर ऐसा लगेगा कि E85 ही मिलेगा पेट्रोल पंप्स में, वो फ्लेक्सी फ्यूल कार्स के लिए है। लेकिन प्रदीप भंडारी जी, एक सिंपल चीज है, E10 पेट्रोल फॉर E10 रेडी कार्स, E20 पेट्रोल फॉर E20 रेडी कार्स, ये सिंपल चीज है या नहीं है? मतलब इसमें कोई कैसे मिर्च मसाला या कैसे कोई सोशल मीडिया ड्रामा कर सकता है? ये सिंपल चीज है कि क्या हमारी गाड़ियां E20 के लिए तैयार है, नहीं है, और क्या सरकार ये कह रही है कार कंपनीज को कि आप E20 के लिए तैयार कीजिए? हाँ कह रही है, तो फिर क्यों कह रही है? इसीलिए कह रही है ना, क्योंकि लॉजिक है, हम E20 रोल आउट कर दे रहे हैं और E20 के लिए रेडी नहीं है कार्स, क्या ये गलत है प्रदीप जी? सिंपल क्वेश्चन है।
4: हाँ अंजना जी, क्योंकि पिछले 3 सालों से देश में E15, E19 या E20 ब्लेंडेड पेट्रोल ऑलरेडी यूज हो रहा है। मतलब पिछले 3 साल से जितनी भी गाड़ी इस वक्त आपके मार्केट में सड़क पर चल रही है वो ऑटोमेटिकली E10 से ऊपर है। तो अगर ये इंजन कंपैटिबल नहीं होते तो फिर आपको एक मैसिव फेलियर रेट ऑफ मोर देन 10% दिखता। आज आप और मैं इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि जाकर यहाँ पे कुछ भ्रांतियां फैलाई गई है, पर गवर्नमेंट ने तो कुछ पॉलिसी चेंज किया ही नहीं है। गवर्नमेंट तो E20 पे पिछले 1 साल से, और उसके पहले E15 पे, और उसके पहले E19 पे, और उसके पहले E15 पे, तो E10 तो कब से पीछे चला गया है। हम तो पिछले 3 साल में 60 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां ऑलरेडी E20 के ऊपर हो चुकी हैं, E15 के ऊपर हो चुकी हैं। तो अगर ये कुछ दिक्कत होती इंजन के अंदर तो फिर रिपोर्ट होता, और एक स्टडी नहीं, मतलब 21 के बाद में 22, 23, 24 इतनी स्टडीज हो चुकी है, और नीति आयोग की रिपोर्ट जिसका एक पार्ट चैलेंजेस का कोट किया, उसी रिपोर्ट की रिकमेंडेशन क्या कहती है? उस रिपोर्ट की रिकमेंडेशन ये कहती है कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग April 2025 तक करना चाहिए, और इसमें हमारा कुछ नहीं है, तो देश का फ्यूल है। मतलब जितना मक्का हो गया, चावल हो गया, शुगर केन हो गया, उसका जितना भी बचा रेसिड्यू है जो कहीं वेस्टेज चले जाता था, उसको जाकर हम मार्केट के अंदर उससे इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल बना रहे हैं, जिसका पैसा किसान को मिल रहा है। तो किसान की आय बढ़ रही है, और गाड़ी का एक्सेलरेशन जब बढ़ेगा तो फिर माइलेज कैसे कम होगी? तो माइलेज एक कॉन्टेक्स्चुअल चीज है जो ट्रैफिक पे डिपेंड करेगी, सड़क पे डिपेंड करेगी, बाकी चीजों पे डिपेंड करेगी। तो मेरा वापस से निवेदन है, अगर किसी के पास 30% माइलेज की रिपोर्ट है जरा दिखाएं, मैं खुद अपने आप को जो है देखना चाहता हूं, वरना झूठ मत फैलाएं, आप देश का नुकसान कर रहे हैं।
6: अंजना जी, ये रिपोर्ट दिलवाई है इनसे। अंजना जी, कितनी शर्मनाक बात है, एआरएआई ने कहा कि आरटीआई एक्ट के सेक्शन 81D के दायरे में नहीं आती, हम ये जानकारी नहीं देंगे कि किन व्हीकल पर टेस्ट किया। ये महाशय कह रहे हैं लाखों गाड़ियों पर, 8-10-80 लाख गाड़ी बता दी इन्होंने। अरे एक गाड़ी का नंबर दिलवा दीजिए जहां पर ये टेस्ट किया आपने। हाँ। शर्मनाक बात है, योगेंद्र जी ने पूरा खुलासा कर दिया, इनका पर्दाफाश कर दिया। जो गाड़ी टेस्टिंग डिजाइन नहीं है, आज 5 करोड़ वोट मोदी जी के अकेले भंडारी जी ने कम करा दिए, 5 करोड़ वोट, बाकी तो नितिन गडकरी जी और हरदीप पुरी जी ने बंटा
4: डाला।
6: भुगत रहे एक बार जाइए सड़कों पर, कोई एक देश का उदाहरण दीजिए, देखिए घबरा जाते हैं तो बीच में बोलने लगते हैं। एक देश का, किसी एक देश का उदाहरण दीजिए, अमेरिका ने, अमेरिका, अरे साहब बहुत घबराए हुए हो, देखो आपके जैसे प्रवक्ताओं ने बीजेपी को रसातल में डाल दिया है, याद रखिएगा भुगतेंगे आप सड़कों पे। ये जो एक महोदय कह रहे थे कि आरटीआई में जानकारी चलिए दिलवाइए इनसे, कल मैं अप्लाई करता हूँ, कौन इंडस्ट्री वाले बिहार वाले थे,
4: आप देश के किसान का
6: बेशर्मी से, अरे साहब
1: पेट्रोल में हरेक पॉलिसी का दोनों पक्ष आपके सामने रखने की कोशिश की है, दोनों तरफ से प्रश्न किए हैं, सरकार का अपना एक पक्ष है और जो लोग इस पर प्रश्न उठा रहे हैं उनका भी एक पक्ष है, दोनों पक्ष आपने सुना है, फैसला करना है। लेकिन ये जरूर है कि E20 के साथ, अब जब तक E20 के लिए गाड़ियां तैयार नहीं होती है, एक प्रश्न इस पर

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
3: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: पत्रकारिता के गुर यहाँ नहीं सीखे तो क्या सीखे, नाम ही काफी है। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
3: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
4: आई एम अ वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन जिसे अकेले घूमना बहुत पसंद है। लाइक आई डोंट नीड एनीवन्स कंपनी, आई लव to just hang out by myself. Fun fact, I've never had any job in my life. मैंने सिर्फ content creation ही किया है आज तक। मेरा content creation journey start किया when I was 16. So just fresh out of school.
5: तो जब आपने ये बात अपने family में रखी होगी, family के सामने रखी होगी, तो उनका क्या reaction था? क्या मतलब YouTuber बनना है?
4: So for them to even think कि मैं post graduation नहीं करने वाली हूँ was like mind blowing to them.
6: Most embarrassing influencer moment. A beauty hack that actually works.
4: Ooh.

0: Catch up on what's hot with TikTok Radio, curated by Stingray Music. Your destination for trending hits and must-see videos. Stay in the loop one viral moment at a time. TikTok Radio, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
1: जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमान गढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था।
2: ये लड़ाई बड़ी है, आप नहीं समझ पा रहे हो, ये दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है।
3: राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच और जबरदस्त सियासी विवाद के बीच जब सीएम योगी एक बार फिर अयोध्या पहुंचे, तो विरोधियों पर उनके तेवर हमेशा की तरह ही आक्रामक दिखे। जनसभा में फिर सीएम योगी ने अयोध्या की एक और पुरानी घटना का जिक्र किया। इस बार हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज का हवाला देकर समाजवादी पार्टी पर हमला बोल दिया।
1: जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा क्या?
3: दरअसल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राम मंदिर विवाद ने यूपी के राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। सूबे की सियासत में इसका जबरदस्त असर दिख रहा है। विपक्षी दल बीजेपी को घेरने में जुटे हैं, वहीं योगी जवाबी हमलों के जरिए हिंदुत्व वाली राजनीति को धार दे रहे हैं। उधर मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी पहले ही पीडीए वाली रणनीति के जरिए चुनावी तैयारी को आगे बढ़ा रही है। अब चढ़ावा चोरी ने समाजवादी पार्टी के हमलों को नई धार दे दी है।
2: एसआईटी क्या है? लीपापोती एसआईटी किसने मनाई है? और सुनने में आया कि एसआईटी में भी सवाल खड़े हो गए हैं। एसआईटी में जो कोई सदस्य है उन पे 420 का मुकदमा है। अब बताइए, वही रहेंगे एसआईटी में? ये लड़ाई बड़ी है, आप नहीं समझ पा रहे हो, ये दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है।
3: यूपी के चुनावी रण से पहले ये विवाद बीजेपी के लिए इसलिए भी बेहद संवेदनशील है, क्योंकि अयोध्या, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकुंभ और धार्मिक पर्यटन जैसे मुद्दे पार्टी की राजनीतिक पहचान और विकास मॉडल का अहम हिस्सा रहे हैं। अब चढ़ावा विवाद सामने आने के बाद विपक्षी लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं, लिहाजा सीएम योगी न केवल विपक्ष पर जवाबी हमला बोल रहे हैं, बल्कि समाजवादी पार्टी की पीडीए वाली रणनीति पर भी काउंटर अटैक कर रहे हैं।
4: हो गया
3: राम मंदिर चढ़ावा विवाद सामने आने के बाद सीएम योगी ने फौरन ही जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई, पड़ताल तेजी से आगे बढ़ रही है और इस बीच सियासी जंग भी बढ़ती जा रही है। आज तक ब्यूरो।
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: अगर सड़क पर दौड़ती हाईटेक गाड़ी अचानक बंद हो जाए तो इसे मामूली खराबी समझने की भूल नहीं कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी के उस खतरे का इशारा हो सकता है जो धीरे धीरे गाड़ियों के स्टेयरिंग तक पहुंच चुका है। दरअसल कारों में बढ़ते डिजिटल फीचर्स के दबदबे के बीच गाड़ियों पर साइबर अटैक का खतरा भी मंडराने लगा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में हैकिंग की बढ़ती शिकायतों के बाद सरकार ने ऑटो कंपनियों और ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स को कनेक्टेड कारों और ईवीएस के सॉफ्टवेयर का साइबर ऑडिट करने के निर्देश दिए हैं। एप्पल और गूगल प्ले स्टोर से ऐसे 3 मोबाइल एप्स हटा दिए गए हैं जिनके जरिए ई व्हीकल्स को हैक किया जा रहा था। ये एप्स ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के जरिए 10 से 15 मीटर दूर से ही गाड़ियों की बैटरी बंद कर देते थे। साइबर सिक्योरिटी को लेकर मिली इस बड़ी चेतावनी के बाद गाड़ियों में मिलने वाले हाईटेक फीचर्स पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि बैट एम्बियस लॉसिकी और इपोक आई लॉन जैसे एप्स को दूर से गाड़ी बंद करने के वीडियो सामने आने के बाद बैन किया गया है और वाहन कंपनियों को बैटरी मैनेजमेंट पासवर्ड और ओटीएस सॉफ्टवेयर अपडेट्स की सुरक्षा सुधारने को कहा गया है। वहीं सड़क परिवहन मंत्रालय 1 अक्टूबर से कनेक्टेड व्हीकल्स के लिए नए साइबर सिक्योरिटी नियम लागू करने की तैयारी में है। हैकर्स की इस नई सेंधमारी ने ऑटो सेक्टर की तेज रफ्तार के बीच एक बड़ी चुनौती पेश की है, लेकिन सुरक्षा में मिली इस बड़ी चूक के बावजूद मचे हड़कंप के बीच भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री रिकॉर्ड ऊंचाई छू रही है। आंकड़ों के मुताबिक जून में कुल व्हीकल सेल्स में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हिस्सेदारी पहली बार 12% के पार पहुंच गई है। इस दौरान कुल 3,06,000 से ज्यादा ईवीएस की बिक्री हुई, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। ईवीएस के इस जबरदस्त ट्रेंड में सबसे बड़ा योगदान टू व्हीलर्स का देखने को मिल रहा है। डेटा के मुताबिक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की बिक्री में सालाना आधार पर करीब 75% की भारी बढ़त दर्ज की गई है। अकेले जून में 1,93,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बिके हैं। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक पैसेंजर और कमर्शियल गाड़ियों ने भी अपनी अब तक की सबसे बेहतर मंथली सेल्स का रिकॉर्ड बनाया है। साफ है कि आम ग्राहक बड़ी तादाद में पेट्रोल डीजल छोड़कर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ रुक कर रहे हैं, लेकिन जिस रफ्तार से भारतीय सड़कों पर कनेक्टेड फीचर्स और ईवीएस की संख्या बढ़ रही है, उसमें साइबर सुरक्षा का पुख्ता होना भी बेहद जरूरी हो चुका है, जिससे स्मार्ट गाड़ी सेफ राइड का भरोसा देती रहे। आज तक ब्यूरो।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
1: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस Chogan Perfumes, the French edition for him and her.
3: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
4: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. 2 taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
5: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
6: Get into the huddle with TuneIn. TuneIn brings you nonstop sports talk, live games, and expert analysis all in one place. From kickoff to final whistle, follow your favorite teams all season long with ESPN Radio, Talk Sport, Big 12 Radio, and more. Plus, listen to your favorite sports broadcasts on over 200 devices, so you never miss a moment of sports action with TuneIn. Stay in the game with TuneIn and start listening now.

भारतीय घरों के किचन में जब तक आलू प्याज और टमाटर का तड़का ना लगे तब तक खाने का असली स्वाद ही नहीं आता। हर आम आदमी की थाली इन तीनों खास सब्जियों के बिना अधूरी मानी जाती है, लेकिन इन दिनों देश के आम परिवारों का ये सबसे पसंदीदा स्वाद लगातार कड़वा होता जा रहा है। महंगाई का एक नया झटका सीधे जनता की रसोई पर लगा है, जिसने हर घर के बजट को पूरी तरह बिगाड़ दिया है। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की मार के बाद रोज खाई जाने वाली सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक महीने में टमाटर के औसत खुदरा दाम करीब 18% तक बढ़ चुके हैं। वहीं प्याज की कीमतों में 11% और आलू के दाम में 1.3% का उछाल आया है। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में तो टमाटर 50% तक महंगा हो गया है। दिल्ली और NCR के बाजारों में भी सब्जियों की कीमतें तेजी से ऊपर जा रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक आलू, प्याज और टमाटर आम आदमी के खर्च से जुड़े सूचकांक का 2.25% हिस्सा होते हैं। इसीलिए जब इनके दाम बढ़ते हैं तो पूरी थाली महंगी हो जाती है। आंकड़ों के मुताबिक टमाटर और LPG की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से आम थाली महंगी हो गई है, जिससे शाकाहारी थाली की कीमत में 5% तक की तेजी दर्ज की गई है और नॉनवेज थाली भी करीब 7% तक महंगी हो गई है। महंगाई के इस दौर में सबसे बड़ा सवाल है कि अचानक खाने पीने की चीजें इतनी महंगी क्यों हो गई हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह मौसम का मिजाज है, जिसने किसानों से लेकर आम खरीदारों तक सबको परेशान कर दिया है। व्यापारियों और जानकारों के मुताबिक इस साल अप्रैल से जून के बीच पड़ी भयंकर गर्मी ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। अत्यधिक तापमान की वजह से खेतों में ही टमाटर की फसल पूरी तरह झुलस गई। इसके साथ ही कई राज्यों में हुई बेमौसम बारिश की वजह से सब्जियों की पैदावार 10-20% तक कम हुई है। तेज धूप और गर्मी की वजह से ट्रकों में लोड होकर आने वाली सब्जियां रास्ते में ही जल्दी पककर खराब हो रही हैं। माल ढुलाई में आ रही इन दिक्कतों की वजह से मंडियों तक सही समय पर फ्रेश स्टॉक नहीं पहुंच पा रहा है। सप्लाई घटने और डिमांड बढ़ने से रिटेल मार्केट में आलू, प्याज और टमाटर के दाम दोगुने तक हो गए हैं। यानी भीषण गर्मी, बेमौसम बारिश और ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कतों ने मिलकर आम आदमी की रसोई का पूरा गणित बिगाड़ दिया है। आने वाले दिनों में नई फसल आने के बाद ही इन कीमतों से राहत मिलने की उम्मीद की जा सकती है। आज तक ब्यूरो।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral.
1: चालीस साल बाद प्रधानमंत्री के दौरे से न्यूजीलैंड के साथ रिश्तों को रफ्तार, कई अहम समझौते। पीएम मोदी बोले 2030 तक दोगुना द्विपक्षीय कारोबार, थोड़ी देर में भारतीयों को करेंगे संबोधित।

फिर समाजवादी पार्टी पर बोला हमला, कहा ये लोग मंदिरों पर कब्जा करवाते थे, मंदिरों के पैसे कब्रिस्तान के लिए लगते थे। अखिलेश बोले पराजय काले विपरीत बुद्धि। दतिया से नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से बीजेपी में विद्रोह, सड़कों पर उतरे समर्थक, तोड़फोड़ पथराव जाम। दिल्ली पहुंचे नरोत्तम मिश्रा, बोले लोग शांति बनाए रखें। पंजाब कांग्रेस में कलह खत्म करने के लिए प्रभारी भूपेश बघेल की चन्नी गुट के साथ बैठक, प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावड़िंग से चल रही है नाराजगी। और हॉर्मुज पर बारूदी जंग के बाद ईरान अमेरिका में बड़ी तनातनी, ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा 1000 मिसाइलें ईरान के लिए लॉक एंड लोडेड।

0: तीन देशों की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर न्यूजीलैंड पहुंचे पीएम मोदी। 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड दौरा। प्रधानमंत्री लक्सर ने किया पीएम मोदी का स्वागत। द्विपक्षीय वार्ता पर होगी चर्चा। माओरी समुदाय को किया संबोधित। न्यूजीलैंड में भी प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए उमड़ा जनसैलाब। पीएम बोले दोनों देशों के संबंध गहरे। पीएम मोदी और क्रिस्टोफर लक्सन की अहम मुलाकात। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साथ काम करने पर सहमति। ऑकलैंड में पीएम मोदी के संबोधन। कहा वेस्ट एशिया तनाव पर भारत न्यूजीलैंड चिंतित। बढ़ते तनाव को लेकर जताई चिंता। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटते ही NH44 जाम। जिलाध्यक्ष समेत कई नेताओं और पार्षदों ने इस्तीफा दिया। दिल्ली तक पहुंचेगा दतिया का विरोध। नरोत्तम समर्थकों का केंद्रीय नेतृत्व से टिकट बदलने की मांग। बीजेपी की चुप्पी बरकरार। बीजेपी में इस्तीफों की झड़ी। जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाहा समेत कई पदाधिकारी और सभी बीजेपी पार्षदों ने पद छोड़ा। दतिया में विरोध का बाजार पर असर। कई व्यापारियों ने खुद से बंद रखी दुकानें। बीजेपी कार्यालय के बाहर देर शाम तक प्रदर्शन जारी रहा। दतिया में बवाल, पथराव से बड़ा तनाव। बीजेपी उम्मीदवार के विरोध में उग्र प्रदर्शन। कई पुलिसकर्मी घायल। उपचुनाव में टिकट नहीं मिलने पर विरोध के बीच नरोत्तम मिश्रा की अपील। का शांति बनाए रखिए। पार्टी फैसले पर नाराजगी के बीच नरोत्तम मिश्रा बोले अनुशासन बनाए रखें, ऐसे नहीं जताएं विरोध। टिकट विवाद पर जीतू पटवारी का हमला। बोले बीजेपी के अंदरूनी आग से मध्य प्रदेश नहीं जलना चाहिए। चंडीगढ़ में कांग्रेस की अहम बैठक। भूपेश बघेल और चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचे। राणा गुरजीत की आवाज। चंडीगढ़ में कांग्रेस की बैठक से पहले चन्नी बोले पहले सभी से बात करेंगे, रुख आप जानते हैं। अमेरिका ईरान में तनाव के बीच ट्रंप का बड़ा बयान। बोले 1000 मिसाइलें निशाने पर लॉक और तैयार। तनाव के बीच ईरान के शक्ति प्रदर्शन। सेना को सतर्क रहने का संदेश। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। ईरान के विदेश मंत्री का अमेरिका पर निशाना। बोले समझौते का पालन सिर्फ एक तरफा नहीं हो सकता। हॉर्मुज जल डबरू बंद में हमलों के बाद अमेरिका की बड़ी कार्रवाई। ईरान पर लगाए नए प्रतिबंध। अमेरिका ने ईरान के वित्तीय नेटवर्क पर कसा शिकंजा। दुबई स्थित कारोबारी भी प्रतिबंधित। नीट यूजी 2026 पेपर लीक केस में सभी 13 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 24 जुलाई तक बढ़ी। राउत एवेन्यू कोर्ट का आदेश। नीट पेपर लीक मामले के 13 आरोपित फिलहाल जेल में रहेंगे। सीबीआई ने कोर्ट से कहा नीट पेपर लीक केस की जांच जारी। 2 से 3 और गिरफ्तारियां संभव। और आइए अब आपको सीधे न्यूजीलैंड लिए चलते हैं। भारतीय लोगों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं जो उनका जोरदार स्वागत कर रहे हैं। ये वो तस्वीर है।
1: And India national anthem.

Ladies and gentlemen, please take your seats.

नमस्ते। की ओरा न्यूजीलैंड। हम भारत के लोग सुनते आए थे 20 साल के बाद, लेकिन आज 40 साल के बाद कोई भारतीय पीएम न्यूजीलैंड की धरती पर आया है। ये मेरा सौभाग्य है। मैं न्यूजीलैंड के सभी निवासियों के लिए, आप सभी लोगों के लिए 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आया हूं। साथियों, प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है, लेकिन 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहां न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था। और उस समय मुझे किसी ने गिफ्ट में 3 चीजें दी थी जो मैं वापस इंडिया लेकर के गया था। एक ये मफलर, एक कैप और एक दस्ताना, क्योंकि ठंड का मौसम था। और उसमें से एक चीज मैं अभी यहां इस

कार्यक्रम में भी लेकर आया हूं। ये मफलर जो आप देख रहे हैं, ये 25-30 साल पहले मुझे न्यूजीलैंड के एक साथी ने दिया था। इतने साल में मैंने कई बार इसका उपयोग किया और आज भी इसे बहुत संभाल करके रखा है। जैसे आपके प्यार को संभाल के रखता हूं, इस बार जब मेरा यहां आने का कार्यक्रम बना तो मैं विशेष तौर पर इसे अपने साथ लेकर के आया, क्योंकि खबर थी ठंड ज्यादा है। साथियों, भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। इस रिश्ते को न्यूजीलैंड की एक सुंदर परंपरा अच्छे से डिफाइन करती है। यहां सदियों से एक शब्द लोगों को जोड़ता आया है, वाका। वाका सिर्फ एक नाव का नाम नहीं है, वाका हमारी शेयर्ड जर्नी की प्रतीक है। और आज भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे, हम। साथियों, मुझे इस यात्रा की सफलता पर पूरा भरोसा है। जानते हैं क्यों?

क्योंकि इसके असली नाविक आप सभी हैं। ऑकलैंड से वेलिंगटन तक, क्राइस्ट चर्च से क्वींसटाउन तक, न्यूजीलैंड के कोने कोने में फैला भारतीय समुदाय इस शेयर्ड जर्नी का एक नाविक है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं अपने मित्र प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन, न्यूजीलैंड सरकार के सभी साथियों और यहां लेबर पार्टी के मेंबर्स का भी मैं अभिनंदन करूंगा। ये दिखाता है कि भारत न्यूजीलैंड रिश्तों को कितना बड़ा बाईपार्टिजन सपोर्ट है। इससे ये भी पता चलता है कि कीवी इंडियन कम्युनिटी की अचीवमेंट्स, आपका कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा है। आप यहां आए, कीवी इंडियन कम्युनिटी के उत्सव का हिस्सा बने, इससे ये सेलिब्रेशन और वाइब्रेंट हो गया है। आपने जिस गर्मजोशी से, जिस स्नेह और उत्साह से आपने हम सभी का स्वागत किया है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। वैसे एक्सलेंसी, कीवी इंडियन कम्युनिटी में भी सुपर हिटर है कि नहीं है? सुपर हिट है ना, आपने अभी दिखा दिया। भारत के इंडिपेंडेंस डे पर, स्वतंत्रता दिवस पर, आपने क्रिस हिपकिंस के साथ मिलकर दमादम मस्त कालंदर गाने पर जो डांस किया, वो काफी वायरल हुआ। आपके वो मुंह कीवी इंडियन के दिलों में छप गए हैं। साथियों, न्यूजीलैंड वाकई एक अद्भुत देश है। यहां पीस है, प्रॉस्पेरिटी है, नेचर है, कल्चर है, और न्यूजीलैंड की असली ताकत यहां के स्थानीय लोग हैं। न्यूजीलैंड के लोगों ने दिखाया है कि कोई देश जब एक जुनून, एक जज्बे के साथ आगे बढ़ता है तो वो दुनिया को इंस्पायर करता है। यहां जो कीवी इंडियन कम्युनिटी है, आप सभी को भी न्यूजीलैंड के दिलदार लोगों ने बहुत प्रेम से अपनाया है। अपनी टीम का हिस्सा बनाया है। उन्होंने आपके टैलेंट, आपके विजन पर ट्रस्ट किया है। और आज देखिए, न्यूजीलैंड की इकोनॉमी हो,
यहां की सोसाइटी हो, कीवी इंडियंस नए नए रंग भर रहे हैं। न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर, एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं। जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं। जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, ईश सोडी और एजाज पटेल जैसे टैलेंट को अवसर मिल सकता है। न्यूजीलैंड वो जगह है जहां की सड़कों में भी भारतीय शहरों को सम्मान दिया गया है। कहीं खंडाला है वो सिनेमा वाला खंडाला नहीं, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, कलकत्ता स्ट्रीट है, दिल्ली क्रिसेंट, अमृतसर स्ट्रीट, ऐसे कितने ही नाम हैं। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं। जैसे मुझे बताया गया है कि किसी भी विषय पर बात शुरू कीजिए, थोड़ी ही देर में बात मौसम पर पहुंच ही जाती है।

साथियों, मैं न्यूजीलैंड की लीडरशिप से भी जब भी मिला हूं, वो आप सभी की बहुत प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा आपकी होती है और माथा मेरा ऊंचा होता है।

साथियों, आप सभी जानते हैं कि भारत हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता है जो आज अपनी प्राचीनता को सहजते हुए आधुनिकता को स्वीकार कर रहा है। हर युग में, हर दौर में भारत ने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है और इसका कारण है हमारी सीखने की ललक। भारत सबसे सीखता है। हमारे लिए सामने वाले देश की जनसंख्या नहीं, जन कल्याण की भावना मायने रखती है। और इसलिए हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था। आज हम देखते हैं कि न्यूजीलैंड की सोसाइटी में विमेन बहुत बड़े पैमाने में कंट्रीब्यूट कर रही है। भारत भी आज विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है। साथियों, रूरल इकोनॉमी कैसे किसी देश की तकदीर बदल सकती है, ये न्यूजीलैंड ने करके दिखाया है। न्यूजीलैंड की ताकत एग्रीकल्चर के इर्द गिर्द बनाया गया एक एफिशिएंट इकोसिस्टम है। ट्रेसेबिलिटी हो, फूड सेफ्टी हो, कंप्लायंस सिस्टम हो, ये बहुत बड़ी प्रेरणा है। ये भारत जैसे छोटे किसानों वाले बड़े एग्रीकल्चर नेशन के लिए बहुत बड़ी सीख है। न्यूजीलैंड ने जेस्प्री मॉडल से दिखाया है कि छोटे किसान भी बाजार के एक बड़े ब्रांड बन सकते हैं। न्यूजीलैंड की क्लाइमेट स्मार्ट प्रिसीजन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में भी हमारे लिए सीखने के बहुत कुछ है। साथियों, यहां के मानुका हनी को लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। जैसे यहां हनी ट्रेडिशन और टेस्ट के अलावा हेल्थ एंड वेलनेस से जुड़ा है, वैसे ही भारत के आयुर्वेद में भी हनी का बहुत बड़ा महत्व है। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि भारत में भी हम बी कीपिंग को लेकर एक मिशन चला रहे हैं। इससे भारत में हनी प्रोडक्शन में काफी बढ़ोतरी हुई है और आजकल तो हिमालय की ऊंचाइयों से जो हनी आता है वो गोल्ड का डायमंड बनता जा रहा है। मैं समझता हूं न्यूजीलैंड से हम हनी प्रोडक्शन और बढ़ाने के बारे में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। साथियों, इस साल
इंडिया न्यूजीलैंड स्पोर्टिंग रिलेशंस को एक साल पूरे हो रहे हैं। 100 साल पहले, याद रखना और गर्व भी करना, 100 साल पहले हमारी हॉकी टीम न्यूजीलैंड खेलने आई थी और उस टूर में मेजर ध्यानचंद के शानदार परफॉर्मेंस की हर तरफ चर्चा हो रही थी। उनकी हॉकी ने न्यूजीलैंड के लोगों को भी, उनका भी दिल जीत लिया था। साथियों, कंटेंट क्रिएटर्स की भाषा में कहूं तो ये कॉलेब का जमाना है। न्यूजीलैंड और भारत स्पोर्ट्स में भी बहुत ही शानदार कॉलेब कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण रग्बी का है, मुझे अभी भी बताया गया है कि कुछ देर पहले ही ऑल ब्लैक्स ने रग्बी के मैच में शानदार जीत दर्ज की है। भारत रग्बी में न्यूजीलैंड से सीखना चाहता है। भारत भी रग्बी में आगे आए, इसके लिए हमें कोच चाहिए, एक्सपर्ट्स चाहिए। इसमें न्यूजीलैंड हमारी बहुत मदद कर सकता है। हाल ही में भुवनेश्वर में न्यूजीलैंड रग्बी और रग्बी इंडिया के कोचिंग प्रोग्राम को मैं एक अच्छी शुरुआत मानता हूं। साथियों, आज यहां आने से पहले मैं यहां न्यूजीलैंड के एक स्पोर्ट्स स्टार्टअप इवेंट में गया था। स्पोर्ट्स टेक में हो रहे इनोवेशंस ने, नए आइडियाज ने वाकई मुझे प्रभावित किया। मुझे विश्वास है कि हम स्पोर्ट्स टेक में साथ मिलकर काफी कुछ कर सकते हैं। भारत और न्यूजीलैंड का फ्यूचर आपस में जुड़ा हुआ है। इसका एक उदाहरण स्पेस सेक्टर भी है। भारत का चंद्रयान जब मून के साउथ पोल पर लैंड किया, पूरा न्यूजीलैंड नाच रहा था उस दिन। और उस दिन हम सबको गर्व हुआ। अब आपको मैं गर्व की एक और बात बताता हूं। आपको गर्व दिलाने में, इस सक्सेस में न्यूजीलैंड की टेक्नोलॉजी का भी योगदान रहा है। न्यूजीलैंड की स्पेस कंपनी ने कई अवसरों पर हमारे साथ मिलकर काम किया है। हम इस सहयोग को और आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। साथियों, स्पेस सेक्टर ये बताने के लिए काफी है कि भारत और न्यूजीलैंड की इकोनॉमी एक दूसरे को कितना कुछ दे सकती है। यही हमारे ट्रेड एग्रीमेंट की भी स्पिरिट है। ये ट्रेड एग्रीमेंट विकसित भारत की तरफ हमारी यात्रा को गति देगा। भारत और न्यूजीलैंड दोनों के बिजनेस को नए अवसर देगा। साथियों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक और बहुत बड़ी समानता है। ये समानता हमारे इंडिजिनस कल्चर की है। इंडिजिनस कल्चर को सेलिब्रेट करने, उसको संरक्षण देने की है। और आज मैं माओरी समाज को विशेष रूप से याद करना चाहता हूं।
मैंने हाका को केवल एक परफॉर्मेंस के रूप में ही नहीं देखा, मैंने हाका में एक समाज की आत्मा देखी है। उसमें साहस है, आत्मसम्मान है, अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा है और पूरे समुदाय की सामूहिक शक्ति का एक एहसास है। साथियों, माओरी संस्कृति में एक बहुत सुंदर शब्द है, मना कितांगा, मना कितांगा। इसका मतलब है सम्मान देना, अपनापन देना और पूरे मन से उसकी देखभाल करना। भारत में भी हम कहते हैं अतिथि देवो भव। शब्द अलग है, परिवेश अलग है, पहनाव अलग है, भाषाएं अलग है, लेकिन भावना बिल्कुल एक ही है। ऐसे ही माओरी संस्कृति में परिवार के लिए एक सुंदर शब्द है, फानो, यानी परिवार। इसमें कई पीढ़ियां होती हैं, रिश्ते होते हैं, पूरा समुदाय होता है। भारत भी परिवार को केवल एक सामाजिक व्यवस्था नहीं मानता, हमारे लिए फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है। साथियों, माओरी परंपरा का एक और सुंदर विचार है, काइत्याक कितांगा। काइत्याक कितांगा यह हमें सिखाती है कि हम प्रकृति के मालिक नहीं है, हम उसके संरक्षक हैं। भारत में भी कहा गया है, माता भूमि ही पुत्र हम पृथ्वीया। पृथ्वी हमारी माता है। इसी सोच को आधार बनाते हुए हम भारत में धरती मां के संरक्षण के लिए एक पेड़ मां के नाम, प्राकृतिक खेती मिशन जैसे अनेकों अभियान चला रहे हैं। साथियों, मैं जानता हूं हजारों किलोमीटर दूर रहते हुए भी आपके दिल में के किसी न किसी कोने में दिन भर की प्रक्रिया में कहीं न कहीं हिंदुस्तान झलकता ही रहता है, हिंदुस्तान बसता ही है। सही है कि नहीं है? शरीर यहां होगा, मन और इसलिए आप भारत की हर उपलब्धि पर भी नजर रखते हैं और जब क्रिकेट स्टेडियम में बैठकर के देखते हैं तो बहुत सी चीजें देखने की छूट जाती हैं, लेकिन घर में टीवी पर बैठकर के जब देखते हैं तो हर बारीकी का पता चलता है। वैसा ही आपको भी भारत की हर बारीकी का पता चलता है। और यही बात हमें सबसे खास बनाती है। भारतीय देश से बाहर जिस देश में रहते हैं वहां
उस देश की प्रगति की में पूरी तरह मदद करते हैं और अपने देश की विकास की भी जानकारी रखते हैं। साथियों, हम जितना प्यार जन्मभूमि को करते हैं उतना ही समर्पण कर्मभूमि को भी करते हैं। साथियों, वैश्विक चुनौतियों के बीच आज भारत जिस तेजी से विकास कर रहा है वो अभूतपूर्व है। मैं आपके सामने देश की उपलब्धियों का, भारत के सामर्थ्य का एक गुलदस्ता प्रस्तुत करूंगा। ये गुलदस्ता मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। और मैं पक्का मानता हूं इस गुलदस्ते में आपकी पसंद का कोई न कोई फूल जरूर होगा जो आपको सुंदर भी लगेगा और गर्व से भर भी देगा। तो आप तैयार हैं? गुलदस्ता पेश करूं? अब आपको ढूंढना है आपका फूल कहां है उसमें। या तो सारे के सारे फूल आपके हैं। साथियों, भारत आज दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है। भारत मोबाइल डेटा कंजम्पशन में दुनिया के अग्रणी देशों में है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम मार्केट है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वीट प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश प्रोड्यूसर है। साथियों, इतना ही नहीं, आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। भारत बहुत जल्द दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर बनने जा रहा है। सोलर एनर्जी कैपेसिटी में भी भारत दुनिया के बड़े देशों में शामिल हो चुका है। साथियों, आज का भारत दुनिया को विकास के नए मॉडल भी दे रहा है। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म का सफल संचालन कर रहा है। आज भारत में यूपीआई के माध्यम से हर महीने अरबों डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आज दुनिया के दर्जनों देश
दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी और स्पेस इकोनॉमी में भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। साथियों, ये उस नए भारत की तस्वीर है जो दिखाती है कि कैसे भारत न्यूजीलैंड की तरह की इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में बैलेंस बनाकर चल रहा है। साथियों, भारत की इस ग्रोथ का एक और पहलू भी है। ये पहलू हमारी विरासत है, हमारी हेरिटेज है। भारत जितना महत्व अपनी इकोनॉमी और इकोलॉजी को देता है, उतना ही फोकस अपनी हेरिटेज पर भी करता है। साथियों, भारत कैसे काम करता है, इसका एक उदाहरण श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पवित्र स्वरूप है। जब अफगानिस्तान में संकट आया तो हम गुरु ग्रंथ साहब के पवित्र स्वरूपों को पूरे मान के साथ भारत लेकर आए। साथियों, हमारे महान सिख गुरुओं ने पूरी मानवता को सेवा, साहस, समानता और करुणा का संदेश दिया है। दुनिया के हर हिस्से में गुरुद्वारे सेवा के सेंटर है। कोई भूखा आए उसे भोजन मिलता है, कोई संकट में है उसे सहारा मिलता है। इसी माहौल में सिख कम्युनिटी के कुछ भाइयों और बहनों ने हमें बताया था कि श्री हरमंदिर साहब में सेवा के लिए FCRA से जुड़ी कुछ परेशानियां आ रही है। हमने उस समस्या का तुरंत समाधान किया। साथियों, आप सभी श्री हेमकुंड साहब जी के बारे में भी जानते हैं। हिमालय की ऊंचाइयों पर है, साल का लंबा समय बर्फ की चोटियों से घिरा रहता है। वहां अगर कोई दर्शन करने के लिए जाना चाहे तो बड़ा कठिन मार्ग है, बहुत कम लोग जा पाते हैं। खास करके हमारे सिख भाई बहन वहां यात्रा के लिए जाते हैं। वहां दर्शन के लिए जाने में खास करके हमारे बुजुर्गों को, हमारे सिख भाई बहनों को सहूलियत हो, इसलिए सरकार हेमकुंड साहब तक रोपवे भी बनवा रही है। साथियों, हमारी ही सरकार ने साहिब जादों के शौर्य और बलिदान की अमर स्मृति में 26 दिसंबर को, प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को भारत में वीर बाल दिवस मनाना प्रारंभ किया है। आज यह दिवस पूरे देश के लिए प्रेरणा का पर्व बन चुका है। आज केरलम से लेकर असम तक बच्चा बच्चा भी चारों साहिबजादों और माता गुजरी के बलिदान के बारे में जानने लगा है। वीर बाल दिवस ने भारत के अनगिनत बच्चों के मन में, युवाओं के हृदय में अटूट साहस का संचार किया है।
साथियों, मैं आपसे पवित्र जोड़े साहब की भी बात आज करना चाहता हूं। मेरी सरकार में मेरे एक साथी हैं श्रीमान हरदीप पुरी जी। पुरी परिवार के पूर्वज श्री गुरु गोविंद सिंह जी के सेवादार थे। हरदीप पुरी जी ने मुझे यह बताया था कि उनके परिवार ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी और माता साहिब कौर जी के जोड़े साहब 300 साल से संजो के रखे हैं। बंटवारे के समय पुरी साहब के परिवार ने, उनके पूर्वजों ने उन्हें सुरक्षित दिल्ली ले आए। पवित्र जोड़े साहब को उनका परिवार सिख संगत को सौंपना चाहता था, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इनके दर्शन कर सके। फिर हमने एक समिति बनाई जो सिख परंपराओं को जानते हैं, जानकारों की हमने एडवाइज ली और हमने निर्णय लिया कि इन पवित्र जोड़े साहब को वहां ले जाया जाए जहां श्री गुरु गोविंद सिंह जी के चरण पहली बार पावन भूमि पर आए, जहां उनका जन्म हुआ, यानी हमारे श्री पटना साहिब। मुझे बहुत खुशी है कि अब ये पवित्र जोड़े साहब पटना साहब की पावन भूमि पर है और ये मेरा सौभाग्य है कि उस पवित्र अवसर का मुझे साक्षी बनने का, वहां मौजूद रहने का सौभाग्य मिला था। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि जब भी भारत जाएं, पटना साहिब में उनके दर्शन जरूर करें। साथियों, आज मैं यहां से बहुत सारा विश्वास, बहुत सारा प्यार और बहुत सारी स्मृतियां लेकर जा रहा हूं और मैं आपसे ये भी कहूंगा, इस बार भारतीय पीएम को न्यूजीलैंड आने में 40 साल लगे हैं, लेकिन अब इतना लंबा इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। अब 40 साल नहीं लगेंगे, ये मोदी की गारंटी है।

0: अवधि की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, मैं आज आपसे एक आग्रह भी करना चाहता हूं, करूं? हाँ कहने में क्या जाता है। हमने कुछ समय पहले हमारी इंडियन डायस्पोरा के बच्चों के लिए एक नया प्रयोग किया है। हमारे बच्चे भारत को समझे और भारत की विविधता की बात दुनिया तक पहुंचे, इसके लिए हमने भारत को जानो क्विज इसकी शुरुआत की है। अभी इसका कर्टन रेजरी हुआ है और हमारे साथियों ने इसमें ही जिस एनर्जी से पार्टिसिपेट किया है, मैं वही देखकर बहुत प्रभावित हूं। अब हम इस इवेंट के 6th एडिशन को और हाईटेक बना रहे हैं। बहुत सारे इवेंट्स इस बार ऐप के माध्यम से होने वाले हैं। मेरा आग्रह है, यहां जितने भी युवा साथी हैं वे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, भारत को जाने और भारत की विरासत को न्यूजीलैंड के लोगों के साथ जोड़ें। साथियों, मैं शानदार फ्यूचर सामने देख रहा हूं। जिसमें विकसित भारत की रोशनी भी है और न्यूजीलैंड की प्रॉस्पेरिटी भी है। इसी विश्वास के साथ आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। प्राइम मिनिस्टर लक्सन और उनकी टीम का आभार, न्यूजीलैंड की जनता का धन्यवाद। एक बार मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे। थैंक यू कियोरा।
1: टू जॉइन श्री नरेंद्र मोदी जी ऑन स्टेज फॉर फाइनल गुड बाय। Christopher Luxon, everybody. Mataki!
2: मोदी की ये जो गूंज आप सुन रहे थे ये न्यूजीलैंड के ऑकलैंड से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन मौजूद थे। और इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया कि भारत और न्यूजीलैंड एक साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाते हुए आगे बढ़ते हुए कितनी अहम साझेदारी निभा सकते हैं। भारत की खूबियों के बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को बताया कि आज भारत कैसे अपने लक्ष्य को हासिल कर रहा है। हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ गई। आज भारतीय नौसेना के बेड़े में आईएनएस महेंद्रगिरी शामिल हो गया। आईएनएस महेंद्रगिरी पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बना स्टेल्थ युद्धपोत है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की सोच को मजबूती देने वाला युद्धपोत आधुनिक तकनीक से लैस है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पोत को आज नौसेना के हवाले किया। आईएनएस महेंद्रगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किया गया सातवां और आखिरी स्टेल्थ फ्रिगेट है। इस खास मौके पर नौसेना के नए प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने आईएनएस महेंद्रगिरी को लेकर आज तक संवाददाता मंजीत नेगी से एक्सक्लूसिव बात की और इस सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत में आईएनएस महेंद्रगिरी की खासियत भी बताई।
3: समुद्री मोर्चे पर बढ़ती चुनौतियों के बीच भारतीय नौसेना की मारक क्षमता लगातार बढ़ रही है। भारतीय नौसेना अपने बेड़े में नए नए युद्धपोत शामिल कर रही है। विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के बेड़े में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन की मौजूदगी में आईएनएस महेंद्रगिरी को शामिल किया है। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि लगभग हर महीने भारतीय नौसेना के बेड़े में एक नया युद्धपोत शामिल हो रहा है, आज आईएनएस महेंद्रगिरी शामिल हुआ है, किस तरह से आप देखते हैं कि भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी?
4: देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय नौसेना के जो कैपेबिलिटी एनहांसमेंट प्लान है वो हमारे मैरिटाइम कैपेबिलिटीज पर्सपेक्टिव प्लान के अनुसार है। जो युद्धपोत आजकल में कमीशन हो रहे हैं उनके काम बहुत बहुत साल पहले शुरू हुए हैं और जो हमारे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लानिंग के अनुसार ही इनका यू नो प्रोडक्शन हो रहा है। अभी आपको सभी को पता है कि जो हमारे सुरक्षा का वातावरण है वो उतना अनुकूल नहीं है जितना कि हम चाहते हैं। द जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट इज अनप्रेडिक्टेबल, अनसर्टेन एंड वोलेटाइल। इसलिए हमको अपनी क्षमता हमेशा ही लगातार बढ़ाते रहना चाहिए। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा देश कह रहा है और उसके अनुसार हमने जो लॉन्ग टर्म प्लान बनाया है उसके तहत काफी हमारे प्रोग्राम्स अभी फ्रूशन को देख रहे हैं। उसमें एक उस श्रृंखला में आज महेंद्रगिरी हमारे फ्लीट में सम्मिलित हुआ है, हमें बहुत खुशी है। और आईएनएस महेंद्रगिरी एक बहुत ही प्लेटफॉर्म, बहुत ही पावरफुल प्रोजेक्ट 17 अल्फा के गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट एक है और हमारे जो जितने भी युद्ध की क्षमता है उसमें बहुत सारा कैपेबिलिटी ऐड करेगा।
3: कुछ समय पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी तीन अलग अलग क्लास के युद्धपोत शामिल किए थे। आत्मनिर्भरता पर काफी जोर दिया जा रहा है, किस तरह से आप देख रहे हैं? आपने खुद कहा और जिस तरह से हम देख रहे हैं इस वक्त दुनिया भर में खासतौर से युद्ध का माहौल है, उसमें किस तरह से आप अपनी तैयारियों को मजबूत बना रहे हैं?
4: देखिए, आपने दुनिया भर में जो युद्ध का जो वातावरण बना है उसका जिक्र आपने किया है। वो सबसे पहले जो सीख हमको मिलती है जो वातावरण से वो ये है कि हमको आत्मनिर्भर रहना, उसमें कोई दो राय है नहीं। इसमें कोई शक किसी को रहना नहीं चाहिए कि भारतीय नौसेना एक आत्मनिर्भर नेवी है और यही हमारा हमेशा ही प्रयास रहेगा कि जितना हो सकता है हम आत्मनिर्भर बने। हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं लगातार हमारे सब सहयोग कर रहे हैं और क्योंकि आजकल के जमाने में हम देख रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर के इंडस्ट्री जो है और प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री जो है दोनों साथ में मिलकर मिलिट्री प्रोडक्शन के लिए काफी उन्होंने दिलचस्पी दिखाए हैं और इससे हम बहुत खुश हैं और हम कहते हैं कि आत्मनिर्भर फोर्सेस हमको बनना चाहिए। पिछले महीने में जो ट्राई कमीशन हुआ था माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कोलकाता में, ये तीन शिप्स बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और उन्हें थ्री वेरी वैल्यूएबल एडिशंस टू द फ्लीट के रूप में वो साबित होंगे और वो भी हमारे फ्लीट में सम्मिलित हुए, उससे भी हम बहुत खुश हैं।
3: एक सवाल सर, आपने हाल में ही नौसेना की कमान संभाली, इस वक्त जो समुद्री मोर्चे की चुनौतियां हैं और आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी नौसेना प्रमुख के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान?
4: मेरे कार्यकाल के दौरान मैंने चार प्राथमिकताएं मैंने ऑलरेडी मैंने कह दिया लोगों से। सबसे पहले जो हमारे ऑपरेशन रेडीनेस, उसको हमेशा ही एक ऊंचा लेवल पे रखें, क्योंकि आप हमारे जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल एंड अनसर्टेन है। तो एज एन इंश्योरेंस अगेंस्ट दैट अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी, द इंडियन नेवी विल मेंटेन अ हाई लेवल ऑफ ऑपरेशन रेडीनेस एंड बीइंग ऑपरेशनली रेडी एंड ऑपरेशनली स्ट्रांग एंड कॉम्बैट इफेक्टिव इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी। ये मैंने बता दिया, वो मेरी पहली प्राथमिकता है। दूसरे जो हमारे कैपेबिलिटी एनहांसमेंट प्लान है, जो इंडियन नेवी सेट है एक वेरी एम्बिशियस कैपेबिलिटी एनहांसमेंट प्लान में, उसको मैं लगातार जो मेरे से हो सकता है मैं उसके लिए इम्पेटस देता रहूंगा और हमेशा मेरा ध्यान यही रहेगा कि आने वाले दिनों में कितना कैपेबिलिटी और मैं जोड़ सकता हूं नेवी के लिए। ये मेरी दूसरी प्राथमिकता होगी। तीसरा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सनल एंड ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ऑफ आर यू नो, बिकॉज जो हमारा सिक्योरिटी एनवायरमेंट थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा है, सो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज माई थर्ड प्राथमिकता, जो मैंने अपने टीम मेट्स को बताया है। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट मेरी प्राथमिकता है द वेलनेस एंड द वेल बींग ऑफ द मैन एंड द वुमन हु वर्क्स इन द इंडियन नेवी। मैं मानता हूं कि यू नो दुनिया भर में जहां भी आप जाके ढूंढेंगे, जो इंडियन आर्म फोर्सेज, इंडियन डिफेंस फोर्सेज में जो यू नो मैन एंड वुमेन काम करते हैं, वैसे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इन दियर प्रोफेशनलिज्म, इन दियर डेडिकेशन, इन द लॉयल्टी, द डिवोशन टू द ड्यूटी। तो जहां मैंने मुझे यू नो गुड फॉर्चून मिला कि मैं दुनिया के काफी आर्म फोर्सेज वालों के साथ मैंने यू नो इंटरेक्शन किए हैं, कहीं भी मेरे को ऐसे वाले लॉयल प्रोफेशनली साउंड प्रोफेशनल्स कहीं भी नहीं मिले। मैं उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा गर्व करता हूं और मेरे सबसे इम्पोर्टेंट प्राथमिकता उनके वेलफेयर वेलनेस और द प्रोफेशनल परफॉर्मेंस, उनके पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ पे रहेगा।
2: एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, अयोध्या के राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी को लेकर पुलिस की जांच तेज है। अब खबर है कि दो और आरोपियों राम शंकर यादव और टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव से पुलिस पूछताछ करेगी और जांच को आगे बढ़ाएगी। उधर राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में इस तरह की घटना हम सब अपने में छोटा महसूस करते हैं। यह भी कहा उन्होंने कि व्यवस्था में सुधार होगा। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, उधर सवालों में घिरे गोपाल राव ने निर्मोही अखाड़ा पहुंचकर आज ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास से मुलाकात की। दोनों के बीच बंद कमरे में काफी देर तक बात हुई। सूत्र बता रहे हैं कि बैठक में ट्रस्ट से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। इस मुलाकात को ट्रस्ट के भीतर चल रहे विवादों के बीच डैमेज कंट्रोल की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि बैठक में हुई चर्चा के संबंध में अभी तक क्या बात हुई, क्या बात नहीं हुई, ऐसी आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं आई। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी
7: You're listening Uninterrupted. With TuneIn Premium, enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio, and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.
8: Savari, Sokudo.
9: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी है।

0: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
1: Jack, come home. It's supper time.
0: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
2: Could you play that one song with the words?
0: Jack FM, playing what we want.
3: Savari, Sokudo.
4: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सुंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
5: In association with
6: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: हम सिखाएंगे आपको मास कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट बनने का हुनर। ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट।
8: रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
9: जहन फ्रेंड्स, ईसाइत, सोना, मसाला या विस्तार, 1498 में क्या थी वास्को डिगामा की मंशा? मधुमक्खी जैसे गोरे जो शहद लेकर आ रहे थे, भारत को डंक मारना शुरू कर दिया और बेवकूफ राजाओं का फायदा उठाकर इस देश को गुलाम बना दिया। लेकिन मीर जाफर और मीर कासिम ने अगर सर झुकाया तो रानी लक्ष्मीबाई ने सर उठाया और गोरों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कैसी थी लड़ाई, कौन थे इसके महानायक, तलवारें चली या भजन चला? अगर बचपन में नहीं समझ में आया, नोटबुक निकाल लीजिए। मैं अवध ओझा जल लेकर आ रहा हूं मास्टर जी इन द न्यूज रूम, सिर्फ ललन टॉप पर।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
4: अब खबर पंजाब कांग्रेस में जारी खटपटी। आज चंडीगढ़ में अहम बैठक हुई। ये बैठक पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल की मौजूदगी में हुई और सूत्र बता रहे हैं कि मीटिंग में वर्तमान पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह वारिंग को पद से हटाने की मांग उठी। कई कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह वारिंग को दोबारा पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने से नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि बैठक के बाद भूपेश बघेल ने किसी नाराजगी से इनकार किया और कहा कि किसी ने भी पार्टी आला कमान के फैसले का विरोध नहीं किया, सिर्फ उन्हें कुछ मुद्दे उठाए हैं उन्होंने, जिन पर

0: पार्टी विचार करेगी। हालांकि इसके पीछे की कहानी असलियत लोग वाकिफ हैं। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
2: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
4: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
5: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

कहीं ढह गई इमारत, कहीं बह गई सड़कें। उत्तराखंड से हिमाचल तक मचा हाहाकार। यूपी से गुजरात तक बारिश का ब्रेक फेल। नदियों का जलस्तर डेंजर जोन से ऊपर। बाढ़ बारिश पर मौसम विभाग की चेतावनी। मानसूनी बारिश जारी, अगले 48 घंटे भारी। पहाड़ से मैदान तक कुदरत का कोहराम। सिक्किम में सैलाब का संकट। तबाही की ये तस्वीरें नेशनल हाईवे 10 की हैं। ये वही हाईवे है जो सिक्किम की लाइफलाइन है। बंगाल के सिलीगुड़ी से शुरू होकर गैंगटॉक तक जाता है, लेकिन मानसून की बारिश के चलते ये हाईवे भूस्खलन से प्रभावित है। भारी लैंडस्लाइड के चलते गैंगटॉक जाने वाला हाईवे पूरी तरह बंद है। आप देख सकते हैं, एक ट्रक लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। हाईवे से मलबा हटाने का काम जारी है, लेकिन भारी बारिश से मरम्मत का काम भी ठप है। वडोदरा में मगरमच्छ। तस्वीरें विश्वामित्री नदी की हैं। वडोदरा में भारी बारिश के चलते एक दो नहीं बल्कि 11 मगरमच्छ नजर आए हैं। नदी किनारे रहने वाले लोगों में दहशत है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इस बारे में जानकारी दी है। वहीं प्रशासन ने लोगों से नदी के पानी से दूर रहने की अपील की है। नदी में डूब गई थार। तस्वीरें हरिद्वार की हैं। यहां काले रंग की एक थार का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आप देख सकते हैं कि नदी की उफनती धारा के बीच थार फंसी हुई है और जेसीबी से थार को बाहर निकालने का ऑपरेशन चल रहा है। करीब आधे घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद थार को बाहर निकाल लिया गया है। पुलिस के मुताबिक थार चालकों ने रील बनाने के लिए एसयूवी को नदी पे उतार दिया था, लेकिन पानी ज्यादा होने की वजह से थार फंस गई। गनीमत रही कि कार में सवार लोग बच गए। रील के चक्कर में फंसी थार को पुलिस ने सीज कर दिया है। उधम सिंह नगर में आफत बना मानसून। क्या घर, क्या सड़कें और क्या खेत खलिहान, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सैलाब का कब्जा है। लगातार हो रही बारिश ने उधम सिंह नगर के लोगों की जिंदगी पटरी से उतार दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि घर में रखा सामान खराब हो गया, जबकि फसल भी खराब हो गई।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारतीय समुदाय के बीच बोले प्रधानमंत्री मोदी, नए भारत की विकास गाथा अभूतपूर्व है, जल्द होंगे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। सीएम योगी ने मंदिरों को फिर समाजवादी पार्टी पर बोला हमला का, ये लोग मंदिरों पर कब्जा करवाते थे, मंदिरों के पैसे कब्रिस्तान के लिए लगते थे। अखिलेश बोले पराजय काले विपरीत बुद्धि। सी नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से बीजेपी में विद्रोह, सड़कों पर उतरे समर्थक, तोड़फोड़ पथराव जाम, दिल्ली पहुंचे नरोत्तम मिश्रा बोले लोग शांति बनाए रखें। पंजाब कांग्रेस में कला खत्म करने के लिए प्रभारी भूपेश बघेल की चन्नी गुट के साथ बैठक, सूत्रों के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वरिंग को हटाने की मांग। और हॉर्मुज पर बारूदी जंग के बाद ईरानी अमेरिका में बड़ी तनातनी, ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा 1000 मिसाइलें ईरान के लिए लॉक एंड लोडेड।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। कॉलेज में रैगिंग, कानून रोकता है, सुप्रीम कोर्ट रोकता है, समाज रोकता है, लेकिन अगर चौथी क्लास का बच्चा अपने ही क्लासरूम में डरने लगे, अगर साथी बच्चे उसका मजाक उड़ाएं, उसे रुलाएं, उसे अकेला कर दें और वो मदद के लिए टीचर की तरफ देखे लेकिन उसे वहां भी सहारा ना मिले, तो फिर उस बच्चे के पास बचता क्या है? ये कहानी सिर्फ जयपुर की 9 साल की अमायरा की नहीं, ये कहानी देश के हर उस बच्चे की है जो स्कूल तो जाता है लेकिन खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता।

0: देश के नामी स्कूलों में गिना जाने वाले नीरजा मोदी स्कूल का कैंपस और चौथी क्लास में पढ़ने वाली महज 9 साल की अमायरा कुछ मिनट बाद ऐसा फैसला लेने वाली थी जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। एक छलांग और एक परिवार की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। कई महीने बाद पुलिस की चार्जशीट सामने आई। सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और जांच, इन सब को जोड़कर एक कहानी सामने आई। चार्जशीट के मुताबिक घटना वाले दिन क्लास में अमायरा और कुछ बच्चों के बीच विवाद हुआ। वो परेशान थी। वो अपनी टीचर के पास गई, अपनी बात कहनी चाहिए, लेकिन पुलिस का दावा है कि उसकी बात नहीं सुनी गई। बस यहीं से सब कुछ बदल गया। काश पुनीता शर्मा मैम अमायरा की बात सुन लेती। अगर मैम के पास 2 मिनट का वक्त होता तो ना तो ये रिपोर्ट होती, ना ही अमायरा खबर होती और ना चार्जशीट बनती।
1: अभी भी सही सेक्शंस नहीं लगे हैं। JJ-75 लगा है, जो कि पुनीता शर्मा क्लास टीचर पे लगा है। सिर्फ वो इंदु दुबे और सौरभ मोदी पे नहीं लगा। अबेटमेंट टू सुसाइड लगना चाहिए, बिल्कुल। आप वीडियो देखेंगे, आप देख पाएंगे कि उसको किस तरीके से स्कूल में प्रताड़ित किया गया है। वो एकदम खुश स्टेट ऑफ माइंड में आपको डांस करते हुए दिखेगी और उससे उसकी कैसी हालत कर दी कि वो जाके चौथी मंजिल से कूद गई।
0: परिवार ने पुलिस जांच के निष्कर्षों के आधार पर सीसीटीवी के साथ एक वीडियो जारी किया। वीडियो देखकर एक सवाल बार बार मन में आता है, अगर उस दिन सिर्फ 2 मिनट किसी ने उस बच्ची की बात सुन ली होती तो क्या आज अमायरा हमारे बीच होती? इस सवाल का जवाब अब शायद कभी नहीं मिलेगा। अमायरा चली गई, उसके पीछे छोड़ गई एक बहुत बड़ा सवाल। हमारे स्कूल बच्चों को पढ़ाना तो जानते हैं, लेकिन उन्हें समझना क्या भूल गए हैं? क्या मार्कशीट मानसिक स्वास्थ्य से बड़ी हो गई है? क्या क्लासरूम में होने वाली बुलिंग अब भी हमें छोटी बात लगती है? जरा ये आंकड़े देखिए। 5 साल के रिसर्च के बाद टीचर फाउंडेशन और विप्रो की रिपोर्ट कहती है कि क्लास 4 से 8 तक 42% बच्चे बुलिंग झेलते हैं। क्लास 9 से 12 तक 36% बच्चे ऐसी प्रताड़ना का शिकार होते हैं। अमायरा के परिवार ने नीरजा मोदी स्कूल के खिलाफ कार्रवाई के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में एक अलग केस दाखिल किया है। राजस्थान हाईकोर्ट में नीरजा मोदी स्कूल पर सीबीएसई जांच रिकॉर्ड रखा गया है। 2024 से 2026 तक इस स्कूल में 102 नई टीचर भर्तियों में सिर्फ 17 ऐसे टीचर्स की भर्ती हुई जिनके पास जरूरी योग्यता थी, जबकि 85 टीचर्स के पास जरूरी योग्यता नहीं थी। प्राइमरी टीचर कैटेगरी में सभी 52 टीचर की योग्यता मानक के अनुसार नहीं थी। अमायरा केस में पुलिस ने क्लास टीचर के खिलाफ इसी कानून के तहत आरोप लगाए हैं। मामला अदालत में है और अंतिम फैसला न्यायालय करेगा। कानून इस जिम्मेदारी को समझता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 कहती है कि अगर बच्चों की जिम्मेदारी संभालने वाला उसकी प्रताड़ना को रोकने में नाकाम रहता है या उसे नजरअंदाज करता है तो 3 साल तक की सजा हो सकती है। किसी को धक्का देना, किसी का मजाक उड़ाना, उसे अलग थलग करना, डराना, रोज रोज अपमानित करना, ये सब बुलिंग है। और कई बार वही बुलिंग एक बच्चे के भीतर ऐसा तूफान पैदा कर देती है जो बाहर दिखाई ही नहीं देता। सबसे खतरनाक बात क्या है? बच्चे हमेशा बोलते नहीं, वो चुप हो जाते हैं। मुस्कुराते भी हैं, स्कूल भी जाते हैं, लेकिन अंदर से टूट रहे होते हैं। और माता पिता, टीचर, दोनों ये समझ ही नहीं पाते। लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होता। अमायरा का परिवार अब राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच चुका है। परिवार का कहना है कि जवाबदेही सिर्फ एक टीचर की नहीं पूरे सिस्टम की तय होनी चाहिए। इसी दौरान सीबीएसई जांच के रिकॉर्ड में स्कूल में शिक्षकों की योग्यता को लेकर भी सवाल उठे। अगर क्लासरूम संभालने वाले पूरी तरह प्रशिक्षित भी नहीं होंगे तो क्या बच्चों का व्यवहार, उनका डर, उनका दर्द समझ पाएंगे? ये रिपोर्ट किसी एक स्कूल के खिलाफ नहीं, ये रिपोर्ट हर स्कूल, हर शिक्षक, हर अभिभावक और पूरे सिस्टम के लिए है। क्योंकि बच्चों की सबसे बड़ी जरूरत सिर्फ अच्छी किताबें नहीं, सिर्फ स्मार्ट क्लास नहीं, सिर्फ अच्छे नंबर नहीं, बल्कि एक ऐसा क्लासरूम है जहां वो बिना डरे अपनी बात कह सके। याद रखिए, बच्चे हमेशा मदद मांगकर नहीं रोते, कई बार वो बस चुप हो जाते हैं। और अगर हमने उस चुप्पी को समय रहते नहीं सुना तो शायद किसी और घर में एक और अमायरा हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। जयपुर से देव अंकुर के साथ आज तक ब्यूरो। किसी भी स्कूल में बच्चों के साथ ऐसा कुछ ना हो कि वो जान तक देने के लिए आमादा हो जाए। कोई भी माता पिता स्कूल में अपने बच्चों को ना खो दे, इसके लिए अमायरा के माता पिता सड़क से कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहे हैं। आज तक ने इसी मुद्दे पर उनसे खास बात की।
2: शिवानी देव एंड विजय मीना, थैंक यू बोथ हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत ही डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन है, तो मैं पहले से अगर कोई ऐसा सवाल पूछ लूँ जो आप लोगों को हर्टफुल लगे या क्वेश्चनेबल लगे, तो मैं उसके लिए पहले से अपोलोजाइज कर देती हूँ। तो आप क्या हमें बताना चाहेंगे कि आपने जब ये पूरा मामला आपने पुलिस के सामने रखा या टीचर्स के सामने रखा, कि क्या टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, या ऐसा क्या हो गया था क्लास में कि इतना एक्सट्रीम कंडीशन आ गया? तो उन्होंने बोला क्या?
3: वही तो पता लगाने की कोशिश कर रहे थे हम। पुलिस के सामने दो दो बार हमने पूछा कि मैम बताओ तो सर, आपके पास 1.5 मिनट तक लड़की बोल रही है, हमारा 1.5 मिनट तक आपको कुछ कह रही है? नहीं नहीं सर, वो ऐसे कह रही है कि मुझे बच्चे परेशान कर रहे हैं, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, बैड वर्ड यूज कर रहे हैं। मैं कहा मैम ये 5 सेकंड की बात नहीं है, वो 1.5 मिनट तो कुछ कह रही है तो कुछ तो बोल रही होगी। आपने कुछ किसी बच्चों को एड्रेस करा हमारा की तरफ उंगली करके कुछ बोला आपने, हमारा शॉक्ड हुई, हमारा मुंह खुल गया, वो क्या है मैम? तो मैडम का कहना था कि मैंने ऐसा बोला है कि आपकी फुटबॉल क्लास कैंसिल हो जाएगी। मैं कहा मैडम हमारा फुटबॉल क्लास में थी भी नहीं, और वो फुटबॉल क्लास कैंसिल होना बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चों के लिए, वो शॉक नहीं हो जाएगी ऐसे कि ये क्या बोल रहे हो आप? तो ये कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर रही है टीचर। स्टार्टिंग से ही बच्चों को सिखा दिया गया है, बच्चों के पेरेंट्स को बता दिया गया है, टीचर्स को बता दिया गया है कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। जो दूसरी टीचर बैठी है, पुलिस ने उनसे कई बार पूछने की कोशिश करी, पुलिस कहती है हमें, तो वो कहते हैं कि वो कुछ बता नहीं रही, क्लास टीचर कुछ बता नहीं रही, पेरेंट कुछ बता नहीं रहे, तो फिर कौन बताएगा? सीसीटीवी में सब कुछ दिख रहा है। उसके बाद
2: आपने दूसरे पेरेंट से, वो 2-3 बार जाती है उस फुटेज में, अगर आप एंड में देखें, उसकी एक गर्लफ्रेंड है, राइट? शी इज अ गर्ल, शी गोज टू हर ऑल्सो एंड शी इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। वो हाथ ऐसे करके बोल रही है कि क्या हो गया है, तुम तो बताओ। आई थिंक शी इज द सेम गर्ल विद हुम शी हैड गॉन टू द जिम क्लास अर्लियर, उसके साथ वो गई थी, द वन इन द ब्लू टी शर्ट। उसके पेरेंट्स कुछ बता पा रहे हैं आप लोगों को? पेरेंट्स कम्युनिटी क्या कह रही है?
3: नहीं नहीं मैम, जो उसकी फ्रेंड है वो सबसे आगे जो बैठी है ना मिडल रो में, सबसे आगे येलो टी शर्ट में, वो उसकी फ्रेंड है। जो ब्लू टी शर्ट में है वो उसी गैंग की मेंबर है जो बच्चों की है, वो भी बुली करती है अमायरा को। तो अमायरा उसकी सीट पे जाती है कि यार तुम क्या कर रहे हो, ऐसा होता ना, क्या है?
2: वो पूछ जानना चाह रही है कि क्या, क्यों कर रहे हो ऐसा,
3: मतलब क्यों कर रहे हो, मतलब क्यों कर रहे हो ऐसे। फिर वो परेशान होती है, सीट पे जाती है, सीट पे बैठती नहीं है लास्ट अटेम्प्ट में, वहां देखो खड़ी रहती है, उसको लग रहा है मैं क्या करूं। उसको लगता है एक अटेम्प्ट और कर लेती हूँ, लेकिन जैसे वो जाती है टीचर उसको फिर ऐसे डांटती है उस ब्लू टी शर्ट वाली लड़की को देखते हुए, और हमारे मिड ऑफ द कन्वर्सेशन निकल जाती है। आप देखना मिड ऑफ द कन्वर्सेशन निकलती है और बाहर जाती है, दरवाजा बंद करती है और भागती जाती है।
2: देखिए, हम सब कभी ना कभी 9 साल के थे, हम सब ने किसी ना किसी फॉर्म ने क्लास में डिसएग्रीमेंट्स देखे हैं, हमने टीचर से डांट खाई है, घर में पेरेंट्स से डांट खाई है, हमारे ज़माने में तो थप्पड़ भी पड़ते थे। आज पेरेंट्स, हम आम और आप जैसे लोग बहुत सेंसिटिव हो गए हैं। मैं बार बार यही सोचने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसा क्या हो गया कि बच्चा इतना एक्सट्रीम स्टेप ले लेगा?
3: मैम सोचिए आप, ये तो
2: क्या हो गया ऐसा क्लासरूम में कि बच्चा इतना एक्सट्रीम स्टेप्स लेगा? और आई थिंक मेरे जो वरिंग बात आपकी बात से निकल रही है कि कोई कुछ बता नहीं रहा है।
3: मैम अमायरा इस स्कूल में फर्स्ट क्लास से है, अमायरा ने जो देखा है उसको लगता है कि क्लासेस ऐसे ही होती हैं, क्योंकि अमायरा फर्स्ट क्लास है, इसी में हमने 6 दिन की फुटेज देखी है, 6 दिन में ऐसे ही बच्चे घूमते हैं, कोई कभी कुछ कर रहा है कोई कुछ। तो अमायरा को यही लगता है कि यही होती है क्लासरूम, उसको नहीं पता ना कि हमारे टाइम में कितना पिन ड्रॉप साइलेंस होता था, उसको ये चीज नहीं पता। हम बताते थे लेकिन वो समझ नहीं पाएगी ना, उसको लगता है हमारे स्कूल तो ऐसे ही है। तो उस सिचुएशन में उसको ये नहीं पता कि जब ऐसे इल्जाम लगेंगे, या सपोज करो किसी बच्चे ने यही बोला हो कि मैम हमारे तो आपके बारे में बैड वर्ड यूज करती है, मैम आपको तो हमारा ये कहती है, सपोज करो अगर इस तरह की बात अगर बच्चे उसकी तरफ गैंगअप करके बोलेंगे तो बच्चा क्या सोचेगा, डरेगा ना, 9 साल का बच्चा है वो।
2: बच्चों के लिए भी क्या, हम पेरेंट्स के लिए भी कुछ लर्निंग है इसमें से?
4: या मैम बहुत बड़ी लर्निंग,
2: क्या हमारे लिए क्या लर्निंग है?
4: दो तरह से लर्निंग है मैम इसमें, एक जो बुली होते हैं और एक जो बुली करते हैं। मैम बुली जो करते हैं पेरेंट्स को समझना चाहिए, अगर उनके पास कभी बच्चे की कोई कंप्लेंट आती है उसको एग्रेसिवली डिनाय ना करें, नहीं मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है, वो कभी किसी को बुली नहीं कर सकता। तो उस कंप्लेंट को एड्रेस करें, उसमें पता लगाएं व्हाट वाज द ट्रूथ, कहां तक आपके बच्चे की गलती, उसे समझाएं मैम। उसके बाद जहां जो बच्चा बुली हो रहा है उसके पेरेंट्स को एक ओपन कॉन्वर्सेशन रखनी चाहिए और आगे उसको मैकेनिज्म बताना चाहिए कि क्या हो रहा है। आई विश मैम कि काश मेरे पास ऐसा एक भी एपिसोड जिसमें मुझे पता चलता दैट शी इज नॉट कंफर्टेबल इन द क्लास, आई विश वो आ जाता। और मैं कभी भी इवन इनफैक्ट आफ्टर सीइंग दैट बुलिंग इन द क्लास आई कैन नेवर इमेजिन कि स्कूल का स्ट्रक्चर पूरा फेल हो जाएगा उस दिन। स्कूल में छोटी सी रेलिंग होगी जो लैडर इफेक्ट होगा, और उसमें जो रेलिंग होगी वो एक लैडर की पोजीशन देगी, और हमारा उसमें ये सब बियॉन्ड इमेजिनेशन है किसी भी पेरेंट के लिए। हमने इंडिया में आज तक किसी बच्चे को स्कूल में सुसाइड करते हुए मैंने नहीं सुना
3: दस
4: था,
3: साल से कम
4: मैंने नहीं सुना, 10 साल से कम बच्चे को तो बिल्कुल भी नहीं सुना।
0: और इसलिए कहा जाता है कि अगर आप अभिभावक हैं या फिर आप शिक्षक हैं, बच्चों की हर एक गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखें। चलिए अब एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। देश के कई हिस्सों में मानसून का असर लगातार बना हुआ है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को उत्तर पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई। विभाग के मुताबिक असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली NCR में भी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मेरठ और मुजफ्फरनगर में इस मानसून सीजन की सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में लगातार बारिश के कारण नदियां नाले उफान पर हैं और कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित है। दूसरी ओर मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में शनिवार के बाद बारिश की गतिविधियां कम हो सकती हैं और 15 जुलाई तक तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कहां कहां बारिश का अलर्ट है फिलहाल अभी हम आपको ये बता रहे हैं। फिलहाल प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में लोगों से सतर्क रहने और मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की अपील की है। तो बारिश जो कभी राहत लेकर आती है वही अब कई इलाकों में आफत बन चुकी है। आसमान से बरसते पानी को पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक तबाही का ऐसा मंजर दिखा दिया है जहां कई सड़कें बंद हैं, कई घरों में पानी घुसा है, कई लोगों को अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। रुद्रप्रयाग, चमोली, अम्बाला, सहारनपुर, पालघर और ये तस्वीरें जब आप देखेंगे तो आपको हर जगह बर्बादी दिखाई देगी। कुदरत का रौद्र रूप आपको दिखाई देगा। मेंढर में तो बादल फट गया, कहीं भूस्खलन हो रहा है, फ्लैश फ्लड कहीं पर आ रहा है। एक परिवार ने छत पर बैठकर 8 घंटे तक, ये पालघर की बात की जा रही है महाराष्ट्र से, 8 घंटे तक अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद करते रहे और ऊपर से बारिश होती रही। सहारनपुर में बारिश का पानी कब्रिस्तान तक पहुंच गया। देश के कई हिस्सों में बारिश ने रौद्र रूप दिखा दिया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
5: आसमान से बरसती आफत और जमीन पर जिंदगी बचाने की जद्दोजहद। कहीं पहाड़ टूट रहे हैं तो कहीं पानी घरों को निगल रहा। बारिश ने चारों तरफ तबाही का मंजर खड़ा कर दिया है। पहाड़ों पर बारिश अब सिर्फ बरस नहीं रही, कहर बनकर टूट रही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भूस्खलन ने चार धाम यात्रा की रफ्तार रोक दी। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर खांकरा के पास पहाड़ दरक गया और सड़क पर आ गिरे भारी भरकम बोल्डर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में अचानक आई बाढ़ ने हालात बिगाड़ दिए। पानी के तेज बहाव में फंसे करीब 25 लोगों को रेस्क्यू किया गया। उधर मैदानों में भी पानी ने जिंदगी की रफ्तार रोक दी। महाराष्ट्र के पालघर में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया। एक परिवार ने मौत से बचने के लिए घर की खिड़की तोड़ दी और 2 मासूम बच्चों समेत 8 घंटे तक छत पर बैठकर रात गुजारी। वहीं हरियाणा के अंबाला में तंगरी नदी का स्तर बढ़ने से लोग सुरक्षित ठिकानों की ओर जाने को मजबूर हुए। सहारनपुर के सैयद माजरा गांव में भारी बारिश ने कब्रिस्तान को भी अपनी चपेट में ले लिया। लगातार 3 दिनों की मूसलाधार बारिश के बाद पानी का बहाव इतना तेज हुआ कि कब्रिस्तान की मिट्टी धंस गई और कई कब्रें क्षतिग्रस्त हो गईं। इतना ही नहीं, कई लाशें पानी में तैरने लगी। पहाड़ से मैदान तक बारिश ने अपना रौद रूप दिखाया है। कहीं रास्ते बंद हुए, कहीं घर डूबे। बारिश थमने के बाद भी तबाही के ये निशान कई सवाल छोड़ गए हैं कि क्या हम ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए तैयार हैं? ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
6: यहां रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए आज तक,
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: Summer hits, blends old school jams with fresh favorites, so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack, made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray music collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.
10: मैं उसको पूरी तरीके से चढ़ावा चोरी अपने में आप जानते हैं। हमारे कोषाध्यक्ष महोदय जो स्वामी गोविंद देव गिरी जी हैं, उन्होंने भी आप सभी से वार्ता की और बताया कि यह अपने में एक तरीके का कलंक है। एक तरीके से राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है, व्यवस्था में सुधार होगा, मुझे पूरा विश्वास है, और इस प्रकार की घटनाएं दोहराई नहीं जाएंगी।
11: जिन 8 लोगों की सर गिरफ्तारी हुई है, आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन का
10: इसके बारे में मैं कोई भी किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करूंगा।
12: अन्य ट्रस्टी भी मौजूद रहेंगे?
10: नहीं, ये तो निर्माण समिति की बैठक है। तो निर्माण समिति में L&T, TC, राजकीय निर्माण निगम, इंजीनियर इंडिया लिमिटेड इत्यादि इत्यादि के लोग आते हैं।
13: बाबू जी, इसके अलावा राम मंदिर में CEO की नियुक्ति की बात सामने आ रही है, आप कैसे?
12: काफी चर्चा है, समस्या आप कमेटी भी गठित मंदिर।
10: हाँ, तो वो तो हो
12: गया। ये रिकमेंडेशन एक तरीके से कहा भी था कि इस तरह
10: नहीं, मेरा कोई भी इसमें किसी प्रकार की संस्कृति का प्रश्न नहीं है। ये तो एक उच्चतम स्तर की समिति बनाई गई है, उसमें आपको मालूम है न्यायाधीश उसके अध्यक्ष हैं संभवतः। वह अपना निर्णय संस्तुति सीधे ट्रस्ट को देगी और ट्रस्ट विचार करेगा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर
2: So sorry.

0: अगर सड़क पर दौड़ती हाईटेक गाड़ी अचानक बंद हो जाए तो इसे मामूली खराबी समझने की भूल नहीं कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी के उस खतरे का इशारा हो सकता है जो धीरे धीरे गाड़ियों की स्टेयरिंग तक पहुंच चुका है। दरअसल कारों में बढ़ते डिजिटल फीचर्स के दबदबे के बीच गाड़ियों पर साइबर अटैक का खतरा भी मंडराने लगा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में हैकिंग की बढ़ती शिकायतों के बाद सरकार ने ऑटो कंपनियों और ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स को कनेक्टेड कारों और ईवीएस के सॉफ्टवेयर का साइबर ऑडिट करने के निर्देश दिए हैं। एप्पल और गूगल प्ले स्टोर से ऐसे 3 मोबाइल एप्स हटा दिए गए हैं जिनके जरिए ई व्हीकल्स को हैक किया जा रहा था। ये एप्स ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के जरिए 10 से 15 मीटर दूर से ही गाड़ियों की बैटरी बंद कर देते थे। साइबर सिक्योरिटी को लेकर मिली इस बड़ी चेतावनी के बाद गाड़ियों में मिलने वाले हाईटेक फीचर्स पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि बैट एम्बियस, लॉसिकी और इपोक आई लॉन जैसे एप्स को दूर से गाड़ी बंद करने के वीडियो सामने आने के बाद बैन किया गया है और वाहन कंपनियों को बैटरी मैनेजमेंट, पासवर्ड और ओटीएस सॉफ्टवेयर अपडेट्स की सुरक्षा सुधारने को कहा गया है। वहीं सड़क परिवहन मंत्रालय 1 अक्टूबर से कनेक्टेड व्हीकल्स के लिए नए साइबर सिक्योरिटी नियम लागू करने की तैयारी में है। हैकर्स की इस नई सेंधमारी ने ऑटो सेक्टर की तेज रफ्तार के बीच एक बड़ी चुनौती पेश की है, लेकिन सुरक्षा में मिली इस बड़ी चूक के बावजूद मचे हड़कंप के बीच भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री रिकॉर्ड ऊंचाई छू रही है। आंकड़ों के मुताबिक जून में कुल व्हीकल सेल्स में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हिस्सेदारी पहली बार 12% के पार पहुंच गई है। इस दौरान कुल 3,06,000 से ज्यादा ईवीएस की बिक्री हुई, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। ईवीएस के इस जबरदस्त ट्रेंड में सबसे बड़ा योगदान टू व्हीलर्स का देखने को मिल रहा है। डेटा के मुताबिक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की बिक्री में सालाना आधार पर करीब 75% की भारी बढ़त दर्ज की गई है। अकेले जून में 1,93,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बिके हैं। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक पैसेंजर और कमर्शियल गाड़ियों ने भी अपनी अब तक की सबसे बेहतर मंथली सेल्स का रिकॉर्ड बनाया है। साफ है कि आम ग्राहक बड़ी तादाद में पेट्रोल डीजल छोड़कर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ रुख कर रहे हैं, लेकिन जिस रफ्तार से भारतीय सड़कों पर कनेक्टेड फीचर्स और ईवीएस की संख्या बढ़ रही है, उसमें साइबर सुरक्षा का पुख्ता होना भी बेहद जरूरी हो चुका है, जिससे स्मार्ट गाड़ी सेफ राइड का भरोसा देती रहे। आज तक ब्यूरो।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारतीय समुदाय के बीच बोले प्रधानमंत्री मोदी, नए भारत की विकास गाथा अभूतपूर्व है, जल्द होगी तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर हमला, कहा ये लोग मंदिरों पर कब्जा करवाते थे, मंदिरों के पैसे कब्रिस्तान में लगवाते थे। अखिलेश बोले पराजय काले विपरीत बुद्धि। दतिया से नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से बीजेपी में विद्रोह, सड़कों पर उतरे समर्थक, तोड़फोड़ पथराव जाम। दिल्ली पहुंचे नरोत्तम मिश्रा, बोले लोग शांति बनाए रखें। पंजाब कांग्रेस में कलह खत्म करने के लिए प्रभारी भूपेश बघेल की चंडीगढ़ के साथ बैठक, सूत्रों के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वर्डिंग को हटाने की मांग। और भारतीय नौसेना के साथ जुड़ा नया योद्धा आईएनएस महेंद्र गिरी, आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले नेवी चीफ, मेक इन इंडिया स्टेल्थ तकनीक और अत्याधुनिक हथियारों से लैस समंदर में मिली नई ताकत।

0: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढौंडियाल। बुलेटिन में आपके शहर की खबर सुपरफास्ट अंदाज में आपको दिखाते हैं 100 शहर 100 खबर। चमोली में बारिश का कहर, थराली में मलबा आने के बाद सड़कें बंद, कई इलाकों का संपर्क प्रभावित हुआ। शिमला में भारी बारिश का कहर, न्यू शिमला के पास राजहाना गांव में भूस्खलन। लगातार बारिश से पहाड़ों पर बढ़ा खतरा भूस्खलन के, मलबे की चपेट में कई गाड़ियां आ गई। लगातार बारिश के बाद तीसरे दिन भी कहर बढ़ा, झील का भी जलस्तर, नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट पर रखा गया। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में बारिश का कहर, आसमानी आफत से सड़कें क्षतिग्रस्त। सड़क टूटने से कई पंचायतों का संपर्क टूटा है, जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर है ग्रामीण। बांदा में बारिश से बढ़ा कीन नदी का जलस्तर, नदी किनारे जाने से लोगों को रोका गया। पालघर में भारी बारिश के चलते बाढ़ का कहर दिखा, घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। घर में बाढ़ के पानी को घुसने से बचाने के लिए कोशिशें की गई और दो मासूम बच्चों समेत अब परिवार ने 8 घंटे छत पर ही रात गुजारी। गाजियाबाद में करंट लगने से 8 साल के मासूम की मौत, ट्रांसफार्मर के पास हुआ हादसा, परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का लगाया। 24 घंटे में करंट से दूसरी मौत, उठे सुरक्षा पर सवाल, FIR और निष्पक्ष जांच की मांग। हादसे के बाद बिजली विभाग के खिलाफ लोगों का गुस्सा। पुंछ में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, नदियां नाले उफान पर है, निचले इलाकों में भरा पानी, लोगों की बड़ी मुश्किलें। मेंढर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, पुलिस ने पानी में फंसे हुए 25 लोगों को सुरक्षित निकाला, प्रशासन ने जारी किया है अलर्ट। पालघर में बाढ़ का कहर दिखा, आधी रात घर में घुसा बाढ़ का पानी, परिवार ने खिड़की तोड़कर छत से बचाई अपनी जान, 8 घंटे तक छत पर ही जिंदगी गुजारी। मानसून में रुक रुक कर हो रही बारिश में भी चारधाम यात्रियों का जोश हाई है, लगातार बड़ी संख्या में दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम यात्रा मार्ग पर BRO ने बनाया 70 मीटर लंबा मोटर पुल, लामबगड़ नाला पार करना इससे होगा आसान। मानसून की बारिश में उफान पर अलकनंदा नदी अलर्ट पर, सभी रेस्क्यू टीमें यात्रा मार्ग पर लगातार रखी जा रही निगरानी। हिमाचल प्रदेश में लगातार तेज बारिश, मौसम विभाग ने आज कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। पिथौरागढ़ में भारी बारिश, भूस्खलन के बाद नदी नाले उफान पर है, जान जोखिम में डालकर लकड़ी के लट्ठों के सहारे नदी पार कर रहे लोग। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारतीय समुदाय से मिले प्रधानमंत्री मोदी, क्रिस्टोफर लक्सन ने स्वागत की सराहना की। ऑकलैंड में पीएम मोदी का संबोधन, बोले कि भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते साझा मूल्यों और दोस्ती पर आधारित। पीएम मोदी बोले कि भारत दूसरों से सीखने के लिए हमेशा तैयार, लोगों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता मायने रखती है। भारत न्यूजीलैंड संबंधों पर पीएम मोदी का जोर, बोले कि हमारी स्वदेशी संस्कृतियां और परंपराएं हमें जोड़ती हैं। ऑकलैंड में भारतीय समुदाय के बीच में पीएम मोदी बोले, भारत और न्यूजीलैंड में अपनी संस्कृति को संजोने का संकल्प समान। नरोत्तम मिश्रा का टिकट करते हैं नेशनल हाईवे 44 जाम, जिलाध्यक्ष समेत कई नेताओं और पार्षदों के इस्तीफे। दिल्ली से पहुंचे, दिल्ली और दतिया में अब जबरदस्त विरोध, नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का केंद्रीय नेतृत्व से टिकट बदलने के बाद बीजेपी के आधिकारिक चुप्पी भी बरकरार। बीजेपी में अब इस्तीफों की झड़ी, जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाहा समेत कई पदाधिकारियों और सभी बीजेपी के पार्षदों ने पद छोड़ दिया। दतिया में विरोध का बाजार गर्म है और कई व्यापारियों ने भी अपनी दुकानें बंद रखी हैं। जबरदस्त विरोध, बीजेपी कार्यालय के बाहर देर शाम तक प्रोटेस्ट दिखा। दतिया में बवाल, पथराव से बढ़ा तनाव, बीजेपी उम्मीदवार के विरोध में उग्र प्रदर्शन, कई पुलिसकर्मी भी जख्मी। उपचुनाव में टिकट नहीं मिलने पर विरोध के बीच में नरोत्तम मिश्रा की अपील, कहा कि शांति बनाए रखिए। पार्टी फैसले पर नाराजगी के बीच नरोत्तम मिश्रा बोले, अनुशासन बनाए रखे, ऐसे नहीं जताया जाता विरोध। टिकट विवाद पर जीतू पटवारी का बयान, बोले कि बीजेपी के अंदरूनी आंख से मध्य प्रदेश नहीं जलना चाहिए। चंडीगढ़ में कांग्रेस की अहम बैठक, भूपेश बघेल और चरणजीत सिंह चन्नी राणा गुरजीत के आवास पर पहुंचे। चंडीगढ़ की बैठक में के बाद से भूपेश बघेल बोले, कांग्रेस नेताओं की चिंताओं को दूर किया जाएगा और बोरिंग को बदलने का मुद्दा नहीं उठा। अमेरिका ईरान में तनाव के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, कहा कि 1000 मिसाइलें निशाने पर लॉक और तैयार। तनाव के बीच ईरान का शक्ति प्रदर्शन, सेना को सतर्क रहने का संदेश, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। ईरान के विदेश मंत्री का अमेरिका पर निशाना, बोले कि समझौते का पालन सिर्फ एक तरफा नहीं हो सकता। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हमलों के बाद अमेरिका की बड़ी कार्रवाई, ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए। अमेरिका ने ईरान के वित्तीय नेटवर्क पर कसा शिकंजा, दुबई स्थित कारोबार प्रतिबंधित। नीट यूजी 2026 पेपर लीक केस में सभी 13 आरोपियों के न्यायिक हिरासत 24 जुलाई तक बढ़ाए गए। राहुल सिवेनी कोर्ट का आदेश, नीट पेपर लीक मामले में 13 आरोपी फिलहाल जेल में ही रहेंगे। सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि नीट पेपर लीक केस में जांच अभी जारी है, 2 से 3 और गिरफ्तारियां संभव है। स्विगी इंस्टामार्ट पर एफएसएसएआई का शिकंजा, खाद्य सुरक्षा उल्लंघन के आरोप में नॉन नोटिस जारी किया। एक्सपायर्ड और खराब खाद्य सामान सप्लाई के आरोप एफएसएसएआई ने स्विगी इंस्टामार्ट से जवाब भी मांगा। आज कुशीनगर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी 525 करोड़ की विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। कुशीनगर में मुख्यमंत्री योगी का समाजवादी पार्टी पर हमला, बोले कि मंदिरों पर कब्जे होते थे और अब पुनरुत्थान हो रहा है। सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, कहा कि मंदिरों के लिए आने वाला धन कब्रिस्तानों में लगाया जाता था। सीएम योगी के नमाज वाले बैन पर इमरान मसूद का पलटवार, बोले कि नमाज और धर्म के मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। पटना की बांकीपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक सिन्हा ने नामांकन लिया वापस, पारिवारिक वजहों से फैसला, 13 जुलाई को नामांकन का अंतिम दिन। बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी बने नीरज सिन्हा, उम्मीदवार बनने के बाद पार्टी दफ्तर पहुंचकर जताया आभार। मुर्शिदाबाद में बैरामपुर में मुख्यमंत्री शुभेंदु ने जनसभा को किया संबोधित, कहा कि मुर्शिदाबाद के विकास पर सकारात्मकता से फोकस है और रेजीनगर उपचुनाव में वोट देने की भी अपील। बैरामपुर में हुमायूं कबीर पर गरजे मुख्यमंत्री, बोले कि मैं ममता बनर्जी की तरह कमजोर मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों की गैर जिम्मेदाराना और आपत्तिजनक टिप्पणियां किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। ईडी की ओर से टीएमसी के बैंक खातों के फ्रीज करने का मामला है। ममता गुट अब कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा, 13 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई। स्वदेशी युद्ध पोत आईएनएस महेंद्रगिरी नौसेना में शामिल, विशाखापट्टनम में हुई कमिशनिंग सेरेमनी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में आईएनएस महेंद्रगिरी को नौसेना में किया गया शामिल। रक्षा मंत्री ने नेवी को दी बधाई, कहा यह देश की सुरक्षा में मील का पत्थर। भारत के प्रोजेक्ट 17A में नीलगिरी कैटेगरी का 6ठा स्टेल्थ फ्रिगेट है आईएनएस महेंद्रगिरी। 75% स्वदेशी उपकरणों से लैस है। एंटी सबमरीन सिस्टम और एडवांस मिसाइलों से लैस है जंगी जहाज आईएनएस महेंद्रगिरी। भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने किया है डिजाइन, मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड ने किया है निर्माण। आईएनएस महेंद्रगिरी में एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, इंटीग्रेटेड कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, हाई स्पीड वाले जहाज को रडार पर ट्रैक कर पाना मुश्किल है। 1 अगस्त से दिल्ली में बसों में मुफ्त यात्रा के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड अनिवार्य। 31 जुलाई तक पेपर पिंक टिकट की व्यवस्था रहेगी जारी। बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेगी 12% से ज्यादा एल्कोहल वाली दवाइयां, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी कर दी है अधिसूचना। एक्टर राजपाल यादव की फिर से बड़ी मुश्किलें, दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस केस में 7 मामलों में सुनाई 3 महीने की जेल की सजा, अभिनेता के रवैये को भी संदिग्ध बताया। कर्नाटक के रायचूर में आंगनबाड़ी और मिड डे मील कर्मचारियों का वेतन में बढ़ोतरी, सामाजिक सुरक्षा और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को वापस लेने की मांग को लेकर भी प्रदर्शन। विंबलडन फाइनल में सिनर की दमदार एंट्री, नंबर 1 यानिक सिनर ने नोवाक जोकोविच को सीधे सेट्स में हराकर लगातार दूसरी बार बनाई जगह। विंबलडन को आज मिलेगी नई महिला चैंपियन, कैरोलिना मुचोवा और लिंडा नुस्कावा के बीच में खिताबी मुकाबला। फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस का दमदार प्रदर्शन, मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई, जीत के बाद लंदन में हिंसा भी हुई। स्पेन का सेमीफाइनल टिकट पक्का, बेल्जियम को 2-1 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप में बढ़ाया खिताब की ओर कदम। आज फीफा वर्ल्ड कप में 2 बड़े क्वार्टर फाइनल, नॉर्वे इंग्लैंड और अर्जेंटीना स्विट्जरलैंड की टक्कर। भारत की साख बचाने की चुनौती, इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी T20 आज है, मेजबान 3-0 से आगे, सीरीज पहले ही जीत चुकी है इंग्लैंड। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर विदेशों में शिकंजा, फ्रांस में गैंगस्टर गिरफ्तार, कनाडा में एक गुर्गे को डिपोर्ट के आदेश। कॉमेडियन कपिल शर्मा की काफी फायरिंग केस में भी एक्शन, हथियार छिपाने के आरोपी को कनाडा से भारत भेजने की तैयारी। रायसेन में SBI कियोस्क संचालक पर लाखों के गबन का आरोप, लापता होने के बाद परिवार को मिल रही है धमकियां। गाजियाबाद में चलती स्कूल बस में लगी भीषण आग, बाल बाल बच्चे छात्र, बस जलकर खाक। उन्नाव में दर्दनाक सड़क हादसा, रोडवेज बस से उतरते ही यात्रियों को उसी बस ने रौंद डाला। कोटा में दिन दहाड़े गुंडागर्दी, युवक पर लाठियों से जानलेवा हमला, दहशत में बंद हुई दुकानें। रायगढ़ में हाथियों का आतंक, 2 अलग अलग हमलों में 2 की मौत, 2 साल का मासूम बाल बाल बचा। नोएडा में करंट से इंजीनियर की दर्दनाक मौत, CCTV में कैद हुआ नाले में गिरने का अंतिम मंजर। ओडिशा के बालासोर में थार से ATM उखाड़ कर ले गए बदमाश, सुनसान जगह पर तोड़कर कैश लेकर फरार। थार से खींच कर ले गए ATM, CCTV में कैद, पुलिस जांच कर रही है। गाजियाबाद के अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल में 7 साल की बच्ची का शव मिलने से सनसनी, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। अंडरपास में भरे हुए पानी में डूबी थार गाड़ी, लोगों ने रेस्क्यू करके कार सवारों को बचाया। आगरा पुलिस का एक्शन, अंतर्राज्यीय हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, थार से हथियारों की खेप भी बरामद। झारखंड के गढ़वा में जंगली हाथियों का तांडव दिखा, ग्रामीणों को पटक पटक कर मार डाला, गांव में 3 घंटे तक उत्पात भी मचाया। संभल में कल के धाम गंगा एक्सप्रेस पे 4 लेन रास्ते में आए 150 मकान और 15 दिन में हटाने का नोटिस। एक्टर प्रियंका चोपड़ा ने जारी किया अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म द साइकिल ऑफ लव का ट्रेलर। फिल्म की कार्यकारी निर्माता है प्रियंका। दिल्ली के कलाकार पी के महानंदिया पर आधारित है डॉक्यूमेंट्री की कहानी। सच्चे प्यार की तलाश में भारत से स्वीडन तक 6000 मील की यात्रा पर साइकिल से निकले थे महानंदिया। वेब सीरीज रक्तांचल 3 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। क्रांति प्रकाश और निकितिन धीर अपने पहली वाली भूमिकाओं में ही इसमें नजर आए। 16 जुलाई को Amazon एमएक्स प्लेयर पर मुफ्त में स्ट्रीम होगी वेब सीरीज रक्तांचल 3। करुण पटेल, माही गिल, राजेश कुमार, विक्रम कोचर भी अहम भूमिका। शादी के बंधन में बंधी टीवी एक्ट्रेस और बिग बॉस फेम एक्ट्रेस पलक पुरस्वानी और बॉयफ्रेंड रोहन खन्ना के साथ साथ फेरे लिए। बात करेंगे अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की। चढ़ावा चोरी को लेकर पुलिस की जांच चल रही है और अब यह खबर है कि 2 और आरोपियों रामाशंकर यादव और टिन्नू यादव, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव से पूछताछ पुलिस करने वाले है। यानी कि जांच को अभी और आगे बढ़ाएगी। इनसे पहले भी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है लेकिन अभी और पूछताछ हो रही है। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने इस बीच में अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर में इस तरह की घटना हम सब अपने में छोटा महसूस करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि व्यवस्था में सुधार होगा। तो इस प्रकरण को कलंक बताया है नृपेंद्र मिश्र।
1: राम भक्तों के चढ़ावे के साथ जो हुआ वो अनर्थ था, आस्था पर बड़ी चोट थी और उस वारदात से हर कोई आहत है। कुछ ऐसा ही दुख जता रहे हैं राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा। वो अब कह रहे हैं कि राम मंदिर में हुई घटना से हम सब छोटा महसूस करते हैं।
2: यह अपने में एक तरीके का कलंक है। एक तरीके से राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है। व्यवस्था में सुधार होगा, मुझे पूरा विश्वास है, और इस प्रकार की घटनाएं दोहराई नहीं जाए।
1: चढ़ावा चोरी के गंभीर आरोपों की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे सामने आते जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से अब सामने आया है कि मंदिर में काम करने वाले कुछ पूर्व सैनिक पर कुछ भी बोलने पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसके लिए बकायदा सभी पूर्व सैनिकों को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा गया था। कहा गया था कि कोई कुछ भी पूछे बोलना नहीं है। जिस मैसेज पर सवाल उठ रहे हैं उस मैसेज का स्क्रीनशॉट भी आज तक के पास मौजूद है। इससे साफ है कि चढ़ावा चोरी के खुलासे के बाद मामले को छिपाने की कोशिश की गई थी। उधर पुलिस आरोपों की तह तक जाने के लिए अब जेल में बंद आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव से सवाल जवाब की तैयारी है। पुलिस दोनों को रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी। इसके लिए पुलिस ने कोर्ट में अर्जी दी है और 7 दिन की रिमांड मांगी है। 14 जुलाई को पुलिस की याचिका पर फैसला हो सकता है। चढ़ावा चोरी मामले में सवाल उठने के बाद ट्रस्ट महासचिव पद से इस्तीफा देने वाले चंपत राय ने अब अपने करीबी सहयोगियों से कहा है कि SIT की अंतिम जांच रिपोर्ट आने तक वो अयोध्या नहीं छोड़ेंगे। सूत्रों के माने तो उन्होंने जांच पूरी होने तक अयोध्या में रहकर पूरी तरह सहयोग देने की बात कही है। इस बीच चंपत राय की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। तीर्थ क्षेत्र भवन के आसपास अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।
0: उधर सवालों में घिरे गोपाल राव ने निर्मोही अखाड़ा पहुंचकर आश्वासी महंत दिनेन्द्र दास से मुलाकात की है। दोनों ही नेताओं के बीच में बंद कमरे में काफी देर तक बातचीत हुई है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में ट्रस्ट से जुड़े हुए अलग अलग मुद्दों पर बातचीत हुई है। इस मुलाकात को ट्रस्ट के भीतर चल रहे विवादों के बीच में डैमेज कंट्रोल की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि बैठक में हुई चर्चा के संबंध में आधिकारिक रूप से कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई, लेकिन दोनों में ट्रस्ट से जुड़े हुए मुद्दों पर बातचीत हुई है। और वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
5: कॉलेज हैज बीन आउट ऑफ रीच फॉर टू मेनी फॉर टू लॉन्ग। WGU चेंजेस दैट। वी आर एन ऑनलाइन नॉन प्रॉफिट यूनिवर्सिटी मेड फॉर एनीवन ओवरलुक्ड बाय ट्रेडिशनल कॉलेजेस। दिस इज एजुकेशन विदाउट लिमिट्स। लर्न मोर एट WGU.edu.
6: This is the sound of Lucy, staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy, or Wells Fargo for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
7: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
8: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now. From today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
9: Sokudo.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
2: धनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।
5: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
6: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
7: आगे आगे,
8: अरे उधर उधर,
7: करेक्ट करेक्ट।
9: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
10: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: बोला पूर्व की सरकार को घेरा बताया कि कैसे अब यूपी में विकास की बात हो रही है। उन्होंने 2017 से पहले होने वाले दंगों का हवाला देते हुए एक बार फिर से कहा कि अब नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा।
1: 2017 के पहले न नियत थी और न तत्कालीन सरकार की कोई नीति थी। जब सरकारें स्वयं पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार हो तो पॉलिसी बनाएगी कैसे, यही तो होता था 17 के पहले। 17 के पहले इनके स्तर पर कोई पहल नहीं होती थी और इसीलिए निवेश में नहीं होता था, विकास के कार्य ठप पड़े हुए थे, गरीब के राशन पर, गरीब के स्वास्थ्य की सुविधा पर, गरीब की रोजगार पर इस सपाई गुंडे कब्जा करके एक गरीब को तबाह करते थे, जो नौजवान का रोजगार छीनने का पाप करते थे वे लोग अयोध्या मथुरा और काशी के बारे में कैसे सोच सकते थे, सोच ही नहीं सकते थे। बहनों और भाइयों नहीं सोच सकते थे। मंदिरों पे कब्जा करवाते थे लोग, मंदिरों पे कब्जा करवाते थे और अब कब्जा नहीं, अब उन मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है और पहले मंदिरों के नाम पर आने वाला पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर खर्च हो जाता था। आपने 9 वर्ष में आपने देखा होगा कोई उपद्रव नहीं, नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में अब सब चंगा, अब यूपी में सब अच्छा है, कोई दंगा नहीं। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण आप जन्माष्टमी का डोल निकालिए, आप दुर्गा पूजा का शोभा यात्रा निकालिए, आप रामनवमी की शोभा यात्रा निकालिए, कोई समस्या नहीं, किसी प्रकार की समस्या नहीं।
0: वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप देख रहे हैं आज
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
4: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
5: Right field, and it will...
4: From the first pitch of the season to the stretch run.
5: And that's the ball game.
4: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
6: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
7: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
8: In association with Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
9: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
10: Vimal, bolo zuba kesri. Hint, bade aaram se.

क्या दुनिया एक बार फिर महाविनाश के उस मुहाने पर खड़ी है जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं? क्या अमेरिका और ईरान का तनाव अब सीधे परमाणु युद्ध में बदलने वाला है? ये सनसनीखेज सवाल हम नहीं उठा रहे, बल्कि ये दावा खुद ईरान की राजधानी तेहरान के डिप्टी मेयर हामिद रेजा गुलाम जादेह ने किया है। उन्होंने सीधे शब्दों में डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती देते हुए कहा है कि अमेरिका के पास ईरान को झुकाने का अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वो है परमाणु हमला। तेहरान के डिप्टी मेयर ने साफ कहा कि अमेरिका के पास ईरान के खिलाफ सभी पारंपरिक सैन्य विकल्प खत्म हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब एकमात्र विकल्प जो अमेरिकी हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं वो परमाणु बमबारी है। वो इसके आगे कुछ नहीं कर सकते और अगर ऐसा हुआ तो भी हम लड़ेंगे। गुलाम जादे का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अली खामिनेई की मौत के बाद

दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है और हाल ही में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दोबारा झड़पें शुरू हो गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वाकई ईरान पर परमाणु बम गिरा सकते हैं। कूटनीतिक और सैन्य मामलों के एक्सपर्ट्स की माने तो इसकी संभावना न के बराबर यानी बेहद कम है। ट्रंप की पूरी रणनीति मैक्सिमम प्रेशर की रही है, जिसका मकसद ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना, उसकी तेल अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना और सैन्य दबाव बनाकर उसे नई न्यूक्लियर डील के लिए मजबूर करना है, न कि एक पूरे देश को तबाह करना। ट्रंप का मुख्य लक्ष्य हमेशा से ये रहा है कि ईरान के पास कभी परमाणु हथियार न आए। डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर अब तक क्या कहा है, ये समझना भी जरूरी है। अपनी रैलियों और साक्षात्कारों में ट्रंप हमेशा कहते आए हैं कि परमाणु हथियार दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने कई बार कहा है कि परमाणु हथियारों की ताकत इतनी विनाशकारी है कि इसका इस्तेमाल कभी नहीं होना चाहिए। ट्रंप और उनके सलाहकारों ने बार बार दोहराया है कि ईरान को रोकने के लिए पेंटागन की टेबल पर सभी विकल्प खुले हैं, लेकिन इसका मतलब परमाणु हमला नहीं, बल्कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका या इसराइल की ओर से सर्जिकल या मिसाइल स्ट्राइक करना है। मानव इतिहास गवाह है कि परमाणु बम का इस्तेमाल आज तक सिर्फ एक ही देश ने किया है और वो देश अमेरिका ही है। आज से करीब 81 साल पहले यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। 6 अगस्त को लिटिल बॉय और 9 अगस्त को फैट मैन नाम के बमों ने पलक झपकते ही 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। उस भयानक तबाही के बाद से आज तक किसी भी देश ने युद्ध में दोबारा परमाणु हथियार चलाने की हिम्मत नहीं की है। परमाणु हमले की धमकी कई बार दी गई है, लेकिन ये धमकी जितनी डरावनी होती है उसे अंजाम देना उतना ही नामुमकिन होता है। सुमित चौधरी, तेहरान, आज तक।

0: जितनी कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही है, गाड़ियां खराब हो रही हैं, रबर वो गल जाता है, क्या ये सही है?
1: ये पॉलिटिकल मुझे बदनाम करने के लिए और इथेनॉल को बदनाम करने के लिए एक प्रयास है।
0: नए नए एक्सप्रेसवेज जो बन रहे हैं उनमें गड्ढे, उनको नुकसान।
1: मैं आपको प्रार्थना करता हूँ कि हमारे हाईवे में जितने गड्ढे हैं उसके ऊपर आप कार्यक्रम करिए और दिखा दीजिए।
0: उन्हें चाहे ने एक कॉन्ट्रैक्टर का टर्मिनेट किया है,
1: एक में हजारों जो मिलता उसके ऊपर एक्शन, किसी को छोड़कर।
0: देश के दो सबसे महत्वपूर्ण शहर में शामिल, देश की राजधानी और साथ में देश की आर्थिक राजधानी दिल्ली और मुंबई की हम बात कर रहे हैं। और ये दो शहर ऐसे हैं जिसमें अगर हम जो पारंपरिक यातायात का सबसे डिपेंडेबल साधन यानी कि रेलवे, उससे अगर हम एक सामान्य ट्रेन से आए तो 18 से 20 घंटे का समय लगता है, और राजधानी अगर हो तो लगभग 16 घंटे का समय लग जाता है। लेकिन अब पूरे उस परिवहन की परिभाषा को बदलता हुआ एक ऐसा एक्सप्रेसवे दिल्ली और मुंबई के बीच जिसकी चर्चा बहुत होती थी, और नितिन गडकरी जी से हम लोग ये सवाल भी पूछते थे कि क्या वाकई संभव है कि दिल्ली और मुंबई 12 घंटे में, और अब जब हम उसके उस सिरे पर खड़े हैं जहां से दिल्ली में, चाहे ईस्ट दिल्ली हम लें या फिर दक्षिण दिल्ली लें, सबसे कुछ रास्ते हैं जो चढ़ जाते हैं इस पर आकर, ये संभव हो रहा है अब कुछ महीनों में?
1: देखिए, अभी तो हम दिल्ली मुंबई हाईवे पर नहीं लगे हैं, पर आप ये जो रोड के ऊपर खड़े उसके नीचे वाला एरिया जो है, और एक कालिंदी कुंज वगैरह, ये पहले इस एरिया में मैं पब्लिक मीटिंग के लिए आया था और तब मैंने देखा वहाँ से चलना मुश्किल था,
0: काफी इंक्रोचमेंट,
1: वाकई इंक्रोचमेंट थी, ये थी गंदगी थी, नाले थे। अब उस एरिया के ऊपर से ये एलिवेटेड रोड है, ये स्टेट ऑफ आर्ट डिजाइन है, ये जो ब्रिज बना हुआ है ऐसे बहुत अच्छा डिजाइन है। अब यहीं से दिल्ली से निकलकर डायरेक्ट इस रोड से चढ़कर, हाँ। ये भी रोड तो डायरेक्ट हमारा ये जो जेवर एयरपोर्ट पे भी जाएगा,
0: जेवर एयरपोर्ट भी जाएगा,
1: हाँ, तो ना ये जेवर एयरपोर्ट का रोड है, और बीच में से पलटकर फिर हम लोग दिल्ली मुंबई हाईवे को कनेक्ट हो जाएंगे।
0: अच्छा, तो अभी जिस एरिया में हम दिल्ली के हैं ये रोड अभी खुला नहीं है, कुछ दिन के लिए
1: ये अभी प्रधानमंत्री जी का डेट मांगी है और तुरंत मिलने के बाद ये पूरा हुआ है, और करीब 10,000 करोड़ का रोड हमने बनाया है और बहुत सुंदर है। दिल्ली में हम 1,60,000 करोड़ के काम कर रहे हैं। अभी तो हमने वसंत विहार की टनल भी मंजूर की है 8-9 हजार करोड़ की, और हम दिल्ली को बहुत कठिन काम है ट्रैफिक जाम से मुक्त करना, पर दिल्ली से ट्रैफिक जाम और पोल्यूशन से मुक्त करना ये हमारी कोशिश है और हम लोग इसके लिए कोशिश कर रहे हैं।
0: ये उसका एक बड़ा प्रयास, क्योंकि नीचे हम वाकई
1: अब देखें ये पूरा गंदगी का नाला है, ये पुराना एरिया है, वो शाहीन बाग वगैरह जो एरिया था वो नीचे में था, और देखो ये किस प्रकार से कितने बड़े समस्या ये काम करते समय, पर हमारे प्लास्टिक पड़ा हुआ है केड़ कचरा से, अब ये पूरा एरिया इंक्रोचमेंट है, झोपड़पट्टी है। हमने यहाँ से ऊपर में आकर देखो ये क्रेन कैसे डाली है, कैसे बनाया, बेस बनाया और नाले में घुस कर ये काम किया हुआ है, यानी आप नीचे जाके देखिए आप कि किस कितना कठिनाई में ये काम किया हुआ है, और ये नाले में हमने ऐसे ब्रिज तैयार किए।
0: तो हम अब एक्सप्रेसवे की तरफ चलते हैं।
1: चले
0: जी, तो इस मैप के हिसाब से यहाँ पर सर रेड वाला है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे।
1: अभी अभी हम लोग ये
2: सर हम लोग यहाँ से एंटर किए, ये दिल्ली का रिंग रोड है जो आपका डीएनडी है, वो यहाँ से ये हाईवे आया फरीदाबाद को बाईपास करते हुए, वो ये सोना पे ज्वाइन कर लेगा, ये गुड़गावा है, गुड़गावा सोना रोड है, ये एक्सप्रेस वे यहाँ शुरू होता है, यहाँ मिल जाएंगे सोना भी हम एक्सप्रेस वे, और तो ये जयपुर
1: इधर से
2: ये जेवर चले,
1: जेवर चलेगा,
0: जेवर एयरपोर्ट का
1: ये बदलपुर,
0: मतलब सारी डिस्टेंसेस कम हो जाएंगे,
1: एकदम
2: सिग्नल फ्री है,
1: और ये जो लोग अंदर घुसते थे दिल्ली के ये सब लोग अभी इधर आएंगे नहीं, इनको डायरेक्ट लिंक मिल गई, दिल्ली का ट्रैफिक काफी कम हो जाएगा, 30-40% ट्रैफिक।
0: सर आप बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं दिल्ली का ट्रैफिक कम करने का,
1: पर आप बता दिल्ली पेरिफेरियल रोड बना, जितने ट्रक जाते थे अभी बाहर चले गए, कम तो हुआ, अगर ये नहीं होते तो ये बात अलग है, कम होने के बाद और नया बढ़ा, इसके कारण इफेक्ट जितना आता है लोगों को नहीं आ रहा है।
0: एक तो वो कम हुआ, दूसरा मुझे लगता है कि जो दिल्ली के आसपास जो शहर है उनसे दूरी कम हुई, जयपुर हो गया, देहरादून हो गया।
1: दिल्ली देहरादून 2 घंटे में,
0: 2 घंटे
1: जयपुर सवा 2 घंटे में, ये तो बदल एकदम हो गया। अब एग्जिस्टिंग दिल्ली जयपुर रोड का भी ट्रैफिक ज्यादा कम नहीं हुआ, इसका मतलब ट्रैफिक बढ़ा भी बहुत,
0: ट्रैफिक बढ़ा भी है। पर सर 1 लाख करोड़ इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की,
1: दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कीमत 1 लाख करोड़ की, अब ज्यादा हो जाएगी, 1,10,000 करोड़ से ज्यादा।
0: उस हिसाब का रिटर्न्स क्या, अगर एक आम आदमी सोचे, देखिए सरकार की बात एक होती है, एक होता है आम इंसान सोच रहा है।
1: देखिए ये रिटर्न के हिसाब से नहीं गिनना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए अभी एक रिपोर्ट आया IIM बेंगलोर, IIT कानपुर और IIT चेन्नई का, ये एक समय हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट GDP के हिसाब से 16% आती थी।
0: अच्छा।
1: और चाइना की 8%।
0: हाँ।
1: और अमेरिका और यूरोपियन कंट्री की ये 12% की, और अभी ये रिपोर्ट ऐसा आया है कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 6% कम हुई है, तो ये एकदम 10% पे आई 6 महीने पहले।
0: हाँ।
1: अभी तो मुझे लगता है वो 9 पे आई होगी, सिंगल डिजिट पे। तो हम इंटरनेशनल मार्केट में हमारे आयात निर्यात में हम लोग अगर 6% कॉस्ट कम हो जाएगी तो उतना कॉम्पिटिटिव होंगे, तो मुझे लगता है एक प्रकार से हमारी इकोनॉमी को बूस्ट हो जाएगा, नई इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस और टूरिज्म बढ़ेगा। सिंपल उदाहरण बताता हूँ, यहाँ से बद्रीनाथ केदारनाथ का दिल्ली से हमने भी रोड बना दिए, तो 3 गुना ट्रैफिक पर्यटकों का बढ़ा, कितना टन कर रहा। अब वो सरकार को कंट्रोल करना पड़ा, ये ज्यादा लोग बताइए। अच्छा टूरिज्म जब आता है तो 49% एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए खर्चा होता, इससे रोजगार निर्माण होता है।
0: तो सर अगर मैं एक ट्रक लेकर मान लीजिए मैं जा रही हूँ दिल्ली से मुंबई, तो डीजल के हिसाब से, वक्त के हिसाब से, पैसों के हिसाब से मेरी कितनी परसेंटेज मेरी बचत होगी?
1: देखो पहली बात तो एक ट्रक दिल्ली से मुंबई जाने के लिए अभी 48 घंटे लग
0: ट्रक को,
1: अब वो ट्रक जाएगा 18 से 20 घंटे, तो उसके करीब 28 घंटे बच गए, तो वो एक महीने में अगर 4 ट्रिप करता होगा तो 7 ट्रिप करेगा, तो एक ही ट्रक की 7 ट्रिप होगी तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। दूसरा जो चलते समय उतनी मशीन कम चलेगी तो फ्यूल भी बचेगी, और फ्यूल बचेगी, कॉस्ट बचेगी, टाइम बचेगा, रिटर्न ज्यादा मिलेंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर, और उसके कारण ही लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी।
0: सर फ्यूल की बात आपने की है तो मैं उस फ्यूल की बात करना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ आपसे, जिसके साथ मतलब आपने जब इथेनॉल के बारे में बात करना शुरू किया था, मैं भी समझ सकती हूँ कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को ये चीजें देखनी है, लेकिन आप बहुत पैशनेटली उसके बारे में बताते भी थे। आज जो जितनी कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही है कि गाड़ियां खराब हो रही हैं, कोई कह रहा है उसका रबर का इस्तेमाल जहां होता है वो गल जाता है, क्या ये सही है या फिर केवल एक डर है, क्या है? क्योंकि कुछ
1: पहली तो बात ऐसी है कि मैं केवल इथेनॉल की बात नहीं करता
0: जी, ऑल्टरनेटिव फ्यूल,
1: अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल की बात करता, इलेक्ट्रिक भी मैंने शुरू की
0: जी,
1: और हाइड्रोजन की भी बात करता हूँ, मिथेनॉल, CNG, मैं ये सब अल्टरनेटिव बायोफ्यूल की इसलिए बात करता हूँ कि हमारे देश में 22 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल इम्पोर्ट होता है, जो हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट का 87% है। आत्मनिर्भर भारत बने, हमें इम्पोर्ट करने की जरूरत ना पड़े, और इसका फायदा युवाओं के लिए रोजगार निर्माण हो, और इसका फायदा किसान, अन्नदाता, ऊर्जादाता, ईंधनदाता, हवाई ईंधनदाता, बिटुमिन दाता, हाइड्रोजन दाता बने, ताकि गांव गरीब मजदूर किसान को फायदा मिले, इसलिए मैं बात 2004 से कर रहा हूँ। रही बात इसमें फ्यूल कैसा यूज करना, किसको ऐड करना, ये सब पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अधिकार में आता है। मेरी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में ये जो ऑटोमोबाइल इंजिन है इसके स्टैंडर्ड फ्यूल के हिसाब से तय करना और उसके बारे में रेगुलेशन करके नियम करना, ये मेरे अधिकार में आता है। तो फ्यूल ऐड करना नहीं करना ये होता है, इसका टेंडर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री निकालती है, रेट कैबिनेट में तय होता है। और ये भी आरोप किया गया कि मैं इसके, तो मैं इथेनॉल शुरू होने के पहले ही मैंने शुगर फैक्ट्री शुरू की थी, अब तो मैं देखता नहीं, मेरे लड़के देखते हैं, और टोटल 1500 करोड़ रुपए करोड़ लीटर जो इथेनॉल खरीदी किया जाता है और 550 इंडस्ट्री है, कोई चावल से बनाता, कोई मक्के से बनाता, कोई शुगर केन जूस से बनाता, कोई मोलास, उसमें हमारा शेयर 0.07% यानी 1500 लीटर में 1,70,00,000 तो अल्कोहल बनाता हूँ बॉटलिंग ब्रांड, तो हम लोग नहीं के बराबर, तो इसका बेनिफिट कोई हमको मिलने का कोई विषय नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम अल्कोहल अपना यूज कर रहे हैं।
0: पर क्या इथेनॉल से नुकसान हो रहा है सर गाड़ियों?
1: पहली बात मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ,
0: हाँ।
1: क्या आपके नजरों में आप भी पेट्रोल गाड़ी यूज करती है? अब 20% आपके गाड़ी में भी इथेनॉल है, आपको कोई तकलीफ हुई?
0: अभी तक तो नहीं।
1: आपके पेट्रोल की गाड़ी जिसकी इथेनॉल के कारण बिगड़ी हुई है, ऐसे दो लोगों के नाम बता सकती हैं मुझे?
0: अपना पर्सनल जान पहचान के?
1: हाँ, कोई भी बताओ, जो भी देश का बताओ, कुछ भी बताओ, है कोई?
0: नहीं, यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं।
1: मैं आपको बताता हूँ कि ये पेट्रोल की गाड़ियां, इसमें जो गाड़ियां जा रही है, ये जो फ्लेक्स इंजन है, इसमें 40% शेयर मारुति सुजुकी का है, उनके पास एक भी कंप्लेंट नहीं आया, टोयोटो के पास एक भी कंप्लेंट नहीं आया, अभी कोई टाटा महिंद्रा किसी के पास कोई कंप्लेंट नहीं आया। दूसरी बात, इसका इंश्योरेंस कवर है, गारंटी कंपनी दे रही है, कोई गारंटी में फर्क नहीं पड़ा। हाँ, एक बात जरूर है कि गाड़ी का मेंटेनेंस होते रहता है, 2-4 तास कोई पार्ट्स लगता है, कोई निकलता है। अभी एक पटना में घटना हुई कि टोयोटो कंपनी पर आरोप लगाया, वो इनोवा गाड़ी थी, वो खराब हुई वगैरह, तो उनने कहा गाड़ी दो हमको, हम चेक करना है। बोले नहीं देता, तो उन्होंने कहा नहीं देंगे तो हम पब्लिक डिक्लेयर करेंगे। फिर उसने गाड़ी दी, चेक किया तो उसमें पानी एडल्ट्रेशन किया हुआ मिला।
0: सर कोई खुद से थोड़ी मिलाएगा, मतलब
1: आप ही बता। कि फिर बाद में उसका टेस्टिंग हुआ,
0: हाँ।
1: अब वो FIR दर्ज की उसके खिलाफ। अभी ये क्या है कि ये पॉलिटिकल एक मुझे बदनाम करने के लिए और इथेनॉल को बदनाम करने के लिए एक प्रयास है, और मैं तो आह्वान करता हूँ। मैंने कल ही कहा कि जिसमें की गाड़ी पेट्रोल की इथेनॉल डाली खराब हुई है, वो एक तकरार तुरंत डीलर के पास करे, और एक तकरार हमारी मिनिस्ट्री ने नियम तैयार की है इसके बारे में, हमें तकरार करें, हम इंक्वायरी करेंगे, आपको राहत देंगे।
0: आपको लग रहा है सेफ है इथेनॉल?
1: देखिए, अमेरिका में इथेनॉल है,
0: हाँ।
1: ये थाईलैंड में है, ये जापान में है, ये जर्मनी में है, ये ब्राजील में है, ये हिंदुस्तान में है,
0: हाँ।
1: स्वीडन में है, ये 11 देशों में इथेनॉल यूज होता है। अब जिस देश में अपना खुद का पेट्रोल डीजल सस्ता अवेलेबल है, वो यूज करने का कोई कारण?
0: पर सर ये भी समझाइए ना, क्या ये सचमुच में पायलट प्रोजेक्ट है, क्या अभी कोशिश हो रही है या ये
1: पायलट प्रोजेक्ट नहीं है, ये कोई इसको भी सेंटर पे किया गया। कोई भी गाड़ी आज मेरे मन में आया और मैंने डाल दिया इथेनॉल, ऐसा नहीं होता, 4-4 साल इसके एक्सपेरिमेंट हो गया।

0: तो सर इसमें मतलब अगर हम बाकी रोड से कंपेयर करें, एक्सप्रेसवे से कंपेयर करें, तो इसमें कौन सी एक ऐसी चीज है, कोई नई टेक्नोलॉजी या ऐसी चीज जो इसे बाकियों से अलग और एक तरीके से।
1: आपने जो लोहे का ब्रिज देखा ना,
0: हाँ,
1: वो अपने आप में बहुत बड़े साइज का अच्छा डिजाइन किया हुआ है। वैसे हमारे हर प्रोजेक्ट में भी हम लोग जो जितनी नई नई टेक्नोलॉजी है उसको स्वीकार कर रहे हैं। वैसे इसमें एक टेक्नोलॉजी अभी आई नहीं है, ये दो पियर है ना, इसके बीच में हमारे यहाँ केवल 30 मीटर डिस्टेंस होता है।
0: अच्छा।
1: अभी हमने एक मलेशिया से और सिंगापुर से एक टेक्नोलॉजी लाई है कि ये 120 मीटर हो जाएगा डिस्टेंस।
0: अच्छा।
1: और एक ही पिलर के बीच में ऊपर का बीम स्टील फाइबर में कास्ट होगा।
0: हाँ।
1: और अभी हम 50,000 करोड़ के 5 ऐसे ब्रिज बना रहे हैं।
0: हाँ।
1: नीचे में कोना में,
0: हाँ,
1: नीचे में रोड, ऊपर में एक ही पिलर पर ब्रिज,
0: हाँ,
1: उसके ऊपर में ब्रिज, उसके ऊपर में मेट्रो।
0: अच्छा।
1: 4 फ्लोर 3 फ्लोर के 50,000 अभी मंजूर हो गए।
0: हाँ।
1: अब मैं भूमि पूजन के लिए भी जाने वाला हूँ।
0: हाँ।
1: मुख्यमंत्री जी का टाइम है।
0: और ये जो हम इस एक्सप्रेसवे की खासकर बात करते हैं, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार अलाउड रहेगी इस पर।
1: हाँ, हाँ।
0: सर सेफ्टी को लेकर कोई इशू नहीं होगा?
1: अभी तो फॉरेन में 200-225 किलोमीटर तक अलाउड।
0: हाँ।
1: वैसे हमारे यहाँ भी स्पीड और बढ़ सकती है, पर हमने हमारे यहाँ के ट्रैफिक डिसिप्लिन और लोगों का अप्रोच देखते हुए हमने 120 तक सीमित किया।
0: अच्छा, 120 पे सेफ रहेगा इस
1: सेफ
0: हाईवे पर। अच्छा।
1: और हमने उधर पेंच में भी बनाया, नागपुर जबलपुर सुंदर बनाया। हम लोग इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की तरफ ध्यान देते हैं, पेड़ को ट्रांसप्लांट करते हैं, वाइल्ड लाइफ को लिए सुविधा करके देते हैं। और हमने इकोलॉजी एनवायरनमेंट को प्रभी हम बाम्बू के क्रैश बैरियर बना रहे हैं। हम डांबर में हम बिटुमिन में प्लास्टिक और रबर डालकर वो मिक्स तैयार करने की कोशिश करते हैं, बायो बिटुमिन। ये परली है ना राइस स्ट्रॉ, इससे बायो बिटुमिन बनेगा, वो हम यूज करने की बात कर रहे हैं।
0: सर मगर एनवायरनमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट की बात करते हैं तो भारत दुनिया के देशों में रैंक कर रहा है अभी।
1: हम बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत जल्दी हम दुनिया के आगे जाएंगे। यही तो बायो फ्यूल अल्टरनेटिव फ्यूल की बात है।
0: हाँ।
1: अगर आगे जाना होगा तो प्रदूषण को कम करना पड़ेगा, और इसलिए फॉसिल फ्यूल को कम करना है। पूरी दुनिया फॉसिल फ्यूल को कम कर रही है, और वही तो पर्यावरण की रक्षा करने के लिए आवश्यक है। दिल्ली में इतना एयर पोल्यूशन है, ये पंजाब और हरियाणा में 280 लाख टन परली जला देते हैं। ये पंजाब और हरियाणा का ऑफिशियल डाटा है। अब वो परली से बायो सीएनजी बनेगा, हवाई ईंधन बनेगा, इथेनॉल बनेगा, और परली का भाव 2,500 रुपये टन हो गया। तो हमने वेस्ट में वैल्यू क्रिएट की। हमने गाजीपुर टेकड़ी की 7 मीटर हाइट कम थी, वो पूरा कचरा हमने सेग्रीगेट करके रोड में डाला। अब दिल्ली के मैं 2027 तक हमने निर्धार किया है कि हम लीगेसी वेस्ट देश की समाप्त कर रहे हैं।
0: बारिश इतनी तेज हो रही है, आपने ये भी कहा कि आपको टारगेट कर रहे हैं लोग, एक और चीज को लेकर बहुत ज्यादा टारगेटिंग हो रही है, वो ये है जो नए नए एक्सप्रेस वेज जो बन रहे हैं उनमें गड्ढे, उनको नुकसान।
1: मैं आपको प्रार्थना करता हूँ
0: जी,
1: ये हमारे हाईवे में जितने गड्ढे हैं उसके ऊपर आप कार्यक्रम करिए और दिखा दीजिए। देखो गड्ढे नहीं है ऐसा मैं नहीं कहूंगा, हेवी ट्रैफिक के बाद 2 साल 3 साल 4 साल कभी ना कभी प्रॉब्लम आते हैं, पर आप मुझे बताइए आज जो लोग ही आपको फीडबैक देंगे इतना रोड अच्छा है, हमें 2 घंटा 3 घंटा नीचे हमारे बच गए, तो कमियाँ है और कमियाँ हम इम्प्रूव ही कर रहे हैं। और अभी हमारे पास एक एक्सरे मशीन जैसा है कि हम कॉन्ट्रैक्टर का, ऑफिसर का और रोड का एक्सरे निकाल के अब हम सब निकाल सकते हैं कि भाई गड़बड़ क्या है, राइडर क्वालिटी कैसी है, एक्सपांशन जॉइंट कैसे है, ये कंस्ट्रक्शन कैसा हुआ है, यहाँ पेड़ लगे हैं तो कौन से है, कौन सी स्पेसीज है, हम सबका। मैं अभी पिछले महीने में पूरा महीना मैंने 1,950 प्रोजेक्ट का रिव्यू लिया, कल भी मैंने करीब 23 एक्सप्रेस हाईवे का रिव्यू लिया अधिकारी कॉन्ट्रैक्टर सबके साथ। तो मैं ये नहीं कहता कि कहीं कमी हो सकती है, चल रही है।
0: पर आप लोग एक्शन लेते हैं क्योंकि एनएचआई ने एक कॉन्ट्रैक्टर का टर्मिनेट किया है, बताया
1: कि मैं हजारों जो मिलता उसके ऊपर एक्शन। तो मैं पहले कहता था कि अमेरिका से अच्छे रोड बनाए नहीं रहे, और अब हम हाईवे नेटवर्क, नेशनल हाईवे नेटवर्क में वर्ल्ड में नंबर एक पर पहुंचा। और मुझे अमेरिका से आए हुए लोग कहते हैं कि तुम ये अमेरिका के जैसे रास्ते की क्या बात कर रहे हो, तुम गलत बोल रहे हो। तो बोला क्या हुआ, तो बोले हमारे रास्ते अमेरिका से भी अच्छे बने। इसका मतलब हमारे यहाँ कोई गलती नहीं है सर, कई गड्ढे मिल सकते हैं, हम उसको इम्प्रूव कर रहे हैं।
0: तो कई कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब ये इतना लंबा स्ट्रेच है, इसमें कई कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं, आप लोग कैसे सुनिश्चित करेंगे कि सोशल मीडिया के जरिए नहीं बल्कि खुद से ये जानकारी हो कि ये खराब है?
1: हमारे इसमें है, ये BOT हाइब्रिड एनुटी सब प्रोजेक्ट में 10-10 साल तक उस रोड को मेंटेन करने की गारंटी, डिफेक्ट लायबिलिटी उनके पास है, कुछ होगा तो उनके जिम्मेदार, क्योंकि बैंक गारंटी हमारे पास पड़ी है, हम जब्त करेंगे।
0: यहाँ जो नुकसान अगर दिखा है वो भरेंगे?
1: हाँ बिल्कुल, उनका पास उनकी जिम्मेदारी है, बाद में इनका हम रेटिंग कर रहे हैं अभी।
0: हाँ।
1: बड़े बड़े कंपनियों को काम दिया है।
0: हाँ।
1: और खराब काम करेंगे तो इनको सिस्टम से निकाल देंगे, ब्लैकलिस्टेड कर देंगे।
0: अच्छा।
1: हाँ।
0: तो क्वालिटी कंट्रोल दुरुस्त,
1: क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं जी।
0: कितने समय तक वो आपके लिए प्रासंगिक रहेगी वो डिजाइन? जरूरतें बदलती हैं, उस हिसाब से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को अगर मैं समझना चाहूँ।
1: देखिए प्रॉब्लम एक है।
0: हाँ।
1: कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन रिसर्च रोज बदलता है।
0: हाँ।
1: और सरकार में नई बात को एक्सेप्ट करने के लिए बड़े रिलेक्टेंट रहते हैं, क्योंकि कल कुछ कम ज्यादा हुआ तो क्या होगा। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि नए प्रयोग करेंगे तो 10 में से 4 प्रयोग में कुछ अड़चन आ सकती है, तुरंत मीडिया उसको इलाज, तो कोई करने के लिए तैयार नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
0: हम उम्मीद करते हैं कि बारिश थोड़ी रुके और हम अगले जो आपका रिव्यू पॉइंट है वहां पर हम ओके। तो ये एक्सप्रेसवे पूरा खुलने का इंतजार सबको है। हम इस समय एक ऐसी रेस्ट एरिया में रुके हैं, बारिश बहुत हो रही है इसलिए शेड है, लेकिन ऐसी बहुत सारी जगह मिल जाती हैं। यहाँ पर EV के रिचार्ज का पॉइंट भी है और जो अब एक नॉर्म हो चुका है। लेकिन नितिन जी, अगर हम ये सोचें कि ये कब तक आपका टारगेट है, कब तक बिना किसी डाइवर्जन के, बिना इस पे से उतरे?
1: अभी तो लगभग ये बड़ौदा के आगे तक पूरा हो गया
0: जी,
1: केवल मुंबई के भी एक पैकेज में और इधर गुजरात में 2 पैकेज में प्रॉब्लम है।
0: हाँ।
1: वो कॉन्ट्रेक्टर फेल हो गया, हमने टर्मिनेट कर दिया।
0: अच्छा।
1: वही है, बाकी 3 पैकेज छोड़कर बाकी लोग लगभग 80% काम पूरा हो।
0: आज जिस तरह के इंस्पेक्शन के लिए आप निकले, रिव्यू के लिए निकले, ऐसे आप निकलते रहते हैं?
1: निकलते रहता हूँ, क्योंकि आपको एक बात बताता हूँ कि हम जब लोग प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं तो मैं आज बहुत सी बातें मैं समझ गया हूँ, कुछ बातें आपके सामने बोल सकता हूँ, कुछ नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं इसमें सब बातें समझ गया हूँ। अब मैं इसके ऊपर वर्क करके फिर जब पूछूंगा क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्या हुआ, तो इसका जब पता चलता है अधिकारी और कॉन्ट्रेक्टर को तो अवेयरनेस बढ़ता है। अभी ये जो हमने मशीन है, अभी जो मैं देखने लग ले जाऊंगा, ये एक्सरे मशीन है रोड का, मुझे कहाँ गड्ढा है, कहाँ स्लोप है, कहाँ राइडिंग क्वालिटी खराब है, या प्लांटेशन कितना हुआ है, स्ट्रक्चर्स कहाँ है, रोड पर कौन खड़ा, एवरीथिंग मेरे पास आ जाएगा। AI का उपयोग किया
0: उस एक मशीन के साथ,
1: वो AI ये भी बताएगा कि अगले 2 महीने के बाद रोड खराब होने वाला है क्या, उसमें प्रॉब्लम क्या है, ये भी आ जाएगा।
0: अच्छा।
1: हाँ।
0: और इतना महंगा रोड, टोल के लिए भी उतनी ही जेब खाली करनी होगी?
1: नहीं, अभी तो हमने सस्ता कर दिया ना।
0: हाँ।
1: 3,000 रुपए में 200 टोल फ्री है, तो 15 रुपए में आ गए टोल, तो लगभग तो कोई प्राइस ही नहीं उसका।
0: अच्छा।
1: जो 150 रुपए भरते थे।
0: हाँ।
1: वो 15 रुपए में आ गया, तो कार वालों के लिए नहीं है, और बाकी ट्रक वालों के लिए तो उनका सेविंग भी है ना, फ्यूल का सेविंग है, टाइम का सेविंग है, उसमें उनका फायदा भी है।
0: चलिए नितिन जी, हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये एक्सप्रेसवे लोगों के लिए खुल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा हिस्सा हमें दिखाने के लिए, इसका पार्ट हमें बनाने के लिए, बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
2: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
3: Right field, and it will...
2: From the first pitch of the season to the stretch run.
3: And that's the ball game.
2: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.

0: राम भक्तों के चढ़ावे के साथ जो हुआ वो अनर्थ था, आस्था पर बड़ी चोट थी और उस वारदात से हर कोई आहत है। कुछ ऐसा ही दुख जता रहे हैं राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा। वो अब कह रहे हैं कि राम मंदिर में हुई घटना से हम सब छोटा महसूस करते हैं।
1: यह अपने में एक तरीके का कलंक है। एक तरीके से राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है, व्यवस्था में सुधार होगा मुझे पूरा विश्वास है और इस प्रकार की घटनाएं दोहराई नहीं जाएंगी।
0: चढ़ावा चोरी के गंभीर आरोपों की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे सामने आते जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से अब सामने आया है कि मंदिर में काम करने वाले कुछ पूर्व सैनिक पर कुछ भी बोलने पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसके लिए बकायदा सभी पूर्व सैनिकों को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा गया था। कहा गया था कि कोई कुछ भी पूछे बोलना नहीं है। जिस मैसेज पर सवाल उठ रहे हैं उस मैसेज का स्क्रीनशॉट भी आज तक के पास मौजूद है। इससे साफ है कि चढ़ावा चोरी के खुलासे के बाद मामले को छिपाने की कोशिश की गई थी। उधर पुलिस आरोपों की तह तक जाने के लिए अब जेल में बंद आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव से सवाल जवाब की तैयारी है। पुलिस दोनों को रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी। इसके लिए पुलिस ने कोर्ट में अर्जी दी है और 7 दिन की रिमांड मांगी है। 14 जुलाई को पुलिस की याचिका पर फैसला हो सकता है। चढ़ावा चोरी मामले में सवाल उठने के बाद ट्रस्ट महासचिव पद से इस्तीफा देने वाले चंपत राय ने अब अपने करीबी सहयोगियों से कहा है कि एसआईटी की अंतिम जांच रिपोर्ट आने तक वो अयोध्या नहीं छोड़ेंगे। सूत्रों की माने तो उन्होंने जांच पूरी होने तक अयोध्या में रहकर पूरी तरह सहयोग देने की बात कही है। इस बीच चंपत राय की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। तीर्थ क्षेत्र भवन के आसपास अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस Chogan Perfumes, the French edition for him and her.
2: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
3: Jack, you're killing me.
2: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
4: जो ये लोग आस्था की बात करते हैं याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमान गढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? कौन करवा रहा था? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की, राम के नाम पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया, राम भक्तों पर गोलियां चलाए, अयोध्या के नाम पे पहचान का संकट खड़ा किया। ये डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, कोई रोक नहीं पाया।

0: क्या दुनिया इतिहास के सबसे बड़े तेल संकट की ओर बढ़ रही है? ईरान और अमेरिका के बीच पिछले महीने हुआ शांति समझौता महज चंद दिनों में बारूद की तरह उड़ गया। वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसे ईरान ने अमेरिका के खिलाफ अपना ब्रह्मास्त्र बना लिया है। तेहरान का एक ही सूर हॉर्मुज पर अब ईरान का नया नियम मानना ही होगा। बीते 4-5 दिनों के भीतर हॉर्मुज की लहरें खून से लाल हो चुकी हैं। तेहरान की मर्जी के बिना गुजर रहे जहाजों पर ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। पहले एक अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल कार्गो शिप पर ईरान ने सीधे गोलियां बरसाई, इसके बाद एक और तेल टैंकर को ईरानी नौसेना ने घेर कर निशाना बनाया। जवाब में अमेरिकी सेना ने जवाबी गोलीबारी की तो ईरान ने भी पीछे हटने के बजाय अमेरिकी युद्ध पोतों पर मिसाइलें तान दी। दोनों देशों के बीच सीधे युद्ध शुरू हो चुका है। इस बीच अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस ने एक बेहद सनसनीखेज और खौफनाक दावा किया है। एक्सियोस के मुताबिक अमेरिका अब किसी छोटी मोटी झड़प की नहीं बल्कि कई दिनों तक और कई हफ्तों तक चलने वाली एक भीषण जंग की तैयारी कर रहा है। व्हाइट हाउस का पूरा फोकस अब सिर्फ और सिर्फ हॉर्मुज को ईरान के चंगुल से छुड़ाने पर टिक गया है। साफ है कि जो परमाणु मुद्दा पिछले जंग की वजह था वो अब पीछे छूट चुका है। हॉर्मुज ही इस महायुद्ध का ग्राउंड जीरो बन गया है। ईरान इस गोल्डन वेपन से अपना कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है और अमेरिका इसे ईरान के नियंत्रण में जाने नहीं देगा। ईरान ने जिद नहीं छोड़ी और अमेरिकी आक्रमण नहीं थमे तो दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था का ठप होना और महाविनाश तय है। आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारतीय समुदाय के बीच बोले प्रधानमंत्री मोदी, नए भारत की विकास गाथा अभूतपूर्व है, जल्द होंगे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर बोला हमला, कहा ये लोग मंदिर करते हैं कब्जा, मंदिरों के पैसे कब्रिस्तान में लगाते थे। अखिलेश यादव बोले पराजय काले विपरीत बुद्धि।

मिश्रा का टिकट कटने से बीजेपी में विद्रोह। सड़कों पर उतरे समर्थक और तोड़फोड़, पथराव और जाम भी किया। दिल्ली पहुंचे नरोत्तम मिश्रा, बोले लोग शांति बनाए रखें। पंजाब कांग्रेस में कलह खत्म करने के लिए प्रभारी भूपेश बघेल की चन्नी गुट के साथ बैठक। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावरिंग को हटाने की मांग की। वियतनाम में भारतीय पर्यटकों से भरी नाव पलटी, 15 लोगों की मौत। फुकवोक द्वीप के पास हुआ यह हादसा।

0: नमस्कार, रणभूमि स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौम्य चौधरी। महज कुछ दिनों की शांति के बाद एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में जंग की आग धधकने लग गई। कुछ दिनों तक एग्रीमेंट खेलने के बाद अब ईरान और अमेरिका में बम बारूद के कसीदे पढ़ने जाने शुरू हो गए हैं। दोनों मुल्क एक दूसरे को मिट्टी में मिलाने के नए और बड़े ऐलान कर रहे हैं। वहीं ट्रंप के ताजा ऐलान ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया। आज रणभूमि में बात करेंगे इन्हीं जंगी ऐलानों को लेकर, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं रणभूमि में आज आपके लिए क्या कुछ खास होने वाला है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि रणभूमि स्पेशल की वो पांच बड़ी खबर जिन पर हमारी नजर होगी। सबसे पहले आपको बताएंगे रणभूमि स्पेशल में कि कैसे अमेरिका ने ईरान में सीज फायर खत्म करने के ऐलान के बाद ही ये तय माना जा रहा है कि अब महायुद्ध फिर से शुरू होने वाला है। रणभूमि स्पेशल में दूसरी बड़ी खबर, हम आपको दिखाएंगे कि ट्रंप का वो पोस्ट जिसमें उन्होंने चेतावनी देते हुए लिखा है कि ईरान की ओर अमेरिका की 1000 से ज्यादा मिसाइल लॉक और लोड कर दी जा चुके हैं। रणभूमि स्पेशल में तीसरी खबर, हम आपको बताएंगे कि भारतीय नौसेना के बेड़े में INS महेंद्र गिरी शामिल हो गया है। INS महेंद्र गिरी पूरी दुनिया पूरी तरीके से स्वदेशी है और ये एक तरीके का अस्त्र युद्धपोत है। रणभूमि स्पेशल में चौथी खबर में आपको दिखाएंगे, लेकर चलेंगे अफगान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर, जहां पर आज तक की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी आपको दिखाने वाले हैं। रणभूमि स्पेशल में आखिरी बड़ी खबर, हम आपको न्यूजीलैंड में प्रधानमंत्री मोदी का विकास मंत्र सुनाएंगे और पूरी दुनिया में कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की विकास गाथा के बारे में नए और बड़े ऐलान किए। रणभूमि स्पेशल में आज हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े होंगे। हमारे साथ रणनीतिक विशेषज्ञ प्रसून शर्मा जी जुड़े होंगे और साथ में विदेशी मामलों के जानकार डॉक्टर मनन त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़े होंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं उस खबर की जो बहुत महत्वपूर्ण है, यानी इस समय एक बड़ी खबर आ रही है वियतनाम से, जहां पर वियतनाम के फूक वोक द्वीप पर एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां भारतीय पर्यटकों से भरी एक नाव पलट गई है। हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है और मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसे वियतनाम का सबसे बड़ा द्वीप या सबसे बड़ा आप कह सकते हैं इलाका माना जाता है, वो इलाका जहां पर विदेशी पर्यटकों की बहुत ज्यादा भीड़ होती है। और इसी बीच ये खबर आ रही थी कि इसी आप कह सकते हैं कि तट पर 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई नाव पलटने की वजह से। कहा जा रहा है कि इस नाव हादसे में 32 भारतीय पर्यटक समेत 36 लोग सवार थे, जिसमें सबसे ज्यादा तादाद भारतीय नागरिकों की थी, जिसमें 15 पर्यटकों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। ये वियतनाम का फूक्योक द्वीप है जो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये वहां के सबसे बड़े द्वीपों में से एक है और यहाँ पर हमेशा भारी तादाद में टूरिस्ट यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आते हैं। और अब रुक करते हैं उस खबर का जो इस समय पूरी दुनिया में हड़कंप मचाए हुए है। क्या ईरान और अमेरिका के बीच महायुद्ध पार्ट 2 शुरू होने वाला है? क्या स्थायी सीजफायर के सारे विकल्प बंद हो चुके हैं? फिलहाल जो हालात हैं वो तो यही संकेत दे रहे हैं कि ये जंग और ज्यादा भीषण होने वाली है। इस हफ्ते हुए तमाम हमले इसी के संकेत देते हैं। ऊपर से ट्रंप की ये धमकी कि अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो 1000 से ज्यादा मिसाइलें ईरान की तरफ लॉक एंड लोडेड हो चुकी हैं और ईरान को मिट्टी में मिला देंगी। अपने आप में हड़कंप मचाने वाले इस बयान से पूरी दुनिया सकते में। सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
1: ये है ट्रंप की नई धमकी। ईरान को मिट्टी में मिलाने का नया ऐलान, दुनिया भर में हड़कंप मचाने वाला नया फरमान। आखिर किसने रची ट्रंप की हत्या की साजिश? ईरान युद्ध की वजह से है ट्रंप को खुद की हत्या का अंदेशा। बढ़ रहा है महायुद्ध का महाखतरा। खामिनेई की अंतिम यात्रा के बाद सुलह से ज्यादा संग्राम का जो डर लग रहा था वो सही साबित होता दिख रहा है। इस पूरे हफ्ते अमेरिका और ईरान में सिर्फ बयानों का वार पलटवार ही नहीं हुआ, मिसाइलों का प्रहार भी जमकर हुआ। हुर्मुज में जहाजों पर हमलों से शुरू हुई लड़ाई कुछ ही घंटों में ईरान के अलग अलग शहरों में बमबारी तक पहुंच गई। एक तरफ ईरान अली खामिनेई को दफनाने की तैयारियों में जुटा था तो दूसरी तरफ उसे अमेरिका के हमले का जवाब देने के लिए कतर और बहरीन तक सैन्य ठिकानों पर निशाने लगाने पड़े। दोनों इतने पर ही नहीं रुके, अमेरिका ने तेहरान के आसपास कई इलाकों में ताबड़तोड़ हमले किए, पुल उड़ा डाले और ऑयल रिफाइनरी तक को निशाना बनाया। तो ईरान ने तेल अवीव और कई इलाकों में इजराइल के मिलिट्री बेस को बर्बाद कर दिया। सीज फायर की धज्जियां उड़ाते इन हालात ने ट्रंप का गुस्सा और बढ़ा दिया। पहले उन्होंने बयान दिया कि हमने अच्छे होने की वजह से ईरान को एक हफ्ते की छुट्टी दी है ताकि वो अपने नेता को अंतिम विदाई दे पाए। फिर ट्रंप ने कहा कि ईरान युद्ध में हमारे हाथों पूरी तरह बर्बाद हो चुका है।
2: We've gotten concessions, now they have to hold those concessions, but there'll be no nuclear weapon. We're going to be getting the, as I call it, dust, the enriched material, nuclear dust, I call it. Seems to have taken off, but it's enriched material. We're getting it. We're getting it. I went in for one reason, very strongly, that Iran cannot have a nuclear weapon. I'm not looking for regime change, although this is regime change. The first regime is gone. The second regime is gone. And I think the third regime is more reasonable, but we'll find out. But we've destroyed their, as you know, completely destroyed, 150. They had 159 ships. Every single ship is at the bottom of the sea. We've completely destroyed. They don't have one airplane. They don't have radar.
1: लेकिन अब ट्रंप का जो ताजा बयान आया है उसने तो हड़कंप मचा दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर साझा की पोस्ट में कहा है कि अगर ईरान की सरकार ने अपनी उस धमकी पर अमल किया जिसमें उसने अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति यानी मुझ पर जानलेवा हमला करने या हत्या करने की बात कही है तो ईरान पर 1000 मिसाइलें दागी जाने के लिए तैयार हैं। इसके तुरंत बाद हजारों और मिसाइलें दागी जाएंगी। इसके लिए आदेश दिए जा चुके हैं और अमेरिकी सेना पूरी तरह तैयार और सक्षम है कि वो एक साल तक ईरान पर हमले जारी रखें और ईरान के हर इलाके को पूरी तरह तबाह और बर्बाद कर दें। ट्रंप ने इस पोस्ट के जरिए एक तरफ जहां अमेरिकी सेना के महायुद्ध के लिए पूरी तरह तैयार रहने का संदेश दिया है, वहीं ये भी साफ कर दिया है कि फिलहाल जो हालात हैं उसमें युद्ध किसी भी पल फिर से शुरू हो सकता है। वैसे भी वो बार बार दोहरा रहे हैं कि युद्ध विराम अब खत्म हो चुका है।
3: I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. It's just a waste of time dealing with them. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over.
1: ईरान भी अमेरिका पर ही आरोप लगा रहा है कि ये सब उसी का किया धरा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने एक्स पर लिखा कि ईरान ने अब तक अपना वादा निभाया है जबकि अमेरिका ने एमओयू के पैरा 9 का उल्लंघन किया। अमेरिका एक के बाद एक उल्लंघन कर रहा है। सीज फायर के स्थायी होने की सारी उम्मीदें फिलहाल टूट चुकी हैं। अब दोनों देशों की मिसाइलें तैयार हैं, गरजने के लिए भी और बरसने के लिए भी। आज तक ब्यूरो।
0: ये स्पेशल रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि ईरान अमेरिकी तनाव को लेकर, जहां पर अमेरिका ने ईरान से मांग की है कि वो हॉर्मुज को खुला घोषित करे और जहाजों पर हमला ना करे। अमेरिका और ईरान पर दबाव आपका जा सकता है, अमेरिका ईरान पर दबाव डाल रहा है कि वो सार्वजनिक रूप से यह बयान दे कि हॉर्मुज स्ट्रेट को जहाजों के आने जाने के लिए खुला और मुक्त किया जाएगा। इसके अलावा जबकि ईरान ने हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण छोड़ने से साफ इंकार कर दिया है। दरअसल ईरान को यह प्रेशराइज अमेरिका कर रहा है कि वो एक लिखित में आश्वासन दे ताकि उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से अमेरिका यह सुनिश्चित कर सके कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई पैसा, कोई टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जहां पर अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर के मुख्य फाइनेंसर और ईरान के गुप्त एक्सचेंज हाउस को निशाना भी बनाया। यूएस ट्रेजरी ने मुख्य फाइनेंसर अली अंसारी और कई ईरानी एक्सचेंज हाउस पर प्रतिबंध लगाए हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग पर हमलों के बाद शासन के खास लोगों को और IRGC के लिए फंड की हेराफेरी करने और इधर उधर पैसे करने में मदद की। अंसारी पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल करके हेराफेरी की है। आपने ये तो समझ लिया कि आखिरकार एक बार फिर से दोनों के बीच में तल्खी बढ़ती जा रही है, लेकिन ईरान से डील पर समझौते के बाद भी अमेरिका ने कब कब ईरान पर हमले किए, क्योंकि अफगानी 17 जून को ऐसा लग रहा था कि शायद दोनों के बीच में शांति हो जाएगी, लेकिन 17 जून के बाद से परिस्थितियां और ज्यादा गंभीर होती चली गई। मैं आपको दिखाता हूं कि आखिरकार डील हो जाने के बावजूद भी दोनों ने कब कब एक दूसरे पर हमले किए हैं। 27 जून को सबसे पहले यानी 10 दिन बाद ही ईरान के मिसाइल ड्रोन स्टोरेज कॉम्प्लेक्स पर बमबारी की गई। दरअसल अमेरिका का कहना है कि ईरान ने जो कई ऑयल टैंकर्स पर जो अटैक किए थे, जो अलग रूट से जा रहे थे, ये उसकी जवाबी कार्रवाई है, क्योंकि ये सहमति अमेरिका और ईरान के बीच में थी कि ईरान किसी भी ऑयल टैंकर पर हमला नहीं करेगा। इसी वजह से 27 जून को ये हमले किए गए। उसके बाद 27 जून को तटीय शहरों पर रडार सिस्टम पर भी हमले किए गए। दरअसल जो पूरे बुशहर का इलाका हो, बंदर अब्बास का इलाका हो, इन इलाकों में स्पेसिफिक टारगेट किए गए। फिर 28 तारीख को ईरान के सैन्य ठिकानों को मिसाइल से एक बार फिर से हमला किया गया। अमेरिका की यह कार्रवाई इसलिए की गई, अमेरिका के द्वारा कहा गया कि हमने ये कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ इसलिए की है क्योंकि ईरान कई ऑयल टैंकर्स पर अटैक कर रहा है। इसके बाद 7 जुलाई को, यानी ये वो दौर था जब सुप्रीम लीडर को सुपुर्द खाक करने का अंतिम संस्कार का उनका पूरी की पूरी प्रक्रिया चल रही थी, और उसी दौरान ईरान ने 80 ठिकानों पर अमेरिकी बमबारी की। अमेरिका ने बमबारी की है और इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम्स, कंट्रोल सिस्टम्स और रेडार साइट्स पर हमले किए 7 जुलाई को। और ये मानिए का पूरा तेहरान उस समय हिल गया था। तेहरान के इलाकों पर अटैक नहीं किए गए थे, लेकिन जो कोस्टल एरिया है यानी जो तटीय इलाके हैं उन पर अटैक किए गए थे। आईआरजीसी के 60 से ज्यादा स्पीड बोट्स को भी निशाना बनाया गया था, क्योंकि अमेरिका का यह मानना था कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की ताकत को, उसकी पकड़ को कमजोर करना चाहता है। इसी वजह से उन स्पीड बोट्स को भी टारगेट किया गया था। अब 9 जुलाई को फिर से ईरान के 90 ठिकानों पर यूएस ने अटैक किया। अमेरिका ने कहा कि हम लगातार बड़े अटैक्स करते रहेंगे जब तक ये तय नहीं हो जाता कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमारी शर्तों या हमारी बातों को ईरान मान ना ले। 9 जुलाई को बुशहर, चाबार, बंदर अब्बास पर मिसाइलों से हमला किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट है ये नाम चाबार। इससे पहले कभी भी कोस्टल एरिया के अंदर ईरान के अमेरिका ने चाबार पर अटैक नहीं किया था। चाबार पर पहली बार अटैक किया गया, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के इंटरेस्ट भी यहां जुड़े हुए हैं। अब 14 लोगों के मारे जाने की खबरें आई थी, और ये वो इलाके थे, कोस्टल इलाके, जो ईरान के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बंदर अब्बास स्पेसिफिक थे, लेकिन अब चाबार हो, बुशहर का इलाका हो, इन इलाकों में भी अमेरिका की तरफ से बड़े अटैक्स किए जा रहे हैं। और एक और जहां आप कह सकते हैं कि तमाम अटैक किए गए, वहीं आपको एक और बड़ी अपडेट देते हैं कि आखिरकार ईरान ने कैसे पलटवार किया, क्योंकि ईरान के अटैक कहां कहां हुए। क्योंकि आप देखिए, ये रेसिप्रोकल अटैक होते हैं, एक तरफ अमेरिका अटैक करता है, वहीं दूसरी तरफ ईरान भी स्पेसिफिक जगहों पर टारगेट करता है। और ईरान के स्पेसिफिक टारगेट होते हैं ये बहरीन, ये वो इलाका है जहां पर 5th फ्लीट यानी अमेरिका का सैन्य जमावड़ा बहुत ज्यादा रहता है। इसके बाद कुवैत की आप बात कर लीजिए, कुवैत पर भी अगर आप देखें तो कुवैत के भी आरिफजान और अली अल सालेम पर दागी गई थी मिसाइलें, बहरीन, कुवैत। अब इसके बाद आप तीसरा नंबर आता है कतर का, कतर पर भी अगर आप देखें इस पर भी अटैक किए गए। देखिए, ईरान का सीधे तौर पर मानना है कि अगर उसके इन इलाकों पे, कोस्टल इलाकों पे जब जब अटैक होंगे, वो रेसिप्रोकल अटैक करेगा उन तमाम देशों पर जहां पर अमेरिका की मौजूदगी रहती है, और सबसे ज्यादा मौजूदगी बहरीन, कुवैत में उसकी रहती है, और फिर कतर भी। कतर को देखिए, वैसे मध्यस्थता के अंदर उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है, लेकिन कतर पर भी अटैक करने से पीछे नहीं हटा। इसके बाद जॉर्डन, यानी यहां पर अगर आप चले आए, जॉर्डन पर भी ईरान की 8 मिसाइलों को हवा में नष्ट करने का दावा किया गया। और आपको याद होगा कि पहले जब अटैक किए गए थे उस समय अमेरिका ने कई अपने डिफेंस सिस्टम्स को रीलोकेट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसको लगता था कि ईरान की मिसाइलें यहां तक ना पहुंच पाए, लेकिन ईरान ने एक बार फिर से जॉर्डन पर अटैक किया। ये तमाम देश वो हैं जहां पर ईरान एक रेसिप्रोकल अटैक कर रहा है, और ये जवाबी कार्रवाई दोनों की तरफ से चलती आ रही है। अब हम आपको अपने जो हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हैं उनका रुख करते हैं, क्योंकि प्रसून सर, हम ये रेसिप्रोकल अटैक तो देख रहे हैं, हम लगातार ये देख रहे हैं कि देखिए दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये कहीं किसी भी तरीके से ये चीजें रुक सकती हैं, क्योंकि ना तो अमेरिका मानने को तैयार हो रहा है ना ही ईरान।
4: ये ग्लोबल रिस्क तो है और पूरी दुनिया इसको देख रही है, पर एक अच्छी बात यह है कि अभी भी टॉक्स जारी है, डिप्लोमेसी ओपन है, और जो ओमान में इनकी बातचीत या वार्ता हुई थी उसके कुछ मुद्दे अभी भी डिस्कशन में हैं। तो पॉजिटिव साइड ये है, बट हाँ, रिस्क है और सभी स्टेक होल्डर्स काफी कंसर्न है जिस तरीके से बयान आ रहे हैं दोनों तरफ से। और इससे एक और बात ये जाहिर होती है कि स्ट्रॉन्ग मध्यस्थता या मीडिएशन की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों ही तरफ।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, आप चुप बोलिए प्लीज।
4: जी, तो मुझे ये लगता है कि कुछ और स्टेक होल्डर्स भी मीडिएशन में आने चाहिए, जिसपे दोनों जो पार्टीज हैं वो ट्रस्ट करें। और कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ये भी हैं कि अगर आप देखिए कि कुछ ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जो इनडायरेक्टली दोनों कंट्रीज के साथ इंगेज है। दूसरा जो बड़ा एस्पेक्ट है, जो रीजनल सिक्योरिटी और ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो रहा है, इससे काफी लोग कंसर्न है, ना सिर्फ बाकी स्टेक होल्डर, डायरेक्टली यूएस और ईरान भी। तो उनको भी मतलब ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाह रहे कि ये डी एस्केलेशन हो या पीस टॉक्स हो, वो थोड़ा बहुत उन्होंने दोनों
0: बिल्कुल
4: तरफ से।
0: मनन सर हमारे साथ, मनन सर भी जुड़े। मनन सर, ये जो बात कर रहे हैं कि देखिए ना, क्योंकि ईरान तो अब कुवैत हो, कतर हो, इन सब पर अटैक कर रहा है, मदरसा ओमान कर रहा है, लेकिन अभी अगर आप देखें क्या ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर अपनी पकड़ किसी भी तरीके से कमजोर होने देगा? क्योंकि ईरान को तो लगता है कि आप भूल जाइए यूरेनियम को, आप भूल जाइए न्यूक्लियर वेपन को, ये तो नेचुरल वेपन है जो उसके हाथ में लग चुका है।
5: देखिए, मैं यहां पर ये कहना चाहूंगा कि जहां तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है या इस तरीके के जो सीस्केप्स हैं, उसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय नियम और अंतर्राष्ट्रीय विधि काफी क्लियर है। हम ये कह सकते हैं कि जो ब्लॉकेड लगाया हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे ईरान ने, वो पूरी तरीके से इलेजिटिमेट है और पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय विधि का और इंटरनेशनल लॉ का हनन करने वाली बात है। और ब्लेम अमेरिका पर भी किया जा रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि अमेरिका दूध का धुला हुआ है, पर फिर भी अमेरिका के ऊपर भी ब्लेम कर रहा है ईरान कि उन्होंने भी, जो आपने जिसे बताया पांचवा उनका जो बेड़ा है, उसने भी वहां पर नेवल ब्लॉकेड का प्रयास किया है। पर अगर हम अनक्लॉज को देखें, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज को देखें, ये कोई नई बात नहीं है। पिछले 3-4 महीने से जब से युद्ध शुरू हुआ है, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू हुई है, तब से हम ये देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का और का एक ये कैनन होता है, वो होता है राइट टू ट्रांसिट, राइट टू इनोसेंट पैसेज और राइट टू ट्रांसिट पैसेज। उसके चलते ये है कि किसी राष्ट्र को अगर मिलिट्री एडवांटेज दिखती है तो वो अपने पास में बहने वाले चैनल को, अपने पास में बहने वाले अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के चैनल को ब्लॉकेट कर सकता है। तो मुझे लगता है कि यही काम ईरान ने पूरी तरीके से किया है, जिसके चलते एक वैश्विक संकट, एनर्जी का संकट, ऑयल का संकट खड़ा हो गया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ईरान ने अब यहां तक कर दिया है, पिछले 3-4 दिन पहले को के घटनाक्रम को अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि इनोसेंट शिप्स जो होते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय विधि कहती है कि आप लोग राइट टू विजिट कर सकते हैं,
0: लेकिन
5: ईरान अगर चाहे तो उन न्यूट्रल शिप्स के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए था, उनको बॉम्बार्ड नहीं करना चाहिए था।
0: लेकिन सर, मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि आप इन चीजों को बेहतर तरीके से मानते हैं, क्योंकि मैं खुद ईरान में मौजूद था। अभी मैं हाल ही में ईरान से आया, वहां पर जब मैंने उनके विदेश मंत्रालय के लोगों से बात की, लोगों से जाना, तो ईरान ये कहता है कि वो संधि हम पर लागू नहीं होती, और वॉर के अंदर तो कोई संधि भी किसी भी हालात में लागू नहीं होती। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इंटरनेशनल वाटरवेज के अंदर या फिर ऐसे न्यूट्रल शिप्स पर अटैक कर ईरान करना क्या चाहता है, ये भी एक बड़ा सवाल। आप दोनों हमारे साथ बने रहे सर। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची मस्कट पहुंच चुके हैं, जहां पर ओमान के अधिकारियों के साथ उनका स्वागत किया गया। ईरान के विदेश मंत्री अराकची आज ओमान में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बातचीत करेंगे। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बड़ा कंसर्न बन गया, और ईरान यह चाहता है कि वो ओमान को अपने साथ लेकर इस पूरे इलाके पर डोमिनेंस जमाए रखे, अमेरिका के दावों को आप कह सकते हैं कि झुटलाए, और अमेरिका को यहां से पीछे खींचने के लिए अपने आप को मजबूर करें।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
3: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: The action never stops and neither do we. From breaking updates to match analysis, from big moments to bigger conversation. This is where sports comes alive. Fast, sharp, unfiltered. For the fans who want every update, every story, every headline first. Welcome to Sports Today, your destination for everything sports. Press that bell icon and subscribe now.
5: Jai Hind friends, Isaiah, Sona, Masala ya Vistar. 1498 mein kya thi Vasco da Gama ki mancha? Madhumakhi jaise gore jo shahad lekar aa rahe the, Bharat ko dank marna shuru kar diya. और बेवकूफ राजाओं का फायदा उठाकर इस देश को गुलाम बना दिया। लेकिन मीर जाफर और मीर कासिम ने अगर सर झुकाया तो रानी लक्ष्मीबाई ने सर उठाया और गोरों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कैसी थी लड़ाई, कौन थे इसके महानायक, तलवारें चली या भजन चला? अगर बचपन में नहीं समझ में आया, नोटबुक निकाल लीजिए। मैं अवध ओझा जल लेकर आ रहा हूं मास्टर जी इन द न्यूज रूम, सिर्फ ललन टॉप पर।
6: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

इसराइल का वो सुरक्षा कवच जिससे दुनिया के बड़े बड़े दुश्मन खौफ खाते हैं, जिसके मिसाइलें आसमान में विरोधी के रॉकेट्स को ढूंढ ढूंढ कर नेस्तनाबूद कर देती हैं, वो आयरन डोम अब भारत की महाशक्ति बनने जा रहा है। इसराइल की दिग्गज कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम अब भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर भारत की ही धरती पर इसके इंटरसेप्टर मिसाइलों की प्रोडक्शन लाइन शुरू करने की महातैयारी में है। आपको बता दें कि ईरान और यूक्रेन युद्ध के दौरान इन इंसेप्टर मिसाइलों की भारी कमी है। इसका मुद्दा हाल ही में नेटो की बैठक में भी बेहद गंभीरता से उठा था। दुनिया भर में जारी युद्ध के बीच अमेरिका ने भी साफ कर दिया है कि वो अपनी सुरक्षा और सहयोगियों की जरूरत के लिए इन मिसाइलों का प्रोडक्शन तेजी से बढ़ाएगा। लेकिन अमेरिका के साथ साथ अब दुनिया की नजरें भारत पर टिक गई हैं, क्योंकि भारत इस ग्लोबल सप्लाई चेन का सबसे मजबूत और किफायती केंद्र बनने जा रहा है। भारत के लिए ये राह नई नहीं है। भारत और इसराइल पहले ही बराक 8 जैसी बेहतरीन मिसाइलें मिलकर बना चुके हैं। यही नहीं, भारत के पास आकाश तीर जैसी अत्याधुनिक और अचूक एयर डिफेंस ऑटोमेशन प्रणाली बनाने और उसे ऑपरेट करने का बेहतरीन तजुर्बा है। आकाश तीर के जरिए भारतीय सेना ने पहले ही साबित कर दिया है कि कम लागत में आसमान में अभेद्य किला कैसे तैयार किया जाता है। पश्चिम एशिया और यूक्रेन के युद्ध ने पूरी दुनिया को समझा दिया है कि आने वाले दौर में हवाई सुरक्षा ही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। ऐसे में आयरन डोम की तकनीक भारत आने से न सिर्फ हमारी अपनी सीमाएं और सुदर्शन चक्र प्रोजेक्ट सुपर पावर बनेंगे, बल्कि भारत दुनिया के लिए इन इंटरसेप्टर मिसाइलों का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद एक्सपोर्ट हब बनने की राह पर भी निकल चुका है। शिवानी शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अप
2: रणभूमि में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और अब बात करेंगे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत की बढ़ती पहुंच की। आज भारतीय नौसेना के बेड़े में INS महेंद्रगिरी शामिल हो गया है। INS महेंद्रगिरी पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक से बना स्टेल्थ युद्धपोत है और मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की सोच को मजबूती देने वाला ये युद्धपोत आधुनिक तकनीक से लैस है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस युद्धपोत को आज नौसेना के हवाले किया है। INS महेंद्रगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किए गया 7वां और आखिरी स्टेल्थ फ्रिगेट शिप है।
3: हर लहर को भाप दी, हर सीमा को नाप दी, खामोशी से बहार, हर चुनौती परवार, सतर्क चूक
2: महेंद्रगिरी। और इस खास मौके पर नौसेना के नए प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने INS महेंद्रगिरी को लेकर आज तक संवाददाता मंजीत नेगी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत को आपको दिखाते हैं।
4: विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के बेड़े में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन की मौजूदगी में INS महेंद्रगिरी को शामिल किया है। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि लगभग हर महीने भारतीय नौसेना के बेड़े में एक नया युद्धपोत शामिल हो रहा है, आज INS महेंद्रगिरी शामिल हुआ है, किस तरह से आप देखते हैं कि भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी?
5: देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय नौसेना के जो कैपेबिलिटी एनहांसमेंट प्लान है वो हमारे मैरिटाइम कैपेबिलिटीज पर्सपेक्टिव प्लान के अनुसार है। जो युद्धपोत आजकल में कमीशन हो रहे हैं उनके काम बहुत साल पहले शुरू हुए हैं और जो हमारे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लानिंग के अनुसार ही इनका यू नो प्रोडक्शन हो रहा है। अभी आपको सभी को पता है कि जो हमारे सुरक्षा का वातावरण है वो उतना अनुकूल नहीं है जितना कि हम चाहते हैं। द जियो पोलिटिकल एनवायरमेंट इज अनप्रिडिक्टेबल, अनसर्टन एंड वोलेटाइल, इसलिए हमको अपनी क्षमता हमेशा ही लगातार बढ़ाते रहना चाहिए। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा देश कह रहा है और उसके अनुसार हमने जो लॉन्ग टर्म प्लान बनाया है उसके तहत काफी हमारे प्रोग्राम्स अभी फ्रूशन को देख रहे हैं। उसमें एक उस श्रृंखला में आज महेंद्रगिरी हमारे फ्लीट में सम्मिलित हुआ है, हमें बहुत खुशी है। और INS महेंद्रगिरी एक बहुत ही प्लेटफॉर्म, बहुत ही पावरफुल प्रोजेक्ट 17 अल्फा के गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट एक है और हमारे जो जितने भी युद्ध की क्षमता है उसमें बहुत सारा कैपेबिलिटी ऐड करेगा।
4: कुछ समय पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी 3 अलग अलग क्लास के युद्धपोत शामिल किए थे। आत्मनिर्भरता पर काफी जोर दिया जा रहा है, किस तरह से आप देख रहे हैं? आपने खुद कहा और जिस तरह से हम देख रहे हैं सब इस वक्त दुनिया भर में खासतौर से युद्ध का माहौल है, उसमें किस तरह से आप अपनी तैयारियों को मजबूत बना रहे हैं?
5: देखिए, आपने दुनिया भर में जो युद्ध का जो वातावरण बना है उसका जिक्र आपने किया है। वो सबसे पहले जो सीख हमको मिलती है जो वातावरण से वो ये है कि हमको आत्मनिर्भर रहना, उसमें कोई दो राय है नहीं। इसमें कोई शक किसी को रहना नहीं चाहिए कि भारतीय नौसेना एक आत्मनिर्भर नेवी है और यही हमारा हमेशा ही प्रयास रहेगा कि जितना हो सकता है हम आत्मनिर्भर बने। हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं लगातार हमारे सब सहयोग कर रहे हैं और क्योंकि आजकल के ज़माने में हम देख रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर के इंडस्ट्री जो है और प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री जो है दोनों साथ में मिलकर मिलिट्री प्रोडक्शन के लिए काफ़ी उन्होंने दिलचस्पी दिखाए हैं और इससे हम बहुत खुश हैं और हम कहते हैं कि आत्मनिर्भर फोर्सेस हमको बनना चाहिए। पिछले महीने में जो ट्राई कमीशन हुआ था माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कोलकाता में, ये 3 शिप्स बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और उन्हें 3 वेरी वैल्यूएबल एडिशंस टू द फ्लीट के रूप में वो साबित होंगे और वो भी हमारे फ्लीट में सम्मिलित हुए, उससे भी हम बहुत खुश हैं।
4: एक सवाल सर, आपने हाल में ही नौसेना की कमान संभाली, इस वक्त जो समुद्री मोर्चे की चुनौतियां हैं और आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी नौसेना प्रमुख के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान?
5: मेरे कार्यकाल के दौरान मैंने 4 प्राथमिकताएं मैंने ऑलरेडी कह दिया लोगों से। सबसे पहले जो हमारे ऑपरेशनल रेडीनेस उसको हमेशा ही एक ऊंचा लेवल पे रखें, क्योंकि आप हमारे जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल एंड अनसर्टेन है. तो एज एन इंश्योरेंस अगेंस्ट दैट अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी द इंडियन नेवी विल मेंटेन अ हाई लेवल ऑफ ऑपरेशनल रेडीनेस एंड बीइंग ऑपरेशनली रेडी एंड ऑपरेशनली स्ट्रांग एंड कॉम्बैट इफेक्टिव इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी. ये मैंने बता दिया, वो मेरी पहली प्राथमिकता है. दूसरे जो हमारे केपेबिलिटी एनहांसमेंट प्लान है, जो इंडियन नेवी सेट है एक वेरी एम्बिशियस केपेबिलिटी एनहांसमेंट प्लान में, उसको मैं लगातार जो मेरे से हो सकता है मैं उसके लिए इम्पेटस देता रहूंगा और हमेशा मेरा ध्यान यही रहेगा कि आने वाले दिनों में कितना केपेबिलिटी और मैं जोड़ सकता हूं नेवी के लिए. ये मेरी दूसरी प्राथमिकता होगी. तीसरा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सनल एंड ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ऑफ आर यू नो, बिकॉज जो हमारा सिक्योरिटी एनवायरमेंट थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा है, सो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज माई थर्ड प्राथमिकता, जो मैंने अपने टीम मेट्स को बताया है. और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट मेरी प्राथमिकता है द वेलनेस एंड द वेल बींग ऑफ द मैन एंड द वुमन हु वर्क्स इन द इंडियन नेवी. मैं मानता हूं कि यू नो दुनिया भर में जहां भी आप जाके ढूंढेंगे, जो इंडियन आर्म फोर्सेज इंडियन डिफेंस फोर्सेज में जो यू नो मैन एंड वुमेन काम करते हैं, वैसे आपको कहीं नहीं मिलेंगे. इन दियर प्रोफेशनलिज्म, इन दियर डेडिकेशन, इन द लॉयल्टी, द डिवोशन टू द ड्यूटी. तो जहां मैंने मुझे यू नो गुड फॉर्चून मिला कि मैं दुनिया के काफी आर्म फोर्सेज वालों के साथ मैंने यू नो इंटरेक्शन किए हैं, कहीं भी मेरे को ऐसे वाले लॉयल प्रोफेशनली साउंड प्रोफेशनल्स कहीं भी नहीं मिले. मैं उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा गर्व करता हूं. और मेरे सबसे इम्पोर्टेंट प्राथमिकता उनके वेलफेयर वेलनेस और जो प्रोफेशनल परफॉर्मेंस उनके पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ पे रहेगा.
4: एक आखिरी सवाल सर, इस वक्त जो माहौल है सुरक्षा का, चाहे समुद्र हो, मल्टी डोमेन वॉर चल रहा है, चाहे समुद्र के नीचे हम सबमरीन की बात करें या एयर में देखें, उस मोर्चे पर फ्यूचर की क्या तैयारी होगी भारतीय नौसेना की प्रमुख?
5: सो आपने सही बात कही है कि द कैरेक्टर ऑफ वॉरफेयर इज चेंजिंग. मल्टी डोमेन वॉरफेयर इज ऑलरेडी अपॉन अस. भारतीय नौसेना में हम लोग हमेशा ही जितने डेवलपमेंट्स है वॉरफेयर के ट्रेंड्स टेंडेंसीज क्या है उसको देखते हैं. टेक्नोलॉजीज क्या इस्तेमाल होते हैं, क्या टेक्नोलॉजीज अभी करंट एरा में इस्तेमाल हो रहे हैं, और जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज वो क्या है, उन सब को देखते हुए हम अपना प्लान बनाते हैं फॉर द फ्यूचर. उसको हम पर्सपेक्टिव प्लानिंग कहते हैं. जब हम कहते हैं कि द इंडियन नेवी नीड्स टू बी फ्यूचर रेडी, इसका मतलब यह है कि हमको पता होना चाहिए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या मल्टी डोमेन ऑपरेशन कैसे होने वाले हैं, कौन से टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होने वाले हैं, और जब फ्यूचर हमारे पास आएगा उसके लिए हमको रेडी ऑलरेडी बनना चाहिए. तो हमेशा ही हम लगातार फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, और फ्यूचर 10 साल के बाद जो माहौल होगा उसका अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं, और 10 साल के बाद जब वो माहौल आएगा उस समय हम उसके लिए तैयार होना चाहिए हमें. तो उसको लेके मन में हम हमेशा ही फ्यूचर को देखते हुए करते हैं. मल्टी डोमेन, जहां तक मल्टी डोमेन अवेयरनेस मल्टी डोमेन वॉरफेयर की बात चलती है, अभी भी हम लोग बहुत सक्षम हैं. द इंडियन नेवी ऑपरेट्स एंड फाइट्स इन ऑल 6 डोमेन्स, सो वी आर रेडी फॉर दैट एंड वी कंटिन्यू टू इम्प्रूव आवर केपेबिलिटीज बाय द डे टू फाइट मल्टी डोमेन ऑपरेशंस.
4: बहुत धन्यवाद. तो नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने कहा कि भारतीय नौसेना जो वर्तमान की चुनौतियां हैं और इस वक्त जो जरूरत मल्टी डोमेन वॉरफेयर की, उसको लेकर भी पूरी तरह से तैयार है. कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मंजीत नेगी, विशाखापट्टनम, आज तक.
2: मंजीत नेगी की आपने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ये देखी, लेकिन अब आपको एक वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं, और आपको लिए चलते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर, जहां पर पाकिस्तान के क्रूरता के निशान साफ देखे जा सकते हैं. आज तक की टीम इस समय अफगानिस्तान की ड्यूरेंट लाइन पर मौजूद है, और वहां से पाकिस्तान की क्रूरता के, उनके अटैक के, और अफगान के मासूम लोगों के मारे जाने की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं. आपको दिखाएंगे कैसे मुल्ला मुनीर की फौज ने वहां के आम लोगों पर कहर बरपाए. 28 जून की रात को भी अफगानिस्तान पर हवाई हमले किए गए. देखिए हमारी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट.
1: आज तक की टीम पहुंची है ड्यूरेंट लाइन पे. ड्यूरेंट लाइन नाम आपने बहुत सुना होगा. पाकिस्तान अफगानिस्तान कन्फ्लिक्ट हुआ और हर कोई ड्यूरेंट लाइन की बात करता है. आज हम आपको दिखाएंगे ड्यूरेंट लाइन, और इस वक्त हम हैं शमखनी, जो कि ड्यूरेंट लाइन का ही इलाका है. और मेरे आसपास जैसे आप देख रहे होंगे, तालिबान के जो जवान हैं यहाँ पैनी नज़र बनाए हुए हैं. मैं कैमरा उनको बोलूँगा इस तरफ आपको दिखाएगा. ये ड्यूरेंट लाइन का एक हिस्सा है। 2600 किलोमीटर लंबा ये बॉर्डर है। अब ड्यूरेंट लाइन की का इतिहास क्या है? ड्यूरेंट लाइन 1893 में बनी, जब उस वक्त जो पूरा इलाका था कॉलोनियल जो ब्रिटिश थे उनके अंडर था, और ड्यूरेंट हेनरी ड्यूरेंट जो थे एक डिप्लोमैट थे और उन्होंने एक लाइन खींच दी। लेकिन जब आप ये देखेंगे कि लाइन के खींचने के पीछे उन्होंने कोई रिसर्च किया, क्या वजह थी, क्या उन्होंने लोगों का जो है उसमें भला देखा, ज्योग्राफी देखी, कल्चर देखा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने देखा तो अंग्रेजों की जो बंदूकें हैं उनकी रेंज, जहां तक उनकी रेंज थी वहां उन्होंने लकीर खींच दी। मैं कैमरन को बोलूंगा आपको दिखाएगा, ये पूरा इलाका जो है ये ड्यूरेंट लाइन का इलाका है। ये सबसे टेंस अगर जो विश्व की इस वक्त सरहदें हैं उनमें से एक है, और मेरे आसपास आप देख रहे हैं तालिबान के जवान हैं, नजर बनाए हुए हैं। हम यहाँ आए तो साफ तौर पे काफ़ी ज़्यादा टेंशन है यहाँ पे, और जो कन्फ्लिक्ट हुआ है और जो लगातार एरियल स्ट्राइक्स हैं बॉर्डर पे, जो पाकिस्तानी आर्मी ने गोलीबारी की है, तालिबान ने उसका जो है मुंहतोड़ जवाब दिया है, और काफ़ी टेंशन है। लेकिन तालिबान के जवान जो हैं, जिसको आप कहेंगे लॉक्ड एंड लोडेड हैं, यानी कि तैयार हैं अगर कोई भी एग्रेशन होता है उसका जवाब देने को। आज तक की टीम पहुंची है शमखनी, जो कि ड्यूरेंट लाइन के बहुत करीब है, और मेरे आसपास की तबाही का मंजर देख के आप समझ गए होंगे कि हम उस जगह पे हैं जहां 29 जून को पाकिस्तान ने हवाई बमबारी की, एरियल स्ट्राइक्स हुई, और ये जो मकान है मेरे पीछे पूरी तरह तबाह हो गया। कैमरामैन को बोलूंगा आपको दिखाएगा कि किस तरीके की तबाही हुई है, और इस कंपाउंड में कुछ भी नहीं बचा है। सबसे बड़ी बात, जब पहला धमाका हुआ, यानी कि 11:30 जो रात के बजे थे, पहला धमाका हुआ और उसमें 26 लोग जो है मारे गए। जो लोकल जो अफगान गवर्नमेंट है उनका माने तो इसमें से ज्यादातर बच्चे और महिलाएं थी। जब आसपास के लोग देखने आए कि यहाँ क्या हुआ है, बचाव कार्रवाई करने आए, तो दूसरी एरियल स्ट्राइक होती है और उसमें और तकरीबन 11 लोग मारे जाते हैं। तो साफ तौर पर एक नहीं बल्कि 2 से 3 एरियल स्ट्राइक्स हुई, और उनको भी निशाना बनाया गया जो यहाँ आए थे ये देखने के लिए कि क्या हुआ है और बचाव कार्रवाई करने के लिए। तालिबान सरकार ने साफ तौर पे कह दिया कि ये जो पाकिस्तान इल्ज़ाम लगा रहा है फिर एक बार बेबुनियाद है, यहाँ कोई टेरर का मरकज नहीं था, ये जो है फिर एक बार बच्चे बूढ़े महिलाओं को निशाना बनाया गया, और इससे पहले भी जो एयर स्ट्राइक्स हुई उसमें सिविलियन ही मारे गए। पाकिस्तान ने कहा कि जो कराची में हमला हुआ, कराची में जो रेंजर्स की एक पोजीशन पे हमला हुआ, उसके पीछे जो टीटीपी का स्प्लिंटर ग्रुप है ये उसका हाइड आउट था। साफ तौर पे अगर हम आपको थोड़ा नज़दीक ले जाए, मैं अपने कैमरन को बोलूँगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि आसपास का जो सामान है उससे भी बहुत कुछ पता चलता है कि आखिर यहाँ पे क्या था। इसे आप देख सकते हैं, मैट्रेसेस हैं या फिर तकिए, और उसके अलावा जो महिलाओं के कपड़े हैं और जो बाकी सामान होता है घर का, वो यहाँ तबाह होके बिखरा हुआ है।
6: ये दुबई में तकरीबन 20-30 साल से वहाँ मजदूरी करते हैं, इस मजदूरी से पसीने से ये घर बनाया था। न यहाँ पर कोई टीटीपी है, न टीटीपी की तहरुकात है यहाँ पर।
7: ये हमारा अपना मकान है, घर है, बच्चे हैं यहाँ, सारे बच्चे थे, खवातीन थे, बूढ़ी थे, मेरी माँ थी, और मेरा 14 साल की बच्चा यहाँ इस रूम पे शहीद हुआ। पाकिस्तान इंटेलिजेंस अपने काम में नाकाम है, जिसको पाला है यहाँ उसके ऊपर दोबारा गौर करे, उनको पकड़ ले। आपके कपड़े निकाल चुके हैं, इन्होंने आपके कपड़े निकाले जो आपने पाला है यहाँ, जो आपको कोऑर्डिनेट देता है, पर्सनल घर, लोकल घर, सिविलियन को मार रहे हैं आप।
1: जो गुस्सा है साफ तौर पे कि पाकिस्तान सिविलियंस को टारगेट कर रहा है, और जो बाद में ये बात है कि ये टेरर टारगेट्स हैं, वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं, क्योंकि सिविलियन इलाका है, और यहाँ भी जो है आसपास के लोगों का माने तो वो वही कह रहे हैं जो तालिबान सरकार कह रही है कि एक और टारगेट था सिविलियन पॉपुलेशन पे, और इसमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं जो है मारी गई हैं। मीर फरीद, शमखनी, ड्यूरेंट लाइन, अफगानिस्तान, आज तक।
2: ये रिपोर्ट आपने देखी, आप समझिए कि पाकिस्तान की फौज कितनी कायर होगी कि आम मासूम लोगों पर, उनके स्कूलों पर, उनकी रिहायशी इमारतों पर किस तरीके से बेसब्री से बड़े अटैक कर रही है, उन पर कितने जुल्म किए जा रहे हैं, और यही पाकिस्तान की असलियत भी है। चलिए रणभूमि में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

क्या ईरान ट्रंप की हत्या करवाना चाहता है? अमेरिकी राष्ट्रपति को निपटाने के लिए ईरान ने नया किलिंग प्लान बनाया है। ट्रंप ने क्यों कहा कि वो ईरानी हिट लिस्ट में सबसे ऊपर हैं? नेतन्याहू की मोसाद ने ट्रंप की CIA को ऐसी कौन सी जानकारी दी कि अमेरिका चौकन्ना हो गया? ईरान के हिट लिस्ट में पहला नाम ट्रंप का है, ट्रंप को ये बात किसने बताई? डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल के नारे ईरान में दशकों से लगते रहे। अली खामेनेई के जनाजे में भी तेहरान से इंतकाम की आवाज उठी। ऊंची इमारतों पर बड़े बड़े पोस्टर लगे कि वी विल किल ट्रंप, यानी हम ट्रंप को मारेंगे। और अब इजराइल की एक खुफिया रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये साजिश 2020 से चल रही है। इसे ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की मौत से भी जोड़कर देखा जा रहा है। 2020 में अमेरिकी हमले में सुलेमानी की मौत हुई थी। अमेरिकी अधिकारी पहले भी कह चुके हैं कि ट्रंप को ईरान और उसके प्रॉक्सी से खतरा है। अब जब अमेरिका ने ईरान की पूरी लीडरशिप खत्म कर दी, ईरान को तहस नहस कर दिया, तो ये खतरा और भी बढ़ गया। खुद ट्रंप भी मानते हैं कि वो ईरान की हिट लिस्ट में टॉप पर हैं। 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल के साझा हमले में आयतुल्ला खामेनेई की मौत हो गई थी। उसके बाद एक एक करके अमेरिका ने ईरान की पूरी लीडरशिप खत्म कर दी। ईरान भी अपने तरीके से जवाब देता रहा। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले किए, लेकिन जो नुकसान अमेरिका ने ईरान को पहुंचाया है, उसकी भरपाई आसान नहीं है। दावे तो यहां तक किए गए कि नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा भी घायल हैं। जिस दिन से उनको नेता घोषित किया गया, उस दिन से आज तक वो कभी सार्वजनिक तौर पर दिखे नहीं। अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में जिस तरह से ईरानियों ने अमेरिका के खिलाफ गुस्सा दिखाया, उससे साफ है कि ईरान किसी भी स्थिति में ट्रंप और अमेरिका से बदला लेना चाहता है। ट्रंप और नेतन्याहू भी ये बात जानते हैं कि ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन इस मिशन में लगे हुए हैं। ईरान और अमेरिका की अदावत पुरानी है। अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम नेता को मारा, ईरान की पूरी लीडरशिप खत्म कर दी। नए सुप्रीम नेता मुज्तबा कई महीनों से भूमिगत हैं। इतना सब कुछ होने के बाद क्या ईरान हाथ पर हाथ रखे बैठा रहेगा? ईरान की सड़कों पर ट्रंप और अमेरिका के खिलाफ गुस्सा तो साफ दिखता है, लेकिन अब इजराइल ने जो रिपोर्ट अमेरिका को दी है वो चौंकाने वाली है। फिलहाल दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या अमेरिकी प्रशासन इस रिपोर्ट की पुष्टि करता है और क्या इजराइल या ईरान इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया देते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका असर मध्य पूर्व की राजनीति से लेकर वैश्विक सुरक्षा समीकरणों तक दिखाई दे सकता है। आज तक ब्यूरो।

अगर सड़क पर दौड़ती हाईटेक गाड़ी अचानक बंद हो जाए तो इसे मामूली खराबी समझने की भूल नहीं कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी के उस खतरे का इशारा हो सकता है जो धीरे धीरे गाड़ियों के स्टेयरिंग तक पहुंच चुका है। दरअसल कारों में बढ़ते डिजिटल फीचर्स के दबदबे के बीच गाड़ियों पर साइबर अटैक का खतरा भी मंडराने लगा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में हैकिंग की बढ़ती शिकायतों के बाद सरकार ने ऑटो कंपनियों और ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स को कनेक्टेड कारों और ईवीएस के सॉफ्टवेयर का साइबर ऑडिट करने के निर्देश दिए हैं। एप्पल और गूगल प्ले स्टोर से ऐसे 3 मोबाइल एप्स हटा दिए गए हैं जिनके जरिए ई व्हीकल्स को हैक किया जा रहा था। ये एप्स ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के जरिए 10 से 15 मीटर दूर से ही गाड़ियों की बैटरी बंद कर देते थे। साइबर सिक्योरिटी को लेकर मिली इस बड़ी चेतावनी के बाद गाड़ियों में मिलने वाले हाईटेक फीचर्स पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि बैट एम्बियस लॉसिकी और इपोक आई लॉन जैसे एप्स को दूर से गाड़ी बंद करने के वीडियो सामने आने के बाद बैन किया गया है और वाहन कंपनियों को बैटरी मैनेजमेंट पासवर्ड और ओटीएस सॉफ्टवेयर अपडेट्स की सुरक्षा सुधारने को कहा गया है। वहीं सड़क परिवहन मंत्रालय 1 अक्टूबर से कनेक्टेड व्हीकल्स के लिए नए साइबर सिक्योरिटी नियम लागू करने की तैयारी में है। हैकर्स की इस नई सेंधमारी ने ऑटो सेक्टर की तेज रफ्तार के बीच एक बड़ी चुनौती पेश की है, लेकिन सुरक्षा में मिली इस बड़ी चूक के बावजूद मचे हड़कंप के बीच भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री रिकॉर्ड ऊंचाई छू रही है। आंकड़ों के मुताबिक जून में कुल व्हीकल सेल्स में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हिस्सेदारी पहली बार 12% के पार पहुंच गई है। इस दौरान कुल 3,06,000 से ज्यादा ईवीएस की बिक्री हुई, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। ईवीएस के इस जबरदस्त ट्रेंड में सबसे बड़ा योगदान टू व्हीलर्स का देखने को मिल रहा है। डेटा के मुताबिक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की बिक्री में सालाना आधार पर करीब 75% की भारी बढ़त दर्ज की गई है। अकेले जून में 1,93,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बिके हैं। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक पैसेंजर और कमर्शियल गाड़ियों ने भी अपनी अब तक की सबसे बेहतर मंथली सेल्स का रिकॉर्ड बनाया है। साफ है कि आम ग्राहक बड़ी तादाद में पेट्रोल डीजल छोड़कर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ रुख कर रहे हैं, लेकिन जिस रफ्तार से भारतीय सड़कों पर कनेक्टेड फीचर्स और ईवीएस की संख्या बढ़ रही है, उसमें साइबर सुरक्षा का पुख्ता होना भी बेहद जरूरी हो चुका है, जिससे स्मार्ट गाड़ी सेफ राइड का भरोसा देती रहे। आज तक ब्यूरो।

0: वियतनाम में भारतीय पर्यटकों से भरी नाव पलटी, 15 लोगों की मौत। फू क्वेक द्वीप में पास हादसा। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारतीय समुदाय के बीच बोले प्रधानमंत्री मोदी, नए भारत की विकास गाथा अभूतपूर्व है, जल्द होंगे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। दतिया से नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से बीजेपी में विद्रोह, सड़कों पर उतरे समर्थक, तोड़फोड़, पथराव, जाम। दिल्ली पहुंचे नरोत्तम मिश्र, बोले लोग शांति बनाए रखें।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: मध्य प्रदेश का दतिया माँ पीताम्बरा की नगरी है और आज उसी आस्था की धरती पर जो हो रहा है उसी को लेकर दंगल में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ साहिल जोशी। लेकिन आज यही दतिया एक ऐसे सवाल का केंद्र बन गया है जहां सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं पूरी बीजेपी से जवाब मांग रहा है। आखिर एक टिकट के लिए दतिया में बवाल क्यों हो गया? क्यों दतिया में बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा के समर्थक हिंसक हो गए? बीजेपी ने दशकों तक कहा था कि कार्यकर्ता हमारी ताकत है, संगठन हमारी पहचान है और अनुशासन उनकी पहचान है। आज उसी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी ही सरकार की पुलिस पर पत्थर फेंक रहे हैं। सवाल सिर्फ विपक्ष नहीं पूछ रहा, सवाल बीजेपी का अपना कार्यकर्ता भी पूछ रहा है। राजनीति में कहा जाता है जब घर की दीवारें बोलने लगे तो बाहर की आवाजें मायने खो देती है। दतिया में वही हुआ है। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दतिया से टिकट कट गया और देखते ही देखते सड़कें सियासत का मैदान बन गए। अनुशासित कार्यकर्ताओं का दावा करने वाली बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने असली चेहरा दिखाई दिया। क्या संगठन की कमजोरी या फिर बीजेपी में संवाद कमजोर पड़ रहा है? और इसी बात को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा की जगह दतिया से आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया तो क्या संवाद किया गया, सिर्फ फैसले सुनाए गए? और वही कांग्रेस पार्टी जो बरसों तक मध्य प्रदेश में अपनी गुटबाजी से जूझती रही है आज बीजेपी को संगठन के पाड़ भी पड़ा रही है। राजनीति में इसी मौके पर चौका लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता ये भी देख रही है कि उपदेश देने वालों का अपना इतिहास कितना बेदाग है। और आज की बहस सिर्फ नरोत्तम मिश्रा की नहीं है, सवाल बड़ा यह भी है कि दतिया में पत्थर पुलिस पर चल रहे हैं तो बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस वाली छवि पर भी पत्थर बरस रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, कमल में आई इस दरार सिर्फ दतिया तक सीमित रहेगी या इसकी गूंज भोपाल और दिल्ली तक भी सुनाई देती रहेगी? बात बांकीपुर की भी होगी जहां बीजेपी पर सवालों की बौछार हो रही है। आज बांकीपुर से लेकर दतिया पर दंगल होगा, लेकिन उससे पहले यह हमारी खास
1: दतिया, जहां बीजेपी का कमल खिलाने का प्लान है वहां कमल के अपने ही पत्ते बिखरते दिखाई दिए। जिस पार्टी ने दशकों तक खुद को पार्टी विद डिफरेंस कहा, जिसने संगठन को व्यक्ति से बड़ा बताया, जिसने अनुशासन को अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी बताया, आज उसी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी ही सरकार की पुलिस से भिड़ गए। टिकट बदला तो सड़कें बदल गईं, कार्यकर्ता बदले तो नारों का निशाना भी बदल गया। मध्य प्रदेश के दतिया में 30 जुलाई को उपचुनाव है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। दतिया से आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाने की घोषणा होते ही नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। नेशनल हाईवे पर जाम लग गया, घंटों तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही, पुलिस पर पथराव हुए, कई पुलिसकर्मी घायल हुए। ऐसे में नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि शांति बनाए रखें, पार्टी फोरम पर इस मुद्दे को उठाया जाएगा।
2: ये पार्टी का निर्णय है और एक बात जरूर मैं आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि अभी मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए, पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं, ऐसा कोई कार्य न करे। जैसा कल कहा था ना, मार्ग अवरुद्ध करना है। पार्टी के फोरम पे अपने तरीके से अपनी बात कही जाती है, इस तरह से व्यक्त नहीं की जाती।
1: आखिर दतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट क्यों कटा? बताया जा रहा है कि दिल्ली के स्तर पर कराए गए सर्वे में नरोत्तम मिश्रा की स्थिति उम्मीद के मुताबिक मजबूत नहीं पाई गई। 2023 में बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को टिकट दिया था, लेकिन वो विधानसभा का चुनाव हार गए। केंद्रीय नेतृत्व ने स्थानीय संगठन और भविष्य की राजनीतिक स्वीकार्यता का भी आकलन कराया। इसमें नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी फिट बैठे, जिसके बाद उन्हें दतिया से टिकट दिया गया। बीजेपी ने एक ब्राह्मण नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर दूसरे ब्राह्मण आशुतोष तिवारी को टिकट दिया है। इससे जातिगत और सामाजिक संतुलन बरकरार है। उधर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी साफ कर दिया कि बीजेपी में टिकट घोषित होने के बाद वापस लेने की परंपरा नहीं है। यानी संदेश साफ है, बीजेपी हाईकमान फिलहाल झुकने के मूड में नहीं है।
3: पार्टी इस प्रकार के सोच समझ के निर्णय लेती है और इसलिए हम डंके की चोट जीतेंगे और नरोत्तम जी भी काम करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं नरोत्तम जी को जानता हूँ, बहुत अच्छे कार्यकर्ता है, सीनियर कार्यकर्ता है, और 2000 लोगों ने तैयारी की, सपोर्ट में कुछ मिलता नहीं। कोई बात नहीं, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है, जो पार्टी ने निर्णय दिया उसका सब पालन करेंगे।
1: नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं देने पर कांग्रेस उनके समर्थन में आ गई है। कांग्रेस ने तुरंत मौका देख और कहना शुरू कर दिया कि बीजेपी बड़े नेताओं को खत्म करती है। राजनीति में इसे अवसरवाद भी कहते हैं, क्योंकि जिस कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे पर वर्षों तक खींचतान चली, जहां टिकट बंटवारे पर दर्जनों बार बगावत हुई, वो अगर बीजेपी को संगठन का पाठ पढ़ाने लगे तो जनता मुस्कुराए बिना नहीं रह सकती। राजनीति में याददाश्त छोटी हो सकती है, लेकिन जनता की याददाश्त इतनी भी छोटी नहीं होती। लेकिन माहौल चुनावी है तो कांग्रेस जरूरत से ज्यादा बड़ा बनना चाहती है।
4: नरोत्तम जी मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता, तो उनको कट्टू साइज तो करनी था, कर दिया। ये बाई इलेक्शन जो हो रहा है, ये नरोत्तम मिश्रा जी की पैरवी के कारण, गलत पैरवी के कारण, गलत ढंग से कांग्रेस का हमारी सदस्य की संस्था ली गई और इसलिए हटा दिया, कहीं नरोत्तम मिश्रा खतरा ना बन जाए। ये जो छुटवैया नेता मुख्यमंत्री और सब बन जाते हैं, और वैसे भी कोई ब्राह्मण भाजपा में मजबूत न होने पाए, ये तो भाजपा की परंपरा।
1: हालांकि बीजेपी अक्सर कांग्रेस पर आरोप लगाती रही कि वहां फैसले ऊपर से होते हैं, नीचे सिर्फ पालन होता है, लेकिन दतिया में नरोत्तम मिश्रा के समर्थक आज बीजेपी से भी वही सवाल पूछ रहे हैं।
5: जनता पार्टी के शीर्ष नरोत्तम से ये मांग कर रहे थे कि दतिया का जो टिकट हुआ है वो पुनः वापस लिया जाए और नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट दिया जाए। नरोत्तम मिश्रा जी दतिया की आम जन की आवाज है, जनता की आवाज है, हम सब की आवाज है, दतिया के विकास के विरोधा है। हम संवैधानिक रूप से अपनी मांग रख रहे थे। हम लोगों ने पूरी रात रामधुन गा के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नरोत्तम से मांग की है कि हमारा टिकट हुआ है, नरोत्तम मिश्रा जी को पुनः टिकट दिया जाए।
1: लोकतंत्र में सबसे बड़ा संकट तब नहीं आता जब सिर्फ विपक्ष सवाल पूछता है, सबसे बड़ा संकट तब आता है जब सवाल अपने पूछने लगते हैं। अब देखना है कि क्या दतिया की दरार यहीं भर जाएगी या संदेश पूरे मध्य प्रदेश तक जाएगा। दतिया का उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं है, यहाँ बीजेपी के लिए अनुशासन बनाम असंतोष, हाईकमान बनाम जमीनी कार्यकर्ता और व्यक्ति बनाम संगठन, तीनों की एक साथ परीक्षा है। एक परीक्षा बिहार में बांकीपुर सीट पर भी देखने को मिली, जहां बीजेपी के उम्मीदवार ने आखिरी मौके पर पर्चा वापस लिया तो दूसरे उम्मीदवार को टिकट थमाना पड़ा। हुआ यूं कि बिहार ने पहले बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में अभिषेक कुमार को उम्मीदवार बनाया। अभिषेक कुमार ने नामांकन भी भर दिया, लेकिन अचानक अभिषेक कुमार ने पर्चा वापस ले लिया और इसके पीछे निजी वजह बताया। इसके बाद बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को अपना उम्मीदवार घोषित किया। 13 जुलाई को बांकीपुर सीट से पर्चा भरने का आखिरी दिन है। फिलहाल नीरज कुमार सिन्हा ने बांकीपुर से पर्चा नहीं भरा है। इस सीट से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक थे। राज्यसभा के लिए सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दे दिया था। सवाल ये नहीं कि बांकीपुर जीतेगा कौन, सवाल ये नहीं कि दतिया में क्या होगा, सवाल ये कि बीजेपी जैसी पार्टी में ये क्या हो रहा है। कहीं बगावत तो कहीं मैदान छोड़कर भागने की शुरुआत। ऐसे में लोकतंत्र में बीजेपी विपक्ष को कैसे चुनौती दे पाएगी, इसका असर कार्यकर्ताओं और वोटरों पर क्या होगा। आज तक ब्यूरो।
0: तो एक ही दिन में दूसरी बार एक तरफ बांकीपुर में उम्मीदवार बदलना पड़ा तो दूसरी तरफ दतिया में हम साफ साफ देख रहे हैं कि अपने ही कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं और सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार उनका टिकट क्यों काटा गया। नरोत्तम मिश्रा दिल्ली की तरफ निकल चुके हैं, दिल्ली जाकर क्या होगा उस पर भी चर्चा होगी। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। दीपक झा मेरे साथ यहां पर स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस की तरफ से। प्रोफेसर नवर किशोर आरजेडी की तरफ से इस चर्चा में शामिल होंगे। सत्य प्रकाश मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो भी यहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। और आशुतोष हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी इस चर्चा में शामिल होंगे। तीन सवाल, दंगल के तीन सवाल इस पैनल के सामने। पहला सवाल, जो दतिया में दिखाई दे रहा है वो सिर्फ एक स्थानीय नाराजगी के तौर पर हमें नजरअंदाज कर देना चाहिए या संगठन के लिए एक बड़ा संदेश है कि सत्ता भले कितनी भी बड़ी हो लेकिन ग्राउंड पर यानी स्थानीय लोगों में अगर गुस्सा होता है तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है। दूसरा सवाल, क्या विपक्ष इस विवाद का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तुरंत ये बात कह रही है कि देखिए बीजेपी की पोल खुल गई, ब्राह्मणों को बड़े अहदे पर नहीं पहुंचाने की बीजेपी की तरफ से कोशिश हो रही है। यह भी सवाल कांग्रेस पार्टी उठा रही है, प्रमोद तिवारी का बयान। तीसरा सवाल, बीजेपी संगठन में स्थानीय नाराजगी आगे बढ़कर क्या चुनौती बन सकती है, क्योंकि अब तक बीजेपी की तरफ से यही दावा किया जा रहा था कि अनुशासन पार्टी के भीतर यह उनकी सबसे बड़ी ताकत है और यह नाराजगी आगे बनकर बीजेपी के लिए क्या चुनौती बन सकती है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर सवाल उठाया है कि पवन खेड़ा कांग्रेस पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि बीजेपी की पोल खुल गई है, एक टिकट क्या कट गया, बीजेपी की पोल खुल गई और बीजेपी दूसरों को पाठ पढ़ाती है, अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल गई है। दरअसल यहां पर सीधा कांग्रेस पार्टी का कटाक्ष भारतीय जनता पार्टी पार्टी पर क्योंकि नरोत्तम मिश्रा ने अपने कार्यकर्ताओं को शांति की अपील तो की है लेकिन उसके साथ साथ वो दिल्ली भी चले गए हैं। दूसरी तरफ हाईवे जैम ना हो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के वहां के कार्यकर्ताओं को उन्हीं के दफ्तर में एक तरीके से बंद करके रखा हुआ है। वहां के एसपी भी घायल हो गए थे लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी भी नहीं है। यह सोशल मीडिया पर पवन खेड़ा का ट्वीट आप देख सकते हैं। प्रेम शुक्ला जी, दूसरों को पाठ पढ़ा रही है। देखिए कांग्रेस को मौका मिल गया मध्य प्रदेश के भीतर, एक टिकट क्या कट गया, सीधे सीधे अपने ही सरकार के खिलाफ हाईवे जाम करने के लिए एक पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच गए। आमतौर पर बीजेपी में सभी को पता है कि एक बार टिकट डिक्लेयर हो गया चुपचाप आपको काम करना पड़ता है। धीरे धीरे ये शुरुआत कहीं ना कहीं हो गई है।
6: साहिल जी, जिस तरह से जो है दतिया में कार्यकर्ताओं का आक्रोश प्रकट हुआ है वह निश्चित तौर पर दुखद है। कार्यकर्ताओं का हिंसा पर आमादा होना दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी भी कार्यकर्ताओं को सतत जो है शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि कार्यकर्ताओं का आक्रोश शांत होगा और सारे कार्यकर्ता आशुतोष तिवारी जी के समर्थन में चुनाव प्रचार में पूरी तन्मयता के साथ उतरेंगे और दतिया विधानसभा के उपचुनाव में आशुतोष तिवारी की विजय को सुनिश्चित करेंगे। कार्यकर्ताओं में आक्रोश निश्चित तौर पर प्रकट हुआ है, अभिव्यक्त भी हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था लेकिन कई बार अनुशासन टूटता है और इस तरह का अनुशासन टूटना भारतीय जनता पार्टी की परंपरा के विपरीत है। ऐसे में तो जहां पर रोज अनुशासन टूटता है, जहां सिर्फ उठवल होता है, ऐसे लोगों को भी कुछ न कुछ कहने का अवसर मिलता है तो उस अवसर का भी लाभ अब ब्राह्मणों के बारे में सबसे अधिक जो है फिरोज पौत्र राहुल गांधी की पार्टी अब ब्राह्मणों की सबसे बड़ी ठेकेदार हो गई है, यह भी अपने आप में जो है हास्यास्पद है।
0: नहीं लेकिन देखिए क्या है ना कि देखिए आप ये बात ठीक है कि कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ता है लेकिन अभी देखिए हम पिछले 10 साल में क्या देख रहे थे। प्रेम शुक्ला जी, टिकट कट गया तो अपने दिल पर पत्थर रख के चुपचाप बैठना पड़ता था क्योंकि समझ में आ गया था कि अगर किसी ने बवाल किया तो ऐसा सबक मिलेगा कि दोबारा कभी चुनाव लड़ नहीं पाएगी। ये बीजेपी में एक चीज हम देख रहे थे, बड़े बड़े नेताओं के टिकट काट दिए, कई लोगों को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया लेकिन अब देखिए यहां पर टिकट क्या कट गया, सीधे कार्यकर्ता सड़क पर उतर आ गए, हाईवे जाम कर दिया, वहां के एसपी को घायल कर दिया, ना किसी की गिरफ्तारी हो पा रही है, बीजेपी के दफ्तर में ही सबको बंद करके रखा हुआ है। मतलब ये तो कहीं ना कहीं शुरुआत है ना चिंगारी की एक तरीके से कि बहुत हो गया, अब इस तरीके से हम नहीं सहेंगे कि ऊपर से बात आ गई और हमने मान लिया। नरोत्तम मिश्रा बड़े नेता है, उनका टिकट काट गया तो उनके कार्यकर्ता वहां पर सड़क पर उतर आ गए, किसके खिलाफ उतर आ गए?
6: देखिए चिंगारी है, वो चिंगारी वहीं समाप्त हो जाएगी, वो बड़वानल बनने नहीं पाएगा। ये निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है कि कार्यकर्ताओं ने हिंसा पर आमादा होने का कार्य किया, वहां पर जो है पुलिसकर्मी घायल हुए और जिन लोगों ने पथराव किया है वो निश्चित तौर पर दंड के पात्र भी होंगे और प्रशासन उन पर कार्रवाई भी करेगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन ही अंततः जो है अनुशासन के अनुकूल ही निर्णय होगा और अनुशासन के अनुकूल ही क्रियान्वयन होगा।
0: कैसे अनुशासन बनाएंगे वो जरा आपको पूछेंगे लेकिन दीपक जी आप तो ज्यादा ही खुश हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, आपको तो कैंडिडेट भी अभी तक मिला नहीं है दतिया में, ठीक है, आप ही के वहां पर उम्मीदवार जीते थे उनका उनको सजा हो गई तो उनको हटा देना पड़ा, अब नया कैंडिडेट आपको मिला नहीं है, नरोत्तम मिश्रा जी को संपर्क तो नहीं कर रहे हैं आप?
7: देखिए नरोत्तम मिश्रा जी को उनके साथ हमारी शुभकामनाएं हैं, दतिया के नेता रहे हैं, अभी भाजपा ने उनको दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया है, भाजपा में नया नहीं हो रहा है साहिल जी, आपको ये समझना पड़ेगा। आडवाणी जी से लेकर शांता कुमार जी से लेकर मुरली मनोहर जोशी से लेकर यशवंत सिन्हा, ना जाने अनगिनत नाम और कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र तोमर, राकेश सिंह, शिवराज सिंह चौहान, सारे उसी लिस्ट के, उसी नाव के नाविक हैं, सारे के सारे उसी सवारी हैं। तो सबके साथ भाजपा ने ठगा है। यहाँ पे क्या है, दास प्रथा चलती है। एक मालिक बैठा ऊपर 56 इंची वाला, नीचे सब सारे के सारे दास हैं। कार्यकर्ता को भी, दरी बिछाने वाले को भी कुछ बना सकते हैं। बात यह है कि अभी तक क्या था, एक 56 इंची था, बाकी सब सारे के सारे 6 इंची वाले थे भाजपा में। लेकिन आज दतिया में नरोत्तम मिश्रा जी ने दिखा दिया कि अब ये 56 इंची वाला नहीं चलेगा, जो बोल देगा वो नहीं चलेगा। ये भाजपा की बगावत अंदर है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ है, आपको समझना पड़ेगा। जहां भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा का बड़ा से बड़ा नेता नरेंद्र मोदी अमित शाह के खिलाफ बगावत करने से डरता था, बोलने से डरता था, ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी, इनकम टैक्स आ जाएगा, आज विपक्ष के तो लड़ ही रहे, हम सारे के सारे लोग लड़ रहे हैं।
8: चन्नी की बगावत किसके खिलाफ है?
7: चन्नी पे भी आ जाएंगे। अभी तो मिश्रा जी का आनंद लीजिए,
8: तो आप बताइए ना, उनकी बगावत किसके खिलाफ है?
7: अभी मिश्रा जी के मिलावट का आनंद लीजिए कि भाजपा ने इनको ऐसा मिलावट का घोल पिलाया, ना वो नेता बन पाए, ना कार्यकर्ता बन पाए, ना सड़क पे उतर पा रहे हैं। और प्रेम शुक्ला जी भी कह रहे हैं जो पार्टी का बगावत करेगा उसको हम देखेंगे, मतलब ये मान गए हैं कि पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी अमित शाह के खिलाफ जो लोग नाक बंद करके चुपचाप बैठे रहते थे कि सांस भी लेना नहीं है, नरेंद्र मोदी जी सुन लेंगे, बाहर कर देंगे।
8: वो तो अब बीजेपी तो कह रही है ना कि भाई देखिए, अभी आपने सुना नहीं कैलाश विजयवर्गीय क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि देखिए ये तो लोकतंत्र की निशानी है बीजेपी के भीतर।
7: देखिए लोकतंत्र की निशानी है, कैलाश विजयवर्गीय क्या कहते थे, मैं तो एमएलए का चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, मैं तो हेलीकॉप्टर से हवाई जहाज से प्राइवेट।
8: जिनकी बात कर रहे हैं वो नरोत्तम मिश्रा जी से हमारे संवाददाता रविश कुमार, उसने बात की है, वो जरा सुनाते हैं आपको पहले कि क्या बोल रहे। पहली बार नरोत्तम मिश्रा यहाँ पर बात कर रहे हैं
9: भाजपा के। पार्टी का फैसला जो होता है वो ठीक ही होता है, उसको अच्छे रूप में ही लेना चाहिए, खराब रूप में नहीं लेना चाहिए, ऐसा मेरी मान्यता है।
10: आपके तो सकारात्मक भाव हैं, लेकिन आपके जो समर्थक थे, जो महीनों से इंतजार कर रहे थे कि जो प्रकरण आया, राजन भारती का मामला कोर्ट में गया, वहां से विधायक की गई, सदस्यता गई, सबको उम्मीद थी, लेकिन जब ये फैसला आया तो उनका गुस्सा साफ तौर पर सामने मिला। हाईवे जाम हो गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ हो गई, पथराव हो गया।
9: हाँ, छेड़ने का आवेश था, मैंने कल भी फिर उनसे निवेदन किया था, आज भी किया मैंने, जी जाम बाम की स्थिति नहीं होना चाहिए। कार्यकर्ता वो पेट्रोल डाल रहे थे, वो मुझे दिखाए विजुअल फुटेज, मट्टी का तेल डालते हुए का। धैर्य और संयम का समय यही होता है, यही परीक्षा की घड़ी होती है। पार्टी बात रखने का अपना एक तरीका है, उस तरीकों को अपनाएं और अनुशासित रहें।
10: जनता काफी ज्यादा दतिया की जो है भावुक हो गई, अपनी दुकानें बंद कर ली, पूरे बाजार दतिया के कल शाम से बंद है, आज भी इक्का दुक्का खुली, वरना पूरा शहर बंद है।
9: मुझे भी बताया गया है ऐसा, कार्यकर्ताओं से मैं बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ।
10: और आप भोपाल जा रहे हैं, तो भोपाल में कोई कार्यक्रम, आला नेताओं से आपकी मुलाकात है क्या, प्रदेश अध्यक्ष से या मुख्यमंत्री से या किसी से?
9: अभी तो नहीं, होगी तो बताऊंगा निश्चित। आप
10: आशुतोष तिवारी को आशीर्वाद रहेगा आपका?
9: सभी को क्यों नहीं रहेगा, कैसी बात कर रहे हैं।
10: हालांकि कैलाश जी ने कहा है कि वो बहुत अच्छे से जानते हैं आपको, उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ नरोत्तम जी को, पार्टी के फैसले को हमेशा से स्वीकार करते हैं और हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहे हैं वो।
9: बिल्कुल सही कहा उन्होंने, मैं सहमत हूँ उनसे।
10: आपके लिए भावुक क्षण है?
9: नहीं, राजनीति में सब चलने वाली चीजें।
10: लेकिन एक आखिरी सवाल नरोत्तम जी, चुनाव हुआ 2023 का, फिर लोकसभा आया, फिर राज्यसभा चुनाव आए, फिर कई दूसरी जिम्मेदारियां भी थी, हालांकि न्यू ज्वाइनिंग टोली का आपका संयोजक बनाया गया था, तब काफी लोग जुड़ के आए थे कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में, अब तो भाजपा में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया।
9: लगातार लोकसभा, राज्यसभा अध्यक्ष, जो भी आप बात कर रहे हैं, ये अंतर्मुखी हो गए, स्वयं के चिंतन के लिए पार्टी अवसर दे रही है, हमें चिंतन करना भी चाहिए, अच्छी बात है।
10: और जो कांग्रेस कार्यकर्ता जब छोड़ के आए थे भाजपा में, कल से हम देख रहे हैं कि भाजपा में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया, पूरी पदाधिकारियों ने दतिया से इस्तीफा दे दिया, जिला अध्यक्ष तक ने इस्तीफा दे दिया।
9: बात करेंगे अभी,
10: उनका इस्तीफा वापस करवाएंगे क्या?
9: नहीं, चर्चा तो करूंगा ही, चर्चा तो निश्चित करेंगे।
10: एक आखिरी, आपने कहा था कि मेरा पानी कम होते देख किनारे पे घर मत बना लेना, आप कायम है अभी भी?
9: नहीं, कम आराम से घर बनाए, क्या दिक्कत है।
10: कोई संदेश जो आप देना चाहेंगे कार्यकर्ताओं को?
9: सब संयम और धैर्य का परिचय दें, शांति का परिचय दें।
10: बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के। तो ये थे नरोत्तम मिश्रा, आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, ट्रेन में डबरा से भोपाल के लिए रवाना हुए हैं और कार्यकर्ताओं से अपील की है कि संयम बनाए रखें, धैर्य रखें, सब्र रखें और बीजेपी ने जो भी फैसला लिया है उसे पूरी तरीके से फिलहाल यहाँ पे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो हैं उन्होंने स्वीकार किया है और सकारात्मक भाव से आगे अपनी बात रखने की बात भी उन्होंने आज तक से की है। रवीश पाल सिंह, विदिशा। आज
8: तक विदिशा पहुंची है उनकी ट्रेन और भोपाल में जाकर रुकेगी लगता है, दिल्ली तो नहीं जाएंगे। लेकिन नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं पार्टी का जो भी फैसला होगा वो ठीक ही होगा। हालांकि अपने कार्यकर्ताओं से संयम बनाने के लिए कह रहे हैं, धैर्य बनाए रखने के लिए कह रहे हैं, लेकिन पार्टी का जो फैसला होगा वह ठीक होगा ये कहते हुए वो ये भी कह रहे हैं कि जो इस्तीफा हो रहे हैं उस पर बात जरूर करेंगे। चिंतन की बात कही जा रही है क्योंकि लोकसभा में उन्हें मौका नहीं मिल पाया, राज्यसभा के लिए उनको मौका नहीं दिया गया। पार्टी के कद्दावर नेता है मध्य प्रदेश के, लेकिन 3 बार मौका चूक गए, चुनाव की हार गए, कई ठंडे बस्ते में चले गए। उसी पर पूछा तो कह रहे हैं कि चिंतन करने के लिए पार्टी ने कहा होगा तो चिंतन करेंगे, और राजनीति में सब कुछ चलता है। जिन्होंने इस्तीफा दिया है उनसे बात करूंगा। हालांकि क्या बात करेंगे, किस तरीके से करेंगे, देखिए दीपक जी, जो भी है फर्क तो यह है, चन्नी अभी भी मानने को तैयार नहीं है। यहां पर नरोत्तम मिश्रा साफ साफ कह रहे हैं हथियार ही डाल दिया, उनकी ट्रेन भोपाल जाके रुक जाएगी,
7: देखिए
8: दिल्ली तरफ नहीं आने वाली, और कांग्रेस पार्टी के दफ्तर की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाएगी।
7: देखिए साहिल, चन्नी जी और इनमें अंतर देखिए, कितना शांति से पूरा दतिया बंद करा दिए भाई, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, एम्बुलेंस हॉस्पिटल नहीं जा पा रही है। पंजाब में कहीं चन्नी जी ने ऐसा कुछ किया कि आपको कहीं ऐसे नजारे दिखे क्या? मतलब वाह, ऐसे शांति तो पूरे देश में चाहिए ना। ये नरेंद्र मोदी जी का विकास मॉडल की बात करने लगे आप तो, अरे भाई यहाँ पे आग लगी है भाजपा के घर में, और हम कह रहे हैं कि कांग्रेस में क्या हो रहा है। भाजपा का जो है कार्यकर्ताओं के साथ इन्होंने क्या किया, अनुशासन के नाम पे भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं का चीरहरण किया है, और भाजपा ने जो चीरहरण अपने कार्यकर्ताओं का किया, आज उनका एक छोटा सा कार्यकर्ता उठ के आ गया, अपना 56 इंची वाले को अपना भी 6 इंची का सीना दिखा दिया है, कह दिया है कि अब अनुशासन के नाम पे अभी नहीं चलेगा। अब आप विपक्ष के लोगों के ऊपर तो ईडी भेज सकते हो, सीबीआई भेज सकते हो, हमारे ऊपर क्या भेजोगे? हमारे को पार्टी से निकालोगे? निकालो, वो तो चाहते हैं कि पार्टी से निकालें। तो लेकिन जो तानाशाही के खिलाफ जो हम लोग लड़ रहे थे, अब भाजपा के लोग, भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता, भाजपा को वोट देने वाले भी अब मोदी जी से सवाल करने लगे हैं।
8: सत्यप्रकाश मिश्रा,
7: बहुत हुई मन की बात।
8: ये सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी हम के तौर पर उसको देखें कि जो बड़ी आग में फैल सकती है, या एक स्थानीय मुद्दा है। नरोत्तम मिश्रा भी हम देख रहे हैं कि भाई एकदम शांति से बोल रहे हैं कि ठीक है, राजनीति में ऐसा होता रहता है। हालांकि राजनीति में कब तक ऐसा होता रहता है वो सहन करने के लिए भी एक लिमिट होती है, लेकिन फिर भी वो

0: सीट से उनको हटा दीजिए, दीपिका पांडे को, महिला को, और प्रदीप यादव जी को।
1: आपके पास बड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है, मतलब राहुल गांधी जी के पास आपकी बहुत इन्फॉर्मेशन है। आपको राहुल गांधी जी के ऑफिस से फोन आ रहा था क्या, मैसेज आया क्या, ईमेल आया क्या? ऐसे अनर्गल आरोप मत लगाइए ना, नाम लेके अगर लगा रहे तो राहुल गांधी जी ने क्या बताया, आप उसको यहाँ प्रूफ करिए।
2: दीपक जी बीच में नहीं, उसको एक मिनट नहीं, प्लीज बीच में नहीं होगा, उनको बात अपनी खत्म करने दीजिए, उसके बाद आपको भी मौका मिलेगा, आपको भी मौका मिलेगा। लेकिन बीच
1: साहिल भाई,
2: बीच में
1: राहुल गांधी जी का नाम
2: जो भी है बीच में नहीं, बीच में आपने भी कई लोगों के नाम लिया, कोई बीच में बोला
0: अगर मैंने थोड़ी कोई गलत बात कही हो, आपका समय आएगा आप बोलिएगा। दूसरों के समय में बोलने के कारण कांग्रेस शून्यता पे निपट रही है और दतिया तो बहुत बुरी तरह हारेंगे आप। आपका वो जो विधायक था वो बैंक फ्रॉड मामले में 3 साल की सजा भुगत रहा है और हाई कोर्ट ने राहत नहीं दी, जिसके कारण दतिया में मां पीतांबरा का पीठ है, वहां चुनाव होने जा रहा है। और नरोत्तम मिश्रा जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा पार्टी जो कहती है उसका फैसला ठीक होता है, और कार्यकर्ताओं से उन्होंने शांति बनाने की अपील की। वो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, किसी भी पार्टी में कभी कभी यदा कदा किसी किसी सीट पर इस तरह की घटना होती है। राजद ने भी एक टिकट नहीं दिया था, बेचारा वो शर्ट पैंट फाड़ के सड़क पे लेट रहा था कि मर जाएंगे, मेरा तो ये हो गया। फिर वहां पूर्णिया में कभी बीना देवी को जिता रहे थे, कभी पप्पू जी को जिता रहे थे, ऐसा होता है। लेकिन इसका कोई मैसेज ये नहीं है कि उस पार्टी में चिंगारी फूट गई, बगावत अब तो शुरू हो गया, किला दह जाएगा, ऐसा नहीं होता है। चन्नी जी लड़ रहे हैं वहां अमरिंदर राजा से, लड़ भिड़ंत में प्रियंका जी को जाना पड़ा, राजस्थान में लड़ रहे थे गहलोत और सचिन पायलट, कुछ दिन तो सचिन पायलट विधायकों के साथ कहीं और प्रस्थान कर गए थे वहां। नहीं रुकिए, वहां कांग्रेस को बेशर्मी नहीं दिखती अपने घर में बगावत का सुर, बड़े बड़े नेता उठा करके फेंक के चले गए पार्टी छोड़कर। अरे अपने गिरेबा में झांक लो कांग्रेस, सारे पार्टी के नेता उठ उठ के दूसरे पार्टी में चलते गए, वो एक शेर है ना कि वो महफिल से उठकर चलते रह गए, हम साज बजाते रह गए। तो कांग्रेस साज बजा रही है, नेता महफिल छोड़कर जा रहे हैं।
2: लेकिन
0: मैं स्पष्ट कर दूं, देखिए मुझे गुस्सा दिलाया इन्होंने, मैं फिर दोबारा कह दूं कि कांग्रेस के दफ्तर से आधी आधी रात में बिहार के 3-3 बार मुख्यमंत्री बदल जाए करते थे, और जहां जहां ये हरकत वहां वहां सत्ता में 40-50-35 साल से नहीं है।
2: सत्यप्रकाश
0: जो घटना, एक लाइन,
2: यही तो बात है ना, एक लाइन है।
0: नरोत्तम मिश्रा जी बहुत वरिष्ठ, बहुत मैच्योर नेता है भारतीय जनता पार्टी के। जो भी दतिया में यदा कदा छोटी मोटी घटना हुई है उसके प्रति उन्होंने जो अपनी जो भी उन्होंने व्यक्त किया है कि नहीं होना चाहिए, शांति होना चाहिए, और देखिएगा सब ठीक रहेगा। आशुतोष तिवारी जी को टिकट दिया है, पार्टी जिसके साथ है वो जीतेगा। नरोत्तम जी
2: तो,
0: भी प्रचार
2: तो
0: करेंगे, देख लीजिएगा
2: आपने जो पूरी गिनवाई,
0: नरोत्तम जी भी प्रचार करेंगे,
2: आपने सारी चीजें जो गिनवाई, यही तो बात है ना। इसीलिए तो अब तक बीजेपी तंज कस रही थी कांग्रेस पार्टी पर कि देखिए आपके यहाँ पर तो अनुशासन नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये जब कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता या छोटा मोटा उम्मीदवार जिसका टिकट कट जाता है उनके तरफ से होता है तब तो देख लेंगे। नरोत्तम मिश्रा तो कोई छोटे मोटे नहीं है ना, गृहमंत्री रह चुके हैं, बड़े नेता है, बड़े ब्राह्मण नेता के तौर पर उनको मध्य प्रदेश में देखा जाता है। आज पूरा उसको एंगल दिया जा रहा है कि देखिए नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय सभी को वहां पर खत्म करने की कोशिश चल रही है, इसी का बैकलैश कहीं ना कहीं बीजेपी के नेतृत्व को वहां पर फेस करना पड़ रहा है।
0: ऐसा होता है यदा कदा कि कभी आप मुख्यमंत्री बदलते हैं तो उनके कार्यकर्ता आहत होते हैं, सीट बदलते हैं उनके कार्यकर्ता आहत होकर के छिटपुट बातें होती हैं हर पार्टी में, मैं इसे इनकार नहीं करता, लेकिन ये नहीं होनी चाहिए। वो नेता भी अपील करते हैं और धीरे से सब फिर ठीक हो जाता है। लोकतंत्र में पार्टियों के अंदर भी इस तरह की बात यदि आए तो उसमें कुछ बुरा नहीं महसूस करना चाहिए, लोकतंत्र का एक हिस्सा मात्र है, उसको इस तरह नहीं लेना चाहिए कि वो तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के या किसी भी पार्टी के पूरे खिलाफ हो गए, ऐसा नहीं होता।
2: ठीक है, लेकिन
0: टिकट में ऐसा होता है, देखा गया।
2: मतलब कांग्रेस पार्टी के भीतर हो तो अंदरूनी लड़ाई,
0: मैंने कभी नहीं कहा, इन्होंने चूंकि झांक झांक के कहा, मैंने एक उदाहरण दिया, एक सीट था गोड्डा लोकसभा,
2: ठीक है,
0: लिस्ट आ गई कांग्रेस की, दीपिका पांडे लड़ेंगी, 24 घंटे में आ गया फलना यादव लड़ेंगे, ये तो राहुल गांधी के दफ्तर से होता है, वो बिचारी भी मंत्री है झारखंड में,
2: निजी रूप में जानती होगी ना, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के भीतर, उनकी टर्म खत्म हो गई,
0: मेरा आंतरिक मसला है।
2: मीनाक्षी नटराजन तो वहां पर चुनाव ही नहीं लड़ पाई, कहा जाता है कि कांग्रेस के भीतर का क्लेश कलह जो भी चल रहा था वही कारण हो गया, कहीं ना कहीं उस पर भी चर्चा चल रही है। लेकिन आशुतोष जी आप किस तरीके से देखेंगे इस पूरे मामले को, क्या जो सवाल उठाया जा रहा है कि ठीक है या तो ये स्थानीय मसले के तौर पर देखा जाए या धीरे धीरे चिंगारी सुलग रही है कि अगर आप इस तरीके से फैसला लेंगे तो हो सकता है कि कार्यकर्ता भी इसे मानने

0: से इनकार करें।
1: देखिए साहिल, ये जो पूरी घटना है, पहली बात तो ये मान के चलें कि छोटी घटना नहीं है। नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी ठीक ठाक नेता माने जाते हैं, और एक जमाने में वो गृह मंत्री थे और मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी थे, और उनको अमित शाह का बहुत करीबी भी माना जाता है। तो वैसे में अगर नरोत्तम मिश्रा का अगर टिकट कटा है तो ये कोई मामूली घटना नहीं है। अगर मामूली घटना होती तो साहिल जोशी आप अपने अपने चैनल पे इस पर डिबेट भी नहीं कर रहे होते। तो ये हम मान के चले कि ये बड़ी घटना है और ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ही देखिए आप। दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी में इसी दिन आप देखिए बांकीपुर में, जहां पार्टी के अध्यक्ष की सीट खाली हुई है और उस सीट पर वो अपने मनपसंद का कैंडिडेट भी नहीं चुन पा रहे हैं, और जो उन्होंने मनपसंद का कैंडिडेट चुना था उससे विड्रॉ भी कराया गया, उसके लिए किसी दूसरे कैंडिडेट को दिया गया। ये दोनों घटनाक्रम को अगर आप जोड़ के देखेंगे तो ये बिल्कुल स्पष्ट होगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। मैं 10 सेकंड और लूंगा। इस बीच अगर आप देखें, पिछले 1 महीने में पहले मोहन यादव जी के खिलाफ जमीन घोटाले के कागजात अखबारों के अंदर आए, खूब जम के रिपोर्टिंग हुई। उसके बाद जो कृषि राज्य मंत्री है भागीरथ चौधरी, उनके खिलाफ एक रिपोर्ट आई जिसमें भी उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए। फिर आप देखिए भूपेंद्र यादव के दफ्तर के 4 लोगों को हटाया गया जिसमें 2 की नौकरी चली गई। भूपेंद्र यादव कौन है? ये अमित शाह के बहुत ही करीबी आईज एंड ईयर्स माने जाते हैं। फिर अयोध्या में आपने देखा कि राम मंदिर के वहां पे दान पात्र की चोरी। अगर आप इन सब चीजों को जोड़कर देखेंगे तो आपको बिल्कुल पता चलेगा ये वो सरकार थी जो दावा करती थी हमारे यहां घोटाले नहीं होते, और अगर होते भी तो पता नहीं चलता लोगों को। अब अगर भूपेंद्र यादव के दफ्तर के लोगों को सैक किया जा रहा है एक ही दिन में और एक ही आदेश से, क्या ये मामूली घटना है? उस संदर्भ में अगर आप नरोत्तम मिश्रा के इस मामले को देखेंगे तो बात समझ में आएगी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ अप्रत्याशित हो रहा है। क्या ये अंदर कोई सत्ता संघर्ष है या फिर कुछ और चीजें हैं जिसका खुलासा अभी फिलहाल नहीं हो पा रहा। और आपने देखा कैलाश विजयवर्गीय क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा जी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। वो कह सकते थे नरोत्तम मिश्रा जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन वो बार बार कार्यकर्ता और कह रहे हैं देखिए अब सब सुधर जाएगा। उनकी वक्त उनके उनके भाषा पर जाइए।
0: लेकिन बीजेपी की भाषा तो आपको पता है ना आशुतोष जी, वो तो बड़े बड़े नेता वहां पर कोई मार्गदर्शक होता है, कोई छोटा कार्यकर्ता होता है, कोई बड़ा कार्यकर्ता होता है, कोई प्रचारक होता है, तो ये तो भाषा का इस्तेमाल तो एक दूसरे के बारे में किया जाता है जब पता चल जाता है कि टिकट कटने वाला है। लेकिन कोई कुछ ज्यादा तो नहीं रीड कर रहे, क्योंकि क्या है, देखिए नरोत्तम मिश्रा जी का इंटरव्यू अभी किया गया। नरोत्तम मिश्रा अभी थोड़ी देर पहले रवीश से बात कर रहे थे, उसमें तो वो कह रहे हैं कि भाई पार्टी कभी कभी ऐसे फैसले ले लेती है और कभी कभी लेना पड़ता है, राजनीति में होता रहता है। ठीक है, गुस्सा आ गया, हो गया, खत्म हो गई बात। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी क्यों खुश हो रही है उसको लेकर? भाई उनकी अपनी समस्या है, वो वहां पर खुशी जता रहे, उनको तो अपना कैंडिडेट भी अभी तक डिक्लेयर नहीं कर पा रहे, वहां कांग्रेस पार्टी खुश हो रही है नरोत्तम मिश्रा अगर दुखी है तो?
1: देखिए जब कांग्रेस पार्टी में कुछ होता है तो भारतीय जनता पार्टी खुश होती है, जब भारतीय जनता पार्टी में कुछ होता है तो कांग्रेस पार्टी खुश होती है। ये एक दूसरे को टाने दी, इसको कैसे आप समझेंगे? अगर आप देखिए कि गुजरात के अंदर एस्टैब्लिश लीडरशिप को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया,
0: उत्तराखंड तक नहीं किया किसी ने,
1: इसी तरीके से आप राजस्थान के अंदर देखिए कि वसुंधरा राजे सिंधिया को हटा के भजन लाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री बना दिया, कहीं चू तपड़ नहीं हुई। उत्तराखंड के अंदर जो है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटा के तीरथ सिंह रावत और उसके बाद फिर आप धामी को बना दिया, कहीं चू चपड़ नहीं हुई। यहां क्यों हो रही है? यहां सड़क जाम क्यों किया जा रहा है? मारपिटाई क्यों हो रही है? एसपी घायल क्यों हो रहे हैं? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा और उनके जैसे बहुत सारे लोगों को यह लग रहा है कि अगर इसको ऐसे ही चुप रह के बर्दाश्त किया जाएगा तो हमारा भी वही हाल होगा जो त्रिवेंद्र सिंह रावत का हुआ है या फिर नितिन पटेल का गुजरात के अंदर हुआ है। तो उनको भी अपना पॉलिटिकल करियर देखना है। और नरोत्तम मिश्रा बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, एक जमाने में लगभग हर दूसरे दिन उनकी खबरें अखबारों के फ्रंट पेज पे आती थी, इस तरीके के विवादास्पद बयान वो देते थे। तो अगर उनका करियर खत्म होने की निश्चित पौधा, क्योंकि अगर एमएलए का टिकट नहीं मिला तो करियर भी खत्म हो सकता है उनका, इसलिए वो कैसे आसानी से चुप बैठेंगे?
0: सत्यप्रकाश मिश्रा, आप सही मानते हैं इस बात?
2: नहीं, मैं करियर खत्म होने के भविष्यवाणी को सही नहीं मानता। वो भारतीय जनता पार्टी के एक एसेट है मध्य प्रदेश में और कद्दावर नेता है,
0: ठीक
2: है, छात्र जीवन से राजनीति में। आशुतोष जी बड़े युवा पत्रकार, युवा आज भी हैं वो। जब विद्याचरण शुक्ल और अजीत जोगी की बैठक में दिग्विजय सिंह पहुंचे थे मुख्यमंत्री कौन होगा, और आला कमान का फैसला था अजीत जोगी होंगे, कुर्ता फाड़ दिया गया था दिग्विजय जी का, तो कांग्रेस ये सब थोड़ा बताया कीजिए ना कि उस समय क्या आग लग रही थी। वैसी कोई आग भारतीय जनता पार्टी के किसी मीटिंग में आपने आशुतोष जी आज तक देखा? कि मीटिंग चल रही हो, फैसला लेना हो और कुर्ता का फाड़म फाड़ी चल रहा हो
0: कांग्रेस की। उमा भारती जी का तांडव देखा था कि नहीं देखा था?
2: वैसा नहीं है।
0: वो वीडियो याद है आपको सत्यप्रकाश जी, उमा भारती सामने अडवाणी जी बैठे हुए थे,
2: याद है?
0: आप पुरानी बातें निकालते हैं तो बहुत सारी पुरानी बातें निकल सकती है।
1: साहिल देखिए 10 सेकंड
0: संगीत रागी जी जुड़ गया हमारे साथ, संगीत रागी हमारे साथ जुड़ गया। आशुतोष जी अभी आप जो भी बोलेंगे, एक मिनट आशुतोष जी, एक मिनट आशुतोष जी, अभी आप जो भी बोलेंगे संभल कर बोलिए। संगीत रागी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो अभी आपका करेक्शन ठीक से हो जाएगा अगर आप इधर उधर की बात करेंगे।
1: सत्यप्रकाश जी ने दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने की बात की, सत्यप्रकाश जी को याद नहीं होगा, वहां पे मध्य प्रदेश के अंदर विजय राजे सिंधिया के सबसे करीबी लोगों में से थे सरदार आंगरे, पार्टी दफ्तर में उनके कपड़े फटे थे, शायद आप भूल रहे होंगे, मैं आपको बता दूं।
2: अभी वो दौर नहीं है, लेकिन कांग्रेस में ये थोड़ा ज्यादा है।
0: ठीक है ठीक है,
2: वो विजय राजे
0: संगीत रागी, एक एक मिनट संगीत रागी,
2: अभी जाऊंगा नहीं।
0: आशुतोष जी इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा जी का जो भी हुआ है वहां पर, जो भी बवाल हुआ है उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, बहुत बड़ी बात है ये, वो इस तरीके से पेश कर रहे थे आपके आने के पहले।
3: देखिए मैं सुबह से इस खबर को फॉलो कर रहा हूं और नदोपर में इस पर बात भी हम लोगों ने चैनल पे एक चैनल पे कर रहे थे। देखिए जो कुछ भी हुआ है वो वाकई में असाधारण स्थिति है और हाल के वर्षों में मुझे भी कहीं नहीं दिखा है कि इस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर आकर के एक नेता के पक्ष में इतना हुड़दंग मचाएं, हाईवे जाम कर लें, पुलिस पर पथराव करें, थाने पर पथराव करें, ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता है। दो चीजें इससे निकल करके आती हैं, या तो नेता बहुत इतना प्रभावशाली है उस क्षेत्र में और उसका इसको इसकी इतनी पॉपुलैरिटी है जिसके कारण लोग इमोशनल होकर के सड़कों पर आ गए हैं, या ऐसी चीजों को उस नेता स्वयं ने बढ़ावा दिया हो। दो स्थितियां हैं इस चीज को एक्सप्लेन करती है। अभी मैं बेनिफिट ऑफ डाउट नरोत्तम मिश्रा को दूंगा।
0: सब्र का बांध टूट गया, ये भी तो हो सकता है ना कि कब तक हम ऊपर से आदेश झेलते रहेंगे, कभी ना कभी तो अब नीचे से भी जाएगी ना चीजें कि हमको ये चाहिए, ये नेता हमें चाहिए उम्मीदवार।
3: साहिल ये बड़ी पार्टियों से निकलने वाले जितने भी नेता होते हैं ना, जब तक पार्टी में होते हैं तब तक उनका अस्तित्व रहता है, पार्टी से निकलते हुए बहुत बौने हो जाते हैं। उमा भारती से बड़े नेता तो थे नहीं, ये है नहीं। उमा भारती निकली थी और एक अलग पार्टी बना ली थी, क्या नतीजा निकला? कल्याण सिंह को कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर 10 लोग रिसीव करने निकले आए थे जब कल्याण सिंह जो है वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिए थे। और यही बात कांग्रेस के लिए भी साधुत है। नारायण देव तिवारी से लेकर के अर्जुन सिंह और बाकी सभी कांग्रेस से बाहर निकल कर गए, अपने अपने बदौलत वो कुछ भी नहीं कर पाए।
0: ठीक है,
3: तो ये भी अच्छे तरीके से जानते हैं नरोत्तम मिश्रा,
0: नवल किशोर जी
3: वहां पे एक समय नंबर दो कहे थे। और देखिए एक चीज मैं बात बार कहता हूं, प्रदेश स्तर पर मल्टीपल आपके लीडर तो नहीं होते, एक समय वीरेंद्र सकलेचा हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के नेता।
0: तो मतलब आप कह रहे हैं कि भाई नरोत्तम मिश्रा जी को भी पता है कि अगर पार्टी से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो क्या उनकी हैसियत रह जाएगी राजनीति के भीतर, और इसी के वजह से नरोत्तम मिश्रा फिलहाल तो शांत नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के भीतर भी कहीं ना कहीं वो बातचीत चल रही है, लेकिन प्रोफेसर नवर किशोर क्या ये फेनोमेना किस तरीके से देखेंगे? आरजेडी का उदाहरण दिया गया थोड़ी देर पहले यहाँ पर कि एक फूट फूट कर रो रही थी जिनका कैंडिडेट जिनका टिकट कट गया, लेकिन ये नरोत्तम मिश्रा तो कोई छोटे मोटे व्यक्ति है नहीं, बड़े नेता है, तो ये ज्यादा उसको हम देख रहे हैं कि भाई बड़ी बगावत के तौर पर, क्योंकि आशुतोष कह रहे हैं कि वरना हम शो नहीं करते उस पर, लेकिन बात तो हो रही है पूरा सड़क का हाईवे जाम करके रखा हुआ है।
4: नहीं देखिए साहिल जी, ये भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो खुलेआम बाहर दिख रहा है आज के डेट में। पहले भी आपने पिछले 10-12 साल से ये पहले चर्चा हो रहा था कि पूरा देश में शासन 2.5 लोग चला रहे हैं, आज के डेट में वो 2 लोग हैं, ये कौन नहीं जानता है। जब भी मौका मिलेगा भारतीय जनता पार्टी से इस तरह के बड़े बड़े चिंगारी निकलेंगे, राज्यवार निकलेंगे, केवल मध्य प्रदेश में नहीं, हर राज्य में ऐसे व्यक्ति होंगे, इवन कैबिनेट में होंगे कि वो मंत्रिमंडल तो है लेकिन उनको पता नहीं है कि कब उनके सेक्रेटरी बदल दिए जाएंगे बिना पूछे हुए, कब उनका मंत्रालय बदल दिया गया। अभी देखिएगा मंत्रिमंडल का जो हेरफेर होगा होगा तब भी पता चल जाएगा कि किसको कौन और कैसे निकाल दिया गया। तो ये बात तो भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10-12 साल के सत्ता के चरित्र में है। दूसरा सवाल ये है कि वही एसपी मध्य प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं वहां पे एसपी पिटा जाता है, और मेरठ में एसपी पीटता है खुलेआम, जबकि आंदोलनकारी किसी खास मुद्दे को लेकर जो कि समाज हित में है वहां पर एसपी एकदम बेशर्मी से पीट रहा है। ये सत्ता का चरित्र है। तो जो अनुशासन जो आप नाम दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के साथ संगठन चलाती है, अनुशासन इतना ही महत्वपूर्ण होता और जीत के लिए इतना ही सपोर्टिंग समर्थक तत्व होता तो ये शासन तंत्र का इस्तेमाल क्यों करते? पूरे देश में आप देखिए जहां भी चुनाव होता है शासन के विभिन्न तंत्र और संस्थाओं का इस्तेमाल क्यों करते? अभी इतना ही भारतीय जनता पार्टी का जो दल और संगठन जो है वो इतना महत्वपूर्ण है। अभी सतप्रकाश मिश्रा जी जिन्होंने अपना अवतार बदला है, पहले जेडीयू के समर्थक जाने जाते थे आशुतोष भाई, आज विशेषज्ञ बन क्या है, इनको पता नहीं है कि जो कुर्ता फाड़ा था उसको बुला के पहले टिकट दिया गया था, उसको भी नहीं मालूम था।
0: तो चुनाव मैदान में
4: जो टिकट दिया जाता है उस समय उसको शिकायत नहीं होता है
0: चुनाव मैदान में,
4: लेकिन जब बदल दिया जाता है तब
0: टिकट कटने के बाद जो लोगों की हालत होती है।
4: ये बात
0: सत्यप्रकाश जी ये बात तो माननी पड़ेगी ना कि टिकट कटने के बाद लोगों की हालत तो बुरी हो ही जाती है और उसी की वजह से ये बवाल होता रहता है। लेकिन एक मिनट संगीत रागी जी, ये सत्ता का दोहरा चरित्र तो नजर आता है ना, सत्ता का दोहरा चरित्र तो नजर आता है ना कि वो सही कह रहे हैं कि एक जगह पर एसपी पीट रहे और यहाँ पर एसपी को पीटा जा रहा है।
4: साहिल जी एक पॉइंट और बोलना चाहते थे, साहिल जी 15 सेकंड और दीजिए,
0: 10 सेकंड आखिरी 10 सेकंड है संगीत रागी जी।
3: साहिल पटना में हमने जब लालू प्रसाद जी का राज्य था, राज चल रहा था, तो पटना में हमने पटना के डीएम को खैनी बनाते हुए भी देखा है लालू जी के लिए, और चप्पल उठाते हुए भी हम लोगों
0: ने। बट यही चीज अगर दोहराई जा रही है तब तो सवाल उठेगा ना कि वो नहीं होना चाहिए, इसीलिए तो सत्ता बदली गई थी। लेकिन सत्ता का दोहरा चरित्र एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ स्थानीय नाराजगी आगे बढ़कर क्या चुनौती बनेगी? फिलहाल तो नरेंद्र मिश्रा कह रहे हैं जो भी पार्टी कहेगी वो मानने के लिए तैयार है। उनकी ट्रेन क्या भोपाल जाकर रुक जाएगी या दिल्ली तक उन्हें जाना होगा, या एक बार फिर दतिया जाकर चुपचाप पार्टी ने दिए हुए जो उम्मीदवार है उनका प्रचार वो करेंगे? सब पर नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, आप देख करिए।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
3: आगे आगे
4: करेक्ट करेक्ट
5: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
7: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
8: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
9: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: in association with Sharda University. The world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
0: विमल बोलो जुबां केसरी हिंट बड़े आराम से.
2: इंडियन क्रिकेट ने अगर कोई गोट देखा है तो आज मैं उनके सामने बैठा हूं. वैभव सूर्यवंशी को पारी आप कैसे देखते हैं?
3: ह्यूज टैलेंट विदाउट एनी डाउट. इज एज गुड एज सचिन और विराट कोहली.
2: लेकिन क्रिकेटिंग हलकों में क्या उसी तरह से नाम बज रहा था सचिन तेंदुलकर का जैसे आज वैभव सूर्यवंशी का बज?
3: आई थिंक वैभव का थोड़ा ज्यादा है.
2: उनका डेब्यू थोड़ा सा डिलेड है.
3: बट आप इतिहास देखिए तो आपको एहसास होगा कभी कभी लेट ना हो जाए.
2: विराट में आपने ऐसा क्या देखा?
3: विराट को देख के मेरे को मैकेनरो याद आते हैं.
2: जॉन मैकेनरो.
3: हाँ, क्योंकि जब तक वो लड़ते नहीं थे वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते थे. थोड़ा सा जो उनका अजीब लगता है कि वो ज्यादा जोशीले हो जाते. आई लव टू प्रूव पीपल रॉन्ग.
4: जय हिंद फ्रेंड्स. ईसाइयत, सोना, मसाला या विस्तार, 1498 में क्या थी वास्को डिगामा की मंशा? मधुमक्खी जैसे गोरे जो शहद लेकर आ रहे थे, भारत को डंक मारना शुरू कर दिया और बेवकूफ राजाओं का फायदा उठाकर इस देश को गुलाम बना दिया. लेकिन मीर जाफर और मीर कासिम ने अगर सर झुकाया तो रानी लक्ष्मीबाई ने सर उठाया और गोरों को सोचने पर मजबूर कर दिया. कैसी थी लड़ाई? कौन थे इसके महानायक? तलवारें चली या भजन चला? अगर बचपन में नहीं समझ में आया नोटबुक निकाल लीजिए. मैं अवध ओझा जल लेकर आ रहा हूं मास्टर जी इन द न्यूज रूम सिर्फ ललन टॉप पर.
5: हम इस वक्त मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर. आप देख सकते हैं कि ये मालगाड़ी रिलीफ के लिए इस्तेमाल की जा रही है. हम मौजूद हैं मंकी हिल जहां पर भूस्खलन हुई है क्योंकि यहां पर 327 mm से ज्यादा पिछले 4 घंटों में बरसात हुई है. करीब 85 से ज्यादा रेल सर्विसेज इफेक्ट हुए हैं. बहुत सी ट्रेनें कैंसिल हुई. ऐसे 3 और स्थल हैं और आज तक वो इकलौता चैनल है जो इस स्पॉट तक पहुंचा है. कैमरा पर्सन स्वराज दीक्षित के साथ दिव्येश सिंह, लोनावला आज तक.
6: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आप लोगों के कोट अनकोट पाप गिनवाए हैं ये कह के कि आपके समय में जो नॉन बीजेपी सरकार पहले रही है उस समय में हनुमानगढ़ी के मंदिर के सीढ़ियों पे नमाज पढ़वाया गया. क्या जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा अलाउ करेंगे?
7: कैसे नमाज पढ़ सकता है कोई आदमी वहां? ये एजेंडा जो है ये तमाम चीजों से ध्यान भटकाने का है. कैसे नमाज पढ़ सकता है? हम तो कह रहे हैं कि आप सड़क पर नमाज ना पढ़े. चूंकि सड़क सरकार की और सरकार मना कर रही है तो आपकी नमाज जायज नहीं होगी. मैं तो बार बार बोलता हूं जिस प्रॉपर्टी का ओनर अगर उसको इजाजत नहीं देता तो वहां नमाज ही नहीं हो सकती. मस्जिद के अंदर अगर 1 इंच जगह भी गलत है तो उस मस्जिद में नमाज नहीं होगी. तो ये बेकार की बातें हैं ये मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए. पहले बताइए कि प्राथमिक विद्यालय कितने बंद हुए उत्तर प्रदेश के अंदर? 8,500 गांव है उत्तर प्रदेश के अंदर, 8,500 न्याय पंचायत. उत्तर प्रदेश के अंदर कितने बंद हो गए स्कूल देख लीजिए आप. अगर आंकड़ा उठाएंगे तो वो भयावहता को बता देगा कि देश की शिक्षा व्यवस्था कहां जा रही है. शिक्षा व्यवस्था के अंदर आपने ऐसे लोगों को बैठा दिया जो सिर्फ नफरत बांटते हैं.

0: यूपी की सियासत में राम मंदिर चढ़ावा चोरी की गूंज है। चुनाव से ठीक पहले विपक्षी दल इसे बड़ा मुद्दा बनाने में जुटे हैं। वहीं सीएम योगी हिंदुत्व को फ्रंट लाइन पर रखकर जवाबी हमला बोल रहे हैं। यूं तो विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच पहले से ही योगी के तेवर दिखने शुरू हो गए थे, लेकिन जब से राम मंदिर चढ़ावा विवाद को विपक्ष ने हमले के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, योगी का अंदाज और भी आक्रामक हो गया। यूपी में चुनाव नजदीक है। अयोध्या चंदा चोरी का विवाद सियासी फिजा में गूंज रहा है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंदिर बनाम कब्रिस्तान वाले हमले को एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। चढ़ावा चोरी विवाद के बीच शुक्रवार को दूसरी बार अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी में नमाज का जिक्र कर समाजवादी पार्टी पर हमला बोल दिया और फिर बस्ती की जनसभा में इसमें कांवड़ यात्रा वाला चैप्टर जोड़ दिया।
1: जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमान गढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आपको देखते हुए आप जब अयोध्या धाम में दर्शन करने के लिए जाते हैं, आपकी कांवड़ यात्रा निकलती है, तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कांवड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको लगता है कोई उनको बुलावा दे दे तो वो भी जाएं पुष्प वर्षा करें।
0: उधर मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी पहले ही पीडीए वाली रणनीति के जरिए चुनावी तैयारी को आगे बढ़ा रही है। अब चढ़ावा चोरी ने समाजवादी पार्टी के हमलों को नई धार दे दी है।
2: एसआईटी क्या लीपा पोती एसआईटी किससे मनाई है? और सुनने में आया कि एसआईटी में भी सवाल खड़े हो गए। एसआईटी में जो कोई सदस्य है उन पे 420 का मुकदमा है। अब बताइए वही रहेंगे एसआईटी में? ये लड़ाई बड़ी है, आप नहीं समझ पा रहे हो, ये दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है।
0: यूपी के चुनावी रण से पहले ये विवाद बीजेपी के लिए इसलिए भी बेहद संवेदनशील है क्योंकि अयोध्या, काशी, विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकुंभ और धार्मिक पर्यटन जैसे मुद्दे पार्टी की राजनीतिक पहचान और विकास मॉडल का अहम हिस्सा रहे हैं। लेकिन अब चढ़ावा विवाद सामने आने के बाद विपक्षी लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं, लिहाजा सीएम योगी न केवल विपक्ष पर जवाबी हमला बोल रहे हैं बल्कि समाजवादी पार्टी की पीडीए वाली रणनीति पर भी काउंटर अटैक कर रहे हैं।
1: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की, राम के नाम पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया, राम भक्तों पर गोलियां चलाए, अयोध्या के नाम पे पहचान का संकट खड़ा किया। ये डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया।
0: राम मंदिर चढ़ावा विवाद सामने आने के बाद सीएम योगी ने फौरन ही जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई, पड़ताल तेजी से आगे बढ़ रही है और इस बीच सियासी जंग भी बढ़ती जा रही है। आज तक ब्यूरो।
3: मैं उसको पूरी तरीके से चढ़ावा चोरी अपने में आप जानते हैं, हमारे कोषाध्यक्ष महोदय जो स्वामी गोविंद देव गिरी जी हैं उन्होंने भी आप सभी से वार्ता की और बताया कि यह अपने में एक तरीके का कलंक है। एक तरीके से राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है, व्यवस्था में सुधार होगा मुझे पूरा विश्वास है और इस प्रकार की घटनाएं दोहराई नहीं जाएंगी।
4: जिन 8 लोगों की सर गिरफ्तारी हुई है, आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन का
3: इसके बारे में मैं कोई भी किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करूंगा।
5: अन्य ट्रस्टी भी मौजूद रहेंगे?
3: नहीं, ये तो निर्माण समिति की बैठक है। तो निर्माण समिति में L&T, TC, राजकीय निर्माण निगम, इंजीनियर इंडिया लिमिटेड इत्यादि के लोग आते हैं।
6: बाबू जी, इसके अलावा राम मंदिर में CEO की नियुक्ति की बात सामने आ रही है, आप कैसे?
5: काफी चर्चा में समस्या आप कमेटी भी गठित मंदिर
6: हाँ तो वो तो हो गया।
5: ये रिकमेंडेशन एक तरीके से कहा भी था कि इस तरह
3: नहीं, मेरा कोई भी इसमें किसी प्रकार की संस्कृति का प्रश्न नहीं है। ये तो एक उच्चतम स्तर की समिति बनाई गई है, उसमें आपको मालूम है न्यायाधीश उसके अध्यक्ष हैं संभवतः, वह अपना निर्णय संस्तुति सीधे ट्रस्ट को देगी और ट्रस्ट विचार करेगा।
1: जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमान गढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? कौन करवा रहा था? ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की, राम के नाम पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया, राम भक्तों पर गोलियां चलाए, अयोध्या के नाम पे पहचान का संकट खड़ा किया। ये डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, कोई रोक नहीं पाया।
7: तो दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हल्ला बोल के साथ, देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: वियतनाम में भारतीय पर्यटकों से भरी नाव पलटी, अब तक 15 लोगों की मौत। फुक्वेक द्वीप के पास में हादसा, पीएम मोदी ने जताई संवेदनाएं। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारतीय समुदाय के बीच बोले प्रधानमंत्री मोदी, नए भारत की विकास गाथा भूतपूर्व है। दतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से बीजेपी में घमासान, सड़कों पर उतरे समर्थक, तोड़फोड़ पथराव जाम। आज तक से बोले नरोत्तम मिश्रा, राजनीति में यह चलता है, पार्टी का फैसला सही। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर नया हमला, बोले ये लोग मंदिरों पर कब्जा करवाते थे, मंदिरों के पैसे कब्रिस्तान में लगवाते थे। अखिलेश बोले पराजय काले विपरीत बुद्धि। भारतीय नौसेना में शामिल आईएनएस महेंद्र गिरी आज तक से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले नेवी चीफ, मेक इन इंडिया स्टेल्थ तकनीक और अत्याधुनिक हथियारों से लैस, समंदर में मिली नई ताकत।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
2: सनातन धर्म ही समाजवाद है,
3: साचा नहीं पूरा ढांचा बदलना चाहिए। सनातनी बहुत दुखी है, गौ माता की सेवा करने वाले दुखी हैं, और इस सरकार ने कष्ट दुख दिया, महंगाई दी।
4: भारतीय जनता पार्टी जिन जिन राज्यों में नहीं थी वो रीजनल पार्टी की उंगली पकड़ के गई और उस पार्टी को उसने खत्म कर दिया। तो ये सारी रीजनल पार्टी को भी समझना पड़ेगा कि आज देश के संविधान को बचाने की जरूरत है, लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है।
5: ये डबल इंजन की सरकार है, भेदभाव नहीं करती, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर सेंध लगाने वालों को चेतावनी भी देती है, और नहीं मानते हैं तो उनके लिए यमराज के घर जाने का रास्ता भी खोल देती है।
6: नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उत्तर प्रदेश में चुनाव जो जो करीब आ रहे हैं, चुनावी तापमान भी बढ़ रहा है, बड़े बड़े मुद्दे भी उठ रहे हैं, इसी के साथ साथ पार्टियों की आपसी लामबंदी भी हो रही है अपने अपने गठबंधन को मजबूत करने के लिए। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा अगर लगातार छाया रहा तो दूसरी तरफ कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ भी फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव की आहट जैसे जैसे सुनाई पड़ रही है, इंडिया गठबंधन के नारों में एकजुटता का संदेश नजर आने लगा है। सवाल यही है कि क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीटों का बंटवारा आसान है? क्या बीते दिनों में कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और सांसद इमरान मसूद जैसे नेता कांग्रेस के लिए ज्यादा सीटों की मांग करते देखे गए हैं? और तब भी जब इमरान मसूद ने सीधे सीधे अखिलेश यादव पर कहा कि वो खास तौर पर हिंदुओं के मुद्दे अब उठाने लगे हैं, जब मंदिर मुद्दा आया तो अखिलेश यादव ने सीट बंटवारे को लेकर अपना पत्ता भी नहीं खोला है। हाँ, एक इंटरव्यू में अब से कई महीने पहले ही उन्होंने मुझे ये जरूर कह दिया था कि हाँ, हम हर हाल में गठबंधन करेंगे कांग्रेस पार्टी के साथ। ये जरूर वो कह चुके हैं कि सीट से ज्यादा जीत जरूरी है, ये भी याद रखना होगा। अखिलेश यादव राम मंदिर चढ़ावा चोरी, ब्राह्मण सम्मेलन, पीडीए के सम्मान जैसे मसले में यूपी का चुनावी एजेंडा तलाशते हुए दिख रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस के नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सवाल यही है कि क्या उनके खिलाफ यूपी की चुनौती में इंडिया गठबंधन एकजुट होगा? क्या विपक्ष के वोट बटेंगे? जैसा आपने कई राज्यों में देखा भी है, तो इंडिया गठबंधन संग, लेकिन क्या सीट पर होगी जंग? यही है आज हल्ला बोल का विषय। पहले ये रिपोर्ट देखिए। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव का ऐलान है, जो सनातन है वही समाजवाद है।
2: जो सनातन है वही समाजवादी
6: है। ये एक और संकेत है कि अखिलेश यादव अब अपनी समाजवादी पहचान के साथ साथ खुलकर उस पिच पर खेल रहे हैं जिस पर बीजेपी दम भरती थी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बीजेपी को घेरने में सफल दिख रहे अखिलेश की दलील है कि आज सनातनी दुखी है, क्योंकि बीजेपी धर्म की नहीं धन की राजनीति करती है।
3: जो भारतीय जनता पार्टी के विचार हैं वो वोट के लिए बदलते हैं, उनके लिए धर्म नहीं धन प्राथमिकता है।
7: हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, चढ़ावे की चोरी से बड़ा कोई पाप नहीं है। इन्होंने महापाप किया है।
6: बात सिर्फ राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर आक्रामक होने की नहीं है। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने हाल में कई ऐसे संदेश दिए हैं जिसे बीजेपी के हिंदुत्व वोट बैंक में सेंध मारने की कोशिश माना जा सकता है। 8 जुलाई को समाजवादी पार्टी की नेता पूजा शुक्ला ने लखनऊ में अविमुक्तेश्वरानंद की मौजूदगी में धार्मिक अनुष्ठान, आध्यात्मिक प्रवचन और सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया है। इसके पहले अखिलेश यादव 8 बड़े मंगल पर हनुमान जी को याद करते देखे गए, यहाँ तक कि उन्होंने बड़ा मंगल पर भंडारे का प्रसाद बांटा था। समाजवादी पार्टी ने इसी हफ्ते ब्राह्मण सम्मेलन किया था जिसमें बैनर लगा था ब्राह्मण चला अखिलेश के संग, लेकिन जब अखिलेश अपनी नई राजनीति का नैरेटिव खड़ा करने में लगे हैं तब उनके सामने असल सवाल आने वाले यूपी चुनाव में इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का हो सकता है। हाल में कांग्रेस के नए यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा है कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं और गठबंधन में हमारी बराबर की हिस्सेदारी होगी, यानी सीट बंटवारे पर कांग्रेस ने दबाव बनाने के तेवर दिखा दिए हैं। कांग्रेस की दलील है कि बीजेपी से राष्ट्रीय पार्टी ही लड़ सकती है।
4: भारतीय जनता पार्टी जिन जिन राज्यों में नहीं थी वो रीजनल पार्टी की उंगली पकड़ के गई और उस पार्टी को उसने खत्म कर दिया। तो ये सारी रीजनल पार्टी को भी समझना पड़ेगा कि आज देश के संविधान को बचाने की जरूरत है, लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। आप अगर अपने अपने टुकड़ों में इसी तरह लड़ते रहेंगे तो वो लोग आप सबको तोड़ लेंगे। एकजुट होकर इंडिया गठबंधन को मजबूत कीजिए। देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा हमें मिलकर करनी है।
6: राजेंद्र पाल गौतम के इस बयान से पहले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मुसलमानों पर अखिलेश की चुप्पी पर सवाल उठाया था।
8: मंदिर की चंदा चोरी के ऊपर आप मुखरता के साथ बोलते हो लेकिन मुसलमान की सीना चोरी के ऊपर आप खामोश हो जाते हो, ये समझ में नहीं आ रहा है।
6: इस बयान को भी समाजवादी पार्टी पर कांग्रेस के दबाव की रणनीति माना जा रहा है। हालांकि यूपी में सीट बंटवारे पर अखिलेश की लकीर साफ है, सीट नहीं जरूरी है। उधर अखिलेश जब इस जीत के लिए पीडीए और सनातन का जोड़ लेकर आए हैं तब योगी आदित्यनाथ उन बातों को कुरेद रहे हैं जिस पर समाजवादी पार्टी पहले से घिरती रही है।
5: बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था। उनको कब्रिस्तान प्यारा है इसलिए वे राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम और मां विंध्यवासिनी धाम और नैमिषारण्य और चित्रकूट धाम के विकास का विरोध करते हैं।
6: यूपी चुनाव नजदीक आते ही योगी की ओर से अखिलेश यादव पर ऐसे हमले और बढ़ेंगे। अगर अखिलेश इंडिया गठबंधन का मजबूत जोड़ बनाए रख पाते हैं तो मुकाबले में उन्हें आसानी होगी। आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए, अखिलेश प्रताप सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अनुराग भदौरिया जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, वारिस पठान जी प्रवक्ता एआईएमआईएम के, अनुपम मिश्रा जी प्रवक्ता आरएलडी के और सतीश प्रकाश जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपकी पार्टी पूरी जबरदस्त तैयारी के साथ चुनावी मैदान में, अभी से ही दिख रहा है योगी आदित्यनाथ खूब सारी रैलियां कर रहे हैं, लेकिन बाकी के साथी कहां हैं? अभी आप पूछिएगा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में आपसी फूट है, लेकिन आपके साथी कहां हैं एनडीए वाले सारे?
9: हमारे साथी साथ हैं अंजना जी, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी भी हमारे साथ हैं, अनुप्रिया जी हमारे केंद्र में मंत्री हैं, आशीष जी राज्य में मंत्री हैं, संजय निषाद जी हैं, तो हमारे सारे साथी पूरी तत्परता के साथ, आरएलडी हमारे साथ है, तो हमारे सारे के सारे साथी जो हैं पूरी तत्परता के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत दिलाने के लिए सक्रिय हैं और हमें जो है किसी प्रकार की मतभिन्नता दूर दूर तक नहीं है। अभी आप ही बता रही हैं, ये मेरा कोई आरोप नहीं है कि राजेंद्र पाल गौतम और इमरान मसूद पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। तो अब इमरान मसूद और राजेंद्र पाल गौतम की शर्तों के अनुकूल अखिलेश यादव जी दबेंगे तो ये उनको मुबारक हो। 2017 के चुनाव में भी कांग्रेस और सपा का गठबंधन रह चुका है और उस गठबंधन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 325 सीटें जीतने में सफलता मिली थी, ये तो इतिहास है सबके सामने।
6: ठीक, योगी जी को हराना आपके लिए मुश्किल है, अखिलेश जी वो ये कह रहे हैं, और ऐसी मुश्किल है उसके बावजूद एकजुटता क्यों नहीं दिखाई देती है? क्योंकि अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे सही कर दीजिएगा, लेकिन हमने राजेश जी का नाम लिया और हमने गौतम जी का और हमने इमरान मसूद जी का नाम लिया, अब अखिलेश जी के खिलाफ क्यों बयानबाजी हो रही है? आपने देखा पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, राहुल जी ने ही कहा था कि ममता बनर्जी के अपीजमेंट की वजह से बीजेपी यहां जीत रही है। ये मुद्दे जनता के बीच पहुंचते हैं अखिलेश जी?
10: अंजना देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश के लोगों को ये पता चल चुका है कि ये बीजेपी आरएसएस बेस हिंदू परिषद आदि इत्यादि इतने ये है ना गिरोह, ये कोई राम भक्त नहीं है, ये सब नाथू राम भक्त हैं, और जनता पहचान गई है ये छद्म भेषधारी हैं, कालनेमी जैसे था। जो राम का नहीं हुआ वो देश की जनता का क्या होगा? सबकी आस्था श्रद्धा को लूट मारा, इनको सिर्फ पैसा और पावर चाहिए, हर बच्चा बच्चा इनसे घृणा करने लगा है। योगी जी का कोई भाषण हो तो बताइएगा कि योगी जी ने कोई अपने काम की बात की हो, या बीजेपी का कोई नेता ये बता रहा हो कि हमने उत्तर प्रदेश में ये काम कर दिए। सुबह से शाम तक सिर्फ लूटना और झूठ बोलना, और फिर अगले दिन के लिए लूटने और झूठ बोलने की तैयारी करना, ये बीजेपी का चाल चलित चेहरा बन चुका है। जितने का बजट है ना अंजना जी, उससे ज्यादा यूपी में सरकार पे कर्जा कर दिया है बीजेपी की सरकार ने, और हर प्रकार के क्राइम में नंबर एक है, पहले नहीं था लेकिन इन लोगों के आने के बाद पिछले 9.5-10 वर्षों में उत्तर प्रदेश एकदम टॉप वन में है। ये श्रेय तो जाता ही है इनको, इसमें कोई दुविधा नहीं है, ये क्रेडिट इनको जाता है। पर्चा लीक कराने में नंबर वन, हर चीज में, हर क्राइम में, किस बात पर वोट मिलेगा इनको? सबको लूट डाल रहे हो और लुटेरों का साथ दे रहे हो, कोई निष्पक्षता नहीं, कोई पारदर्शिता नहीं, सिर्फ बचाने में लगी है पूरी सरकार, सिर्फ अपराधियों के साथ साठगांठ में है पूरी सरकार। तो इनका तो थर्ड 3 डिजिट में नहीं आ पाएगी बीजेपी अंजना जी, आप बेफिक्र रहिए, देखिएगा बड़े बड़े जितने इनकी पूरी कैबिनेट के जमाना जब्त होगी यूपी में, पूरी कैबिनेट मिनिस्टरों की, किसी ने किसी जनता का
6: फिर भदौरिया जी के पास सीधा जाएंगे। हाँ शुक्ला जी
10: के बाद फिर मुझे भी समय दे दीजिएगा उनका।
9: देखिए अब जो है लूट की बात कौन कर रहा है, जिसकी सबसे सर्वोच्च नेता 420 की केस में जमानत पर है, जिसका अपोजिशन लीडर
10: झूठ बोलता है, 420
9: की केस में
10: इनके अदालत ने क्लीन चिट दे दिया, इनके जांच एजेंसियों को कुछ नहीं मिला, और इनको मैं सुन रहा था ना।
6: अरे ठीक है अखिलेश जी हाथ उठाएगा, मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन प्रेम शुक्ला जी देखिए ना, अब ये राम मंदिर का चढ़ावा चोरी का मुद्दा तो आपको नहीं लग रहा है कि आपके लिए सेटबैक है?
9: हाँ निश्चित, हम और लोग हर कोई जान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कोई कार्यकर्ता उसमें शामिल नहीं है, और चाची 420 की हरकतों को भी पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है कि 12 लाख करोड़ रुपयों की लूट 3G 2G जीजा जी, और अभी अभी उत्तराखंड में जो है प्रियंका वड्रा के इशारे पर जो है उनके रिश्तेदार के लिए जमीन कब्जा करने कांग्रेस का
6: जवाब दिया था, हर कोई जानता है। आपने उनके नेता पर कहा, उनको जवाब देने दीजिए, गलत बात
10: है। ये व्यक्ति जो है सिर्फ झूठ बोलता है हमारे, अब इनको चुप करके मैं बोलूं, देखिए
6: शुक्ला जी
10: कोई आरोप नहीं लगे, खुद कोर्ट ने कह दिया कोई आरोप नहीं लगे, यहाँ तो पूरी बीजेपी लिप्त है, ये ट्रस्ट आदरणीय मोदी जी ने बनाया था, मोदी जी ने लोगों को उसमें सेलेक्ट किया था, मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? क्यों खामोश है मोदी जी, क्यों नहीं जांच करा रहे हैं? क्योंकि तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं, कम पैसे हजारों करोड़ की लूट है,
9: रही है।
10: इसी तरह जमीन के घोटाले जब हुए थे, सार्वजनिक हुए थे, कांग्रेस पार्टी ने उसका खुलासा किया था, तो एक मिश्रा जांच कमेटी बनाई गई थी, राधेश्याम मिश्रा, उस जांच कमेटी की रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं आई? सार्वजनिक करिए बताइए, पूरा का पूरा पैसा हर खजाना सरकारी हो या मंदिरों का है, अभी केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ लूट लिया, वहां पे इन्हीं के मुख्यमंत्री बता रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, तो ये लुटेरे हैं, लुटेरे।
6: शुक्ला जी इस पर जवाब दीजिए, शुक्ला जी इस पर जवाब दीजिए, फिर भदौरिया जी के पास जाएंगे। हो गया अखिलेश जी, अब हो गया। आपने बद्रीनाथ जी का भी जिक्र किया है, बद्रीनाथ जी का भी जिक्र किया है, उस पर जवाब सुनिए। बद्रीनाथ जी के मामले में भी एफआईआर दर्ज हुई है शुक्ला जी,
9: नहीं तो उसमें भी एफआईआर कौन दर्ज कर रहा, सरकार ही कर रही है, क्योंकि हम लूटने देंगे नहीं। इनके समय तो कोर्ट से आदेश होता था, 2G में आदेश कोर्ट से हुआ, नेशनल हेराल्ड में आदेश कोर्ट से हुआ, इनको तो कोर्ट को आदेश देना पड़ता था ना, क्योंकि ये खुद लुटेरे थे। हम लुटेरों के खिलाफ है, ये साफ तौर पर दिखाई देता है कि हमारा हाथ साफ है, इनका हाथ गंदा था, हर कोई जानता चाची 420 है, कौन नहीं जानता
10: कि हमने एफआईआर अनुराग जी
6: अनुराग जी मंदिर अब जल्दी से मुद्दे पर आइए जो कि जो आज का टॉपिक है, क्योंकि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर हमने चर्चा किया और जाहिर तौर पर आज ये मुद्दा भी, जब जब यूपी का चुनाव उठेगा तब तब ये मुद्दा उठेगा ही उठेगा। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, ये बात अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि मिलकर लड़कर ही हम कर सकते हैं, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर और अखिलेश जी के बारे में इमरान मसूद कह रहे हैं या जो उनके अन्य नेता कह रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं है उससे कहीं ना कहीं दिक्कत है? कम से कम बाद में समझौता हो भी जाता है, जनता में मैसेज रॉन्ग जाता है।
11: देखिए, जनता में मैसेज साफ है, कहीं कोई दोराय नहीं है। बीजेपी के अंदर खलबली है, बीजेपी को पता है विपक्ष एक है और अब जनता ही विपक्ष बन चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी किससे बचेगी बताओ? जनता से बचेगी? उत्तर प्रदेश की जनता ही विपक्ष है। अब वो समझ चुकी है, ये जो पार्टी है 10 साल की सरकार हो गई, रैलियां हो रही हैं, लेकिन सरकार ने क्या काम किया 10 साल में एक बार भी नहीं गिनाया जा रहा है अंजना जी, एक बार भी। सिर्फ सफाई दी जा रही है। क्या सफाई? कि अयोध्या के मंदिर के चढ़ावा चोरी पे जो हमने उजागर किया है उसकी सफाई देते घूम रही पूरी भारतीय जनता पार्टी। अब देखिए बीजेपी के नेता की हालत क्या हो गई है, 2G 3G उत्तराखंड कौन कौन खंड भाग रहे हैं, लेकिन अयोध्या पे बोलने को तैयार नहीं। सोचो, प्रभु राम का नाम पे वहां पे हुई है चोरी और उसके ऊपर जब सवाल आप पूछती तो कहां चले जाते हैं, 2G 3G उत्तराखंड पता नहीं कौन कौन से इधर उधर भागने लगते हैं। मतलब अयोध्या की बात नहीं करनी है, प्रभु राम की बात नहीं करना चाहते? अरे प्रभु के चढ़ावा में एक आना भी चोरी हुई है ना, एक आना भी, वो भी महापाप है, इसलिए आप सफाई कहां तक देंगे आप? दूसरी बात, ये भारतीय जनता पार्टी की आदत बन चुकी है कि कभी मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती, विपक्ष की चिंता है, विपक्ष की बहुत इनको चिंता रहती है। जितनी चिंता विपक्ष की करते हो ना और जितनी चिंता विपक्ष को कमजोर करने में करते हो, इतनी चिंता आपने जनता की होती ना तो शायद आपको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल आपको करना पड़ता है, जो व्यक्तिगत हमले आपको करने पड़ते हैं, ये व्यक्तिगत हमले नहीं करना पड़ते। आप काम गिना रहे होते कि हमने काम किया, जैसे हम उत्तर प्रदेश में सरकार में थे, आप अगर अंजना जी पूछेंगे तो आज भी मैं डंके की चोट पे एक सांस में काम गिनाता हूं कि हम, नहीं एक सांस में काम गिनाता हूं, हमने एक्सप्रेस वे बनाया, हमने 1090 बनाया, महिला सुरक्षा के लिए 100 डायल बनाया, हमने स्टेडियम बनाया, हमने मेडिकल
9: लगातार बोलेंगे इनका ब्रेक फेल हो गया है,
11: हमने यूनिवर्सिटी बनाई, हमने काम गिनाया है ना, इनके काम क्या पता, इनका काम गिना रहा हूं, इनका काम
6: ठीक है
11: क्या?
6: प्रेम शुक्ला जी वो आपको चैलेंज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं एक सुर में काम गिना सकता हूं, गिना भी रहे, आप गिनाइए
11: 10 सेकंड
6: ले लीजिए, 10 सेकंड दे दीजिए, पूरा ही कर, बोलिए बोलिए बोलिए अनुराग जी,
11: नहीं इनके काम गिना रहा हूं, इनके काम अंजना जी, 10 सेकंड में इनके काम है। देखिए इनके काम क्या हुए, मंदिर प्रभु के मंदिर में चढ़ावा चोरी, बच्चों का पर्चा में यहां पर्चा चोरी, सोचो आप पर्चा लीक, किसानों के वहां पे वो जो होता है ना खाद में यूरिया चोरी, कमाल की बात है इनके यहां, सड़कों में मिलावट, सड़कें चोरी, कमाल की बात कर रहे हैं, सड़कें चोरी, यूरिया चोरी, परीक्षा चोरी और तो और प्रभु के मंदिर में चढ़ावा चोरी, तो बताइए
6: जवाब दीजिए,
11: ये तो काम है,
6: ठीक है,
11: और फिर काम गिनाएंगे क्या ये?
6: प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए, फिर मैं मेहमानों के पास जाऊं,
11: टूट जाता है इनका एक्सप्रेस वे, सोचो आप,
9: मुझे मैं जवाब देता हूं, मैं जवाब देता हूं, और आप जो सवाल पूछती उसका मैं सटीक जवाब देता हूं, लेकिन आपने जो दोनों कांग्रेस के प्रवक्ता से सपा के प्रवक्ता से जो सवाल पूछा उसका जवाब मिला आपको? नहीं मिल सकता जवाब। हाँ लेकिन हम जवाब देंगे, GDP 2.5 गुना हमने कर दिया उत्तर प्रदेश की, पर कैपिटा इनकम 2 गुना से अधिक हमने कर दिया उत्तर प्रदेश में, सबसे अधिक एक्सप्रेसवे पूरे देश में उत्तर प्रदेश में हमने बनाया, सबके सबसे अधिक जो है शौचालय उत्तर प्रदेश में हमने दिए, सबसे अधिक जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान हमने दिए, सबसे अधिक गन्ने का भाव हमने दिया, हमने जो है सबसे अधिक काम करने का, सबसे अधिक मेट्रो लाइने, अरे बीच में क्यों बोल रहा है, ये बदतमीज बीच में क्यों बोलने लगता है, क्या होता है इसको?
6: अनुराग जी प्लीज रिक्वेस्ट है
9: बीच में। मैं अब आपका बिना तो क्यों क्यों पीड़ा हो रही है? अभी अभी अपराध अपराध की गिनती कर रहे थे, अपराध अपराध गिना रहे थे। अखिलेश सिंह झूठों के सरदार अखिलेश सिंह, भाषा की मर्यादा आप गिरा रहे हैं।
6: अनुराग जी
9: भाषा की मर्यादा,
6: अनुराग जी अनुराग जी
9: बात मानिए, मर्यादा आप बात कर रहे हैं, डिबेट की मर्यादा आप
12: फिर आ गए।
9: मैं आपके
6: लिए शुक्रिया जी, काम गिनाइए ठीक है, काम गिनाने का आपको मौका मिला ना, काम गिनाइए। चलिए
12: सनातन को मानते हैं,
6: मैं शुक्रिया जी को दिखा
9: दीजिए, काम ही गिना रहा हूँ, मैं काम ही गिना रहा हूँ। लेकिन बीच में क्यों चीख रहे हैं, इनकी आवाज जरा डाउन कीजिए ना। मैंने कहा GDP डबल, ढाई गुना किसने की? आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। पर कैपिटा इनकम डबल किसके कार्यकाल में हुआ? योगी आदित्यनाथ। एम्स जो है रायबरेली और एम्स गोरखपुर किसके कार्यकाल में बना? योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में बना। सबसे हर जिले में अस्पताल किसके, मेडिकल कॉलेज किसके कार्यकाल में बना? योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में। सबसे अधिक सड़कें एक्सप्रेस वे किसके कार्यकाल में बना? योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में बना। सबसे अधिक बिजली की आपूर्ति किसके कार्यकाल में हुई? योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में। सबसे अधिक गन्ने का भाव किसके कार्यकाल में मिला? योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में मिला। सबसे अधिक गेहूं की खरीदारी किसके कार्यकाल में हुई? योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में। सबसे अधिक चावल की खरीदी किसके कार्यकाल में हुई? अभी मैं ऐसे आपको
13: जानकारी भी नहीं,
9: लेकिन मुझे कृपा, अभी अपराध पर बात कर रहे थे अखिलेश सिंह, अपराध पर बात कर रहे थे अखिलेश सिंह। 2000 मैं अंजना जी से आग्रह करता हूं कि 2016-17 के NCRB के आंकड़े और 2024-25 के NCRB के आंकड़े कंपेयर कर दें आपके चैनल पे। हत्याओं में कमी आई, बलात्कार में कमी आई, महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी आई, दहेज उत्पीड़न में कमी आई, डकैती में कमी आई, छिनैती में कमी आई, और ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में हुआ।
6: ठीक है अनुराग जी, एक छोटा सा रिस्पांस फिर मैं जाऊंगी वारिस पठान जी, अनुपम मिश्रा और
9: वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है।
6: ठीक है
12: 10 सेकंड,
6: वन डिस्ट्रिक्ट माफिया से वो कह रहे हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है,
12: काम गिनाए मेडिकल
13: वन डिस्ट्रिक्ट वन,
12: कहीं कोई प्रोडक्ट नहीं है, झूठी तो बोलना है। एक आध प्रोडक्ट का नाम बता दे, ये बता दे कि एक मिनट मैं अपनी बात कर रहा
9: हूं। कैसे नहीं, हर जिले में प्रोडक्ट है,
12: सीतापुर में कौन सा प्रोडक्ट बताया, खाली बोलना ही है। अरे सुनिए, नाम बताइए ना, बताइए क्या बहराइच में क्या है, बाराबंकी में क्या है, बताइए,
9: प्रतापगढ़ में आंवला है,
12: कुछ बोल दोगे मुंह उठाए। आप मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मुझे सुन लीजिए। अंजना जी देखिए,
6: अनुराग जी को बोलने दीजिए, शुक्ला जी अब आप बीच में बोल रहे हैं, ना ना शुक्ला जी
12: आपको सुना है, अभी आप बदतमीज पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, मैं तो नहीं बोलूंगा
6: अनुराग जी, बोलिए,
12: मैं तो बोलूंगा आप, मैं बोलूंगा आप, मैं बदतमीज नहीं बोलूंगा, मुझे बोलने दीजिए। देखिए इन्होंने बोला मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज इन्होंने क्या बनाया, जो
6: शुक्ला जी हो गया, हॉस्पिटल शुक्ला जी हो गया, मेडिकल कॉलेज प्लीज नहीं, उसके बाद उन्होंने बात मानी थी, चुप हो गए थे, चुप रहिए प्लीज। प्रेम शुक्ला जी
12: आप देखिए,
6: बोले अनुराग,
12: अब देखिए आप, इन्होंने बोला मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज इनके जिले में जो हॉस्पिटल होते थे रंजना जी, जो हॉस्पिटल इन्होंने कह दिया हमने ये मेडिकल कॉलेज हो गया, कमाल की बात है। दूसरी बात, एक्सप्रेस वे गिना रहे थे आप, एक्सप्रेस वे एक आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है अंजना जी, उस आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे जो है वो बेस है, वहीं सारे एक्सप्रेस वे आके मिल रहे हैं। वो अगर हमने बेस नहीं बनाया होता तो आप एक्सप्रेस वे कहां बनाते, किधर जोड़ते जाके, सारे एक्सप्रेस वे आपके लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे में जुड़ते हैं आके, और तो कहीं जुड़ते ही नहीं है, बता दीजिए आप।
6: बुंदेलखंड का हो, वारिस पठान जी, अनुपम मिश्रा, सतीश जी को दिखाइए, तीनों से एक एक रिस्पॉन्स लूंगी। वारिस पठान जी आपकी भी स्थिति गजब की है, सबको आप चिट्ठी लिखते हैं चुनाव से पहले कि हमको शामिल कर लो, खासतौर पर जो ऑपोजिशन है उसको, लेकिन कोई भी आपको शामिल करने को तैयार नहीं, और आप पर यह आरोप लगता है कि आप हर जगह वोट काटने के लिए विपक्ष का चुनावी मैदान में उतरते हैं, सच तो है ही।
14: देखिए, अरे देखिए अंजना जी, हम तो पूरी ताकत के साथ इस टाइम यूपी का चुनाव लड़ने वाले हैं इंशाल्लाह। अभी आपने खुद ने देखा, असद ओवैसी साहब ने 2 सभाएं की, एक बिजनौर में की, उसके पहले वहां की, कितनी पब्लिक,
6: अकेले सरकार बना लेंगे ना आप लोग, इतनी सीटें जीत रहे हैं,
14: उसी के साथ जाएंगे जो हमारे हक के इंसाफ की लड़ाई,
6: अकेले सरकार बना लीजिएगा ना इस बार यूपी में,
14: हमको बीजेपी को हराना है। अरे सुनिए, अरे वो भी दिन आएंगे, बन जाएगी, कोई फिक्र की बात नहीं है अंजना जी। हमने क्या कहा, हमारा इंटेंशन क्या है, बीजेपी को हराना है, इंश्योर करना है दूसरी मरतबा बीजेपी सरकार सत्ता में ना आए, इसलिए हमने क्या कहा ओवैसी साहब ने, कि हम अलायंस करने के लिए तैयार है, मगर हिस्सेदारी की बात होगी, इज्जत की बात होगी, अब दरी नहीं बिछाएगा अब्दुल, अब बैगिंग बॉल का कटरा लेके नहीं जाएगा, क्या हमारे साथ अलायंस करो, नहीं भाई, आइए हराना है ना। अब क्या होगा अंजना जी, ये अपने एरोगेंस में घमंड गुरूर में पड़े रहेंगे, ये आएंगे नहीं, मगर हम तो लड़ेंगे। और दूसरी तरफ देखिए अब बात, एक तरफ योगी आदित्यनाथ है, दूसरी तरफ समाजवादी के अखिलेश है, योगी लड़का एकदम हिंदुत्व की बात करते हैं और अखिलेश सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं। अगर मध्य प्रदेश में कोई यादव आ जाता है कपले के अंदर, तो अखिलेश जी की जुबान खुल जाती है, मगर वहीं पर उत्तर प्रदेश के अंदर 111 एमएल और इतने सारे सांसद होने के बावजूद जब हमारी मस्जिदों को हमारे मदरसों को शहीद कर दिया जाता है, मुसलमानों पर जुल्म होता है, अखिलेश की जुबान खामोश रहती है। जनता देख रही है, पब्लिक देख रही है, इसीलिए जनता बोल रही है। अब हमको विपक्ष एक तौर पर मिल गया है, हमको AMIM, अब हम जाएंगे ओवैसी साहब के साथ, क्योंकि जो हमारे हक की, इंसाफ की, अधिकार की लड़ाई लड़ेगा उसी के साथ जनता जाएगी, वरना क्यों जाएगी। और हम तो बात करते हैं हमारे दलित भाइयों की, हम बात कर रहे हैं माइनोरिटी को, मुसलमानों की तो बिल्कुल बात करते ही ना, क्योंकि इनके मुंह में तो जुबान नहीं है, यहाँ के इंसाफ दिलाएंगे नहीं। अब मुसलमानों को तो धक्का मार के भगा देते हैं, ईद रमजान में आएंगे, टोपी पहनेंगे, खजूर खाएंगे, बाद में मुसलमानों को 5 साल आप टोपी पहना देते हो। तो ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश का मुद्दा है, साथ साथ में बीजेपी की हालत क्या उत्तर प्रदेश में, जरा ये भी सुन लीजिए अंजना जी। मुझे मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जब बीजेपी के मंत्री रस्ते पे चल रहे तो लोग चिल्ला रहे चंदा चोर ये हालत कर दिया। तो भव्य राम मंदिर बना दिया, सबसे पहले हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, भव्य राम मंदिर बना दिया, पूरा क्रेडिट मोदी जी ने ले लिया, दो से लेकर यहाँ
6: पहुंच गया, अब हो गया।
14: अरे तो अब मोदी जी
6: कोर्ट के फैसले के खिलाफ बोल रहे हैं तो कोर्ट जाइए,
14: हो गया
6: कोर्ट जाइए, कोर्ट जाइए। आप तो इसको अलग ही कम्युनल एंगल दे रहे हैं, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कोई मुस्लिम होता तो फटाफट एक्शन। अनुपम मिश्रा जी, आरएलडी की तरफ से कुछ

0: आस्था और अपराध दो अलग विषय होते हैं। आस्था को आप कभी भी अपराध में मिश्रित नहीं कर सकते। जो अपराधी हैं, जिन्होंने भी ये कुत्सित कार्य किया है, वो न केवल सलाखों के पीछे होंगे, बल्कि उन्हें जितनी कड़ी से कड़ी सजा होगी, उसका प्रावधान वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है और लगातार उसके लिए कटिबद्ध है। और प्रदेश की जनता बखूबी ये जानती है कि जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जो सुशासन और पारदर्शिता के लिए पूरे देश के अंदर जानी जाती है, तो उन्हें दिखाई देता है साफ कि उत्तर प्रदेश की सरकार और ये
1: ठीक
0: रथ किधर विकास का जा रहा है। दूसरा, मैं और एक चीज स्पष्ट करूंगा कि इस तरीके के एलिगेशंस लगाना कि ये ऐसा हुआ ऐसा, आप सबकी सरकारें रही हैं, और मैं अगर इनको याद दिला दूं, भदौरिया जी को भी याद दिला दूं, तो आपके राम गोपाल जी का एक स्टेटमेंट आजकल बड़ा वायरल, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूं, पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने जो कहा था, गुंबद पर जो कार सेवक चढ़ गया वो उतरा नहीं। आप अभी नए नए राम भक्त बने हैं,
1: जवाब दे
0: उसको
1: दो,
0: कुछ दिन समय लीजिए और राम भक्ति में रमिए, उसके बाद जनता के
1: जवाब
0: बीच
1: दे
0: में आइए। और मैं कह रहा हूं कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई, और जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु
1: जवाब दे दो।
0: रघुराया। बस मैं इसी के साथ चंद्रा जी अपनी बात को
1: ठीक है
0: समाप्त
1: ठीक है
0: करता हूं।
1: ठीक है ठीक है, अब रुक जाइए अनुराग जी, सतीश जी भी बोल रहे हैं, उसके कैसे जवाब देंगे। सतीश जी, वहीं बीएसपी है, देखिए चुनावी नजरिए से अगर पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर इसको देखा जाए तो मायावती का जो स्टैंड रहा है पिछले कुछ चुनावों से, उधर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन हो भी जाए, लेकिन मायावती और उनका जो एक कोर वोट बैंक है जो पिछले चुनाव में काफी हद तक छिटकता हुआ दिखा, हालांकि लेकिन बावजूद इसके जो स्थिति वो पैदा करती है, आपको नहीं लगता है अगर वाकई बीजेपी के खिलाफ एजेंडा है, बीजेपी को हराना है तो बाकियों को एक साथ आना होगा?
2: नहीं, गठबंधन को लेकर के बहुजन समाज पार्टी ने बहुत स्पष्ट मानना है, गठबंधन उनका एक्सपीरियंस बहुत बेहतर नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता की क्या समस्या है, बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। 1989 में पहलगांव में सबसे पहली बार राम मंदिर को बीजेपी ने अपने चुनावी एजेंडे में शामिल किया, और बीजेपी धर्म की पिच के ऊपर जाकर के कहीं ना कहीं राजनीति करती है। लेकिन आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो चुनावी ये सॉरी जो जो चंदा की जो है ना, इतनी घनघोर बारिश हो चुकी है कि बीजेपी की आस्था की पिच गीली है। अब बीजेपी बचेगी कि वो इस आस्था की पिच पे अगर खेलेगी तो गेंद टर्न लेगी, और योगी जी के आउट होने के बहुत सारे चांस है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता की क्या समस्या है, ये हिंदू मुस्लिम में कहीं ना कहीं बांटने की कोशिश करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। पिछले 10 साल से उत्तर प्रदेश सरकार ने अब आकर के कहीं ना कहीं एग्जाम कराने शुरू किए हैं। 10 साल में तमाम डिपार्टमेंट खाली पड़े हैं, उत्तर प्रदेश में 7.5 लाख पद खाली पड़े हैं। उत्तर प्रदेश के हर घर के अंदर एक बेरोजगार आदमी बैठा है। जो आदमी ने 10 साल पहले ग्रेजुएशन किया था, उसको इंतजार करते करते आज वो भी 21 साल से 31 साल का हो गया। देखिए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत बेहतर नहीं है, उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, मेरी बात को मानिए। जो कुछ तथाकथित लोग हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध करते हैं, सरकार आनन फानन में बहुत सारे अपराधियों को बचाते कि बताऊं, मेरठ के अंदर एक ललिता हत्याकांड है, दलित बच्ची थी, उसको दो लोगों ने मारा, रेप किया, मारा, उसमें एक अपराधी नामजद अपराधी अभी बाहर है। जो जब धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर पुलिस ने बहुत बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज किया, जो अपराधी है वो बाहर है। शुक्ला जी, आपने कहा कि मेडिकल कॉलेज तो बनाए, मेडिकल कॉलेज कोई बिल्डिंग नहीं होते, आप मुझे बताइए कि मेडिकल कॉलेज में एक भी नियुक्ति करी है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में बिना डॉक्टर के मेडिकल कॉलेज नहीं बन सकता। पिछले 10 साल में आपने कितने मेडिकल कॉलेज की नियुक्तियां निकाली, मैं समझता हूं कि पूरा का पूरा
1: प्रेम
2: खाली
1: शुक्ला
2: है।
1: जी, अब सीधा
2: तो
1: सवाल है उनका, पॉइंटेड सवाल, पॉइंटेड जवाब दीजिए।
2: जी
1: ठीक
2: जी
1: ठीक शुक्ला
3: जी, नहीं पहले सिर्फ एक संशोधन का, पहलगाम में अधिवेशन नहीं, 1989 में पालमपुर अधिवेशन में हमने श्री राम मंदिर आंदोलन को
2: पालमपुर, पालमपुर,
3: समर्थन
2: जी,
3: देने का प्रस्ताव पारित किया था। तो सिर्फ एक संशोधन छोटा सा। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में अपराध पर सबसे जबरदस्त नियंत्रण हुआ, और इसको जो कोई भी आसानी से
2: रोज
3: बता
2: अपराध
3: सकता
2: हो
3: है।
2: रही है सर,
3: मेरठ का चोर बाजार किसके कार्यकाल में, बताओ, अपराधी अपराधी समाप्त है जी, या तो यमलोक पहुंच गए या जेल पहुंच गए हैं, अपराधी या तो यमलोक पहुंच गए हैं या कारागार पहुंच गए हैं। अपराधी बिल्कुल जो है, या तो अपराध को उन्होंने तौबा कर लिया है, या वो यमलोक पहुंच गए हैं या कारागार में है। अपराधी के लिए स्वच्छंद घूमने का कोई अवसर नहीं है।
2: अगर आज जो मेरठ में घटना घटी है, अपराधी जेल में जाना चाहिए या उनके माँ बाप,
3: कोई भी जान सकता है जी,
2: बताइए।
3: इसे नोएडा में जो है निठारी कांड हो जाया करता था, इसी नोएडा
1: ठीक है।
3: में
1: जवाब सुनिए सतीश जी, वो जवाब दें, फिर भदौरिया जी को भी बोलने दीजिए, भदौरिया जी और अखिलेश जी हाथ उठा रहे हैं।

0: शुक्ला जी,
1: इसी नोएडा में निठारी कांड हुआ करता था, और निठारी कांड पर इसलिए नोएडा नहीं आते थे मुख्यमंत्री कि जो नोएडा आ जाता है वो मुख्यमंत्री फिर मुख्यमंत्री चुनकर नहीं आता वापस, इस अंधविश्वास की गिरफ्त में लोग थे। और आदरणीय योगी आदित्यनाथ, गोरखनाथ के नाथपंथ को मानने वाले वो संत स्वरूप व्यक्ति, वो लगातार नोएडा आए और मुख्यमंत्री दोबारा चुनकर भी आए। तो तमाम अंधविश्वासों पर भी विजय पाने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जहां तक नियुक्तियों की बात है, सबसे पारदर्शी नियुक्तियां, नहीं तो पीसीएस की परीक्षा में एक ही जाति विशेष के लोग पास होने लगे थे, थानों पे एक ही जाति की नियुक्तियां थी, एक ही जाति विशेष के थानेदार सारे थानों में नियुक्त हुए थे, सारे थानों में एक जाति के, उस जाति के बाहर की नियुक्तियां थानों में हो नहीं पाती थी। और सबसे अधिक SC ST एट्रोसिटी एक्ट का केसेस समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ही लगातार 1994 से लेकर 2024-25 तक के NCRB के आंकड़ों का विश्लेषण कर लीजिए, सबसे अधिक अनुसूचित जाति जनजाति पर उत्पीड़न के मामले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध ही दर्ज हुए हैं।
0: इस बार डू और डाई की स्थिति है अनुराग जी आपके लिए, और खास तौर पर तब जबकि लोकसभा में पिछले आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही उत्तर प्रदेश में। हाँ,
2: एक परिवर्तन आपने अंजना जी देखा है, बड़ा गजब परिवर्तन है भारतीय जनता पार्टी में। हर जगह नोएडा भी पहुंच गए, हर जगह पहुंच गए, लेकिन अयोध्या नहीं जाएंगे। अब अयोध्या की बात ही नहीं करेंगे। कमाल देखा आपने, सवाल अयोध्या पे,
1: अयोध्या हमारा पहुंचे नहीं, वहां पहुंचे ही
2: नोएडा कोई नहीं जाता है। पहले एक जाति की भर्ती होती थी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, फिर आप बोलोगे बदतमीज, फिर हम बोलेंगे, आप सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला अंजना जी, ऐसे नहीं होती डिबेट।
0: शुक्ला जी देखिए, फिर आप देखिए, अभी आप क्या क्या बदतमीज भी कह रहे थे शुक्ला जी,
2: सनातनी होने का परिचय ठीक नहीं है,
0: ठीक नहीं है।
2: आप बदतमीज हो जाए वो, हम आपकी तरह गालीबाज नेता नहीं है,
0: अच्छा टॉपिक पे आइए, अपना अपना सेटल बोलते स्कोर अलग जगह सेट लीजिए, ठीक है अनुराग।
2: देखिए मैं कह रहा था अच्छा मैं कह रहा था देखिए कमाल है, आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कितनी दिक्कत होगी प्रभु राम के यहाँ पे। जैसे आप चढ़ा चोरी की बात करोगे ना, दुनिया की झूठ बोलना शुरू करेंगे, एक ही जात के लोग भरे गए, एक ही जात का हो गया यहाँ पे, सब एक ही जात के लोग रहते थे। कमाल की बात है, क्या बोल रहे हैं खुद नहीं पता है, क्योंकि जवाब नहीं है। दूसरी बात, एक अभी दूसरे RLD के कह रहे थे, याद है वो घटना? हाँ याद है, याद है कि हमने आपको राज्यसभा दी थी, याद है हमने राज्यसभा दी थी RLD को, याद है हमसे राष्ट्रवाद लेके आपने चुन्नी पलट गई थी, मुझे याद है कि किस तरह से विचारधारा पलट गई, जैसी सत्ता में जाने का मन बनाया, तब तो हमारी विचारधारा में थे ना, हमारी विचारधारा के साथ लड़े और उसके बाद तुरंत पलट गए राज्यसभा लेने के बाद। ऐसी हमें विचारधारा नहीं चाहिए, ये हिंदुस्तानी लोग हैं, हिंदुस्तान में विचारधारा ऐसी अगर पलटने लगती है ना तो समझो जनता भी पलट गई है। इसलिए मैंने कहा ना, विपक्ष जनता बन चुकी है। दूसरी बात, अभी एक IIM के बैठे हुए हैं, AIM कौन सी उनकी पार्टी है, अब क्या कह रहे पता है, एक बार भी वो ओवैसी जी की पार्टी के बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी महिला अत्याच कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनका टारगेट क्या है, विपक्ष, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तो समझ जाइए कौन लोग हैं, ये बी टीम है कि नहीं है। जो मुद्दा आपको बोलना चाहिए कि यहां पे लोग परेशान है, महंगाई बेरोजगारी युवा किस तरह से यहां पे पर्चा ली, ये सब मुद्दे जो उठाना चाहिए वो नहीं, मुद्दा कौन है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस, ये इनका मुद्दा है। इससे साफ जाहिर होता है इनकी नियत क्या है, किस नियत से चुनाव लड़ने आते हैं, ये बीजेपी को जिताने के लिए आते हैं। लेकिन
0: हमारी बीजेपी को मिश्रा जी पर किया RLD की तरफ से, फिर वो अनुपम मिश्रा जी बोल रहे, उसके बाद आ रही हूँ वारिस भाई जल्दी से। मिश्रा जी याद दिला रहे हैं, राज्यसभा की कुर्सी ली थी आपने, कह रहे हैं काहे उधर चले गए,
3: तो मैं इनको बता रहा हूं अनुराग जी को, अगर आपने एक राज्यसभा का आप बात करें, आपने दी थे तो 39 विधायक हमने आपको दिए हैं, पहली बात उसको मान लीजिए। एक, अगर आपका 2012 से 17 तक आप सरकार में थे, अगर आपका काम बोलता था तो काम क्यों नहीं 17 में आपका बोला, आप दोबारा सरकार क्यों नहीं रिपीट कर पाए, आप काम नहीं बोलता था, आपका पूरी जो थी, आपके 2.5 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को चलाते थे, पूरा उत्तर प्रदेश जानता था।
0: कांग्रेस पार्टी को ये अधिकार है कि मंदिर कौन गया ना गया इस पर प्रश्न करे,
4: क्यों नहीं अधिकार है, ये किस हैसियत से आप कह सकते हैं कि नहीं अधिकार है,
0: क्योंकि आपके शीर्ष नेता नहीं
4: गए, सबसे बड़े राम भक्त हम लोग हैं, कौन?
1: बाबर की कब्र पे जाने वाले राम का नाम
0: वो आपके शीर्ष नेता
4: मंदिर बन गया है पूरा?
1: बाबर की कब्र पर
4: नहीं, मंदिर पूरा बन गया है,
0: राम मंदिर गोल पोस्ट चेंज कर
4: रहे हैं, मंदिर पूरा बन गया है। आप वो बीजेपी आरएसएस का कार्यालय बना रहे हैं
1: बाबर की कब्र पर,
4: और आप कहेंगे कि आइए हमारे हम जो कर रहे हैं उसको जस्टिफाई करिए, हम क्यों जाएंगे?
1: जब आप बाबर की कब्र पर खड़े थे,
4: आप
1: जब बाबर की कब्र
4: को क्यों नहीं बुलाया?
0: प्रेम जी उनको पूरा करने दीजिए,
4: बीच में इनको
0: चुप करने जवाब लूंगी, पहले आप पूरा करिए। अखिलेश
4: सुनिए, देखिए आप नेता हैं मोदी जी, आप ही राम प्रतिष्ठा आप भी करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा एक घर के अंदर गृह प्रवेश परामर्श और एक आचार से कराया जाता है, और वो भी आधा अधूरा आपने किया। सारे संतों ने कहा यह गलत है कि चूंकि आपको चुनाव के पहले मंदिर का कैश कराना था इसलिए आपने किया। आप शंकराचार्य को नहीं बुलाएंगे, धर्म के अनुरूप नहीं चलेंगे, और चाहेंगे कि हर कोई आपको उसमें मुहर लगा दे आपके साथ होने का। वो बीजेपी का कार्यालय बना रखे हैं, आप संघ का कार्यालय बना रखे हैं, किस तरह से वहां लोग बैठे हुए हैं, साधु संतों का ट्रस्ट बनाइए, मंदिर को पूर्ण करिए। ये तो गजनी और औरंगजेब को पीछे छोड़ दिए, जितने मंदिर इन लोगों ने लूटे और तोड़े हैं, तो कौन करेगा इनकी बात, कौन रहेगा इनके साथ? इतिहास में पढ़ा गया था गजनी को, लेकिन आंखों से जनता देख रही है, औरंगजेब को पढ़ा गया था, जनता देख रही है। तो आज के तारीख में ये सब कोई राम भक्त नहीं, जनाजे मैं बार बार कहता हूं, ये सब नाथू राम भक्त हैं, ये राम के नाम के चंदा और चढ़ावा खाने के लिए हैं, लूट और झूठ इनका पेशा है, और जनता इस बात को जान गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आए लखनऊ में, कौन सा राजनीतिक कार्यक्रम किए, कौन सा अपनी सरकार की उपलब्धियों पर बात किए, सिर्फ झगड़े सुलटाते रहे सीएम डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष का, कभी उनके यहां चाय तो उनके यहां चाय, बैलेंस करते रहे।
0: चलिए अब प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए, पहली बार अखिलेश जी खुद से बोलते हुए चुप हुए।
1: बाबर की
4: नहीं, मुझे लगा कि मैं डिस्कनेक्ट तो नहीं,
1: बाबर की और राम मंदिर जाने पर जिनको पीड़ा है, राम मंदिर नहीं गए लेकिन अपने पुरखे बाबर की कब्र पर तीन तीन पीढ़ियां जाकर नाक रगड़ कर आई, रामलला को काल्पनिक कहा, राम मंदिर के खिलाफ बाबरी के पक्ष में कपिल सिब्बल मुकदमा लड़े, और जो है जफरयाब जिलानी समाजवादी पार्टी से मुकदमा लड़े, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी में मोहम्मद आजम खां थे, शहाबुद्दीन को पाला कांग्रेस ने जीवन पर्यंत, और ये जो है राम भक्तों और शंकराचार्य की बात करते हैं, इनको पता ही नहीं शंकराचार्य हैं कहाँ, कांची कामकोट के शंकराचार्य जी, विजेंद्र सरस्वती जी स्वयं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में थे, वासुदेवानंद सरस्वती जी स्वयं राम जन्मभूमि न्यास समिति के सदस्य हैं, इन्होंने संसद में संकल्प लिया था कि श्री रामलला की जन्मभूमि पर बाबर की मस्जिद बनाएंगे, ये कांग्रेस का भारत के संसद में लिया गया संकल्प था, और ये संकल्प पूरा करने की हिम्मत इनकी कभी नहीं हुई।
0: ठीक है, एक दो दो लाइन का कंक्लूडिंग रिमार्क ले रही हूं, वारिस अयोध्या में ले जा रहे हैं पठान को दिखाई, ठीक है रुकिए रुकिए शुक्ला जी, आ रही हूं अभी कंक्लूडिंग रिमार्क, आप तीनों से पता है तीनों का टूटा हुआ। वारिस जी, अनुराग जी कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ तो बोलते ही नहीं आप
5: जी। अरे हमारे लिए तो अंजना जी एक तरफ बीजेपी, एक तरफ ये कथाकथित सेक्युलर पार्टी है, क्या नाम है अखिलेश की पार्टी का, ये समाज समाज समाज, ये क्या समाजवादी जैसी पार्टी है?
0: अच्छा,
5: दो बार तो मारा नहीं सके बीजेपी को, वो भी हमारी वजह से हो गया क्या? ये भी ठिकरा हमारे सर में पहुंचेंगे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो। हाँ, फिर बोलना नहीं बी टीम डी टीम जेड टीम आ गए, क्यों तुम्हारे मुंह से जुबान नहीं खुलती? 111 एमएलए है ना, 37 तुम्हारे पास एमपी है, वहां मुसलमानों की मस्जिद गिराई जा रही है, मदरसे गिराए जा रहे हैं, कब बोलेंगे, कब आवाज निकालेंगे? नहीं, अब कब दरी नहीं बिछाएगा अब तुम्हारे लिए?
0: मुसलमानों को रिस्पॉन्ड कीजिए,
5: एक मुसलमान बेचारा वो था उसको भी दिया,
0: कह रहे मुस्लिम का मुद्दा आप नहीं उठा रहे,
2: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को आपने देखा? मैं बोल रहा देखा आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कितनी बार बाबर का नाम लिया? हम लोगों ने नाम लिया क्या? ये बाबर बाबर बाबर कर रहे, अब बाबर की आड़ में छुपना चाह रहे हैं, सोचो आप, छुपने की जगह क्या मिल रही है इनको? बाबर, औरंगजेब, इतिहास उसकी आड़ में छुप के बताना, अपने आप को बचाना चाहते हैं। ये राम भक्त नहीं है, ये सत्ता भक्त है। इनको सत्ता चाहिए, राम से कोई लेना देना नहीं है। प्रभु राम के नाम पे की तो हम लोग हैं आस्था वाले, जो चढ़ावा चोरियों को हमने उजागर किया। आपने किया नहीं किया,
0: इसीलिए अनुराग जी कह रहे हैं सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर आप चल गए हैं, मुस्लिम से जुड़े मुद्दे नहीं उठा रहे हैं। और यही इमरान मसूद भी कह रहे हैं, इस पर तो जवाब ही नहीं दे रहे आप अनुराग जी।
2: मैं जवाब दे रहा हूं। सनातनी, सनातन का मतलब क्या होता है? सनातनी मतलब पता है क्या होता है? सनातन वो होता है जो सभी धर्मों का सम्मान करता है। हम हिंदू धर्म के लिए भी खड़े होते हैं, हम मुस्लिम धर्म के लिए भी खड़े होते हैं, हम किसी पे जो पीड़ित होता है उसके लिए खड़े होते हैं।
0: जल्दी से अखिलेश जी का कमेंट, उसके बाद से शुक्ला जी।
4: देखिए
0: जल्दी से अखिलेश जी।
4: देखिए अंजना जी, ये आदमी सिर्फ झूठ बोलता है। बीजेपी के लोगों का आज के तारीख में काम है सिर्फ झूठ बोलना। हम सिर्फ इनके बातों पर नहीं जाएंगे। आज के तारीख में उत्तर प्रदेश में जनता बहुत दुखी है और नज़रों से बीजेपी को उतार चुकी है। उसे छोटी छोटी बातों में तो लोगों को लगता था कि चलो ये पॉलिटिकल बातें हैं, लेकिन जिस दिन से इन लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को लूटा है और लुटेरों को बचा रहे हैं और मोदी जी और मोहन भागवत खामोश हैं, सबको यकीन हो गया है कि अटल जी का जो एक भाषण आ रहा है कि अगर चोरी करते वक्त कुत्ता ना भौंके तो समझना है कि वो माल चोर को जानता है।
0: प्रेम शुक्ला जी जल्दी से जवाब, चलिए समय समाप्त हुआ। समय प्रेम शुक्ला जी।
1: नहीं, साफ तौर पर सबको पता नेशनल हेराल्ड किसने चुराया। चाची 420 के बारे में हर कोई जानता है कि नेशनल हेराल्ड स्वतंत्रता सेनानियों के धन का गबन कर ले गए। इसमें तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता दूर दूर तक, अयोध्या में जो चोरी हुई है भाजपा का कोई कार्यकर्ता दूर दूर तक संलिप्त नहीं है। लेकिन नेशनल हेराल्ड की चोरी श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मिलकर की, ये तो पूरा देश जानता है। और कोर्ट के आदेश पर एफआईआर हुआ।
0: कौन से कोर्ट से कन्विक्शन हो गया है? कौन से कोर्ट से कन्विक्शन हो गया है शुक्ला जी?
1: नहीं, लेकिन चार्जशीटेड है ना, चार्जशीटेड है ना। यहाँ किसका कन्विक्शन हुआ है? राम मंदिर में किस भाजपा का कन्विक्शन हुआ है? जरा बताइए, नाम बताइए, कौन अभियुक्त है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता? एक नाम बताइए। यहाँ तो
0: अभियुक्त बोलिए, कौन अभियुक्त है, कौन यहाँ पर कन्विक्ट हो गया है?
1: आप तब उसको प्रश्न नहीं करेंगी और आज प्रश्न कर रही हैं। कौन अभियुक्त है
4: अंजना?
0: बताइए अखिलेश जी, ये बीजेपी का कौन है
4: कन्विक्ट? झूठे हैं ये, इतना बड़ा
0: बीजेपी का कौन है बताइए ना
4: भाई। ये दोनों दोनों कोर्ट से, दिल्ली कोर्ट से और चंडीगढ़ कोर्ट से, कोर्ट ने कह दिया कि जांच एजेंसियों की तुम झूठे मुकदमे लाए हो।
0: अरे तो राम मंदिर चढ़ावा में बीजेपी का कौन नेता है जो आप बीजेपी कर रहे हैं? ठीक है, बताइए कौन है और कौन कन्विक्ट हो गया इस केस में?
4: किससे पूछा आपने?
0: आप ही से अखिलेश जी।
4: तब कौन कहां कन्विक्ट हुआ है? मैं तो वही कह रहा हूं, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया इनके मनगढ़ंत आरोपों को कि जो जांच एजेंसियों ने जो आरोप लगाए हैं।
0: राम मंदिर में पूछी थी, लेकिन चलिए वक्त इतने की इजाजत देता है, वक्त इतने की इजाजत

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
3: वी आर ओवर जिमी।
4: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
5: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
6: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
7: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
8: इन एसोसिएशन विद
9: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
10: 20 साल से इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार। अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता तो फिर सोचना क्या। रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
11: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 बिलियन व्यूज, 85 मिलियन यूनिक व्यूअर्स। One stop solution for your brand, regional or hyper local reach. Har shahar, har kasbe tak advertise karne ke liye email karein.
12: Se puchiye, lekin kahin na kahin bhajpa ko is baat ka ilm ho gaya hai ki is baar janta bhajpa ke virodhi nahi, jo bhajpa ke samarthak hai, unke jo karyakarta hai, unke jo neta hai, unko jo jinhone vote diya hai, उनका बिल्कुल मत क्लियर है कि सम्राट चौधरी जैसे व्यक्ति को, के चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को आप बिहार का मुख्यमंत्री नहीं थोप सकते हैं। आपको जिस समाज का भी मुख्यमंत्री बनाना है बनाइए, कुशवाहा समाज का मुख्यमंत्री बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी अच्छे व्यक्ति को बनाइए, चरित्रवान व्यक्ति को बनाइए, पढ़े लिखे व्यक्ति को बनाइए, ताकि बिहार का तरक्की हो। बिहार के लोग, बिहार के बच्चे सिर्फ मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। आपको वोट दिया है बिहार के लोगों ने, 202 विधायक जिताया है, तो आपकी जिम्मेवारी है कि सबसे अच्छे व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व दीजिए ताकि बिहार का विकास हो सके।
13: हाँ, उनके प्रत्याशी हार के डर से नामांकन के बाद भी नाम वापस ले रहे हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में इतना अंतर कला है, इतना द्वंद है, वो डिसीजन कर ही नहीं पाते, तो उनका प्रत्याशी कौन जीत सकता है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: वी आर ओवर जिमी।
3: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
2: ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव का ऐलान है, जो सनातन है वही समाजवाद है।
4: जो सनातन है वही समाजवादी।
2: ये एक और संकेत है कि अखिलेश यादव अब अपनी समाजवादी पहचान के साथ साथ खुलकर उस पिच पर खेल रहे हैं जिस पर बीजेपी दम भरती थी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बीजेपी को घेरने में सफल दिख रहे अखिलेश की दलील है कि आज सनातनी दुखी है क्योंकि बीजेपी धर्म की नहीं धन की राजनीति करती है।
5: जो भारतीय जनता पार्टी के विचार हैं वो वोट के लिए बदलते हैं, उनके लिए धर्म नहीं धन प्राथमिकता है।
6: हमारे धर्म में सनातन धर्म में चढ़ावे की चोरी से बड़ा कोई पाप नहीं है, इन्होंने महापाप किया है।
2: बात सिर्फ राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर आक्रामक होने की नहीं है। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने हाल में कई ऐसे संदेश दिए हैं जिसे बीजेपी के हिंदुत्व वोट बैंक में सेंध मारने की कोशिश माना जा सकता है। 8 जुलाई को समाजवादी पार्टी की नेता पूजा शुक्ला ने लखनऊ में अविमुक्तेश्वरानंद की मौजूदगी में धार्मिक अनुष्ठान, आध्यात्मिक प्रवचन और सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया है। इसके पहले अखिलेश यादव 8 बड़े मंगल पर हनुमान जी को याद करते देखे गए, यहाँ तक कि उन्होंने बड़ा मंगल पर भंडारे का प्रसाद बांटा था। समाजवादी पार्टी ने इसी हफ्ते ब्राह्मण सम्मेलन किया था जिसमें बैनर लगा था ब्राह्मण चला अखिलेश के संग, लेकिन जब अखिलेश अपनी नई राजनीति का नैरेटिव खड़ा करने में लगे हैं तब उनके सामने असल सवाल आने वाले यूपी चुनाव में इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का हो सकता है। हाल में कांग्रेस के नए यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा है कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं और गठबंधन में हमारी बराबर की हिस्सेदारी होगी, यानी सीट बंटवारे पर कांग्रेस ने दबाव बनाने के तेवर दिखा दिए हैं। कांग्रेस की दलील है कि बीजेपी से राष्ट्रीय पार्टी ही लड़ सकती है। राजेंद्र पाल गौतम के इस बयान से पहले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मुसलमानों पर अखिलेश की चुप्पी पर सवाल उठाया था।
7: मंदिर की चंदा चोरी के ऊपर आप मुखरता के साथ बोलते हो लेकिन मुसलमान की सीना चोरी के ऊपर आप खामोश हो जाते हो, ये समझ में नहीं आ रहा है।
2: इस बयान को भी समाजवादी पार्टी पर कांग्रेस के दबाव की रणनीति माना जा रहा है। हालांकि यूपी में सीट बंटवारे पर अखिलेश की लकीर साफ है, सीट नहीं जरूरी है। उधर अखिलेश जब इस जीत के लिए पीडीए और सनातन का जोड़ लेकर आए हैं तब योगी आदित्यनाथ उन बातों को कुरेद रहे हैं जिस पर समाजवादी पार्टी पहले से घिरती रही है।
8: बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था। उनको कब्रिस्तान प्यारा है इसलिए वे राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम और मां विंध्यवासिनी धाम और नैमिषारण्य और चित्रकूट धाम के विकास का विरोध करते हैं।
2: यूपी चुनाव नजदीक आते ही योगी की ओर से अखिलेश यादव पर ऐसे हमले और बढ़ेंगे। अगर अखिलेश इंडिया गठबंधन का मजबूत जोड़ बनाए रख पाते हैं तो मुकाबले में उन्हें आसानी होगी। आज तक ब्यूरो। गाड़ी कितना माइलेज देती है? भारत में कार मोटरसाइकिल चलाने वालों का सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा है। इस सवाल को गाड़ी बनाने वाली कंपनियों ने भी अपने विज्ञापनों में खूब भुनाया है, लेकिन अब यही सवाल राजनीति की बहस में है। वजह बना है E20 पेट्रोल, यानी पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिला हुआ गाड़ी का ईंधन। पहले सोशल मीडिया, फिर विपक्ष ने E20 पेट्रोल पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। सवाल गाड़ी की माइलेज पर है, चिंता गाड़ी के इंजन की सेहत पर है, वार पलटवार E20 लागू करने के तरीके पर है, आरोप एथेनॉल के नाम पर चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने की नीयत पर है, और पूछा ये भी जा रहा कि अगर 20% एथेनॉल मिला हुआ है तो पेट्रोल पंप पर कीमतें क्यों नहीं घटी है। सरकार की E20 नीति पर विपक्ष ने सबसे ज्यादा परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी पर निशाना साधने की कोशिश की है। दोनों मंत्रियों ने आरोपों और चिंताओं को खारिज किया है।
9: देखिए, देर आर 20 करोड़ टू व्हीलर्स ऑन द रोड, देर आर 20 लाख फोर व्हीलर्स यूजिंग दैट फ्यूल ऑन द रोड, देर आर द ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, देर आर द पीपल हु सर्विस द कार्स, दे ऑल से देर इज नो डिफिकल्टी। नाउ व्हाई दिस सडन इंटरेस्ट?
10: क्या इथेनॉल से नुकसान हो रहा है सर गाड़ियों?
11: पहली बात, मैं आपको एक प्रश्न पूछता, क्या आपके नजरों में, आप भी पेट्रोल गाड़ी यूज करती है, अब 20% आपके गाड़ी में भी इथेनॉल है
10: जी,
11: आपको कोई तकलीफ हुई
10: अभी तक?
11: आपके पेट्रोल की गाड़ी जिसकी इथेनॉल के कारण बिगड़ी हुई है, ऐसे दो लोगों के नाम बता सकते आप मुझे?
10: अपना पर्सनल जान पहचान के?
11: हाँ, कोई भी बताओ, जो भी देश का बताओ, कुछ भी बताओ।
10: नहीं, यूट्यूब पे वीडियोस देखे।
11: अभी मैं आपको बताता हूँ, ये पेट्रोल की गाड़ियां, इसमें जो गाड़ियां जा रही है, ये जो फ्लेक्स इंजन, इसमें 40% शेयर मारुति सुजुकी का, उनके पास एक भी कंप्लेंट नहीं है, टोयोटो के पास एक भी कंप्लेंट नहीं है, अभी कोई टाटा महिंद्रा किसी के पास कोई कंप्लेंट नहीं है। दूसरी बात, इसका इंश्योरेंस कवर है, गारंटी कंपनी दे रही है, कोई गारंटी में फर्क नहीं पड़ा।
2: E20 पेट्रोल पर शुरू हुई बहस पर पेट्रोलियम मंत्रालय फैक्ट शीट जारी कर चुका है। सरकार की सबसे बड़ी दलील है कि E20 से कच्चे तेल के आयात पर देश की निर्भरता कम होती है और किसानों की आय बढ़ती है। साथ ही E20 नीति को टेस्टिंग के बाद ही लागू किया गया है, लेकिन विपक्ष सरकार को घेरने में नहीं चूक रहा। विपक्ष के पास अखबारों में छपी ARAI की एक अप्रकाशित रिपोर्ट भी है, जिसमें माइलेज पर असर पड़ने की बात कही गई है।
12: 30 करोड़ व्हीकल्स इनका कबाड़ा हो जाएगा, 30 करोड़ व्हीकल्स का। मेरी हाथ जोड़ के विनती है मोदी जी से, जिद मत करो, मान जाओ, एक ही चीज मांग रही है जनता की, ऑप्शन दे दो।
13: पूरी तरीके से इथेनॉल आज देश के गाड़ियों को बर्बाद कर रहा है, बाइक बर्बाद हो रही है, मोटरसाइकिलें पर कंपनी के लोग, जो कंपनी की गाड़ी है, लोग उसको गालियां दे रहे हैं। पर गड़बड़ी कहां है? ये सरकार जो पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है।
14: सच पे पर्दा डालने का काम तो सिर्फ नेतृत्व करता, लॉबी से प्लांट करवा रहे हैं, कार मेकर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, कितना झूठ बोलोगे भाई? आम आदमी परेशान है, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लीक हो गया परीक्षा में, टंकी लीक हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, वोट लाने का एक मंत्र आपने डेवलप कर लिया।
2: E20 नीति के विरोधियों का सवाल इस बात पर भी है कि उपभोक्ताओं को अपनी पसंद का ईंधन चुनने का विकल्प क्यों नहीं दिया गया। वैसे जब E20 पर सरकार को घेरा जा रहा, तब इस बात को भी खारिज नहीं किया जा सकता कि ब्लेंडेड पेट्रोल की नीति न तो नई है और न अकेले भारत में लागू की गई है। इसीलिए असली सवाल यही है कि पेट्रोल में एथेनॉल का सच क्या है। आज तक ब्यूरो।

0: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शाम के 7 बजने वाले हैं आज तक के इस खास शो में। अगले आधे घंटे दिन भर की सभी बड़े खबरें होंगे। हम खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। वियतनाम में भारतीय पर्यटकों से भरी नाव पलटी, अब तक 15 लोगों की मौत। फुकुएक द्वीप में यह हादसा, पीएम मोदी ने जताई संवेदना। न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय के बीच पीएम मोदी ने बताई भारत की विकास यात्रा, कहा जल्द बनेंगे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। 3 देशों के दौरे के बाद दिल्ली के लिए भरी उड़ान। दतिया से टिकट कटने के बाद आज तक से बोले बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा, राजनीति में ये चलता है, पार्टी का फैसला सही, समर्थकों ने किया हाईवे जाम, पथराव। यूपी में 27 का घमासान तेज, मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पार्टी पर नया हमला बोला, कहा ये लोग कब्रिस्तान में मंदिरों के पैसे लगाते थे। अखिलेश बोले पराजय काले विपरीत बुद्धि। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बीजेपी पर सनसनीखेज आरोप, कहा हमारे एमएलए को दिया गया था 30 करोड़ और मंत्री पद का लालच, सरकार गिराने की साजिश का भी दावा। शो की शुरुआत यूपी में चुनाव से पहले छिड़े धर्म युद्ध के साथ। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर चढ़ावा चोरी ने पूरी तरह से सियासी रंग रूप ले लिया है, जिसके बाद अब योगी आदित्यनाथ विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को पिछला इतिहास गिना रहे हैं, तो वहीं विपक्ष राम मंदिर के मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रहा है।
1: यूपी में राम मंदिर से शुरू हुआ घमासान अब धर्म की राजनीति तक पहुंच गया है। योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी का इतिहास खंगाल रहे हैं।
2: मंदिरों पे कब्जा करवाते थे लोग, मंदिरों पे कब्जा करवाते थे, और अब कब्जा नहीं, अब उन मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है, और पहले मंदिरों के नाम पर आने वाला पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर खर्च हो जाता था। यही तो करती थी समाजवादी पार्टी।
1: कल योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी में इफ्तार का जिक्र करके समाजवादी पार्टी को घेरा था, तो आज विपक्ष योगी पर गुमराह करने का आरोप लगा रहा है।
3: कैसे नमाज पढ़ सकता है कोई आदमी वहां? ये एजेंडा जो है ये तमाम चीजों से ध्यान भटकाने का है। कैसे नमाज पढ़ सकता है? हम तो कह रहे कि आप सड़क पर नमाज ना पढ़े, चूंकि सड़क सरकार की और सरकार मना कर रही है तो आपकी नमाज जायज नहीं होगी। मैं तो बार बार बोलता हूं, जिस प्रॉपर्टी का ओनर अगर उसको इजाजत नहीं देता तो वहां नमाज ही नहीं हो सकती।
1: 2027 के चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा अब थमता नहीं दिख रहा है। इस बीच राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के कलंक पर अब समिति से जुड़े लोग दुख जता रहे हैं।
4: राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है, व्यवस्था में सुधार होगा, मुझे पूरा विश्वास है।
1: एक और ताबड़तोड़ जांच और एक्शन जारी है, तो वहीं राम भक्तों का भरोसा जीतने की कोशिश भी की जा रही है। चढ़ावा विवाद के बीच राम मंदिर ट्रस्ट जल्द ही सीईओ की नियुक्ति करने जा रहा है, जिसके लिए समिति का गठन भी कर दिया गया है। सीईओ को मंदिर के प्रशासन और वित्तीय प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जिसका उद्देश्य मंदिर के संचालन को अधिक पेशेवर, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। इसके साथ ही सीईओ चढ़ावे के प्रबंधन, श्रद्धालुओं की सुविधाओं, आधारभूत ढांचे के रखरखाव और प्रशासनिक व्यवस्था की भी निगरानी रखेंगे। साफ है कि एक ओर सरकार बार बार भरोसा जताने की कोशिश कर रही है कि वो भक्तों के साथ धोखा करने वालों को बख्शेगी नहीं, वहीं विपक्ष सरकार की पूरी जांच को कटघरे में खड़ा कर रही है। आज तक ब्यूरो।
0: राम मंदिर जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच में अब मंदिर प्रशासन के सामने चुनौती सिस्टम को सुधारने की भी है, जिस पर लगातार फैसले लिए जा रहे हैं।
1: चढ़ावा चोरी के गंभीर आरोपों की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे सामने आते जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से अब सामने आया है कि मंदिर में काम करने वाले कुछ पूर्व सैनिकों पर कुछ भी बोलने पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसके लिए बकायदा सभी पूर्व सैनिकों को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा गया था। कहा गया था कि कोई कुछ भी पूछे बोलना नहीं है। जिस मैसेज पर सवाल उठ रहे हैं उस मैसेज का स्क्रीनशॉट भी आज तक के पास मौजूद है। इसे साफ है कि चढ़ावा चोरी के खुलासे के बाद मामले को छिपाने की कोशिश की गई। इधर अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के दो और आरोपियों को पुलिस जल्द ही रिमांड पर लेगी। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव से पुलिस पूछताछ करेगी। टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई गई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र की 7 दिनों की कस्टडी मांगी है।
5: अयोध्या पुलिस ने अब रामशंकर यादव, टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में 7 दिन की अर्जी डाली है। इन दोनों की पुलिस कस्टडी रिमांड बेहद अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि जहां रामशंकर यादव के पास डोनेशन बॉक्स की चाबियां होती थी, वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद उस कमरे के इंचार्ज थे जहां से चढ़ावा चोरी हो रहा था। ऐसे में इन दोनों से की गई पूछताछ से पुलिस पता लगाने की कोशिश में लगी है कि आखिर यह चोरी हो रही थी तो उनके संज्ञान में क्यों नहीं आई, पकड़ी भी गई तो क्यों उन पर कार्रवाई नहीं हुई।
1: इस बीच राम मंदिर में चढ़ावे की गणना के लिए नया टाइम टेबल लागू कर दिया गया है। पहले 2 पालियों में होने वाली गिनती अब एक ही शिफ्ट में की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चढ़ावे की गिनती होगी। नई समय सारणी लागू होने के बाद कुछ गणना कर्मियों ने काम छोड़ दिया है। उधर राम मंदिर में VIP पास की प्रक्रिया भी रोकी गई है क्योंकि जिन लोगों की ID का इस्तेमाल इस काम के लिए किया गया था उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में जारी घटनाक्रम के बीच गोपाल राव ने निर्मोही अखाड़ा पहुंचकर ट्रस्टी मैन दीनेन्द्र दास से मुलाकात की। दोनों के बीच बंद कमरे में काफी देर तक एकांत में चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में ट्रस्ट से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। इस मुलाकात में ट्रस्ट के भीतर चल रहे विवादों के बीच डैमेज कंट्रोल की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हालांकि बैठक में इस चर्चा के संबंध में आधिकारिक रूप से कोई जानकारी साझा नहीं की गई। अयोध्या से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: यूपी में राम मंदिर पर घमासान है तो वहीं मध्य प्रदेश में लड़ाई बीजेपी बनाम बीजेपी की हो गई, जहां पर दतिया में हो रहे उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद से कार्यकर्ता भड़क गए।
6: दतिया में टिकट को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा ऐसा फूटा कि वो अपनी ही सरकार की पुलिस से भिड़ गए। मध्य प्रदेश के दतिया में 30 जुलाई को उपचुनाव है। बीजेपी ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। दतिया से आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाने की घोषणा होते ही नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। नेशनल हाईवे पर जाम लग गया, घंटों तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही, पुलिस पर पथराव हुए और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए।
7: कि मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए, पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं, ऐसा कोई कार्य न करे।
6: आखिर दतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट क्यों कटा? बताया जा रहा है कि दिल्ली के स्तर पर कराए गए सर्वे में नरोत्तम मिश्रा की स्थिति उम्मीद के मुताबिक मजबूत नहीं पाई गई। 2023 में बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को टिकट दिया था लेकिन वो विधानसभा का चुनाव हार गए। केंद्रीय नेतृत्व ने स्थानीय संगठन और भविष्य की राजनीति स्वीकारता का भी आकलन कराया। इसमें नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी फिट बैठे, जिसके बाद उन्हें दतिया से टिकट दिया गया। बीजेपी ने एक ब्राह्मण नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर दूसरे ब्राह्मण आशुतोष तिवारी को टिकट दिया है। इससे जातिगत और सामाजिक संतुलन बरकरार है। उधर पार्टी का संदेश साफ है कि बीजेपी हाईकमान फिलहाल झुकने के मूड में नहीं है।
8: पार्टी इस प्रकार के सोच समझ के निर्णय लेती है और इसलिए हम डंके की चोट जीतेंगे और नरोत्तम जी भी काम करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं नरोत्तम जी को जानता हूँ व्यक्तिगत।
9: नरोत्तम जी मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता, तो उनको कट्टू साइज तो करनी था, कर दिया।
6: दतिया में अब लड़ाई बीजेपी के सामने अपनों से है, जहां अभी तक कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। भोपाल से रवीश पाल के साथ आज तक ब्यूरो।
0: इस पूरे मामले पर हमारे सहयोगी रवीश पाल सिंह ने खास बातचीत की नरोत्तम मिश्रा से।
10: सर, इस फैसले को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि मान के तो चला जा रहा था कि आप ही इकलौते उम्मीदवार हैं वहां से भाजपा के।
11: पार्टी का फैसला जो होता है वो ठीक ही होता है, उसको अच्छे रूप में ही लेना चाहिए, खराब रूप में नहीं लेना चाहिए, ऐसा मेरी मान्यता है।
10: आप के तो सकारात्मक भाव है लेकिन आपके जो समर्थक थे, जो महीनों से इंतजार कर रहे थे, कि जो प्रकरण आया राजन भारती का, मामला कोर्ट में गया, फिर वहां से विधायक की गई, सदस्यता गई, सबको उम्मीद थी, लेकिन जब ये फैसला आया तो उनका गुस्सा साफ तौर पर सामने मिला। हाईवे जाम हो गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ हो गई, पथराव हो गया।
11: हाँ, छड़े का आवेश था, मैंने कल भी फिर उनसे निवेदन किया था, आज भी किया मैंने, जाम वाम की स्थिति नहीं होना चाहिए। कार्यकर्ता वो पेट्रोल डाल रहे थे, वो मुझे दिखाए विजुअल फुटेज, मिट्टी का तेल डालते हुए था। धैर्य और संयम का समय यही होता है, यही परीक्षा की घड़ी होती है।
10: आप भोपाल जा रहे हैं तो भोपाल में कोई कार्यक्रम, आला नेताओं से आपकी मुलाकात है क्या, प्रदेश अध्यक्ष से या मुख्यमंत्री से या किसी से?
11: अभी तो नहीं, तो बताऊंगा निश्चित। आप
10: आशुतोष तिवारी को आशीर्वाद रहेगा आपका?
11: सभी को क्यों नहीं रहेगा, कैसी बात कर रहे हैं।
10: हालांकि कैलाश जी ने कहा है कि वो बहुत अच्छे से जानते हैं आपको, उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ नरोत्तम जी को, पार्टी के फैसले को हमेशा से स्वीकार करते हैं और हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहे हैं।
11: बिल्कुल सही कहा, मैं सहमत हूँ।
10: आपके लिए भावुक क्षण है?
11: नहीं, राजनीति में ये सब चलने वाली चीज है।
10: लेकिन एक आखिरी सवाल नरोत्तम जी, चुनाव हुआ 2023 का, फिर लोकसभा आया, फिर राज्यसभा चुनाव आए, फिर कई दूसरी जिम्मेदारियां भी थी, हालांकि न्यू ज्वाइनिंग टोली का आपको संयोजक बनाया गया था, तब काफी लोग जुड़ के आए थे कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में, अब तो भाजपा में
11: लगातार लोकसभा राज्यसभा अध्यक्ष जो भी आप बात कर रहे हैं, ये अंतर्मुखी होकर स्वयं के चिंतन के लिए पार्टी अवसर दे रही है, हमें चिंतन करना भी चाहिए, अच्छी बात है।
0: बांकीपुर उपचुनाव में टिकट को लेकर सियासी घमासान तेज है, सियासत जारी है, जहां बीजेपी ने एक दिन के अंदर अपने प्रत्याशी को बदल दिया, जिस पर अब विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है।
12: बांकीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी की ओर से पहले अभिषेक कुमार का नामांकन हुआ, फिर एक दिन बाद ही अचानक अभिषेक ने नामांकन वापस ले लिया और नीरज कुमार को नया उम्मीदवार घोषित किया गया। जिस अभिषेक को सामान्य कार्यकर्ता बताकर बीजेपी ने नितिन नवीन वाली सीट के लिए प्रत्याशी बनाया, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी को अपना प्रत्याशी बदलना पड़ा?
13: पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं, मैं कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा।
12: अब सवाल यह कि जिस पारिवारिक मामले का हवाला देकर अभिषेक ने नामांकन वापस लिया, वही परिवार एक दिन पहले अभिषेक को आशीर्वाद देते हुए भावुक हो गया था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अभिषेक बंटी के पिता रविंद्र प्रसाद सिन्हा चारा घोटाले में दोषी रहे। वो मगध केमिकल्स कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी में मैनेजर थे। इस कंपनी पर चारा घोटाले में फर्जी बिल के आधार पर सप्लायर बनाने का आरोप था। फर्जी बिलों के जरिए सरकारी खजाने से पैसा निकालने का मामला रविंद्र प्रसाद सिन्हा पर चला था। सूत्रों के मुताबिक दूसरी बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि अभिषेक सिन्हा बंटी ने नामांकन पत्र में गलत जानकारी भी दी थी, उन्होंने पढ़ाई से जुड़ी कुछ जानकारियां छिपाई थी, ऐसे में भी अभिषेक बंटी का नॉमिनेशन रद्द होने की आशंका थी। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी ने कोई जोखिम नहीं लेते हुए अभिषेक बंटी का नामांकन वापस कराने का फैसला लिया, यानी पार्टी को डर था कि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लालू परिवार को घेरते रहे, उसी भ्रष्टाचार में अभिषेक के पिता आरोपी हैं। लेकिन अब बीजेपी के नए प्रत्याशी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नीरज कुमार सिन्हा के उम्मीदवार घोषित होने के बाद बीजेपी ने उनका बायोडेटा जारी किया, इसमें उनकी जन्मतिथि 1 जुलाई 1994 बताई गई। इसी बायोडेटा में लिखा गया कि उन्होंने 2006 में बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता लेकर अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की, यानी बीजेपी ज्वाइन करने के वक्त उनकी उम्र सिर्फ 12 साल थी, जबकि किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने की न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल होती है। इसके कुछ समय बाद बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा का संशोधित बायोडेटा जारी किया। नए बायोडेटा में उनकी जन्मतिथि पहले की तरह 1 जुलाई 1994 ही रखी गई, लेकिन 2006 में बीजेपी की सदस्यता लेने का उल्लेख हटा दिया गया। संशोधित बायोडेटा में ये नहीं बताया गया कि उन्होंने पार्टी की सदस्यता कब ली। बीजेपी ने यह भी नहीं बताया कि पहले और दूसरे बायोडेटा में यह बदलाव क्यों किया गया, लेकिन 2 दिन के अंदर हुए इस घटनाक्रम ने विपक्ष को घेरने का एक मौका जरूर दे दिया।
14: ये पहली बार हुआ है कि नामांकन करने के बाद कोई बीजेपी का प्रत्याशी नाम वापस ले रहा हो। विपक्ष के सामने बीजेपी के उम्मीदवार टिक ही नहीं पा रहे हैं। अब जिस दूसरे उम्मीदवार नीरज सिन्हा को बनाया है उनके ऊपर भी विवाद है।
15: विपक्ष इस बात के लिए चिंता करे कि नीचे से फर्स्ट कौन करिएगा। मुकाबला में तो खैर नहीं है, मुकाबला में बहुत ही अंतराल है।
12: बहरहाल बीजेपी की इस पारंपरिक सीट पर प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, जहां बीजेपी के फैसले को और बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी है। शशि भूषण कुमार के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक।
0: पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस में भी तकरार देखने को मिल रहे, जहां पर चन्नी के बगावती तेवर आलाकमान की टेंशन बढ़ा रहे हैं। भूपेश बघेल को पंजाब कांग्रेस की नाराजगी दूर करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन अभी तकरार खत्म होती नजर नहीं आ रही है।
16: ये तस्वीरें पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान को खत्म करने की हैं, जहां कांग्रेस के पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने चन्नी गुट के नेताओं के साथ करीब 2 घंटे लंबी बैठक की। बैठक खत्म होने के बाद बघेल ने किसी भी तरह की नाराजगी से इनकार किया।
17: हमारे सीनियर लीडर हैं, उन्होंने आमंत्रित किया और राणा साहब के हाथ में अनेक बार आया हूं, भोजन किया हूं। तो हमारा राणा साहब से तो अलग ही इस तरह का संबंध है, प्रेम का भाई का संबंध है, तो उन्होंने आखिरी में मुझे आमंत्रित किया।
16: भले ही बघेल सब कुछ ठीक होने की बात कर रहे हो, लेकिन सूत्रों की माने तो बैठक में कुछ खास नतीजा नहीं निकला।
18: जो अंदर बात हुई है वो भावना जो है वो सबके सामने रख दी गई है, और उस भावना की कदर करते हुए बोला भी बाहर इसके अलावा कोई बात नहीं करनी। कि जो लीडरशिप है उसको हमने अपनी ए टू जेड बड़ी क्लियरली एक एक बात एक एक रीजन लॉजिक के साथ आगे रख दिया है, और उम्मीद करते हैं भी वो जो बात है वो बड़ी क्लियरली बघेल साहब हाईकमांड तक।
16: दरअसल कांग्रेस में चन्नी गुट राजा वर्डिंग को अध्यक्ष बनाए जाने से नाराज चल रहा है, जिसे लेकर चन्नी गुट पहले बैठक कर चुका है। हालात बिगड़ते देख बघेल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज हुई बैठक में भी राजा वर्डिंग को लेकर नेताओं से राय ली गई, लेकिन इस पर आखिरी मुहर दिल्ली से लगनी है। पिछले चुनाव से पहले कांग्रेस की अंदरूनी कलह ने उसे सत्ता से बाहर कर दिया था, ऐसे में एक बार फिर बगावत ने आलाकमान की टेंशन बढ़ा दी है।
19: पार्टी सोर्सेज जो बताते हैं कि अंदर ये वॉइस उठाई गई कि राजा वड़िंग की प्रधानगी मौजूद नहीं, हमें मंजूर नहीं है, और इसके अलावा जब सुखजिंदर रंधावा बाहर आए तो उन्होंने बोला कि हमने साफ डिमांड रखी है, पहली डिमांड ये है कि जो है जो 2027 का इलेक्शन है वो कांग्रेस जीते, और लड़ाई ऐसा लीडर लड़े जो कॉम्प्रोमाइज ना हो। हालांकि किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अब हाईकमान के पाले में गेंद जाएगी जिस तरह की ये सिचुएशन लग रही है। तो पंजाब कांग्रेस ने जिसने भूपेश बघेल ने अटेम्प्ट किया था कि बैठ के डेडलॉक टूटे, तो ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि उन्होंने बोला अप्रीहेंशंस अब टेकअप की जाएंगी। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन मुजीद के साथ असीम बस्सी, आज तक।
0: हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ गए हैं। आज भारतीय नौसेना के बेड़े में INS महेंद्रगिरी शामिल हो गया। INS महेंद्रगिरी पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बना हुआ स्टेल्थ युद्धपोत है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की सोच को मजबूती देने वाला ये युद्धपोत आधुनिक तकनीक से लैस है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पोत को आज नौसेना के हवाले किया। INS महेंद्रगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किया गया 7वां और आखिरी स्टेल्थ फ्रिगेट है।
20: यह एक ब्लू वाटर शिप है, यानी यह केवल तट के पास ही नहीं बल्कि दूर और गहरे महासागरों में हफ्ते तक भारत की समुद्री हितों की रक्षा कर सकता है। साथियों, INS महेंद्रगिरी में हमारे ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल फिट हो सकती हैं, जो दुनिया की सबसे तेज और सबसे घातक क्रूज मिसाइल्स में से एक है, और इसमें मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है।
0: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 6 दिनों का विदेशी दौरे खत्म हुआ, और आज दौरे के अंतिम दिन प्रधानमंत्री मोदी ऑकलैंड से भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। दौरे के अंतिम चरण में पीएम मोदी न्यूजीलैंड में थे, और प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठक की, इसमें 18 बड़े फैसले और 10 समझौतों पर साइन किया गया। इन नेताओं ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 2 गुना बढ़ाकर 35,000 करोड़ करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने अलग अलग कार्यक्रमों में भाग लिया, वहीं भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। ये ऑकलैंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे जब, तो पूरी की पूरी तस्वीरें उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस स्वागत की भी उन्होंने सराहना की, फिर MOUs पर साइन हुए, और उसके बाद अब भारत के लिए वापस प्रधानमंत्री रवाना हो गए।
21: आज मैं यहां से
2: बहुत सारा विश्वास, बहुत सारा प्यार और बहुत सारी स्मृतियां लेकर जा रहा हूं। और मैं आपसे ये भी कहूंगा, इस बार भारतीय पीएम को न्यूजीलैंड आने में 40 साल लगे हैं, लेकिन अब इतना लंबा इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। अब 40 साल नहीं लगेंगे, ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी।
0: बात अब खाड़ी देशों की, जहां तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर से अमेरिका और ईरान के बीच में हमलों की तस्वीर सामने आ रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर संकेत दिए हैं कि अभी धमाकों की गूंज शांत होने वाली नहीं है।

0: जंग की शुरुआत खामेनेई की मौत के साथ शुरू हुई थी। वो जंग एक बार फिर खामेनेई के सुपुर्दे खाक के बाद तेज हो गई है। दोनों तरफ से धमाकों की गूंज के बीच अब डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा बयान सामने आया है। अगर ईरान की सरकार ने अपनी उस धमकी पर अमल किया जिसमें उसने अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति यानी मुझ पर जानलेवा हमला करने या हत्या करने की बात कही है, तो ईरान पर 1000 मिसाइलें दागी जाने के लिए तैयार हैं। इसके तुरंत बाद हजारों और मिसाइलें दागी जाएंगी। इसके लिए आदेश दिए जा चुके हैं और अमेरिकी सेना पूरी तरह तैयार और सक्षम है कि वो एक साल तक ईरान पर हमले जारी रखे और ईरान के हर इलाके को पूरी तरह तबाह और बर्बाद कर दे। उधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागाची ने एक्स पर लिखा, ईरान ने अब तक अपना वादा निभाया है जबकि अमेरिका ने एमओयू के पैरा 9 का उल्लंघन किया। अमेरिका एक के बाद एक उल्लंघन कर रहा है। इस बीच अमेरिका ने ईरान से मांग की है कि हॉर्मोज को खुला घोषित करे और जहाजों पर हमला ना करे, जबकि ईरान ने हॉर्मोज पर अपना नियंत्रण छोड़ने से साफ इनकार कर दिया है।
1: अब बड़ी खबर आपको देते हैं। भारतीय टीम T20 मैच खेल रहे हैं, चौथा T20 मैच है ये, और इस मैच में बड़ी खबर ये है कि वैभव सूर्यवंशी को आज के मैच में नहीं खिलाया गया है। वैभव सूर्यवंशी की जगह एक बार फिर से संजू सैमसन की वापसी हुई है। वैभव को अब मौका नहीं दिया गया। इससे पहले 3 मैचेस में जब वो खेले तो परफॉर्म नहीं कर पाए, मतलब 13, 14, 15 यही उनका स्कोर रहा। और पहला मैच बारिश के चलते धुल गया था, लेकिन अब जो अंतिम मैच आना कि 3-0 से पहले इंग्लैंड की टीम इस मैच को जीत चुकी है और आज वैभव की जगह एक बार फिर से संजू सैमसन की वापसी हो गई। और अब बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप की। सेमीफाइनल के लिए कल रात एक और टीम का फैसला हो गया है। स्पेन ने एक रोमांचक मैच में बेल्जियम को 2-1 से मात दे दी है। पहले फेबियन रूइस ने स्पेन के लिए गोल किया जबकि चार्ल्स डी केटलेयर ने बराबरी का गोल भी दागा। मैच के आखिरी मिनट में मरीनो ने गोल करके स्पेन की जीत पर मोहर लगा दी और उसके साथ ही स्पेन ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। अगर हम क्वार्टर फाइनल की बात करें तो क्वार्टर फाइनल में अब आज रात 2:30 नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। दुनिया भर के फैंस की निगाहें हॉलैंड और हैरी केन जैसे स्टार खिलाड़ियों पर रहने वाली है। एक और क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना के सामने होगी स्विट्जरलैंड की टीम। मेसी इस वर्ल्ड कप में 8 गोल कर चुके हैं और गोल्डन बूट के दावेदारों में वो शामिल है। और अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट।
4: Today's match day preview is presented by Fanatic Sportsbook. Download the Fanatic Sportsbook app today. Winning hits different here. Norway will take on England in Miami, and Argentina will face Switzerland in Kansas City. Many are expecting England and Norway to be a close match. The draw is plus 280. Meanwhile, Argentina is favored to qualify for the next round at minus 300. This has been your official Odyssey Sports match day preview, brought to you by Fanatic Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
5: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
7: We are over, Jimmy.
8: Hey, life mein scratches to aayenge. Gaadi ke scratches ko to Cosmo PP ab samal lega. Aap apna dekh lo.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: आगे आगे करेक्ट
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
6: नहीं, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
9: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
10: लायन लाइना प्रीमियम डेट्स।
11: In association with Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
12: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
11: विमल बोलो जुबा केसरी। हिंट बड़े आराम से।
13: शेयर बाजार, जहां कुछ लोग सीखते रह जाते हैं और कुछ इतिहास लिख जाते हैं। आखिर बड़ा पैसा बनता कैसे है, कौन सी सोच, कौन सी रणनीति और कैसा नजरिया किसी को बनाता है बाजार का असली खिलाड़ी, इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आ रही है बिस्तक की नई पॉडकास्ट सीरीज मनी मेकर्स। यहां मुलाकात होगी बाजार के उन दिग्गजों से, उन मार्केट लेजेंड से, जिन्होंने सिर्फ मार्केट को देखा नहीं बल्कि बड़े उतार चढ़ाव दिए हैं, मौके पहचाने हैं और दौलत बनाई है। जानेंगे उनकी जर्नी, बड़े फैसले, निवेश की सीख और बड़ा पैसा बनाने की सोच। मनी मेकर्स, बाजार के बड़े नाम, बड़ी सीख, सिर्फ बिस्तक पर।
14: जय हिंद फ्रेंड्स। ईसाइत, सोना, मसाला या विस्तार, 1498 में क्या थी वास्को डिगामा की मंशा? मधुमक्खी जैसे गोरे जो शहद लेकर आ रहे थे, भारत को डंक मारना शुरू कर दिया और बेवकूफ राजाओं का फायदा उठाकर इस देश को गुलाम बना दिया। लेकिन मीर जाफर और मीर कासिम ने अगर सर झुकाया तो रानी लक्ष्मीबाई ने सर उठाया और गोरों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कैसी थी लड़ाई, कौन थे इसके महानायक, तलवारें चली या भजन चला? अगर बचपन में नहीं समझ में आया, नोटबुक निकाल लीजिए, मैं अवध ओझा जल लेकर आ रहा हूं मास्टर जी इन द न्यूज रूम, सिर्फ ललन टॉप पर।
15: जो मिसिंग लिंक है उस पर जो लैंडस्लाइड हुआ था, ये लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि तकरीबन 6.5 करोड़ रुपए के बाद उसको एक्सपेंड करने के बाद, काफी सालों की मेहनत करने के बाद उसको वो सर्वे करेंगे और उसके बाद

0: नहीं थम रही रूस यूक्रेन जंग। कीव पर फिर रूसी हमला, 10 घायल। यूक्रेन ने भी तेल डिपो को बनाया निशाना। तबाही की ये तस्वीरें यूक्रेन की राजधानी कीव की हैं। चारों तरफ फैले धुएं और धूल के गुब्बार से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला कितना विनाशकारी था। बमबारी से इलाके की कई इमारतें पूरी तरह जमींदोज हो गईं और कई घंटों तक राहत दलों को बचाव अभियान चलाना पड़ा। रूस ने यूक्रेन की राजधानी पर 12 मिसाइल और 120 ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इन हमलों में 11 लोग घायल हो गए, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। इन हमलों में रूस ने 6 इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, लेकिन एंटी मिसाइल सिस्टम लगातार कमजोर होने की वजह से यूक्रेन एक को भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। रूस के हमले कीव तक ही सीमित नहीं रहे। क्रामाटोर्स्क में रूसी एयर स्ट्राइक में 4 लोगों की जान चली गई और 9 लोग घायल हो गए। रूसी बमबारी से कई रिहायशी इमारतों में आग लग गई और लोगों को सुरक्षित निकलने का मौका ही नहीं मिला। यूक्रेन ने भी पलटवार करते हुए रूस के कई तेल डिपो पर हमला किया है। रूस के क्रास्नोडार की लिस्की रिफाइनरी में यूक्रेन के हमले से भयानक आग लग गई। अजोब के तेल डिपो पर भी हमले की वजह से रूस को भारी नुकसान हुआ है। जेलेंस्की इसे अपनी सेना की बड़ी जीत बता रहे हैं। उनका दावा है कि हजारों किलोमीटर दूर के रूसी ठिकानों को तबाह करके यूक्रेन ने साबित किया है कि लंबी दूरी की उनकी मिसाइलें और ड्रोन कितने घातक हैं।
1: Сьогодні наші далекобійні удари досягли кількох регіонів самої Росії, а також об'єктів на тимчасово окупованій території України. Я дякую нашим воїнам за влучність. Добре іде операція і Служба безпеки України по далекобійним санкціям. Будемо цей напрямок ще посилювати. У наших воїнів має бути значно більше можливостей досягати російських окупантів саме там, звідки вони в Україну несуть війну на території Росії.
0: अभी एक दिन पहले ही यूक्रेन ने क्रीमिया में रूसी तेल टैंकरों को बर्बाद कर दिया था। जुलाई के महीने में रूस और यूक्रेन की जंग और तेज हो गई है। रूस ने कीव पर 3 बार इतने भीषण हमले किए हैं कि कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इधर यूक्रेन रूस की मिसाइलों को ठिकाने पर पहुंचने से पहले नाकाम नहीं कर पा रहा है। जेलेंस्की लगातार यूरोप से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका एंटी मिसाइल सिस्टम दुरुस्त नहीं हो पाया है। आज तक ब्यूरो।
2: मैं अपने मित्र प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन, न्यूजीलैंड सरकार के सभी साथियों और यहां लेबर पार्टी के मेंबर्स का भी मैं अभिनंदन करूंगा। ये दिखाता है कि भारत न्यूजीलैंड रिश्तों को कितना बड़ा बाई पार्टीजन सपोर्ट है। इससे यह भी पता चलता है कि कीवी इंडियन कम्युनिटी की अचीवमेंट्स, आपका कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा है। आप यहां आए, कीवी इंडियन कम्युनिटी के उत्सव का हिस्सा बने, इससे ये सेलिब्रेशन और वाइब्रेंट हो गया है। आपने जिस गर्मजोशी से, जिस स्नेह और उत्साह से आपने हम सभी का स्वागत किया है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
6: नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। विशेष में आज बात मानसून की मार की। मानसून भले ही देर से आया हो लेकिन आने के साथ ही तबाही मचा रखी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है। नदियां उफान पर हैं तो कहीं शहरों में पानी भरा हुआ है। आपको अलग अलग जगहों का हाल भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां से तबाही की कई तस्वीरें सामने आई।
7: आसमान से बरसती आफत और जमीन पर जिंदगी बचाने की जद्दोजहद, कहीं पहाड़ तड़प रहे हैं तो कहीं पानी जिंदगी को अपनी चपेट में ले रहा है। मानसून की बारिश अब सिर्फ मौसम नहीं रही, कई इलाकों में ये डर दहशत और तबाही की वजह बन चुकी है। हिमाचल से उत्तराखंड तक बारिश ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया है कि लोग घर छोड़ने, रास्ते छोड़ने और जिंदगी बचाने को मजबूर हैं। उत्तराखंड में भी बारिश लगातार आफत बनकर बरस रही है। टिहरी गढ़वाल में लगातार तीसरे दिन बारिश जारी है। बारिश के चलते टिहरी झील का जलस्तर बढ़ रहा है। नदी किनारे रहने वाले लोगों में डर का माहौल लगातार बना हुआ है
8: और काफी बारिश से अस्त व्यस्त जीवन हो रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं घनसाली में काफी बारिश लगातार हो रही है।
9: तो नदी के किनारे लोग रह रहे हैं, सभी घरों के जो है नोटिस चस्पा कर दिया और समय समय पर जैसे बारिश होती है सायरन भी जो है प्रशासन द्वारा जो है बजाया जाता है और अपने अधिकारी भी कर्मचारी भी लगाए हुए हैं कि जो नदी किनारे अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अगर पानी बढ़ता है तो अन्यत्र जो है अपनी व्यवस्था करें। तो लोग सतर्क हैं और क्योंकि मेरा घर भी नदी के किनारे है, हमें भी नोटिस गवर्नमेंट से आया है।
7: प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। दो दिन की छुट्टी के बाद स्कूल खुले, लेकिन बारिश के बीच बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों की चिंता भी सामने आई। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे हालात में एहतियात और ज्यादा जरूरी है।
10: बद्रीनाथ धाम में बीते तीन दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। जहां अब मानसून पहाड़ों में पैर पसार रहा है, वहीं बद्रीनाथ धाम में लगातार बारिश हो रही है। तो बद्रीनाथ धाम में बहने वाली अलकनंदा में अपना विकराल रूप धीरे धीरे जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जो यहां पे नरसिंह शिला बारह शिला है वो लगातार पानी में डूबती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी मानसून के दौरान ये पूरी शिला बद्रीनाथ धाम की जो अलकनंदा है उसमें डूब जाती है, लेकिन अब धीरे धीरे उफान पर अलकनंदा बह रही है, पूरा पानी बढ़ता जा रहा है। पल पल बारिश के साथ ही जो पानी है, जलस्तर है, वो बढ़ रहा है। हालांकि मार्ग बाधित होने की जो आशंका है वो बनी हुई है, क्योंकि मानसून का दौर है, बारिश तेज होती है। तो अलग अलग जगहों पे खासकर पीपल कोठी के भनेर पानी में और जो गुलाब कोठी है हेलंग के समीप, वहां पे लगातार भूस्खलन का दौर बन रहा है।
7: चमोली के थराली क्षेत्र में बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार हो रही बारिश के बाद घाघली गदेरे में भारी मात्रा में मलबा आ गया, जिसके चलते थराली देवाल और थराली कुराड़ मार्ग प्रभावित हुए। एक रास्ता खोल दिया गया है, लेकिन कई इलाकों में अब भी लोगों की मुश्किलें बनी हुई। उफनते नाले के किनारे बसे राडीबगढ़ गांव के लोगों ने पूरी रात दहशत में गुजारी। ग्रामीणों का आरोप है कि सुरक्षा इंतजामों की कमी के कारण हर बारिश में खतरा बढ़ जाता है। चमोली में पहले भी बादल फटने और भारी मलबे की घटनाएं सामने आ चुकी हैं और इस बार मानसून के शुरुआत में ही हालात डराने लगे। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में लगातार बारिश जारी है। तीन दिनों से हो रही बारिश का असर अब अलकनंदा नदी पर दिखाई दे रहा है। खतरा लगातार बना हुआ है। नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और अलकनंदा उफान पर बह रही है। हालांकि खराब मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था कायम है। बारिश के बीच भी यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। यात्रा मार्ग फिलहाल सुचारू है, लेकिन पहाड़ों के बदलते मौसम के बीच खतरा लगातार बना हुआ है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बारिश ने चार धाम यात्रा की रफ्तार रोक दी। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर खांकुरा के पास पहाड़ दरक गया। भारी भरकम बोल्डर सड़क पर आ गिरे और देखते ही देखते हाईवे बंद हो गया। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। कई यात्री घंटों तक रास्ता खुलने का इंतजार करते रहे। बारिश के मौसम में पहाड़ों की यात्रा एक बार फिर चुनौती बन गई है। नैनीताल में लगातार लगभग 8 घंटे हुई मूसलाधार बारिश के बाद 7 नंबर स्थित आलमक कॉटेज और जिला पंचायत रोड क्षेत्र में भू धसाव तेज हो गया। पहाड़ी का बड़ा हिस्सा खिसक कर नीचे नाले में जा गिरा, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। सड़क के ऊपर बने 5 और नीचे स्थित 7 परिवारों के मकान खतरे की जद में। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते सुरक्षा कार्य करा दिए गए होते तो आज ये स्थिति पैदा नहीं होती।
11: इनके क्षेत्र में लगातार वर्षा हो रही है, इसी संबंध में आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया गया। तो सर्वप्रथम जो 7 नंबर का हमारा लैंड स्लाइडिंग एरिया है उसको आज विजिट किया गया, और वहां पर उस निरीक्षण में एक्सियन पीडब्ल्यूडी और एक्सियन इरीगेशन भी मौजूद थे। एक्सियन इरीगेशन को पूर्व में भी आयुक्त महोदय के द्वारा जो है DPR उस एरिया की गठित करके तत्काल काम कराने के लिए निर्देशित किया गया है। तो उसी के क्रम में आज हम लोगों के द्वारा निरीक्षण किया गया और ये देखा गया कि वहां पर तात्कालिक तौर पर भी कुछ कार्य कराए जाने की आवश्यकता है, जिसको इरिगेशन विभाग कल से ही टेकअप करेगा।
7: मौसम विभाग की तरफ से उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और कुमाऊं क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर के लिए रेड अलर्ट, देहरादून, पौड़ी, चंपावत, हरिद्वार, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली और नैनीताल जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए। पूरे उत्तराखंड में 117 सड़कें अब भी बंद है। बहरहाल ये मानसून की पहली किश्त ने जिसने पहाड़ों पर हाहाकार मचा रखा है, मौसम विभाग की माने तो अभी आसमान से ये आफत थमने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। देश के बाकी जगहों का हाल भी कुछ जुदा नहीं है। महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक बारिश अपने साथ मुश्किल लेकर आई है। हिंदुस्तान का ये नक्शा बता रहा है कि जुलाई के 9 दिनों में मानसून लगभग पूरे देश पर छा गया है, लेकिन देश के 49% जिले ऐसे हैं जहां अभी भी सामान्य से कम बारिश हुई। इनमें सबसे ज्यादा जिले यूपी बिहार के नजर आते हैं। ये नक्शा बता रहा है कि मध्य और पश्चिमी भारत में तो सामान्य से ज्यादा बारिश हो गई है, लेकिन अभी पूर्वोत्तर और पूर्वी हिस्से में ठीक से बारिश होना बाकी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में तो लगातार बारिश के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। संजौली इलाके में भूस्खलन के खतरे के चलते कई परिवार घरों से बाहर रहने को मजबूर हैं। लोगों को डर है कि कमजोर हो चुकी जमीन कब धस जाए और कब कोई बड़ा हादसा हो जाए। वहीं न्यू शिमला के राजाना गांव में भी लैंडस्लाइड ने कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है।
12: डर का माहौल है जी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे आप देख रहे हैं, आपने अभी फोटोज भी ली हैं, यहाँ पे जो सारा एरिया है अभी डर के माहौल में। हम पूरे एक साल से डर के साथ ही जी रहे हैं। लास्ट ईयर 28 जून 2025 को सुबह 4:30 बजे के करीब ये जो लैंडस्लाइड हुआ था, जिससे कि सब कुछ यहाँ पे हमारी बिल्डिंग की सीढ़ियां वगैरह सब कुछ टूट गया था, और तब से लेकर हम लोग तो डर डर के ही जी रहे हैं। बार बार हम रिक्वेस्ट करने पर भी यहाँ पे कुछ नहीं, जैसे ही बरसातें शुरू होती है इनका काम भी स्टार्ट होता है, और हमारा तो ये कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इनका बैन किया जाए इसको।
7: जम्मू कश्मीर के पुंछ में बारिश के बाद अचानक बाढ़ ने हालात बिगाड़ दिए। तेज बहाव में कई लोग फंस गए। प्रशासन और राहत टीमों ने लगभग 25 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। पानी का वेग इतना तेज था कि लोगों की जिंदगी कुछ घंटों के लिए खतरे में आ गई।
13: हो गया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि हमने पिछले साल भी यहाँ SDM साहब भी मौके पर आए थे, उन्होंने बोला था कि हम आपको क्रेडिट देंगे, अभी तक ना उन्होंने कोई क्रेडिट दिया ना इस पुल का कोई इंतजाम किया।
14: सिचुएशन यहाँ पे हुई है, इसमें तकरीबन 8 से 10 घर जो है वो इफेक्टेड हुए हैं। मैं मुकामी लोगों का और मेरी जो हमारी यहाँ पर पुलिस पोस्ट अड़ी है, इमीडिएट जो रेस्पॉन्डर है वो ये खुद थे, इन्होंने जो है वो लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया, जिसमें तकरीबन 20 से 25 सोल्स हैं और कुछ लाइव स्टॉक पोल्ट्री बोर्ड को जो है वो रेस्क्यू किया गया।
7: सहारनपुर में तो गजब हो गया, भारी बारिश की वजह से कब्रिस्तान में पानी भर गया और इसकी वजह से कई कब्रें क्षतिग्रस्त हो गई। ये गागल हेड़ी के सैयद माजरा गाँव के कब्रिस्तान की घटना है। मिट्टी धंसने से कुछ शव कफन समेत बाहर दिखाई देने लगे हैं। ग्रामीणों ने पुलिस की मौजूदगी में धार्मिक रीति रिवाजों और पूरे सम्मान के साथ शवों को दोबारा सुपुर्द खाक किया। इधर महाराष्ट्र में अब बारिश तो रुक गई है, लेकिन पुणे के एक वेस्ट प्लांट में जो हादसा हुआ था वहां भी 8 लोगों के दबे होने की आशंका है। पुणे के मोशी के वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में हादसे के 48 घंटे के बाद भी सभी लोगों का रेस्क्यू नहीं हुआ है। इस प्लांट में कूड़े के पहाड़ सिर्फ एक इमारत पर नहीं गिरा, उसने कई परिवारों की उम्मीदें भी मलबे में दबा दी। जहरीली मीथेन गैस और कूड़े का विशाल ढेर रेस्क्यू ऑपरेशन को लगातार मुश्किल बना रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर खतरे का अंदाजा था तो कूड़े के ढेर के पास इमारत क्यों बनाई गई?
15: जो बारिश हुई थी, बहुत ज्यादा बारिश हमारे शहर में हुई थी, उसकी वजह से पूरे शहर में पानी का स्तर बढ़ गया था, हमेशा के जैसे हालात नहीं थे, और इसी के वजह से ये जो कचरे का मलबा था वो पूरा बिल्डिंग के ऊपर गिर गया। उसमें जो कर्मचारी थे एंटनी के, वो फंस गए, लेकिन उनको निकालने का काम पूरे प्रयास, पूरे जोरों शोर से और पूरे मेहनत से पहले दिन से हम सब कर रहे हैं, आज के दिन उनको निकाला जाएगा।
16: 40 घंटे हुए हैं अभी तक निकाले गए नहीं।
15: आपने पहले दिन आए तो कंडीशन देखी होती तो आपको पता चलता, क्योंकि पहले जो जीवित व्यक्ति थी उनको, जिनका आवाज बाहर आ रहा था, प्रशासन को आ रहा था, उनको बाहर निकालना जरूरी था, उनको पहले दिन के रात को बाहर निकाला गया।
7: कई गंभीर सवाल हैं और सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि जो लोग फंसे हुए थे उनके तरफ से रिस्पांस आना भी बंद हो गया है। कुल 23 लोग यहाँ फंसे थे, जिनमें से 14 लोगों को निकाला गया था और एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। अभी भी जो 8 लोग हैं उनकी क्या स्थिति है ये पता नहीं है।
16: पुणे स्थित मोशी में जो इंसिडेंट हुआ था, इसको लेकर 45 घंटों के बाद भी एनडीआरएफ टीम की रेस्क्यू जारी है। अभी हम मोशी स्थित कचरा डिपो में है, यहाँ पर देख सकते हैं कि जेसीबी से जहाँ पर वेस्ट टू एनर्जी बिल्डिंग है जो ढही थी, उसके आजू बाजू में कचरा निकालने का काम जारी है। 2 दिन पहले यही जो कचरे का ढेर है वो वेस्ट टू एनर्जी बिल्डिंग के ऊपर गिरने से बिल्डिंग ढही थी और उसमें 23 लोग अटके हुए थे, उसमें से 14 लोगों को निकाल लिया गया है और एक की डेथ हुई है, तो 8 लोग अभी भी मौजूद है, उनसे कोई रिस्पॉन्स नहीं है, लेकिन उनको निकालने की कोशिश एनडीआरएफ द्वारा जारी है। पिछले कुछ घंटों से इस काम में तेजी आई है, जेसीबी ज्यादा लगाए हैं, लेकिन जहां मतलब ग्राउंड फ्लोर में जो लोग अटके हुए हैं, जो मलबे में हैं, उनके रिश्तेदार यहां पे कई घंटों से हैं और उनको आस है कि हमारे जो अंदर अटके हुए लोग हैं वो शायद जिंदा हो।
7: प्रशासन कह रहा है कि बिल्डिंग के अंदर कचरे की वजह से मीथेन गैस है, जिसकी वजह से पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में समस्याएं आ रही हैं। अब पूरी इमारत तोड़कर इन लोगों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है।
17: अभी जो लास्ट फेज ऑफ रेस्क्यू ऑपरेशन है वो बहुत क्रिटिकल हो रहा है। जैसे आप देख रहे हो कि ये कैंटिलीवर फॉल है, तो एनडीआरएफ के कहने के मुताबिक ये जहाँ कैंटिलीवर फॉल होता है बिल्डिंग का, वो बहुत क्रिटिकल और बहुत रिस्की रहता है ऑपरेशन में। अभी एनडीआरएफ ने जो जो कचरा है जो अंदर जा रहा है उसको निकालने की पूरे प्रयास कर रहे हैं। उसके आसपास बिल्डिंग का ऑलमोस्ट 80-90% उन्होंने निकाल लिया है। उसके बाद में अभी वो बिल्डिंग खोल के, मतलब उनके इक्विपमेंट्स का यूज करके, वो तोड़ के अंदर जाके जहाँ ये लोग फंसे हुए हैं।
7: पालघर की ये तस्वीर देखिए, कैसे घर के नीचे सैलाब के बाद पूरा परिवार छत पर है, जिसमें महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं, जिनके चेहरे पर खौफ आसानी से देखा जा सकता है। आज तक ब्यूरो। अब बात वियतनाम में हुए दर्दनाक हादसे के। वियतनाम के फुकोक द्वीप के पास में बोट पलट गया और इसमें 32 भारतीय थे, जिसमें 15 भारतीयों की मौत हो गई है। ज्यादातर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के पर्यटक थे। बोट पर कुल 4 क्रू मेंबर्स समेत 36 लोग सवार थे, 21 लोगों को बचा लिया गया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक हादसा सुबह 10:30 बजे हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे की वजह समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें हो सकते हैं। नाव जब पलटी तो टूरिस्ट नाव के नीचे फंस गए। बोट भारतीय पर्यटकों को फुकोक द्वीप के पास में स्थित होन में रूट से गोई द्वीप की तरफ घुमाने ले जा रही थी, लेकिन ये तट से लगभग 400 मीटर पहले ही बोट पलट गए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दुर्घटना पर दुख जताया है। और भारतीय मूल के जो इस समय वियतनाम में रहते हैं इंद्रनील सेन गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। इंद्रनील जी, आपको इस हादसे के बारे में कब जानकारी मिली और इस हादसे के बाद अब वहां किस तरह का माहौल है?
18: बहुत ही दुखद पूर्ण हादसे हुआ है, क्योंकि हम लोग को जानकारी मिला करीब 3-4 घंटा पहले। मेरा यहाँ पे एक ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी में है, तो पहले हम लोग चेक किया, हम लोग कोई टूरिस्ट गेस्ट वहाँ पे गया कि था आज, क्योंकि पिछले साल हम लोग 1000 टूरिस्ट फुको गए थे हम लोग कंपनी से। तो अभी तो मोटा मोटी रेस्क्यू एंड रिकवर ऑपरेशन खत्म होने वाला है शायद, बट पूरा तोड़ जोर से लोग किया है वियतनामीज अथॉरिटीज लोग। पूरा डिटेल्स कल तक आ जाएंगे, कैसे हुआ क्या हुआ। ऑलरेडी वियतनामी प्रधानमंत्री ने इंक्वायरी कमेटी बैठा दिया मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी के अंडर में। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी मतलब हम लोग का हिंदुस्तान में जो होम अफेयर्स होता है, और से लोग छानबीन कर रहा है क्यों हुआ क्या हुआ। एक चीज जो बताएंगे, यहाँ पे टूरिज्म में काफी ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुआ है।
19: बिल्कुल,
18: बट
19: जो भी हुआ
18: टूरिज्म में
19: दुखद हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन इस बात की जांच तो होनी चाहिए कि जब लहरें ऊंची ऊंची उठ रही थी उन परिस्थिति में वहां पर पर्यटकों से भरी हुई नाव जाने कैसे दी गए। अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
20: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
21: To right field, and it will leave.
20: From the first pitch of the season to the stretch run.
21: And that's the ball game.
20: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
22: गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
2: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
3: होर्मुज की शांत लहरों में बमों की बारिश के बाद से एक बार फिर सुनामी दिखने लगी है। दो दिन में तीन जहाजों पर ईरान की बमबारी के बाद से सीज फायर की पूरी तस्वीर ही बदल गई है। एक बार फिर होर्मुज का पेच ही अमेरिका और ईरान के बीच फंस गया है और आशंका तो इस बात की लगातार बढ़ रही है कि तेल के खेल की वजह से ही महायुद्ध का पार्ट टू शुरू होने वाला है। ईरान ने होर्मुज से गुजर रहे इन तीन कमर्शियल जहाजों पर हमला किया था। इससे ट्रंप का पारा इतना चढ़ा कि दोनों ओर से हमलों की एक नई लहर से ईरान के कई शहरों के अलावा बहरीन और कतर तक में बर्बादी का मंजर दिखाई देने लगा। होर्मुज में इस हफ्ते जो हमले हुए हैं, क्या ईरान ने इसे अपनी गलती मानी है? CBS न्यूज ने यह दावा किया है। इसमें अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि ईरानी अफसरों ने निजी तौर पर ट्रंप के सलाहकारों से कहा कि होर्मुज में जहाजों पर अटैक गलती थी और ये हमले कट्टरपंथियों के एक ऐसे गुट ने किए जो बातचीत को नाकाम करना चाहते हैं। ईरान बेशक कितना ही कह ले कि होर्मुज में हमले एक गलती थे, लेकिन अमेरिका ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है और उसके खिलाफ हटाई गई तेल निर्यात की पाबंदियों को एक बार फिर लगा दिया है, जो अगले हफ्ते से लागू कर दी जाएंगी। होर्मुज से शुरू हुई लड़ाई तेजी से खार्क तक पहुंच गई है। हफ्ते भर पहले ही अमेरिका ने यहां एयर स्ट्राइक की और ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया। ईरान के तेल निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा खार्क से ही जुड़ा है। जब से दोनों देशों के बीच जंग शुरू हुई है, खार्क को अमेरिका के कई हमले झेलने पड़े हैं। अब ये एक बार फिर से अमेरिका के निशाने पर आ गया है। वैसे अमेरिका ने ईरान को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि ईरान कमर्शियल जहाजों के लिए होर्मुज को खोले और जहाजों पर हमले पूरी तरह बंद करे, साथ ही सार्वजनिक तौर पर इसका ऐलान करे। अमेरिका ने दो टूक चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने ऐसा नहीं किया तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। ये चेतावनी ऐसे वक्त पर दी गई है जब अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हवाई हमले कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: Chogan Perfumes, the French edition for him and her. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
2: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning. One heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
3: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
4: If you love podcasts, you never want to be without your favorite shows. That's where TuneIn comes in. Here's a quick tip. You can listen anytime, even without the internet. Just open a podcast, tap the three dots next to an episode, and hit download. Simple as that. Now you're free to listen wherever you are. On a flight, underground, or totally offline. Your downloads are always waiting on your library page. From true crime to lifestyle to health and science, TuneIn makes it easy to take your podcasts anywhere.
5: बदल गया। मध्य प्रदेश के दतिया में 30 जुलाई को उपचुनाव है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। दतिया से आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाने की घोषणा होते ही नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। नेशनल हाईवे पर जाम लग गया। घंटों तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही। पुलिस पर पथराव हुए, कई पुलिसकर्मी घायल हुए। ऐसे में नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि शांति बनाए रखें, पार्टी फोरम पर इस मुद्दे को उठाया जाएगा। आखिर दतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट क्यों कटा? बताया जा रहा है कि दिल्ली के स्तर पर कराए गए सर्वे में नरोत्तम मिश्रा की स्थिति उम्मीद के मुताबिक मजबूत नहीं पाई गई। 2023 में बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को टिकट दिया था, लेकिन वो विधानसभा का चुनाव हार गए। केंद्रीय नेतृत्व ने स्थानीय संगठन और भविष्य की राजनीतिक स्वीकार्यता का भी आकलन कराया। इसमें नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी फिट बैठे, जिसके बाद उन्हें दतिया से टिकट दिया गया। बीजेपी ने एक ब्राह्मण नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर दूसरे ब्राह्मण आशुतोष तिवारी को टिकट दिया है। इससे जातिगत और सामाजिक संतुलन बरकरार है। उधर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी साफ कर दिया कि बीजेपी में टिकट घोषित होने के बाद वापस लेने की परंपरा नहीं है। यानी संदेश साफ है, बीजेपी हाईकमान फिलहाल झुकने के मूड में नहीं है। नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं देने पर कांग्रेस उनके समर्थन में आ गई है। कांग्रेस ने तुरंत मौका देख और कहना शुरू कर दिया कि बीजेपी बड़े नेताओं को खत्म करती है। राजनीति में इसे अवसरवाद भी कहते हैं, क्योंकि जिस कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे पर वर्षों तक खींचतान चली, जहां टिकट बंटवारे पर दर्जनों बार बगावत हुई, वो अगर बीजेपी को संगठन का पाठ पढ़ाने लगे तो जनता मुस्कुराए बिना नहीं रह सकती। राजनीति में याददाश्त छोटी हो सकती है, लेकिन जनता की याददाश्त इतनी भी छोटी नहीं होती। लेकिन माहौल चुनावी है तो कांग्रेस जरूरत से ज्यादा बड़ा बनना चाहती है। हालांकि बीजेपी अक्सर कांग्रेस पर आरोप लगाती रही कि वहां फैसले ऊपर से होते हैं, नीचे सिर्फ पालन होता है। लेकिन दतिया में नरोत्तम मिश्रा के समर्थक आज बीजेपी से भी वही सवाल पूछ रहे हैं। लोकतंत्र में सबसे बड़ा संकट तब नहीं आता जब सिर्फ विपक्ष सवाल पूछता है। सबसे बड़ा संकट तब आता है जब सवाल अपने पूछने लगते हैं। अब देखना है कि क्या दतिया की दरार यहीं भर जाएगी या संदेश पूरे मध्य प्रदेश तक जाएगा। दतिया का उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं है। यहाँ बीजेपी के लिए अनुशासन बनाम असंतोष, हाईकमान बनाम जमीनी कार्यकर्ता और व्यक्ति बनाम संगठन, तीनों की एक साथ परीक्षा है। एक परीक्षा बिहार में बांकीपुर सीट पर भी देखने को मिली, जहाँ बीजेपी के उम्मीदवार ने आखिरी मौके पर पर्चा वापस लिया तो दूसरे उम्मीदवार को टिकट थमाना पड़ा। हुआ यूं कि बिहार ने पहले बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में अभिषेक कुमार को उम्मीदवार बनाया। अभिषेक कुमार ने नामांकन भी भर दिया, लेकिन अचानक अभिषेक कुमार ने पर्चा वापस ले लिया और इसके पीछे निजी वजह बताया। इसके बाद बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को अपना उम्मीदवार घोषित किया। 13 जुलाई को बांकीपुर सीट से पर्चा भरने का आखिरी दिन है। फिलहाल नीरज कुमार सिन्हा ने बांकीपुर से पर्चा नहीं भरा है। इस सीट से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक थे। राज्यसभा के लिए सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दे दिया था। सवाल ये नहीं कि बांकीपुर जीतेगा कौन, सवाल ये नहीं कि दतिया में क्या होगा, सवाल ये कि बीजेपी जैसी पार्टी में ये क्या हो रहा है। कहीं बगावत तो कहीं मैदान छोड़कर भागने की शुरुआत। ऐसे में लोकतंत्र में बीजेपी विपक्ष को कैसे चुनौती दे पाएगी, इसका असर कार्यकर्ताओं और वोटरों पर क्या होगा? आज तक ब्यूरो।
6: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: और विशेष के बाद अब आगे देखिए अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय श्वेता सिंह के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
1: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

वियतनाम में भारतीय पर्यटकों से भरी नाव पलटी, अब तक 15 लोगों की मौत। फुकुओक द्वीप के पास हादसा, पीएम मोदी ने जताई संवेदना। न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय के बीच पीएम मोदी ने बताई भारत की विकास यात्रा, कहा जल्द बनेंगे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। तीन देशों के दौरे के बाद दिल्ली के लिए भरी उड़ान। दतिया से टिकट कटने के बाद आज तक से बोले बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्र, राजनीति में यह चलता है, पार्टी का फैसला सही। समर्थकों ने किया हाईवे जाम और पथराव। यूपी में 27 का घमासान तेज, सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर बोला नया हमला, कहा ये लोग कब्रिस्तान में लगाते थे मंदिरों का पैसा। अखिलेश बोले पराजय काले विपरीत बुद्धि। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बीजेपी पर संसद ने किया आरोप, कहा हमारे एमएलए को दिया था 30 करोड़ और मंत्री पद का लालच, सरकार गिराने की साजिश का दावा किया।

आप मंदिर दर्शन करने जाते होंगे तो घर पर सबके लिए वहां से प्रसाद लेकर आते होंगे, पर आज हम आपको एक ऐसे सिद्ध धाम लिए चलेंगे जहां से प्रसाद बाहर लाना मना है। आमतौर पर आप मंदिर से निकलकर एक बार पीछे देखकर फिर ईश्वर को प्रणाम करते होंगे, पर आज हम आपको एक ऐसे मंदिर लिए चलेंगे जहां पलट कर देखना मना है। यहां की हर रीति अद्भुत है, हर मान्यता अविश्वसनीय, यहां की महिमा अकल्पनीय है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आज चलिए हमारे साथ राजस्थान के दौसा जिले के श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम।

0: से बाबा की शरण में आए हैं बालाजी के, तब से बहुत आराम है हमारे बच्चे।
1: ऐसा जगह है कि आपका हर एक चीज जो काम नहीं बनेगा यहाँ पे बन जाएगा।
2: यहाँ आने के बाद में यहाँ के वातावरण में ही ऐसी पॉजिटिविटी है कि यहाँ आके लोग ऑटोमेटिक ही सही हो जाते हैं।
3: यहाँ पे किसी को कुछ किया कराया हो कुछ है, यहाँ पे सब आके सब बाधाएं विघ्न दूर हो जाती हैं।
2: आप खुद देखो ना, ये तो एक तरह से बाबा की कचहरी है।
4: मैंने जब फर्स्ट टाइम एंट्री करी थी तो मुझे इस धरती पे पैर रखते ही मुझे पता लगने लग गया था कि बाबा साक्षात यहाँ पर है।
5: यहाँ पर पीछे मुड़ के न देखना, प्रसाद न खाना,

0: एक मंदिर जहां लगती है भूतों की अदालत। एक धाम जहां तालों में कैद कर दी जाती हैं बुरी शक्तियों की परछाइयां। एक आस्था जहां हर चीख के पीछे छिपी होती है एक उम्मीद। अद्भुत है यहाँ की मान्यताएं।
1: बाबा के दर्शन करने से तो दर्शन मात्र से ही संकट कट जाते हैं, वैसे ही इन्हें संकट मोचन कहते हैं।
0: अविश्वसनीय है श्रद्धालुओं का विश्वास।
2: मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो आते थे जिसे सांस नहीं होती थी, यहाँ पर आके ठीक हो जाते थे। मैंने खुद का अनुभव है, मैंने देखा है यहाँ।
0: अकल्पनीय है यहाँ से जुड़ी लोक कथाएं।
3: ये ऐसा केंद्र है, चाहे दुखी हो, बीमार हो, लाचार हो, कोई भी व्यक्ति आता है तो प्रभु उनका भला करते हैं। भगवान का और भक्त का मिलन होता है, जो जिस आस्था से आता है उसको उसी प्राप्ति होती है सर।
0: कोई अपने भय के साथ आता है और विश्वास लेकर लौटता है, कोई अपनी व्यथा लेकर आता है और प्रार्थना छोड़कर जाता है, कोई उत्तर खोजने आता है तो कोई केवल श्री बालाजी का आशीर्वाद पाने।
4: मेहंदीपुर बालाजी धाम का हर रहस्य एक नई परंपरा से जुड़ा है और हर परंपरा के पीछे छिपी है सदियों पुरानी आस्था। यहाँ केवल भगवान के दर्शन नहीं होते बल्कि कुछ ऐसी मर्यादाओं का भी पालन किया जाता है जिन्हें लाखों श्रद्धालु आज भी अटूट विश्वास के साथ निभाते हैं।

0: हर मंदिर की अपनी परंपरा होती है, लेकिन ये ऐसा मंदिर है जहां भगवान के दर्शन से पहले नियमों के दर्शन होते हैं, जहां श्रद्धा के साथ अनुशासन भी अनिवार्य है और जहां हर कदम पर आस्था की मर्यादाएं आपका इंतजार करती हैं।
1: ये बाबा बालाजी हनुमान जी महाराज का धाम है, इसे घाटे वाले बालाजी और मेहंदीपुर बालाजी के नाम से लोग बाग जानते हैं। मैं पिछले लगभग 20-25 साल से यहाँ बाबा के दरबार में आ रहा हूँ। लोग बाग यहाँ आते हैं, ये तो आस्था की बात है। बाबा की तो कृपा ऐसी है कि लोगों का संकट ही काट देते हैं बाबा यहाँ, और इसी आस्था के लिए लोग बाग यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ संकट कटते लोगों ने अपने प्रत्यक्ष देखा है और कटते भी हैं। आप खुद देखो ना, ये तो एक तरह से बाबा की कचहरी है कि यहाँ कोतवाल जी भी बैठे हैं, प्रेतराज जी भी बैठे हैं, भैरव बाबा भी बैठे हैं और स्वयं बाबा खुद विराजमान है। और ऐसा भी है कि बाबा स्वयं यहाँ रोज विराजमान रहते ही हैं, ऐसा नहीं है कि जाते हैं। लोगों के संकट कटते हैं, यहाँ से संकट भी कट रहे हैं और लोगों को लाभ मिल रहा है। जब भी तो इतनी तादाद में भीड़ उमड़ रही है यहाँ।
0: भारत में अनेकों मंदिर हैं, लेकिन राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी धाम की परंपराएं बिल्कुल अलग हैं। भक्तों को बालाजी का प्रसाद घर लेकर जाना मना है। मंदिर दर्शन से पहले ही आपको लहसुन, प्याज, मांसाहार और मदिरा का त्याग करना है। दरबार में प्रवेश से पहले इत्र और परफ्यूम का इस्तेमाल निषेध है। दर्शन के बाद 40 दिनों तक सात्विक जीवन का पालन करना है। मंदिर परिसर में पीड़ित व्यक्तियों को छूना या बातचीत करना मना है। बालाजी, प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा तीनों का दर्शन अनिवार्य है। और सबसे बढ़कर मंदिर से बाहर निकलते समय पीछे मुड़कर देखना मना है।
1: बाबा जो लोगों के संकट काटते हैं, अपना संकट कौन कट के पीछे मुड़ के देखना चाहेगा? जो संकट कट गया वो बाबा ने काट दिया, आपको उससे क्या करना? आपका तो संकट कट गया, तो इसलिए आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना। आपको तो जो बाबा ने आप पर कृपा करी है, उस कृपा का सुख का आनंद लो। आप बाबा के दर्शन करो और अपने सुख का आनंद लो।
2: ये बिल्कुल सही है, जो भी लाचार व्यक्ति होता है वो नहीं जा पाता कहीं भी, या सोखा ओझा जो भी किस चक्कर में पड़ते हैं, ऐसे किसी व्यक्ति के चक्कर में न पड़े, सीधा बालाजी के दरबार आए। जो नियम है, कानून है कुछ यहाँ के, उन नियम का पालन करेंगे पुनः ठीक हो जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। यही बालाजी की कृपा है, सबसे बड़ी कृपा है। कलयुग के राजा हैं ये, और कलयुग में सबसे ज्यादा अगर कि चलता है तो बालाजी का ही चलता है।
0: क्या ये सच है या केवल भ्रांति? अगर सच है तो क्यों? क्या इन नियमों के पीछे कोई प्राचीन धार्मिक परंपरा है? क्या ये केवल लोक मान्यताएं हैं, या फिर सदियों से चली आ रही ऐसी आस्था जिसे आज भी लाखों श्रद्धालु पूरे विश्वास के साथ निभाते हैं?
3: मेहंदीपुर धाम ऐसा धाम है जो कष्टों को निवारण करता है, सुखों को प्रदान करता है, तो इसलिए दुनिया ये आजकल कलयुग में देव सिद्ध हो तुम्हें हनुमान तुम्हारा क्या कहना, ऐसे बाबा हैं, स्वयंभू हैं, प्रकट अपने आप हुए हैं। प्रेतराज सरकार जी हैं, कोतवाल कप्तान जी हैं और स्वयं दीवान जी महाराज जी हैं। प्रेतराज सरकार की दया दृष्टि से सभी के देवी पितरों का जो है उद्धार होता है, मुक्ति होती है, शुद्धि होती है और सभी के घर परिवार में, धन संतान में, कारोबार में वृद्धि होती है। इसी की कामना से सभी दीन दुखियारी जो भी आता है वो अपनी सद मनोकामना पूर्ण करके जाता है।
0: मेहंदीपुर बालाजी धाम में नियम किसी शिलालेख पर नहीं लिखे, बल्कि श्रद्धालुओं के विश्वास में बसते हैं। शायद यही वजह है कि इस दिव्य दरबार में आने वाला हर भक्त केवल दर्शन करने नहीं आता, बल्कि उन परंपराओं का पालन करने आता है जिन्हें पीढ़ियों से आस्था ने जीवित कर रखा है। और यही विश्वास मेहंदीपुर बालाजी धाम को देश के सबसे रहस्यमयी और सबसे अनोखे तीर्थों में से एक अलग पहचान देता है।
4: कोई इसे संकट मोचन हनुमान की दिव्य कृपा का दरबार मानता है, तो कोई इन सब बातों को लेकर कहता है कि ये तो केवल लोक विश्वास है। विज्ञान भूत प्रेत को नहीं मानता और इंसानों में अगर कुछ अलग व्यवहार होता है उसके लिए मनोचिकित्सा होती। लेकिन एक बात तय है, अद्भुत है यहाँ की परंपराएं, अविश्वसनीय है यहाँ से जुड़े लोगों के अनुभव और अकल्पनीय है वो मान्यताएं जिन्होंने मेहंदीपुर बालाजी धाम को रहस्य और आस्था का अनोखा संगम बना दिया है।

0: यहाँ विश्वास का संसार तर्क से नहीं श्रद्धा से चलता है।
1: हमारे साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, हमारे घर में भी ऐसे बहुत सारे हुए हैं जो यहाँ आके हमें बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स मिली हैं, और हमें कहीं से भी आराम नहीं आ रहा था तो हम बाबा के दर्शन करने आते हैं तो हमें बहुत ही यहाँ पे सुकून मिलता है आके। यहाँ पे तो इतनी अद्भुत चीजें हैं कि कोई जो विश्वास भी नहीं करता वो एक बार आके यहाँ देखेगा तो उसको अपने आप पे खुद ही विश्वास होने लग जाएगा।
2: मैं 15 साल से ज्यादा हो गया, हम अपना कोई भी शुभ कार्य करने से पहले बाबा के इधर आते हैं और बाबा हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और साइंटिफिकली मैं इन चीजों को नहीं मानती थी कि यहाँ पे भूत प्रेत या ऐसा कुछ होता है, लेकिन मैंने जब फर्स्ट टाइम एंट्री करी थी तो मुझे इस धरती पे पैर रखते ही मुझे पता लगने लग गया था कि बाबा साक्षात यहाँ पर है। और हमारे साथ पर्सनल एक चीज हुई कि मेरे मामा की बेटी थी, वो काफी बीमार रहती थी, किसी भी डॉक्टर ने कोई इलाज समझ नहीं आ पाया, ना ही रिपोर्ट में कुछ आ रहा था, लेकिन वो जब यहाँ आई तो बिल्कुल ठीक होके गई है। हम बिलीव नहीं करते थे लेकिन हमें विश्वास है कि बाबा हैं यहाँ पे।
0: यहाँ 24 घंटे प्रार्थनाएं गूंजती हैं और उम्मीद कभी खत्म नहीं होती।
3: वो भी घर ले जाते हैं परिवार के लिए, उनमें उसमें लिखा है आपको घर ले जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, पैकेट पे लिखा है।
4: मंदिर में पैकेट बांटते हैं, वो ले जाते
3: हैं। बहुत महिमा है बालाजी।
0: जब हर दरवाजा बंद हो जाता है तब बहुत से लोग आखिरी उम्मीद लेकर मेहंदीपुर बालाजी धाम पहुंचते हैं।

0: मैं नर्सिंग स्टाफ हूँ, इन चीजों पे विश्वास नहीं करती थी, और यहाँ आके मैंने देखा हाँ साइंस अलग है, भगवान बहुत बड़ी चीज है।
1: आपको कैसे यकीन हुआ?
0: मेरे में कष्ट आया।
1: अच्छा,
0: हाँ।
1: यहाँ पर कब से आ रही
0: है? 20 साल से।
1: हाँ
0: हाँ, मेरे सिर का दर्द हुआ था, मैंने जोधपुर वगैरह हर जगह से इलाज लिया, कहीं कोई फायदा नहीं आया। यहाँ पे आई मैं, उसके बाद मेरे को पता चला हाँ साइंस अलग चीज है, भगवान भगवान है। और जब भी मेरी शादी की सालगिरह होती है तो मैं यहाँ अब की बार मनाया है, तो बहुत अच्छा लगा। हमें तो सब कुछ बाबा का ही है।
2: विज्ञान की नजर में भूत प्रेत या ऊपरी बाधा का कोई प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन इस दरबार में आने वाले अनेक श्रद्धालु दावा करते हैं कि उन्हें यहां राहत मिली।
3: हम अयोध्या जी से आए हैं, हमारे बच्चे को संकट ने बहुत तकलीफ दिया है, लड्डू में खिलाया गया था, बाबा हमको बहुत शक्ति दिए, हम बच्चे को कंट्रोल में कर ले, नहीं दबाव का काम नहीं कर रहा था, इतना तकलीफ देता था, ये देखो हाथ में काट लिया, यहाँ पूरा हाथ काट दिया था मुंह से, माँ बाप को छोटे भाई को बहुत मारता था। और ये मतलब 2014 का मैटर है, 2014 में मतलब 5 साल का था तभी उसको लड्डू में खिलाया गया था। तो मतलब हम तांत्रिक के पास जाते थे तो तांत्रिक मतलब करते थे, मतलब आराम हो जाता था, मतलब इसको अच्छे से नहीं ठीक कर पाते थे। तो इसके वजह से जब से बाबा के शरण में आए हैं बालाजी के, तब से बहुत आराम है हमारे बच्चे।
2: अद्भुत है ये अनुभव, अविश्वसनीय है ये दावे, और अकल्पनीय है कहानियां जो हर दिन मेहंदीपुर बालाजी धाम में सुनाई देती है।
4: मेरे को यहाँ आते आते 20 साल हो गए करीब, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, 6 महीने इलाज कराया मैंने कम से कम 5-6 डॉक्टर से अच्छे अच्छे से, पर मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। तो हमारे यहाँ गुरु जी एक मंदिर की पूजा करते थे माता जी का, तो उनने बोला साले रोता क्यों है, जाओ मेहंदीपुर बालाजी चला जा। मेरे को उनने एक हनुमान चालीसा दिया छोटा, तेरे को तकलीफ हो रास्ते में तो रख ले जा, बस देख लेना, बस दर्शन कर ले। अब बिल्कुल स्वस्थ है, 8 बार आ गया मैं यहाँ परिवार सहित, और एक बार तो मैं भंडारा भी कर चुका हूँ, पूरी गाड़ी भर के लाया था मैं परिवार।

0: क्या ये केवल अटूट आस्था की शक्ति है? क्या ये मनोवैज्ञानिक विश्वास का असर है, या फिर ऐसा कोई रहस्य जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया?
1: मेहंदीपुर बालाजी धाम की एक तस्वीर वो है जो रहस्य और लोक मान्यताओं से जुड़ी दिखाई देती है, लेकिन इस पवित्र दरबार का एक दूसरा रूप भी है जहां लोग केवल अपनी परेशानियां लेकर नहीं आते बल्कि उम्मीद, प्रार्थना और नए सपनों के साथ पहुंचते हैं।
0: मेहंदीपुर बालाजी धाम नाम सुनते ही कई लोगों के मन में भूत प्रेत और प्रेत बाधा की कहानियां उभर आती हैं, लेकिन इस दिव्य दरबार की पहचान सिर्फ इतनी नहीं है।
2: % मनोकामना पूरी होती है जब से आए हैं, जब से बाबा की इतनी कृपा हुई हमारे ऊपर कि हम बस वर्णन नहीं कर सकते। सब नेगेटिव एनर्जी क्या ये समझ लो कि आपको सुकून, जीवन में सुकून मिल जाता है।
3: मेरी सारी मनोकामना पूरी हुई है, घर पे मेरे पे टहलने भी नहीं जा सकता है और यहाँ पे मैं दौड़ दौड़ के चलती हूँ।
4: इनका बुलावा रहेगा तभी आ पाएंगे, नहीं तो ऐसे नहीं आ सकते। कितनों आप कोशिश करेंगे नहीं आ पाएंगे जब से इनका बुलावा नहीं रहेगा। हाँ, हम अर्जी लगाए थे तो हम यहाँ पे आए हैं, बालाजी कृपा है। तभी
0: सदियों पुराना ये धाम केवल रहस्य का बिंदु नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ कोई अपने बच्चों के बेहतर भविष्य की प्रार्थना लेकर पहुंचता है, कोई नौकरी की मनोकामना लेकर आता है, तो कोई व्यापार में सफलता की उम्मीद के साथ।
5: यहाँ पर आते हुए हमें लगभग 2-3 साल हुए हैं और बाबा की ऐसी कृपा हुई, गुरुदेव भगवान की ऐसी कृपा आशीर्वाद से हम यहाँ पर जब से आए हैं हमारे दिन दुगनी रात चौगनी कृपा होती रही है और बाबा जी का आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहा है और बरसता रहा है।
0: इस दरबार में अर्जी अलग अलग है लेकिन हर प्रार्थना का पता एक ही है, श्री बालाजी महाराज।
2: जय श्री बालाजी महाराज की जय, भैरव बाबा की जय, प्रेतरा सरकार की जय, समाधि वाले बाबा की जय, दीवान सरकार की जय।
6: मैं यहाँ पर पिछले जुलाई से आ रहा हूँ, यानी 1 साल लगभग हो गया। हाँ, पारिवारिक समस्या जो हमने विचार करके यहाँ आते आना शुरू किए उस पर ये तो नहीं कहा जा सकता है कि पूर्णतया समाप्त हो गए, लेकिन उस पर हम सुधार की तरफ हैं। आशा, मतलब आशा से अधिक। हमारी वाइफ वहीं सुल्तानपुर डाइट पर लेक्चर

0: लेकिन यहाँ से जो बटता है वो नहीं लेना चाहिए।
1: जो नरेशपुरी जी महाराज है यहाँ के, तो उन्होंने भी बोला है कि जो यहाँ पे जो मंदिर में प्रसाद मिलता है उसको हम घर पे लेके जा सकते हैं।
2: ताले के इस रहस्य से हम आगे बढ़े तो मंदिर की दीवारों ने हमें रोक लिया। गेरुए रंग से बने सैकड़ों हथेलियों के निशान हर तरफ नजर आ रहे थे। हमने अलग अलग लोगों से बात की और लगभग हर व्यक्ति ने अलग कहानी सुनाई। किसी ने कहा ये उन श्रद्धालुओं की हथेलियों के निशान हैं जिन्हें यहां आकर मानसिक शांति मिली। कुछ लोगों ने बताया कि संकट से मुक्ति मिलने के बाद श्रद्धालु अपनी हथेली दीवार पर लगाकर घर की ओर जाते हैं। हर उत्तर अलग था लेकिन हर उत्तर में विश्वास की गहराई समान थी। इसी बीच एक और बात लगभग हर श्रद्धालु की जुबान से सुनाई दी, दर्शन करके लौटो लेकिन पीछे मत देखना। जब हमने इसका कारण पूछा तो कुछ लोगों ने बताया ये वर्षों पुरानी परंपरा है, कुछ ने बताया ये सब मनगढ़ंत है।
3: हाँ, इसका कारण है ना इसके पीछे कि बाबा जो लोगों के संकट काट दे, अपना संकट कौन कट के पीछे मुड़ के देखना जाएगा। जो संकट कट गया वो बाबा ने काट दिया, आपको उससे क्या करना, आपका तो संकट कट गया, तो इसलिए आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना। आपको तो जो बाबा ने आप पर कृपा करी है उस कृपा का सुख का आनंद लो, आप बाबा के दर्शन करो और अपने सुख का आनंद लो।
4: अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए बाबा के दरबार में धागा बांध के आते हैं। और ये लोग जो बोलते हैं कि पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए या फिर प्रसाद नहीं खाना चाहिए, ये भी सब गलत बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
5: अमूमन देखा जाता है कि किसी सिद्ध जगह को लेकर प्राचीन मान्यताएं अलग होती हैं और समय के साथ साथ काफी चीजें यूं ही जोड़ दी जाती हैं। हमें ऐसे ही कुछ स्थानीय लोग मिले जिनकी शिकायत थी कि मेहंदीपुर बालाजी धाम को लेकर कई तरह की भ्रांतियां फैला दी गई हैं।
2: इन लोगों का कहना था कि हर सुनी सुनाई बात पर विश्वास करना उचित नहीं, आस्था का सम्मान होना चाहिए लेकिन अफवाह और परंपरा में अंतर भी समझना जरूरी है।
6: ये क्या है, जिनको कोई दिक्कत है परेशानी है उनके लिए नियम है, बाकी आम आदमी कोई दर्शन करने आता है वो प्रसाद भी ले जाते हैं और खूब चले जाते हैं आराम से। और जिनको कोई दिक्कत परेशानी है उनको यहाँ से जाने के बाद जैसे नियम करने पड़ते हैं और वो प्रसाद भी लेकर नहीं जाते। परेशानी दिक्कत वालों के लिए है, आम आदमी के लिए नहीं है। नहीं,
7: भगवान के प्रसाद को ग्रहण करने से घर ले जाने से कुछ फायदा ही मिलता है, ना कि कोई नुकसान। आज तक कभी हमने ऐसा नहीं सुना अगर यहाँ का प्रसाद खाने से किसी के कुछ गलत हुआ हो, न कि आदमी के जो भी कोई बीमारी लगती है। यहाँ के तो वातावरण में ही पॉजिटिविटी है, प्रसाद में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी यहाँ तो सिर्फ एक अफवाह है लोगों की कि भाई प्रसाद में ऐसा, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रसाद लोग घर भी लेके जाते हैं, हम किलो किलो तोल के मिठाइयाँ भर के शोकेस में रखते हैं और लोग खूब लेके जाते हैं हमारे यहाँ से। लेकिन कुछ लोगों जो अफवाहों से ग्रसित होते हैं वो लोग इन चीज़ों को मानते हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रसाद घर नहीं ले जाने से बल्कि फायदा होता है, ना कि नुकसान होता है।
8: ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि प्रसाद नहीं ले जाते, ये तो लोगों ने एक अफवाह बना रखी कि भाई यहाँ का प्रसाद ले जाते हैं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाए वो हो जाए, ऐसा कुछ नहीं।
2: इतना ही नहीं, प्रसाद को लेकर भी अलग अलग मान्यताएं सुनने को मिली। कुछ श्रद्धालुओं ने कहा कि यहाँ का लड्डू प्रसाद घर नहीं ले जाया जाता, तो कुछ लोगों ने स्पष्ट किया कि ये नियम हर व्यक्ति के लिए नहीं।
9: मैं कई सालों से यहाँ पर आने लग रहा हूँ, मेरा यहाँ पे आके बहुत दिल लगता है जी। और हमें यहाँ पे लोग कहते हैं कि यहाँ पे कि पीछे मुड़ के मत देखना चाहिए, वो नहीं देखना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं होती। यहाँ बाबा साथ है तो सब साथ है जी। बाबा के अलावा देखो, आप लोग कई लोग कहते हैं कि यूं हो जाएगा वैसे हो जाएगा, भूत प्रेत साथ ले जाएंगे, बाबा साथ जाना चाहिए, भूत प्रेत कुछ नहीं होते जी।
10: यहाँ पर पीछे मुड़ के ना देखना, प्रसाद ना खाना और तरह तरह की यहाँ की भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एक भगवान का और भक्त का मिलन होता है, जो जिस आस्था से आता है उसको उसी प्राप्ति होती है।
2: हमारी आंखों के सामने आस्था के अनेक

0: रूप थे। कहीं मंदिर के द्वार पर बंधे ताले, कहीं दीवारों पर हथेलियों के गेरुए निशान, कहीं पीछे मुड़कर ना देखने की परंपरा, तो कहीं इन्हीं बातों को लोक विश्वास मानने वाले लोग। मेहंदीपुर बालाजी धाम में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, उतना ही स्पष्ट होता गया कि यहाँ केवल दर्शन नहीं होते, यहाँ विश्वास की अनगिनत कथाएं जन्म लेती हैं। अद्भुत है यहाँ की परंपराएं, अविश्वसनीय है यहाँ से जुड़ी लोक मान्यताएं, और अकल्पनीय है वो अटूट श्रद्धा जो हर दिन देश के कोने कोने से लाखों लोगों को इस दिव्य दरबार तक खींच लाती है।
1: मेहंदीपुर बालाजी धाम के दिव्य दरबार में भगवान हनुमान के बाल स्वरूप की पूजा होती है, और साथ में ही होती है प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा की पूजा। कहा जाता है यहां आने पर तीनों के दर्शन और तीनों के पूजन करना अनिवार्य है।
0: दो ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा एक ऐसा धाम जहां कदम रखते ही सब कुछ बदल जाता है। जयकारों की गूंज, घंटियों की आवाज और हजारों श्रद्धालुओं की आस्था। लेकिन मेहंदीपुर बालाजी धाम की पहचान केवल यहीं तक सीमित नहीं है। सदियों से लोगों का विश्वास है कि यहां संकट मोचन श्री बालाजी महाराज अपने भक्तों के हर संकट को हर

0: कि मैं पिछले 8 साल पहले काफी बीमार हो गया था और 1 महीने में तक मैं बीमार रहा था। डॉक्टरों ने मेरे हाथ में उठा दिया था, रेफर कर दिया था बुलंदशहर से गवर्नमेंट नोएडा जेपी अस्पताल के लिए। लेकिन मेरे माँ बापों ने बाबा मेहंदीपुर बालाजी धाम के लिए पैसे उठा के रखे थे मेरे ऊपर से। बाबा ने ऐसी कृपा सुनी थी, मैं 5 दिन में अपने घर पहुंच गया था वापस। और फिर मैं बाबा के दरबार में आया था, मेरे पापा ने मुझे प्रसाद चढ़वाया था, मतलब साथ में हम आए थे सब और प्रसाद चढ़वाया था। मेरा परिवार हर महीने आता है, 30 के 30 दिन का मतलब नागा का आता है, हर महीने आता है मेरा परिवार।
1: धाम में विराजमान बालाजी महाराज संकट मोचन हनुमान के बाल स्वरूप है। मान्यताओं के अनुसार ये प्रतिमा किसी शिल्पकार ने नहीं बनाई बल्कि ये स्वयंभू है। कहा जाता है कि ये मूर्ति लगभग 1000 साल पुरानी है।
2: बालाजी महाराज यहाँ अपने बाल रूप में विराजमान है और उनकी एक चमत्कार है कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी से ग्रसित लोग यहाँ आते हैं उनको पॉजिटिविटी फील होती है।
3: बालाजी महाराज की अरदास करते हैं, आने के पहले दरखास्त लगती है, अर्जी लगती है, सामनी भंडारा लगता है और भी कई चीज़ें लगती है। यहाँ चोला चढ़ाया जाता है, यहाँ 3 चोले चढ़ते हैं सप्ते में, सोमवार बुधवार और शुक्रवार 4 से 6 के बीच में मंदिर बंद रहता है, उस पीरियड में चोला चढ़ता है।
1: हम आपको यहाँ ईश्वर के रूप के बारे में और भी अद्भुत बातें बताते हैं। बालाजी महाराज की प्रतिमा पर एक सूक्ष्म छिद्र है जहां से निरंतर पवित्र जल निकलता रहता है। बालाजी महाराज के साथ 2 और देव स्थलों का यहां विशेष महत्व माना जाता है। बालाजी के गर्भगृह के पास है प्रेतराज सरकार, जिन्हें लोक विश्वास में दंडाधिकारी कहा जाता है। मान्यता है कि नकारात्मक और दुष्ट शक्तियों पर न्याय करने का दायित्व इन्हीं के पास है। दूसरे हैं कोतवाल कप्तान भैरव बाबा। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि जैसे किसी राज्य की सुरक्षा का दायित्व कोतवाल पर होता है, उसी तरह इस दिव्य दरबार की रक्षा का दायित्व भैरव बाबा निभाते हैं।
4: मैं पहली बार आई हूँ, मैंने ना वीडियो में बहुत देखा था कि यहाँ पे विजय होता है वो होता है, पर मैं पहली बार आई हूँ, बहुत अच्छा फील हुआ, मन को शांति मिली। जैसे कहते हैं ना जहाँ जाओगे खेलने लग जाओगे, जय होने लग जाओ, कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। मैं पहली बार आई हूँ, डर था मेरे मन में, पर मैंने ये सोचा कि मेरे साथ वैसा ना हो जैसे वो करती हैं ना खेलते हैं वैसे, पर मैंने सोचा पर कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, सब कुछ अच्छा हुआ, पॉजिटिव हुआ।
5: और मैं यहाँ करीब 20 साल से आ रहा हूँ, बाबा के प्रति आस्था है और बाबा पर भरोसा है और खुशी मिलती है बाबा के यहाँ आने से, और जो मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद बाबा का प्रसाद सभामणि है।
1: यहाँ आने वाले श्रद्धालु केवल बालाजी महाराज के ही नहीं बल्कि प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा के भी दर्शन करते हैं। परंपरा के अनुसार तीनों देव स्थलों पर अलग अलग प्रसाद अर्पित किया जाता है। बालाजी महाराज को लड्डू, प्रेतराज सरकार को चावल और भैरव बाबा को उड़द अर्पित किया जाता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि तीनों देवों की कृपा से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव समाप्त हो जाता है।
3: यह 3 देव हैं, बालाजी, भैरोजी और प्रेतराज। अंदर 3 मूर्ति है, बालाजी, भैरोजी और प्रेतराज। अर्जी जो लगती है सबसे पहले बालाजी को लगती, उसके बाद भैरोजी को, फिर प्रेतराज। पहले चावल उधर की लगती थी वो बंद हो गई, अब लड्डू की लगती, वर्षों से चलती आई है जो काम चल रहा है।
6: प्रेतराज सरकार जी है, कोतवाल कप्तान जी है और स्वयं दीवान जी महाराज जी हैं। प्रेतराज सरकार की दया दृष्टि से सभी के देवी पितरों का जो है उद्धार होता है, मुक्ति होती है, शुद्धि होती है।
1: विज्ञान इन मान्यताओं को अपने नजरिए से देख सकता है, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी धाम में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए सबसे बड़ा प्रमाण उनका अपना विश्वास है। लेकिन इस धाम की पहचान केवल आस्था और रहस्यों तक ही सीमित नहीं है। ये केवल प्रार्थनाओं का स्थान नहीं बल्कि हजारों सपनों को नई उड़ान देने वाला केंद्र भी है।
7: शिक्षा के क्षेत्र में मंदिर ट्रस्ट वर्तमान में बालाजी मेहदीपुर बालाजी शिक्षण संस्थान के तहत 7 संस्थाएं संचालित करता है, जिसमें 3 कॉलेजेस हैं, जिसमें एक महिला कॉलेज पीजी कॉलेज है जो राजस्थान विश्वविद्यालय से एफिलेटेड है, एक संस्कृत महाविद्यालय है जो जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय से एफिलेटेड है, एक संस्कृत की संस्था के रूप में गुरुकुल है जहाँ पर आप बैठे हैं, इस गुरुकुल में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से एफिलिएशन लेकर के और बालकों को प्राचीन ज्ञान के साथ साथ आधुनिक विज्ञान को भी संयोजित करके जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ बालक जो है वो अपना दृष्टिकोण विशेष स्तर पर जमीन से जुड़ करके आसमान छूने की ताकत रखने का प्रभाव रखते हैं।
1: यहाँ मंदिर की घंटियों के साथ साथ बच्चों की पाठशाला भी गूंजती है।

0: मेहंदीपुर बालाजी धाम की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? क्या ये केवल सदियों से चली आ रही लोक मान्यताओं का प्रभाव है या फिर करोड़ों लोगों की अटूट आस्था का संकल्प? क्या यहां मिलने वाली शांति केवल मन का विश्वास है या सचमुच इस दरबार में ऐसी दिव्य ऊर्जा है जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता? यहां आने वाला हर व्यक्ति अपने साथ कोई ना कोई सवाल लेकर आता है, लेकिन लौटते समय उसके पास एक जवाब जरूर होता है और शायद यही इस धाम का सबसे बड़ा रहस्य भी है।
1: मेहंदीपुर बालाजी धाम की इस यात्रा में हमने बहुत कुछ देखा। कहीं रहस्य से जुड़ी लोक मान्यताएं थी, कहीं आस्था की ऐसी तस्वीरें जो हर सवाल से बड़ी दिखाई दी। शायद यही मेहंदीपुर बालाजी धाम की सबसे बड़ी पहचान है। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में आज के लिए इतना ही। अनिमेश रंजन और कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: We hope you're loving TuneIn, but are you ready to love it even more? Upgrade to TuneIn Premium for the ultimate listening experience. Remove ads from top news stations.
1: The climate disaster-related death rate. Tornadoes, hurricanes.
0: Enjoy nonstop music with absolutely no commercials. And hit the field for live sports play-by-play from the biggest leagues.
2: Williams keeps it. First down. Touchdown.
0: Ready to upgrade your listening? Sign up for TuneIn Premium now.
3: आगे आगे उधर उधर करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
6: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
3: आगे आगे
7: उधर उधर
3: करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: अनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
6: We are over, Jimmy.
7: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
8: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
9: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: अब बात करते हैं यूपी में चुनाव से पहले छिड़े धर्म युद्ध की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर चढ़ावा चोरी ने पूरी तरह से सियासी रंग ले लिया है, जिसके बाद अब योगी आदित्यनाथ विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को पिछला इतिहास गिना रहे हैं, तो वहीं विपक्ष राम मंदिर के मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा।
1: यूपी में राम मंदिर से शुरू हुआ घमासान अब धर्म की राजनीति तक पहुंच गया है। योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी का इतिहास खंगाल रहे हैं।
2: मंदिरों पे कब्जा करवाते थे लोग, मंदिरों पे कब्जा करवाते थे, और अब कब्जा नहीं, अब उन मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है, और पहले मंदिरों के नाम पर आने वाला पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर खर्च हो जाता था। यही तो करती थी समाजवादी पार्टी।
1: कल योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी में इफ्तार का जिक्र करके समाजवादी पार्टी को घेरा था, तो आज विपक्ष योगी पर गुमराह करने का आरोप लगा रहा है।
3: कैसे नमाज पढ़ सकता है कोई आदमी वहां? ये एजेंडा जो है ये तमाम चीजों से ध्यान भटकाने का है। कैसे नमाज पढ़ सकता है? हम तो कह रहे हैं कि आप सड़क पे नमाज ना पढ़े, चूंकि सड़क सरकार की और सरकार मना कर रही है तो आपकी नमाज जायज नहीं होगी। मैं तो बार बार बोलता हूं, जिस प्रॉपर्टी का ओनर अगर उसको इजाजत नहीं देता तो वहां नमाज ही नहीं हो सकती।
1: 2027 के चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा अब थमता नहीं दिख रहा है। इस बीच राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के कलंक पर अब समिति से जुड़े लोग दुख जता रहे हैं।
4: राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है, व्यवस्था में सुधार होगा, मुझे पूरा विश्वास है।
1: एक और ताबड़तोड़ जांच और एक्शन जारी है, तो वहीं राम भक्तों का भरोसा जीतने की कोशिश भी की जा रही है। चढ़ावा विवाद के बीच राम मंदिर ट्रस्ट जल्द ही सीईओ की नियुक्ति करने जा रहा है, जिसके लिए समिति का गठन भी कर दिया गया है। सीईओ को मंदिर के प्रशासन और वित्तीय प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जिसका उद्देश्य मंदिर के संचालन को अधिक पेशेवर, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। इसके साथ ही सीईओ चढ़ावे के प्रबंधन, श्रद्धालुओं की सुविधाओं, आधारभूत ढांचे के रखरखाव और प्रशासनिक व्यवस्था की भी निगरानी रखेंगे। साफ है कि एक ओर सरकार बार बार भरोसा जताने की कोशिश कर रही है कि वो भक्तों के साथ धोखा करने वालों को बख्शेगी नहीं, वहीं विपक्ष सरकार की पूरी जांच को कटघरे में खड़ा कर रही है। आज तक ब्यूरो।
0: यूपी में राम मंदिर पर घमासान जारी, तो मध्य प्रदेश में लड़ाई बीजेपी बनाम बीजेपी की दिख रही है, जहां दतिया में हो रहे उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा और इसके बाद से कार्यकर्ता भड़क गए।
5: दतिया में टिकट को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा ऐसा फूटा कि वो अपनी ही सरकार की पुलिस से भिड़ गए। मध्य प्रदेश के दतिया में 30 जुलाई को उपचुनाव है। बीजेपी ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। दतिया से आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाने की घोषणा होते ही नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। नेशनल हाईवे पर जाम लग गया, घंटों तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही, पुलिस पर पथराव हुए और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए।
6: मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए, पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं, ऐसा कोई कार्य न करे।
5: आखिर दतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट क्यों कटा? बताया जा रहा है कि दिल्ली के स्तर पर कराए गए सर्वे में नरोत्तम मिश्रा की स्थिति उम्मीद के मुताबिक मजबूत नहीं पाई गई। 2023 में बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को टिकट दिया था, लेकिन वो विधानसभा का चुनाव हार गए। केंद्रीय नेतृत्व ने स्थानीय संगठन और भविष्य की राजनीति स्वीकारता का भी आकलन कराया, इसमें नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी फिट बैठे, जिसके बाद उन्हें दतिया से टिकट दिया गया। बीजेपी ने एक ब्राह्मण नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर दूसरे ब्राह्मण आशुतोष तिवारी को टिकट दिया है, इससे जातिगत और सामाजिक संतुलन बरकरार है। उधर पार्टी का संदेश साफ है कि बीजेपी हाईकमान फिलहाल झुकने के मूड में नहीं है।
7: पार्टी इस प्रकार के सोच समझ के निर्णय लेती है, इसलिए हम डंके की चोट जीतेंगे और नरोत्तम जी भी काम करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं नरोत्तम जी को जानता हूँ व्यक्तिगत।
8: नरोत्तम जी मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता, तो उनको कट्टू साइज तो करनी ही था, कर दिया।
5: दतिया में अब लड़ाई बीजेपी के सामने अपनों से है, जहां अभी तक कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। भोपाल से रवीश पाल के साथ आज तक ब्यूरो।
0: इस पूरे मामले में हमारे सहयोगी रवीश पाल ने खास बातचीत की नरोत्तम मिश्रा से।
9: फैसले को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि मान के तो चला जा रहा था कि आप ही इकलौते उम्मीदवार हैं वहां भाजपा के।
10: पार्टी का फैसला जो होता है वो ठीक ही होता है, उसको अच्छे रूप में ही लेना चाहिए, खराब रूप में नहीं लेना चाहिए, ऐसा मेरी मान्यता है।
9: आप के तो सकारात्मक भाव है, लेकिन आपके जो समर्थक थे जो महीनों से इंतजार कर रहे थे कि जो प्रकरण आया राजन भारती का, मामला कोर्ट में गया, फिर वहां से विधायक की गई, सदस्यता गई, सबको उम्मीद थी, लेकिन जब ये फैसला आया तो उनका गुस्सा साफ तौर पर सामने मिला। हाईवे जाम हो गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ हो गई, पथराव हो गया।
10: हाँ, छड़े का आवेश था, मैंने कल भी फिर उनसे निवेदन किया था, आज भी किया मैंने। जाम वाम की स्थिति नहीं होना चाहिए, कार्यकर्ता वो पेट्रोल डाल रहे थे, वो मुझे दिखाए विजुअल फुटेज, मट्टी का तेल डालते हुए था। धैर्य और संयम का समय यही होता है, यही परीक्षा की घड़ी होती है।
9: आप भोपाल जा रहे हैं तो भोपाल में कोई कार्यक्रम आला नेताओं से आपकी मुलाकात है क्या, प्रदेश अध्यक्ष से या मुख्यमंत्री से या किसी से?
10: अभी तो नहीं, वो भी तो बताऊंगा निश्चित। आप
9: आशुतोष तिवारी को आशीर्वाद रहेगा आपका?
10: सभी को क्यों नहीं रहेगा, कैसी बात कर रहे हैं।
9: हालांकि कैलाश जी ने कहा है कि वो बहुत अच्छे से जानते हैं आपको, उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूं नरोत्तम जी को, पार्टी के फैसले को हमेशा से स्वीकार करते हैं और हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहे।
10: बिल्कुल सही कहा, मैं सहमत हूं।
9: आपके लिए भावुक क्षण है?
10: नहीं, राजनीति में ये सब चलने वाली चीज है।
9: लेकिन एक आखिरी सवाल नरोत्तम जी, चुनाव हुआ 2023 का, फिर लोकसभा आया, फिर राज्यसभा चुनाव आए, फिर कई दूसरी जिम्मेदारियां भी थी, हालांकि न्यू ज्वाइनिंग टोली का आपको संयोजक बनाया गया था, तब काफी लोग जुड़ के आए थे कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में, अब तो भाजपा में
10: लगातार लोकसभा राज्यसभा अध्यक्ष जो भी आप बात कर रहे हैं, ये अंतर्मुखी होकर स्वयं के चिंतन के लिए पार्टी अवसर दे रही है, हमें चिंतन करना भी चाहिए, अच्छी बात।
0: रिलायंस फाउंडेशन के चेयरपर्सन नीता अंबानी को फॉर्च्यून इंडिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहला स्थान मिला है। मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने नीता अंबानी को यह प्रतिष्ठित अवार्ड सौंपा। सम्मान मिलने पर रिलायंस फाउंडेशन ने बयान जारी करके कहा है कि यह सम्मान उनकी दूरदर्शी लीडरशिप, संस्था बनाने और सबके साथ मिलकर विकास करने के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और इस पक्के विश्वास का जश्न है। रिलायंस फाउंडेशन ने कहा कि नीता अंबानी की लीडरशिप में रिलायंस फाउंडेशन ने पूरे भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया है, जिनमें 2,90,00,000 तो बच्चे शामिल हैं।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
11: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

0: TuneIn has all of your favorite audio in one spot. So you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news.
1: After multiple assassination attempts, they can't even get...
2: They're reliable.
3: Always when I need them.
0: To live sports action.
4: One-hand jam by LeBron on the break.
5: That's another three, Steph Curry.
0: And your favorite music.
6: Well, the dawn begins to crack.
0: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
7: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: We are over, Jimmy.
9: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
10: मैं उसको पूरी तरीके से चढ़ावा चोरी अपने में आप जानते हैं, हमारे कोषाध्यक्ष महोदय जो स्वामी गोविंद देव गिरी जी हैं, उन्होंने भी आप सभी से वार्ता की और बताया कि यह अपने में एक तरीके का कलंक है। एक तरीके से राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है, व्यवस्था में सुधार होगा मुझे पूरा विश्वास है, और इस प्रकार की घटनाएं दोहराई नहीं जाएंगी।
11: जिन 8 लोगों की सर गिरफ्तारी हुई है, आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन का दायरा?
10: इसके बारे में मैं कोई भी किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं
12: करूंगा। अन्य ट्रस्टी भी मौजूद रहेंगे?
10: नहीं, ये तो निर्माण समिति की बैठक है। तो निर्माण समिति में LNT TC, राजकीय निर्माण निगम, इंजीनियर इंडिया लिमिटेड इत्यादि इत्यादि के लोग आते हैं।
13: बाबू जी, इसके अलावा राम मंदिर में CEO की नियुक्ति की बात सामने आ रही है, आप
12: काफी चर्चा है, कमेटी भी गठित मंदिर।
10: हाँ, तो वो तो हो
12: गया, ये रिकमेंडेशन एक तरीके से कहा भी था कि इस तरह
10: नहीं, मेरा कोई भी इसमें किसी प्रकार की संस्कृति का प्रश्न नहीं है। ये तो एक उच्चतम स्तर की समिति बनाई गई है, उसमें आपको मालूम है न्यायाधीश उसके अध्यक्ष हैं संभवतः, वह अपना निर्णय संस्तुति सीधे ट्रस्ट को देगी और ट्रस्ट विचार करेगा।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बहस बाजीगर में। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज की राजनीति पर हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनावों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सियासत बहुत गर्म है। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बीच में सियासी जंग छिड़ गई है। दोनों को ऐसा लग रहा है कि जो करना है, ये जो लगभग एक साल बचा है, उसमें कर गुजरना है, ताकि वापसी सत्ता में योगी कर पाए या फिर वापसी सत्ता में अखिलेश यादव कर पाए। यही जंग है। और इसी जंग के कॉन्टेक्स्ट में जब आप इसको समझेंगे तो आप देखेंगे कि यह मुद्दा क्यों सुलग रहा है, क्योंकि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा खूब सुलग रहा है। देखिए, मौजूदा राजनीति में धर्म हो या अन्य मुद्दे हैं, वो अपने अपने तरीके से उठाए जाते हैं। आज विपक्ष चाहता है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा खूब जोर शोर से उठाया जाए। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि धर्म और ईमान की आप चर्चा करते हैं, तो ऐसे में वक्फ बोर्ड में जो चोरी होती है, लैंड ग्रैब होता है, उस मुद्दे को कोई भी विपक्षी नेता आखिर क्यों नहीं उठाता है। तो सबसे पहले हम आपको मोशन बताएं, उससे पहले तालियों के साथ यहां मौजूद जनता का बहुत बहुत स्वागत है। ये वो हिस्सा है जो नीले गमछे वाले लोग हैं, जो ये मानते हैं कि भाई फर्क नहीं कर रहा है विपक्ष, यानी जो ये मानते हैं कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा और वक्फ बोर्ड में लैंड ग्रैब का मुद्दा, दोनों में विपक्ष कोई भी फर्क नहीं कर रहा। आप यही मानते हैं? तो जोर से हिलाओ एकदम सिर हां के साथ और ताली भी बजा लो अपने लिए। और ये सफेद वाले लोग हैं जो ये मानते हैं कि उठा भी रहा है, नहीं भी उठा रहा है, बीच का रास्ता आपने ढूंढ लिया है। शांति प्रिय लोग हैं, बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र में ऐसे लोगों के लिए भी जगह होनी चाहिए। लेकिन जब आप वोट करने जाते हैं तो किसी एक पर तो बटन दबाना ही पड़ता है, लेकिन नन ऑफ दी अबव के लिए भी आपके पास नोटा का भी रहता है। तो तालियों के साथ आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ये है वो हिस्सा जो मानता है कि विपक्ष फर्क करता है, यानी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाता है, लेकिन वक्फ बोर्ड पर जो आरोप लगते हैं उस मुद्दे पर विपक्ष चुप्पी साध लेता। आप यही मानते हैं? तो तालियों के साथ आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का मोशन साफ है, आज का मोशन ये है, चढ़ावा चोरी और वक्फ चोरी, विपक्ष फर्क करता है दोनों मुद्दों पर। लेकिन बहस बाजीगर में हम जजेस को बुलाएं और वक्ताओं को बुलाएं, उससे पहले ये रिपोर्ट।

0: आज की इस बहस का आधार बना है दो धार्मिक मामलों में सियासत के दो अलग अलग नजरिए। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला जैसे ही सामने आया, विपक्ष ने इसे हाथों हाथ लिया। जैसे ही विपक्ष ने घेराबंदी शुरू की, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा पासा फेंका कि पूरी बहस का रुख ही मुड़ गया। योगी ने सीधे विपक्ष की दुखती रग पर हाथ रख दिया। आरोप लगाया कि राम मंदिर पर शोर मचाने वाला विपक्ष वक्फ बोर्ड के भ्रष्टाचार और जमीन कब्जाने के गंभीर आरोपों पर आखिर मौन क्यों धारण कर लेता है। विपक्ष इसे सिर्फ एक डाइवर्जन टैक्टिक यानी राम मंदिर के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश बता रहा है, लेकिन देश की जनता एक कड़वा सच देख रही है। वक्फ बोर्ड पर भ्रष्टाचार और मनमाने तरीके से जमीनें हड़पने के आरोप सालों से लग रहे हैं, पर विपक्ष के रडार पर ये मुद्दा कभी नहीं आता। क्या ये चुप्पी सिर्फ वोट बैंक की मजबूरी है? चोरी तो चोरी होती है, चाहे वो मंदिर के चढ़ावे की हो या वक्त की जमीन की, लेकिन क्या हमारे देश की सियासत घटना का धार्मिक एंगल देखकर अपना चश्मा बदल लेती है? इसीलिए आज हम पूछेंगे कि क्या चढ़ावा चोरी और वक्त चोरी में विपक्ष वर्क करता है।
1: तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए, हमारे तीनों जजेस आ रहे हैं मंच पर। सबसे आगे है विजय त्रिवेदी, वरिष्ठ पत्रकार, सज्जन कुमार साहब वरिष्ठ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और तीन ताल के ताऊ कमलेश किशोर, तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। ताऊ अब कह रहे हैं कि हो गया, कब तक ये मंदिर का मुद्दा और चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर आप बहस करते रहेंगे? लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विपक्ष भी गदगद हो रहा है कि वाह बहुत अच्छा, इस पर करिए जितने दिन बहस करना है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कोशिश की है कि वो बाजी को पलटे, और वो ये कह रहे हैं कि वक्फ चोरी के मुद्दे पर विपक्ष चुप क्यों होता है। तो अब आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं अपने पहले दो वक्ताओं का। तालियों के साथ स्वागत कीजिए आरपी सिंह साहब, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, और ईशान त्यागी, मुझे लगता है डेब्यू कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहस बाजी करने। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। अपनी अपनी टीम लीडर्स के तौर पर आप संभाल लें यहाँ पर, और चौथी कुर्सी पर आप बैठ जाएंगे। आप यही बैठेंगे सिंह साहब? अच्छा ही बैठो, तुसी की कर रहे हो? नहीं नहीं ठीक है, आपके दो आएंगे और आपके भी दो आएंगे। अब आइए अगले दो वक्ताओं को बुला दो। तो आगे आ रहे मनोज काका, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, यानी अखिलेश यादव की पार्टी का मोर्चा ये संभालेंगे, और हमारे साथ जुड़ रहे विष्णु जैन जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए, वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, और राम मंदिर मामले में हिंदू पक्ष को इन्होंने रिप्रेजेंट भी किया है। तो एक लॉयर के तौर पर सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई इन्होंने लड़ी है और राम मंदिर का सपना पूरा हुआ है। आज जब ये मुद्दा उठ रहा है तो इस पर वो क्या कहते हैं वो बोलेंगे। अब आखिरी दो वक्ताओं को बुलाएं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए मोहम्मद फैज खान, कन्वीनर है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। भाई नेता टाइप एंट्री होती है आपकी हर बार। और तालियों के साथ स्वागत कीजिए मसूद फयाज हाशमी साहब, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा शुरुआत करें, जजेस का कुछ कहना हो कुछ इस टॉपिक पर, ताऊ कुछ खास सुनना चाहते हो आप, कुछ ऐसे दिशा निर्देश की रोजाना की तरह मत बोलिएगा, डिबेट में बोलिएगा, टॉपिक पर रहिएगा।
2: हाँ वो आग्रह तो रहेगा ही, ये पुराना आग्रह है मेरा कि कृपया टॉपिक के आसपास ही रहें, राजनीति के बृहद मैदान में न कूद जाएं, फोकस हमेशा इसी पे रहे। और मैं अभी समझना चाहता हूँ कि वक्फ, आपके सवाल में वक्फ चोरी है तो वो क्या है, शायद वो स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि चढ़ावा चोरी तो मुझे स्पष्ट है।
1: लैंड ग्रैब हो या कुछ भी हो, ये आपको समझाना है। टॉपिक पर जो वो बोल रहे हैं उस पे आपको अपना क्लैरिटी, एक हिंट मिला है जज से कि टॉपिक पर रहिएगा। तो बहसबाजी करो, आप छियों से बहुत निवेदन है कि रोज वाली जो चीखा चिल्ली उससे बच के टॉपिक पर दमदार बोलिए, डेढ़ मिनट का आपको टाइम मिलता है। त्रिवेदी जी कुछ?
3: ये कह रहा हूँ कि इस सवाल में दोनों बार, दोनों तरफ से ये बात बार बार होती है कि ये मसला धर्म का आप क्यों बोल रहे हैं। तो ये मसला धर्म का नहीं है, ये मसला चोरी का है।
1: तो मसला करप्शन का है,
3: करप्शन का,
1: भ्रष्टाचार।
3: तो करप्शन पर कौन अलग थोड़ी है, सब लोग सब तरफ से बोले। बार बार हम लोग कहते हैं नहीं इस पर नहीं बोलना चाहिए, क्यों आप क्यों बोल रहे हैं?
4: करप्शन में सिर्फ एक आंख से मत देखो ना।
1: लीजिए सिंह साहब ने जजेस के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया।
4: दोनों तरफ
1: चलिए ठीक है साजी।
3: दोनों भाई
5: इसमें चार पक्ष हैं, एक तो कानूनी पक्ष है, दूसरा व्यक्तिगत और सार्वजनिक नैतिकता की पक्ष है, तीसरा जो धार्मिक आस्था है उसकी बात है, और चौथा राजनीतिक पक्ष है। तो जब भी ये हम लोग अपेक्षित है कि जब भी बोले तो सारे पक्ष एक दूसरे से सरोकार हों, उनमें एक इंटरप्ले हो, ये ना कि एक पक्ष पे बिल्कुल एकांगी तरीके से जोर हो।
1: तो आइए शुरुआत करते हैं। आरपी सिंह और ईशान त्यागी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ रहे हैं। 90-90 सेकंड का समय दोनों को मिलेगा अपनी बात रखने के लिए। कितने दमदार अंदाज में वो आज बहस बाजीगर के इस मोशन पर बोलते हैं, अपने पक्ष को रखते हैं, इसी पर जजेस भी उनको मार्क करेंगे और जनता भी कन्विंस होगी नहीं होगी। आपके पास ऑप्शन है, नीले गमछे वाले सफेद या लाल ले सकते हैं, लाल वाले सफेद या नीला ले सकते हैं, और सफेद वालों के पास दोनों तरफ का ऑप्शन है, या फिर आप अपने गमछे के साथ रह सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और इस मोशन पर बोलने का। ईशान त्यागी जी, आपका 90 सेकंड का समय शुरू होता है।
6: देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जब भी वो फंसती है, किसी मुद्दे पे फंस जाती है, तो वो हिंदू मुसलमान करती है। जब भी चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करती है। यहां तक कि जब पहलगाम का हमला हुआ और 26 माताएं बहनें हमारी विधवा हो गई वहां पर, तब भी पाकिस्तान के एजेंडे में फंस के भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुसलमान किया। जिस तरीके से इस मुद्दे पर भी भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करने की वक्फ को लाके कोशिश कर रही है, अपनी चंदा चोरी को छुपाने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से जमीन में धांधलबाजी करी विश्व हिंदू परिषद ने, आरएसएस ने, बीजेपी के लोगों ने, उसमें भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान लाके चोरी कर रही है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि कृपया मुद्दे से भटकिएगा मत, चोरी पर सवाल पूछते रहिएगा। दूसरी बात, धर्म जो है हमारी आस्था का विषय है। मैं क्या पहनूंगा, क्या खाऊंगा, किसके घर जाऊंगा, किसके साथ बात करूंगा, यह मेरा अपना विषय है, मेरा पर्सनल मैटर है। भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के लोग नकली ठेकेदार बने हुए हैं धर्म के, और उनको यह कोई अधिकार नहीं है। प्रभु श्री रामलला को मोदी जी बड़े हैं, उनसे कदम दिखाए गए हैं और उनको उनकी उनकी उंगली पकड़ के उनको मंदिर ले जाने का काम कर रहे हैं। क्या ये हिंदू धर्म का अपमान है कि नहीं है, मुझे ये बताइए। दूसरी बात, मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से नितिन नवीन के रथ के सामने प्रभु हनुमान जी को नचाया गया वहां पर और उनको भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़ा दिया गया, क्या ये हिंदू धर्म का अपमान है कि नहीं है। युवा यहां बैठे हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है आज की डेट में, उसके बाद पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा है आज की डेट में, सीबीएसई ओएसएम में धांधली हुई वो सबसे बड़ा मुद्दा है आज की डेट में, E20 पेट्रोल में सरकार धांधलीबाजी कर रही है और गाड़ियां खराब हो रही है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। इन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी चुप है।
1: ओपनिंग बैट्समैन ने इधर से धुआंधार बल्लेबाजी की है। चलिए सिंह साहब, इस विषय पर बोलने का 90 सेकंड का समय आपका शुरू होता है अब।
7: मेरे 90 सेकंड में मैं बोल नहीं रहा सर, एक वीडियो सुना रहा हूँ, सुनना चाहिए, उसी से सारा परफेक्ट समय हो जाएगा।
8: काबरी मस्जिद पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, तो नहीं मार सकता था। फिर भी मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने काबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की, वो गुंबद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके, ये रिकॉर्ड। और इस बात का समाजवादी पार्टी और उसके नेता को न कभी अफसोस था और न रहा है, रहेगा, चाहे उसको मौलाना मुलायम सिंह कहे, चाहे मुल्ला मुलायम सिंह कहे, चाहे हिंदू मारे, चाहे हिंदू थमाने, चाहे हिंदू को देर को, चाहे नदी। लेकिन जिन्हें आप रामलला कहते हैं, क्या मस्जिद में वो अनऑथराइज डॉक्यूमेंट इस देश में?
7: जिन्हें आप रामलला कहते हैं वो उस मस्जिद में अनऑथराइज ऑक्यूपेंट है या नहीं है, ये कह रहे हैं कहां पे? पार्लियामेंट के अंदर। रामगोपाल यादव जी जो आज कह रहे हैं 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, मेरा चैलेंज है रामगोपाल यादव जी को, कृपा कर अगर आपके पास साक्ष्य हैं एसआईटी के सामने जाएं। अगर आपको दिक्कत हो रही हो, मैं आपके साथ एसआईटी पे चलने को तैयार हूं। अगर आपके पास वकील नहीं है तो देश के अंदर जो सबसे बड़ा वकील हो आप उसको हायर करिए, उसकी फीस मैं दूंगा। साक्ष लेकर आइए, अगर केस जीत गए तो फीस मेरे जिम्मे, अगर हार गए तो फीस भी दीजिएगा, डिफेमेशन भी फेस करिएगा। क्या कि ये राजनीति करने आ गए हैं, ये राजनीति करने आ गए हैं। कभी इनमें से किसी एक ने बोला कि आगरा के वक्फ बोर्ड के अंदर 50 लाख का घोटाला हुआ, 50 लाख का भी?
1: समय समाप्त हो गया आपका। चलिए भाई, दोनों तरफ से धुआंधार धुआंधार बल्लेबाजी हुई है। नहीं, आपका टाइम समाप्त हो गया, बीच में फिर मौका मिलेगा आपको। एक मिनट में
7: मुझे बदल का फोन ही छीन लिया क्या कहीं मेरा?
1: बैठिए यही रुके। कुछ सवाल आप तीनों का, मुझे लग रहा है इनसे ज्यादा कह रहे हैं फोन सुरक्षित रख रहे हैं, आपके पास था और आप ही को चुना है उन्होंने। कोई सवाल हुआ आप दोनों का इनसे?
2: फोन सुरक्षित है।
6: एक सेकंड, उनकी आदत है ना कि जहाँ पे जो संस्था होती है, जैसे इनकम टैक्स को सेट कर लिया, सीबीआई को सेट कर लिया, ईडी को सेट कर लिया, इलेक्शन कमीशन को सेट कर लिया, उसी तरीके से जजेस को भी सेट करने की बीजेपी कोशिश कर रही है।
1: हमारे जजेस को अपनी पार्टी के विधायक और सांसद मत समझिए। जो चले जाएंगे किसी के दबाव
6: में। उसी में चंदा चोरी का पैसा इस्तेमाल किया है।
1: देखिए आप उन पर क्यों आरोप लगा रहे हैं, आप
6: उनकी बात नहीं कर रहे,
1: कुछ भी कर रहे हैं। अरे बाप रे, आप लोग अपना ड्रामा बंद कीजिए भाई।
6: मुझे तो मालूम है जस्टिस निष्पक्ष है,
7: मैंने डर के मारे
1: जेल में
6: साहब उनको सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात पे मुझे आपत्ति है, जिस तरह की
1: इलेक्शन जजेस भी बोल रहे, कुछ
2: एक एक करके बोले। मैं एक चेतावनी नहीं है, मैं अनुरोध करूंगा कि ईशान जी बहुत अच्छा बोले, पर फिर वही कि अभी बेरोजगारी का मुद्दा है, नीट का मुद्दा है, सीबीएसई का मुद्दा है। हमने शुरू में ये एक तरह से आग्रह किया था कि इसको चढ़ावा चोरी और जिसको आप वक्त चोरी कह रहे हैं इसी के इर्द गिर्द रहे तो बेहतर है। उस तरह से देश में बहुत मुद्दे हैं, जैसे बारिश हो गई तो बाढ़ आ गई, कहीं पुल टूट गए,
3: बहुत सारे मुद्दे जो आपने गिनाए ना वो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। लेकिन जब कोई इशू जैसे डिबेट हो रही है आज अंजना जी ने जिस विषय पर, यदि हम उससे डिविएट करते हैं तो उसमें कई बार लगता है कि आपके पास उससे लड़ाई करने के लिए मजबूत तर्क नहीं है। कई बार ऐसा लगता है, मतलब
1: जवाब लूंगी आपसे। आप
5: मुद्दों पे केंद्रित रहें। और दूसरी बात यह है कि बाकी पक्ष के आपके जो विपक्ष वाले लोग जो कह रहे हैं, जो तर्क दे रहे हैं, उसको भी काउंटर करने की कोशिश करें, ना कि केवल अपना पक्ष रखें।
1: पहले अब इसका जवाब देने का आपका समय, आप बोल लीजिए।
6: सबसे पहले मुझे मौका दिया गया, उसके लिए सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैंने यही बात बोली कि भारतीय जनता पार्टी इस डिबेट में वक्फ बोर्ड को लाके जिस तरीके से वो बाकी मुद्दों पर डेविएट करने का काम करती है, अगर आप नौकरी मांगेंगे तो आपको अर्बन नक्सल कहला दिया जाएगा, अगर आप किसान आंदोलन करेंगे तो उनको भी अर्बन नक्सल कहला दिया जाएगा, उनको खालिस्तानी कहला दिया जाएगा। उसी तरीके से बीजेपी इस मुद्दे से भी डेविएट करने के लिए वक्फ को बीच में लेकर आई है, जिससे हिंदू मुसलमान उसमें वो कर सके। और आपका ध्यान इस मुद्दे से हटा के कि प्रभु श्री राम के मंदिर में इन्होंने चोरी करी, डाका डाला, जमीन के घोटाले किए, और उसके बाद अब आरोपियों को भी बचाने का काम कर रहे हैं, जिससे आप ये सवाल ना पूछे, इसीलिए ये वक्त का मुद्दा लेकर आए हैं और ये डिविएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। और रही बात आखिरी 5 सेकंड, योगी आदित्यनाथ जो हैं वो हमने देखा है किस तरीके से ब्रांड एम्बेसडर हैं इनकी हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स का, हमने देखा है उन्होंने किस तरीके के भाषण दिए, 80-20 की भी बात करी है। तो आप समाज को, आप युवा हैं, समाज को बटने मत दीजिए, ये लोग बांटने की कोशिश करेंगे, देश को पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे, आप पे दारोमदार है, आप अपने मुद्दों पे अड़िग रहिए, लेकिन कभी भी आप हिंदू मुसलमान पे बटिए मत, समाज को बटने मत दीजिए।
1: अब आपके पास आते हैं सिंह साहब। सिंह साहब,
7: इन्होंने खालिस्तान की
1: आपने अटैक किया चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर, आपने उनको नकली हिंदू भी कहा, सब कहा, लेकिन वक्फ चोरी क्या है और वक्फ चोरी पर एक्शन भी तो योगी जी को ही लेना है ना, तो एक SIT गठित कीजिए, शुरू कीजिए, पता तो चले।
7: मैं FIR की कॉपीज लेकर आया हूं, जो FIR दर्ज हो चुकी हैं, ये FIR 1, FIR 2, FIR 3, मैं FIR की कॉपी लेकर आऊं। 50-50 लाख रुपए के घोटाले हैं। इनके एक नेता हैं, उनका नाम था आजम खान, यतीम खाने की जमीन थी जो वक्फ के लिए थी वो हड़प कर ली, 62 एकड़ कोई जमीन थी दलितों के नाम की उसको हड़प कर लिया, 16 एकड़ कोई सरकारी जमीन थी उसको हड़प कर लिया, 35 एकड़ एक और वक्फ की लैंड थी उसको हड़प कर लिया, 100 एकड़ शत्रु संपत्ति थी उसको हड़प कर लिया, 150 एकड़ ग्राम सभा हड़प कर ली। ये इनके नेताओं के कारनामे हैं, उनके ऊपर सब FIR मुकदमे चल रहे हैं, परंतु इसके बारे में कभी टोका नहीं। अच्छी बात नहीं, रखो ये, अब ये कौन, ये अर्बन नक्सल कौन है, अर्बन नक्सल कौन है, ये अर्बन नक्सल कौन है पता लगता होगा ना जी, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा।
6: फिर वही सवाल पूछ रहा हूं तो अर्बन नक्सल बोलेंगे, ये आपको भी बोल सकते हैं, अगर आप नौकरी की बात करेंगे ना, आप बेरोजगारी की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे, तो आपको भी अर्बन नक्सल बोला जाएगा, जिस तरीके से भी मुझे इस डिबेट में बोला गया। आपकी डबल
1: आप अपने टाइम में भी बोलेंगे और इनके टाइम में भी आप ही बोलेंगे,
6: मुझे तो अर्बन नक्सल नहीं बोलते, रुक
1: जाइए ना, लेट हिम, आप बीच में मत बोलिए, हाथ उठाइए, मैं फौरन समय दूंगी, जल्दी से कंप्लीट कीजिए 2 लाइन में।
7: इन्होंने खालिस्तान की बात करी, मैं आज इस डिबेट में सबके सामने कह रहा हूं, अगर खालिस्तान की कोई जननी है तो कांग्रेस पार्टी है, मिसेस गांधी और संजय गांधी खालिस्तान की जननी थी, इस देश को जो प्रकोप सहना पड़ा खालिस्तान का वो कांग्रेस के कारण से सहना पड़ा।
1: क्योंकि डायरेक्ट आरोप है, छोटा सा रिस्पांस,
7: और ये मैं साबित कर सकता हूँ किसी भी कोर्ट के अंदर कहीं भी ये मेरे खिलाफ मुकदमा करें, मैं साबित कर दूंगा कि देश के अंदर जितनी दिक्कतें आई उसके अंदर जननी अगर रही तो कांग्रेस पार्टी रही है।
1: छोटा सा जवाब,
6: जिन इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 हिस्से करने का काम किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, देश को बहुत कुछ दिया, उसी उन्हीं इंदिरा गांधी को सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नुकसान नहीं था ये सब करने का, और जिन खालिस्तानियों की ये बात कर रहे हैं उनको अपनी जान से कीमत चुकानी पड़ी, उनको गोलियों से छलनी कर दिया गया, जिन इंदिरा गांधी की ये बात कर रहे हैं।
7: अब खालिस्तान का सबसे बड़ा चेहरा था,
1: एक एक मिनट का टाइम मिलेगा बस सोच के आइए छूटे नहीं कुछ जैसे अभी लग रहा है इतना बोलने के बाद भी छूट गया है दोनों का कुछ कुछ तालियों के साथ स्वागत कीजिए अगले दो वक्ताओं का जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं विष्णु जैन और मनोज काका जी विष्णु जी आइए मनोज काका जी आइए
9: ये जो जजों का निवेदन था मैं उसी से शुरू कर रहा हूँ
1: 90 सेकंड का समय
9: तू इधर उधर की ना बात कर ये बता कि मंदिर क्यों लूटा और जो अमानतों का अमीन था वो कहाँ छुपा ये सीधा सीधा सवाल है इधर उधर बलकराइए मत अब ये बताइए कि चंपत राय ने जो बहुत बड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मर्यादा के साथ और उनके ईमान के साथ और हजारों वर्षों से आ रही भारत के परंपरा के साथ जो धक्का लगा है उसका जिम्मेदार कौन है चंपत राय का चयन किसी विपक्ष ने नहीं किया था इस देश के युवाओं ने नहीं किया था किसी पत्रकार ने नहीं किया था बल्कि चंपत राय का चयन इस देश के सरकार ने नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कैबिनेट के बैठक करके सारे सदस्यों का ट्रस्ट के सदस्यों का चयन किया था और उसी में चंपत राय का भी चयन किया था इसलिए सबसे ज्यादा जो सवाल है वो ट्रस्ट पर है ट्रस्ट ही सबसे बड़ी भ्रष्ट है इसलिए भ्रष्ट है कि जो रिपोर्ट आई है आपके खुद संस्थान ने छापा है इंडिया टुडे की मैगजीन ने छापा है सिर्फ वो 27 मई से 40 दिन में 70 बार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को लूटने वाले चोर चोर जो गांव में कहावत है कि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं वो अपने लोगों का बचाव कर रहे हैं 40 दिन में 70 बार भगवान राम को लूटा गया उनके मुकुट लूटे गए उनके खड़ाऊं लूट लिए गए सोने की ईंट लूट ली गई सोने चांदी के बहुत सारे गहने और जेवरात लूट लिए गए लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं जो झूठों के सरदार हैं वो जो बात है कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है और दरवाजे पे लिखा हुआ है कि सच बोलो ये लोग तस्वीर लेके
1: समय समाप्त हो गया बहुत अच्छा मिडिल ऑर्डर ने भी जबरदस्त अच्छा बोला अपने तो कभी तो संतोष भी जाहिर कीजिए इनको भी उतना ही समय मिलेगा विष्णु जैन जी इस विषय पर चढ़ावा चोरी टॉपिक फिर से बता देते हैं अगर कोई भूल रहा है तो चढ़ावा चोरी और वक्फ चोरी में विपक्ष फर्क करता है इस पर बोलने का आपका 90 सेकंड का समय शुरू होता है आप
10: देखिए मैं तो पेशे से वकील हूं और मैं अपनी बात एक लीगल फ्रेमवर्क में रखूंगा बिना कोई पॉलिटिकल पार्टी के एक आइडियोलॉजी के और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है इस सारी चीज में जो चीज हम मिस कर रहे हैं वो है कि व्यवस्था की बहुत बड़ी कमी है मैंने स्वयं राम मंदिर के केस में मैं रहा जैसा कि आपने बताया था और आज बहुत ज्यादा ग्लानी और दुख मुझे महसूस हो रहा है और जो बात आप यहाँ पे हो रही है कि वहां पे चंदा चोरी हुई उसको मैं जस्टिफाई नहीं करना चाहता हूं ये बोल के कि समाजवादी पार्टी ने क्या किया इन्होंने क्या कहा गलती हमारे अंदर है और इसको हमें अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा नहीं तो ये गलतियां आगे और होती रहेंगी और ऐसी डिबेट चलती रहेंगी इसका मूल सोल्यूशन क्या है उस सोल्यूशन पे मैं आना चाहता हूं बिना कोई पार्टी लाइन के आप इस बात को सोचिए अगर आज वफ कोई गलत काम कर रहा है आज मंदिरों में कोई गलत काम हो रहा है मिस एडमिनिस्ट्रेशन मेल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है तो उसका मूल कारण है कि जो हमारी कानूनी सेटअप है जो कानूनी स्ट्रक्चर है उसके बारे में कोई बात नहीं की जाती है आज जो मंदिर अधिग्रहण के जितने कानून है वो किस लिस्ट में आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं उसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है उसके बाद भी आज कर्नाटक में 35,000 मंदिर सरकार के कंट्रोल में जहां पे मेल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो संतों के कंट्रोल में है हमारे हिंदू समाज के कंट्रोल वहां पे मिसमैनेजमेंट हो रहा है बहुत सारी ऐसे वफ की जगह हैं जहां पे वफ को अपार शक्तियां गई हैं दी गई हैं जिसकी वजह से मिसमैनेजमेंट हो रहा है तो इसका सलूशन क्या है सलूशन ये है कोई जो लीगल फ्रेमवर्क है उसमें कोई बात ही नहीं करता है सलूशन ये है कि आपको एक ऐसा सेटअप बनाना पड़ेगा कि आप टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करें और लेस ह्यूमन इंटरवेंशन हो तब जाके ये चीजें खत्म होंगी
1: जबरदस्त मुझे खुशी इस बात की है कि जब एक वरिष्ठ अधिवक्ता आता है तो वो फिर दलीलों के साथ बात करता है और ये शायद सबके लिए एक वो है कुछ सवाल आप दोनों का इनसे और एक एक सवाल मैं तीनों ऑडियंस से भी लूंगी नहीं आज तो अति संतुष्ट दिख रहे हैं ये तीनों जजेस
2: काका जी जो है हाँ। वो राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता है हाँ। तो उन्होंने अच्छा अटैक किया और फोकस्ड रहे इन्होंने ध्यान उस पे नहीं उस चोरी पे नहीं दिया जो दूसरा है क्योंकि ये इनका राजनीतिक पक्ष है और उनको हक है और विष्णु जी
1: बोलते भी अच्छा है काका
2: और विष्णु जी जो हैं उन्होंने बेहतरीन सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात की
1: मुझे लगता है इसी
2: कोई भी समाधान के बारे में बात नहीं
1: बोले तो दोनों तरफ से ताली बजी तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा कोई सवाल आप लोगों का हो जो पूछना चाहते हैं तीनों पक्ष से अच्छा
11: तो मेरा सवाल है कि वक्फ बोर्ड एक ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग लॉ के अंडर फंक्शन करता है, और राम मंदिर के लिए इनफैक्ट अभी कोई वैसा स्पेसिफिक लॉ तो नहीं है हमारे पास. तो अगर राम मंदिर के चोरियों को क्वेश्चन किया जा रहा है, ट्रांसपेरेंसी पे क्वेश्चन किया जा रहा है, तो वक्फ बोर्ड को तो ऑलरेडी एक लीगल एक्ट गवर्न करता है, तो उस पर और लीगली जांच होनी चाहिए. अगर आप ट्रांसपेरेंसी की बात राम मंदिर से करते हैं तो वहां तो लीगली और जांच होनी चाहिए, इनफैक्ट क्योंकि जब एक गवर्निंग बॉडी है उसके लिए, तो उस पर आपका क्या कहना है?
1: और इधर से कोई सवाल? नीले गमछे की तरह से कोई प्रश्न नहीं है आज? आज आप लोग सफेद गमछे वाले मुद्रा में आ गए हैं. सफेद वाले में से किसी का आज मुझे लगता है कि बहुत ही संतोषजनक. आप पूछिए.
3: जैन साहब, आपने बहुत अच्छे से बात को रखा और देश भर के मंदिरों की बात की, तो जो देश के बड़े मंदिर है मैं उनको स्टडी कर रहा था, वो सब के सब मोटे तौर पर सरकार के नियंत्रण में है.
5: करेक्ट.
3: केवल जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट है वो नहीं है. तो क्या इस ट्रस्ट को भी इस तरह के अधीन होना चाहिए सरकार के नियंत्रण में, और आज की स्थिति में क्या इसे ट्रस्ट की बजाय एक परिवार का संगठन मान के देखते हैं?
10: देखिए, मुझे आपने सर बहुत अच्छा सवाल पूछा और आपको मैं नमन करना चाहता हूं. सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज मैं आप सारे लोगों के सामने ये मुद्दा रखना चाहता हूं कि हमने ये देखा कि अगर मंदिर किसी प्राइवेट बॉडी के कंट्रोल में तो वहां पे भी मिसमैनेजमेंट हो रहा है, अगर मंदिर सरकार के कंट्रोल में है तो वहां पे भी मिसमैनेजमेंट हो रहा है. तो क्या व्यवस्था बनाई जाए जो आदर्श व्यवस्था हो? आज ये जितनी राजनीतिक डिबेट्स हो रही हैं ये डिबेट्स ही खत्म हो जाएंगी अगर आज हमारा एक स्ट्रक्चर एकदम ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता सारे मंदिरों का. उसके लिए क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से जो मैं सोल्यूशन समझ पाता हूं, इसमें सरकार का भी इंटरवेंशन होना चाहिए. इसमें जो प्राइवेट बॉडीज हैं, संत हैं, महात्मा हैं, जो वहां के पुजारी हैं, जो हेरिडिटरी तरह से वहां पे पूजा पाठ करते आ रहे, उनका भी इसमें हस्तक्षेप होना चाहिए. और साथ ही साथ बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवेन होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मंदिर में पैसे नहीं है, बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारे डोनेशन है. और एक बात मैं और रखना चाहता हूं, जो लड़ाई है पूरी, इस बात को जरा समझिए, जो पूरी लड़ाई है वो इस बात की है कि जब मंदिरों में पैसा आता है वहां पे लड़ाई होती है, जिन मंदिरों में पैसा नहीं आता उसकी तो बात ही नहीं हो रही है. इसलिए ये सारी बात समझिए, ये मनी ओरिएंटेड है और मनी का मैनेजमेंट कैसे किया जाए. जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बताइए कि जो मंदिरों में पैसा आ रहा है, कितने मंदिरों ने उन पैसों से, उस चंदे से गौशाला बनाई, कितने मंदिरों ने कैंसर हॉस्पिटल बनाए, कितने मंदिरों ने एजुकेशन सेंटर्स बनाए, कितने मंदिरों ने लोगों को भोजन पानी सारी चीजों की व्यवस्था की. करी भी है और भी होनी चाहिए. तो एक ऐसा आज हम आज तक के इस प्रतिष्ठित चैनल पे हम लोग सारे लोग हैं, तो एक पॉजिटिव दिशा में इस पूरी चर्चा को ले जाएं कि हम सारे लोग अपने अपने सजेशंस दें. मैं सुप्रीम कोर्ट जाने वाला हूं इस मामले को लेके, हम सारे लोग अपने सजेशंस दें और एक मॉडल स्ट्रक्चर, एक लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग करके, जुडिशियल ड्राफ्टिंग करके, पूरे देश के लिए ऐसे एक मॉडल स्ट्रक्चर खड़ा करें कि आगे आने वाले समय में ऐसा ना हो. सिर्फ और सिर्फ सरकार को मंदिर देना सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट बॉडीज को मंदिर देना सोल्यूशन नहीं है, एक मिक्स्ड स्ट्रक्चर लेके हमें चलना पड़ेगा.
1: बहुत अच्छा. और ये बहुत दुख की बात होती है कि अब देखिए बद्रीनाथ मंदिर में भी, वहां पर भी एफआईआर दर्ज हुई है चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर. सबरीमाला में हाई कोर्ट ने कहा 4 किलो सोना उड़ा लिया गया, और जानते हैं क्या करते हैं? मूर्ति को बाहर भेजते हैं उसकी सफाई के नाम पर, और सोने की परत हटा लेते हैं और पतले परत के साथ लौटा देते हैं. इस हद तक की चोरी हो रही है. लेकिन इसी के साथ साथ आज ये मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कहा कि अगर वक्फ की प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल हो तो 12,000 करोड़ तो आप सालाना रेवेन्यू इनकम कर सकते हैं उससे. तो ऐसा है कि धर्म की आड़ पर उधर भी आड़ देकर उधर भी बचाने की कोशिश होती है, इधर की भी. और इस पर अगर जब तक खुले दिमाग से नहीं बात होगी, वोट बैंक की पॉलिटिक्स होगी, तब तक मामला फंसा रहेगा. तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद. लेकिन उससे पहले एक सेकंड, उस बच्ची का जवाब नहीं मिला.
12: देखिए,
1: उसने सीधा वक्त पे
12: बिटिया ने जो सवाल किया था, बहुत वाजिब सवाल किया था, उसके संज्ञान हेतु मैं बता देना चाहूंगा कि जो वक्फ बोर्ड होती है उसका सरकार में, केंद्र सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. तो बेहतर बात है, और साथ ही से हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि अगर मंदिरों से जो चढ़ावा आ रहा है अधिकार उनसे जन सरोकार के कार्य किए जाएं, अगर अच्छा हॉस्पिटल बन सके और धर्मार्थ कार्य के लिए अच्छे अच्छे विद्यालय बन सके, वहां से अच्छे लोगों का और अच्छे प्रतिभाओं का हमारी बहनें और बेटियां निकले, कहीं ऐसी ना व्यवस्था बने कि 15 के 15 बच्चे धू धू करके जल के मर जाएं और मुख्यमंत्री से संवेदना का एक शब्द भी ना निकले. तो इस तरह के मुख्यमंत्री और इस तरह के नेता भी नहीं होने चाहिए कि हमारे बच्चे किसी कोचिंग में जल के मर जाते हैं और जब जल के खाक हो जाते हैं. वो कोई बच्चा हो सकता है, चाहे वो नीले गमछा वाला हो सकता है, चाहे वो लाल गमछा वाला हो सकता है, लेकिन वो जलेगा, जल के जब खाक हो जाएगा और जब उनके घर का कोई अभिभावक जाएगा पूछेगा कि बच्चा कैसे जल गया, तो हमारा ऐसा मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए जो संवेदित होने के बजाय कि ये कहे कि अरे तुम भाषण मत दो। ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग संत कहते हैं अपने आप को, और ऐसे लोग चोला ओढ़ लेते हैं। तो चोला ओढ़ने वालों से और राम रहीम और आसाराम की तरह साधु बनने वालों से भी देश के लोगों को, हमारे माताओं बहनों को और युवाओं को खास करके सचेत रहना।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, तालियों के साथ। मिडिल ऑर्डर ने अपनी अपनी टीम के लिए अच्छी बल्लेबाजी की है, अब फिनिशिंग टच के लिए आ रहे हैं। आइए मोहम्मद फैज खान साहब, आइए मोहम्मद फैज खान साहब आ रहे हैं, और मसूद फयाज हाशमी साहब।

0: जवानों को भटकाना चाहती है। अभी यहां अंजना जी आपके पास उतर के गई और उन्होंने पूछा कि आप सवाल करो, आप सवाल करो, आप सवाल करो, लेकिन मैं दंग रह गया कि किसी नौजवान ने हाथ नहीं उठाया सवाल करने के लिए। क्या हाथ उठाएंगे जब वो देख रहे हैं कि उनकी आस्था लुट चुकी है, उनको बर्बाद किया जा चुका है, उनको धर्म के नाम पर लूटा गया है और तो और उनका चिंता लूट लिया गया, तो वो क्या सवाल करेंगे इस। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, टाइम खत्म हो रहा है, कि वक्फ को इसमें शामिल किया गया। मैं बताना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड किसी मुसलमान वक्फ बोर्ड पर चुन के नहीं बेचते। वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष और चेयरमैन होते हैं वो वहां की मौजूदा सरकार बनाती है, तो इसकी जिम्मेदारी मुसलमानों पर आयद नहीं होती। अब हम बाकी बात बाद में,
1: समय समाप्त हुआ, आपको रिबटल टाइम भी मिलेगा। अब आपका इस विषय पर बोलने का फैज खान साहब, शुरू हो रहा है समय 90 सेकंड का अब।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की। चाहवा चोरी और वक्फ चोरी में विपक्ष फर्क करता है जी, बेशक फर्क करता है। आप देख सकती हैं अंजना जी, विपक्ष के जितने प्रवक्ता है केवल मंदिर के संबंध में चोरी की बात की, वक्फ की चोरी की बात नहीं की, जबकि 58,000 वक्फ प्रॉपर्टियों पर अवैध कब्जा है और 2,00,000 करोड़ से अधिक का घोटाला है। सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, ईडन गार्डन हो और दिल्ली का संसद भवन हो, उस पर वक्फ अपना दावा ठोक रहा है, लेकिन विपक्ष चुपचाप बैठा हुआ है। यह तो अच्छी बात है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आ गया, नहीं तो आज संसद भवन और ईडन गार्डन सब कुछ पर दावा ठोककर ले चुके होते। तो आप बात कीजिए विषय पर। अंजना जी थोड़ा सा इस बात को विस्तारित करना चाहूंगा, ये वक्फ चोरी पर बात नहीं करते, ये बात इस पर भी नहीं करते कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की वोट चोरी हुई थी 1955 पे, भारत रत्न की भी चोरी हो गई थी और सेना की अस्मिता और सम्मान की भी चोरी हुई थी जब उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया था, और सुनिए शाहबानों के हक की भी चोरी हुई थी, और बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है टोटी की भी चोरी हुई थी, लेकिन आपने उस पर कुछ नहीं कहा, केवल मंदिर के चढ़ावा चोरी की आप बात कर रहे हैं। मैं कहना यह चाहूंगा जिन लोगों ने मंदिरों पर चोरी की है उनको सजा मिलेगी, भगवान राम भी सजा देंगे, कानून भी सजा देगा, लेकिन एक तरफा जब आप बात करते हैं तो याद रखिए अब कांग्रेस की बैठक में एक बहुत अच्छी चौपाई पड़ी गई, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवऊस दशरथ अजीर बिहारी, ये राम जी की लीला है, जो राम भक्त नहीं थे वो भी अब राम भक्त हो चुके हैं।
1: समय समाप्त हुआ आप दोनों का, कोई प्रश्न जो आप लोग करना चाहते हैं इन दोनों से? सज्जन कुमार
3: जी, फैज खान साहब, ये सरदार वल्लभ तो दिसंबर 1950 में गुजर गए थे, तो 55 में वोट चोरी का शायद,
2: भारत रत्न चोरी का 1955 में नेहरू जी के लिए, नेहरू जी द्वारा नेहरू जी को भारत रत्न 1900 सर मेरे से प्रश्न है 1955 में मैंने भारत रत्न चोरी की बात कही तो फैक्ट चेक अंजना जी करवा ले कि नेहरू जी के लिए नेहरू जी द्वारा नेहरू जी को खुद भारत रत्न 1955 में दिया गया कि नहीं दिया गया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के संदर्भ में वोट चोरी की बात है तो हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए जब वोटिंग हुई तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को अधिक वोट मिले थे, नेहरू जी को अपेक्षाकृत कम वोट मिले थे, फिर भी गांधी जी की एक छोटी सी पर्ची के कारण माननीय प्रधानमंत्री नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बन गए।
0: मैं अपने
1: सवाल इनसे पूछे पूछे पूछे ताओ
4: नहीं यार, यू नो आपने जो कहा कि मुसलमानों को इसमें लाया जाएगा और बहुत सतर्क होकर बोल रहे हैं, और आपने एक यासीन जी का उदाहरण भी दिया, वो सब ठीक है, पर जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना वो ईमानदार और बेईमान सभी होते हैं।
0: नहीं, मैं वक्फ बोर्ड के बारे में एक बात कहना चाहता था, और मैं आपकी टीम का भी और आदरणीय योगी योगी जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो वक्फ बोर्ड ले आए इस मामले में, और मैं बहुत बहुत आभार यहां पर व्यक्त करता हूं, क्योंकि वक्फ ये बात क्लियर हो गई कि जो अपने राम को, अपने भगवान को, अपने मंदिर को, अपनी आस्था को नहीं संभाल पाए वो मुसलमानों के प्रॉपर्टीज को, मुसलमानों की आस्था को, मुसलमानों की
1: तो
0: कैसे संभालेंगे? जो वक्फ के अंदर था कि हिंदू आ सकता है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ आपको जी, बताइए बताइए।
1: वक्फ बोर्ड की फंक्शनिंग से आप संतुष्ट हैं? आपको लगता
0: है चूंकि वक्फ बोर्ड मुसलमान नहीं बनाता, वक्फ बोर्ड ये सरकारें बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट या वो,
1: यही बात है,
0: किसी चोर को बिठा दिया तो हम क्या करेंगे? हमारे हाथ में दीजिए ना, या तो मुसलमानों को ऑटोनोमस बॉडी होनी चाहिए, मुसलमान चुन के भेजें वक्फ बोर्ड में, तुम फिर मुसलमान जवाब दे।
1: आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी अपनी जगह पर जाइए, बहुत अच्छा बोला आप दोनों ने, बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। और अब वो घड़ी है जब आप में से कोई भी अगर अपना गमछा बदलना चाहे तो आपके पास ऑप्शन है, आप उठकर अपना गमछा बदल सकते हैं, वापस अपनी ही जगह पर आकर बैठ जाइएगा, बदलना है जिसको भी बदलना है बदलिए।

0: गमछे वाले भी जा रहे हैं तो इतने संतुष्ट मत रहिए, लाल गमछे वाले भी कई सफेद ले रहे हैं, लेकिन भारी तादाद में नीले गमछे वाले जाकर लाल गमछा ले रहे हैं। वापस अपनी जगह पर ही बैठिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। लेकिन सफेद गमछे में भी दो लोग लाल गमछा लेकर जा रहे हैं, इंटरेस्टिंग है। अब आप लोग अपनी अपनी जगह पर बैठिए तो फिर समझ में आए कि किसने कितना बदला है। हो गया, सबने अपना अपना बदल लिया है जिनको बदलना था। चलिए, क्या ऐसा कोई भी है जिसने बदलकर नीला गमछा लिया हो? नहीं। क्या ऐसा कोई भी है जिसने बदलकर सफेद गमछा लिया है? एक, दो, तीन, चार, पांच। तो दो इधर के न्यूट्रल, मतलब अलग हो गए हैं, न्यूट्रल हो गए हैं, और तीन इधर के, है ना? आप पहले नीले में थे, नीले गमछे में थे। अब कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने बदलकर लाल गमछा लिया है? तो लाल गमछे वाले खूब खुश हो रहे हैं। तो भारी तादाद में ऐसे लोग हैं जो इधर है मामला। अब देखते हैं आगे कैसे जो टीम है ईशान त्यागी जी की वो कन्विंस कर पाती है। अब सेकंड राउंड में चलते हैं, एक एक मिनट का रिबटल टाइम देते हैं। जल्दी जल्दी अपनी बात रखिए। आइए जल्दी से आरपी सिंह साहब और ईशान त्यागी जी, और पहले से सोच लीजिए ताकि कुछ बात छूटे नहीं। जो बोलना है 60 सेकंड के अंदर बोलना है। तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत स्वागत है। अब जो जो कसर पिछली बार रह गई हो इस बार निकाल लीजिए। 60 सेकंड का आपको वक्त मिलेगा, और त्यागी जी अगर आप चाहें आप शुरू कर सकते हैं आज 60 सेकंड का। इस पर रिबटल राउंड में आपका समय शुरू होता है। आप
1: नहीं, मेरा धर्म मुझे सिखाता है कि मैं
2: बात तो नहीं होगा।
0: नहीं,
1: मैं सब मेरा धर्म सिखाता है कि मैं आदर सम्मान करूं। मैं चाहता हूं आरपी सिंह साहब पहले।
0: ठीक है, आरपी सिंह साहब बोलिए।
2: आप ही शुरू करें सर, शुरू आप ही।
0: वाह, ये सम्मान देखकर तो मेरी आंखें नम हो गई। अब शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। फिर से टाइमर लगा दीजिए,
2: नेक्स्ट को मौका मिलना चाहिए।
0: फिर से टाइमर लगा दीजिए, 60 सेकंड का समय त्यागी जी आपका शुरू होता है।
1: देखिए, अभी यहाँ पे मुस्लिम राष्ट्र मंच के जो कि आरएसएस की एक बॉडी है उसके एक प्रवक्ता बोल रहे थे कि, और विश्व हिंदू परिषद के भी यहाँ पे जो नुमाइंदे वो बोल रहे थे कि इंटरवेंशन होना चाहिए सरकार का। मैं ये कहता हूँ जो ट्रस्ट बनाया है वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया। प्रधानमंत्री मोदी जी 200 कैमरे लेके शिलान्यास करने गए, निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने गए, प्राण प्रतिष्ठा करने गए, ध्वजारोहण करने गए, सब कुछ करने गए और पूरा वहां पे ढोंग करने का काम किया, और उसके बावजूद अगर ये सब हो रहा है तो ये निंदनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पे चुप नहीं रह सकते, उनकी चुप्पी बहुत सारे सवाल खड़े करती है। अभी ये बोल रहे थे कि लड़ाई किस बात की, लड़ाई सिर्फ इस बात की है कि राम भक्तों का जो उन्होंने आस्था से चंदा दिया था उसकी बंदरबांट किस तरीके से हो सके, कैसे किसकी जेब में ज्यादा से ज्यादा पैसा आ जाए। और ये शबरीमाला पे एक बात अभी बोल रहे थे यहाँ पे एक हमारे प्रवक्ता, शबरीमाला पे मैं क्योंकि व्हाट्सएप पढ़ के नहीं आता हूँ, इंडिया टुडे के आर्टिकल पढ़ के आता हूँ। शबरीमाला पे एक आर्टिकल है, कांग्रेस पार्टी ने ही सबसे पहले उस पर सवाल उठाने का काम किया और उस हमारे दबाव के बाद ही एसआईटी की जो जांच है वो हाईकोर्ट ने वहां पर बैठाई शबरीमाला में।
0: समय समाप्त हुआ, चलिए अब रिबट रहा। अच्छा, ये विष्णु जैन जी की तरफ से मैं भी बोल दूं, आपने गलत उनको कोट किया। वो वीएचपी से जुड़े हुए नहीं है, वो वरिष्ठ अधिवक्ता है और वो कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं मामला। चलिए आपका शुरू करते हैं सिंह साहब, आपका 60 सेकंड का समय रिबट रहा है।
2: कोई बात नहीं, समय की सीमा की इशू नहीं है। दो विषयों पर मुझे आपत्ति। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ढोंग रहते हैं। प्रधानमंत्री जी आज भी इंडोनेशिया के अंदर, दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा मंदिर, दूसरे नंबर की जो का सबसे बड़ा मंदिर, आज भी वहां पे गए हैं।
0: प्राचीन
2: मंदिर है और कोई 5000 साल पुराना मंदिर माना जाता है, परंतु जो डेटाबेस कहता है 1000 साल पुराना कहता है, परंतु आज भी गए। इसका मतलब वो ढोंग कर रहे हैं। असल में इन्होंने तो कभी मंदिर जाने की सोची नहीं, तो सर चुनाव के दौरान में मंदिर की बात करते हैं और एक जनेऊ पहन लेते हैं, वो एक ऊपर से जनेऊ भी दिखाते हैं कि मेरा जनेऊ है। हालांकि जनेऊ कभी ऊपर से पहना नहीं जाता, कभी कभी कभी कभी किसी ने देखा किसी ने ऊपर से जनेऊ पहनो? जनेऊ हमेशा शरीर के साथ जुड़ना चाहिए, कपड़ों के साथ नहीं। परंतु फिर भी अभी इन्होंने कहा कि मंदिर की बात करते हैं, सब करते हैं। इन्होंने एक शब्द नहीं निकाला जब मैंने कहा कि वहां पर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज में जिस प्रकार से घोटाला रहा, एक शब्द नहीं निकाला इनके मुंह से। कभी इन्होंने एक शब्द नहीं निकाला। मैं अभी इसलिए मैं इन्होंने इंडिया टुडे का रेफर किया, मैं ये अखबार की कटिंग लेकर आया हूँ, हालांकि दूसरे चैनल की मैंने नाम नहीं ले रहा। ये अखबार की कटिंग है जिसमें सबसे बड़ी जो दरगाह है अजमेर शरीफ है वहां पर घोटाला हुआ।
0: बराबर है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अपनी अपनी जगह पर जा सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आइए विष्णु जैन जी और मनोज काका जी जल्दी से आइए। विष्णु जैन जी रिबटल राउंड में, और जो छात्र का भी सवाल है जजेस का रहा है, या आपको अपने ओपोनेंट का कोई जवाब देना है उसके लिए आपको 60 सेकंड का समय मिल रहा है और आपका समय शुरू होता है। आप पहले बोलना चाहते हैं आप? ठीक, विष्णु जी।
3: देखिए अंजना जी, मैं जितने यहाँ पे मेरे युवा साथी आए हैं, आप सारे लोग हैं, मैं आज आप लोगों से एक बहुत ही भावुक अपील करना चाहता हूँ कि इस समय हम सारे लोगों को अपने अंदर झांकने की जरूरत है, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, चाहे वो टेंपल मैनेजमेंट हो। आज हम लोग ज्ञान व्यापी का केस लड़ रहे हैं, भोशाला का केस लड़ रहे हैं, अलग अलग जगह कृष्ण जन्मभूमि की बात कर रहे हैं, पर आप मुझे बताइए, आज मुझे भगत सिंह की बात याद आती है जब उन्होंने कहा था कि हम आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और यहां पे गोरे साहब चले जाएंगे और काले साहब आ जाएंगे, तब क्या होगा। आज मैं आज तक के इस मंच पे कहना चाहता हूं, आज उसी कश्मकश से मेरा दिल और मेरा मन गुजर रहा है कि आज हम लोग मंदिर मुक्ति की बात तो कर रहे हैं, आज हम लोग हर एक चीज की बात कर रहे हैं, पर जब मंदिर मुक्त हो जाएगा, राम मंदिर की यह सबक हम लोग को सिखाता है कि जब मंदिर मुक्त हो जाए उसके बाद जितनी फोर्स से मंदिर मुक्ति की लड़ाई लड़ी गई थी, उतनी ही फोर्स से मंदिर के मैनेजमेंट को सुदृढ़ करने के लिए हम सारे लोगों को लड़ाई लड़नी चाहिए, नहीं तो मंदिर मुक्ति करने का कोई फायदा नहीं।
0: चलिए मनोज काका जी, इस विषय पर आपका बोलने का समय शुरू होता है। समय टाइमर कुछ तो मतलब आप लोग नियम मानिएगा, 7 सेकंड का समय शुरू होता है अब।
4: देखिए, एक तो यह है कि जिस साथी ने कहा कि बहुत सारी चीजें चोरी हुई है, उस साथी को मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे बड़ा जो अधिकार होता है राजनीतिक प्रतिनिधित्व को होता है, और आज मुसलमानों का, मैं नाम लेके कह रहा हूं, अल्पसंख्यकों का, जिस वर्ग से आप आते हैं, जो कीर्तन गा रहे थे, सबसे बड़ा उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी चोरी हुआ है। बीजेपी के 240 सांसदों में से एक भी सांसद अब मुसलमान नहीं है। कब पूछिए कि कब क्या वो देश के नागरिक हैं कि नहीं है। और जब बीजेपी ये बात करती है कि हम सबके विकास के बात करते हैं तो उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्यों नहीं देती है। और दूसरी जो बात है, धर्म की बात है, साथी ने, अधिवक्ता साथी ने बहुत अच्छी बात कही कि सबका प्रबंधन हो, जो वक्फ की बात आपने करा उस पर भी कह दे, इन बच्चों को सबको बताइए कि वक्फ बोर्ड का जो गठन होता है वो कोई राजनीतिक दल नहीं करता, सरकार करती है, और आज सरकार में नरेंद्र मोदी है और योगी है। अगर वक्फ बोर्ड कहीं कोई बेईमानी करे तो एसआईटी गठित कर दे, और हम तो कह रहे हैं और बढ़ के करें, किसी जज के निगरानी में कर दे, सिटिंग जज के, तब देखा जा। तो करना है नहीं, धार्मिक धांधलीबाजी करनी है, और
0: समय समाप्त हुआ।
4: धांधलीबाजी का इस देश में बीजेपी का लोग धुरंधर।
0: अगर कोई पॉइंट है तो काउंटर कर लीजिए, उनको भी मौका दूंगा।
3: वैसे मैं इस चीज में पढ़ना नहीं चाहता था, पर यहाँ पे बात आ गई तो मैं मनोज जी को बताना चाहता हूँ, कृपया वफ अमेंडमेंट एक्ट 2025 का सेक्शन 3C उठा के देख लें, जिसमें यह था कि अगर वफ ने किसी सरकारी संपत्ति को कब्जा किया है, एकमात्र ऐसा सेक्शन था अंजना जी जो रेट्रोस्पेक्टिव था, कि अगर वफ ने किसी सरकारी संपत्ति को कब्जा किया है तो उसको वापस लिया जाए, पर सारे लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे कि नहीं साहब जी गलत है, और उस पर
0: अभी भी मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, अभी भी लंबित है, अभी भी डिसीजन नहीं
3: हुआ है। मैं आरोप प्रत्यारोप में पढ़ना नहीं चाहता, पर मैं सिर्फ आपके सामने सेक्शन 3C, सारे लोग यहाँ पढ़े लिखे उठा के देख लें,
4: आप जिस सेक्शन
3: 3C में क्या लिखा हुआ।
4: तो क्या आप बात ये कह, आप एक विधिवक्ता होकर के ये कह रहे हैं कि अब देश में सुप्रीम कोर्ट का कोई मायने नहीं है? सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है, तो वो जो निर्णय आएगा सबको कबूल होगा।
3: सुप्रीम कोर्ट का मायने था,
4: ये जो राम मंदिर का निर्माण हुआ, राम मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के घर में हो गया, राम मंदिर का निर्माण कहा हुआ, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने किया
3: था सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं सेक्शन 3 से गलत है,
4: आप
3: वफ अमेंडमेंट एक्ट
4: कहीं अन्य कहीं किसी,
3: आज आप यहाँ पे बात कर रहे हैं कि नहीं यहाँ पे हम एसआईटी बैठाएंगे, अरे एसआईटी बैठानी है आपने कहा, अगर एसआईटी बैठानी है तो वफ ने जो सरकारी संपत्ति पे कब्जा किया
4: है उसके
3: खिलाफ एसआईटी बैठाइए,
4: ये
3: आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, आप कभी नहीं जाएंगे,
4: आप ये अपील, ये अपील गवर्नमेंट से करेंगे ना,
0: हम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
4: आप ये कहना चाह रहे,
0: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।
5: मनोज जी से सवाल,
6: मनोज जी ने एक अच्छी बात कही कि भाई जो भी गड़बड़ियां होती हैं उसके लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व जिम्मेदार होता है। बहुत अच्छा सवाल है
4: जी।
6: ये सारा चोरी का मामला आया अयोध्या में
4: जी।
6: अयोध्या नरेश की जो ट्रॉफी लेकर आपके नेता अखिलेश जी बैठे रहते हैं संसद में, क्या वो सांसद साहब ने कभी देखा कि भाई ये चोरी हो रही है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? मैं आपसे क्यों जानना चाहता हूँ
4: सर, बहुत वाजिब सवाल है और हम लोग कम से कम सवालों का स्वागत करते हैं। लगातार हमारी पार्टी ने, हमारे पार्टी के वहाँ के नेता हैं पवन पांडे जी, पूर्व विधायक रहे, लगातार सवाल उठाया, लेकिन ये सरकार, ये वो सरकार है कि
6: विपक्षी, आप मानते सांसद साहब को देखना चाहिए
4: नहीं, सांसद मंदिर, सांसद की जिम्मेदारी, सांसद की जिम्मेदारी निगरानी की जरूर है एक प्रतिनिधि के तौर पर, लेकिन उस मंदिर का वित्तीय देख रेख और प्रबंधन पूरी तरह से ट्रस्ट के हाथ में था, इसलिए ट्रस्ट की जिम्मेदारी है, और उनका एक सांसद के तौर पर जो उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व है, वही राम पद पे 25 से 27 करोड़ की लाइटें लगी और रात भर में टूट के गिर गई, तो उनका अधिकार था, उन्होंने सवाल उठाया, सरकार ने कोई काम नहीं करा। तो जो सरकार पूरी तरह से ऊपर से नीचे भ्रष्टाचार की जो गंगा बह रही हो, वो किसी विपक्ष के प्रतिनिधि का कोई सवाल पूछ रही, हाँ मुकदमे कर सकती है, हमारे जैसे कार्यकर्ता पर एक दिन सवाल करने में, सर मैं आपको FIR की कॉपी दे दूंगा, चंदौली में एक दिन में 9 FIR हुए हमारे जैसे व्यक्ति पे सवाल पूछने के लिए। तो यह है आज का, जहां असहमतियों की कोई कदर ही ना हो सरकार में, उस सरकार से विपक्ष सवाल क्या करेगा। यह सरकार पूरी तरह, विपक्ष से सांसद विधायक खरीदने की तैयारी वाली सरकार है। बच्चे आपके गिर जाए, पेपर लीक हो, शिक्षा मंत्री को पता नहीं है, हमारे सैनिक शहीद हो गए, देश के रक्षा मंत्री बेचारे एक साल बाद बताए, हम अपने शहादत तक को भूल जा रहे हैं। कुंभ में लोग मर गए, मुख्यमंत्री ने बताया बस 29 मरे, और मुआवजा कितने लोगों को पहुंचा है, बहुत सारे संस्थानों की रिपोर्ट है, आपके भी संस्थान की, इंडिया टुडे की भी रिपोर्ट है, पूरे देश में मुआवजा 105 लोगों को पहुंचाया गया, वह संत बनते हैं। तो इस तरह जब लोग दोहरे चरित्र के होंगे तो सवालों के सर कोई माने नहीं रहते।
0: आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी अपनी जगह पर जा सकते। आइए फैज खान साहब आइए, और मसूद फयाज हाशमी साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। फैज खान जी ताली बजा रहे हैं बच्चे।
5: हाँ तो चालू करिए समय फिर।
0: 60 सेकेंड आप या आप।
7: दीन दयाल बिरज संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बिल्कुल मेरे विपक्षी प्रवक्ता, मैं मुस्लिम हूं और भगवान राम का कीर्तन करता हूं, इससे आपको आपत्ति क्या है? नहीं राजस्थान की परंपरा के मुसलमान से आपको आपत्ति है, क्योंकि जब आपने मुसलमानों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया तो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी पैदा किया, और संघ और आरएसएस की विचारधारा ने जब राजनीतिक प्रतिनिधित्व मुसलमानों को दिया तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आरिफ मोहम्मद खान को पैदा किया। इसलिए हम इस विचारधारा का समर्थन करते हैं, और बार बार आप मोदी जी की तस्वीर दिखा रहे हैं प्रभु रामचंद्र जी के साथ। कांग्रेस के प्रवक्ता, आपको यह नहीं पता है कि यहाँ पर बाल रूप की भी प्रतिमा पूजा होती है, गुरु रूप की भी होती है, पिता रूप की भी होती है, पुत्र रूप के भी होती है, इसलिए गाया जाता है ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, को बाल रूप की भी यहाँ पर।
0: चलिए समय समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया। अब आपका हाशमी साहब समय 60 सेकंड का रिबटल का शुरू होता है।
8: देखिए मैं सबसे पहले आरपी सिंह जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने याद दिलाया कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री इंडोनेशिया में हैं, जहां वो कल 1000 साल पुराने मंदिर में गए। इंडोनेशिया के बारे में आप जानते हैं कि वो मुस्लिम कंट्री है, और उन्होंने उस मंदिर को अभी तक बचा के और सजा के रखा हुआ है। तो जो लोग जो इल्जाम लगाते हैं कि यहां लोगों ने मंदिर तोड़े, वो गलत साबित होगा। मैं धन्यवाद आपका प्रकट करता हूं। उसके अलावा मैं अब यहां पर टॉपिक के ऊपर रहा, मैंने यहां पर आकर राजनाथ सिंह के सिंदूर झूठ की बात नहीं की, मैंने नितिन गडकरी के दुबई इंपोर्ट की बात नहीं की, मैंने योगी के सड़कों पे नमाज पढ़ने और जुलूस ना निकलने की बात नहीं की। मैं सिर्फ बात करना चाहता हूं मुद्दे के ऊपर, और मुद्दे की बात यह है कि अयोध्या निवासी संतोष दुबे, अभी मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने बताया कि चंपत राय के कहने पर अयोध्या के सारे मंदिर और मठों को ओयो बना दिया गया है। यह संतोष दुबे का स्टेटमेंट है, आप देख लीजिए। तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है।
0: आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो घड़ी है जब हमारे तमाम दर्शक जो घर पर बैठे हैं या स्टूडियो में बैठे हैं अपना वोट डाल सकते हैं। जो हमारे दर्शक घर पर मौजूद हैं, आप भी स्क्रीन पर QR कोड स्कैन करके अपनी राय, अपना वोट डाल सकते हैं। और जितनी भी ऑडियंस हमारे साथ स्टूडियो में यहां पर मौजूद है, चढ़ावा चोरी और वक्फ चोरी में विपक्ष फर्क करता है, इस मुद्दे पर अगर आप मानते हैं कि हां फर्क करता है, अगर आप टीम आरपी सिंह, विष्णु जैन और मोहम्मद फैज खान साहब के साथ हैं तो आप हां पर वोट डालेंगे, अगर आप मानते हैं नहीं तो आप ईशान त्यागी जी, मनोज काका जी और मसूद फयाज हाशमी साहब के लिए नहीं पर वोट डालेंगे, और कह नहीं सकते का तो रास्ता खुला हुआ है ही। और अब इस विषय पर कि क्या चढ़ावा चोरी और वक्फ चोरी में विपक्ष फर्क करता है, 60 सेकंड का आपको समय मिलेगा, और वोटिंग लाइन शुरू हो रही है अब। सोच समझ कर वोट डालिएगा। अगर आप टीम आरपी सिंह, मोहम्मद फैज खान साहब, विष्णु जैन जी के लिए वोट डालना चाहते हैं तो आप हां पर, और वहीं 33 फिलहाल आ रहा है, 13% हो गया है नहीं पर, जो कि टीम त्यागी जी के लिए, मनोज काका जी के लिए है और हाशमी साहब के लिए है। तो 71%, 72% ये मानते हैं हाँ, 12%, 14% हो गया नहीं पर, 16% कह नहीं सकते वाले हैं, और आज अच्छी खासी तादाद में सफेद गमछे वाले दिख भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि गमछा भी और वोट भी अलाइन होता हुआ दिख रहा है। 68% हो गया, 68%। आखिरी के 30 सेकंड बचे हैं जिसमें आप अपना वोट डाल सकते हैं। 12% कह रहे हैं नहीं, 20%, यानी नहीं कहने वालों से ज्यादा है कह नहीं सकते, मतलब वो इस पर न्यूट्रल रहना चाहते हैं इस पर। 23% बढ़ रहा है नंबर, 23% लोग कह रहे हैं कि वो इस पर, 24% कह रहे हैं वो कहना नहीं चाहते हैं इस पर, कह नहीं सकते, उनको समझ नहीं आ रहा है कि विपक्ष फर्क करता है नहीं करता है इस मुद्दे पर, वो इस पर नहीं अपनी राय रखना चाहते हैं। वहीं हाँ कहने वाले 65%, 64%, आखिरी के 3, 2, 1 और इसी के साथ समय समाप्त हुआ। टीम आरपी सिंह और विष्णु जैन जी की और मोहम्मद फैज खान साहब की जीत गई है। आप दो तीनों को बहुत बहुत बधाई। तो फिलहाल ये टीम जीत गई है। अब वो घड़ी है जब बहस बाजीगर में तीनों जजेस ये तय करेंगे और हमें बताएंगे कि आप इन छियों में से किसको बना रहे हैं आज का बहस बाजीगर।
9: देखिए, बिल्ले को दूध की रक्षा के लिए अपॉइंट नहीं करना चाहिए ऐसा लोग कहते हैं, पर इसी देश में हम देखते हैं कि कुछ हजार कमाने वाले चार लोग हजारों करोड़ एक वैन में लेकर जगह जगह एटीएम में भरते हैं और एक एक पाई का हिसाब होता है। हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारे ज्वेलर्स के यहाँ सामने करोड़ों की ज्वेलरी रखी होती है और कोई 10-20-15 हजार रुपए वाला आदमी वहां नियुक्त होता है, वो उसकी रक्षा करता है क्योंकि व्यवस्था बनी हुई है। हमारे यहाँ वक्फ बोर्ड बने हैं, टेम्पल मैनेजमेंट बोर्ड बने हैं, राम मंदिर के लिए तो भी ट्रस्ट ही बना है। ये देखना पड़ेगा कि व्यवस्था अगर नहीं होगी, सिर्फ बोर्ड होगा, तो जब आदमी बोर्ड होता है तो कुछ ना कुछ अपने मनोरंजन के लिए करता ही है।
0: आज बजाइए ताऊ के लिए जोर से तालियां, बहुत अच्छी बात बोले ताऊ।
9: क्योंकि हम समस्या को समझते हैं, समाधान के बारे में बहुत कम विचार करते हैं, समस्या के बारे में बहुत जोर जोर से नारे लगवाते हैं। आज जो है सिर्फ इसी के लिए श्री विष्णु जैन जी
0: बहुत बहस बात। मुझे लगता है कि सभी को सबका समर्थन होगा इस फैसले पर, क्योंकि विष्णु जी ने आज उस पर हल निकालने की कोशिश की है और जो चिंता है मंदिरों में भी चढ़ावा चोरी की, उससे वो भागे नहीं। उन्होंने कहा कि मंदिर चोरी में चढ़ावा चोरी हो, वक्फ बोर्ड कुछ ऐसा करता है, घपलेबाजी या चोरी, दोनों पर सख्ती के साथ काम करने की जरूरत है।
6: वो समाधान के लिए पहले जरूरी है ना। हाँ। समाधान के लिए पहले जरूरी कि आप मान तो लें कि गलती हुई।
0: मेरे लिए ऐसा अचंभा आज तक नहीं हुआ है कि कोई मेरे डिबेट में आकर समाधान बताया।
6: हाँ, तो
0: कितनी बड़ी बात है।
6: इसीलिए हम तीनों लोगों ने माना कि विष्णु जी ने बहुत अच्छे से।
0: बहुत बहुत बधाई आपको विष्णु जैन जी, बहुत बहुत बधाई। तो आज के बहस बाजीगर हैं विष्णु जैन जी। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहस बाजीगर में आज के लिए इतना ही, लेकिन अगले शनिवार आपसे फिर होगी मुलाकात। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच In association with
11: Bharat ki apni electric sawari Sokudo.
12: TuneIn has all of your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news
13: after multiple assassination attempts, they can't even get
14: they're reliable.
15: Always when I need them.
12: To live sports action.
16: One hand jam by LeBron on the break.
17: That's another three, Steph Curry.
12: And your favorite music. TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
18: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
19: We are over, Jimmy.
20: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
21: क्रिकेट में हर खिलाड़ी का अलग रोल होता है, कोई विकेट कीपर, कोई फील्डर, कोई बॉलर, तो कोई बैट्समैन होता है। और जब सब एक साथ मिलकर खेलते हैं तब बनती है कंप्लीट टीम। जैसे पीएनबी वन ऐप, जिसमें फंड ट्रांसफर्स हो या अकाउंट ओपनिंग, लोन हो या एफडी, सब कुछ है जो बनाता है इसे कंप्लीट बैंकिंग ऐप।
22: पीएनबी वन ऐप, बैंकिंग का कैप्टन।
18: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सुंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: In association with Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
3: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
2: Vimal, bolo zubaan kesri. Hint, bade aaram se.
4: Jo ye log aastha ki baat karte hain, yaad karo na, inhone to hamare pavitra Hanuman Gadi mein इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? कौन करवा रहा था ये? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की, राम के नाम पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया, राम भक्तों पर गोलियां चलाए, अयोध्या के नाम पे पहचान का संकट खड़ा किया। ये डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, कोई रोक नहीं पाया।

वियतनाम में भारतीय पर्यटकों से भरी नाव पलटी, अब तक 15 लोगों की मौत। फुकोक द्वीप के पास हादसा, राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने जताई संवेदना। न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय के बीच पीएम मोदी ने बताई भारत की विकास यात्रा, कहा जल्द बनेंगे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। 3 देशों के दौरे के बाद दिल्ली के लिए भरी उड़ान। दतिया से टिकट कटने के बाद आज तक से बोले बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा, राजनीति में यह चलता है, पार्टी का फैसला सही। मुख्यमंत्री मोहन यादव से की मुलाकात। यूपी में 27 का घमासान तेज, मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पार्टी पर बोला हमला, कहा इनका इतिहास राम भक्तों के खून से सना, भारत की विरासत और आस्था को किया अपमानित। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ को लेकर पहली बड़ी बैठक, कई बड़े फैसले। शुरुआत में 3 साल के लिए होगी नियुक्ति, कम से कम 20 साल का अनुभव और हिंदू होना जरूरी।

नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और वॉर रूम में आपका स्वागत है। आज शो में हम दिखाएंगे कि कैसे ईरान और अमेरिका फिर से एक बार जंग के मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं, कैसे इन दोनों देशों ने पूरे वेस्ट एशिया के भविष्य को आग में झोंकने की तैयारी कर ली है, क्यों कहा जा रहा है कि ईरान की चुनी हुई सरकार बनाम IRGC का मुद्दा फिर से गर्म हो रहा है। दिखाएंगे ये भी कि किसके पास है ईरान में असली ताकत। वॉर रूम में हम एक और मोर्चे की जंग पर अपने संवाददाता के साथ आपको लिए चलेंगे, अफगानिस्तान पाकिस्तान की जंग। एक तरफ POJ के और बलूचिस्तान में लगातार प्रदर्शन और हमले जारी हैं और उधर पाकिस्तान अफगानिस्तान के नागरिक इलाकों पर हमले कर रहा है, लेकिन तालिबान ने भी पाकिस्तान के खिलाफ पूरी तैयारी कर रखी है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ईरान से हमारी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, ईरान अमेरिका युद्ध के पहले दिन जिस जगह हमले में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की जान गई थी, वहां से हमारे संवाददाता सुमित चौधरी की यह रिपोर्ट देखिए।

0: West is in the midst of a dangerous new escalation. Major wave of strikes against Iran in response to attacks on commercial shipping.
1: टीवी न्यूज के इतिहास में पहली बार हम दिखाएंगे वो घर जहां बीता अली खामेनेई का आखिरी पल। वो घर जिसकी गिरती दीवारों ने खड़ा कर दिया दुनिया का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस।

0: 28 फरवरी 2026 की वो सुबह ईरान के लिए कयामत बनकर आई। ऑपरेशन के पहले ही दिन पास्ट स्ट्रीट के उस कंपाउंड पर 30 मिसाइलें शाल बनकर गिरी और इसी के साथ खत्म हो गया था आयतुल्ला अली खामेनेई का दौर। आज तक पहुंचा वहां जहां बीता ईरान के सुप्रीम लीडर का अंतिम पल।
1: आज तक की टीम इस समय मौजूद है उस जगह पे, उस घर पर जो पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई का घर हुआ करता था, जहां पर उनकी हत्या की गई। मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हैं, दरअसल आप देखें इसको पूरा कॉर्डन कर दिया गया। पीछे जो इमारतें देख रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो उनको नुकसान पहुंचा था। सारी इमारतें आसपास की बम्बारमेंट किया गया था और कहा जाता है कि न सिर्फ एक इमारत को बल्कि मल्टीपल आसपास की जो भी इमारतें थी उनको भी ध्वस्त कर दिया गया। अब इस पूरे इलाके को कॉर्डन कर दिया गया है, इस पूरे इलाके से डिब्रीज को या फिर उनको हर चीज़ों को हटा दिया गया। लेकिन अगर आप देखें कि यहाँ पर गेट लगाया गया है, ये वो पूरा कंपाउंड था जहाँ वो अपने परिवार के साथ उस समय रह रहे थे, उनका ऑफिस भी वही था। और अभी यहाँ पर लोग उनकी दुआओं के लिए उनको याद करते हुए, अगर आप देखें बच्चे भी आपको नज़र आएंगे, महिलाएँ भी याद हैं, रो रहे हैं आप अपने सुप्रीम लीडर को याद करते हुए। और इस समय के ताज़ा हालात कुछ ऐसे हैं कि लोग गमजदा हैं।
0: इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ पूरे के पूरे ईरान का शासन तंत्र ही लगभग खत्म हो गया। लेकिन अली खामेनेई की मौत ने ईरान को वो हौसला दिया जो आज भी अमेरिका को परेशान कर रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है ईरान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची अहम बातचीत के लिए ओमान की राजधानी मस्कट पहुंच गए हैं। उधर अमेरिका ने साफ चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने जहाजों पर हमले नहीं रोके तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पिछले कई दिनों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में तनाव लगातार बढ़ रहा है, अमेरिका और ईरानी सेनाओं के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है और इस बीच ओमान सुरक्षित समुद्री आवाजाही को लेकर मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है।

0: क्या अब ईरान को अमेरिकी कार्रवाई का भी डर नहीं? कैसे बार बार अमेरिका को चुनौती दे रहा है ईरान? कब और कैसे बहेगा हॉर्मुज का पानी? ईरान तय करेगा।
1: Everything's gone. The leaders are gone. They had leaders, they're gone, and they had another set of leaders, they're gone. Now they have another set of leaders, they may be gone. Who knows? And you know what? I may be gone too, because I'm their number one target. It's out all over the place. I'm their number one because they're scum. That's the way they act.
0: सवाल है, क्या फिर से शुरू हो रहा है अमेरिका-ईरान युद्ध? क्या हुआ एमओयू के उस क्लॉज का जिसमें लिखा था कि 60 दिनों तक हॉर्मुज खुला रहेगा? युद्ध विध्वंसक है, विनाशकारी, युद्ध संहारक है, युद्ध घातक है, युद्ध प्रलयंकारी है, लेकिन युद्ध आखिर युद्ध, युद्ध कूटनीति है, युद्ध काल है, युद्ध खेल है। इसीलिए कूटनीति में युद्ध को राजनीति जारी रखने का एक हिंसक साधन बताया गया है, और शायद ईरान अब इसी साधन का उपयोग उस असाध्य को साधने के लिए कर रहा है। युद्ध को रणनीतिकार कार्ल वॉन क्लॉजविट्ज ने वॉर इज अ पॉलिटिक्स बाय अदर मींस कहा है, और यही ईरान अब कर रहा है। एमओयू होने के 21 दिन के अंदर ही ईरान ने उसको तोड़ दिया। अब तक ईरान अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन क्या ओमान के क्षेत्र में चल रहे जहाजों पर हमला भी उसके अधिकार क्षेत्र में आता है? ईरान संयुक्त राष्ट्र के मानकों को भी मानने से मना कर रहा है। अमेरिका की आपत्ति है कि ईरान अकेले हॉर्मुज के समूचे क्षेत्र पर अपना अधिकार नहीं जता सकता। एक बड़ी वॉर ब्रेकिंग सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी दी है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर दावा किया है कि ईरान की ओर 1000 मिसाइलें पहले से लॉक्ड एंड लोडेड हैं। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान उनकी हत्या करने का प्रयास करता है तो अमेरिका पूरे ईरान को तबाह कर देगा। इस बयान के बाद वेस्ट एशिया में तनाव और बढ़ गया है। वेस्ट एशिया एक बार फिर बम के धमाकों और बारूद के धुएं से घिर गया है। स्विट्जरलैंड की वादियों में जो अमन और शांति का वादा हुआ था, उसे ईरान ने पलक झपकते हवा में उड़ा दिया। मामला एक बार फिर आकर फंसा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कह दिया है कि शांति समझौते जैसा अब कुछ बचा नहीं।
1: Interesting question. To me, I think it's over.

0: नेटो समिट के समापन पर बोलते हुए यूएस प्रेसिडेंट जब ये कह रहे थे, उससे पहले ही ईरान ने बता दिया था कि उसके लिए एमओयू का क्या मतलब है। सवाल उठता है कि आखिर ये लड़ाई फिर से क्यों भड़की? आखिर ईरान ने क्यों हमला कर दिया ओमान के क्षेत्र से निकल रहे जहाजों पर? क्या अब ईरान मन बना चुका है कि हॉर्मुज के संपूर्ण इलाके पर उसी का कंट्रोल चलेगा? दरअसल एमओयू के क्लॉज 5 के तहत ईरान ने वादा किया था कि वो 60 दिनों तक पर्शियन गल्फ से ओमान की खाड़ी के बीच कमर्शियल जहाजों को सेफ पैसेज देगा और कोई टैक्स या चार्ज नहीं वसूलेगा। लेकिन दावा है कि इस वादे की मियाद पूरी होने से पहले ही ईरान अपनी बात से पलट गया, जिसके बाद ट्रंप ने भी कह दिया एमओयू खत्म हो चुका है।
1: It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them. They're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. Liars. We make a deal. And they, if I make a deal with him, we have a deal. And he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo.
0: 6 जुलाई को ईरान ने हॉर्मुज जल मार्ग में दो बड़े टैंकरों पर मिसाइल हमले किए। पहला हमला ओमान के लीमा तट से केवल 8 नॉटिकल माइल दूर कतर की गैस ले जा रहे टैंकर पर हुआ और दूसरा सऊदी अरब के तेल टैंकर पर। अगले ही दिन 7 जुलाई को एक और अज्ञात टैंकर पर ड्रोन से हमला कर दिया गया। जिस जगह हमला हुआ वो जल क्षेत्र ओमान का है। अंतर्राष्ट्रीय कानून कहते हैं कि यहाँ से गुजरने वाले जहाजों पर ओमान का नियंत्रण और इंटरनेशनल मैरिटाइम लॉ लागू होते हैं। तो फिर ईरान ने ओमान की संप्रभुता पर प्रहार क्यों किया?
2: There is a very simple line in Strait of Hormuz. Either you coordinate with the Iranian officials to pass through the Strait of Hormuz, or there would be some attacks or some, let's say, measures taken against allowing ships to pass through the waterway. And that's something that has been mentioned in the MOU as well.
3: Iran, or khaskar IRGC, ko lagta hai ki chahe memorandum of understanding dastakat hua, usme panchve bindu ke upar 60 din ke liye Strait of Hormuz ko khula rakhne ke liye izazat hai, kyunki unki taraf mines hone ke karan USA ne yakeen kiya hai कि सारा जो शिपिंग है, जितना भी नेविगेशन है, वो ओमानी पानी के बीच से गुजर सकता है। और ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं आया जिसी को खा रहा है। ये तो ओमान की तरफ से पूरा का पूरा शिपिंग तकरीबन 70-80% रिस्टोर हो गया, इसलिए मुझे लगता है कि ईरान ने इस तरीके से हरकत की। और जिस प्रकार से उन्होंने 3 शिप्स, वो भी सऊदी अरेबिया के उसमें शामिल, कतर में शामिल, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो है खा रहा है ईरान को, कि उसका वजूद खत्म हो रहा है।
0: ईरान के हमले ने अमेरिका और ईरान के साथ साथ फिर से पूरे पश्चिम एशिया को युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं।
4: No, I don't think it's going to start again. I think it's going to go very quickly. They hit a couple of ships. And so we hit them much harder. When they hit, we hit 10 times harder. You know, we hit much harder than they do. We have a lot better equipment than they do.
0: अमेरिका ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार साइट्स और एंटी शिप मिसाइल ठिकानों समेत 80 से ज्यादा ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी कर दी। बंदर अब्बास, सिरिक, रणनीतिक रूप से अहम केश्म आइलैंड, यहाँ तक कि बुशहर के सैन्य ठिकाने अमेरिकी मिसाइलों से दहल उठे। यही नहीं, पहली बार ईरान के चाबहार पोर्ट पर भी हमला किया गया। इसके साथ ही अमेरिका ने ईरान पर फिर से कड़े ऑयल प्रतिबंध थोप दिए हैं। हमलों का जवाब देते हुए ईरान ने भी कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस और बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के मीना सलमान कमांड सेंटर पर हमला कर दिया।
5: तो सुमित चौधरी की रिपोर्ट आपने देखी, ये जो पूरा कार्यक्रम चला था जहां पर जो अंतिम यात्रा थी ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर की उसको कवर करके सुमित चौधरी लौट आए हैं और स्टूडियो में हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं, जिनसे ईरान को लेकर अगर आपके भी मन में सवाल उठ रहे होंगे, क्योंकि भारत के पत्रकार कम ही वहां पर आपको दिखते हैं, सुमित इससे पहले भी ईरान में कवरेज किए हैं, ये बताइए कि 60 दिन भी एमओयू नहीं चल पाया, क्या हो गया कि जो ओमान कह रहा है कि ओमान के वाटर्स हैं वहां पर ईरान जाकर अटैक कर रहा है?
6: देखिए श्वेता, आप तो कह रहे हैं 60 दिन, मुझे तो उम्मीद थी, पहले से उम्मीद थी कि 9 जुलाई से पहले ही ये टूट जाएगा, क्योंकि देखिए यूएस को अपने 250 साल की अपनी जो सेरेमनी थी वो पूरा करना था, ईरान के लिए सबसे महत्वपूर्ण था उनके सुप्रीम लीडर को सुपुर्दे खाक करना, जो पिछले करीबन 125 दिनों से वो इंतजार कर रहे थे, तो दोनों के ऑब्जेक्टिव क्लियर थे और ये डेडलॉक हमेशा बना रहेगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका चाहता है कि 28 फरवरी से पहले की परिस्थिति बन जाए, जो ईरान अब बिल्कुल नहीं चाहेगा, क्योंकि ईरान के लिए अब वो दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन गए, एक तो वो एक ऐसा नेचुरल वेपन बन गया है जिसका इस्तेमाल, जिसको हासिल करना ईरान के लिए कोई बहुत बड़ी चैलेंज नहीं है, वो कभी ईरान नहीं छोड़ेगा, दूसरा उसका आर्थिक पहलू, आर्थिक पहलू ऐसे कि अगर आपको हर साल 2 बिलियन से ज्यादा का पैसा सिर्फ टैक्स और बाकी चीजों से मिल रहा है शिपिंग वहां पे गुजारने के लिए, तो आपके लिए बैठे बैठाए आपकी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा, ईरान ये जानता है कि उसके लिए उसको किसी से मजबूर होने के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
5: पर ये तो एक तो इंटरनेशनल मैरिटाइम लॉज कुछ है, आपका ओमान से लगते हुए समुद्र का इलाका जहां से अमेरिका कई शिप्स को वहां से गुजार रहा था, ये चीजें कैसे, मतलब ये ईरान का एक्चुअली क्षेत्र तो नहीं हुआ ना?
6: देखिए मैंने बिल्कुल, आपने जो सवाल मुझसे पूछा यही सवाल मैंने ईरान के उन लोगों से पूछा जो उनके हुक्मरान या फिर आप कह सकते हैं उनके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री में मौजूद है। हाँ। उन्होंने एक बहुत स्पष्टीकरण के साथ एक बहुत दो मुझे तर्क दिए। पहला तर्क उन्होंने मुझे दिया कि इस जो 1982 के अंदर या 1983 के अंदर जो संधि हुई थी इंटरनेशनल वाटरवेज को लेकर, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि ईरान उसमें पार्टी नहीं था, ये उनकी तरफ से कहा गया। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि जब वॉर में आप जाते हैं तो फिर कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी उस पर लागू नहीं होती, ये ईरान के तर्क है, ईरान कहता है कि हम पर वो लागू नहीं होता इसलिए हम मानते ही नहीं। तो अब ऐसे में अगर यूएस हमें प्रेशराइज कर रहा है उन संधियों के लिए, उन शर्तों के लिए जो इस समय एप्लीकेबल ही नहीं है, तो हम वो क्यों माने? तो ईरान का एक टूक ये कहना था ये इलाका हमारा है, हमारा ही रहेगा, नियम हमारे होंगे, कानून हमारे होंगे, और यहाँ पे से पैसे वसूलने की शर्त भी हमारी होगी।
5: बहुत शुक्रिया सुमित इस पूरी जानकारी के लिए। सीधे तौर पर कहें तो ईरान और अमेरिका के लिए तो क्या खबर होगी, लेकिन दुनिया के लिए ये अच्छी खबर नहीं। वॉर रूम में एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि कैसे दुनिया के सामने शांति का मसीहा, पीस मीडिएटर बनने वाला पाकिस्तान अफगानिस्तान के गांवों में बच्चों महिलाओं का कत्ल कर रहा है। बने रहिए हमारे इस वॉर रूम में।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आगे आगे
2: उधर
1: उधर करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
5: वी आर ओवर जिमी।
6: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
7: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
8: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
9: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद E3HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: जय हिंद फ्रेंड्स। ईसाइत, सोना, मसाला या विस्तार, 1498 में क्या थी वास्को डिगामा की मंशा? मधुमक्खी जैसे गोरे जो शहद लेकर आ रहे थे, भारत को डंक मारना शुरू कर दिया और बेवकूफ राजाओं का फायदा उठाकर इस देश को गुलाम बना दिया। लेकिन मीर जाफर और मीर कासिम ने अगर सर झुकाया तो रानी लक्ष्मीबाई ने सर उठाया और गोरों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कैसी थी लड़ाई, कौन थे इसके महानायक, तलवारें चली या भजन चला? अगर बचपन में नहीं समझ में आया, नोटबुक निकाल लीजिए। मैं अवध ओझा जल लेकर आ रहा हूं मास्टर जी इन द न्यूज रूम, सिर्फ ललन टॉप पर।
2: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: सीएम योगी ने अयोध्या में चढ़ावा चोरी कांड की गांठ ढूंढ ली। विपक्ष चढ़ावा चोरी पर सवार, योगी बोले हनुमानगढ़ी में पढ़वाई नमाज। चढ़ावा चोरी की लड़ाई नमाज और कब्रिस्तान तक आई। समाजवादी और कांग्रेस पर योगी की चढ़ाई, कांवड़ वाले चैलेंज तक आए। चढ़ावा चोरी के मुद्दे से विपक्ष को मिलेगा माइलेज या योगी मैनेज कर लेंगे। जब राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव से लेकर चढ़ावा चोरी में गिरफ्तार हुए 8 आरोपियों पर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, बात यहां तक आ रही है कि आरोपियों ने चढ़ावा चोरी की रकम को शेयर बाजार, ब्याज और करोड़ों की जमीन में इन्वेस्ट कर रकम दोगुनी करने का बिजनेस प्लान बनाया था। चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार हो चुका है। इतना ही नहीं, अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का केस अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में चढ़ावा चोरी विवाद के बीच सीएम योगी दूसरी बार अयोध्या पहुंचते हैं। हर कोई यही सोचता है कि मुख्यमंत्री चढ़ावा चोरों पर कुछ बोलेंगे, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की एसआईटी रिपोर्ट पर कुछ बोलेंगे, लेकिन सीएम योगी जब बोले तो अयोध्या से हिंदुत्व की सियासत का नया चैप्टर ही खोल दिया।
1: जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारे पवित्र हनुमान गढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था?
0: अब सवाल ये है कि क्या सीएम योगी चढ़ावा चोरी पर बरसने वाले विपक्ष की काट हिंदुत्व से निकाल रहे हैं? जब विपक्ष चढ़ावा चोरी के आरोप में राम मंदिर ट्रस्ट से लेकर बीजेपी, संघ और सरकार सबको घसीट रहा है, तो सीएम योगी विपक्ष को मजहबी मोर्चे पर पस्त करने वाले आजमाए हुए फॉर्मूले पर चल रहे हैं। ये है ट्रंप की नई धमकी। ईरान को मिट्टी में मिलाने का नया ऐलान, दुनिया भर में हड़कंप मचाने वाला नया फरमान। आखिर किसने रची ट्रंप की हत्या की साजिश? ईरान युद्ध की वजह से है ट्रंप को खुद की हत्या का अंदेशा। बढ़ रहा है महायुद्ध का महाखतरा। खामिनई की अंतिम यात्रा के बाद सुलह से ज्यादा संग्राम का जो डर लग रहा था वो सही साबित होता दिख रहा है। इस पूरे हफ्ते अमेरिका

वियतनाम में भारतीय पर्यटकों से भरी नाव पलटी, अब तक 15 लोगों की मौत। फुकोक द्वीप के पास हादसा, राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने जताई संवेदना। न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय के बीच पीएम मोदी ने बताया भारत की विकास यात्रा का हर जल्द बनेंगे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। 3 देशों के दौरे के बाद दिल्ली के लिए भरी उड़ान। दतिया से टिकट कटने के बाद आज तक से बोले बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा, राजनीति में यह चलता है, पार्टी का फैसला सही। मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात। यूपी में 27 का घमासान तेज, मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पार्टी पर फिर बोला हमला, कहा इनका इतिहास राम भक्तों के खून से सना, भारत की विरासत और आस्था को किया अपमानित। आमिर खान की तीसरी शादी पर भड़के नितेश राणे, बताया लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर, युवाओं की से आमिर की फिल्में सोच समझकर देखने की भी अपील की।

और अब बात उस मुल्क की हम करने जा रहे हैं जो दुनिया भर में दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है लेकिन उसमें खुद ही गिर जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कंगाली और बदहाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान की। दरअसल आजकल उसका कोई दांव नहीं चल रहा। पहले POJK में विद्रोह, अब बलूचिस्तान की आग भी उसके बुझाए नहीं बुझ रही।

0: पहले बलूचिस्तान का हाल देखिए। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान सरकार के नाक में दम कर दिया है, वो भी ऐसा कि इस्लामाबाद कांप रहा है।
1: यही बलूचिस्तान तकरीबन 237 दिन तक आजाद था 1947 के बाद, बिल्कुल इंडिपेंडेंट। और ये पाकिस्तान का एक मेजर जनरल अकबर खान, उसने जाके वो कैप्चर किया था, जैसे हमारे कश्मीर को किया था। और तब से वहां पर बलूचिस्तान में बलूचिस की एक इंडिपेंडेंस की आग चल रही है। तकरीबन कईयों को तो उन्होंने मार काट के भी रख दिया है, जो 17 इन्होंने पकड़े थे। कहने का मतलब है, बलूचिस्तान में अभी एक ज्वाला फट चुका है आजादी के लिए।
0: पिछले एक हफ्ते में ही ताबड़तोड़ हमले कर 42 पाक सुरक्षा कर्मी मार गिराए हैं। ज़ियारत जिले में पुलिस पोस्ट पर हमला करके 18 जवानों को अगवा किया गया और फिर उन्हें बेरहमी से भून दिया गया। ये वीडियो देखिए, क्वेटा की सड़कों पर खुद पुलिस वालों के परिवार अपनों के शव रखकर धरने पर बैठे। धरने और गिरते मनोबल की खबरें इस्लामाबाद पहुंची, जिसे सुनकर शहबाज और मार्शल आसिम मुनीर क्वेटा पहुंचे।
1: ये पाकिस्तान सरकार के लिए हेडेक इसलिए बना है क्योंकि कश्मीर हमेशा हमारा रहा है और इन्होंने इलीगली ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कैप्चर किया था। और वहां के लोगों को जितना सताया जा रहा है, और आपको पता है जब ये JAAC बना था, इसके बाद जो इनका लीडर है वो मुल्ला उमर, उसको भी इन्होंने कोशिश की, उसको घायल कर दिया था। लोगों में आक्रोश आ चुका है।

0: और आज वहां पर पीओके की जो आवाम है वो भारत के साथ जुड़ना चाहती है, और ये पाकिस्तान के लिए अभी सिरदर्दी हकीकत है। ये तो होना ही था, एक दिन होना था। और आज की तारीख में वहां महिलाएं भी, यंग महिलाएं बहुत भारी संख्या में, खासकर रावलकोट वगैरह में जमा हो रही हैं, तो पाकिस्तान के लिए तो हेडेक, ये लॉन्ग टर्म हेडेक रहेगा।
1: अब आपको ले चलते हैं पीओजेके। विरोध प्रदर्शन में बर्बरता के बाद अब पीओजेके में लोग आजादी को ही अपना पहला हक मान रहे हैं। पाकिस्तान आज इतिहास के उस मोड़ पर खड़ा है जहां वो अपने ही बोए आतंकवाद के दलदल में पूरी तरह धस चुका है। दरअसल पाकिस्तान में शरणार्थियों के नाम पर 12 डमी सीटें बनाई गई। इसको लेकर स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये नया तरीका इस्लामाबाद का है लोगों की आवाज को दबाने का, यानी बिजली और पानी पीओजेके की, और मौज ले रहा पाकिस्तान का पंजाब प्रांत। विरोध प्रदर्शन में बर्बरता के बाद अब पीओजेके में लोग आजादी को ही अपना पहला हक मान रहे हैं। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने इस्लामाबाद को सिर्फ 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अल्टीमेटम कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी तो मुजफ्फराबाद में ऐसा मार्च होगा जो तख्ता पलट कर देगा।
2: आठ दाइयों की तारीख में इस खेते में कभी लासानी फिक्का वराना, कभी किसी किस्म का कोई तशद्दुद वाकया रोनमा नहीं हुआ, कहीं लोग आपस में नहीं लड़े, कहीं बंदूक का इस्तेमाल नहीं हुआ, और आज आपने कश्मीरियों को एक माह के बाद उस पॉइंट पर लाया है। देखते हैं फिर अब कौन जीतता है।
1: वैसे 27 जुलाई को पीओजेके में चुनाव होने हैं, और उससे पहले ये टकराव पाकिस्तान सरकार के लिए बड़ा सरदर्द बनता दिख रहा है। सच तो ये है कि पाकिस्तान अब घिरता जा रहा है, बलूचिस्तान हाथ से जा रहा है, पीओजेके में बगावत की राह पर। टीटीपी वाले खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान फौज की कब्र खोदी जा रही है। इस सबसे बचने का एक ही फॉर्मूला है, भारत पर आरोप लगा दो, जो पाकिस्तान की पुरानी आदत है। पाकिस्तान आज इतिहास के उस मोड़ पर खड़ा है जहां वो अपने ही बोए आतंकवाद के दलदल में पूरी तरह धंस चुका है। अब ले चलते हैं आपको अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा क्षेत्र डूरंड लाइन के पास, जहां पाकिस्तान आतंक के खात्मे के नाम पर मौत का खेल खेल रहा है। पाकिस्तान के हमलों में बच्चों और महिलाओं की जान जा रही है। आज तक संवाददाता मीर फरीद इस समय अफगानिस्तान में है, उसी गांव में जहां शहबाज शरीफ के आदेश पर मुनीर की फौज ने बमबारी की। 28 जून की रात को भी अफगानिस्तान पर हवाई हमले हुए। देखिए हमारी ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये जो खंडहर है वो कभी घर हुआ करते थे, लेकिन अब बस मलबा बचा है। एक रात पहले तक ये आबाद था, लेकिन अब बस अवशेष बचे हैं और कुछ यादें। इनके इस हाल के पीछे पाकिस्तान की हुकूमत और फौज का हाथ है, जो इनाम अफगानियों और आतंकियों में फर्क नहीं कर पाई। हमारी टीम पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर डूरेंड लाइन के पास उस गांव में पहुंची जहां स्थानीय लोगों के मुताबिक पाकिस्तान की सेना ने सैन्य कार्रवाई के दौरान घरों को निशाना बनाया।
3: आज तक की टीम वो पहला इंटरनेशनल क्रू है जो इस इतना दूर जो है इस डूरेंड लाइन के करीब पहुंचा है, और आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहा है कि क्या हुआ था उस दिन यहां, किस तरीके से तबाही हुई थी और कैसे जो है उसके बाद एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस का।
1: ये है अफगानिस्तान का पक्तिया प्रांत। इसी राज्य के चमकानी गांव में पाकिस्तान ने 28 जून को हवाई हमला किया। पाकिस्तान जिनको आतंकी बताने की कोशिश कर रहा है, उन 26 निर्दोष नागरिकों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। इस घर की हालत देखकर ही पता लगा सकते हैं कि हमला कितना जोरदार रहा होगा।
3: यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि आसपास का जो सामान है उससे भी बहुत कुछ पता चलता है कि आखिर यहाँ पे क्या था। इसे आप देख सकते हैं, जो मैट्रेसेस हैं या फिर तकिए और उसके अलावा जो महिलाओं के कपड़े हैं और जो बाकी सामान होता है घर का वो यहाँ तबाह होके बिखरा हुआ है। उसके बाद एक और सिलसिला एस्केलेशन का शुरू हुआ और आज हालत ये है कि जब हम ड्यूरेंड लाइन के बहुत करीब हैं, ड्यूरेंड लाइन इस तरफ आपको दिखाऊंगा, कैमरन को बोलूंगा कि आपको दिखाए, यहां से जो है ड्यूरेंड लाइन का जो 2600 किलोमीटर इलाका है इस तरफ से है और ज्यादातर जो ये ड्यूरेंड लाइन जो ये बॉर्डर है ये खुला है यानी कि इसकी फेंसिंग नहीं है और वो एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में।
1: जिन लोगों को पाकिस्तान आतंकी बताकर अपने घर पर मिल रही हार और सेटबैक को जीत में बदलने की कोशिश कर रहा है उस इमारत के हालात देखिए। यहाँ पाकिस्तान ने 28 जून की रात को बम गिराए थे।
4: जब मैं वहां फंसा था, मैं उस रूम पे था, वो तीसरी फ्लोर पे वहां फंसा था, मैंने किसी को आवाज की कि मेरी मुझे सीढ़ी दे दी, वहां की जो सीढ़ी है वो बंद थी पूरी ऊपर से जो गिरा हुआ था, तो मैंने आवाज की कि मुझे सीढ़ी दे दे, मेरी बाँह बंद है। मेरे पास अपनी वाइफ थी और छोटी एक साल की बच्ची थी, तो उनको मैंने निकाल दिया, जख्मी थे तो उसको मैंने खुद निकाल दिया। पहले तो मैं सब चीज मेरे ऊपर पड़ी थी, मैं खुद को निकाल के फिर उनको निकाल दिया मैंने,
3: फिर एक और ब्लास्ट
4: यहाँ बिठा के उनके ऊपर कंबल कोई चादर मदर औरतों की जो चादर होते हैं हवातीन के, तो चादर मदर कुछ भी नहीं थी घर में, तो मैंने उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल दी कि आप यहाँ बैठे, मेरी माँ पसी है, बहुत सारी बच्ची पसी है, मैं उनको निकालता हूँ।
5: डर तो इतना ज्यादा डर है पाकिस्तान के जो नाम अभी उसको देता है लोग दूसरा इसराइल, इसके जहाज हर शब हर रात यहाँ आते हैं, चक्कर लगाते हैं, लोगों के साथ बहुत ज्यादा खौफ है। जब भी उनकी तैयारी यहाँ पर फिजा में आते हैं लोग आसमान की तरफ देखते हैं, रोज की तरफ, रोज हम आसमान की तरफ देखते हैं कब क्या होगा, कहाँ पे अटैक होगा। यूं तो उसने मामूल बनाया है, कुनड़ में, खोस में, पक्तिका में, अब यहाँ पर हुआ, यहाँ पर जो हमला हुआ वहशतनाक, इसराइल ने इस जुल्म फलस्तीनियों पर भी नहीं किया है।
1: दरअसल पाकिस्तान दावा करता है कि पाकिस्तान में बढ़ते आत्मघाती हमलों में टीटीपी का हाथ है और साथ ही पाकिस्तान ये भी दावा करता है कि टीटीपी के ठिकाने अफगानिस्तान के भीतर मौजूद हैं और वो ही इन आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार है। इसीलिए पाकिस्तान पहले भी बिना किसी ठोस सबूत के अफगानिस्तान पर हवाई हमले करता रहा है।
3: जो गुस्सा है साफ तौर पे कि पाकिस्तान सिविलियंस को टारगेट कर रहा है और जो बाद में ये बात है कि ये टेरर टारगेट्स हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं क्योंकि सिविलियन इलाका है और यहाँ भी जो है आसपास के लोगों का माने तो वो वही कह रहे हैं जो तालिबान सरकार कह रही है कि एक और टारगेट था सिविलियन पॉपुलेशन पे और इसमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं जो है मारी गई हैं।
1: हालांकि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करती है। दोनों ही देशों के बीच इस मुद्दे को लेकर सीमा पर कई बार गोलीबारी हो चुकी है। इसके साथ ही अफगानिस्तान से तनातनी के पीछे एक जो मुख्य वजह है वो दोनों देशों का सीमा विवाद भी है। पाकिस्तान ने ही अफगानिस्तान में आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा दिया था जो अब उसी के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। उनका कहना है कि आज इन हालात का सबसे बड़ा खामियाजा बेगुनाह और आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है।
6: अफगानिस्तान में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के खिलाफ बहुत गुस्सा देखने को मिल रहा है। अब आपको ले चलते हैं हमारे संवाददाता मीर फरीद के पास। मीर फरीद, बताएं क्या हालात आपको दिखे वहां के अलग अलग इलाकों में आप पहुंचे?
3: जी श्वेता, जैसे ही मैंने काबुल में लैंड किया तालिबान से तो बात करनी थी लेकिन कोशिश मेरी थी कि जो आम इंसान है उससे बात करूं और उसका सेंटिमेंट जानूं और क्रॉस सेक्शन से मैंने बात की और एक बात सबने कही कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की पीठ में छुरा घोंपा है। पाकिस्तान से वो सबसे कम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान पे इस तरीके से हमला करेगा और न सिर्फ बॉर्डर्स पे बल्कि काबुल में भी एक हॉस्पिटल पे हमला हुआ है। लोग जवाब चाहते हैं पाकिस्तान से क्योंकि सवाल ये पूछ रहे हैं कि आप क्या सबूत लेके, क्या इनपुट है आपके पास कि आप सिविलियन एरियाज पे जो है बॉम्बिंग कर रहे हैं और बाद में ये कह रहे हैं कि ये तालिबान का या टीटीपी का ठिकाना था या इस जगह को पाकिस्तान के खिलाफ हमले के लिए जो है प्लान वो सब वहां हो रहे थे। तो गुस्सा बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान की लीडरशिप ऑब्वियसली चाहे आसिम मुनीर हो या शहबाज शरीफ, उनके खिलाफ भी बहुत हमने देखा। और उसका दूसरा पहलू भी ये कि भारत के लिए जो है दोस्ती का हाथ बनाना चाहते हैं अफगानी और इज्जत जो है भारत के लिए काफी बढ़ गई है वहां। और जब वो मुझे भी जब उन्होंने देखा कि कहा कि आप हिंदी हैं, आप इंडिया से हैं, तो हर एक ने कहा कि हमारे मेहमान बन जाओ। और उसका मतलब श्वेता ये है कि आप से हम पैसा नहीं लेंगे, आप हमारे घर आपके लिए खुले हैं, आप हमारे दस्तरखान पे आ जाइए। तो इस तरीके का सेंटिमेंट है। तो साफ तौर पे बहुत ज्यादा गुस्सा है और जितने ये अटैक हुए हैं उस पे है, और वो भी कि जो डर है आगे कि पाकिस्तान और ऐसे अटैक ना करे। और अफगानिस्तान जो पिछले 5 साल से पीस और स्टेबिलिटी देख रहा था, अब पाकिस्तान की वजह से फिर एक बार जो है वहां हालात खराब ना हो। जी श्वेता,
6: पर इस बात को लेकर क्या वहां पर थॉट है कि पाकिस्तान लगातार क्यों अफगानिस्तान को इस तरीके से, खासकर सिविलियन एरियाज को इस तरीके से निशाना बना रहा है?
3: जी श्वेता बिल्कुल, तालिबान के काफी लोगों से हमने बात की, कुछ से बात हुई कैमरा पे, कुछ से पर्दे के पीछे बात की। मुहाजिर फराही जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं तालिबान के, उनसे मैंने बात की एक्सक्लूसिवली, उन्होंने आज तक और इंडिया टुडे से बात की और कहा कि पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि वो अभी भी समझता है कि तालिबान उनके हाथों की कठपुतली है। क्योंकि तालिबान और पाकिस्तान का रिलेशन हम जानते हैं, जब तक ऑक्यूपाइंग फोर्सेस थी अफगानिस्तान में तो भरपूर जो है तालिबान पाकिस्तान पे निर्भर करता था, चाहे किसी भी किस्म की मदद हो, खासकर हथियार, इंटेलिजेंस। लेकिन अब तालिबान ने मानता है कि वो वक्त जा चुका है। पहले तालिबान को अपना इंटरेस्ट जो है नेशनल इंटरेस्ट देखना है, और पाकिस्तान की ये समझते हैं कि फ्रस्ट्रेशन ये है कि अब वो तालिबान जो वो तालिबान को कहता है तालिबान वो नहीं करता, तालिबान जो है अपने फैसले खुद लेना चाहता है। और शायद वही वजह है कि पाकिस्तान इतना एग्रेसिव हो गया है तालिबान के खिलाफ और अफगानिस्तान के खिलाफ। जी श्वेता
6: बहुत शुक्रिया, मीर फरीद हमारे संवाददाता ये जानकारी हमें दे रहे हैं। वॉर रूम में आज के लिए इतना ही, देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: राम भक्तों के चढ़ावे के साथ जो हुआ वो अनर्थ था, आस्था पर बड़ी चोट थी और उस वारदात से हर कोई आहत है। कुछ ऐसा ही दुख जता रहे हैं राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा। वो अब कह रहे हैं कि राम मंदिर में हुई घटना से हम सब छोटा महसूस करते हैं।
1: यह अपने में एक तरीके का कलंक है। एक तरीके से राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है, व्यवस्था में सुधार होगा मुझे पूरा विश्वास है और इस प्रकार की घटनाएं दोहराई नहीं जाएंगी।
0: चढ़ावा चोरी के गंभीर आरोपों की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे सामने आते जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से अब सामने आया है कि मंदिर में काम करने वाले कुछ पूर्व सैनिक पर कुछ भी बोलने पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसके लिए बकायदा सभी पूर्व सैनिकों को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा गया था। कहा गया था कि कोई कुछ भी पूछे बोलना नहीं है। जिस मैसेज पर सवाल उठ रहे हैं उस मैसेज का स्क्रीनशॉट भी आज तक के पास मौजूद है। इससे साफ है कि चढ़ावा चोरी के खुलासे के बाद मामले को छिपाने की कोशिश की गई थी। उधर पुलिस आरोपों की तह तक जाने के लिए अब जेल में बंद आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव से सवाल जवाब की तैयारी है। पुलिस दोनों को रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी। इसके लिए पुलिस ने कोर्ट में अर्जी दी है और 7 दिन की रिमांड मांगी है। 14 जुलाई को पुलिस की याचिका पर फैसला हो सकता है। चढ़ावा चोरी मामले में सवाल उठने के बाद ट्रस्ट महासचिव पद से इस्तीफा देने वाले चंपत राय ने अब अपने करीबी सहयोगियों से कहा है कि SIT की अंतिम जांच रिपोर्ट आने तक वो अयोध्या नहीं छोड़ेंगे। सूत्रों के माने तो उन्होंने जांच पूरी होने तक अयोध्या में रहकर पूरी तरह सहयोग देने की बात कही है। इस बीच चंपत राय की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। तीर्थ क्षेत्र भवन के आसपास अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।
2: पूछिए, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा को इस बात का इल्म हो गया है कि इस बार जनता भाजपा के विरोधी नहीं, जो भाजपा के समर्थक हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो नेता हैं, उनको जो जिन्होंने वोट दिया है, उनका बिल्कुल मत क्लियर है कि सम्राट चौधरी जैसे व्यक्ति को, के चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को आप बिहार का मुख्यमंत्री नहीं थोप सकते हैं। आपको जिस समाज का भी मुख्यमंत्री बनाना है बनाइए, कुशवाहा समाज का मुख्यमंत्री बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी अच्छे व्यक्ति को बनाइए, चरित्रवान व्यक्ति को बनाइए, पढ़े लिखे व्यक्ति को बनाइए, ताकि बिहार का तरक्की हो। बिहार के लोग, बिहार के बच्चे सिर्फ मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। आपको वोट दिया है बिहार के लोगों ने, 202 विधायक जिताया है, तो आपकी जिम्मेवारी है कि सबसे अच्छे व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व दीजिए ताकि बिहार का विकास हो सके।
3: हाँ, उनके प्रत्याशी हार के डर से नामांकन के बाद भी नाम वापस ले रहे हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी और JDU में इतना अंतर कला है, इतना द्वंद है, वो डिसीजन कर ही नहीं पाते, तो उनका प्रत्याशी कौन जीत सकता है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी को फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल विमेन का सम्मान से नवाजा गया है। नीता अंबानी को देश की सबसे शक्तिशाली महिला का अवार्ड केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने दिया।
4: Recipient of Fortune India Most Powerful Women 2026. Please welcome Chairperson Reliance Foundation, Mrs. Nita Mukesh Ambani.
5: Reliance Foundation की Chairperson Nita Ambani ने एक और सम्मान अपने नाम जोड़ लिया है। मुंबई में आयोजित Fortune India Most Popular Women 2026 समारोह में नीता अंबानी को देश की सबसे ताकतवर महिला का अवार्ड मिला। इस हाई प्रोफाइल लिस्ट में उन्होंने पहला स्थान हासिल किया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने नीता अंबानी को खिताब सौंपा।
6: आई एक्सेप्ट दिस ऑनर विद डीप ह्यूमिलिटी ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर रिलायंस फाउंडेशन। दिस रिकॉग्निशन कम्स एट अ वेरी स्पेशल मोमेंट इन आवर जर्नी। रिलायंस फाउंडेशन हैज जस्ट क्रॉस्ड द माइलस्टोन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग 100 million lives. 100 million dreams, 100 million futures. And amongst them, 29 million are children.
5: सम्मान मिलने पर रिलायंस फाउंडेशन ने बयान जारी कर कहा कि ये सम्मान उनकी दूरदर्शी लीडरशिप, संस्था बनाने और सबके साथ मिलकर विकास करने के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और पक्के विश्वास का जश्न है। इस कार्यक्रम में बिजनेस, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और कला समेत अलग अलग क्षेत्रों की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट जारी की गई। फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पॉपुलर वुमन का अवार्ड जीतने पर नीता अंबानी ने ये संदेश भी दिया कि लड़कियों को सशक्त बनाने से देश भी मजबूत होगा। आज तक ब्यूरो।
3: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, oh, yeah, you make my dreams come. Steely Dan, go back, Jack, do it again. Loggins and Messina, even though we ain't got money. And much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
1: We are over, Jimmy.
2: Hey, life mein scratches to aayenge. Gaadi ke scratches ko to Cosmo PP ab samal lega. आप अपना देख लो।
3: ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव का ऐलान है, जो सनातन है वही समाजवाद है।
4: जो सनातन है वही समाजवादी।
3: ये एक और संकेत है कि अखिलेश यादव अब अपनी समाजवादी पहचान के साथ साथ खुलकर उस पिच पर खेल रहे हैं जिस पर बीजेपी दम भरती थी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बीजेपी को घेरने में सफल दिख रहे अखिलेश की दलील है कि आज सनातनी दुखी है, क्योंकि बीजेपी धर्म की नहीं धन की राजनीति करती है।
5: जो भारतीय जनता पार्टी के विचार हैं, वो वोट के लिए बदलते हैं। उनके लिए धर्म नहीं धन प्राथमिकता है।
6: हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, चढ़ावे की चोरी से बड़ा कोई पाप नहीं है। इन्होंने महापाप किया है।
3: बात सिर्फ राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर आक्रामक होने की नहीं है। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने हाल में कई ऐसे संदेश दिए हैं जिसे बीजेपी के हिंदुत्व वोट बैंक में सेंध मारने की कोशिश माना जा सकता है। 8 जुलाई को समाजवादी पार्टी की नेता पूजा शुक्ला ने लखनऊ में अविमुक्तेश्वरानंद की मौजूदगी में धार्मिक अनुष्ठान, आध्यात्मिक प्रवचन और सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया है। इसके पहले अखिलेश यादव 8 बड़े मंगल पर हनुमान जी को याद करते देखे गए। यहाँ तक कि उन्होंने बड़ा मंगल पर भंडारे का प्रसाद बांटा था। समाजवादी पार्टी ने इसी हफ्ते ब्राह्मण सम्मेलन किया था, जिसमें बैनर लगा था ब्राह्मण चला अखिलेश के संग। लेकिन जब अखिलेश अपनी नई राजनीति का नैरेटिव खड़ा करने में लगे हैं, तब उनके सामने असल सवाल आने वाले यूपी चुनाव में इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का हो सकता है। हाल में कांग्रेस के नए यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा है कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं और गठबंधन में हमारी बराबर की हिस्सेदारी होगी। यानी सीट बंटवारे पर कांग्रेस ने दबाव बनाने के तेवर दिखा दिए हैं। कांग्रेस की दलील है कि बीजेपी से राष्ट्रीय पार्टी ही लड़ सकती है। राजेंद्र पाल गौतम के इस बयान से पहले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मुसलमानों पर अखिलेश की चुप्पी पर सवाल उठाया था।
7: मंदिर की चंदा चोरी के ऊपर आप मुखरता के साथ बोलते हो, लेकिन मुसलमान की सीना चोरी के ऊपर आप खामोश हो जाते हो, ये समझ में नहीं आ रहा है।
3: इस बयान को भी समाजवादी पार्टी पर कांग्रेस के दबाव की रणनीति माना जा रहा है। हालांकि यूपी में सीट बंटवारे पर अखिलेश की लकीर साफ है, सीट नहीं जरूरी है। उधर अखिलेश जब इस जीत के लिए पीडीए और सनातन का जोड़ लेकर आए हैं, तब योगी आदित्यनाथ उन बातों को कुरेद रहे हैं जिस पर समाजवादी पार्टी पहले से घिरती रही है।
8: बीजेपी की सरकार आई तो पैसा मंदिरों के विकास के लिए धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है, और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था। उनको कब्रिस्तान प्यारा है, इसलिए वे राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम और मां विंध्यवासिनी धाम और नैमी सारण्य और चित्रकूट धाम के विकास का विरोध करते हैं।
3: यूपी चुनाव नजदीक आते ही योगी की ओर से अखिलेश यादव पर ऐसे हमले और बढ़ेंगे। अगर अखिलेश इंडिया गठबंधन का मजबूत जोड़ बनाए रख पाते हैं तो मुकाबले में उन्हें आसानी होगी। आज तक ब्यूरो

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

वियतनाम में भारतीय पर्यटकों से भरी नाव पलटी, अब तक 15 लोगों की मौत। फुकोक द्वीप के पास हादसा, राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने जताई संवेदना। न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय के बीच पीएम मोदी ने बताया भारत की विकास यात्रा का हर जल्द बनेंगे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। 3 देशों के दौरे के बाद दिल्ली के लिए भरी उड़ान। दतिया से टिकट कटने के बाद आज तक से बोले बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा, राजनीति में यह चलता है, पार्टी का फैसला सही। मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात। यूपी में 27 का घमासान तेज, मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पार्टी पर फिर बोला हमला, कहा इनका इतिहास राम भक्तों के खून से सना, भारत की विरासत और आस्था को किया अपमानित। आमिर खान की तीसरी शादी पर भड़के नितेश राणे, बताया लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर, युवाओं की से आमिर की फिल्में सोच समझकर देखने की भी अपील की।

नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम और आप देख रहे हैं कहानी 2.0। मुंबई, वो शहर जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कभी सोता नहीं है। देश की आर्थिक राजधानी, सपनों की नगरी और करोड़ों उम्मीदों का ठिकाना। लेकिन हर मानसून के साथ इस शहर की एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जो विकास के तमाम दावों पर सवाल खड़े कर देती है। करोड़ों के इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच आखिर ऐसा क्या है कि कुछ ही घंटों की बारिश पूरी व्यवस्था को डुबो देती है? क्या यह सिर्फ प्राकृतिक चुनौती है या फिर बरसों से चली आ रही प्रशासनिक अनदेखी का नतीजा? आज कहानी मुंबई की।

0: चमक दी दमक दी मुंबई, लेकिन उसी मुंबई में एक तस्वीर ये भी है
1: जिन पाइपलाइन से दरअसल स्टॉर्म वाटर ड्रेनेजेस और पाइपलाइन से जहां से पानी निकलना चाहिए था वहीं से पानी दरअसल बाहर आके यहां इस वक्त पानी जो है अंधेरी सबवे में घुस रहा है।
0: सपनों का शहर मुंबई, लेकिन ये तस्वीरें भी उसी सपनों के शहर की हैं। सितारों की मुंबई, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर दिल बैठ जाता है। मेट्रो ट्रेन, मोनोरेल, बड़े बड़े मॉल्स, ऊंची ऊंची इमारतें, फ्लाईओवर, अंडरपास, फुटओवर ब्रिज, पैसा, शोहरत, रसूख, क्या नहीं है मुंबई के पास। फिर क्यों हर मानसून में मुंबई की यही कहानी। हालात बताते हैं कि मुंबई के पास सब कुछ है सिवाय अच्छी नालियों के।
2: लगातार बारिश हो रहा है और पानी निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है और पब्लिक परेशान है, आने जाने का दिक्कत है। बस भी देखो इधर पड़ी है,
3: देख सकते हैं कितना पानी भरा है। क्या करें, मैं सोच रहा हूँ चल के जाओ या कैसे जाओ।
4: 3 दिन से हम काम पर नहीं जा रहे हैं ये बारिश की वजह से, घर पे ही बैठे हैं। 3 दिन से हम लोग का रूम में भी पानी भर चुका है,
5: पानी इतना है कोई पैदल नहीं चल पा रहा है, इतने गाड़ी वाले जा रहे हैं, सब गाड़ियां बंद हो रही हैं।
6: लोग परेशान है, यहाँ पे हर जगह पे पानी पानी हो गया है, कहीं भी लोगों को मतलब घर से निकलने के लिए भी जगह नहीं है कोई।
5: देखो कितनी
6: दिक्कत हो रही है, क्या पब्लिक परेशान हो के पब्लिक समझ में नहीं आ रही किधर जाना है किधर नहीं जाना है, हर जगह तकलीफ ही तकलीफ है यहाँ पे।
0: जी हाँ, गटर, नाला, मेन होल जो भी कह लें, लेकिन मुंबई परसों बरस से तरस रही है ढंग की नाली के लिए। मंगलयान तक उड़ान भरने वाले देश में इस सच पर क्या किसी को शर्म नहीं आती। कुछ घंटों की बरसात में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे चमकदार शहर गटर में तैरने लगता है। मुंबई के इन हालातों के कारण निवारण की पूरी कहानी सुनाएंगे, लेकिन पहले उन सवालों की बात कर लेते हैं जो हर साल सामने आ खड़े होते हैं। 80,000 करोड़ का बजट होने के बावजूद हर साल मुंबई क्यों डूब जाती है? क्या बीएमसी का अरबों रुपए का बजट सिर्फ कागजों तक सीमित है? क्या मुंबई की भौगोलिक स्थिति ही इसकी सबसे बड़ी मजबूरी है या फिर सरकारी लापरवाही? क्या बेतहाशा शहरीकरण और कंक्रीट के जंगलों ने बारिश के पानी का रास्ता बंद कर दिया है? आखिर देश को सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर हर बारिश में बेबस क्यों हो जाता है?
7: मुंबई शहर का प्लानिंग इस तरह है कि इसको तीनों छोर से समुद्र ने घेर रखा है और यहाँ पर जो ड्रेनेज है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन है, उसका सारे पानी समुद्र में निचोड़ के डाला जाता है। लेकिन जब वर्षा होती है, जब बारिश होती है, तब समुद्र का पानी उसी स्टॉर्म वाटर ड्रेन से शहर में घुसता है, जिसकी वजह से मुंबई शहर में ये बाढ़ जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। मैं समझता हूँ कि मुंबई शहर में इतना बजट है कि वो अगर चाहें तो इस पर काम कर सकते हैं, इस पर पैसा खर्च करके फ्लड जोन का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन जो बाढ़ हर साल मुंबई में आती है उसको रोका जा सकता है और मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ये करने में सक्षम है, बस वो करना नहीं चाहती।
0: इन सवालों का जवाब चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन फिलहाल मुंबई की यही तस्वीर है। सड़क स्विमिंग पूल बन गई है, अंडरपास में पानी इतना भर गया है कि आदमी डूब जाए, दौड़ने वाली गाड़ियां तैर रही और जो नाव नहीं बन पाई वो बंद हो गई। अब बीएमसी के कर्मचारी सड़कों के किनारे नालियां ढूंढ रहे हैं।
8: देश देश की आर्थिक राजधानी, सपनों की नगरी, कभी न रुकने वाली मुंबई, लेकिन हर मानसून आते ही ये शहर पानी में डूब जाता है और हर साल वही सवाल फिर खड़ा हो जाता है, क्या मुंबई की किस्मत में हर बरस डूबना ही लिखा है? क्यों हर बार मानसून की बारिश लोगों के मन में अनहोनी का डर लेकर आती है?

0: अंधेरे सबवे इस वक्त जलमग्न हो चुका है और ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। ये जो एक कंक्रीट की बिल्डिंग थी, ये दरअसल पतरे के बने हुए जो शांटीज थी, जो घर थे, उनके ऊपर ये गिर गई।
1: वही ग्राउंड प्लस 3 जो मंजिला झोपड़ा था, जो अचानक जो है रविवार रात करीब 8 बजे करीब जो है ढह गया।
2: सिटी गैस रोड जो है पूरे तरह से पानी के नीचे गया है। ये जो रोड है नाला सोपारा और विरार की तरफ जुड़ जाता है, इस रोड पर बड़े पैमाने पे पानी जम चुका है और ये पानी में बहुत सारी गाड़ियां है वो बंद हो चुकी है।
0: चार लेन की ये जो सड़क है ये देखिए हो गई है प्रिसाइसली 1 लेन की। इतनी ज्यादा बरसात जो दरअसल सवेरे से हो रही है,
3: केवल कुछ दिनों की बरसात ने ही मुंबई को दुनिया के सबसे बर्बाद, बेहाल और बदहाल शहरों में शुमार कर दिया है। आपको भी अजीब लगता होगा कि हर बरसात के बाद हम वही कहानी दोहराने लगते हैं कि लोकल के पहिए थम गए, कि स्कूल कॉलेज बंद हो गए, कि ट्रैफिक जाम लग गया, कि रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया, कि कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। वही हिंद माता, वही सायन, वही अंधेरी, वही कुर्ला, वही बांद्रा, वही दादर, वही किंग सर्किल, वही चेंबूर और वही डूबने तैरने की तस्वीरें। लेकिन मुंबई के कर्ता धर्ताओं को न चिंता होती है, न बुरा लगता है और न ही कभी तस्वीर बदल पाती है।
0: पास वसई इलाके में है, वसई ये दरअसल पालघर डिस्ट्रिक्ट में आता है और पिछले 4 दिनों से लगातार तकरीबन 200 mm से ज्यादा की बरसात हो रही है यहाँ पे। और इस वक्त आप मेरे पीछे देख लीजिए, ये है वसई नाला सोपारा लिंक रोड। दरअसल यहाँ पर कुछ जो एवरशाइन सिटी और ऐसे कई सारे इलाके हैं जहाँ पर की कनेक्टिविटी इसी रोड के जरिए है और लोग देखिए अपनी गाड़ियां आप और जो लोग हैं खुद भी अपने आप को इसी तरह से। दरअसल ये जो इलाका है ये पूरा सॉल्ट पैन का इलाका है, यहाँ पर नमक बनाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ये खाली मैदान है और यहाँ पर देखिए इतना ज्यादा पानी भरा हुआ है। ये जिस पर हम अभी इस वक्त खड़े हैं वो है ईस्ट वेस्ट, जो वसई का जो मेन ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी रोड है वहां पर है। और इस वक्त आप देख लीजिए, आइए लोगों से बात करते हैं, कितने दिनों से पानी भरा हुआ है यहाँ पे?
4: कितने दिन हो गया?
0: 4 days.
4: 4 दिन. 4 दिन से भरा हुआ है, आने जाने का रास्ता एकदम ब्लॉक है। उधर ग्राउंड फ्लोर पे पूरा बिल्डिंग में पानी लग गया है और इधर भी जो एवरशाइन वाला रास्ता है उधर भी ग्राउंड फ्लोर में पानी।
0: हर साल की एक ही कहानी है,
4: हर साल की एक कहानी है।
0: चल रही है आपकी गाड़ी?
5: गाड़ी अभी चालू है, गाड़ी चालू है। पासपोर्ट का आज ही टाइम है, वो भी लास्ट डेट है, जाना तो पड़ेगा ही, है ना।
0: ये हर मॉनसून में आप यही लगा लेते हैं?
5: नहीं, इस बार ट्राई करके देख रहे हैं।
4: इस बार जुगाड़ में अपना लगा लिया बस।
3: हजारों करोड़ खर्च करके मुंबई को एक नरक की व्यवस्था दी है सारे इंतजाम ने मिलकर। 80,000 करोड़ के बजट का क्या करती है बीएमसी? मॉनसून से पहले नालों की सफाई में 158 करोड़ रुपए खर्च किए गए और इतने बड़े खर्च के बाद इस शहर का जो हाल है वो आपके सामने।
6: जिन घरों में पानी घुसने की शक्यता है या फिर उनके घर का संपर्क टूट सकता है और उनके घरों में फ्लडिंग हो सकती है बड़े प्रमाण में, उन लोगों को हमने स्थलांतरण करने के लिए उपाय योजना किया।
3: ये भारत की आर्थिक राजधानी की हालत है, शंघाई से तुलना का सपना दिखाते हैं इस शहर को सियासत के सिरमौर, कौन यकीन करेगा। अकेले मुंबई शहर हर साल 5,00,000 करोड़ तक डायरेक्ट टैक्स देता है। बीएमसी ने बजट में प्रॉपर्टी टैक्स से 6,200 करोड़ का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है। पूरे देश को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से जो पैसा मिलता है उसका 30-35% अकेले मुंबई शहर से ही आता है। इस मुंबई में सब कुछ बिकता है, हवेली से सपने और नींद तक, लेकिन वो दिल नहीं मिलता जो इस शहर की धड़कनों को अपनी राजनीति का मकसद बना ले।
7: सवाल ये है कि ऐसा हुआ ही क्यों? क्या ये जल प्रहार ही मुंबई का भाग्य है या एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का टूटा हुआ भरोसा? 21 साल पहले 2005 में कुदरत ने संभल जाने की चेतावनी दी थी, लेकिन मुंबई को चलाने वाले, महाराष्ट्र को चलाने वाले जैसे उन चेतावनियों को सुनने की कोशिश ही नहीं कर रहे।

0: ये तस्वीरें कोई सतयुग द्वापर या त्रेता की नहीं है, इसी कलयुग के आधुनिक कालखंड की, मात्र 20 साल पुरानी। साल था 2005, यही जुलाई का महीना। ऐसे ही बादल उमड़े थे, ऐसे ही इंतजाम थे, और आदमी की जान नाले के समान बनकर रह गई थी।
1: सब बहुत लेट पहुंचे सब लोग, क्योंकि कल बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया था आरे के उधर।
2: जब मॉनसून शुरू होता है तो एक पॉइंट ऐसा आता है यार, एक ऐसा फेज आता है जहां पर पूरी मुंबई थम जाती है। तो हम लोग अगर मराठी में बोलते हैं, इंग्लिश मराठी में, तो व्हाट लवली टू व्हाट लवली। तो ये एक फेज आता ही है कि एक 4-5 दिन 10 दिन की ऐसी बारिश होती है।
1: 4-5 दिन मजेदार भी रहे, चैलेंजिंग भी रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि बारिश आती है तो जितना खूबसूरत होता है, बट एट द सेम टाइम उसके अपने चैलेंजेस भी होते हैं। तो हाँ, कम्यूट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था, मैं सुन रही थी क्रू मेंबर्स के लिए। वो
3: बरसात आने के पहले मुंबई करो को बीएमसी महानगर पालिका, ये ऐसा मतलब खाली एक बयान देने का काम ना करे, उस पर काम भी करे।
4: पानी भरने की वजह से बहुत तकलीफ हुई, बच्चे लोग को लेके जाने में लेट हो रहा है, और भी समस्याएं हैं, जैसे कि कहीं आना जाना है, गाड़ी ज़्यादातर पानी के अंदर ख़राब हो जा रही है, ज़्यादा पानी जहाँ पे लग जा रहा है वहाँ पे गाड़ियों में बहुत दिक्कत आ रही है।
0: ये 20 साल के विकास की तस्वीरें साल दर साल सारी दिखाने लगे तो घंटों गुजर जाएंगे, इसलिए चुनिंदा देखिए। 2005 में डूब जाने वाला हिंद माता आज 20 साल बाद पहले दिन की बरसात में नहर हो जाता है, नाला हो जाता है, गटर हो जाता है।
5: काफ़ी प्रतीक्षा के बाद मुंबई में बारिश आई थी, लेकिन इस तरह से मतलब जो चेंबूर की दुर्घटना हो गई, उसके बाद में साकीनाका एल वार्ड, और उसके बाद में मानकूर आरे कॉलोनी में भी एक बच्चा बाइक पे जा रहा था, उसके ऊपर भी ब्रांच गिर के वो भी गया। ये बहुत ही दुर्दैवी घटना हुई है, इसके लिए मैं खुद मेयर करके मेरा मन भी उसके लिए बहुत व्यथित है। लेकिन अभी तो फिलहाल जितना भी मैंने इसके बारे में ब्यौरा लिया है, तो लोगों को मैं आह्वान करना चाहती हूँ कि अभी ये जो पूरा हमारा कामकाज है एवरीडे का, वो चालू है। यहाँ की मुंबई की जब वाहतूक व्यवस्था अच्छे से चालू है, उसी के साथ में लोकल व्यवस्था भी चालू है।
0: कांदिवली की पूरी सड़क गायब हो गई, नाला सोपारा की सड़कों पर कारें तैर रही हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, बड़े काम पर नहीं जा सकते, और मुंबई को चलाने वाले चाहते हैं कि जनता यकीन करे इस बात पर कि सब ठीक है।
1: वैसे ही रेलवे स्टेशन से थोड़ा आगे है पालघर जिले के, इस इलाके में काफी तेज बरसात हो रही है, जिसकी वजह से रेलवे ट्रैक पर आप देख लीजिए पूरा पानी है, और यही वजह है कि रेलवे ट्रैक के ऊपर पानी होने की वजह से गाड़ियां वसई से आगे विरार तक नहीं जा रही हैं, और लोग ये आप देख लीजिए जहां तक आपकी दूर नजर जाती हो वहां तक लोग ही लोग हैं जो रेलवे ट्रैक पर चल रहे हैं। आइए यहां पर लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं, ये भाई साहब आप लोग कितनी दूर जाएंगे अभी?
6: अभी यहाँ से विरार जाना है, 2 घंटा कम से कम लगेगा पैदल जाने में, 2-2.5 घंटे।
7: वसई विरार में ऐसा कौन सा भी रोड नहीं, कौन सा एरिया नहीं वहाँ के पानी भरा हुआ है। फिलहाल मैं खड़ा हूँ वसई स्टेशन के अंबाड़ी रोड मानिकपुर रोड पे, आप देख सकते हैं कितना पानी भरा है। तो दूसरी ओर आने बहुत सारे लोगों के दुकानों में घरों में पानी गए हैं, गाड़ियां बंद पड़ चुकी है। तो दूसरी ओर मधुबन का इलाका जो सैटरडे में जो हाल थे वैसे ही हाल हो चुके हैं।
0: 20 साल से हर साल बादल मुंबई की परीक्षा लेते हैं, लेकिन हर साल कुछ आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, कुछ सफाइयां दी जाती हैं, कुछ संकल्प लिए जाने की कोशिशें होती हैं, और जमकर राजनीति होती है।
8: आज जो मुंबई में हो रहा है ये बीजेपी का भ्रष्टाचार, दलाली और पूरी मुंबई बिल्डरों के हाथ में देने का नतीजा है। उसके लिए देवेंद्र फडणवीस, मंगल रवात लोढ़ा, मुंबई बीजेपी का अध्यक्ष, ये सब जिम्मेदार है।
0: सच यह है कि शहर को स्वप्न नगरी बनाने के लिए रात रात भर काम करने वाले मुंबईकरों को सियासत ने हरा दिया है। ये राजनीति की ऐसी रवायत है जिसमें जनता की हार तो होती है लेकिन जीत किसी की नहीं। 1985 से 2 साल को छोड़कर बीएमसी में शिवसेना और बीजेपी के सत्ता रहे। 1996 से तो लगातार बीजेपी और शिवसेना का ही मेयर होता आया है, मतलब 30 साल से लगातार शिवसेना बीजेपी के पास मुंबई का बंदोबस्त। बीएमसी का काम है सड़क, सीवर, पानी, पुल और परिवहन का इंतजाम। सवाल पूछते पूछते लोग थक गए, लेकिन हालात नहीं बदले।
9: मुंबई के बारिश और बारिश के कारण होने वाला नुकसान, जो जीवित हानि हो या मालमत्ता की हानि हो, इसके ऊपर अगर आप देखते हो तो पिछले कई सालों में हमने देखा है कि शहर में पानी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं जमता है। जिससे पहले कभी जीवित हानि होती थी या मालमत्ता की हानि होती थी, वो सब कम हो गया बिकॉज उसके लिए मेजर्स लिए हैं। अभी जो हानि हो रही है वो कुछ इस तरह के फ्रीक इंसिडेंट्स है, जहाँ पे पेड़ गिरना ये एक बात है, या अभी मैनहोल का ओपन रहना। इस पे भी बीएमसी ने पिछले कई सालों में बहुत मेहनत करके सिस्टमिक चेंजेस बहुत लाए हुए हैं, बट फिर भी कभी कभी ये इंसिडेंट्स इस तरह का होता है, उसको रोकने की जरूरत है।
0: बीएमसी के 227 पार्षदों में 119 बीजेपी शिवसेना के हैं। मुंबई की कुल 36 विधानसभा सीटों में से एनडीए के पास 25 विधायक हैं। मुंबई की 6 सीटों में से 3 सीटों पर एनडीए के सांसद हैं।
10: कोई भी व्यवस्था नहीं है पानी की, बहुत ज्यादा बारिश का देख लीजिए कितनी प्रॉब्लम है, सब भीगते भीगते कैसे कैसे कमर तक पानी के साथ जा रहे हैं, कोई भी व्यवस्था नहीं है।
11: सुविधा नहीं है कुछ भी, इतने बड़े पानी से हम लोग जा रहे हैं, इतने कोई कुछ नहीं कर रहे, ये रास्ता तो बनाना मांगता है, उधर से पूरा हम इतना भीगते आए हैं।
0: जिस मुंबई की अर्थव्यवस्था कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से विशाल है, उस मुंबई का ये हाल है। इसे ऐसे समझिए कि पूरे बांग्लादेश का जितना साल भर का बजट है, उससे कहीं ज्यादा तो मुंबई वाले टैक्स भरते हैं। यूरोप और एशिया के कई देशों की जीडीपी नहीं है मुंबई शहर के बराबर, लेकिन 20 साल बाद भी ऐसा ड्रेनेज सिस्टम नहीं विकसित हो पाया जो सूरत हाल बदल दे।
12: बारिश मुंबई के डूबने की कहानी का एक सिरा हजारों साल की उस कहानी से जुड़ता है जिसने मुंबई शहर की स्थापना की। मुंबई देश का खूबसूरत शहर दरअसल 7 टापुओं को जोड़कर बनाया गया है और दुनिया के अमीर शहरों में शुमार होता है। कभी 10 पाउंड में खरीदी गई 7 द्वीपों वाली जगह जो आज मुंबई है। हम आपको बताएंगे क्यों मुंबई हर साल बारिश में तैरने से लगती है।

0: 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रागंजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से हुई। दहेज में मिले सातों द्वीप राजा ने इन्हें 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया। किराया था सालाना सिर्फ 10 पाउंड। 1782 में बॉम्बे के गवर्नर विलियम हार्नबी ने फैसला किया इन द्वीपों को जोड़ना होगा। वर्ली क्रीक पर एक बड़ा बांध बनाया गया, समुद्र का पानी रोककर दलदल को जमीन में बदला। 1784 तक सातों द्वीपों का एक बड़ा हिस्सा जुड़ गया। पहली बार लगा कि यह अब एक टुकड़ा बन सकता है। 1798 से 1802 के बीच में गवर्नर जोनाथन डंकन ने सायन कॉजवे बनवाया। इससे बॉम्बे द्वीप उत्तर की बड़ी भूमि से जुड़ गया। अब शहर का विस्तार उत्तर की ओर शुरू हुआ। कोलाबा और ओल्ड वुमन आइलैंड सबसे दक्षिण में थे। नाव से जाते समय अक्सर हादसे होते थे। 1838 में कोलाबा कॉजवे बन गया। अब ये दोनों द्वीप मुख्य भूमि से जुड़ गए। शहर अब लगभग एक हो चुका था। अवाबाई जमशेद जी जीजी भॉय की मदद से 1845 में माहिम कॉजवे बनाया गया। इससे माहिम बांद्रा से जुड़ा। अब सारे द्वीप और आसपास की जमीन एक महाद्वीपीय शहर जैसे दिखने लगी। 1845 तक सातों द्वीप पूरी तरह एक हो चुके थे। दलदल, खाड़ियां, सब जमीन में बदल गई।
1: ये मुंबई शहर के तीनों छोर समुद्र के होने की वजह से कई कई बार ये मौका ही नहीं देते कि पानी को बहाव से कहां पर निकाला जा सके। क्योंकि हमारे इस शहर में इतनी ज्यादा डेंसिटी है, यहां पर 2 करोड़ निवासी रहते हैं, लेकिन कितनी जगह में, यहां पे जगह केवल 300 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसकी वजह से डेंसिटी बहुत हाई है और ओपन स्पेसेस बड़े कमी है। इस ओपन स्पेसेस की कमी की वजह से पानी जो समुद्र से भी आता है शहर में, वो मिट्टी में घुल मिल के नहीं जाता, वो बह जाता है, वो या तो समुद्र में जाता है या शहर में रहता है। तो पानी को हम किस तरह, पानी के बहाव को किस तरह हम किस दिशा में ले जा सकें, उस पर अभ्यास करना बहुत जरूरी है।
0: मुंबई तो एक शहर बन गया, लेकिन दलदल और खाड़ियां सब पानी के नीचे दफन हो गई। इसी के साथ शुरू हुआ मुंबई और बारिश के साथ खौफ का सिलसिला।

0: द्वीप जुड़ गए और बढ़ती आबादी के चलते बरसात का पानी निकलने का जो प्राकृतिक रास्ता था वो बंद होता गया। रहने के लिए धरती तो मिल गई, लेकिन पानी का रास्ता बंद होता चला गया। हिंद माता, सायन, किंग सर्कल, कुरला, दादर, बांद्रा, अंधेरी सबवे और मिलन सबवे जैसे कई इलाके प्राकृतिक रूप से निचले क्षेत्र हैं, जहां बारिश का पानी तेजी से जमा हो जाता है।
1: आज तक जितने नगर सेवक आए सिर्फ काम करने का बहाना करते हैं, पेपर पे काम करते हैं और कुछ नहीं करते।
2: काम में नहीं कमी है, बस ये है कि पानी का जैसे निकास होना चाहिए उतना निकास नहीं हुआ है अभी, और उस पे काम बेहतर करना चाहिए नगर पालिका को।
3: बीएमसी वाले बोलते हैं कि हमने पूरा काम कर लिया, बीएमसी सरकार जो चलाते हो बोलते हमने पूरा काम कर लिया, सब गटर साफ कर दिया, नाले साफ कर दिए, लेकिन ये लोग कुछ करते नहीं हैं, पैसा सब हड़प कर जाते हैं। और सरकार का हर साल का यही रवैया है, हर साल पानी जगह जगह भर जाता है, लोगों को घरों में चला जाता है और इनसे कोई लेना देना नहीं है कुछ।
4: हर साल मुंबई महानगर पालिका के स्पॉट पे पानी भरता है, ये लोग सालों से वो सुविधा नहीं कर पा रहे, तो बाकी जो भरा हुआ अलग बात है।
5: गिराक बाजार में आते नहीं है और ऊपर से महंगाई बढ़ गई है, वो बोलते इतना महंगा देते हमको परवड़ता नहीं है, फिर अभी क्या करेंगे हम लोग भी।
6: साफ सफाई तो बराबर हुआ, लेकिन जो सफाई हुआ वो रोड पे ही रह गया, हटाया नहीं गया, तब तक बारिश चालू हो गई। गटर तो साफ हुआ, निकाल के सब रख दिए, बाहर उठा नहीं, उसके पहले बारिश चालू हो गई, इसलिए जगह जगह डूब गया सब।
0: मुंबई के बीचों बीच से निकलने वाली नदी को मीठी नदी कहा जाता है। तूफान या बरसात के दौरान मीठी नदी में बरसात का पानी बहकर अरब सागर की तरफ निकल जाता था, लेकिन वर्ली सी लिंक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और दूसरी इमारतों के निर्माण के कारण मीठी नदी का प्रवाह रुक गया, जिससे उसमें पानी का बहाव खत्म हो गया। जो कुछ बचा उसे शहर की तरफ से आने वाले पॉलिथीन और कचरे ने चोक कर दिया। इसका असर ये हुआ कि जो पानी नदी से निकल जाना था वो शहर के अंदर आने लगा और समस्या साल दर साल बढ़ती चली गई।

मुंबई का ड्रेनेज सिस्टम ब्रिटिश जमाने का है, जो सिर्फ 25 मिलीमीटर प्रति घंटे की बारिश को झेलने के लिए डिजाइन किया गया था। मुंबई की ड्रेनेज व्यवस्था लगभग 146 वर्ष पुरानी है, जिसे ब्रिटिश काल में डिजाइन किया गया था। उस समय मुंबई का अधिकांश द्वीपीय क्षेत्र हरा भरा था। ड्रेनेज सिस्टम को इस हिसाब से तैयार किया गया था कि 50% वर्षा जल नालियों से निकल जाएगा और बाकी पानी जमीन में रिसकर भूजल में चला जाएगा। अब

0: रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र किनारे बसे दुनिया भर के जो शहर संकट में हैं, उनमें मुंबई का भी नाम है। उस रिपोर्ट के हिसाब से अगर मुंबई का तापमान मौजूदा सामान्य तापमान से 4 डिग्री और ज्यादा बढ़ा तो अरब सागर की लहरें उसके अस्तित्व के लिए खतरा बन सकती है।
1: शहरीकरण की वजह से ही हमारे करीब 50% निवासी मुंबई में झोपड़पट्टी में रहते हैं, उनको रहने के लिए सही जगह नहीं है और जिसकी वजह से जितनी भी जमीन जो खुली थी वो भी अब बंद हो गई है। दूसरी बात, फ्लड जोन की मैपिंग नहीं होने की वजह से और स्टॉर्म वाटर ड्रेन के प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं करने की वजह से भी फ्लडिंग हो रही है। तो शहरीकरण तो बिल्कुल पक्का कारण है इस शहर को बर्बादी की ओर ले जाने के लिए, लेकिन सरकार नवी मुंबई बनाती है, तीसरी मुंबई बनाती है, वसई विरार बनाती है, कल्याण डोंबिवली बनाती है, जो खुद बाढ़ की स्थिति में है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन को जब तक एक साथ देखकर बाढ़ की स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए ठीक से अभ्यास नहीं होता तब तक ये बाढ़ की स्थिति बनी रहेगी।
0: हाल के वर्षों में बारिश का पैटर्न भी बदल गया है जिसके चलते कम समय में अधिक बारिश की घटनाएं बढ़ी हैं। ऐसे में मौजूदा नालों की पानी निकास की क्षमता अब पर्याप्त नहीं रह गई है, इसलिए उनकी चौड़ाई बढ़ाने और क्षमता में सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही है ताकि भारी बारिश के दौरान जल भराव की समस्या को कम किया जा सके।
2: मुंबई में बारिश के साथ जैसे ही जल भराव की स्थिति बढ़ जाती है लोग सिहर जाते हैं। लगातार बारिश मुंबई करों के लिए अभिशाप की तरह लगती है क्योंकि बारिश के साथ मुंबई की कई डरावनी यादें जुड़ी हुई हैं।

0: बारिश के साथ जैसे जैसे जलभराव या लोगों के मरने की खबरें सामने आती जाती हैं, लोगों के सामने साल 2005 की जुलाई में हुई भयंकर बारिश और तबाही का मंजर तैरने लगता है। में हुई बारिश की वजह से मुंबई समेत महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। अंदरूनी सड़कों से लेकर राजमार्गों तक पर कई फीट पानी जमा हो गया था। भीषण बारिश की वजह से कई दिनों तक यातायात प्रभावित रहा था। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे और लोग कई दिनों तक अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए थे। हजारों की संख्या में घरों, दुकानों, फैक्ट्रियों, कंपनियों और सब स्टेशन में पानी भरने से लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। जुलाई 2005 की इस भीषण बारिश के कारण महाराष्ट्र को लगभग 550 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा था। कई दिनों तक ट्रेन और फ्लाइट का संचालन बुरी तरह से प्रभावित रहा था। 26 जुलाई को लाखों की संख्या में लोग अपने कार्यालय और सड़क पर गाड़ियों में फंसे रहे थे। इस दिन महाराष्ट्र में 944 mm बारिश हुई थी। भारी बारिश की वजह से जुलाई 2005 में एक महीने के अंदर महाराष्ट्र में 1094 लोगों की जान चली गई थी। मरने वालों में सैकड़ों की संख्या में मुंबई के लोग थे। इनमें से ज्यादातर लोगों ने खुले मैनहोल और नालों की वजह से जान गंवाई थी। यही वजह है कि मुंबई में जब जब मूसलाधार बारिश होती है, लोग 2005 की इस बारिश को याद कर कांप उठते हैं।
1: अभी यह जो स्थिति है, ये बाकी पिछले 10 और 15 साल से कभी अधिकतम ज्यादा से ज्यादा है। जो आप अभी आपके सामने, हम कांदिवली से आ रहे हैं, कांदिवली से यहाँ तक चल के आ रहे हैं, तो पूरी यही परिस्थिति है।
2: और आज भी रात को इतना बारिश आया ना, तो हम लोग रात भर डर के ऐसा बैठे थे क्या घर में अभी ज्यादा हो जाएगा, हम लोग क्या करें, हमारी तबीयत भी तब से खराब चल रही।
3: रात को पानी भरा तो सब में हम लोग डर गए और हमारे घर में बहुत नुकसान हो गया, 1.5 लाख का नुकसान हो गया।
4: यहाँ का ये सिचुएशन है, म्यूनसिपालिटी को कम्प्लेन करो तो क्या बोलता है कि महाड़ा का ड्रेनेज है, महाड़ा का ड्रेनेज है, बोल महाड़ा को कम्प्लेन करो तो बोलता है कि म्यूनसिपालिटी का ड्रेनेज है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ से ड्रेनेज से है, और सबसे घर में पहले पानी आता है, अंदर से संडास या बाथरूम से पानी आता है घर के अंदर।
0: 2006 से 2015 के बीच

0: मानसून के मौसम में हर साल औसतन 2,718 लोगों की मौत हुई, जो उन्हीं महीनों में कैंसर से होने वाली मौतों के लगभग बराबर थी। ২০২৬ के मानसून की शुरुआत भी सीवर और मैनहोल में लोगों की मौतों के साथ हुई। अभी तक 26 जून से 8 जुलाई तक 13 लोगों की जान जा चुकी है। इसके साथ ही मुंबई में पेड़ों की गिरने की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। 2023 में मानसून के सीजन में 687 पेड़ गिरे थे, 2024 में 653, 2025 में 855 और अभी 8 जुलाई तक 826 पेड़ों के गिरने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनके कारण गाड़ियों और सड़कों का भारी नुकसान होता है।
1: हमारे दो बड़े मेट्रो शहर हैं जैसे दिल्ली और मुंबई, बरसात के आते ही वहाँ पे पेड़ों की गिरने की संख्या बढ़ जाती है। इसका सीधा सा समझ सकते हैं उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण है इसके पीछे, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि पूरे शहरों में कंक्रीटाइजेशन बहुत जबरदस्त हुआ है। जो भी हमारे चलने वाले रास्ते हैं सड़क के किनारे पे, वहाँ पे जितने भी पेड़ हैं वो पूरे के पूरे कंक्रीट से घिरे हुए हैं। कम से कम हमें 1 से 2 मीटर का दायरा वहाँ पे छोड़ना चाहिए। अगर हम ये नहीं करते तो वहाँ पे पानी और जो ऑक्सीजन है उसकी कमी होती है, प्लस जड़ों को लेटरली जाने के लिए रोका जाता है, तो पेड़ जो है बहुत हेल्दी नहीं होता, वो लगता है उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती ठीक से। एक ये सबसे बड़ा कारण है। नंबर टू, जितनी भी खुदाई होती है हमारे, उसमें समय समय पर जैसे आपका MCD वाले आते हैं, पाइपलाइन आपको डालनी है, उसके बाद में फिर गैस पाइपलाइन वाले आते हैं, तो जो पेड़ है पेड़ों की जड़ें नीचे से कट जाती हैं और वो हमें पता नहीं चलता। ऊपर से लगता है कि पेड़ बहुत हेल्दी है लेकिन अंदर से वो डैमेज हो चुका होता है।
2: मुंबई के चेंबूर इलाके में मंगलवार दोपहर अचानक जब तेज धूप निकली हुई थी और उस समय तेज हवाएं भी नहीं चल रही थी, अचानक ये एक पेड़ गिर गया एक स्कूल वैन के ऊपर जो बगल से गुजर रही थी। स्कूल वैन में कुछ बच्चे थे, 13 बच्चों में से कुछ अभी घायल हैं, लेकिन एक बच्चे विहान श्रीवास्तव की इस पूरे हादसे में मौत हो गई, जिसके बाद से पूरा परिवार सदमे में है। फिलहाल मुंबई में बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो मेयर है उन्होंने वादा किया है कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जरूर होगी, लेकिन यहाँ इस वक्त इलाके के लोग जो हैं वो यही कह रहे हैं कि दरअसल 2-3 महीने पहले इस सड़क का कॉन्क्रीटाइजेशन किया गया था। कॉन्क्रीटाइजेशन के दौरान ये जो पेड़ है ये खोखला पाया गया था, इसकी जड़ें खोखली पाई गई थी, लेकिन उस समय कॉन्ट्रैक्टर ने इस पूरे वाकये के बारे में कुछ नहीं किया। और उसके बाद भी जब मानसून से पहले, दरअसल हर साल मानसून जब आता है, बरसात जब आती है, उससे पहले जो पेड़ हैं उनकी प्रूनिंग की जाती है, उनको छांटा जाता है, लेकिन इस पूरे सड़क पे कई पेड़ों को छांटा गया लेकिन इस पेड़ के जो जड़ है उस पर नज़र नहीं टिकाई गई और जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। और अब लोग यही चाह रहे हैं कि जितने भी पेड़ हैं शहर में उन सब की जाँच पड़ताल अच्छे से हो जाए ताकि आगे जो बरसात का जो मौसम है वो बिना किसी होनी के गुजरे।
0: बारिश के साथ ही मुंबई की जर्जर दीवारें खुले सीवर मौत का मुंह बन जाते हैं, जिनमें निर्दोष लोग गिरकर अपनी जान गंवाते रहते हैं। इस मानसून भी जाने जाने का सिलसिला जारी है, साथ ही जगह जगह से दीवारों के ढहने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ২০১৯ में मलाड इलाके में दीवार गिरने से 18 लोगों की मौत हो गई। 2021 में चेंबूर और विक्रोली इलाके में दीवार गिरने से 24 लोग दबकर मर गए थे। 5 जुलाई 2026 को मानखुर्द इलाके में दीवार के नीचे दबकर 6 लोग मौत के मुंह में समा गए।
3: कमाने वाला वो एक अकेला इंसान था, उसके लिए मुआवजा चाहिए प्लस दोबारा ऐसा कुछ ना हो। ये कॉन्ट्रैक्टर को सिखाओ, जैसे छोटे बच्चों को सिखाते है ना, वैसे कॉन्ट्रैक्टर को भी सिखाओ अगर तुमको काम करना है तो किस तरीके से काम करना है।
0: मानसून में मुंबई के हालात जिस तरह भयावह रूप ले लेते हैं उससे अब ये लगने लगा है कि मुंबई की स्थितियां ठीक करने के लिए प्लान से नहीं बल्कि प्रॉपर सर्जरी की जरूरत है। कड़े और बड़े कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

0: अब बात करते हैं यूपी में चुनाव से पहले छिड़े धर्म युद्ध की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर चढ़ावा चोरी ने पूरी तरह से सियासी रंग ले लिया है, जिसके बाद अब योगी आदित्यनाथ विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को पिछला इतिहास गिना रहे हैं, तो वहीं विपक्ष राम मंदिर के मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा।
1: यूपी में राम मंदिर से शुरू हुआ घमासान अब धर्म की राजनीति तक पहुंच गया है। योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी का इतिहास खंगाल रहे हैं।
2: मंदिरों पे कब्जा करवाते थे लोग, मंदिरों पे कब्जा करवाते थे, और अब कब्जा नहीं, अब उन मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है, और पहले मंदिरों के नाम पर आने वाला पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर खर्च हो जाता था। यही तो करती थी समाजवादी पार्टी।
1: कल योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी में इफ्तार का जिक्र करके समाजवादी पार्टी को घेरा था, तो आज विपक्ष योगी पर गुमराह करने का आरोप लगा रहा है।
3: कैसे नमाज पढ़ सकता है कोई आदमी वहां? ये एजेंडा जो है ये तमाम चीजों से ध्यान भटकाने का है। कैसे नमाज पढ़ सकता है? हम तो कह रहे हैं कि आप सड़क पर नमाज ना पढ़े, चूंकि सड़क सरकार की और सरकार मना कर रही है तो आपकी नमाज जायज नहीं होगी। मैं तो बार बार बोलता हूं, जिस प्रॉपर्टी का ओनर अगर उसको इजाजत नहीं देता तो वहां नमाज ही नहीं हो सकती।
1: 2027 के चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा अब थमता नहीं दिख रहा है। इस बीच राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के कलंक पर अब समिति से जुड़े लोग दुख जता रहे हैं।
4: राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है, व्यवस्था में सुधार होगा, मुझे पूरा विश्वास है।
1: एक और ताबड़तोड़ जांच और एक्शन जारी है, तो वहीं राम भक्तों का भरोसा जीतने की कोशिश भी की जा रही है। चढ़ावा विवाद के बीच राम मंदिर ट्रस्ट जल्द ही सीईओ की नियुक्ति करने जा रहा है, जिसके लिए समिति का गठन भी कर दिया गया है। सीईओ को मंदिर के प्रशासन और वित्तीय प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जिसका उद्देश्य मंदिर के संचालन को अधिक पेशेवर, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। इसके साथ ही सीईओ चढ़ावे के प्रबंधन, श्रद्धालुओं की सुविधाओं, आधारभूत ढांचे के रखरखाव और प्रशासनिक व्यवस्था की भी निगरानी रखेंगे। साफ है कि एक ओर सरकार बार बार भरोसा जताने की कोशिश कर रही है कि वो भक्तों के साथ धोखा करने वालों को बख्शेगी नहीं, वहीं विपक्ष सरकार की पूरी जांच को कटघरे में खड़ा कर रही है। आज तक ब्यूरो।
0: राम मंदिर जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, और इस बीच में मंदिर प्रशासन के सामने चुनौती सिस्टम को सुधारने की भी है, जिस पर लगातार फैसले लिए जा रहे हैं।
1: चढ़ावा चोरी के गंभीर आरोपों की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे सामने आते जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से अब सामने आया है कि मंदिर में काम करने वाले कुछ पूर्व सैनिकों पर कुछ भी बोलने पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसके लिए बकायदा सभी पूर्व सैनिकों को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा गया था। कहा गया था कि कोई कुछ भी पूछे बोलना नहीं है। जिस मैसेज पर सवाल उठ रहे हैं उस मैसेज का स्क्रीनशॉट भी आज तक के पास मौजूद है। इससे साफ है कि चढ़ावा चोरी के खुलासे के बाद मामले को छिपाने की कोशिश की गई। इधर अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के दो और आरोपियों को पुलिस जल्द ही रिमांड पर लेगी। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव से पुलिस पूछताछ करेगी। टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई गई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र की 7 दिनों की कस्टडी मांगी है।
5: अयोध्या पुलिस ने अब रामशंकर यादव और टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में 7 दिन की अर्जी डाली है। इन दोनों की पुलिस कस्टडी रिमांड बेहद अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि जहां रामशंकर यादव के पास डोनेशन बॉक्स की चाबियां होती थी, वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद उस कमरे के इंचार्ज थे जहां से चढ़ावा चोरी हो रहा था। ऐसे में इन दोनों से की गई पूछताछ से पुलिस पता लगाने की कोशिश में लगी है कि आखिर यह चोरी हो रही थी तो उनके संज्ञान में क्यों नहीं आई, पकड़ी भी गई तो क्यों उन पर कार्रवाई नहीं हुई।
1: इस बीच राम मंदिर में चढ़ावे की गणना के लिए नया टाइम टेबल लागू कर दिया गया है। पहले 2 पालियों में होने वाली गिनती अब एक ही शिफ्ट में की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चढ़ावे की गिनती होगी। नई समय सारणी लागू होने के बाद कुछ गणना कर्मियों ने काम छोड़ दिया है। उधर राम मंदिर में वीआईपी पास की प्रक्रिया भी रोकी गई है, क्योंकि जिन लोगों की आईडी का इस्तेमाल इस काम के लिए किया गया था उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में जारी घटनाक्रम के बीच गोपाल राव ने निर्मोही अखाड़ा पहुंचकर ट्रस्टी महंत दीनेन्द्र दास से मुलाकात की। दोनों के बीच बंद कमरे में काफी देर तक एकांत में चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में ट्रस्ट से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। इस मुलाकात में ट्रस्ट के भीतर चल रहे विवादों के बीच डैमेज कंट्रोल की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हालांकि बैठक में इस चर्चा के संबंध में आधिकारिक रूप से कोई जानकारी साझा नहीं की गई। अयोध्या से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: यूपी में राम मंदिर पर घमासान जारी, तो मध्य प्रदेश में लड़ाई बीजेपी बनाम बीजेपी की दिख रही है, जहां दतिया में हो रहे उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा और इसके बाद से कार्यकर्ता भड़क गए।
6: दतिया में टिकट को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा ऐसा फूटा कि वो अपनी ही सरकार की पुलिस से भिड़ गए। मध्य प्रदेश के दतिया में 30 जुलाई को उपचुनाव है। बीजेपी ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। दतिया से आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाने की घोषणा होते ही नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। नेशनल हाईवे पर जाम लग गया, घंटों तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही, पुलिस पर पथराव हुए और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए।
7: मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए, पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं ने, ऐसा कोई कार्य न करे।
6: आखिर दतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट क्यों कटा? बताया जा रहा है कि दिल्ली के स्तर पर कराए गए सर्वे में नरोत्तम मिश्रा की स्थिति उम्मीद के मुताबिक मजबूत नहीं पाई गई। 2023 में बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को टिकट दिया था, लेकिन वो विधानसभा का चुनाव हार गए। केंद्रीय नेतृत्व ने स्थानीय संगठन और भविष्य की राजनीति स्वीकारता का भी आकलन कराया। इसमें नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी फिट बैठे, जिसके बाद उन्हें दतिया से टिकट दिया गया। बीजेपी ने एक ब्राह्मण नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर दूसरे ब्राह्मण आशुतोष तिवारी को टिकट दिया है। इससे जातिगत और सामाजिक संतुलन बरकरार है। उधर पार्टी का संदेश साफ है कि बीजेपी हाईकमान फिलहाल झुकने के मूड में नहीं है।
8: पार्टी इस प्रकार के सोच समझ के निर्णय लेती है और इसलिए हम डंके की चोट जीतेंगे और नरोत्तम जी भी काम करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं नरोत्तम जी को जानता हूँ व्यक्तिगत।
9: नरोत्तम जी मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता, तो उनको कट्टू साइज तो करनी था, कर दिया।
6: दतिया में अब लड़ाई बीजेपी के सामने अपनों से है, जहां अभी तक कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। भोपाल से रविश पाल के साथ आज तक ब्यूरो।
0: इस पूरे मामले में हमारे सहयोगी रविश पाल ने खास बातचीत की नरोत्तम मिश्रा से।
10: फैसले को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि मान के तो चला जा रहा था कि आप ही इकलौते उम्मीदवार हैं वहां भाजपा के।
11: पार्टी का फैसला जो होता है वो ठीक ही होता है, उसको अच्छे रूप में ही लेना चाहिए, खराब रूप में नहीं लेना चाहिए, ऐसा मेरी मान्यता है।
10: आप के तो सकारात्मक भाव है, लेकिन आपके जो समर्थक थे जो महीनों से इंतजार कर रहे थे कि जो प्रकरण आया राजन भारती का, मामला कोर्ट में गया, फिर वहां से विधायक की गई, सदस्यता गई, सबको उम्मीद थी, लेकिन जब ये फैसला आया तो उनका गुस्सा साफ तौर पर सामने मिला। हाईवे जाम हो गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ हो गई, पथराव हो गया।
11: हाँ, छड़े का आवेश था, मैंने कल भी फिर उनसे निवेदन किया था, आज भी किया मैंने। जाम वाम की स्थिति नहीं होना चाहिए। कार्यकर्ता वो पेट्रोल डाल रहे थे, वो मुझे दिखाए विजुअल फुटेज, मिट्टी का तेल डालते हुए था। धैर्य और संयम का समय यही होता है, यही परीक्षा की घड़ी होती है।
10: आप भोपाल जा रहे हैं, तो भोपाल में कोई कार्यक्रम आला नेताओं से आपकी मुलाकात है क्या, प्रदेश अध्यक्ष से या मुख्यमंत्री से या किसी से?
11: अभी तो नहीं, होगी तो बताऊंगा निश्चित। आप
10: आशुतोष तिवारी को आशीर्वाद रहेगा आपका?
11: सभी को क्यों नहीं रहेगा, कैसी बात कर रहे हैं।
10: हालांकि कैलाश जी ने कहा है कि वो बहुत अच्छे से जानते हैं आपको, उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ नरोत्तम जी को, पार्टी के फैसले को हमेशा से स्वीकार करते हैं और हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहे हैं।
11: बिल्कुल सही कहा, मैं सहमत हूँ।
10: आपके लिए भावुक क्षण है?
11: नहीं, राजनीति में ये सब चलने वाली चीज है।
10: लेकिन एक आखिरी सवाल, नरोत्तम जी चुनाव हुआ 2023 का, फिर लोकसभा आया, फिर राज्यसभा चुनाव आए, फिर कई दूसरी जिम्मेदारियां भी थी, हालांकि न्यू ज्वाइनिंग टोली का आपको संयोजक बनाया गया था, तब काफी लोग जुड़ के आए थे कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में, अब तो भाजपा में
11: लगातार लोकसभा राज्यसभा अध्यक्ष जो भी आप बात कर रहे हैं, ये ये अंतर्मुखी होकर स्वयं के चिंतन के लिए पार्टी अवसर दे रही है, हमें चिंतन करना भी चाहिए, अच्छी बात है।
0: बांकीपुर उपचुनाव में टिकट को लेकर सियासत तेज है, जहां बीजेपी ने एक दिन के अंदर अपने प्रत्याशी को बदल दिया, जिस पर अब विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है।
1: बांकीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी की ओर से पहले अभिषेक कुमार का नामांकन हुआ, फिर एक दिन बाद ही अचानक अभिषेक ने नामांकन वापस ले लिया और नीरज कुमार को नया उम्मीदवार घोषित किया गया। जिस अभिषेक को सामान्य कार्यकर्ता बताकर बीजेपी ने नितिन नवीन वाली सीट के लिए प्रत्याशी बनाया, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी को अपना प्रत्याशी बदलना पड़ा?
12: भौगोलिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। मैं कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा।
1: अब सवाल ये कि जिस पारिवारिक मामले का हवाला देकर अभिषेक ने नामांकन वापस लिया, वही परिवार एक दिन पहले अभिषेक को आशीर्वाद देते हुए भावुक हो गया था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अभिषेक बंटी के पिता रविंद्र प्रसाद सिन्हा चारा घोटाले में दोषी रहे। वो मगध केमिकल्स कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी में मैनेजर थे। इस कंपनी पर चारा घोटाले में फर्जी बिल के आधार पर सप्लायर बनाने का आरोप था। फर्जी बिलों के जरिए सरकारी खजाने से पैसा निकालने का मामला रविंद्र प्रसाद सिन्हा पर चला था। सूत्रों के मुताबिक दूसरी बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि अभिषेक सिन्हा बंटी ने नामांकन पत्र में गलत जानकारी भी दी थी, उन्होंने पढ़ाई से जुड़ी कुछ जानकारियां छिपाई थी। ऐसे में भी अभिषेक बंटी का नॉमिनेशन रद्द होने की आशंका थी। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी ने कोई जोखिम नहीं लेते हुए अभिषेक बंटी का नामांकन वापस कराने का फैसला लिया, यानी पार्टी को डर था कि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लालू परिवार को घेरते रहे, उसी भ्रष्टाचार में अभिषेक के पिता आरोपी हैं। लेकिन अब बीजेपी के नए प्रत्याशी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नीरज कुमार सिन्हा के उम्मीदवार घोषित होने के बाद बीजेपी ने उनका बायोडेटा जारी किया। इसमें उनकी जन्म तिथि 1 जुलाई 1994 बताई गई। इसी बायोडेटा में लिखा गया कि उन्होंने 2006 में बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता लेकर अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की, यानी बीजेपी ज्वाइन करने के वक्त उनकी उम्र सिर्फ 12 साल थी, जबकि किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने की न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल होती है। इसके कुछ समय बाद बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा का संशोधित बायोडेटा जारी किया। नए बायोडेटा में उनकी जन्म तिथि पहले की तरह 1 जुलाई 1994 ही रखी गई, लेकिन 2006 में बीजेपी की सदस्यता लेने का उल्लेख हटा दिया गया। संशोधित बायोडेटा में यह नहीं बताया गया कि उन्होंने पार्टी की सदस्यता कब ली। बीजेपी ने यह भी नहीं बताया कि पहले और दूसरे बायोडेटा में यह बदलाव क्यों किया गया, लेकिन दो दिन के अंदर हुए इस घटनाक्रम ने विपक्ष को घेरने का एक मौका जरूर दे दिया।
13: ये पहली बार हुआ है कि नामांकन करने के बाद कोई बीजेपी का प्रत्याशी नाम वापस ले रहा हो। विपक्ष के सामने बीजेपी के उम्मीदवार टिक ही नहीं पा रहे हैं। अब जिस दूसरे उम्मीदवार नीरज सिन्हा को बनाया है उनके ऊपर भी विवाद है।
14: विपक्ष इस बात के लिए चिंता करे कि नीचे से फर्स्ट कौन करिएगा। मुकाबला में तो खैर नहीं है, मुकाबला में बहुत ही अंतराल है।
1: बहरहाल बीजेपी की इस पारंपरिक सीट पर प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, जहां बीजेपी के फैसले को और बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी है। शशि भूषण कुमार के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक।
0: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
16: When your cat is acting weird-er, or your dog is being loud-er, your turtle moves slow-er.
17: Hello, Ted.
16: Your cat seems thirsty-er.
18: Whoa, slow down, buddy.
16: Or your puppy is acting clumsy-er. Day or night, if you don't know what's wrong, know where to go.
17: Veg ER for pets. This is Kate.
16: Veg. The better, kinder ER for pets.
19: Tune in's how-to A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
20: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
21: Over, Jimmy.
22: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे. गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा. आप अपना देख लो.
23: वी मस्ट राइज, वी मस्ट फाइट. दरअसल ईरान की सड़कों पर ऐसे पोस्टर तो आपने देखे होंगे, लेकिन आपको याद होगा कि ये सिंबॉलिक जो हाथ आप देख रहे हैं, ये पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का है. लेकिन अब ये हाथ जो है, जिसमें उनकी अंगूठी हमेशा नजर आती थी, जो एक पावर का साइन था, वो अब ईरान में, खासतौर पर तेहरान के इन इलाकों में नजर आएगा, आजादी स्क्वेयर पर नजर आएगा. आप देखते रहिए आज तक.

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: यूपी में 27 का घमासान तेज। मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पार्टी पर बोला हमला का इनका इतिहास, राम भक्तों के खून से सना भारत की विरासत और आस्था को किया अपमानित। दतिया से टिकट कटने के बाद आज तक से बोले बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा, राजनीति में ये चलता है, पार्टी का फैसला सही, मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिले। आमिर खान की तीसरी शादी पर भड़के नितेश राणे, बताया लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर, युवाओं से की आमिर की फिल्में सोच समझकर देखने की अपील। वियतनाम में भारतीय पर्यटकों से भरी नाव पलटी, अब तक 15 लोगों की मौत, फुकोक द्वीप के पास हादसा, राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने जताई संवेदना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जारी किया आदेश, कहा अगर मेरी हत्या हुई तो ईरान को मिटा दें, जेडी विंस को सौंपी फैसला लेने की जिम्मेदारी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

वियतनाम में भारतीय पर्यटकों को ले जा रहे नाव पलटे, 15 लोगों की मौत। वियतनाम के फूकोक द्वीप के पास में हादसे के समय बोट में सवार थे 32 भारतीय पर्यटक, 4 क्रू मेंबर्स, 21 लोगों को हालांकि बचाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर जताया दुख। वियतनाम के हनोई में भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। 3 देशों के कामयाब दौरे के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौटेंगे, न्यूजीलैंड से दिल्ली के लिए उड़ान भरी। न्यूजीलैंड के साथ आज समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। दोनों देशों के बीच में कारोबार को 2030 तक 35,000 करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया। भोपाल में नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से की मुलाकात, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी रहे मौजूद, मौजूदा हालात पर हुई चर्चा। दतिया से टिकट कटने पर आज तक से बोले नरोत्तम मिश्रा कि मुझे किसी से नाराजगी नहीं है, पार्टी जो कहेगी वो मैं करूंगा, आशुतोष तिवारी के नामांकन में जाऊंगा। दतिया में बीजेपी के बीच टिकट विवाद में कूदी कांग्रेस, पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बीजेपी की पोल खुल गई। दतिया उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा को बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर समर्थकों का बवाल, नेशनल हाईवे पर लगाया जाम, बवाल। कांग्रेस ने दतिया सीट से घनश्याम सिंह को बनाया है कैंडिडेट, बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी से होगी सीधी टक्कर। समाजवादी पार्टी पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हमला, कहा कि समाजवादी पार्टी का इतिहास राम भक्तों के खून से सना हुआ, इन्होंने सदैव भारत की विरासत और आस्था का अपमान किया। गोरखपुर में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर बरसे सीएम योगी, कहा कि दोनों के राज में हिंदुओं का अपमान होता था और उस समय विकास भी नहीं हुआ। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर किया पलटवार, कहा कि समाजवादी पार्टी के बहरूपीय हैं, वोट के लिए सनातन के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सीईओ के चयन को लेकर सर्च कमेटी की बैठक, प्रशासन या वित्त में 20 साल का अनुभव की पात्रता की गई तय, सीईओ के पद के लिए 18 जुलाई तक आवेदन की तारीख। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने निर्माण के काम का लिया जायजा, 30 जुलाई तक मंदिर के सभी काम हो जाएंगे पूरे। श्रीनगर की रैली में उमर अब्दुल्ला का बीजेपी पर बड़ा आरोप, बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने की कोशिश की, 20 से 30 करोड़ का और मंत्री पद का ऑफर था। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बड़ा झटका, भरोसेमंद नेता अनुब्रत मंडल बागी खेमे में शामिल। बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने बरुईपुर में पीड़ित परिवार से की मुलाकात, नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या की घटना पर न्याय का भरोसा दिया। पंजाब के अमरिंदर सिंह राजा वर्डिंग को अध्यक्ष पद पर बने रहने से चरणजीत सिंह चन्नी को ठाना की खपा, भूपेश बघेल से चन्नी की मुलाकात भी हुई, बघेल ने कहा कि आला कमान को जानकारी दी जाएगी। चन्नीगुट के तेवर के बीच में बोले अमरिंदर सिंह राजा वर्डिंग, कांग्रेस प्रदेश में कोई भी अंदरूनी दरार नहीं है, पार्टी एकजुट है। आमिर खान की तीसरी शादी पर भड़के महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे, बताया लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर, युवाओं से की आमिर की फिल्में सोच समझ कर देखने की अपील। जामनगर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए गुजरात के मंत्री रिबावा जडेजा, युवाओं को आत्मनिर्भरता, शिक्षा और स्वदेशी का संदेश दिया। मोदी सरकार ने झारखंड और छत्तीसगढ़ को दी बड़ी सौगात, 9,000 करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट की मंजूरी। हैदराबाद में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, कोंडाकल में मेधा बोगी फैक्ट्री और मेधा सर्वो ड्राइव्स लिमिटेड के विनिर्माण संयंत्र का दौरा किया। रामपुर में अब अग्निशमन विभाग ने कसा जौहर यूनिवर्सिटी पर शिकंजा, नोटिस जारी करके जवाब तलब किया गया, नियमों की अनदेखी पर बड़ा झटका लगा। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज तक एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि आत्मनिर्भरता बढ़ाना समय की आवश्यकता। भारतीय नौसेना को मिला एक और नगीना, नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ INS महेंद्रगिरि, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। भारतीय सेना खरीदेगी 450 काल गुस्ताफ मल्टी रोल रॉकेट लॉन्चर, जंगल, पहाड़, रेगिस्तान और अर्बन वॉरफेयर पर ये बहुत इंपॉर्टेंट और घातक। PFI टेरर केस में 20 आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम, आतंकी साजिश के मामले में 29 जुलाई को शुरू होगा ट्रायल। भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर केस में न्यायिक आयोग के सामने माता पिता की गवाही पूरी, कहा कि अब जांच के बाद ही समझ में आएगा कि इंसाफ मिला या नहीं। इंदौर में 22वें पुण्योदय प्रकल्प का शुभारंभ, MP में आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को फ्री में बांटी जाएंगी 3,00,000 कॉपियां। स्विगी इंस्टामार्ट को FSSAI ने थमाया नोटिस, उपभोक्ताओं के शिकायत पर मांगी गई रिपोर्ट। अलवर में फायरिंग की घटना के बाद से मौके पर पहुंचे डायल 112 की गाड़ी हुई खराब, पुलिसकर्मियों ने धक्का लगाया, वीडियो आया सामने। गांधीनगर के साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को मिली कामयाबी, दुबई से चल रहे 250 करोड़ रुपए के साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के MBA छात्र समेत 5 शहरों से 19 आरोपी गिरफ्तार।
जूनागढ़ में गिरनार में सीढ़ियों पर एक बच्चे पर शेर का हमला, बच्चे का अवशेष बरामद, पकड़ा गया शेर। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी बने फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमन 2026। मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किया सम्मानित। देश की सबसे शक्तिशाली महिला का खिताब मिलने पर नीता अंबानी ने कहा कि रिलायंस फाउंडेशन ने 10 करोड़ लोगों की जिंदगी में बेहतर बदलाव लाने का लक्ष्य हासिल किया। लक्स कोसी ग्रुप ने बंगाल में 600 करोड़ की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए रखी आधारशिला। एशिया के सबसे बड़े गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में से एक बनाने की तैयारी। कोलकाता में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नींव रखी। लक्स कोसी ग्रुप ने अपने इस इतिहास का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग निवेश बताया है और इस प्रोजेक्ट से एशिया का सबसे बड़ा गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की भी उम्मीद जताई। उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में खीर गंगा का बढ़ने लगा है जलस्तर। हर्षिल थाना पुलिस ने एहतियात के तौर पर स्थानीय लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का कहर, उत्तराखंड में एक डॉक्टर की मौत। देहरादून टिहरी और पिथौरागढ़ में ऑरेंज अलर्ट, जबकि 8 जिलों के लिए मौसम विभाग का येलो अलर्ट। टिहरी गढ़वाल में लगातार 3 दिनों से बारिश, नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट पर रहने का निर्देश। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग रुद्रप्रयाग के निकट खांकरा में प्रभावित हाईवे पर टूट कर आए हैं बड़े बड़े पत्थर। नोएडा के सेक्टर 76 में सोसाइटी के लोगों ने आवाज बुलंद की है और प्रिंसली एस्टेट के निवासियों ने अतिक्रमण के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। इंग्लैंड ने आखिरी T20 में भारत को 56 रनों से हराकर सीरीज पर 4-0 से किया कब्जा। मेजबान ने 3 विकेट खोकर 257 रन बनाए थे। इंग्लैंड की ओर से जोस बटलर ने 64 गेंदों पर 131 रन बनाए। कप्तान हैरी ब्रुक ने 45 गेंदों पर नाबाद 95 रन बनाए। चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने जीता विंबलडन महिला सिंगल्स का खिताब। फाइनल में मुचोवा को 3 सेट में हराया। कोलकाता में चीनी ड्रैगन बोट फेस्टिवल 2026 का भव्य आयोजन, चीन के कोलकाता स्थित कौंसल जनरल शू वेई हुए शामिल। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जारी किया स्टैंडिंग ऑर्डर, मेरी हत्या हुई तो ईरान पर होगा बड़ा हमला, फैसला लेने की जिम्मेदारी जेडी वेंस की हो। दिल्ली के जसोला इलाके में दीवार गिरने से एक की मौत, दो लोग घायल। राजस्थान के नागौर में स्कॉर्पियो ने स्कूटी सवार बहनों को मारी टक्कर, दोनों गंभीर रूप से घायल। टोंक में घर के बाहर खड़ी कार को ले भागे चोर और रेकी के बाद वारदात को दिया अंजाम, घटना सीसीटीवी में कैद। आगरा के सुभाष बाजार हादसे में महिला की अब तक कोई भी जानकारी नहीं मिली, मलबे के साथ ही नाले में महिला समा गई थी। झांसी में छुट्टी के बाद एक 11वीं के छात्र को बदमाशों ने पीटा, भाई पर भी जानलेवा हमला किया। नोएडा में 9 जुलाई को इंजीनियर आर्यन की मौत के मामले में सीसीटीवी फुटेज आया सामने, प्रशासन के मुताबिक करंट लगने से मौत हुई। नोएडा में फर्जी लून कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 5 साइबर ठग गिरफ्तार, करोड़ों की ठगी का आरोप। हापुड़ में दुकानदार से खरीदे गए पानी के बोतल में एसिड मिलने का आरोप है, घटना का सीसीटीवी भी सामने आया। बिहार के मुजफ्फरपुर में पवन एक्सप्रेस में टिकट टैम्परिंग का खुलासा हुआ, छेड़छाड़ किए गए टिकट के साथ 4 यात्री गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में ज्वेलरी कारोबारी को बदमाशों ने मारी गोली, 2.5 लाख के गहने लूटकर फरार कारोबारी अस्पताल में भर्ती। सूरत में बैंक रिकवरी एजेंट की धारदार हथियार से हत्या, शॉपिंग सेंटर में मिला शक। इंदौर में कॉलेज छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, दीवार पर अंग्रेजी में लिखा सुसाइड नोट। रेवाड़ी में सिलेंडर ब्लास्ट में एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत, इलाज के दौरान पिता ने तोड़ा दम, 9 जुलाई को बेटी की जान गई थी। टिहरी के थाना कैंपटी पुलिस ने 12 घंटे के भीतर नाबालिग बरामद की, पहला फुसलाकर एक युवक ने वारदात को दिया अंजाम। राजस्थान के बूंदी में सिगरेट उधार नहीं देने पर दुकानदार पर चाकू से वार, दुकानदार को कोटा किया गया रेफर, आरोपी फरार। पीलीभीत में सड़क निर्माण की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ा ग्रामीण, एसडीएम के आश्वासन के बाद उतरा नीचे। एमपी के अलीराजपुर में गैंगरेप पर महिला से दरिंदगी भी की गई, डकैती के इरादे से घुसे 8 हथियारबंद बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। अमरावती के परतवाड़ा में सेक्स स्कैंडल मामले में 4 आरोपियों को जमानत मिली, मुख्य आरोपी अयान और उजैर खान अभी जेल में। सतारा के कराड़ में आगा शिव पहाड़ पर स्कूली छात्रों पर मधुमक्खियों का झुंड हमला कर देता है, इसमें 30 से 40 छात्र घायल। संभाजी नगर में पुलिस की छापेमारी में 2 पिस्तौल, 5 राइफल, हजारों जिंदा कारतूस जब्त। अपराधी बाबा फरजान के घर के पास से बड़ी मात्रा में सोना चांदी जब्त। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनी ने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता खामेनी की हत्या का बदला लेने की कसम दोहराई, कहा कि शहीद नेता का बदला लेना देश की मांग है।
ईरान अमेरिका युद्ध के बीच में ओमान पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को लेकर अहम बातचीत। यमन में हुती समर्थकों के शक्ति प्रदर्शन, ईरान के समर्थन में 14 प्रांतों में रैलियां निकाली गई। यूक्रेन बनाएगा पेट्रियट जैसी स्वदेशी मिसाइल रक्षा प्रणाली, यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा ऐलान। रूस के खिलाफ प्रस्तावित 21वें प्रतिबंध पैकेज पर फिलहाल नहीं बन पाई सहमति, यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में सहमति न बनने के चलते प्रतिबंध का 21वां पैकेज फिलहाल रुका।

0: अब बात करते हैं यूपी में चुनाव से पहले छिड़े धर्म युद्ध की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर चढ़ावा चोरी ने पूरी तरह से सियासी रंग ले लिया है, जिसके बाद अब योगी आदित्यनाथ विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को पिछला इतिहास गिना रहे हैं, तो वहीं विपक्ष राम मंदिर के मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा।
1: यूपी में राम मंदिर से शुरू हुआ घमासान अब धर्म की राजनीति तक पहुंच गया है। योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी का इतिहास खंगाल रहे हैं।
2: मंदिरों पे कब्जा करवाते थे लोग, मंदिरों पे कब्जा करवाते थे, और अब कब्जा नहीं, अब उन मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है, और पहले मंदिरों के नाम पर आने वाला पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर खर्च हो जाता था। यही तो करती थी समाजवादी पार्टी।
1: कल योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी में इफ्तार का जिक्र करके समाजवादी पार्टी को घेरा था, तो आज विपक्ष योगी पर गुमराह करने का आरोप लगा रहा है।
3: कैसे नमाज पढ़ सकता है कोई आदमी वहां? ये एजेंडा जो है ये तमाम चीजों से ध्यान भटकाने का है। कैसे नमाज पढ़ सकता है? हम तो कह रहे हैं कि आप सड़क पर नमाज ना पढ़े, चूंकि सड़क सरकार की और सरकार मना कर रही है तो आपकी नमाज जायज नहीं होगी। मैं तो बार बार बोलता हूं, जिस प्रॉपर्टी का ओनर अगर उसको इजाजत नहीं देता तो वहां नमाज ही नहीं हो सकती।
1: 2027 के चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा अब थमता नहीं दिख रहा है। इस बीच राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के कलंक पर अब समिति से जुड़े लोग दुख जता रहे हैं।
4: राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है, व्यवस्था में सुधार होगा, मुझे पूरा विश्वास है।
1: एक और ताबड़तोड़ जांच और एक्शन जारी है, तो वहीं राम भक्तों का भरोसा जीतने की कोशिश भी की जा रही है। चढ़ावा विवाद के बीच राम मंदिर ट्रस्ट जल्द ही सीईओ की नियुक्ति करने जा रहा है, जिसके लिए समिति का गठन भी कर दिया गया है। सीईओ को मंदिर के प्रशासन और वित्तीय प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जिसका उद्देश्य मंदिर के संचालन को अधिक पेशेवर, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। इसके साथ ही सीईओ चढ़ावे के प्रबंधन, श्रद्धालुओं की सुविधाओं, आधारभूत ढांचे के रखरखाव और प्रशासनिक व्यवस्था की भी निगरानी रखेंगे। साफ है कि एक ओर सरकार बार बार भरोसा जताने की कोशिश कर रही है कि वो भक्तों के साथ धोखा करने वालों को बख्शेगी नहीं, वही विपक्ष सरकार की पूरी जाँच को कटघरे में खड़ा कर रही है। आज तक ब्यूरो।
0: राम मंदिर जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, और इस बीच में मंदिर प्रशासन के सामने चुनौती सिस्टम को सुधारने की भी है, जिस पर लगातार फैसले लिए जा रहे हैं।
1: चढ़ावा चोरी के गंभीर आरोपों की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे सामने आते जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से अब सामने आया है कि मंदिर में काम करने वाले कुछ पूर्व सैनिकों पर कुछ भी बोलने पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसके लिए बकायदा सभी पूर्व सैनिकों को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा गया था। कहा गया था कि कोई कुछ भी पूछे बोलना नहीं है। जिस मैसेज पर सवाल उठ रहे हैं उस मैसेज का स्क्रीनशॉट भी आज तक के पास मौजूद है। इसे साफ है कि चढ़ावा चोरी के खुलासे के बाद मामले को छिपाने की कोशिश की गई। इधर अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के दो और आरोपियों को पुलिस जल्द ही रिमांड पर लेगी। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव से पुलिस पूछताछ करेगी। टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई गई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र की 7 दिनों की कस्टडी मांगी है।
5: अयोध्या पुलिस ने अब रामशंकर यादव और टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में 7 दिन की अर्जी डाली है। इन दोनों की पुलिस कस्टडी रिमांड बेहद अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि जहां रामशंकर यादव के पास डोनेशन बॉक्स की चाबियां होती थी, वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद उस कमरे के इंचार्ज थे जहां से चढ़ावा चोरी हो रहा था। ऐसे में इन दोनों से की गई पूछताछ से पुलिस पता लगाने की कोशिश में लगी है कि आखिर यह चोरी हो रही थी तो उनके संज्ञान में क्यों नहीं आई, पकड़ी भी गई तो क्यों उन पर कार्रवाई नहीं हुई।
1: इस बीच राम मंदिर में चढ़ावे की गणना के लिए नया टाइम टेबल लागू कर दिया गया है। पहले 2 पालियों में होने वाली गिनती अब एक ही शिफ्ट में की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चढ़ावे की गिनती होगी। नई समय सारणी लागू होने के बाद कुछ गणना कर्मियों ने काम छोड़ दिया है। उधर राम मंदिर में वीआईपी पास की प्रक्रिया भी रोकी गई है, क्योंकि जिन लोगों की आईडी का इस्तेमाल इस काम के लिए किया गया था उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में जारी घटनाक्रम के बीच गोपाल राव ने निर्मोही अखाड़ा पहुंचकर ट्रस्टी मैन दीनेन्द्र दास से मुलाकात की। दोनों के बीच बंद कमरे में काफी देर तक एकांत में चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में ट्रस्ट से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। इस मुलाकात में ट्रस्ट के भीतर चल रहे विवादों के बीच डैमेज कंट्रोल की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हालांकि बैठक में इस चर्चा के संबंध में आधिकारिक रूप से कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। अयोध्या से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: यूपी में राम मंदिर पर घमासान जारी, तो मध्य प्रदेश में लड़ाई बीजेपी बनाम बीजेपी की दिख रही है, जहां दतिया में हो रहे उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा और इसके बाद से कार्यकर्ता भड़क गए।
6: दतिया में टिकट को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा ऐसा फूटा कि वो अपनी ही सरकार की पुलिस से भिड़ गए। मध्य प्रदेश के दतिया में 30 जुलाई को उपचुनाव है। बीजेपी ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। दतिया से आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाने की घोषणा होते ही नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। नेशनल हाईवे पर जाम लग गया, घंटों तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही, पुलिस पर पथराव हुए और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए।
7: कि मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए, पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं, ऐसा कोई कार्य न करे।
6: आखिर दतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट क्यों कटा? बताया जा रहा है कि दिल्ली के स्तर पर कराए गए सर्वे में नरोत्तम मिश्रा की स्थिति उम्मीद के मुताबिक मजबूत नहीं पाई गई। 2023 में बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को टिकट दिया था, लेकिन वो विधानसभा का चुनाव हार गए। केंद्रीय नेतृत्व ने स्थानीय संगठन और भविष्य की राजनीति स्वीकारता का भी आकलन कराया। इसमें नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी फिट बैठे, जिसके बाद उन्हें दतिया से टिकट दिया गया। बीजेपी ने एक ब्राह्मण नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर दूसरे ब्राह्मण आशुतोष तिवारी को टिकट दिया है। इससे जातिगत और सामाजिक संतुलन बरकरार है। उधर पार्टी का संदेश साफ है कि बीजेपी हाईकमान फिलहाल झुकने के मूड में नहीं है।
8: पार्टी इस प्रकार के सोच समझ के निर्णय लेती है, वैसे हम डंके की चोट जीतेंगे और नरोत्तम जी भी काम करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं नरोत्तम जी को जानता हूँ व्यक्तिगत।
9: नरोत्तम जी मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता, तो उनको कट्टू साइज तो करनी था, कर दिया।
6: दतिया में अब लड़ाई बीजेपी के सामने अपनों से है, जहां अभी तक कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। भोपाल से रवीश पाल के साथ आज तक ब्यूरो।
0: इस पूरे मामले में हमारे सहयोगी रवीश पाल ने खास बातचीत की नरोत्तम मिश्रा से।
10: फैसले को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि मान के तो चला जा रहा था कि आप ही इकलौते उम्मीदवार हैं वहां से भाजपा के।
11: पार्टी का फैसला जो होता है वो ठीक ही होता है, उसको अच्छे रूप में ही लेना चाहिए, खराब रूप में नहीं लेना चाहिए, ऐसा मेरी मान्यता है।
10: आप के तो सकारात्मक भाव है, लेकिन आपके जो समर्थक थे जो महीनों से इंतजार कर रहे थे कि जो प्रकरण आया राजन भारती का, मामला कोर्ट में गया, फिर वहां से विधायकी गई, सदस्यता गई, सबको उम्मीद थी, लेकिन जब ये फैसला आया तो उनका गुस्सा साफ तौर पर सामने मिला। हाईवे जाम हो गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ हो गई, पथराव हो गया।
11: हाँ, छड़े काबिज था, मैंने कल भी फिर उनसे निवेदन किया था, आज भी किया मैंने। जाम वाम की स्थिति नहीं होना चाहिए। कार्यकर्ता वो पेट्रोल डाल रहे थे, वो मुझे दिखाए विजुअल फुटेज, मिट्टी का तेल डालते हुए था। धैर्य और संयम का समय यही होता है, यही परीक्षा की घड़ी होती है।
10: आप भोपाल जा रहे हैं, तो भोपाल में कोई कार्यक्रम आला नेताओं से आपकी मुलाकात है क्या, प्रदेश अध्यक्ष से या मुख्यमंत्री से या किसी से?
11: अभी तो अभी तो बताऊंगा निश्चित। आप
10: आशुतोष तिवारी को आशीर्वाद रहेगा आपका?
11: सभी को क्यों नहीं रहेगा, कैसी बात कर रहे हैं।
10: हालांकि कैलाश जी ने कहा है कि वो बहुत अच्छे से जानते हैं आपको, उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूं नरोत्तम जी को, पार्टी के फैसले को हमेशा से स्वीकार करते हैं और हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहे हैं।
11: बिल्कुल सही कहा, मैं सहमत हूं।
10: आपके लिए भावुक क्षण है?
11: नहीं, राजनीति में ये सब चलने वाली चीज है।
10: लेकिन एक आखिरी सवाल नरोत्तम जी, चुनाव हुआ 2023 का, फिर लोकसभा आया, फिर राज्यसभा चुनाव आए, फिर कई दूसरी जिम्मेदारियां भी थी, हालांकि न्यू ज्वाइनिंग टोली का आपको संयोजक बनाया गया था, तब काफी लोग जुड़ के आए थे कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में, अब तो भाजपा में
11: लगातार लोकसभा राज्यसभा अध्यक्ष जो भी आप बात कर रहे हैं, ये अंतर्मुखी होकर स्वयं के चिंतन के लिए पार्टी अवसर दे रही है। हमें चिंतन करना भी चाहिए, अच्छी बात।
0: बांकीपुर उपचुनाव में टिकट को लेकर सियासत तेज है, जहां बीजेपी ने एक दिन के अंदर अपने प्रत्याशी को बदल दिया, जिस पर अब विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है।
1: बांकीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी की ओर से पहले अभिषेक कुमार का नामांकन हुआ, फिर एक दिन बाद ही अचानक अभिषेक ने नामांकन वापस ले लिया और नीरज कुमार को नया उम्मीदवार घोषित किया गया। जिस अभिषेक को सामान्य कार्यकर्ता बताकर बीजेपी ने नितिन नवीन वाली सीट के लिए प्रत्याशी बनाया, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी को अपना प्रत्याशी बदलना पड़ा?
12: कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। मैं कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा।
1: अब सवाल यह कि जिस पारिवारिक मामले का हवाला देकर अभिषेक ने नामांकन वापस लिया, वही परिवार एक दिन पहले अभिषेक को आशीर्वाद देते हुए भावुक हो गया था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अभिषेक बंटी के पिता रविंद्र प्रसाद सिन्हा चारा घोटाले में दोषी रहे। वो मगध केमिकल्स कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी में मैनेजर थे। इस कंपनी पर चारा घोटाले में फर्जी बिल के आधार पर सप्लायर बनाने का आरोप था। फर्जी बिलों के जरिए सरकारी खजाने से पैसा निकालने का मामला रविंद्र प्रसाद सिन्हा पर चला था। सूत्रों के मुताबिक दूसरी बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि अभिषेक सिन्हा बंटी ने नामांकन पत्र में गलत जानकारी भी दी थी। उन्होंने पढ़ाई से जुड़ी कुछ जानकारियां छिपाई थी, ऐसे में भी अभिषेक बंटी का नॉमिनेशन रद्द होने की आशंका थी। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी ने कोई जोखिम नहीं लेते हुए अभिषेक बंटी का नामांकन वापस कराने का फैसला लिया, यानी पार्टी को डर था कि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लालू परिवार को घेरते रहे, उसी भ्रष्टाचार में अभिषेक के पिता आरोपी हैं। लेकिन अब बीजेपी के नए प्रत्याशी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नीरज कुमार सिन्हा के उम्मीदवार घोषित होने के बाद बीजेपी ने उनका बायोडेटा जारी किया। इसमें उनके जन्म तिथि 1 जुलाई 1994 बताए गए। इसी बायोडेटा में लिखा गया कि उन्होंने 2006 में बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता लेकर अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की, यानी बीजेपी ज्वाइन करने के वक्त उनकी उम्र सिर्फ 12 साल थी, जबकि किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने की न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल होती है। इसके कुछ समय बाद बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा का संशोधित बायोडेटा जारी किया। नए बायोडेटा में उनकी जन्म तिथि पहले की तरह 1 जुलाई 1994 ही रखी गई, लेकिन 2006 में बीजेपी की सदस्यता लेने का उल्लेख हटा दिया गया। संशोधित बायोडेटा में ये नहीं बताया गया कि उन्होंने पार्टी की सदस्यता कब ली। बीजेपी ने यह भी नहीं बताया कि पहले और दूसरे बायोडेटा में यह बदलाव क्यों किया गया, लेकिन दो दिन के अंदर हुए इस घटनाक्रम ने विपक्ष को घेरने का एक मौका जरूर दे दिया।
13: ये पहली बार हुआ है कि नामांकन करने के बाद कोई बीजेपी का प्रत्याशी नाम वापस ले रहा हो। विपक्ष के सामने बीजेपी के उम्मीदवार टिक ही नहीं पा रहे हैं। अब जिस दूसरे उम्मीदवार नीरज सिन्हा को बनाया है उनके ऊपर भी विवाद है।
14: विपक्ष इस बात के लिए चिंता करे कि नीचे से फर्स्ट कौन करिएगा। मुकाबला में तो खैर नहीं है, मुकाबला में बहुत ही अंतराल है।
1: बहरहाल बीजेपी की इस पारंपरिक सीट पर प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, जहां बीजेपी के फैसले को और बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी है। शशि भूषण कुमार के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक।
0: पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस में तकरार देखने को मिल रहे हैं, जहां चन्नी की बगावती तेवर आलाकमान की टेंशन बढ़ा रहे हैं। भूपेश बघेल को पंजाब कांग्रेस की नाराजगी दूर करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन अभी भी तकरार खत्म होती नहीं दिख रही।
15: ये तस्वीरें पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान को खत्म करने की हैं, जहां कांग्रेस के पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने चन्नी गुट के नेताओं के साथ करीब 2 घंटे लंबी बैठक की। बैठक खत्म होने के बाद बघेल ने किसी भी तरह की नाराजगी से इनकार किया।
16: हमारे सीनियर लीडर हैं, उन्होंने आमंत्रित किया और राणा साहब के हाथ में अनेक बार आया हूँ, भोजन किया हूँ, तो हमारा राणा साहब से तो अलग ही इस तरह का संबंध है, प्रेम का भाई का संबंध है, तो उन्होंने आखिरी में मुझे आमंत्रित किया।
15: भले ही बघेल सब कुछ ठीक होने की बात कर रहे हो, लेकिन सूत्रों की माने तो बैठक में कुछ खास नतीजा नहीं निकला।
17: जो अंदर बात हुई है वो भावना जो है वो सबके सामने रख दी गई है, और उस भावना की कदर करते हुए बोला भी बाहर इसके अलावा कोई बात नहीं करनी कि जो लीडरशिप है उसको हमने अपनी ए टू जेड बड़ी क्लियरली एक एक बात एक एक रीजन लॉजिक के साथ आगे रख दिया है और उम्मीद करते हैं भी वो जो बात है वो बड़ी क्लियरली बघेल साहब हाईकमांड तक।
15: दरअसल कांग्रेस में

0: पिछले चुनाव से पहले कांग्रेस की अंदरूनी कलह ने उसे सत्ता से बाहर कर दिया था। ऐसे में एक बार फिर बगावत ने आलाकमान की टेंशन बढ़ा दी है।
1: पार्टी सोर्सेज जो बताते हैं कि अंदर ये वॉइस उठाई गई कि राजावाड़ी की प्रधानगी मौजूद नहीं, हमें मंजूर नहीं है। और इसके अलावा जब सुखजिंदर रंधावा बाहर आए तो उन्होंने बोला कि हमने साफ डिमांड रखी है, पहली डिमांड ये है कि जो है जो 2027 का इलेक्शन है वो कांग्रेस जीते और लड़ाई ऐसा लीडर लड़े जो कॉम्प्रोमाइज ना हो। हालांकि किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अब हाईकमान के पाले में गेंद जाएगी जिस तरह की ये सिचुएशन लग रही है। तो पंजाब कांग्रेस ने जिसने भूपेश बघेल ने अटेम्प्ट किया था कि बैठ के डेडलॉक टूटे, तो ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि उन्होंने बोला एप्रीहेंशन अब टेकअप की जाएंगी। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन मुजीद के साथ असीम बस्सी आज तक।
2: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

0: यूपी में 27 का घमासान तेज। मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पार्टी पर बोला हमला का इनका इतिहास, राम भक्तों के खून से सना भारत की विरासत और आस्था को किया अपमानित। दतिया से टिकट कटने के बाद आज तक से बोले बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्र, राजनीति में यह चलता है पार्टी का फैसला सही, मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिले। आमिर खान की तीसरी शादी पर भड़के नितेश राणे, बताया लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर, युवाओं से की आमिर की फिल्में सोच समझकर देखने की अपील। वियतनाम में भारतीय पर्यटकों से भरी नाव पलटी, अब तक 15 लोगों की मौत, फुकोक द्वीप के पास हादसा, राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने जताई संवेदना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जारी किया आदेश, कहा अगर मेरी हत्या हुई तो ईरान को मिटा दें, जेडी विंस को सौंपी फैसला लेने की जिम्मेदारी। अब बात करते हैं यूपी में चुनाव से पहले छिड़े धर्म युद्ध की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर चढ़ावा चोरी ने पूरी तरह से सियासी रंग ले लिया है, जिसके बाद अब योगी आदित्यनाथ विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को पिछला इतिहास गिना रहे हैं, तो वहीं विपक्ष राम मंदिर के मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा।
1: यूपी में राम मंदिर से शुरू हुआ घमासान अब धर्म की राजनीति तक पहुंच गया है। योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी का इतिहास खंगाल रहे हैं।
2: मंदिरों पे कब्जा करवाते थे लोग, मंदिरों पे कब्जा करवाते थे, और अब कब्जा नहीं, अब उन मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है, और पहले मंदिरों के नाम पर आने वाला पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर खर्च हो जाता था। यही तो करती थी समाजवादी पार्टी।
1: कल योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी में इफ्तार का जिक्र करके समाजवादी पार्टी को घेरा था, तो आज विपक्ष योगी पर गुमराह करने का आरोप लगा रहा है।
3: कैसे नमाज पढ़ सकता है कोई आदमी वहां? ये एजेंडा जो है ये तमाम चीजों से ध्यान भटकाने का है। कैसे नमाज पढ़ सकता है? हम तो कह रहे हैं कि आप सड़क पे नमाज ना पढ़े, चूंकि सड़क सरकार की और सरकार मना कर रही है तो आपकी नमाज जायज नहीं होगी। मैं तो बार बार बोलता हूं, जिस प्रॉपर्टी का ओनर अगर उसको इजाजत नहीं देता तो वहां नमाज ही नहीं हो सकती।
1: 2027 के चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा अब थमता नहीं दिख रहा है। इस बीच राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के कलंक पर अब समिति से जुड़े लोग दुख जता रहे हैं।
4: राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है, व्यवस्था में सुधार होगा मुझे पूरा विश्वास है।
1: एक और ताबड़तोड़ जांच और एक्शन जारी है, तो वहीं राम भक्तों का भरोसा जीतने की कोशिश भी की जा रही है। चढ़ावा विवाद के बीच राम मंदिर ट्रस्ट जल्द ही सीईओ की नियुक्ति करने जा रहा है, जिसके लिए समिति का गठन भी कर दिया गया है। सीईओ को मंदिर के

0: प्रशासन और वित्तीय प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जिसका उद्देश्य मंदिर के संचालन को अधिक पेशेवर, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। इसके साथ ही सीईओ चढ़ावे के प्रबंधन, श्रद्धालुओं की सुविधाओं, आधारभूत ढांचे के रखरखाव और प्रशासनिक व्यवस्था की भी निगरानी रखेंगे। साफ है कि एक ओर सरकार बार बार भरोसा जताने की कोशिश कर रही है कि वो भक्तों के साथ धोखा करने वालों को बख्शेगी नहीं, वहीं विपक्ष सरकार की पूरी जांच को कटघरे में खड़ा कर रही है। आज तक ब्यूरो।
1: राम मंदिर जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं और इस बीच में मंदिर प्रशासन के सामने चुनौती सिस्टम को सुधारने की भी है, जिस पर लगातार फैसले लिए जा रहे हैं।
0: चढ़ावा चोरी के गंभीर आरोपों की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे सामने आते जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से अब सामने आया है कि मंदिर में काम करने वाले कुछ पूर्व सैनिकों पर कुछ भी बोलने पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसके लिए बकायदा सभी पूर्व सैनिकों को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा गया था। कहा गया था कि कोई कुछ भी पूछे बोलना नहीं है। जिस मैसेज पर सवाल उठ रहे हैं उस मैसेज का स्क्रीनशॉट भी आज तक के पास मौजूद है। इसे साफ है कि चढ़ावा चोरी के खुलासे के बाद मामले को छिपाने की कोशिश की गई। इधर अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के दो और आरोपियों को पुलिस जल्द ही रिमांड पर लेगी। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव से पुलिस पूछताछ करेगी। टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई गई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र की 7 दिनों की कस्टडी मांगी है।
2: अयोध्या पुलिस ने अब रामशंकर यादव, टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में 7 दिन की अर्जी डाली है। इन दोनों की पुलिस कस्टडी रिमांड बेहद अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि जहां रामशंकर यादव के पास डोनेशन बॉक्स की चाबियां होती थी, वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद उस कमरे के इंचार्ज थे जहां से चढ़ावा चोरी हो रहा था। ऐसे में इन दोनों से की गई पूछताछ से पुलिस पता लगाने की कोशिश में लगी है कि आखिर यह चोरी हो रही थी तो उनके संज्ञान में क्यों नहीं आई, पकड़ी भी गई तो क्यों उन पर कार्रवाई नहीं हुई।
0: इस बीच राम मंदिर में चढ़ावे की गणना के लिए नया टाइम टेबल लागू कर दिया गया है। पहले 2 पालियों में होने वाली गिनती अब एक ही शिफ्ट में की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चढ़ावे की गिनती होगी। नई समय सारणी लागू होने के बाद कुछ गणना कर्मियों ने काम छोड़ दिया है। उधर राम मंदिर में VIP पास की प्रक्रिया भी रोकी गई क्योंकि जिन लोगों की ID का इस्तेमाल इस काम के लिए किया गया था उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में जारी घटनाक्रम के बीच गोपाल राव ने निर्मोही अखाड़ा पहुंचकर ट्रस्टी महंत दीनेन्द्र दास से मुलाकात की। दोनों के बीच बंद कमरे में काफी देर तक एकांत में चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में ट्रस्ट से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। इस मुलाकात में ट्रस्ट के भीतर चल रहे विवादों के बीच डैमेज कंट्रोल की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हालांकि बैठक में इस चर्चा के संबंध में आधिकारिक रूप से कोई जानकारी साझा नहीं की गई। अयोध्या से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
1: यूपी में राम मंदिर पर घमासान जारी तो मध्य प्रदेश में लड़ाई बीजेपी बनाम बीजेपी की दिख रही है, जहां दतिया में हो रहे उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा और इसके बाद से कार्यकर्ता भड़क गए।
3: दतिया में टिकट को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा ऐसा फूटा कि वो अपनी ही सरकार की पुलिस से भिड़ गए। मध्य प्रदेश के दतिया में 30 जुलाई को उपचुनाव है। बीजेपी ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। दतिया से आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाने की घोषणा होते ही नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। नेशनल हाईवे पर जाम लग गया, घंटों तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही, पुलिस पर पथराव हुए और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए।
4: मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए, पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं, ऐसा कोई कार्य न करे।
3: आखिर दतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट क्यों कटा? बताया जा रहा है कि दिल्ली के स्तर पर कराए गए सर्वे में नरोत्तम मिश्रा की स्थिति उम्मीद के मुताबिक मजबूत नहीं पाई गई। 2023 में बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को टिकट दिया था लेकिन वो विधानसभा का चुनाव हार गए। केंद्रीय नेतृत्व ने स्थानीय संगठन और भविष्य की राजनीति स्वीकारता का भी आकलन कराया। इसमें नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी फिट बैठे, जिसके बाद उन्हें दतिया से टिकट दिया गया। बीजेपी ने एक ब्राह्मण नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर दूसरे ब्राह्मण आशुतोष तिवारी को टिकट दिया है। इससे जातिगत और सामाजिक संतुलन बरकरार है। उधर पार्टी का संदेश साफ है कि बीजेपी हाईकमान फिलहाल झुकने के मूड में नहीं है।
5: पार्टी इस प्रकार के सोच समझ के निर्णय लेती है और इससे हम डंके की चोट जीतेंगे और नरोत्तम जी भी काम करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं नरोत्तम जी को जानता हूँ व्यक्तिगत।
6: नरोत्तम जी मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता, तो उनको कट्टू साइज तो करनी ही था, कर दिया।
3: दतिया में अब लड़ाई बीजेपी के सामने अपनों से है, जहां अभी तक कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। भोपाल से रवीश पाल के साथ आज तक ब्यूरो।
1: इस पूरे मामले में हमारे सहयोगी रवीश पाल ने खास बातचीत की नरोत्तम मिश्रा से।
7: फैसले को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि मान के तो चला जा रहा था कि आप ही इकलौते उम्मीदवार हैं वहां से भाजपा के।
8: पार्टी का फैसला जो होता है वो ठीक ही होता है, उसको अच्छे रूप में ही लेना चाहिए, खराब रूप में नहीं लेना चाहिए, ऐसा मेरी मान्यता है।
7: आप के तो सकारात्मक भाव है, लेकिन आपके जो समर्थक थे जो महीनों से इंतजार कर रहे थे कि जो प्रकरण आया राजन भारती का, मामला कोर्ट में गया, फिर वहां से विधायी की गई, सदस्यता गई, सबको उम्मीद थी, लेकिन जब ये फैसला आया तो उनका गुस्सा साफ तौर पर सामने मिला। हाईवे जाम हो गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ हो गई, पथराव हो गया।
8: हाँ, छड़े का आवेश था, मैंने कल भी फिर उनसे निवेदन किया था, आज भी किया मैंने। जाम वाम की स्थिति नहीं होना चाहिए। कार्यकर्ता वो पेट्रोल डाल रहे थे, वो मुझे दिखाए विजुअल फुटेज, मिट्टी का तेल डालते हुए था। धैर्य और संयम का समय यही होता है, यही परीक्षा की घड़ी होती है।
7: आप भोपाल जा रहे हैं तो भोपाल में कोई कार्यक्रम, आला नेताओं से आपकी मुलाकात है क्या, प्रदेश अध्यक्ष से या मुख्यमंत्री से या किसी से?
8: अभी तो होगी तो बताऊंगा निश्चित। आप
7: आशुतोष तिवारी को आशीर्वाद रहेगा आपका?
8: सभी को क्यों नहीं रहेगा, कैसी बात कर रहे हैं।
7: हालांकि कैलाश जी ने कहा है कि वो बहुत अच्छे से जानते हैं आपको, उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ नरोत्तम जी को, पार्टी के फैसले को हमेशा से स्वीकार करते हैं और हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहे हैं।
8: बिल्कुल सही कहा, मैं सहमत हूँ।
7: आपके लिए भावुक क्षण है?
8: नहीं, राजनीति में ये सब चलने वाली चीज है।
7: लेकिन एक आखिरी सवाल नरोत्तम जी, चुनाव हुआ 2023 का, फिर लोकसभा आया, फिर राज्यसभा चुनाव आए, फिर कई दूसरी जिम्मेदारियां भी थी, हालांकि न्यू ज्वाइनिंग टोली का आपको संयोजक बनाया गया था, तब काफी लोग जुड़ के आए थे कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में, अब तो भाजपा में
8: लगातार लोकसभा राज्यसभा अध्यक्ष जो भी आप बात कर रहे हैं, ये अंतर्मुखी होकर स्वयं के चिंतन के लिए पार्टी अवसर दे रही है, हमें चिंतन करना भी चाहिए, अच्छी बात है।
1: बांकीपुर उपचुनाव में टिकट को लेकर सियासत तेज है, जहां बीजेपी ने एक दिन के अंदर अपने प्रत्याशी को बदल दिया, जिस पर अब विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है।
9: बांकीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी की ओर से पहले अभिषेक कुमार का नामांकन हुआ, फिर एक दिन बाद ही अचानक अभिषेक ने नामांकन वापस ले लिया और नीरज कुमार को नया उम्मीदवार घोषित किया गया। जिस अभिषेक को सामान्य कार्यकर्ता बताकर बीजेपी ने नितिन नवीन वाली सीट के लिए प्रत्याशी बनाया, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी को अपना प्रत्याशी बदलना पड़ा?
10: वैवाहिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। मैं कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा।
9: अब सवाल ये कि जिस पारिवारिक मामले का हवाला देकर अभिषेक ने नामांकन वापस लिया, वही परिवार एक दिन पहले अभिषेक को आशीर्वाद देते हुए भावुक हो गया था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अभिषेक बंटी के पिता रविंद्र प्रसाद सिन्हा चारा घोटाले में दोषी रहे। वो मगध केमिकल्स कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी में मैनेजर थे। इस कंपनी पर चारा घोटाले में फर्जी बिल के आधार पर सप्लायर बनाने का आरोप था। फर्जी बिलों के जरिए सरकारी खजाने से पैसा निकालने का मामला रविंद्र प्रसाद सिन्हा पर चला था। सूत्रों के मुताबिक दूसरी बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि अभिषेक सिन्हा बंटी ने नामांकन पत्र में गलत जानकारी भी दी थी, उन्होंने पढ़ाई से जुड़ी कुछ जानकारियां छिपाई थी, ऐसे में भी अभिषेक बंटी का नॉमिनेशन रद्द होने की आशंका थी। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी ने कोई जोखिम नहीं लेते हुए अभिषेक बंटी का नामांकन वापस कराने का फैसला लिया, यानी पार्टी को डर था कि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लालू परिवार को घेरते रहे, उसी भ्रष्टाचार में अभिषेक के पिता आरोपी हैं। लेकिन अब बीजेपी के नए प्रत्याशी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नीरज कुमार सिन्हा के उम्मीदवार घोषित होने के बाद बीजेपी ने उनका बायोडेटा जारी किया। इसमें उनके जन्म तिथि 1 जुलाई 1994 बताए गए। इसी बायोडेटा में लिखा गया कि उन्होंने 2006 में बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता लेकर अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। यानी बीजेपी ज्वाइन करने के वक्त उनकी उम्र सिर्फ 12 साल थी, जबकि किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने की न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल होती है। इसके कुछ समय बाद बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा का संशोधित बायोडेटा जारी किया। नए बायोडेटा में उनकी जन्म तिथि पहले की तरह 1 जुलाई 1994 ही रखी गई, लेकिन 2006 में बीजेपी की सदस्यता लेने का उल्लेख हटा दिया गया। संशोधित बायोडेटा में ये नहीं बताया गया कि उन्होंने पार्टी की सदस्यता कब ली। बीजेपी ने यह भी नहीं बताया कि पहले और दूसरे बायोडेटा में यह बदलाव क्यों किया गया, लेकिन 2 दिन के अंदर हुए इस घटनाक्रम ने विपक्ष को घेरने का एक मौका जरूर दे दिया।
11: ये पहली बार हुआ है कि नामांकन करने के बाद कोई बीजेपी का प्रत्याशी नाम वापस ले रहा हो। विपक्ष के सामने बीजेपी के उम्मीदवार टिक ही नहीं पा रहे हैं। अब जिस दूसरे उम्मीदवार नीरज सिन्हा को बनाया है उनके ऊपर भी विवाद है।
12: विपक्ष इस बात के लिए चिंता करे कि नीचे से फर्स्ट कौन करिएगा। मुकाबला में तो खैर नहीं है, मुकाबला में बहुत ही अंतराल है।
9: बहरहाल बीजेपी की इस पारंपरिक सीट पर प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, जहां बीजेपी के फैसले को और बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी है। शशि भूषण कुमार के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक।
1: पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस में तकरार देखने को मिल रहे हैं, जहां चन्नी की बगावती तेवर आलाकमान की टेंशन बढ़ा रहे हैं। भूपेश बघेल को पंजाब कांग्रेस की नाराजगी दूर करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन अभी भी तकरार खत्म होती नहीं दिख रही।
13: ये तस्वीरें पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान को खत्म करने की हैं, जहां कांग्रेस के पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने चन्नी गुट के नेताओं के साथ करीब 2 घंटे लंबी बैठक की। बैठक खत्म होने के बाद बघेल ने किसी भी तरह की नाराजगी से इनकार किया।
14: हमारे सीनियर लीडर हैं, उन्होंने आमंत्रित किया और राणा साहब के हाथ में अनेक बार आया हूँ, भोजन किया हूँ, तो हमारा राणा साहब से इस तरह का संबंध है, प्रेम का, भाई का संबंध है, तो उन्होंने आखिरी में मुझे आमंत्रित किया।
13: भले ही बघेल सब कुछ ठीक होने की बात कर रहे हो, लेकिन सूत्रों की माने तो बैठक में कुछ खास नतीजा नहीं निकला।
15: जो अंदर बात हुई है वो भावना जो है वो सबके सामने रख दी गई है, और उस भावना की कदर करते हुए बोला भी बाहर इसके अलावा कोई बात नहीं करनी। ये जो लीडरशिप है उसको हमने अपनी A to Z बड़ी क्लियरली एक एक बात, एक एक रीजन लॉजिक के साथ आगे रख दिया है, और उम्मीद करते हैं भी वो जो बात है वो बड़ी क्लियरली बघेल साहब हाईकमांड तक।
13: दरअसल कांग्रेस में चन्नी गुट राजा वर्डिंग को अध्यक्ष बनाए जाने से नाराज चल रहा है, जिसे लेकर चन्नी गुट पहले बैठक कर चुका है। हालात बिगड़ते देख बघेल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज हुई बैठक में भी राजा वर्डिंग को लेकर नेताओं से राय ली गई, लेकिन इस पर आखिरी मुहर दिल्ली से लगनी है। पिछले चुनाव से पहले कांग्रेस की अंदरूनी कलह ने उसे सत्ता से बाहर कर दिया था, ऐसे में एक बार फिर बगावत ने आलाकमान की टेंशन बढ़ा दी है।
16: पार्टी सोर्सेज जो बताते हैं कि अंदर ये वॉइस उठाई गई कि राजा वड़िंग की प्रधानगी मौजूद नहीं, हमें मंजूर नहीं है, और इसके अलावा जब सुखजिंदर रंधावा बाहर आए तो उन्होंने बोला कि हमने साफ डिमांड रखी है, पहली डिमांड ये है कि जो है जो 2027 का इलेक्शन है वो कांग्रेस जीते, और लड़ाई ऐसा लीडर लड़े जो कॉम्प्रोमाइज ना हो। हालांकि किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अब हाईकमान के पाले में गेंद जाएगी जिस तरह की ये सिचुएशन लग रही है। सो पंजाब कांग्रेस ने जिसने भूपेश बघेल ने एक अटेम्प्ट किया था कि बैठ के डेडलॉक टूटे, तो ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि उन्होंने बोला एप्रीहेंशन अब टेकअप की जाएंगी। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन गुंजीत के साथ असीम बस्सी, आज तक।
1: बाद मानसून की मार के मानसून भले ही देर से आया हो, लेकिन आने के साथ ही तबाही मचा रखी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है।
9: आसमान से बरसती आफत और जमीन पर जिंदगी बचाने की जद्दोजहद, कहीं पहाड़ तड़प रहे हैं तो कहीं पानी जिंदगी को अपनी चपेट में ले रहा है। मानसून की बारिश अब सिर्फ मौसम नहीं रही, कई इलाकों में यह डर दहशत और तबाही की वजह बन चुकी है। हिमाचल से उत्तराखंड तक बारिश ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया है कि लोग घर छोड़ने, रास्ते छोड़ने और जिंदगी बचाने को मजबूर हैं। उत्तराखंड में भी बारिश लगातार आफत बनकर बरस रही है। टिहरी गढ़वाल में लगातार तीसरे दिन बारिश जारी है। बारिश के चलते टिहरी झील का जलस्तर बढ़ रहा है। नदी किनारे रहने वाले लोगों में डर का माहौल लगातार बना हुआ है
17: और काफी बारिश से अस्त व्यस्त जीवन हो रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं घनसाली में काफी बारिश लगातार हो रही है।
18: तो नदी के किनारे लोग रह रहे हैं, सभी घरों के जो है नॉट चस्पा कर दिया और समय समय पर जैसे बारिश होती है सायरन भी जो है प्रशासन द्वारा जो है बजाया जाता है और अपने अधिकारी भी कर्मचारी भी लगाए हुए हैं कि जो नदी किनारे अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अगर पानी बढ़ता है तो अन्यत्र जो है अपनी व्यवस्था करें। तो लोग सतर्क हैं और क्योंकि मेरा घर भी नदी के किनारे है हमें भी नोटिस गवर्नमेंट से आया है।
9: प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। दो दिन की छुट्टी के बाद स्कूल खुले लेकिन बारिश के बीच बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों की चिंता भी सामने आई। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे हालात में एहतियात और ज्यादा जरूरी है।
19: बद्रीनाथ धाम में बीते तीन दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। जहां अब मानसून पहाड़ों में पैर पसार रहा है वहीं बद्रीनाथ धाम में लगातार बारिश हो रही है। तो बद्रीनाथ धाम में बहने वाली अलकनंदा में अपना विकराल रूप धीरे धीरे जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जो यहां पे नरसिंहशिला बारहशिला है वो लगातार पानी में डूबती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी मानसून के दौरान ये पूरी शिला बद्रीनाथ धाम की जो अलकनंदा है उसमें डूब जाती है लेकिन अब धीरे धीरे उफान पर अलकनंदा बह रही है। पूरा पानी बढ़ता जा रहा है, पल पल बारिश के साथ ही जो पानी है जलस्तर है वो बढ़ रहा है। हालांकि मार्ग बाधित होने की जो आशंका है वो बनी हुई है क्योंकि मानसून का दौर है, बारिश तेज होती है तो अलग अलग जगहों पे खासकर पीपल कोठी के भनेर पानी में और जो गुलाब कोठी है हेलंग के समीप वहां पे लगातार भूस्खलन का दौर बन रहा है।
9: चमोली के थराली क्षेत्र में बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार हो रही बारिश के बाद घाघली गदेरे में भारी मात्रा में मलबा आ गया जिसके चलते थराली देवाल और थराली कुराड़ मार्ग प्रभावित हुए। एक रास्ता खोल दिया गया है लेकिन कई इलाकों में अब भी लोगों की मुश्किलें बनी हुई है। उफनते नाले के किनारे बसे राडीबगढ़ गांव के लोगों ने पूरी रात दहशत में गुजारी। ग्रामीणों का आरोप है कि सुरक्षा इंतजामों की कमी के कारण हर बारिश में खतरा बढ़ जाता है। चमोली में पहले भी बादल फटने और भारी मलबे की घटनाएं सामने आ चुकी है और इस बार मॉनसून के शुरुआत में हालात डराने लगे। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में लगातार बारिश जारी है। तीन दिनों से हो रही बारिश का असर अब अलकनंदा नदी पर दिखाई दे रहा है। खतरा लगातार बना हुआ है, नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और अलकनंदा उफान पर बह रही है। हालांकि खराब मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था कायम है। बारिश के बीच भी यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। यात्रा मार्ग फिलहाल सुचारू है लेकिन पहाड़ों के बदलते मौसम के बीच खतरा लगातार बना हुआ है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बारिश ने चार धाम यात्रा की रफ्तार रोक दी। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर खांकुरा के पास पहाड़ दरक गया। भारी भरकम बोल्डर सड़क पर आ गिरे और देखते ही देखते हाईवे बंद हो गया। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। कई यात्री घंटों तक रास्ता खुलने का इंतजार करते रहे। बारिश के मौसम में पहाड़ों की यात्रा एक बार फिर चुनौती बन गई है। नैनीताल में लगातार लगभग 8 घंटे हुए मूसलाधार बारिश के बाद 7 नंबर स्थित आलमग कॉटेज और जिला पंचायत रोड क्षेत्र में भूधसाव तेज हो गया। पहाड़ी का बड़ा हिस्सा खिसक कर नीचे नाले में जा गिरा जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। सड़क के ऊपर बने 5 और नीचे स्थित 7 परिवारों के मकान खतरे की जद में। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते सुरक्षा कार्य करा दिए गए होते तो आज ये स्थिति पैदा नहीं होती।
20: उनके क्षेत्र में लगातार वर्षा हो रही है, इसी संबंध में आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया गया। तो सर्वप्रथम जो 7 नंबर का हमारा लैंडस्लाइडिंग एरिया है उसको आज विजिट किया गया और वहां पर उस निरीक्षण में एक्सियन पीडब्ल्यूडी और एक्सियन इरीगेशन भी मौजूद थे। एक्सियन इरीगेशन को पूर्व में भी आयुक्त महोदय के द्वारा जो है DPR उस एरिया की गठित करके तत्काल काम कराने के लिए निर्देशित किया गया है। तो उसी के क्रम में आज हम लोगों के द्वारा निरीक्षण किया गया और ये देखा गया कि वहां पर तात्कालिक तौर पर भी कुछ कार्य कराए जाने की आवश्यकता है जिसको इरिगेशन विभाग कल से ही टेकअप करेगा।
9: मौसम विभाग की तरफ से उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और कुमाऊं क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।
1: चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर के लिए रेड अलर्ट। देहरादून, पौड़ी, चंपावत, हरिद्वार, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली और नैनीताल जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए। पूरे उत्तराखंड में 117 सड़कें अब भी बंद हैं। बहरहाल ये मानसून की पहली किश्त ने जिसने पहाड़ों पर हाहाकार मचा रखा है, मौसम विभाग की माने तो अभी आसमान से आफत थमने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक बारिश अपने साथ मुश्किलें लाई है, वहां पर कैसे हालात हैं रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिंदुस्तान का यह नक्शा बता रहा है कि जुलाई के 9 दिनों में मॉनसून लगभग पूरे देश पर छा गया है, लेकिन देश के 49% जिले ऐसे हैं जहां अभी भी सामान्य से कम बारिश हुई है। इनमें सबसे ज्यादा जिले यूपी बिहार के नजर आते हैं। ये नक्शा बता रहा है कि मध्य और पश्चिमी भारत में तो सामान्य से ज्यादा बारिश हो गई है, लेकिन अभी पूर्वोत्तर और पूर्वी हिस्से में ठीक से बारिश होना बाकी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में तो लगातार बारिश के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। संजौली इलाके में भूस्खलन के खतरे के चलते कई परिवार घरों से बाहर रहने को मजबूर हैं। लोगों को डर है कि कमजोर हो चुकी जमीन कब धंस जाए और कब कोई बड़ा हादसा हो जाए। वहीं न्यू शिमला के राजाना गांव में भी लैंडस्लाइड ने कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है।
2: डर का माहौल है जी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे आप देख रहे हैं, आपने अभी फोटोज भी ली हैं, यहाँ पे जो सारा एरिया है अभी डर के माहौल में। हम पूरे एक साल से डर के साथ ही जी रहे हैं। लास्ट ईयर 28 जून 2025 को सुबह 4:30 बजे के करीब ये जो लैंडस्लाइड हुआ था, जिससे कि सब कुछ यहाँ पे हमारी बिल्डिंग की सीढ़ियां वगैरह सब कुछ टूट गया था, और तब से लेकर हम लोग तो डर डर के ही जी रहे हैं। बार बार हम रिक्वेस्ट करने पर भी यहाँ पे कुछ नहीं, जैसे ही बरसाते शुरू होती है इनका काम भी स्टार्ट होता है, और हमारा तो ये कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इनका बैन किया जाए इसको।
1: जम्मू कश्मीर के पुंछ में बारिश के बाद अचानक बाढ़ ने हालात बिगाड़ दिए। तेज बहाव में कई लोग फंस गए। प्रशासन और राहत टीमों ने लगभग 25 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। पानी का वेग इतना तेज था कि लोगों की जिंदगी कुछ घंटों के लिए खतरे में आ गई।
21: चाव हो गया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि हमने पिछले साल भी यहाँ एसडीएम साहब भी मौके पर आए थे, उन्होंने बोला था कि हम आपको क्रेडिट देंगे, अभी तक ना उन्होंने कोई क्रेडिट दिया ना इस पुल का कोई इंतजाम किया।
22: सिचुएशन यहाँ पे हुई है, इसमें तकरीबन 8 से 10 घर जो है वो इफेक्टेड हुए हैं। मैं मुकामी लोगों का और मेरी जो हमारी यहाँ पर पुलिस पोस्ट अड़ी है, इमीडिएट जो रेस्पॉन्डर है वो ये खुद थे, इन्होंने जो है वो लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया, जिसमें तकरीबन 20 से 25 सोल्स हैं और कुछ लाइव स्टॉक पोल्ट्री बोर्ड को जो है वो रेस्क्यू किया गया।
1: सहारनपुर में तो गजब हो गया, भारी बारिश की वजह से कब्रिस्तान में पानी भर गया और इसकी वजह से कई कब्रें क्षतिग्रस्त हो गई। ये गागल हेड़ी के सैयद माजरा गाँव के कब्रिस्तान की घटना है। मिट्टी धंसने से कुछ शव कफन समेत बाहर दिखाई देने लगे हैं। ग्रामीणों ने पुलिस की मौजूदगी में धार्मिक रीति रिवाजों और पूरे सम्मान के साथ शवों को दोबारा सुपुर्द खाक किया। इधर महाराष्ट्र में अब बारिश तो रुक गई है, लेकिन पुणे के एक वेस्ट प्लांट में जो हादसा हुआ था वहां भी 8 लोगों के दबे होने की आशंका है। पुणे के मोशी के वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में हादसे के 48 घंटे के बाद भी सभी लोगों का रेस्क्यू नहीं हुआ है। इस प्लांट में कूड़े के पहाड़ से फेंके इमारत पर नहीं गिरा, उसने कई परिवारों की उम्मीदें भी मलबे में दबा दी। जहरीली मीथेन गैस और कूड़े का विशाल ढेर रेस्क्यू ऑपरेशन को लगातार मुश्किल बना रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर खतरे का अंदाजा था तो कूड़े के ढेर के पास इमारत क्यों बनाई गई।
23: तो बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश हमारे शहर में हुई थी, उसकी वजह से पूरे शहर में पानी का स्तर बढ़ गया था, हमेशा के जैसे हालात नहीं थे, और इसी के वजह से ये जो कचरे का मलबा था वो पूरा बिल्डिंग के ऊपर गिर गया। उसमें जो कर्मचारी थे एंटनी के वो फंस गए, लेकिन उनको निकालने का काम पूरे प्रयास पूरे जोरों शोर से और पूरे मेहनत से पहले दिन से हम सब कर रहे हैं, आज के दिन उनको निकाला जाएगा।
24: 40 घंटे हुए हैं अभी तक निकाले गए नहीं।
23: आपने पहले दिन आए तो कंडीशन देखी होती तो आपको पता चलता, क्योंकि पहले जो जीवित व्यक्ति थी उनको जिनका आवाज बाहर आ रहा था, प्रशासन को आ रहा था, उनको बाहर निकालना जरूरी था, उनको पहले दिन के रात को बाहर निकाला गया।
1: कई गंभीर सवाल हैं और सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि जो लोग फंसे हुए थे उनके तरफ से रिस्पांस आना भी बंद हो गया है। कुल 23 लोग यहाँ फंसे थे जिनमें से 14 लोगों को निकाला गया था और एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। अभी भी जो 8 लोग हैं उनकी क्या स्थिति है ये पता नहीं है।
0: पुणे स्थित मोशी में जो इंसिडेंट हुआ था इसको लेकर 45 घंटों के बाद भी एनडीआरएफ टीम की रेस्क्यू जारी है। अभी हम मोशी स्थित कचरा डिपो में है, यहाँ पर देख सकते हैं कि जेसीबी से जहाँ पर वेस्ट टू एनर्जी बिल्डिंग है जो ढही थी उसके आजू बाजू में कचरा निकालने का काम जारी है। 2 दिन पहले यही जो कचरे का ढेर है वो वेस्ट टू एनर्जी बिल्डिंग के ऊपर गिरने से बिल्डिंग ढही थी और उसमें 23 लोग अटके हुए थे, उसमें से 14 लोगों को निकाल लिया गया है और एक की डेथ हुई है। तो 8 लोग अभी भी मौजूद है, उनसे कोई रिस्पॉन्स नहीं है लेकिन उनको निकालने की कोशिश एनडीआरएफ द्वारा जारी है। पिछले कुछ घंटों से इस काम में तेजी आई है, जेसीबी ज्यादा लगाए हैं लेकिन जहां मतलब ग्राउंड फ्लोर में जो लोग अटके हुए हैं जो मलबे में हैं उनके रिश्तेदार यहां पे कई घंटों से हैं और उनको आस है कि हमारे जो अंदर अटके हुए लोग हैं वो शायद जिंदा हो।
1: प्रशासन कह रहा है कि बिल्डिंग के अंदर कचरे की वजह से मीथेन गैस है जिसकी वजह से पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में समस्याएं आ रही हैं। अब पूरी इमारत तोड़कर इन लोगों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है।
3: अभी जो लास्ट फेज ऑफ रेस्क्यू ऑपरेशन है वो बहुत क्रिटिकल हो रहा है। जैसे आप देख रहे हो कि ये कैंटिलीवर फॉल है, तो एनडीआरएफ के कहने के मुताबिक ये जहाँ कैंटिलीवर फॉल होता है बिल्डिंग का वो बहुत क्रिटिकल और बहुत रिस्की रहता है ऑपरेशन में। अभी एनडीआरएफ ने जो जो कचरा है जो अंदर जा रहा है उसको निकालने की पूरे प्रयास कर रहे हैं। उसके आसपास बिल्डिंग का ऑलमोस्ट 80-90% उन्होंने निकाल लिया है। उसके बाद में अभी वो बिल्डिंग खोल के मतलब उनके इक्विपमेंट्स का यूज करके वो तोड़ के अंदर जाके जहाँ ये लोग फंसे हुए हैं।
1: पालघर की ये तस्वीर देखिए, कैसे घर के नीचे सैलाब के बाद पूरा परिवार छत पर है जिसमें महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं जिनके चेहरे पर खौफ आसानी से देखा जा सकता है। आज तक ब्यूरो। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

0: यूपी में 27 का घमासान तेज। मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पार्टी पर बोला हमला का इनका इतिहास, राम भक्तों के खून से सना भारत की विरासत और आस्था को किया अपमानित। दतिया से टिकट कटने के बाद आज तक से बोले बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा, राजनीति में ये चलता है, पार्टी का फैसला सही, मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिले। आमिर खान की तीसरी शादी पर भड़के नितेश राणे, बताया लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर, युवाओं से की आमिर की फिल्में सोच समझकर देखने की अपील। वियतनाम में भारतीय पर्यटकों से भरी नाव पलटी, अब तक 15 लोगों की मौत, फुकोक द्वीप के पास हादसा, राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने जताई संवेदना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जारी किया आदेश, कहा अगर मेरी हत्या हुई तो ईरान को मिटा दें, जेडी विंस को सौंपी फैसला लेने की जिम्मेदारी। अब बात करते हैं यूपी में चुनाव से पहले छिड़े धर्म युद्ध की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर चढ़ावा चोरी ने पूरी तरह से सियासी रंग ले लिया है, जिसके बाद अब योगी आदित्यनाथ विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को पिछला इतिहास गिना रहे हैं, तो वहीं विपक्ष राम मंदिर के मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा।
1: यूपी में राम मंदिर से शुरू हुआ घमासान अब धर्म की राजनीति तक पहुंच गया है। योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी का इतिहास खंगाल रहे हैं।
2: मंदिरों पे कब्जा करवाते थे लोग, मंदिरों पे कब्जा करवाते थे, और अब कब्जा नहीं, अब उन मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है, और पहले मंदिरों के नाम पर आने वाला पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर खर्च हो जाता था। यही तो करती थी समाजवादी पार्टी।
1: कल योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी में इफ्तार का जिक्र करके समाजवादी पार्टी को घेरा था, तो आज विपक्ष योगी पर गुमराह करने का आरोप लगा रहा है।
3: कैसे नमाज पढ़ सकता है कोई आदमी वहां? ये एजेंडा जो है ये तमाम चीजों से ध्यान भटकाने का है। कैसे नमाज पढ़ सकता है? हम तो कह रहे हैं कि आप सड़क पर नमाज ना पढ़े, चूंकि सड़क सरकार की और सरकार मना कर रही है तो आपकी नमाज जायज नहीं होगी। मैं तो बार बार बोलता हूं, जिस प्रॉपर्टी का ओनर अगर उसको इजाजत नहीं देता तो वहां नमाज ही नहीं हो सकती।
1: 2027 के चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा अब थमता नहीं दिख रहा है। इस बीच राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के कलंक पर अब समिति से जुड़े लोग दुख जता रहे हैं।
4: राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है, व्यवस्था में सुधार होगा, मुझे पूरा विश्वास है।
1: एक और ताबड़तोड़ जांच और एक्शन जारी है, तो वहीं राम भक्तों का भरोसा जीतने की कोशिश भी की जा रही है। चढ़ावा विवाद के बीच राम मंदिर ट्रस्ट जल्द ही सीईओ की नियुक्ति करने जा रहा है, जिसके लिए समिति का गठन भी कर दिया गया है। सीईओ को मंदिर के प्रशासन और वित्तीय प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जिसका उद्देश्य मंदिर के संचालन को अधिक पेशेवर, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। इसके साथ ही सीईओ चढ़ावे के प्रबंधन, श्रद्धालुओं की सुविधाओं, आधारभूत ढांचे के रखरखाव और प्रशासनिक व्यवस्था की भी निगरानी रखेंगे। साफ है कि एक ओर सरकार बार बार भरोसा जताने की कोशिश कर रही है कि वो भक्तों के साथ धोखा करने वालों को बख्शेगी नहीं, वहीं विपक्ष सरकार की पूरी जांच को कटघरे में खड़ा कर रही है। आज तक ब्यूरो।
0: राम मंदिर जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, और इस बीच में मंदिर प्रशासन के सामने चुनौती सिस्टम को सुधारने की भी है, जिस पर लगातार फैसले लिए जा रहे हैं।
1: चढ़ावा चोरी के गंभीर आरोपों की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे सामने आते जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से अब सामने आया है कि मंदिर में काम करने वाले कुछ पूर्व सैनिकों पर कुछ भी बोलने पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसके लिए बकायदा सभी पूर्व सैनिकों को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा गया था। कहा गया था कि कोई कुछ भी पूछे बोलना नहीं है। जिस मैसेज पर सवाल उठ रहे हैं उस मैसेज का स्क्रीनशॉट भी आज तक के पास मौजूद है। इसे साफ है कि चढ़ावा चोरी के खुलासे के बाद मामले को छिपाने की कोशिश की गई। इधर अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के दो और आरोपियों को पुलिस जल्द ही रिमांड पर लेगी। राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव से पुलिस पूछताछ करेगी। टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई गई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र की 7 दिनों की कस्टडी मांगी है।
5: अयोध्या पुलिस ने अब रामशंकर यादव, टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में 7 दिन की अर्जी डाली है। इन दोनों की पुलिस कस्टडी रिमांड बेहद अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि जहां रामशंकर यादव के पास डोनेशन बॉक्स की चाबियां होती थी, वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र उस कमरे के इंचार्ज थे जहां से चढ़ावा चोरी हो रहा था। ऐसे में इन दोनों से की गई पूछताछ से पुलिस पता लगाने की कोशिश में लगी है कि आखिर यह चोरी हो रही थी तो उनके संज्ञान में क्यों नहीं आई, पकड़ी भी गई तो क्यों उन पर कार्रवाई नहीं हुई।
1: इस बीच राम मंदिर में चढ़ावे की गणना के लिए नया टाइम टेबल लागू कर दिया गया है। पहले 2 पालियों में होने वाली गिनती अब एक ही शिफ्ट में की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चढ़ावे की गिनती होगी। नई समय सारणी लागू होने के बाद कुछ गणना कर्मियों ने काम छोड़ दिया है। उधर राम मंदिर में VIP पास की प्रक्रिया भी रोकी गई है क्योंकि जिन लोगों की ID का इस्तेमाल इस काम के लिए किया गया था उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में जारी घटनाक्रम के बीच गोपाल राव ने निर्मोही अखाड़ा पहुंचकर ट्रस्टी महंत दीनेन्द्र दास से मुलाकात की। दोनों के बीच बंद कमरे में काफी देर तक एकांत में चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में ट्रस्ट से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। इस मुलाकात में ट्रस्ट के भीतर चल रहे विवादों के बीच डैमेज कंट्रोल की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हालांकि बैठक में इस चर्चा के संबंध में आधिकारिक रूप से कोई जानकारी साझा नहीं की गई। अयोध्या से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: यूपी में राम मंदिर पर घमासान जारी तो मध्य प्रदेश में लड़ाई बीजेपी बनाम बीजेपी की दिख रही है, जहां दतिया में हो रहे उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा और इसके बाद से कार्यकर्ता भड़क गए।
6: दतिया में टिकट को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा ऐसा फूटा कि वह अपनी ही सरकार की पुलिस से भिड़ गए। मध्य प्रदेश के दतिया में 30 जुलाई को उपचुनाव है। बीजेपी ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। दतिया से आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाने की घोषणा होते ही नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। नेशनल हाईवे पर जाम लग गया, घंटों तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही, पुलिस पर पथराव हुए और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए।
7: मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए, पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं, ऐसा कोई कार्य न करे।
6: आखिर दतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट क्यों कटा? बताया जा रहा है कि दिल्ली के स्तर पर कराए गए सर्वे में नरोत्तम मिश्रा की स्थिति उम्मीद के मुताबिक मजबूत नहीं पाई गई। 2023 में बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को टिकट दिया था लेकिन वो विधानसभा का चुनाव हार गए। केंद्रीय नेतृत्व ने स्थानीय संगठन और भविष्य की राजनीति स्वीकारता का भी आकलन कराया। इसमें नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी फिट बैठे, जिसके बाद उन्हें दतिया से टिकट दिया गया। बीजेपी ने एक ब्राह्मण नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर दूसरे ब्राह्मण आशुतोष तिवारी को टिकट दिया है। इससे जातिगत और सामाजिक संतुलन बरकरार है। उधर पार्टी का संदेश साफ है कि बीजेपी हाईकमान फिलहाल झुकने के मूड में नहीं है।
8: पार्टी इस प्रकार के सोच समझ के निर्णय लेती है और इससे हम डंके की चोट जीतेंगे और नरोत्तम जी भी काम करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं नरोत्तम जी को जानता हूँ व्यक्तिगत।
9: नरोत्तम जी मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता, तो उनको कट्टू साइज तो करनी था, कर दिया।
6: दतिया में अब लड़ाई बीजेपी के सामने अपनों से है, जहां अभी तक कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। भोपाल से रवीश पाल के साथ आज तक ब्यूरो।
0: इस पूरे मामले में हमारे सहयोगी रवीश पाल ने खास बातचीत की नरोत्तम मिश्रा से।
10: फैसले को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि मान के तो चला जा रहा था कि आप ही इकलौते उम्मीदवार हैं वहां भाजपा के।
11: पार्टी का फैसला जो होता है वो ठीक ही होता है, उसको अच्छे रूप में ही लेना चाहिए, खराब रूप में नहीं लेना चाहिए, ऐसा मेरी मान्यता है।
10: आप के तो सकारात्मक भाव है लेकिन आपके जो समर्थक थे जो महीनों से इंतजार कर रहे थे कि जो प्रकरण आया राजन भारती का, मामला कोर्ट में गया, फिर वहां से विधायक की गई, सदस्यता गई, सबको उम्मीद थी लेकिन जब ये फैसला आया तो उनका गुस्सा साफ तौर पर सामने मिला। हाईवे जाम हो गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ हो गई, पथराव हो गया।
11: हाँ, छड़े का आवेश था, मैंने कल भी फिर उनसे निवेदन किया था, आज भी किया मैंने, जाम बाम की स्थिति नहीं होना चाहिए। कार्यकर्ता वो पेट्रोल डाल रहे थे, वो मुझे दिखाए विजुअल फुटेज भट्टी का तेल डालते हुए का। धैर्य और संयम का समय यही होता है, यही परीक्षा की घड़ी होती है।
10: आप भोपाल जा रहे हैं तो भोपाल में कोई कार्यक्रम आला नेताओं से आपकी मुलाकात है क्या, प्रदेश अध्यक्ष से या मुख्यमंत्री से या किसी से?
11: अभी तो होगी तो बताऊंगा निश्चित। आप
10: आशुतोष तिवारी को आशीर्वाद रहेगा आपका?
11: सभी को क्यों नहीं रहेगा, कैसी बात कर रहे हैं।
10: हालांकि कैलाश जी ने कहा है कि वो बहुत अच्छे से जानते हैं आपको, उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूं नरोत्तम जी को, पार्टी के फैसले को हमेशा से स्वीकार करते हैं और हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहे।
11: बिल्कुल सही कहा, मैं सहमत हूं।
10: आपके लिए भावुक क्षण है?
11: नहीं, राजनीति में ये सब चलने वाली चीज है।
10: लेकिन एक आखिरी सवाल नरोत्तम जी, चुनाव हुआ 2023 का, फिर लोकसभा आया, फिर राज्यसभा चुनाव आए, फिर कई दूसरी जिम्मेदारियां भी थी। हालांकि न्यू ज्वाइनिंग टोली का आपको संयोजक बनाया गया था, तब काफी लोग जुड़ के आए थे कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में। अब तो भाजपा में
11: लगातार लोकसभा राज्यसभा अध्यक्ष जो भी आप बात कर रहे हैं, ये अंतर्मुखी होकर स्वयं के चिंतन के लिए पार्टी अवसर दे रही है। हमें चिंतन करना भी चाहिए, अच्छी बात।
0: बांकीपुर उपचुनाव में टिकट को लेकर सियासत तेज है, जहां बीजेपी ने एक दिन के अंदर अपने प्रत्याशी को बदल दिया, जिस पर अब विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है।
12: बांकीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी की ओर से पहले अभिषेक कुमार का नामांकन हुआ, फिर एक दिन बाद ही अचानक अभिषेक ने नामांकन वापस ले लिया और नीरज कुमार को नया उम्मीदवार घोषित किया गया। जिस अभिषेक को सामान्य कार्यकर्ता बताकर बीजेपी ने नितिन नवीन वाली सीट के लिए प्रत्याशी बनाया, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी को अपना प्रत्याशी बदलना पड़ा?
13: पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। मैं कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा।
12: अब सवाल ये कि जिस पारिवारिक मामले का हवाला देकर अभिषेक ने नामांकन वापस लिया, वही परिवार एक दिन पहले अभिषेक को आशीर्वाद देते हुए भावुक हो गया था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अभिषेक बंटी के पिता रविंद्र प्रसाद सिन्हा चारा घोटाले में दोषी रहे। वो मगध केमिकल्स कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी में मैनेजर थे। इस कंपनी पर चारा घोटाले में फर्जी बिल के आधार पर सप्लायर बनाने का आरोप था। फर्जी बिलों के जरिए सरकारी खजाने से पैसा निकालने का मामला रविंद्र प्रसाद सिन्हा पर चला था। सूत्रों के मुताबिक दूसरी बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि अभिषेक सिन्हा बंटी ने नामांकन पत्र में गलत जानकारी भी दी थी, उन्होंने पढ़ाई से जुड़ी कुछ जानकारियां छिपाई थी। ऐसे में भी अभिषेक बंटी का नॉमिनेशन रद्द होने की आशंका थी। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी ने कोई जोखिम नहीं लेते हुए अभिषेक बंटी का नामांकन वापस कराने का फैसला लिया, यानी पार्टी को डर था कि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लालू परिवार को घेरते रहे हैं, उसी भ्रष्टाचार में अभिषेक के पिता आरोपी हैं। लेकिन अब बीजेपी के नए प्रत्याशी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नीरज कुमार सिन्हा के उम्मीदवार घोषित होने के बाद बीजेपी ने उनका बायोडेटा जारी किया। इसमें उनके जन्म तिथि 1 जुलाई 1994 बताए गए। इसी बायोडेटा में लिखा गया कि उन्होंने 2006 में बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता लेकर अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की, यानी बीजेपी ज्वाइन करने के वक्त उनकी उम्र सिर्फ 12 साल थी, जबकि किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने की न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल होती है। इसके कुछ समय बाद बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा का संशोधित बायोडेटा जारी किया। नए बायोडेटा में उनकी जन्म तिथि पहले की तरह 1 जुलाई 1994 ही रखी गई, लेकिन 2006 में बीजेपी की सदस्यता लेने का उल्लेख हटा दिया गया। संशोधित बायोडेटा में ये नहीं बताया गया कि उन्होंने पार्टी की सदस्यता कब ली। बीजेपी ने ये भी नहीं बताया कि पहले और दूसरे बायोडेटा में ये बदलाव क्यों किया गया, लेकिन दो दिन के अंदर हुए इस घटनाक्रम ने विपक्ष को घेरने का एक मौका जरूर दे दिया।
14: ये पहली बार हुआ है कि नामांकन करने के बाद कोई बीजेपी का प्रत्याशी नाम वापस ले रहा हो। विपक्ष के सामने बीजेपी के उम्मीदवार टिक ही नहीं पा रहे हैं। अब जिस दूसरे उम्मीदवार नीरज सिन्हा को बनाया है उनके ऊपर भी विवाद है।
15: विपक्ष इस बात के लिए चिंता करे कि नीचे से फर्स्ट कौन करिएगा। मुकाबला में तो खैर नहीं है, मुकाबला में बहुत ही अंतराल है।
12: बहरहाल बीजेपी की इस पारंपरिक सीट पर प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, जहां बीजेपी के फैसले को और बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी है। शशि भूषण कुमार के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक।
0: मादम मानसून की मार की मानसून भले ही देर से आया हो लेकिन आने के साथ ही तबाही मचा रखी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है।
1: आसमान से बरसती आफत और जमीन पर जिंदगी बचाने की जद्दोजहद, कहीं पहाड़ तड़प रहे हैं तो कहीं पानी जिंदगी को अपनी चपेट में ले रहा है। मानसून की बारिश अब सिर्फ मौसम नहीं रही, कई इलाकों में ये डर दहशत और तबाही की वजह बन चुकी है। हिमाचल से उत्तराखंड तक बारिश ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया है कि लोग घर छोड़ने, रास्ते छोड़ने और जिंदगी बचाने को मजबूर हैं। उत्तराखंड में भी बारिश लगातार आफत बनकर बरस रही है। टिहरी गढ़वाल में लगातार तीसरे दिन बारिश जारी है। बारिश के चलते टिहरी झील का जलस्तर बढ़ रहा है। नदी किनारे रहने वाले लोगों में डर का माहौल लगातार बना हुआ है
16: और काफी बारिश से अस्त व्यस्त जीवन हो रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं घनसाली में काफी बारिश लगातार हो रही है।
17: तो नदी के किनारे लोग रह रहे हैं, सभी घरों के जो है नोटिस चस्पा कर दिया और समय समय पर जैसे बारिश होती है सायरन भी जो है प्रशासन द्वारा जो है बजाया जाता है और अपने अधिकारी भी कर्मचारी भी लगाए हुए हैं कि जो नदी किनारे अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अगर पानी बढ़ता है तो अन्यत्र जो है अपनी व्यवस्था करें। तो लोग सतर्क हैं और क्योंकि मेरा घर भी नदी के किनारे है, हमें भी नोटिस गवर्नमेंट से आया है।
1: प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। दो दिन की छुट्टी के बाद स्कूल खुले लेकिन बारिश के बीच बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों की चिंता भी सामने आई। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे हालात में एहतियात और ज्यादा जरूरी है।
18: बद्रीनाथ धाम में बीते तीन दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। जहां अब मानसून पहाड़ों में पैर पसार रहा है वहीं बद्रीनाथ धाम में लगातार बारिश हो रही है। तो बद्रीनाथ धाम में बहने वाली अलकनंदा में अपना विकराल रूप धीरे धीरे जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जो यहां पे नरसिंह शिला बारह शिला है वो लगातार पानी में डूबती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी मानसून के दौरान ये पूरी शिला बद्रीनाथ धाम की जो अलकनंदा है उसमें डूब जाती है लेकिन अब धीरे धीरे उफान पर अलकनंदा बह रही है, पूरा पानी बढ़ता जा रहा है। पल पल बारिश के साथ ही जो पानी है जलस्तर है वो बढ़ रहा है। हालांकि मार्ग बाधित होने की जो आशंका है वो बनी हुई है क्योंकि मानसून का दौर है, बारिश तेज होती है तो अलग अलग जगहों पे खासकर पीपलकोठी के भनेर पानी में और जो गुलाबकोठी है हेलंग के समीप वहां पे लगातार भूस्खलन का दौर बन रहा है।
1: चमोली के थराली क्षेत्र में बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार हो रही बारिश के बाद घाघली गदेरे में भारी मात्रा में मलबा आ गया जिसके चलते थराली देवाल और थराली कुराड़ मार्ग प्रभावित हुए। एक रास्ता खोल दिया गया है लेकिन कई इलाकों में अब भी लोगों की मुश्किलें बनी हुई है। उफनते नाले के किनारे बसे राडीबगढ़ गांव के लोगों ने पूरी रात दहशत में गुजारी। ग्रामीणों का आरोप है कि सुरक्षा इंतजामों की कमी के कारण हर बारिश में खतरा बढ़ जाता है। चमोली में पहले भी बादल फटने और भारी मलबे की घटनाएं सामने आ चुकी है और इस बार मानसून के शुरुआत में हालात डराने लगे। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में लगातार बारिश जारी है। तीन दिनों से हो रही बारिश का असर अब अलकनंदा नदी पर दिखाई दे रहा है। खतरा लगातार बना हुआ है, नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और अलकनंदा उफान पर बह रही है। हालांकि खराब मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था कायम, बारिश के बीच भी यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। यात्रा मार्ग फिलहाल सुचारू है लेकिन पहाड़ों के बदलते मौसम के बीच खतरा लगातार बना हुआ है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बारिश ने चार धाम यात्रा की रफ्तार रोक दी। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर खांकुरा के पास पहाड़ दरक गया। भारी भरकम बोल्डर सड़क पर आ गिरे और देखते ही देखते हाईवे बंद हो गया। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। कई यात्री घंटों तक रास्ता खुलने का इंतजार करते रहे। बारिश के मौसम में पहाड़ों की यात्रा एक बार फिर चुनौती बन गई है। नैनीताल में लगातार लगभग 8 घंटे हुए मूसलाधार बारिश के बाद 7 नंबर स्थित आलमग कॉटेज और जिला पंचायत रोड क्षेत्र में भूधसाव तेज हो गया। पहाड़ी का बड़ा हिस्सा खिसक कर नीचे नाले में जा गिरा जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है।
12: सड़क के ऊपर बने पांच और नीचे स्थित सात परिवारों के मकान खतरे की जद में। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते सुरक्षा कार्य करा दिए गए होते तो आज ये स्थिति पैदा नहीं होती।
19: उनके क्षेत्र में लगातार वर्षा हो रही है, इसी संबंध में आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया गया। तो सर प्रथम जो सात नंबर का हमारा लैंड स्लाइडिंग एरिया है उसको आज विजिट किया गया और वहां पर उस निरीक्षण में एक्सियन पीडब्ल्यूडी और एक्सियन इरीगेशन भी मौजूद थे। एक्सियन इरीगेशन को पूर्व में भी आयुक्त महोदय के द्वारा जो है DPR उस एरिया की गठित करके तत्काल काम कराने के लिए निर्देशित किया गया है। तो उसी के क्रम में आज हम लोगों के द्वारा निरीक्षण किया गया और ये देखा गया कि वहां पर तात्कालिक तौर पर भी कुछ कार्य कराए जाने की आवश्यकता है जिसको इरिगेशन विभाग कल से ही टेकअप करेगा।
12: मौसम विभाग की तरफ से उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और कुमाऊं क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर के लिए रेड अलर्ट, देहरादून, पौड़ी, चंपावत, हरिद्वार, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली और नैनीताल जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए। पूरे उत्तराखंड में 117 सड़कें अब भी बंद हैं। बहरहाल ये मानसून की पहली किश्त ने जिसने पहाड़ों पर हाहाकार मचा रखा है, मौसम विभाग की माने तो अभी आसमान से आफत थमने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक बारिश अपने साथ मुश्किलें लाई है, वहां पर कैसे हालात हैं रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
12: हिंदुस्तान का यह नक्शा बता रहा है कि जुलाई के 9 दिनों में मानसून लगभग पूरे देश पर छा गया है, लेकिन देश के 49% जिले ऐसे हैं जहां अभी भी सामान्य से कम बारिश हुई है। इनमें सबसे ज्यादा जिले यूपी बिहार के नजर आते हैं। ये नक्शा बता रहा है कि मध्य और पश्चिमी भारत में तो सामान्य से ज्यादा बारिश हो गई है, लेकिन अभी पूर्वोत्तर और पूर्वी हिस्से में ठीक से बारिश होना बाकी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में तो लगातार बारिश के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। संजौली इलाके में भूस्खलन के खतरे के चलते कई परिवार घरों से बाहर रहने को मजबूर हैं। लोगों को डर है कि कमजोर हो चुकी जमीन कब धस जाए और कब कोई बड़ा हादसा हो जाए। वहीं न्यू शिमला के राजाना गांव में भी लैंडस्लाइड ने कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है।
20: डर का माहौल है जी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे आप देख रहे हैं, आपने अभी फोटोज भी ली हैं, यहाँ पे जो सारा एरिया है अभी डर के माहौल में। हम पूरे एक साल से डर के साथ ही जी रहे हैं। लास्ट ईयर 28 जून 2025 को सुबह 4:30 बजे के करीब ये जो लैंडस्लाइड हुआ था, जिससे कि सब कुछ यहाँ पे हमारी बिल्डिंग की सीढ़ियां वगैरह सब कुछ टूट गया था। और तब से लेकर हम लोग तो डर डर के ही जी रहे हैं। बार बार हम रिक्वेस्ट करने पर भी यहाँ पे कुछ नहीं, जैसे ही बरसातें शुरू होती है इनका काम भी स्टार्ट होता है। और हमारा तो ये कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इनका बैन किया जाए इसको।
12: जम्मू कश्मीर के पुंछ में बारिश के बाद अचानक बाढ़ ने हालात बिगाड़ दिए। तेज बहाव में कई लोग फंस गए। प्रशासन और राहत टीमों ने लगभग 25 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। पानी का वेग इतना तेज था कि लोगों की जिंदगी कुछ घंटों के लिए खतरे में आ गई।
21: चाव हो गया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि हमने पिछले साल भी यहाँ SDM साहब भी मौके पर आए थे, उन्होंने बोला था कि हम आपको क्रेडिट देंगे, अभी तक ना उन्होंने कोई क्रेडिट दिया ना इस पुल का कोई इंतजाम किया।
22: सिचुएशन यहाँ पे हुई है, इसमें तकरीबन 8 से 10 घर जो है वो इफेक्टेड हुए हैं। मैं मुकामी लोगों का और मेरी जो हमारी यहाँ पर पुलिस पोस्ट अड़ी है, इमीडिएट जो रेस्पॉन्डर है वो ये खुद थे। इन्होंने जो है वो लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया, जिसमें तकरीबन 20 से 25 सोल्स हैं और कुछ लाइव स्टॉक पोल्ट्री बोर्ड को जो है वो रेस्क्यू किया गया।
12: सहारनपुर में तो गजब हो गया, भारी बारिश की वजह से कब्रिस्तान में पानी भर गया और इसकी वजह से कई कब्रें क्षतिग्रस्त हो गई। ये गागल हेड़ी के सैयद माजरा गाँव के कब्रिस्तान की घटना है। मिट्टी धंसने से कुछ शव कफन समेत बाहर दिखाई देने लगे। ग्रामीणों ने पुलिस की मौजूदगी में धार्मिक रीति रिवाजों और पूरे सम्मान के साथ शवों को दोबारा सुपुर्द खाक किया। इधर महाराष्ट्र में अब बारिश तो रुक गई है, लेकिन पुणे के एक वेस्ट प्लांट में जो हादसा हुआ था वहां भी 8 लोगों के दबे होने की आशंका है। पुणे के मोशी के वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में हादसे के 48 घंटे के बाद भी सभी लोगों का रेस्क्यू नहीं हुआ है। इस प्लांट में कूड़े का पहाड़ सिर्फ एक इमारत पर नहीं गिरा, उसने कई परिवारों की उम्मीदें भी मलबे में दबा दी। जहरीली मीथेन गैस और कूड़े का विशाल ढेर रेस्क्यू ऑपरेशन को लगातार मुश्किल बना रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर खतरे का अंदाजा था तो कूड़े के ढेर के पास इमारत क्यों बनाई गई।
2: जो बारिश हुई थी, बहुत ज्यादा बारिश हमारे शहर में हुई थी, उसकी वजह से पूरे शहर में पानी का स्तर बढ़ गया था, हमेशा के जैसे हालात नहीं थे, और इसी के वजह से ये जो कचरे का मलबा था वो पूरा बिल्डिंग के ऊपर गिर गया। उसमें जो कर्मचारी थे एंटनी के, वो फंस गए, लेकिन उनको निकालने का काम पूरे प्रयास, पूरे जोरों शोर से और पूरे मेहनत से पहले दिन से हम सब कर रहे हैं, आज के दिन उनको निकाला जाएगा।
3: 40 घंटे हुए हैं अभी तक निकाले गए नहीं।
2: आपने पहले दिन आए तो कंडीशन देखी होती तो आपको पता चलता, क्योंकि पहले जो जीवित व्यक्ति थी उनको, जिनका आवाज बाहर आ रहा था, प्रशासन को आ रहा था, उनको बाहर निकालना जरूरी था, उनको पहले दिन के रात को बाहर निकाला गया।
0: कई गंभीर सवाल हैं और सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि जो लोग फंसे हुए थे उनके तरफ से रिस्पांस आना भी बंद हो गया है। कुल 23 लोग यहाँ फंसे थे, जिनमें से 14 लोगों को निकाला गया था और एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। अभी भी जो 8 लोग हैं उनकी क्या स्थिति है ये पता नहीं है।
3: पुणे स्थित मोशी में जो इंसिडेंट हुआ था, इसको लेकर 45 घंटों के बाद भी NDRF टीम की रेस्क्यू जारी है। अभी हम मोशी स्थित कचरा डिपो में है, यहाँ पर देख सकते हैं कि JCB से जहाँ पर वेस्ट टू एनर्जी बिल्डिंग है जो ढही थी, उसके आजू बाजू में कचरा निकालने का काम जारी है। 2 दिन पहले यही जो कचरे का ढेर है वो वेस्ट टू एनर्जी बिल्डिंग के ऊपर गिरने से बिल्डिंग ढही थी और उसमें 23 लोग अटके हुए थे, उसमें से 14 लोगों को निकाल लिया गया है और एक की डेथ हुई है, तो 8 लोग अभी भी मौजूद है, उनसे कोई रिस्पॉन्स नहीं है, लेकिन उनको निकालने की कोशिश NDRF द्वारा जारी है। पिछले कुछ घंटों से इस काम में तेजी आई है, JCB ज्यादा लगाए हैं, लेकिन जहां मतलब ग्राउंड फ्लोर में जो लोग अटके हुए हैं, जो मलबे में हैं, उनके रिश्तेदार यहां पे कई घंटों से हैं और उनको आस है कि हमारे जो अंदर अटके हुए लोग हैं वो शायद जिंदा हो।
0: प्रशासन कह रहा है कि बिल्डिंग के अंदर कचरे की वजह से मीथेन गैस है, जिसकी वजह से पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में समस्या

0: जैसे आप देख रहे हो कि ये कैंटिलीवर फॉल है, तो एनडीआरएफ के कहने के मुताबिक ये जहाँ कैंटिलीवर फॉल होता है बिल्डिंग का, वो बहुत क्रिटिकल और बहुत रिस्की रहता है ऑपरेशन में। अभी एनडीआरएफ ने जो कचरा है जो अंदर जा रहा है उसको निकालने की पूरे प्रयास कर रहे हैं। उसके आसपास बिल्डिंग का ऑलमोस्ट 80-90% उन्होंने निकाल लिया है। उसके बाद में अभी वो बिल्डिंग खोल के, मतलब उनके इक्विपमेंट्स का यूज करके, वो तोड़ के अंदर जाके जहाँ ये लोग फंसे हुए हैं।
1: पालघर की ये तस्वीर देखिए, कैसे घर के नीचे सैलाब के बाद पूरा परिवार छत पर है, जिसमें महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं, जिनके चेहरे पर खौफ आसानी से देखा जा सकता है। आज तक ब्यूरो रुक रहे, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

0: यूपी में 27 का घमासान तेज। मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पार्टी पर बोला हमला का इनका इतिहास, राम भक्तों के खून से सना भारत की विरासत और आस्था को किया अपमानित। दतिया से टिकट कटने के बाद आज तक से बोले बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा राजनीति में ये चलता है, पार्टी का फैसला सही, मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिले। आमिर खान की तीसरी शादी पर भड़के नितेश राणे, बताया लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर, युवाओं से की आमिर की फिल्में सोच समझकर देखने की अपील। वियतनाम में भारतीय पर्यटकों से भरी नाव पलटी, अब तक 15 लोगों की मौत, फुकोक द्वीप के पास हादसा, राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने जताई संवेदना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जारी किया आदेश, कहा अगर मेरी हत्या हुई तो ईरान को मिटा दें, जेडी विंस को सौंपी फैसला लेने की जिम्मेदारी। अब बात करते हैं यूपी में चुनाव से पहले छिड़े धर्म युद्ध की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर चढ़ावा चोरी ने पूरी तरह से सियासी रंग ले लिया है, जिसके बाद अब योगी आदित्यनाथ विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को पिछला इतिहास गिना रहे हैं, तो वहीं विपक्ष राम मंदिर के मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा।
1: यूपी में राम मंदिर से शुरू हुआ घमासान अब धर्म की राजनीति तक पहुंच गया है। योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी का इतिहास खंगाल रहे हैं।
2: मंदिरों पे कब्जा करवाते थे लोग, मंदिरों पे कब्जा करवाते थे, और अब कब्जा नहीं, अब उन मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है, और पहले मंदिरों के नाम पर आने वाला पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर खर्च हो जाता था। यही तो करती थी समाजवादी पार्टी।
1: कल योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी में इफ्तार का जिक्र करके समाजवादी पार्टी को घेरा था, तो आज विपक्ष योगी पर गुमराह करने का आरोप लगा रहा है।
3: कैसे नमाज पढ़ सकता है कोई आदमी वहां? ये एजेंडा जो है ये तमाम चीजों से ध्यान भटकाने का है। कैसे नमाज पढ़ सकता है? हम तो कह रहे हैं कि आप सड़क पर नमाज ना पढ़े, चूंकि सड़क सरकार की और सरकार मना कर रही है तो आपकी नमाज जायज नहीं होगी। मैं तो बार बार बोलता हूं, जिस प्रॉपर्टी का ओनर अगर उसको इजाजत नहीं देता तो वहां नमाज ही नहीं हो सकती।
1: 2027 के चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा अब थमता नहीं दिख रहा है। इस बीच राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के कलंक पर अब समिति से जुड़े लोग दुख जता रहे हैं।
4: राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है, व्यवस्था में सुधार होगा, मुझे पूरा विश्वास है।
1: एक और ताबड़तोड़ जांच और एक्शन जारी है, तो वहीं राम भक्तों का भरोसा जीतने की कोशिश भी की जा रही है। चढ़ावा विवाद के बीच राम मंदिर ट्रस्ट जल्द ही सीईओ की नियुक्ति करने जा रहा है, जिसके लिए समिति का गठन भी कर दिया गया है। सीईओ को मंदिर के प्रशासन और वित्तीय प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जिसका उद्देश्य मंदिर

0: के संचालन को अधिक पेशेवर, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। इसके साथ ही सीईओ चढ़ावे के प्रबंधन, श्रद्धालुओं की सुविधाओं, आधारभूत ढांचे के रखरखाव और प्रशासनिक व्यवस्था की भी निगरानी रखेंगे। साफ है कि एक ओर सरकार बार बार भरोसा जताने की कोशिश कर रही है कि वो भक्तों के साथ धोखा करने वालों को बख्शेगी नहीं, वहीं विपक्ष सरकार की पूरी जांच को कटघरे में खड़ा कर रही है। आज तक ब्यूरो। राम मंदिर जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं और इस बीच में मंदिर प्रशासन के सामने चुनौती सिस्टम को सुधारने की भी है, जिस पर लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। चढ़ावा चोरी के गंभीर आरोपों की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे सामने आते जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से अब सामने आया है कि मंदिर में काम करने वाले कुछ पूर्व सैनिकों पर कुछ भी बोलने पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसके लिए बकायदा सभी पूर्व सैनिकों को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा गया था। कहा गया था कि कोई कुछ भी पूछे बोलना नहीं है। जिस मैसेज पर सवाल उठ रहे हैं उस मैसेज का स्क्रीनशॉट भी आज तक के पास मौजूद है। इसे साफ है कि चढ़ावा चोरी के खुलासे के बाद मामले को छिपाने की कोशिश की गई। इधर अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के दो और आरोपियों को पुलिस जल्द ही रिमांड पर लेगी। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव से पुलिस पूछताछ करेगी। टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई गई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र की 7 दिनों की कस्टडी मांगी है।
1: अयोध्या पुलिस ने अब रामशंकर यादव, टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में 7 दिन की अर्जी डाली है। इन दोनों की पुलिस कस्टडी रिमांड बेहद अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि जहां रामशंकर यादव के पास डोनेशन बॉक्स की चाबियां होती थी, वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद उस कमरे के इंचार्ज थे जहां से चढ़ावा चोरी हो रहा था। ऐसे में इन दोनों से की गई पूछताछ से पुलिस पता लगाने की कोशिश में लगी है कि आखिर यह चोरी हो रही थी तो उनके संज्ञान में क्यों नहीं आई, पकड़ी भी गई तो क्यों उन पर कार्रवाई नहीं हुई।
0: इस बीच राम मंदिर में चढ़ावे की गणना के लिए नया टाइम टेबल लागू कर दिया गया है। पहले 2 पालियों में होने वाली गिनती अब एक ही शिफ्ट में की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चढ़ावे की गिनती होगी। नई समय सारणी लागू होने के बाद कुछ गणना कर्मियों ने काम छोड़ दिया है। उधर राम मंदिर में VIP पास की प्रक्रिया भी रोकी गई है क्योंकि जिन लोगों की ID का इस्तेमाल इस काम के लिए किया गया था उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में जारी घटनाक्रम के बीच गोपाल राव ने निर्मोही अखाड़ा पहुंचकर ट्रस्टी महंत दीनेन्द्र दास से मुलाकात की। दोनों के बीच बंद कमरे में काफी देर तक एकांत में चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में ट्रस्ट से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। इस मुलाकात में ट्रस्ट के भीतर चल रहे विवादों के बीच डैमेज कंट्रोल की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हालांकि बैठक में इस चर्चा के संबंध में आधिकारिक रूप से कोई जानकारी साझा नहीं की गई। अयोध्या से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। यूपी में राम मंदिर पर घमासान जारी तो मध्य प्रदेश में लड़ाई बीजेपी बनाम बीजेपी की दिख रही है, जहां दतिया में हो रहे उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा और इसके बाद से कार्यकर्ता भड़क गए।
2: दतिया में टिकट को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा ऐसा फूटा कि वो अपनी ही सरकार की पुलिस से भिड़ गए। मध्य प्रदेश के दतिया में 30 जुलाई को उपचुनाव है। बीजेपी ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। दतिया से आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाने की घोषणा होते ही नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। नेशनल हाईवे पर जाम लग गया, घंटों तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही, पुलिस पर पथराव हुए और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए।
3: मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए, पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं, ऐसा कोई कार्य न करे।
2: आखिर दतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट क्यों कटा? बताया जा रहा है कि दिल्ली के स्तर पर कराए गए सर्वे में नरोत्तम मिश्रा की स्थिति उम्मीद के मुताबिक मजबूत नहीं पाई गई। 2023 में बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को टिकट दिया था लेकिन वो विधानसभा का चुनाव हार गए। केंद्रीय नेतृत्व ने स्थानीय संगठन और भविष्य की राजनीति स्वीकारता का भी आकलन कराया। इसमें नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी फिट बैठे, जिसके बाद उन्हें दतिया से टिकट दिया गया। बीजेपी ने एक ब्राह्मण नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर दूसरे ब्राह्मण आशुतोष तिवारी को टिकट दिया है। इससे जातिगत और सामाजिक संतुलन बरकरार है। उधर पार्टी का संदेश साफ है कि बीजेपी हाईकमान फिलहाल झुकने के मूड में नहीं है।
4: पार्टी इस प्रकार के सोच समझ के निर्णय लेती है, इसलिए हम टंके की चोट जीतेंगे और नरोत्तम जी भी काम करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं नरोत्तम जी को जानता हूँ व्यक्ति।
5: नरोत्तम जी मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता, तो उनको कट्टू साइज तो करनी था, कर दिया।
2: दतिया में अब लड़ाई बीजेपी के सामने अपनों से है, जहां अभी तक कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। भोपाल से रवीश पाल के साथ आज तक ब्यूरो।
6: इस पूरे मामले में हमारे सहयोगी रवीश पाल ने खास बातचीत की नरोत्तम मिश्रा से।
7: फैसले को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि मान के तो चला जा रहा था कि आप ही इकलौते उम्मीदवार हैं वहां से भाजपा के।
8: पार्टी का फैसला जो होता है वो ठीक ही होता है, उसको अच्छे रूप में ही लेना चाहिए, खराब रूप में नहीं लेना चाहिए, ऐसा मेरी मान्यता है।
7: आपके तो सकारात्मक भाव है, लेकिन आपके जो समर्थक थे जो महीनों से इंतजार कर रहे थे कि जो प्रकरण आया राजन भारती का, मामला कोर्ट में गया, फिर वहां से विधायक की गई, सदस्यता गई, सबको उम्मीद थी, लेकिन जब ये फैसला आया तो उनका गुस्सा साफ तौर पर सामने मिला। हाईवे जाम हो गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ हो गई, पथराव हो गया।
8: हाँ, छड़े का आवेश था, मैंने कल भी फिर उनसे निवेदन किया था, आज भी किया मैंने। जाम वाम की स्थिति नहीं होना चाहिए। कार्यकर्ता वो पेट्रोल डाल रहे थे, वो मुझे दिखाए विजुअल फुटेज, मट्टी का तेल डालते हुए था। धैर्य और संयम का समय यही होता है, यही परीक्षा की घड़ी होती है।
7: आप भोपाल जा रहे हैं तो भोपाल में कोई कार्यक्रम आला नेताओं से आपकी मुलाकात है क्या, प्रदेश अध्यक्ष से या मुख्यमंत्री से या किसी से?
8: अभी तो वो भी तो बताऊंगा निश्चित। आप
7: आशुतोष तिवारी को आशीर्वाद रहेगा आपका?
8: सभी को क्यों नहीं रहेगा, कैसी बात कर रहे हैं।
7: हालांकि कैलाश जी ने कहा है कि वो बहुत अच्छे से जानते हैं आपको, उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ नरोत्तम जी को, पार्टी के फैसले को हमेशा से स्वीकार करते हैं और हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहे।
8: बिल्कुल सही कहा, मैं सहमत हूँ।
7: आपके लिए भावुक क्षण है?
8: नहीं, राजनीति में ये सब चलने वाली चीज है।
7: लेकिन एक आखिरी सवाल, नरोत्तम जी चुनाव हुआ 2023 का, फिर लोकसभा आया, फिर राज्यसभा चुनाव आए, फिर कई दूसरी जिम्मेदारियां भी थी, हालांकि न्यू ज्वाइनिंग टोली का आपको संयोजक बनाया गया था, तब काफी लोग जुड़ के आए थे कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में, अब तो भाजपा में
8: लगातार लोकसभा राज्यसभा अध्यक्ष जो भी आप बात कर रहे हैं, ये अंतर्मुखी होकर स्वयं के चिंतन के लिए पार्टी अवसर दे रही है, हमें चिंतन करना भी चाहिए, अच्छी बात।
6: बांकीपुर उपचुनाव में टिकट को लेकर सियासत तेज है, जहां बीजेपी ने एक दिन के अंदर अपने प्रत्याशी को बदल दिया, जिस पर अब विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है।
9: बांकीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी की ओर से पहले अभिषेक कुमार का नामांकन हुआ, फिर एक दिन बाद ही अचानक अभिषेक ने नामांकन वापस ले लिया और नीरज कुमार को नया उम्मीदवार घोषित किया गया। जिस अभिषेक को सामान्य कार्यकर्ता बताकर बीजेपी ने नितिन नवीन वाली सीट के लिए प्रत्याशी बनाया, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी को अपना प्रत्याशी बदलना पड़ा?
10: पौराणिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। मैं कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा।
9: अब सवाल ये कि जिस पारिवारिक मामले का हवाला देकर अभिषेक ने नामांकन वापस लिया, वही परिवार एक दिन पहले अभिषेक को आशीर्वाद देते हुए भावुक हो गया था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अभिषेक बंटी के पिता रविंद्र प्रसाद सिन्हा चारा घोटाले में दोषी रहे। वो मगध केमिकल्स कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी में मैनेजर थे। इस कंपनी पर चारा घोटाले में फर्जी बिल के आधार पर सप्लायर बनाने का आरोप था। फर्जी बिलों के जरिए सरकारी खजाने से पैसा निकालने का मामला रविंद्र प्रसाद सिन्हा पर चला था। सूत्रों के मुताबिक दूसरी बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि अभिषेक सिन्हा बंटी ने नामांकन पत्र में गलत जानकारी भी दी थी, उन्होंने पढ़ाई से जुड़ी कुछ जानकारियां छिपाई थी, ऐसे में भी अभिषेक बंटी का नॉमिनेशन रद्द होने की आशंका थी। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी ने कोई जोखिम नहीं लेते हुए अभिषेक बंटी का नामांकन वापस कराने का फैसला लिया, यानी पार्टी को डर था कि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लालू परिवार को घेरते रहे हैं, उसी भ्रष्टाचार में अभिषेक के पिता आरोपी हैं। लेकिन अब बीजेपी के नए प्रत्याशी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नीरज कुमार सिन्हा के उम्मीदवार घोषित होने के बाद बीजेपी ने उनका बायोडेटा जारी किया, इसमें उनकी जन्म तिथि 1 जुलाई 1994 बताई गई। इसी बायोडेटा में लिखा गया कि उन्होंने 2006 में बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता लेकर अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। यानी बीजेपी ज्वाइन करने के वक्त उनकी उम्र सिर्फ 12 साल थी, जबकि किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने की न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल होती है। इसके कुछ समय बाद बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा का संशोधित बायोडेटा जारी किया। नए बायोडेटा में उनकी जन्म तिथि पहले की तरह 1 जुलाई 1994 ही रखी गई, लेकिन 2006 में बीजेपी की सदस्यता लेने का उल्लेख हटा दिया गया। संशोधित बायोडेटा में ये नहीं बताया गया कि उन्होंने पार्टी की सदस्यता कब ली। बीजेपी ने ये भी नहीं बताया कि पहले और दूसरे बायोडेटा में ये बदलाव क्यों किया गया, लेकिन दो दिन के अंदर हुए इस घटनाक्रम ने विपक्ष को घेरने का एक मौका जरूर दे दिया।
11: ये पहली बार हुआ है कि नामांकन करने के बाद कोई बीजेपी का प्रत्याशी नाम वापस ले रहा हो। विपक्ष के सामने बीजेपी के उम्मीदवार टिक ही नहीं पा रहे हैं। अब जिस दूसरे उम्मीदवार नीरज सिन्हा को बनाया है उनके ऊपर भी विवाद है।
12: विपक्ष इस बात के लिए चिंता करे कि नीचे से फर्स्ट कौन करिएगा। मुकाबला में तो खैर नहीं है, मुकाबला में बहुत ही अंतराल है।
9: बहरहाल बीजेपी की इस पारंपरिक सीट पर प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, जहां बीजेपी के फैसले को और बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी है। शशि भूषण कुमार के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक।
6: पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस में तकरार देखने को मिल रहे हैं, जहां चन्नी की बगावती तेवर आलाकमान की टेंशन बढ़ा रहे हैं। भूपेश बघेल को पंजाब कांग्रेस की नाराजगी दूर करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन अभी भी तकरार खत्म होती नहीं दिख रही।
13: ये तस्वीरें पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान को खत्म करने की हैं, जहां कांग्रेस के पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने चन्नी गुट के नेताओं के साथ करीब 2 घंटे लंबी बैठक की। बैठक खत्म होने के बाद बघेल ने किसी भी तरह की नाराजगी से इनकार किया।
14: हमारे सीनियर लीडर हैं, उन्होंने आमंत्रित किया और राणा साहब के हाथ में अनेक बार आया हूं, भोजन किया हूं। तो हमारा राणा साहब से तो अलग ही इस तरह का संबंध है, प्रेम का, भाई का संबंध है, तो उन्होंने आखिरी में मुझे आमंत्रित किया।
13: भले ही बघेल सब कुछ ठीक होने की बात कर रहे हों, लेकिन सूत्रों की माने तो बैठक में कुछ खास नतीजा नहीं निकला।
15: जो अंदर बात हुई है वो भावना जो है वो सबके सामने रख दी गई है, और उस भावना की कदर करते हुए बोला भी बाहर इसके अलावा कोई बात नहीं करनी। भी जो लीडरशिप है उसको हमने अपनी ए टू जेड बड़ी क्लियरली एक एक बात, एक एक रीजन लॉजिक के साथ आगे रख दिया है, और उम्मीद करते हैं भी वो जो बात है वो बड़ी क्लियरली बघेल साहब हाईकमांड तक।
13: दरअसल कांग्रेस में चन्नी गुट राजा वर्डिंग को अध्यक्ष बनाए जाने से नाराज चल रहा है, जिसे लेकर चन्नी गुट पहले बैठक कर चुका है। हालात बिगड़ते देख बघेल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज हुई बैठक में भी राजा वर्डिंग को लेकर नेताओं से राय ली गई, लेकिन इस पर आखिरी मुहर दिल्ली से लगनी है। पिछले चुनाव से पहले कांग्रेस की अंदरूनी कलह ने उसे सत्ता से बाहर कर दिया था, ऐसे में एक बार फिर बगावत ने आलाकमान की टेंशन बढ़ा दी है।
16: पार्टी सोर्सेज जो बताते हैं कि अंदर ये वॉइस उठाई गई कि राजा वड़िंग की प्रधानगी मौजूद नहीं, हमें मंजूर नहीं है। और इसके अलावा जब सुखजिंदर रंधावा बाहर आए तो उन्होंने बोला कि हमने साफ डिमांड रखी है, पहली डिमांड ये है कि जो है जो 2027 का इलेक्शन है वो कांग्रेस जीते, और लड़ाई ऐसा लीडर लड़े जो कॉम्प्रोमाइज ना हो। हालांकि किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अब हाईकमान के पाले में गेंद जाएगी जिस तरह की ये सिचुएशन लग रही है। तो पंजाब कांग्रेस ने जिसने भूपेश बघेल ने एक अटेम्प्ट किया था कि बैठ के डेडलॉक टूटे, तो ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि उन्होंने बोला एप्रीहेंशंस अब टेकअप की जाएंगी। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन मुजीद के साथ असीम बस्सी, आज तक।
6: बाद मानसून की मार की मानसून भले ही देर से आया हो, लेकिन आने के साथ ही तबाही मचा रखी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है।
17: आसमान से बरसती आफत और जमीन पर जिंदगी बचाने की जद्दोजहद, कहीं पहाड़ तड़प रहे हैं तो कहीं पानी जिंदगी को अपनी चपेट में ले रहा है। मानसून की बारिश अब सिर्फ मौसम नहीं रही, कई इलाकों में ये डर दहशत और तबाही की वजह बन चुकी है। हिमाचल से उत्तराखंड तक बारिश ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया है कि लोग घर छोड़ने, रास्ते छोड़ने और जिंदगी बचाने को मजबूर हैं। उत्तराखंड में भी बारिश लगातार आफत बनकर बरस रही है।
9: टिहरी गढ़वाल में लगातार तीसरे दिन बारिश जारी है। बारिश के चलते टिहरी झील का जलस्तर बढ़ रहा है। नदी किनारे रहने वाले लोगों में डर का माहौल लगातार बना हुआ है
18: और काफी बारिश से अस्त व्यस्त जीवन हो रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं घनसाली में काफी बारिश लगातार हो रही है।
19: तो नदी के किनारे लोग रह रहे हैं, सभी घरों के जो है नोटिस चस्पा कर दिया और समय समय पर जैसे बारिश होती है सायरन भी जो है प्रशासन द्वारा जो है बजाया जाता है और अपने अधिकारी भी कर्मचारी भी लगाए हुए हैं कि जो नदी किनारे अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अगर पानी बढ़ता है तो अन्यत्र जो है अपनी व्यवस्था करें। तो लोग सतर्क हैं और क्योंकि मेरा घर भी नदी के किनारे है हमें भी नोटिस गवर्नमेंट से आया है।
9: प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। दो दिन की छुट्टी के बाद स्कूल खुले लेकिन बारिश के बीच बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों की चिंता भी सामने आई। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे हालात में एहतियात और ज्यादा जरूरी है।
20: बद्रीनाथ धाम में बीते तीन दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। जहां अब मानसून पहाड़ों में पैर पसार रहा है वहीं बद्रीनाथ धाम में लगातार बारिश हो रही है। तो बद्रीनाथ धाम में बहने वाली अलकनंदा में अपना विकराल रूप धीरे धीरे जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जो यहाँ पे नरसिंह शिला बारह शिला है वो लगातार पानी में डूबती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी मानसून के दौरान ये पूरी शिला बद्रीनाथ धाम की जो अलकनंदा है उसमें डूब जाती है लेकिन अब धीरे धीरे उफान पर अलकनंदा बह रही है। पूरा पानी बढ़ता जा रहा है, पल पल बारिश के साथ ही जो पानी है जलस्तर है वो बढ़ रहा है। वो हालांकि मार्ग बाधित होने की जो आशंका है वो बनी हुई है क्योंकि मानसून का दौर है, बारिश तेज होती है। तो अलग अलग जगहों पे खासकर पीपल कोठी के भनेर पानी में और जो गुलाब कोठी है हेलंग के समीप वहां पे लगातार भूस्खलन का दौर बन रहा है।
9: चमोली के थराली क्षेत्र में बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार हो रही बारिश के बाद घाघली गदेरे में भारी मात्रा में मलबा आ गया जिसके चलते थराली देवाल और थराली कुराड़ मार्ग प्रभावित हुए। एक रास्ता खोल दिया गया है लेकिन कई इलाकों में अब भी लोगों की मुश्किलें बनी हुई। उफनते नाले के किनारे बसे राडीबगढ़ गांव के लोगों ने पूरी रात दहशत में गुजारी। ग्रामीणों का आरोप है कि सुरक्षा इंतजामों की कमी के कारण हर बारिश में खतरा बढ़ जाता है। चमोली में पहले भी बादल फटने और भारी मलबे की घटनाएं सामने आ चुकी हैं और इस बार मॉनसून के शुरुआत में हालात डराने लगे। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में लगातार बारिश जारी है। तीन दिनों से हो रही बारिश का असर अब अलकनंदा नदी पर दिखाई दे रहा है। खतरा लगातार बना हुआ है, नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और अलकनंदा उफान पर बह रही है। हालांकि खराब मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था कायम है। बारिश के बीच भी यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। यात्रा मार्ग फिलहाल सुचारू है लेकिन पहाड़ों के बदलते मौसम के बीच खतरा लगातार बना हुआ है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बारिश ने चार धाम यात्रा की रफ्तार रोक दी। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर खांकुरा के पास पहाड़ दरक गया। भारी भरकम बोल्डर सड़क पर आ गिरे और देखते ही देखते हाईवे बंद हो गया। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। कई यात्री घंटों तक रास्ता खुलने का इंतजार करते रहे। बारिश के मौसम में पहाड़ों की यात्रा एक बार फिर चुनौती बन गई है। नैनीताल में लगातार लगभग 8 घंटे हुए मूसलाधार बारिश के बाद 7 नंबर स्थित आलमग कॉटेज और जिला पंचायत रोड क्षेत्र में भूधसाव तेज हो गया। पहाड़ी का बड़ा हिस्सा खिसक कर नीचे नाले में जा गिरा जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। सड़क के ऊपर बने 5 और नीचे स्थित 7 परिवारों के मकान खतरे की जद में। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते सुरक्षा कार्य करा दिए गए होते तो आज ये स्थिति पैदा नहीं होती।
21: उनके क्षेत्र में लगातार वर्षा हो रही है, इसी संबंध में आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया गया। तो सर्वप्रथम जो 7 नंबर का हमारा लैंड स्लाइडिंग एरिया है उसको आज विजिट किया गया और वहाँ पर उस निरीक्षण में एक्सियन पीडब्ल्यूडी और एक्सियन इरिगेशन भी मौजूद थे। एक्सियन इरिगेशन को पूर्व में भी आयुक्त महोदय के द्वारा जो है DPR उस एरिया की गठित करके तत्काल काम कराने के लिए निर्देशित किया गया है। तो उसी के क्रम में आज हम लोगों के द्वारा निरीक्षण किया गया और ये देखा गया कि वहाँ पर तात्कालिक तौर पर भी कुछ कार्य कराए जाने की आवश्यकता है जिसको इरिगेशन विभाग कल से ही टेकअप करेगा।
9: मौसम विभाग की तरफ से उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और कुमाऊं क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर के लिए रेड अलर्ट है
0: देहरादून, पौड़ी, चंपावत, हरिद्वार, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली और नैनीताल जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए। पूरे उत्तराखंड में 117 सड़कें अब भी बंद हैं। बहरहाल ये मानसून की पहली किश्त ने जिसने पहाड़ों पर हाहाकार मचा रखा है, मौसम विभाग की माने तो अभी आसमान से आफत थमने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
6: महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक बारिश अपने साथ मुश्किलें लाई है, वहां पर कैसे हालात हैं रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
0: हिंदुस्तान का यह नक्शा बता रहा है कि जुलाई के 9 दिनों में मानसून लगभग पूरे देश पर छा गया है, लेकिन देश के 49% जिले ऐसे हैं जहां अभी भी सामान्य से कम बारिश हुई है। इनमें सबसे ज्यादा जिले यूपी बिहार के नजर आते हैं। ये नक्शा बता रहा है कि मध्य और पश्चिमी भारत में तो सामान्य से ज्यादा बारिश हो गई है, लेकिन अभी पूर्वोत्तर और पूर्वी हिस्से में ठीक से बारिश होना बाकी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में तो लगातार बारिश के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। संजौली इलाके में भूस्खलन के खतरे के चलते कई परिवार घरों से बाहर रहने को मजबूर हैं। लोगों को डर है कि कमजोर हो चुकी जमीन कब धंस जाए और कब कोई बड़ा हादसा हो जाए। वहीं न्यू शिमला के राजाना गांव में भी लैंडस्लाइड ने कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है।
1: डर का माहौल है जी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे आप देख रहे हैं, आपने अभी फोटोज भी ली हैं, यहाँ पे जो सारा एरिया है अभी डर के माहौल में। हम पूरे एक साल से डर के साथ ही जी रहे हैं। लास्ट ईयर 28 जून 2025 को सुबह 4:30 के करीब ये जो लैंडस्लाइड हुआ था, जिससे कि सब कुछ यहाँ पे हमारी बिल्डिंग की सीढ़ियां वगैरह सब कुछ टूट गया था, और तब से लेकर हम लोग तो डर डर के ही जी रहे हैं। बार बार हम रिक्वेस्ट करने पर भी यहाँ पे कुछ नहीं, जैसे ही बरसातें शुरू होती है इनका काम भी स्टार्ट होता है, और हमारा तो ये कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इनका बैन किया जाए इसको।
0: जम्मू कश्मीर के पुंछ में बारिश के बाद अचानक बाढ़ ने हालात बिगाड़ दिए। तेज बहाव में कई लोग फंस गए। प्रशासन और राहत टीमों ने लगभग 25 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। पानी का वेग इतना तेज था कि लोगों की जिंदगी कुछ घंटों के लिए खतरे में आ गई।
22: चाव हो गया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि हमने पिछले साल भी यहाँ एसडीएम साहब भी मौके पर आए थे, उन्होंने बोला था कि हम आपको क्रेडिट देंगे, अभी तक ना उन्होंने कोई क्रेडिट दिया ना इस पुल का कोई इंतजाम किया।
23: सिचुएशन यहाँ पे हुई है, इसमें तकरीबन 8 से 10 घर जो है वो इफेक्टेड हुए हैं। मैं मुकामी लोगों का और मेरी जो हमारी यहाँ पर पुलिस पोस्ट अड़ी है, इमीडिएट जो रेस्पॉन्डर है वो ये खुद थे, इन्होंने जो है वो लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया, जिसमें तकरीबन 20 से 25 सोल्स हैं और कुछ लाइव स्टॉक पोल्ट्री बोर्ड को जो है वो रेस्क्यू किया गया।
0: सहारनपुर में तो गजब हो गया, भारी बारिश की वजह से कब्रिस्तान में पानी भर गया और इसकी वजह से कई कब्रें क्षतिग्रस्त हो गई। ये गागल हेड़ी के सैयद माजरा गाँव के कब्रिस्तान की घटना है। मिट्टी धंसने से कुछ शव कफन समेत बाहर दिखाई देने लगे हैं। ग्रामीणों ने पुलिस की मौजूदगी में धार्मिक रीति रिवाजों और पूरे सम्मान के साथ शवों को दोबारा सुपुर्द खाक किया। इधर महाराष्ट्र में अब बारिश तो रुक गई है, लेकिन पुणे के एक वेस्ट प्लांट में जो हादसा हुआ था वहां भी 8 लोगों के दबे होने की आशंका है। पुणे के मोशी के वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में हादसे के 48 घंटे के बाद भी सभी लोगों का रेस्क्यू नहीं हुआ है। इस प्लांट में कूड़े के पहाड़ सिर्फ एक इमारत पर नहीं गिरा, उसने कई परिवारों की उम्मीदें भी मलबे में दबा दी। जहरीली मीथेन गैस और कूड़े का विशाल ढेर रेस्क्यू ऑपरेशन को लगातार मुश्किल बना रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर खतरे का अंदाजा था तो कूड़े के ढेर के पास इमारत क्यों बनाई गई।
24: तो बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश हमारे शहर में हुई थी, उसकी वजह से पूरे शहर में पानी का स्तर बढ़ गया था, हमेशा के जैसे हालात नहीं थे, और इसी के वजह से ये जो कचरे का मलबा था वो पूरा बिल्डिंग के ऊपर गिर गया। उसमें जो कर्मचारी थे एंटनी के वो फंस गए, लेकिन उनको निकालने का काम पूरे प्रयास पूरे जोरों शोर से और पूरे मेहनत से पहले दिन से हम सब कर रहे हैं, आज के दिन उनको निकाला जाएगा।
25: 40 घंटे हुए हैं अभी तक निकाले गए नहीं।
24: आपने पहले दिन आए तो कंडीशन देखी होती तो आपको पता चलता, क्योंकि पहले जो जीवित व्यक्ति थी उनको, जिनका आवाज बाहर आ रहा था, प्रशासन को आ रहा था, उनको बाहर निकालना जरूरी था, उनको पहले दिन के रात को बाहर निकाला गया।
0: कई गंभीर सवाल हैं और सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि जो लोग फंसे हुए थे उनके तरफ से रिस्पॉन्स आना भी बंद हो गया है, कुल 23 लोग यहां फंसे थे, जिनमें से 14 लोगों को निकाला गया था और एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। अभी भी जो 8 लोग हैं उनकी क्या स्थिति है ये पता नहीं है।
25: पुणे स्थित मोशी में जो इंसिडेंट हुआ था, इसको लेकर 45 घंटों के बाद भी एनडीआरएफ टीम की रेस्क्यू जारी है। अभी हम मोशी स्थित कचरा डिपो में है, यहाँ पर देख सकते हैं कि जेसीबी से जहाँ पर वेस्ट टू एनर्जी बिल्डिंग है जो ढही थी, उसके आजू बाजू में कचरा निकालने का काम जारी है। 2 दिन पहले यही जो कचरे का ढेर है वो वेस्ट टू एनर्जी बिल्डिंग के ऊपर गिरने से बिल्डिंग ढही थी और उसमें 23 लोग अटके हुए थे, उसमें से 14 लोगों को निकाल लिया गया है और एक की डेथ हुई है, तो 8 लोग अभी भी मौजूद है, उनसे कोई रिस्पॉन्स नहीं है, लेकिन उनको निकालने की कोशिश एनडीआरएफ द्वारा जारी है। पिछले कुछ घंटों से इस काम में तेजी आई है, जेसीबी ज्यादा लगाए हैं, लेकिन जहां मतलब ग्राउंड फ्लोर में जो लोग अटके हुए हैं, जो मलबे में हैं, उनके रिश्तेदार यहां पे कई घंटों से हैं और उनको आस है कि हमारे जो अंदर अटके हुए लोग हैं वो शायद जिंदा हो।
0: प्रशासन कह रहा है कि बिल्डिंग के अंदर कचरे की वजह से मीथेन गैस है, जिसकी वजह से पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में समस्याएं आ रही हैं। अब पूरी इमारत तोड़कर इन लोगों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है।
2: अभी जो लास्ट फेज ऑफ रेस्क्यू ऑपरेशन है वो बहुत क्रिटिकल हो रहा है। जैसे आप देख रहे हो कि ये कैंटिलीवर फॉल है, तो एनडीआरएफ के कहने के मुताबिक ये जहाँ कैंटिलीवर फॉल होता है बिल्डिंग का, वो बहुत क्रिटिकल और बहुत रिस्की रहता है ऑपरेशन में। अभी एनडीआरएफ ने जो कचरा है जो अंदर जा रहा है उसको निकालने की पूरे प्रयास कर रहे हैं। उसके आसपास बिल्डिंग का ऑलमोस्ट 80-90% उन्होंने निकाल लिया है। उसके बाद में अभी वो बिल्डिंग खोल के मतलब उनके इक्विपमेंट्स का यूज करके वो तोड़ के अंदर जाके जहां ये लोग फंसे हुए हैं।
0: पालघर की ये तस्वीर देखिए, कैसे घर के नीचे सैलाब के बाद पूरा परिवार छत पर है, जिसमें महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं, जिनके चेहरे पर खौफ आसानी से देखा जा सकता है। आज तक ब्यूरो
6: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

0: यूपी में 27 का घमासान तेज। मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पार्टी पर बोला हमला काहिन का इतिहास, राम भक्तों के खून से सना भारत की विरासत और आस्था को किया अपमानित। दतिया से टिकट कटने के बाद आज तक से बोले बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा राजनीति में ये चलता है, पार्टी का फैसला सही, मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिले। आमिर खान की तीसरी शादी पर भड़के नितेश राणे, बताया लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर, युवाओं से की आमिर की फिल्में सोच समझकर देखने की अपील। वियतनाम में भारतीय पर्यटकों से भरी नाव पलटी, अब तक 15 लोगों की मौत, फुकोक द्वीप के पास हादसा, राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने जताई संवेदना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जारी किया आदेश, कहा अगर मेरी हत्या हुई तो ईरान को मिटा दें, जेडी वेंस को सौंपी फैसला लेने की जिम्मेदारी। अब बात करते हैं यूपी में चुनाव से पहले छिड़े धर्म युद्ध की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर चढ़ावा चोरी ने पूरी तरह से सियासी रंग ले लिया है, जिसके बाद अब योगी आदित्यनाथ विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को पिछला इतिहास गिना रहे हैं, तो वहीं विपक्ष राम मंदिर के मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा।
1: यूपी में राम मंदिर से शुरू हुआ घमासान अब धर्म की राजनीति तक पहुंच गया है। योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी का इतिहास खंगाल रहे हैं।
2: मंदिरों पे कब्जा करवाते थे लोग, मंदिरों पे कब्जा करवाते थे, और अब कब्जा नहीं, अब उन मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है, और पहले मंदिरों के नाम पर आने वाला पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर खर्च हो जाता था। यही तो करती थी समाजवादी पार्टी।
1: कल योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी में इफ्तार का जिक्र करके समाजवादी पार्टी को घेरा था, तो आज विपक्ष योगी पर गुमराह करने का आरोप लगा रहा है।
3: कैसे नमाज पढ़ सकता है कोई आदमी वहां? ये एजेंडा जो है ये तमाम चीजों से ध्यान भटकाने का है। कैसे नमाज पढ़ सकता है? हम तो कह रहे हैं कि आप सड़क पे नमाज ना पढ़े, चूंकि सड़क सरकार की और सरकार मना कर रही है तो आपकी नमाज जायज नहीं होगी। मैं तो बार बार बोलता हूं, जिस प्रॉपर्टी का ओनर अगर उसको इजाजत नहीं देता तो वहां नमाज ही नहीं हो सकती।
1: 2027 के चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा अब थमता नहीं दिख रहा है। इस बीच राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के कलंक पर अब समिति से जुड़े लोग दुख जता रहे हैं।
4: राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेदी नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है, व्यवस्था में सुधार होगा, मुझे पूरा विश्वास है।
1: एक और ताबड़तोड़ जांच और एक्शन जारी है, तो वहीं राम भक्तों का भरोसा जीतने की कोशिश भी की जा रही है। चढ़ावा विवाद के बीच राम मंदिर ट्रस्ट जल्द ही सीईओ की नियुक्ति करने जा रहा है, जिसके लिए समिति का गठन भी कर दिया गया है। सीईओ को मंदिर के प्रशासन और वित्तीय प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जिसका उद्देश्य मंदिर के संचालन को अधिक पेशेवर, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। इसके साथ ही सीईओ चढ़ावे के प्रबंधन, श्रद्धालुओं की सुविधाओं, आधारभूत ढांचे के रखरखाव और प्रशासनिक व्यवस्था की भी निगरानी रखेंगे। साफ है कि एक ओर सरकार बार बार भरोसा जताने की कोशिश कर रही है कि वो भक्तों के साथ धोखा करने वालों को बख्शेगी नहीं, वहीं विपक्ष सरकार की पूरी जांच को कटघरे में खड़ा कर रही है। आज तक ब्यूरो।
0: राम मंदिर जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, और इस बीच में मंदिर प्रशासन के सामने चुनौती सिस्टम को सुधारने की भी है, जिस पर लगातार फैसले लिए जा रहे हैं।
1: चढ़ावा चोरी के गंभीर आरोपों की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे सामने आते जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से अब सामने आया है कि मंदिर में काम करने वाले कुछ पूर्व सैनिकों पर कुछ भी बोलने पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसके लिए बकायदा सभी पूर्व सैनिकों को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा गया था। कहा गया था कि कोई कुछ भी पूछे बोलना नहीं है। जिस मैसेज पर सवाल उठ रहे हैं उस मैसेज का स्क्रीनशॉट भी आज तक के पास मौजूद है। इससे साफ है कि चढ़ावा चोरी के खुलासे के बाद मामले को छिपाने की कोशिश की गई। इधर अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के दो और आरोपियों को पुलिस जल्द ही रिमांड पर लेगी। राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव से पुलिस पूछताछ करेगी। टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई गई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने तीनू यादव और सुभाष चंद्र की 7 दिनों की कस्टडी मांगी है।
5: अयोध्या पुलिस ने अब रामशंकर यादव, तीनू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में 7 दिन की अर्जी डाली है। इन दोनों की पुलिस कस्टडी रिमांड बेहद अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि जहां रामशंकर यादव के पास डोनेशन बॉक्स की चाबियां होती थी, वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र उस कमरे के इंचार्ज थे जहां से चढ़ावा चोरी हो रहा था। ऐसे में इन दोनों से की गई पूछताछ से पुलिस पता लगाने की कोशिश में लगी है कि आखिर यह चोरी हो रही थी तो उनके संज्ञान में क्यों नहीं आई, पकड़ी भी गई तो क्यों उन पर कार्रवाई नहीं हुई।
1: इस बीच राम मंदिर में चढ़ावे की गणना के लिए नया टाइम टेबल लागू कर दिया गया है। पहले 2 पालियों में होने वाली गिनती अब एक ही शिफ्ट में की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चढ़ावे की गिनती होगी। नई समय सारणी लागू होने के बाद कुछ गणना कर्मियों ने काम छोड़ दिया है। उधर राम मंदिर में VIP पास की प्रक्रिया भी रोकी गई है क्योंकि जिन लोगों की ID का इस्तेमाल इस काम के लिए किया गया था उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में जारी घटनाक्रम के बीच गोपाल राव ने निर्मोही अखाड़ा पहुंचकर ट्रस्टी महंत दीनेन्द्र दास से मुलाकात की। दोनों के बीच बंद कमरे में काफी देर तक एकांत में चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में ट्रस्ट से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। इस मुलाकात में ट्रस्ट के भीतर चल रहे विवादों के बीच डैमेज कंट्रोल की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हालांकि बैठक में इस चर्चा के संबंध में आधिकारिक रूप से कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। अयोध्या से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: यूपी में राम मंदिर पर घमासान जारी तो मध्य प्रदेश में लड़ाई बीजेपी बनाम बीजेपी की दिख रही है, जहां दतिया में हो रहे उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा और इसके बाद से कार्यकर्ता भड़क गए।
6: दतिया में टिकट को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा ऐसा फूटा कि वो अपनी ही सरकार की पुलिस से भिड़ गए। मध्य प्रदेश के दतिया में 30 जुलाई को उपचुनाव है। बीजेपी ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। दतिया से आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाने की घोषणा होते ही नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। नेशनल हाईवे पर जाम लग गया, घंटों तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही, पुलिस पर पथराव हुए और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए।
7: मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए, पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं, ऐसा कोई कार्य न करे।
6: आखिर दतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट क्यों कटा? बताया जा रहा है कि दिल्ली के स्तर पर कराए गए सर्वे में नरोत्तम मिश्रा की स्थिति उम्मीद के मुताबिक मजबूत नहीं पाई गई। 2023 में बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को टिकट दिया था लेकिन वो विधानसभा का चुनाव हार गए। केंद्रीय नेतृत्व ने स्थानीय संगठन और भविष्य की राजनीति स्वीकारता का भी आकलन कराया। इसमें नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी फिट बैठे, जिसके बाद उन्हें दतिया से टिकट दिया गया। बीजेपी ने एक ब्राह्मण नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर दूसरे ब्राह्मण आशुतोष तिवारी को टिकट दिया है। इससे जातिगत और सामाजिक संतुलन बरकरार है। उधर पार्टी का संदेश साफ है कि बीजेपी हाईकमान फिलहाल झुकने के मूड में नहीं है।
8: पार्टी इस प्रकार के सोच समझ के निर्णय लेती है और इसलिए हम डंके की चोट जीतेंगे और नरोत्तम जी भी काम करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं नरोत्तम जी को जानता हूँ व्यक्ति।
9: नरोत्तम जी मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता, तो उनको कट्टू साइज तो करनी था, कर दिया।
6: दतिया में अब लड़ाई बीजेपी के सामने अपनों से है, जहां अभी तक कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। भोपाल से रवीश पाल के साथ आज तक ब्यूरो।
0: इस पूरे मामले में हमारे सहयोगी रवीश पाल ने खास बातचीत की नरोत्तम मिश्रा से।
10: फैसले को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि मांग के तो चला जा रहा था कि आप ही इकलौते उम्मीदवार हैं वहां से भाजपा के।
11: पार्टी का फैसला जो होता है वो ठीक ही होता है, उसको अच्छे रूप में ही लेना चाहिए, खराब रूप में नहीं लेना चाहिए, ऐसा मेरी मान्यता है।
10: आप के तो सकारात्मक भाव है लेकिन आपके जो समर्थक थे जो महीनों से इंतजार कर रहे थे कि जो प्रकरण आया राजन भारती का, मामला कोर्ट में गया, फिर वहां से विधायक की गई, सदस्यता गई, सबको उम्मीद थी लेकिन जब ये फैसला आया तो उनका गुस्सा साफ तौर पर सामने मिला। हाईवे जाम हो गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ हो गई, पथराव हो गया।
11: हाँ, छड़े का आवेश था, मैंने कल भी फिर उनसे निवेदन किया था, आज भी किया मैंने, जाम बाम की स्थिति नहीं होना चाहिए। कार्यकर्ता वो पेट्रोल डाल रहे थे, वो मुझे दिखाए विजुअल फुटेज, मट्टी का तेल डालते हुए था। धैर्य और संयम का समय यही होता है, यही परीक्षा की घड़ी होती है।
10: आप भोपाल जा रहे हैं तो भोपाल में कोई कार्यक्रम आला नेताओं से आपकी मुलाकात है क्या, प्रदेश अध्यक्ष से या मुख्यमंत्री से या किसी से?
11: अभी तो होगी तो बताऊंगा निश्चित। आप
10: आशुतोष तिवारी को आशीर्वाद रहेगा आपका?
11: सभी को क्यों नहीं रहेगा, कैसी बात कर रहे हैं।
10: हालांकि कैलाश जी ने कहा है कि वो बहुत अच्छे से जानते हैं आपको, उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूं नरोत्तम जी को, पार्टी के फैसले को हमेशा से स्वीकार करते हैं और हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहे हैं।
11: बिल्कुल सही कहा, मैं सहमत हूं।
10: आपके लिए भावुक क्षण है?
11: नहीं, राजनीति में ये सब चलने वाली चीजें।
10: लेकिन एक आखिरी सवाल नरोत्तम जी, चुनाव हुआ 2023 का, फिर लोकसभा आया, फिर राज्यसभा चुनाव आए, फिर कई दूसरी जिम्मेदारियां भी थी। हालांकि न्यू ज्वाइनिंग टोली का आपको संयोजक बनाया गया था, तब काफी लोग जुड़ के आए थे कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में। अब तो भाजपा में
11: लगातार लोकसभा राज्यसभा अध्यक्ष जो भी आप बात कर रहे हैं, ये अंतर्मुखी होकर स्वयं के चिंतन के लिए पार्टी अवसर दे रही है। हमें चिंतन करना भी चाहिए, अच्छी बात है।
0: बांकीपुर उपचुनाव में टिकट को लेकर सियासत तेज है, जहां बीजेपी ने एक दिन के अंदर अपने प्रत्याशी को बदल दिया, जिस पर अब विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है।
12: बांकीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी की ओर से पहले अभिषेक कुमार का नामांकन हुआ, फिर एक दिन बाद ही अचानक अभिषेक ने नामांकन वापस ले लिया और नीरज कुमार को नया उम्मीदवार घोषित किया गया। जिस अभिषेक को सामान्य कार्यकर्ता बताकर बीजेपी ने नितिन नवीन वाली सीट के लिए प्रत्याशी बनाया, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी को अपना प्रत्याशी बदलना पड़ा?
13: पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। मैं कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा।
12: अब सवाल ये कि जिस पारिवारिक मामले का हवाला देकर अभिषेक ने नामांकन वापस लिया, वही परिवार एक दिन पहले अभिषेक को आशीर्वाद देते हुए भावुक हो गया था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अभिषेक बंटी के पिता रविंद्र प्रसाद सिन्हा चारा घोटाले में दोषी रहे। वो मगध केमिकल्स कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी में मैनेजर थे। इस कंपनी पर चारा घोटाले में फर्जी बिल के आधार पर सप्लायर बनाने का आरोप था। फर्जी बिलों के जरिए सरकारी खजाने से पैसा निकालने का मामला रविंद्र प्रसाद सिन्हा पर चला था। सूत्रों के मुताबिक दूसरी बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि अभिषेक सिन्हा बंटी ने नामांकन पत्र में गलत जानकारी भी दी थी, उन्होंने पढ़ाई से जुड़ी कुछ जानकारियां छिपाई थी। ऐसे में भी अभिषेक बंटी का नॉमिनेशन रद्द होने की आशंका थी। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी ने कोई जोखिम नहीं लेते हुए अभिषेक बंटी का नामांकन वापस कराने का फैसला लिया, यानी पार्टी को डर था कि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लालू परिवार को घेरते रहे, उसी भ्रष्टाचार में अभिषेक के पिता आरोपी हैं। लेकिन अब बीजेपी के नए प्रत्याशी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नीरज कुमार सिन्हा के उम्मीदवार घोषित होने के बाद बीजेपी ने उनका बायोडेटा जारी किया। इसमें उनकी जन्म तिथि 1 जुलाई 1994 बताई गई। इसी बायोडेटा में लिखा गया कि उन्होंने 2006 में बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता लेकर अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की, यानी बीजेपी ज्वाइन करने के वक्त उनकी उम्र सिर्फ 12 साल थी, जबकि किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने की न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल होती है। इसके कुछ समय बाद बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा का संशोधित बायोडेटा जारी किया। नए बायोडेटा में उनकी जन्म तिथि पहले की तरह 1 जुलाई 1994 ही रखी गई, लेकिन 2006 में बीजेपी की सदस्यता लेने का उल्लेख हटा दिया गया। संशोधित बायोडेटा में ये नहीं बताया गया कि उन्होंने पार्टी की सदस्यता कब ली। बीजेपी ने यह भी नहीं बताया कि पहले और दूसरे बायोडेटा में यह बदलाव क्यों किया गया, लेकिन 2 दिन के अंदर हुए इस घटनाक्रम ने विपक्ष को घेरने का एक मौका जरूर दे दिया।
14: ये पहली बार हुआ है कि नामांकन करने के बाद कोई बीजेपी का प्रत्याशी नाम वापस ले रहा हो। विपक्ष के सामने बीजेपी के उम्मीदवार टिक ही नहीं पा रहे हैं। अब जिस दूसरे उम्मीदवार नीरज सिन्हा को बनाया है उनके ऊपर भी विवाद है।
15: विपक्ष इस बात के लिए चिंता करे कि नीचे से फर्स्ट कौन करिएगा। मुकाबला में तो खैर नहीं है, मुकाबला में बहुत ही अंतराल है।
12: बहरहाल बीजेपी की इस पारंपरिक सीट पर प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, जहां बीजेपी के फैसले को और बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी है। शशि भूषण कुमार के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक।
0: बाद अब मानसून की मार की मानसून भले ही देर से आया हो लेकिन आने के साथ ही तबाही मचा रखी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है।
16: आसमान से बरसती आफत और जमीन पर जिंदगी बचाने की जद्दोजहद, कहीं पहाड़ तड़प रहे हैं तो कहीं पानी जिंदगी को अपनी चपेट में ले रहा है। मानसून की बारिश अब सिर्फ मौसम नहीं रही, कई इलाकों में ये डर दहशत और तबाही की वजह बन चुकी है। हिमाचल से उत्तराखंड तक बारिश ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया है कि लोग घर छोड़ने, रास्ते छोड़ने और जिंदगी बचाने को मजबूर हैं। उत्तराखंड में भी बारिश लगातार आफत बनकर बरस रही है। टिहरी गढ़वाल में लगातार तीसरे दिन बारिश जारी है। बारिश के चलते टिहरी झील का जलस्तर बढ़ रहा है। नदी किनारे रहने वाले लोगों में डर का माहौल लगातार बना हुआ है
17: और काफी बारिश से अस्त व्यस्त जीवन हो रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं घनसाली में काफी बारिश लगातार हो रही है।
18: तो नदी के किनारे लोग रह रहे हैं, सभी घरों के जो है नोटिस चस्पा कर दिया और समय समय पर जैसे बारिश होती है सायरन भी जो है प्रशासन द्वारा जो है बजाया जाता है और अपने अधिकारी भी कर्मचारी भी लगाए हुए हैं कि जो नदी किनारे अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अगर पानी बढ़ता है तो अन्यत्र जो है अपनी व्यवस्था करें। तो लोग सतर्क हैं और क्योंकि मेरा घर भी नदी के किनारे है, हमें भी नोटिस गवर्नमेंट से आया है।
16: प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। दो दिन की छुट्टी के बाद स्कूल खुले लेकिन बारिश के बीच बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों की चिंता भी सामने आई। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे हालात में एहतियात और ज्यादा जरूरी है।
19: बद्रीनाथ धाम में बीते तीन दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। जहां अब मानसून पहाड़ों में पैर पसार रहा है वहीं बद्रीनाथ धाम में लगातार बारिश हो रही है। तो बद्रीनाथ धाम में बहने वाली अलकनंदा में अपना विकराल रूप धीरे धीरे जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जो यहां पे नरसिंहशिला बारहशिला है वो लगातार पानी में डूबती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी मानसून के दौरान ये पूरी शिला बद्रीनाथ धाम की जो अलकनंदा है उसमें डूब जाती है लेकिन अब धीरे धीरे उफान पर अलकनंदा बह रही है, पूरा पानी बढ़ता जा रहा है। पल पल बारिश के साथ ही जो पानी है जलस्तर है वो बढ़ रहा है। वो हालांकि मार्ग बाधित होने की जो आशंका है वो बनी हुई है क्योंकि मानसून का दौर है, बारिश तेज होती है तो अलग अलग जगहों पे खासकर पीपल कोठी के भनेर पानी में और जो गुलाब कोठी है हेलंग के समीप वहां पे लगातार भूस्खलन का दौर बन रहा है।
16: चमोली के थराली क्षेत्र में बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार हो रही बारिश के बाद घाघली गदेरे में भारी मात्रा में मलबा आ गया जिसके चलते थराली देवाल और थराली कुराड़ मार्ग प्रभावित हुए। एक रास्ता खोल दिया गया है लेकिन कई इलाकों में अब भी लोगों की मुश्किलें बनी हुई है। उफनते नाले के किनारे बसे राडीबगढ़ गांव के लोगों ने पूरी रात दहशत में गुजारी। ग्रामीणों का आरोप है कि सुरक्षा इंतजामों की कमी के कारण हर बारिश में खतरा बढ़ जाता है। चमोली में पहले भी बादल फटने और भारी मलबे की घटनाएं सामने आ चुकी है और इस बार मानसून के शुरुआत में ही हालात डराने लगे। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में लगातार बारिश जारी है। तीन दिनों से हो रही बारिश का असर अब अलकनंदा नदी पर दिखाई दे रहा है। खतरा लगातार बना हुआ है, नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और अलकनंदा उफान पर बह रही है। हालांकि खराब मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था कायम है। बारिश के बीच भी यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। यात्रा मार्ग फिलहाल सुचारू है लेकिन पहाड़ों के बदलते मौसम के बीच खतरा लगातार बना हुआ है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बारिश ने चार धाम यात्रा की रफ्तार रोक दी। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर खांकुरा के पास पहाड़ दरक गया। भारी भरकम बोल्डर सड़क पर आ गिरे और देखते ही देखते हाईवे बंद हो गया। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। कई यात्री घंटों तक रास्ता खुलने का इंतजार करते रहे। बारिश के मौसम में पहाड़ों की यात्रा एक बार फिर चुनौती बन गई है। नैनीताल में लगातार लगभग 8 घंटे हुई मूसलाधार बारिश के बाद 7 नंबर स्थित आलमग कॉटेज और जिला पंचायत रोड क्षेत्र में भूधसाव तेज हो गया। पहाड़ी का बड़ा हिस्सा खिसककर नीचे नाले में जा गिरा जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। सड़क के ऊपर बने 5 और नीचे स्थित 7 परिवारों के मकान खतरे की जद में, स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते सुरक्षा कार्य करा दिए गए होते तो आज ये स्थिति पैदा नहीं होती।
20: उनके क्षेत्र में लगातार वर्षा हो रही है, इसी संबंध में आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया गया। तो सर प्रथम जो 7 नंबर का हमारा लैंड स्लाइडिंग एरिया है उसको आज विजिट किया गया और वहां पर उस निरीक्षण में एक्सियन पीडब्ल्यूडी और एक्सियन इरीगेशन भी मौजूद थे। एक्सियन इरीगेशन को पूर्व में भी आयुक्त महोदय के द्वारा जो है DPR उस एरिया की गठित करके तत्काल काम कराने के लिए निर्देशित किया गया है। तो उसी के क्रम में आज हम लोगों के द्वारा निरीक्षण किया गया और ये देखा गया कि वहां पर तात्कालिक तौर पर भी कुछ कार्य कराए जाने की आवश्यकता है जिसको इरिगेशन विभाग कल से ही टेकअप करेगा।
16: मौसम विभाग की तरफ से उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और कुमाऊं क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर के लिए रेड अलर्ट, देहरादून, पौड़ी, चंपावत, हरिद्वार, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली और नैनीताल जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए। पूरे उत्तराखंड में 117 सड़कें अभी बंद हैं। बहरहाल ये मानसून की पहली किश्त ने जिसने पहाड़ों पर हाहाकार मचा रखा है, मौसम विभाग की माने तो अभी आसमान से आफत थमने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक बारिश अपने साथ मुश्किलें लाई है, वहां पर कैसे हालात हैं रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
16: हिंदुस्तान का ये नक्शा बता रहा है कि जुलाई के 9 दिनों में मानसून लगभग पूरे देश पर छा गया, लेकिन देश के 49% जिले ऐसे हैं जहां अभी भी सामान्य से कम बारिश हुई। इनमें सबसे ज्यादा जिले यूपी बिहार के नजर आते हैं। ये नक्शा बता रहा है कि मध्य और पश्चिमी भारत में तो सामान्य से ज्यादा बारिश हो गई है, लेकिन अभी पूर्वोत्तर और पूर्वी हिस्से में ठीक से बारिश होना बाकी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में तो लगातार बारिश के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। संजौली इलाके में भूस्खलन के खतरे के चलते कई परिवार घरों से बाहर रहने को मजबूर हैं। लोगों को डर है कि कमजोर हो चुकी जमीन कब धस जाए और कब कोई बड़ा हादसा हो जाए। वहीं न्यू शिमला के राजाना गांव में भी लैंडस्लाइड ने कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है।
21: डर का माहौल है जी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे आप देख रहे हैं, आपने अभी फोटोज भी ली हैं, यहाँ पे जो सारा एरिया है अभी डर के माहौल में। हम पूरे एक साल से डर के साथ ही जी रहे हैं। लास्ट ईयर 28 जून 2025 को सुबह 4:30 बजे के करीब ये जो लैंडस्लाइड हुआ था, जिससे कि सब कुछ यहाँ पे हमारी बिल्डिंग की सीढ़ियां वगैरह सब कुछ टूट गया था। और तब से लेकर हम लोग तो डर डर के ही जी रहे हैं। बार बार हम रिक्वेस्ट करने पर भी यहाँ पे कुछ नहीं, जैसे ही बरसातें शुरू होती है इनका काम भी स्टार्ट होता है। और हमारा तो ये कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इनका बैन किया जाए इसको।
16: जम्मू कश्मीर के पुंछ में बारिश के बाद अचानक बाढ़ ने हालात बिगाड़ दिए। तेज बहाव में कई लोग फंस गए। प्रशासन और राहत टीमों ने लगभग 25 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। पानी का वेग इतना तेज था कि लोगों की जिंदगी कुछ घंटों के लिए खतरे में आ गई।
22: चाव हो गया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि हमने पिछले साल भी यहाँ SDM साहब भी मौके पर आए थे, उन्होंने बोला था कि हम आपको क्रेडिट देंगे, अभी तक ना उन्होंने कोई क्रेडिट दिया ना इस पुल का कोई इंतजाम किया।
23: सिचुएशन यहाँ पे हुई है, इसमें तकरीबन 8 से 10 घर जो है वो इफेक्टेड हुए हैं। मैं मुकामी लोगों का और मेरी जो हमारी यहाँ पर पुलिस पोस्ट अड़ी है, इमीडिएट जो रेस्पॉन्डर है वो ये खुद थे, इन्होंने जो है वो लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया, जिसमें तकरीबन 20 से 25 सोल्स हैं और कुछ लाइव स्टॉक पोल्ट्री बोर्ड को जो है वो रेस्क्यू किया गया।
16: सहारनपुर में तो गजब हो गया, भारी बारिश की वजह से कब्रिस्तान में पानी भर गया और इसकी वजह से कई कब्रें क्षतिग्रस्त हो गई। ये गागल हेड़ी के सैयद माजरा गाँव के कब्रिस्तान की घटना है। मिट्टी धंसने से कुछ शव कफन समेत बाहर दिखाई देने लगे हैं। ग्रामीणों ने पुलिस की मौजूदगी में धार्मिक रीति रिवाजों और पूरे सम्मान के साथ शवों को दोबारा सुपुर्द खाक किया। इधर महाराष्ट्र में अब बारिश तो रुक गई है, लेकिन पुणे के एक वेस्ट प्लांट में जो हादसा हुआ था वहां भी 8 लोगों के दबे होने की आशंका है। पुणे के मोशी के वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में हादसे के 48 घंटे के बाद भी सभी लोगों का रेस्क्यू नहीं हुआ है। इस प्लांट में कूड़े के पहाड़ सिर्फ एक इमारत पर नहीं गिरा, उसने कई परिवारों की उम्मीदें भी मलबे में दबा दी। जहरीली मीथेन गैस और कूड़े का विशाल ढेर रेस्क्यू ऑपरेशन को लगातार मुश्किल बना रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर खतरे का अंदाजा था तो कूड़े के ढेर के पास इमारत क्यों बनाई गई।
24: तो बारिश हुई थी, बहुत ज्यादा बारिश हमारे शहर में हुई थी,
2: उसकी वजह से पूरे शहर में पानी का स्तर बढ़ गया था, हमेशा के जैसे हालात नहीं थे, और इसी के वजह से ये जो कचरे का मलबा था वो पूरा बिल्डिंग के ऊपर गिर गया। उसमें जो कर्मचारी थे एंटनी के वो फंस गए, लेकिन उनको निकालने का काम पूरे प्रयास पूरे जोरों शोर से और पूरे मेहनत से पहले दिन से हम सब कर रहे हैं, आज के दिन उनको निकाला जाएगा।
3: 40 घंटे हुए हैं अभी तक निकाले गए नहीं।
2: आपने पहले दिन आए तो कंडीशन देखी होती तो आपको पता चलता, क्योंकि पहले जो जीवित व्यक्ति थी उनको जिनका आवाज बाहर आ रहा था, प्रशासन को आ रहा था, उनको बाहर निकालना जरूरी था, उनको पहले दिन के रात को बाहर निकाला गया।
16: कई गंभीर सवाल हैं और सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि जो लोग फंसे हुए थे उनके तरफ से रिस्पांस आना भी बंद हो गया है। कुल 23 लोग यहाँ फंसे थे जिनमें से 14 लोगों को निकाला गया था और एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। अभी भी जो 8 लोग हैं उनकी क्या स्थिति है ये पता नहीं है।
3: पुणे स्थित मोशी में जो इंसिडेंट हुआ था इसको लेकर 45 घंटों के बाद भी NDRF टीम की रेस्क्यू जारी है। अभी हम मोशी स्थित कचरा डिपो में है, यहाँ पर देख सकते हैं कि JCB से जहाँ पर वेस्ट टू एनर्जी बिल्डिंग है जो ढही थी उसके आजू बाजू में कचरा निकालने का काम जारी है। 2 दिन पहले यही जो कचरे का ढेर है वो वेस्ट टू एनर्जी बिल्डिंग के ऊपर गिरने से बिल्डिंग ढही थी और उसमें 23 लोग अटके हुए थे, उसमें से 14 लोगों को निकाल लिया गया है और एक की डेथ हुई है, तो 8 लोग अभी भी मौजूद है, उनसे कोई रिस्पॉन्स नहीं है, लेकिन उनको निकालने की कोशिश NDRF द्वारा जारी है। पिछले कुछ घंटों से इस काम में तेजी आई है, JCB ज्यादा लगाए हैं, लेकिन जहां मतलब ग्राउंड फ्लोर में जो लोग अटके हुए हैं, जो मलबे में हैं, उनके रिश्तेदार यहां पे कई घंटों से हैं और उनको आस है कि हमारे जो अंदर अटके हुए लोग हैं वो शायद जिंदा हो।
16: प्रशासन कह रहा है कि बिल्डिंग के अंदर कचरे की वजह से मीथेन गैस है जिसकी वजह से पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में समस्याएं आ रही हैं। अब पूरी इमारत तोड़कर इन लोगों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है।

0: के मुताबिक ये जहाँ कैंटिलीवर फॉल होता है बिल्डिंग का, वो बहुत क्रिटिकल और बहुत रिस्की रहता है ऑपरेशन में। अभी एनडीआरएफ ने जो कचरा है जो अंदर जा रहा है उसको निकालने की पूरे प्रयास कर रहे हैं। उसके आसपास बिल्डिंग का ऑलमोस्ट 80-90% उन्होंने निकाल लिया है। उसके बाद में अभी वो बिल्डिंग खोल के, मतलब उनके इक्विपमेंट्स का यूज करके, वो तोड़ के अंदर जाके जहाँ ये लोग फंसे हुए हैं।
1: पालघर की ये तस्वीर देखिए, कैसे घर के नीचे सैलाब के बाद पूरा परिवार छत पर है, जिसमें महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं, जिनके चेहरे पर खौफ आसानी से देखा जा सकता है। आज तक ब्यूरो। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

0: यूपी में 27 का घमासान तेज। मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पार्टी पर बोला हमला का इनका इतिहास, राम भक्तों के खून से सना भारत की विरासत और आस्था को किया अपमानित। दतिया से टिकट कटने के बाद आज तक से बोले बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्र, राजनीति में यह चलता है, पार्टी का फैसला सही, मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिले। आमिर खान की तीसरी शादी पर भड़के नितेश राणे, बताया लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर, युवाओं से की आमिर की फिल्में सोच समझकर देखने की अपील। वियतनाम में भारतीय पर्यटकों से भरी नाव पलटी, अब तक 15 लोगों की मौत, फुकोक द्वीप के पास हादसा, राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने जताई संवेदना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जारी किया आदेश, कहा अगर मेरी हत्या हुई तो ईरान को मिटा दें, जेडी विंस को सौंपी फैसला लेने की जिम्मेदारी। अब बात करते हैं यूपी में चुनाव से पहले छिड़े धर्म युद्ध की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर चढ़ावा चोरी ने पूरी तरह से सियासी रंग ले लिया है, जिसके बाद अब योगी आदित्यनाथ विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को पिछला इतिहास गिना रहे हैं, तो वहीं विपक्ष राम मंदिर के मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा।
1: यूपी में राम मंदिर से शुरू हुआ घमासान अब धर्म की राजनीति तक पहुंच गया है। योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी का इतिहास खंगाल रहे हैं।
2: मंदिरों पे कब्जा करवाते थे लोग, मंदिरों पे कब्जा करवाते थे, और अब कब्जा नहीं, अब उन मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है, और पहले मंदिरों के नाम पर आने वाला पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर खर्च हो जाता था। यही तो करती थी समाजवादी पार्टी।
1: कल योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी में इफ्तार का जिक्र करके समाजवादी पार्टी को घेरा था, तो आज विपक्ष योगी पर गुमराह करने का आरोप लगा रहा है।
3: कैसे नमाज पढ़ सकता है कोई आदमी वहां? ये एजेंडा जो है ये तमाम चीजों से ध्यान भटकाने का है। कैसे नमाज पढ़ सकता है? हम तो कह रहे हैं कि आप सड़क पे नमाज ना पढ़े, चूंकि सड़क सरकार की और सरकार मना कर रही है तो आपकी नमाज जायज नहीं होगी। मैं तो बार बार बोलता हूं, जिस प्रॉपर्टी का ओनर अगर उसको इजाजत नहीं देता तो वहां नमाज ही नहीं हो सकती।
1: 2027 के चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा अब थमता नहीं दिख रहा है। इस बीच राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के कलंक पर अब समिति से जुड़े लोग दुख जता रहे हैं।
4: राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है, व्यवस्था में सुधार होगा, मुझे पूरा विश्वास है।
1: एक और ताबड़तोड़ जांच और एक्शन जारी है, तो वहीं राम भक्तों का भरोसा जीतने की कोशिश भी की जा रही है। चढ़ावा विवाद के बीच राम मंदिर ट्रस्ट जल्द ही सीईओ की नियुक्ति करने जा रहा है, जिसके लिए समिति का गठन भी कर दिया गया है। सीईओ को मंदिर के प्रशासन और वित्तीय प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जिसका उद्देश्य मंदिर के संचालन को अधिक पेशेवर, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है।

0: इसके साथ ही सीईओ चढ़ावे के प्रबंधन, श्रद्धालुओं की सुविधाओं, आधारभूत ढांचे के रखरखाव और प्रशासनिक व्यवस्था की भी निगरानी रखेंगे। साफ है कि एक ओर सरकार बार बार भरोसा जताने की कोशिश कर रही है कि वो भक्तों के साथ धोखा करने वालों को बख्शेगी नहीं, वहीं विपक्ष सरकार की पूरी जांच को कटघरे में खड़ा कर रही है। आज तक ब्यूरो।
1: राम मंदिर जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं और इस बीच में मंदिर प्रशासन के सामने चुनौती सिस्टम को सुधारने की भी है, जिस पर लगातार फैसले लिए जा रहे हैं।
0: चढ़ावा चोरी के गंभीर आरोपों की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे सामने आते जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से अब सामने आया है कि मंदिर में काम करने वाले कुछ पूर्व सैनिकों पर कुछ भी बोलने पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसके लिए बकायदा सभी पूर्व सैनिकों को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा गया था। कहा गया था कि कोई कुछ भी पूछे बोलना नहीं है। जिस मैसेज पर सवाल उठ रहे हैं उस मैसेज का स्क्रीनशॉट भी आज तक के पास मौजूद है। इसे साफ है कि चढ़ावा चोरी के खुलासे के बाद मामले को छिपाने की कोशिश की गई। इधर अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के दो और आरोपियों को पुलिस जल्द ही रिमांड पर लेगी। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव से पुलिस पूछताछ करेगी। टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई गई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र की 7 दिनों की कस्टडी मांगी है।
2: अयोध्या पुलिस ने अब रामशंकर यादव और टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में 7 दिन की अर्जी डाली है। इन दोनों की पुलिस कस्टडी रिमांड बेहद अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि जहां रामशंकर यादव के पास डोनेशन बॉक्स की चाबियां होती थी, वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद उस कमरे के इंचार्ज थे जहां से चढ़ावा चोरी हो रहा था। ऐसे में इन दोनों से की गई पूछताछ से पुलिस पता लगाने की कोशिश में लगी है कि आखिर यह चोरी हो रही थी तो उनके संज्ञान में क्यों नहीं आई, पकड़ी भी गई तो क्यों उन पर कार्रवाई नहीं हुई।
0: इस बीच राम मंदिर में चढ़ावे की गणना के लिए नया टाइम टेबल लागू कर दिया गया है। पहले 2 पालियों में होने वाली गिनती अब एक ही शिफ्ट में की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चढ़ावे की गिनती होगी। नई समय सारणी लागू होने के बाद कुछ गणना कर्मियों ने काम छोड़ दिया है। उधर राम मंदिर में VIP पास की प्रक्रिया भी रोकी गई है क्योंकि जिन लोगों की ID का इस्तेमाल इस काम के लिए किया गया था उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में जारी घटनाक्रम के बीच गोपाल राव ने निर्मोही अखाड़ा पहुंचकर ट्रस्टी मैन दीनेन्द्र दास से मुलाकात की। दोनों के बीच बंद कमरे में काफी देर तक एकांत में चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में ट्रस्ट से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। इस मुलाकात में ट्रस्ट के भीतर चल रहे विवादों के बीच डैमेज कंट्रोल की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हालांकि बैठक में इस चर्चा के संबंध में आधिकारिक रूप से कोई जानकारी साझा नहीं की गई। अयोध्या से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
1: यूपी में राम मंदिर पर घमासान जारी तो मध्य प्रदेश में लड़ाई बीजेपी बनाम बीजेपी की दिख रही है, जहां दतिया में हो रहे उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा और इसके बाद से कार्यकर्ता भड़क गए।
3: दतिया में टिकट को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा ऐसा फूटा कि वो अपनी ही सरकार की पुलिस से भिड़ गए। मध्य प्रदेश के दतिया में 30 जुलाई को उपचुनाव है। बीजेपी ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। दतिया से आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाने की घोषणा होते ही नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। नेशनल हाईवे पर जाम लग गया, घंटों तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही, पुलिस पर पथराव हुए और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए।
4: मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए, पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं, ऐसा कोई कार्य न करे।
3: आखिर दतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट क्यों कटा? बताया जा रहा है कि दिल्ली के स्तर पर कराए गए सर्वे में नरोत्तम मिश्रा की स्थिति उम्मीद के मुताबिक मजबूत नहीं पाई गई। 2023 में बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को टिकट दिया था लेकिन वो विधानसभा का चुनाव हार गए। केंद्रीय नेतृत्व ने स्थानीय संगठन और भविष्य की राजनीति स्वीकारता का भी आकलन कराया। इसमें नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी फिट बैठे, जिसके बाद उन्हें दतिया से टिकट दिया गया। बीजेपी ने एक ब्राह्मण नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर दूसरे ब्राह्मण आशुतोष तिवारी को टिकट दिया है। इससे जातिगत और सामाजिक संतुलन बरकरार है। उधर पार्टी का संदेश साफ है कि बीजेपी हाईकमान फिलहाल झुकने के मूड में नहीं है।
5: पार्टी इस प्रकार के सोच समझ के निर्णय लेती है और इससे हम डंके की चोट जीतेंगे और नरोत्तम जी भी काम करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं नरोत्तम जी को जानता हूँ व्यक्तिगत।
6: नरोत्तम जी मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता, तो उनको कट्टू साइज तो करनी था, कर दिया।
3: दतिया में अब लड़ाई बीजेपी के सामने अपनों से है, जहां अभी तक कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। भोपाल से रवीश पाल के साथ आज तक ब्यूरो।
1: इस पूरे मामले में हमारे सहयोगी रवीश पाल ने खास बातचीत की नरोत्तम मिश्रा से।
7: फैसले को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि मांग के तो चला जा रहा था कि आप ही इकलौते उम्मीदवार हैं वहां से भाजपा के।
8: पार्टी का फैसला जो होता है वो ठीक ही होता है, उसको अच्छे रूप में ही लेना चाहिए, खराब रूप में नहीं लेना चाहिए, ऐसा मेरी मान्यता है।
7: आपके तो सकारात्मक भाव है, लेकिन आपके जो समर्थक थे जो महीनों से इंतजार कर रहे थे कि जो प्रकरण आया राजन भारती का, मामला कोर्ट में गया, फिर वहां से विधाई की गई, सदस्यता गई, सबको उम्मीद थी, लेकिन जब ये फैसला आया तो उनका गुस्सा साफ तौर पर सामने मिला। हाईवे जाम हो गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ हो गई, पथराव हो गया।
8: हाँ, छड़े का आवेश था, मैंने कल भी फिर उनसे निवेदन किया था, आज भी किया मैंने। जाम वाम की स्थिति नहीं होना चाहिए। कार्यकर्ता वो पेट्रोल डाल रहे थे, वो मुझे दिखाए विजुअल फुटेज, मिट्टी का तेल डालते हुए था। धैर्य और संयम का समय यही होता है, यही परीक्षा की घड़ी होती है।
7: आप भोपाल जा रहे हैं तो भोपाल में कोई कार्यक्रम, आला नेताओं से आपकी मुलाकात है क्या, प्रदेश अध्यक्ष से या मुख्यमंत्री से या किसी से?
8: अभी तो होगी तो बताऊंगा निश्चित। आप
7: आशुतोष तिवारी को आशीर्वाद रहेगा आपका?
8: सभी को क्यों नहीं रहेगा, कैसी बात कर रहे हैं।
7: हालांकि कैलाश जी ने कहा है कि वो बहुत अच्छे से जानते हैं आपको, उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ नरोत्तम जी को, पार्टी के फैसले को हमेशा से स्वीकार करते हैं और हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहे हैं।
8: बिल्कुल सही कहा, मैं सहमत हूँ।
7: आपके लिए भावुक क्षण है?
8: नहीं, राजनीति में ये सब चलने वाली चीज है।
7: लेकिन एक आखिरी सवाल नरोत्तम जी, चुनाव हुआ 2023 का, फिर लोकसभा आया, फिर राज्यसभा चुनाव आए, फिर कई दूसरी जिम्मेदारियां भी थी, हालांकि न्यू ज्वाइनिंग टोली का आपको संयोजक बनाया गया था, तब काफी लोग जुड़ के आए थे कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में, अब तो भाजपा में
8: लगातार लोकसभा राज्यसभा अध्यक्ष जो भी आप बात कर रहे हैं, ये अंतर्मुखी होकर स्वयं के चिंतन के लिए पार्टी अवसर दे रही है, हमें चिंतन करना भी चाहिए, अच्छी बात है।
1: बांकीपुर उपचुनाव में टिकट को लेकर सियासत तेज है, जहां बीजेपी ने एक दिन के अंदर अपने प्रत्याशी को बदल दिया, जिस पर अब विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है।
9: बांकीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी की ओर से पहले अभिषेक कुमार का नामांकन हुआ, फिर एक दिन बाद ही अचानक अभिषेक ने नामांकन वापस ले लिया और नीरज कुमार को नया उम्मीदवार घोषित किया गया। जिस अभिषेक को सामान्य कार्यकर्ता बताकर बीजेपी ने नितिन नवीन वाली सीट के लिए प्रत्याशी बनाया, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी को अपना प्रत्याशी बदलना पड़ा?
10: वैवाहिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। मैं कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा।
9: अब सवाल यह कि जिस पारिवारिक मामले का हवाला देकर अभिषेक ने नामांकन वापस लिया, वही परिवार एक दिन पहले अभिषेक को आशीर्वाद देते हुए भावुक हो गया था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अभिषेक बंटी के पिता रविंद्र प्रसाद सिन्हा चारा घोटाले में दोषी रहे। वो मगध केमिकल्स कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी में मैनेजर थे। इस कंपनी पर चारा घोटाले में फर्जी बिल के आधार पर सप्लायर बनाने का आरोप था। फर्जी बिलों के जरिए सरकारी खजाने से पैसा निकालने का मामला रविंद्र प्रसाद सिन्हा पर चला था। सूत्रों के मुताबिक दूसरी बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि अभिषेक सिन्हा बंटी ने नामांकन पत्र में गलत जानकारी भी दी थी, उन्होंने पढ़ाई से जुड़ी कुछ जानकारियां छिपाई थी, ऐसे में भी अभिषेक बंटी का नॉमिनेशन रद्द होने की आशंका थी। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी ने कोई जोखिम नहीं लेते हुए अभिषेक बंटी का नामांकन वापस कराने का फैसला लिया, यानी पार्टी को डर था कि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लालू परिवार को घेरते रहे, उसी भ्रष्टाचार में अभिषेक के पिता आरोपी हैं। लेकिन अब बीजेपी के नए प्रत्याशी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नीरज कुमार सिन्हा के उम्मीदवार घोषित होने के बाद बीजेपी ने उनका बायोडेटा जारी किया, इसमें उनकी जन्म तिथि 1 जुलाई 1994 बताई गई। इसी बायोडेटा में लिखा गया कि उन्होंने 2006 में बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता लेकर अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। यानी बीजेपी ज्वाइन करने के वक्त उनकी उम्र सिर्फ 12 साल थी, जबकि किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने की न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल होती है। इसके कुछ समय बाद बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा का संशोधित बायोडेटा जारी किया। नए बायोडेटा में उनकी जन्म तिथि पहले की तरह 1 जुलाई 1994 ही रखी गई, लेकिन 2006 में बीजेपी की सदस्यता लेने का उल्लेख हटा दिया गया। संशोधित बायोडेटा में ये नहीं बताया गया कि उन्होंने पार्टी की सदस्यता कब ली। बीजेपी ने यह भी नहीं बताया कि पहले और दूसरे बायोडेटा में यह बदलाव क्यों किया गया, लेकिन 2 दिन के अंदर हुए इस घटनाक्रम ने विपक्ष को घेरने का एक मौका जरूर दे दिया।
11: ये पहली बार हुआ है कि नामांकन करने के बाद कोई बीजेपी का प्रत्याशी नाम वापस ले रहा हो। विपक्ष के सामने बीजेपी के उम्मीदवार टिक ही नहीं पा रहे हैं। अब जिस दूसरे उम्मीदवार नीरज सिन्हा को बनाया है उनके ऊपर भी विवाद है।
12: विपक्ष इस बात के लिए चिंता करे कि नीचे से फर्स्ट कौन करिएगा। मुकाबला में तो खैर नहीं है, मुकाबला में बहुत ही अंतराल है।
9: बहरहाल बीजेपी की इस पारंपरिक सीट पर प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, जहां बीजेपी के फैसले को और बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी है। शशि भूषण कुमार के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक।
1: पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस में तकरार देखने को मिल रहे हैं, जहां चन्नी की बगावती तेवर आलाकमान की टेंशन बढ़ा रहे हैं। भूपेश बघेल को पंजाब कांग्रेस की नाराजगी दूर करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन अभी भी तकरार खत्म होती नहीं दिख रही।
13: ये तस्वीरें पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान को खत्म करने की हैं, जहां कांग्रेस के पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने चन्नी गुट के नेताओं के साथ करीब 2 घंटे लंबी बैठक की। बैठक खत्म होने के बाद बघेल ने किसी भी तरह की नाराजगी से इनकार किया।
14: हमारे सीनियर लीडर हैं, उन्होंने आमंत्रित किया और राणा साहब के हाथ में अनेक बार आया हूं, भोजन किया हूं। तो हमारा राणा साहब से तो अलग ही इस तरह का संबंध है, प्रेम का, भाई का संबंध है, तो उन्होंने आखिरी में मुझे आमंत्रित किया।
13: भले ही बघेल सब कुछ ठीक होने की बात कर रहे हो, लेकिन सूत्रों की माने तो बैठक में कुछ खास नतीजा नहीं निकला।
15: जो अंदर बात हुई है वो भावना जो है वो सबके सामने रख दी गई है, और उस भावना की कदर करते हुए बोला भी बाहर इसके अलावा कोई बात नहीं करनी। भी जो लीडरशिप है उसको हमने अपनी ए टू जेड बड़ी क्लियरली एक एक बात एक एक रीजन लॉजिक के साथ आगे रख दिया है, और उम्मीद करते हैं भी वो जो बात है वो बड़ी क्लियरली बघेल साहब हाईकमांड तक।
13: दरअसल कांग्रेस में चन्नी गुट राजा वर्डिंग को अध्यक्ष बनाए जाने से नाराज चल रहा है, जिसे लेकर चन्नी गुट पहले बैठक कर चुका है। हालात बिगड़ते देख बघेल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज हुई बैठक में भी राजा वर्डिंग को लेकर नेताओं से राय ली गई, लेकिन इस पर आखिरी मुहर दिल्ली से लगनी है। पिछले चुनाव से पहले कांग्रेस की अंदरूनी कलह ने उसे सत्ता से बाहर कर दिया था, ऐसे में एक बार फिर बगावत ने आलाकमान की टेंशन बढ़ा दी है।
16: पार्टी सोर्सेज जो बताते हैं कि अंदर ये वॉइस उठाई गई कि राजा वड़िंग की प्रधानगी मौजूद नहीं, हमें मंजूर नहीं है। और इसके अलावा जब सुखजिंदर रंधावा बाहर आए तो उन्होंने बोला कि हमने साफ डिमांड रखी है, पहली डिमांड ये है कि जो है जो 2027 का इलेक्शन है वो कांग्रेस जीते, और लड़ाई ऐसा लीडर लड़े जो कॉम्प्रोमाइज ना हो। हालांकि किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अब हाईकमान के पाले में गेंद जाएगी जिस तरह की ये सिचुएशन लग रही है। सो पंजाब कांग्रेस ने जिसने भूपेश बघेल ने एक अटेम्प्ट किया था कि बैठ के डेडलॉक टूटे, तो ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि उन्होंने बोला अप्रीहेंशंस अब टेकअप की जाएंगी। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन गुंजीत के साथ असीम बस्सी आज तक।
1: बाद अब मानसून की मार की मानसून भले ही देर से आया हो, लेकिन आने के साथ ही तबाही मचा रखी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है।
9: आसमान से बरसती आफत और जमीन पर जिंदगी बचाने की जद्दोजहद, कहीं पहाड़ तड़प रहे हैं तो कहीं पानी जिंदगी को अपनी चपेट में ले रहा है। मानसून की बारिश अब सिर्फ मौसम नहीं रही, कई इलाकों में ये डर दहशत और तबाही की वजह बन चुकी है। हिमाचल से उत्तराखंड तक बारिश ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया है कि लोग घर छोड़ने, रास्ते छोड़ने और जिंदगी बचाने को मजबूर हैं। उत्तराखंड में भी बारिश लगातार आफत बनकर बरस रही है। टिहरी गढ़वाल में लगातार तीसरे दिन बारिश जारी है। बारिश के चलते टिहरी झील का जलस्तर बढ़ रहा है। नदी किनारे रहने वाले लोगों में डर का माहौल लगातार बना हुआ है
17: और काफी बारिश से अस्त व्यस्त जीवन हो रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं घनसाली में काफी बारिश लगातार हो रही है।
18: तो नदी के किनारे लोग रह रहे हैं, सभी घरों के जो है नोटिस चस्पा कर दिया और समय समय पर जैसे बारिश होती है सायरन भी जो है प्रशासन द्वारा जो है बजाया जाता है और अपने अधिकारी भी कर्मचारी भी लगाए हुए हैं कि जो नदी किनारे अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अगर पानी बढ़ता है तो अन्यत्र जो है अपनी व्यवस्था करें। तो लोग सतर्क हैं और क्योंकि मेरा घर भी नदी के किनारे है हमें भी नोटिस गवर्नमेंट से आया है।
9: प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। दो दिन की छुट्टी के बाद स्कूल खुले लेकिन बारिश के बीच बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों की चिंता भी सामने आई। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे हालात में एहतियात और ज्यादा जरूरी है।
19: बद्रीनाथ धाम में बीते तीन दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। जहां अब मानसून पहाड़ों में पैर पसार रहा है वहीं बद्रीनाथ धाम में लगातार बारिश हो रही है। तो बद्रीनाथ धाम में बहने वाली अलकनंदा में अपना विकराल रूप धीरे धीरे जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जो यहाँ पे नरसिंहशिला बारहशिला है वो लगातार पानी में डूबती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी मानसून के दौरान ये पूरी शिला बद्रीनाथ धाम की जो अलकनंदा है उसमें डूब जाती है लेकिन अब धीरे धीरे उफान पर अलकनंदा बह रही है। पूरा पानी बढ़ता जा रहा है, पल पल बारिश के साथ ही जो पानी है जलस्तर है वो बढ़ रहा है। वो हालांकि मार्ग बाधित होने की जो आशंका है वो बनी हुई है क्योंकि मानसून का दौर है, बारिश तेज होती है। तो अलग अलग जगहों पे खासकर पीपल कोठी के भनेर पानी में और जो गुलाब कोठी है हेलंग के समीप वहां पे लगातार भूस्खलन का दौर बन रहा है।
9: चमोली के थराली क्षेत्र में बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार हो रही बारिश के बाद घाघली गदेरे में भारी मात्रा में मलबा आ गया जिसके चलते थराली देवाल और थराली कुराड़ मार्ग प्रभावित हुए। एक रास्ता खोल दिया गया है लेकिन कई इलाकों में अब भी लोगों की मुश्किलें बनी हुई है। उफनते नाले के किनारे बसे राडीबगढ़ गांव के लोगों ने पूरी रात दहशत में गुजारी। ग्रामीणों का आरोप है कि सुरक्षा इंतजामों की कमी के कारण हर बारिश में खतरा बढ़ जाता है। चमोली में पहले भी बादल फटने और भारी मलबे की घटनाएं सामने आ चुकी है और इस बार मॉनसून के शुरुआत में हालात डराने लगे। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में लगातार बारिश जारी है। तीन दिनों से हो रही बारिश का असर अब अलकनंदा नदी पर दिखाई दे रहा है। खतरा लगातार बना हुआ है, नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और अलकनंदा उफान पर बह रही है। हालांकि खराब मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था कायम है। बारिश के बीच भी यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। यात्रा मार्ग फिलहाल सुचारू है लेकिन पहाड़ों के बदलते मौसम के बीच खतरा लगातार बना हुआ है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बारिश ने चार धाम यात्रा की रफ्तार रोक दी। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर खांकुरा के पास पहाड़ दरक गया। भारी भरकम बोल्डर सड़क पर आ गिरे और देखते ही देखते हाईवे बंद हो गया। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। कई यात्री घंटों तक रास्ता खुलने का इंतजार करते रहे। बारिश के मौसम में पहाड़ों की यात्रा एक बार फिर चुनौती बन गई है। नैनीताल में लगातार लगभग 8 घंटे हुए मूसलाधार बारिश के बाद 7 नंबर स्थित आलमग कॉटेज और जिला पंचायत रोड क्षेत्र में भूधसाव तेज हो गया। पहाड़ी का बड़ा हिस्सा खिसक कर नीचे नाले में जा गिरा जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। सड़क के ऊपर बने 5 और नीचे स्थित 7 परिवारों के मकान खतरे की जद में। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते सुरक्षा कार्य करा दिए गए होते तो आज ये स्थिति पैदा नहीं होती।
20: उनके क्षेत्र में लगातार वर्षा हो रही है, इसी संबंध में आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया गया। तो सर्वप्रथम जो 7 नंबर का हमारा लैंडस्लाइडिंग एरिया है उसको आज विजिट किया गया और वहां पर उस निरीक्षण में एक्सियन पीडब्ल्यूडी और एक्सियन इरीगेशन भी मौजूद थे। एक्सियन इरीगेशन को पूर्व में भी आयुक्त महोदय के द्वारा जो है DPR उस एरिया की गठित करके तत्काल काम कराने के लिए निर्देशित किया गया है। तो उसी के क्रम में आज हम लोगों के द्वारा निरीक्षण किया गया और ये देखा गया कि वहां पर तात्कालिक तौर पर भी कुछ कार्य कराए जाने की आवश्यकता है जिसको इरिगेशन विभाग कल से ही टेकअप करेगा।
9: मौसम विभाग की तरफ से उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और कुमाऊं क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर के लिए रेड अलर्ट है।
1: देहरादून, पौड़ी, चंपावत, हरिद्वार, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली और नैनीताल जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए। पूरे उत्तराखंड में 117 सड़कें अब भी बंद हैं। बहरहाल ये मानसून की पहली किश्त ने जिसने पहाड़ों पर हाहाकार मचा रखा है, मौसम विभाग की माने तो अभी आसमान से ये आफत थमने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक बारिश अपने साथ मुश्किलें लाई है, वहां पर कैसे हालात हैं रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिंदुस्तान का यह नक्शा बता रहा है कि जुलाई के 9 दिनों में मॉनसून लगभग पूरे देश पर छा गया है, लेकिन देश के 49% जिले ऐसे हैं जहां अभी भी सामान्य से कम बारिश हुई है। इनमें सबसे ज्यादा जिले यूपी बिहार के नजर आते हैं। ये नक्शा बता रहा है कि मध्य और पश्चिमी भारत में तो सामान्य से ज्यादा बारिश हो गई है, लेकिन अभी पूर्वोत्तर और पूर्वी हिस्से में ठीक से बारिश होना बाकी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में तो लगातार बारिश के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। संजौली इलाके में भूस्खलन के खतरे के चलते कई परिवार घरों से बाहर रहने को मजबूर हैं। लोगों को डर है कि कमजोर हो चुकी जमीन कब धंस जाए और कब कोई बड़ा हादसा हो जाए। वहीं न्यू शिमला के राजाना गांव में भी लैंडस्लाइड ने कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है।
2: डर का माहौल है जी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे आप देख रहे हैं, आपने अभी फोटोज भी ली हैं, यहाँ पे जो सारा एरिया है अभी डर के माहौल में। हम पूरे एक साल से डर के साथ ही जी रहे हैं। लास्ट ईयर 28 जून 2025 को सुबह 4:30 बजे के करीब ये जो लैंडस्लाइड हुआ था, जिससे कि सब कुछ यहाँ पे हमारी बिल्डिंग की सीढ़ियां वगैरह सब कुछ टूट गया था, और तब से लेकर हम लोग तो डर डर के ही जी रहे हैं। बार बार हम रिक्वेस्ट करने पर भी यहाँ पे कुछ नहीं, जैसे ही बरसाते शुरू होती है इनका काम भी स्टार्ट होता है, और हमारा तो ये कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इनका बैन किया जाए इसको।
1: जम्मू कश्मीर के पुंछ में बारिश के बाद अचानक बाढ़ ने हालात बिगाड़ दिए। तेज बहाव में कई लोग फंस गए। प्रशासन और राहत टीमों ने लगभग 25 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। पानी का वेग इतना तेज था कि लोगों की जिंदगी कुछ घंटों के लिए खतरे में आ गई।
21: चाव हो गया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि हमने पिछले साल भी यहाँ एसडीएम साहब भी मौके पर आए थे, उन्होंने बोला था कि हम आपको क्रेडिट देंगे, अभी तक ना उन्होंने कोई क्रेडिट दिया ना इस पुल का कोई इंतजाम किया।
22: सिचुएशन यहाँ पे हुई है, इसमें तकरीबन 8 से 10 घर जो है वो इफेक्टेड हुए हैं। मैं मुकामी लोगों का और मेरी जो हमारी यहाँ पर पुलिस पोस्ट अड़ी है, इमीडिएट जो रेस्पॉन्डर है वो ये खुद थे, इन्होंने जो है वो लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया, जिसमें तकरीबन 20 से 25 सोल्स हैं और कुछ लाइव स्टॉक पोल्ट्री बोर्ड को जो है वो रेस्क्यू किया गया।
1: सहारनपुर में तो गजब हो गया, भारी बारिश की वजह से कब्रिस्तान में पानी भर गया और इसकी वजह से कई कब्रें क्षतिग्रस्त हो गई। ये गागल हेड़ी के सैयद माजरा गाँव के कब्रिस्तान की घटना है। मिट्टी धंसने से कुछ शव कफन समेत बाहर दिखाई देने लगे। ग्रामीणों ने पुलिस की मौजूदगी में धार्मिक रीति रिवाजों और पूरे सम्मान के साथ शवों को दोबारा सुपुर्द खाक किया। इधर महाराष्ट्र में अब बारिश तो रुक गई है, लेकिन पुणे के एक वेस्ट प्लांट में जो हादसा हुआ था वहां भी 8 लोगों के दबे होने की आशंका है। पुणे के मोशी के वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में हादसे के 48 घंटे के बाद भी सभी लोगों का रेस्क्यू नहीं हुआ है। इस प्लांट में कूड़े के पहाड़ से फेंके इमारत पर नहीं गिरा, उसने कई परिवारों की उम्मीदें भी मलबे में दबा दी। जहरीली मीथेन गैस और कूड़े का विशाल ढेर रेस्क्यू ऑपरेशन को लगातार मुश्किल बना रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर खतरे का अंदाजा था तो कूड़े के ढेर के पास इमारत क्यों बनाई गई।
23: तो बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश हमारे शहर में हुई थी, उसकी वजह से पूरे शहर में पानी का स्तर बढ़ गया था, हमेशा के जैसे हालात नहीं थे, और इसी के वजह से ये जो कचरे का मलबा था वो पूरा बिल्डिंग के ऊपर गिर गया। उसमें जो कर्मचारी थे एंटनी के वो फंस गए, लेकिन उनको निकालने का काम पूरे प्रयास पूरे जोरों शोर से और पूरे मेहनत से पहले दिन से हम सब कर रहे हैं, आज के दिन उनको निकाला जाएगा।
24: 40 घंटे हुए हैं अभी तक निकाले गए नहीं।
23: आपने पहले दिन आए तो कंडीशन देखी होती तो आपको पता चलता, क्योंकि पहले जो जीवित व्यक्ति थी उनको, जिनका आवाज बाहर आ रहा था, प्रशासन को आ रहा था, उनको बाहर निकालना जरूरी था, उनको पहले दिन के रात को बाहर निकाला गया।
1: कई गंभीर सवाल हैं और सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि जो लोग फंसे हुए थे उनके तरफ से रिस्पॉन्स आना भी बंद हो गया है,
0: कुल 23 लोग यहाँ फंसे थे, जिनमें से 14 लोगों को निकाला गया था और एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। अभी भी जो 8 लोग हैं उनकी क्या स्थिति है ये पता नहीं है।
24: पुणे स्थित मोशी में जो इंसिडेंट हुआ था, इसको लेकर 45 घंटों के बाद भी एनडीआरएफ टीम की रेस्क्यू जारी है। अभी हम मोशी स्थित कचरा डिपो में है, यहाँ पर देख सकते हैं कि जेसीबी से जहाँ पर वेस्ट टू एनर्जी बिल्डिंग है जो ढही थी, उसके आजू बाजू में कचरा निकालने का काम जारी है। 2 दिन पहले यही जो कचरे का ढेर है वो वेस्ट टू एनर्जी बिल्डिंग के ऊपर गिरने से बिल्डिंग ढही थी और उसमें 23 लोग अटके हुए थे, उसमें से 14 लोगों को निकाल लिया गया है और एक की डेथ हुई है, तो 8 लोग अभी भी मौजूद है, उनसे कोई रिस्पॉन्स नहीं है, लेकिन उनको निकालने की कोशिश एनडीआरएफ द्वारा जारी है। पिछले कुछ घंटों से इस काम में तेजी आई है, जेसीबी ज्यादा लगाए हैं, लेकिन जहां मतलब ग्राउंड फ्लोर में जो लोग अटके हुए हैं, जो मलबे में हैं, उनके रिश्तेदार यहां पे कई घंटों से हैं और उनको आस है कि हमारे जो अंदर अटके हुए लोग हैं वो शायद जिंदा हो।
0: प्रशासन कह रहा है कि बिल्डिंग के अंदर कचरे की वजह से मीथेन गैस है, जिसकी वजह से पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में समस्याएं आ रही हैं। अब पूरी इमारत तोड़कर इन लोगों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है।
3: अभी जो लास्ट फेज ऑफ रेस्क्यू ऑपरेशन है वो बहुत क्रिटिकल हो रहा है। जैसे आप देख रहे हो कि ये कैंटिलीवर फॉल है, तो एनडीआरएफ के कहने के मुताबिक ये जहाँ कैंटिलीवर फॉल होता है बिल्डिंग का, वो बहुत क्रिटिकल और बहुत रिस्की रहता है ऑपरेशन में। अभी एनडीआरएफ ने जो जो कचरा है जो अंदर जा रहा है उसको निकालने की पूरे प्रयास कर रहे हैं। उसके आसपास बिल्डिंग का ऑलमोस्ट 80-90% उन्होंने निकाल लिया है। उसके बाद में अभी वो बिल्डिंग खोल के मतलब उनके इक्विपमेंट्स का यूज करके वो तोड़ के अंदर जाके जहां ये लोग फंसे हुए हैं।
0: पालघर की ये तस्वीर देखिए, कैसे घर के नीचे सैलाब के बाद पूरा परिवार छत पर है, जिसमें महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं, जिनके चेहरे पर खौफ आसानी से देखा जा सकता है। आज तक ब्यूरो।
1: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

0: यूपी में 27 का घमासान तेज। मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पार्टी पर बोला, हमला काइन का इतिहास राम भक्तों के खून से सना, भारत की विरासत और आस्था को किया अपमानित। दतिया से टिकट कटने के बाद आज तक से बोले बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा, राजनीति में यह चलता है, पार्टी का फैसला सही, मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिले। आमिर खान की तीसरी शादी पर भड़के नितेश राणे, बताया लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर, युवाओं से की आमिर की फिल्में सोच समझकर देखने की अपील। वियतनाम में भारतीय पर्यटकों से भरी नाव पलटी, अब तक 15 लोगों की मौत, फुकोक द्वीप के पास हादसा, राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने जताई संवेदना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जारी किया आदेश, कहा अगर मेरी हत्या हुई तो ईरान को मिटा दें, जेडी विंस को सौंपी फैसला लेने की जिम्मेदारी। अब बात करते हैं यूपी में चुनाव से पहले छिड़े धर्म युद्ध की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर चढ़ावा चोरी ने पूरी तरह से सियासी रंग ले लिया है, जिसके बाद अब योगी आदित्यनाथ विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को पिछला इतिहास गिना रहे हैं, तो वहीं विपक्ष राम मंदिर के मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा।
1: यूपी में राम मंदिर से शुरू हुआ घमासान अब धर्म की राजनीति तक पहुंच गया है। योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी का इतिहास खंगाल रहे हैं।
2: मंदिरों पे कब्जा करवाते थे लोग, मंदिरों पे कब्जा करवाते थे, और अब कब्जा नहीं, अब उन मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है, और पहले मंदिरों के नाम पर आने वाला पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर खर्च हो जाता था। यही तो करती थी समाजवादी पार्टी।
1: कल योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी में इफ्तार का जिक्र करके समाजवादी पार्टी को घेरा था, तो आज विपक्ष योगी पर गुमराह करने का आरोप लगा रहा है।
3: कैसे नमाज पढ़ सकता है कोई आदमी वहां? ये एजेंडा जो है ये तमाम चीजों से ध्यान भटकाने का है। कैसे नमाज पढ़ सकता है? हम तो कह रहे हैं कि आप सड़क पर नमाज ना पढ़े, चूंकि सड़क सरकार की और सरकार मना कर रही है तो आपकी नमाज जायज नहीं होगी। मैं तो बार बार बोलता हूं, जिस प्रॉपर्टी का ओनर अगर उसको इजाजत नहीं देता तो वहां नमाज ही नहीं हो सकती।
1: 2027 के चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा अब थमता नहीं दिख रहा है। इस बीच राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के कलंक पर अब समिति से जुड़े लोग दुख जता रहे हैं।
4: राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है, व्यवस्था में सुधार होगा, मुझे पूरा विश्वास है।
1: एक और ताबड़तोड़ जांच और एक्शन जारी है, तो वहीं राम भक्तों का भरोसा जीतने की कोशिश भी की जा रही है। चढ़ावा विवाद के बीच राम मंदिर ट्रस्ट जल्द ही सीईओ की नियुक्ति करने जा रहा है, जिसके लिए समिति का गठन भी कर दिया गया है। सीईओ को मंदिर के प्रशासन और वित्तीय प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जिसका उद्देश्य मंदिर के संचालन को अधिक पेशेवर, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। इसके साथ ही सीईओ चढ़ावे के प्रबंधन, श्रद्धालुओं की सुविधाओं, आधारभूत ढांचे के रखरखाव और प्रशासनिक व्यवस्था की भी निगरानी रखेंगे। साफ है कि एक ओर सरकार बार बार भरोसा जताने की कोशिश कर रही है कि वो भक्तों के साथ धोखा करने वालों को बख्शेगी नहीं, वहीं विपक्ष सरकार की पूरी जांच को कटघरे में खड़ा कर रही है। आज तक ब्यूरो।
0: राम मंदिर जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, और इस बीच में मंदिर प्रशासन के सामने चुनौती सिस्टम को सुधारने की भी है, जिस पर लगातार फैसले लिए जा रहे हैं।
1: चढ़ावा चोरी के गंभीर आरोपों की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे सामने आते जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से अब सामने आया है कि मंदिर में काम करने वाले कुछ पूर्व सैनिकों पर कुछ भी बोलने पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसके लिए बकायदा सभी पूर्व सैनिकों को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा गया था। कहा गया था कि कोई कुछ भी पूछे बोलना नहीं है। जिस मैसेज पर सवाल उठ रहे हैं उस मैसेज का स्क्रीनशॉट भी आज तक के पास मौजूद है। इससे साफ है कि चढ़ावा चोरी के खुलासे के बाद मामले को छिपाने की कोशिश की गई। इधर अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के दो और आरोपियों को पुलिस जल्द ही रिमांड पर लेगी। राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव से पुलिस पूछताछ करेगी। टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई गई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र की 7 दिनों की कस्टडी मांगी है।
5: अयोध्या पुलिस ने अब रामशंकर यादव, टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में 7 दिन की अर्जी डाली है। इन दोनों की पुलिस कस्टडी रिमांड बेहद अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि जहां रामशंकर यादव के पास डोनेशन बॉक्स की चाबियां होती थी, वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र उस कमरे के इंचार्ज थे जहां से चढ़ावा चोरी हो रहा था। ऐसे में इन दोनों से की गई पूछताछ से पुलिस पता लगाने की कोशिश में लगी है कि आखिर यह चोरी हो रही थी तो उनके संज्ञान में क्यों नहीं आई, पकड़ी भी गई तो क्यों उन पर कार्रवाई नहीं हुई।
1: इस बीच राम मंदिर में चढ़ावे की गणना के लिए नया टाइम टेबल लागू कर दिया गया है। पहले 2 पालियों में होने वाली गिनती अब एक ही शिफ्ट में की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चढ़ावे की गिनती होगी। नई समय सारणी लागू होने के बाद कुछ गणना कर्मियों ने काम छोड़ दिया है। उधर राम मंदिर में VIP पास की प्रक्रिया भी रोकी गई है क्योंकि जिन लोगों की ID का इस्तेमाल इस काम के लिए किया गया था उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में जारी घटनाक्रम के बीच गोपाल राव ने निर्मोही अखाड़ा पहुंचकर ट्रस्टी महंत दीनेन्द्र दास से मुलाकात की। दोनों के बीच बंद कमरे में काफी देर तक एकांत में चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में ट्रस्ट से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। इस मुलाकात में ट्रस्ट के भीतर चल रहे विवादों के बीच डैमेज कंट्रोल की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हालांकि बैठक में इस चर्चा के संबंध में आधिकारिक रूप से कोई जानकारी साझा नहीं की गई। अयोध्या से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: यूपी में राम मंदिर पर घमासान जारी तो मध्य प्रदेश में लड़ाई बीजेपी बनाम बीजेपी की दिख रही है, जहां दतिया में हो रहे उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा और इसके बाद से कार्यकर्ता भड़क गए।
6: दतिया में टिकट को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा ऐसा फूटा कि वो अपनी ही सरकार की पुलिस से भिड़ गए। मध्य प्रदेश के दतिया में 30 जुलाई को उपचुनाव है। बीजेपी ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। दतिया से आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाने की घोषणा होते ही नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। नेशनल हाईवे पर जाम लग गया, घंटों तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही, पुलिस पर पथराव हुए और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए।
7: मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए, पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं, ऐसा कोई कार्य न करे।
6: आखिर दतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट क्यों कटा? बताया जा रहा है कि दिल्ली के स्तर पर कराए गए सर्वे में नरोत्तम मिश्रा की स्थिति उम्मीद के मुताबिक मजबूत नहीं पाई गई। 2023 में बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को टिकट दिया था लेकिन वो विधानसभा का चुनाव हार गए। केंद्रीय नेतृत्व ने स्थानीय संगठन और भविष्य की राजनीति स्वीकारता का भी आकलन कराया। इसमें नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी फिट बैठे, जिसके बाद उन्हें दतिया से टिकट दिया गया। बीजेपी ने एक ब्राह्मण नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर दूसरे ब्राह्मण आशुतोष तिवारी को टिकट दिया है। इससे जातिगत और सामाजिक संतुलन बरकरार है। उधर पार्टी का संदेश साफ है कि बीजेपी हाईकमान फिलहाल झुकने के मूड में नहीं है।
8: पार्टी इस प्रकार के सोच समझ के निर्णय लेती है और इसलिए हम डंके की चोट जीतेंगे और नरोत्तम जी भी काम करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं नरोत्तम जी को जानता हूँ व्यक्तिगत।
9: नरोत्तम जी मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता, तो उनको कट्टू साइज तो करनी था, कर दिया।
6: दतिया में अब लड़ाई बीजेपी के सामने अपनों से है, जहां अभी तक कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। भोपाल से रवीश पाल के साथ आज तक ब्यूरो।
0: इस पूरे मामले में हमारे सहयोगी रवीश पाल ने खास बातचीत की नरोत्तम मिश्रा से।
10: फैसले को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि मान के तो चला जा रहा था कि आप ही इकलौते उम्मीदवार हैं वहां भाजपा के।
11: पार्टी का फैसला जो होता है वो ठीक ही होता है, उसको अच्छे रूप में ही लेना चाहिए, खराब रूप में नहीं लेना चाहिए, ऐसा मेरी मान्यता है।
10: आपके तो सकारात्मक भाव है लेकिन आपके जो समर्थक थे जो महीनों से इंतजार कर रहे थे कि जो प्रकरण आया राजन भारती का, मामला कोर्ट में गया, फिर वहां से विधायक की गई, सदस्यता गई, सबको उम्मीद थी लेकिन जब ये फैसला आया तो उनका गुस्सा साफ तौर पर सामने मिला। हाईवे जाम हो गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ हो गई, पथराव हो गया।
11: हाँ, छड़े का आवेश था, मैंने कल भी फिर उनसे निवेदन किया था, आज भी किया मैंने, जाम बाम की स्थिति नहीं होना चाहिए। कार्यकर्ता वो पेट्रोल डाल रहे थे, वो मुझे दिखाए विजुअल फुटेज, मट्टी का तेल डालते हुए था। धैर्य और संयम का समय यही होता है, यही परीक्षा की घड़ी होती है।
10: आप भोपाल जा रहे हैं तो भोपाल में कोई कार्यक्रम आला नेताओं से आपकी मुलाकात है क्या, प्रदेश अध्यक्ष से या मुख्यमंत्री से या किसी से?
11: अभी तो होगी तो बताऊंगा निश्चित। आप
10: आशुतोष तिवारी को आशीर्वाद रहेगा आपका?
11: सभी को क्यों नहीं रहेगा, कैसी बात कर रहे हैं।
10: हालांकि कैलाश जी ने कहा है कि वो बहुत अच्छे से जानते हैं आपको, उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूं नरोत्तम जी को, पार्टी के फैसले को हमेशा से स्वीकार करते हैं और हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहे हैं।
11: बिल्कुल सही कहा, मैं सहमत हूँ।
10: आपके लिए भावुक क्षण है?
11: नहीं, राजनीति में ये सब चलने वाली चीज है।
10: लेकिन एक आखिरी सवाल नरोत्तम जी, चुनाव हुआ 2023 का, फिर लोकसभा आया, फिर राज्यसभा चुनाव आए, फिर कई दूसरी जिम्मेदारियां भी थी। हालांकि न्यू ज्वाइनिंग टोली का आपको संयोजक बनाया गया था, तब काफी लोग जुड़ के आए थे कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में, अब तो भाजपा में
11: लगातार लोकसभा राज्यसभा देखिए जो भी आप बात कर रहे हैं, ये अंतर्मुखी होकर स्वयं के चिंतन के लिए पार्टी अवसर दे रही है, हमें चिंतन करना भी चाहिए, अच्छी बात है।
0: बांकीपुर उपचुनाव में टिकट को लेकर सियासत तेज है, जहां बीजेपी ने एक दिन के अंदर अपने प्रत्याशी को बदल दिया, जिस पर अब विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है।
12: बांकीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी की ओर से पहले अभिषेक कुमार का नामांकन हुआ, फिर एक दिन बाद ही अचानक अभिषेक ने नामांकन वापस ले लिया और नीरज कुमार को नया उम्मीदवार घोषित किया गया। जिस अभिषेक को सामान्य कार्यकर्ता बताकर बीजेपी ने नितिन नवीन वाली सीट के लिए प्रत्याशी बनाया, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी को अपना प्रत्याशी बदलना पड़ा?
13: पौराणिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। मैं कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा।
12: अब सवाल ये कि जिस पारिवारिक मामले का हवाला देकर अभिषेक ने नामांकन वापस लिया, वही परिवार एक दिन पहले अभिषेक को आशीर्वाद देते हुए भावुक हो गया था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अभिषेक बंटी के पिता रविंद्र प्रसाद सिन्हा चारा घोटाले में दोषी रहे। वो मगध केमिकल्स कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी में मैनेजर थे। इस कंपनी पर चारा घोटाले में फर्जी बिल के आधार पर सप्लायर बनाने का आरोप था। फर्जी बिलों के जरिए सरकारी खजाने से पैसा निकालने का मामला रविंद्र प्रसाद सिन्हा पर चला था। सूत्रों के मुताबिक दूसरी बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि अभिषेक सिन्हा बंटी ने नामांकन पत्र में गलत जानकारी भी दी थी, उन्होंने पढ़ाई से जुड़ी कुछ जानकारियां छिपाई थी, ऐसे में भी अभिषेक बंटी का नॉमिनेशन रद्द होने की आशंका थी। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी ने कोई जोखिम नहीं लेते हुए अभिषेक बंटी का नामांकन वापस कराने का फैसला लिया, यानी पार्टी को डर था कि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लालू परिवार को घेरते रहे हैं, उसी भ्रष्टाचार में अभिषेक के पिता आरोपी हैं। लेकिन अब बीजेपी के नए प्रत्याशी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नीरज कुमार सिन्हा के उम्मीदवार घोषित होने के बाद बीजेपी ने उनका बायोडेटा जारी किया, इसमें उनकी जन्म तिथि 1 जुलाई 1994 बताई गई। इसी बायोडेटा में लिखा गया कि उन्होंने 2006 में बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता लेकर अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की, यानी बीजेपी ज्वाइन करने के वक्त उनकी उम्र सिर्फ 12 साल थी, जबकि किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने की न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल होती है। इसके कुछ समय बाद बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा का संशोधित बायोडेटा जारी किया। नए बायोडेटा में उनकी जन्मतिथि पहले की तरह 1 जुलाई 1994 ही रखी गई, लेकिन 2006 में बीजेपी की सदस्यता लेने का उल्लेख हटा दिया गया। संशोधित बायोडेटा में यह नहीं बताया गया कि उन्होंने पार्टी की सदस्यता कब ली। बीजेपी ने यह भी नहीं बताया कि पहले और दूसरे बायोडेटा में यह बदलाव क्यों किया गया, लेकिन दो दिन के अंदर हुए इस घटनाक्रम ने विपक्ष को घेरने का एक मौका जरूर दे दिया।
14: ये पहली बार हुआ है कि नामांकन करने के बाद कोई बीजेपी का प्रत्याशी नाम वापस ले रहा हो। विपक्ष के सामने बीजेपी के उम्मीदवार टिक ही नहीं पा रहे हैं। अब जिस दूसरे उम्मीदवार नीरज सिन्हा को बनाया है उनके ऊपर भी विवाद है।
15: विपक्ष इस बात के लिए चिंता करे कि नीचे से फर्स्ट कौन करिएगा। मुकाबला में तो खैर नहीं है, मुकाबला में बहुत ही अंतराल है।
12: बहरहाल बीजेपी की इस पारंपरिक सीट पर प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, जहां बीजेपी के फैसले को और बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी है। शशि भूषण कुमार के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक।
0: बाद हम मानसून की मार के मानसून भले ही देर से आया हो लेकिन आने के साथ ही तबाही मचा रखी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है।
16: आसमान से बरसती आफत और जमीन पर जिंदगी बचाने की जद्दोजहद, कहीं पहाड़ तड़प रहे हैं तो कहीं पानी जिंदगी को अपनी चपेट में ले रहा है। मानसून की बारिश अब सिर्फ मौसम नहीं रही, कई इलाकों में ये डर दहशत और तबाही की वजह बन चुकी है। हिमाचल से उत्तराखंड तक बारिश ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया है कि लोग घर छोड़ने, रास्ते छोड़ने और जिंदगी बचाने को मजबूर हैं। उत्तराखंड में भी बारिश लगातार आफत बनकर बरस रही है। टिहरी गढ़वाल में लगातार तीसरे दिन बारिश जारी है। बारिश के चलते टिहरी झील का जलस्तर बढ़ रहा है। नदी किनारे रहने वाले लोगों में डर का माहौल लगातार बना हुआ है
17: और काफी बारिश से अस्त व्यस्त जीवन हो रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं घनसाली में काफी बारिश लगातार हो रही है।
18: तो नदी के किनारे लोग रह रहे हैं, सभी घरों के जो है नॉट चस्पा कर दिया और समय समय पर जैसे बारिश होती है सायरन भी जो है प्रशासन द्वारा जो है बजाया जाता है और अपने अधिकारी भी कर्मचारी भी लगाए हुए हैं कि जो नदी किनारे अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अगर पानी बढ़ता है तो अन्यत्र जो है अपनी व्यवस्था करें। तो लोग सतर्क हैं और क्योंकि मेरा घर भी नदी के किनारे है, हमें भी नोटिस गवर्नमेंट से आया है।
16: प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। दो दिन की छुट्टी के बाद स्कूल खुले लेकिन बारिश के बीच बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों की चिंता भी सामने आई। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे हालात में एहतियात और ज्यादा जरूरी है।
19: बद्रीनाथ धाम में बीते तीन दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। जहां अब मानसून पहाड़ों में पैर पसार रहा है वहीं बद्रीनाथ धाम में लगातार बारिश हो रही है। तो बद्रीनाथ धाम में बहने वाली अलकनंदा में अपना विकराल रूप धीरे धीरे जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जो यहां पे नरसिंह शिला बारह शिला है वो लगातार पानी में डूबती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी मानसून के दौरान ये पूरी शिला बद्रीनाथ धाम की जो अलकनंदा है उसमें डूब जाती है लेकिन अब धीरे धीरे उफान पर अलकनंदा बह रही है, पूरा पानी बढ़ता जा रहा है। पल पल बारिश के साथ ही जो पानी है जलस्तर है वो बढ़ रहा है। हालांकि मार्ग बाधित होने की जो आशंका है वो बनी हुई है क्योंकि मानसून का दौर है, बारिश तेज होती है तो अलग अलग जगहों पे खासकर पीपल कोठी के भनेर पानी में और जो गुलाब कोठी है हेलंग के समीप वहां पे लगातार भूस्खलन का दौर बन रहा है।
16: चमोली के थराली क्षेत्र में बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार हो रही बारिश के बाद घाघली गदेरे में भारी मात्रा में मलबा आ गया जिसके चलते थराली देवाल और थराली कुराड़ मार्ग प्रभावित हुए। एक रास्ता खोल दिया गया है लेकिन कई इलाकों में अब भी लोगों की मुश्किलें बनी हुई है। उफनते नाले के किनारे बसे राडीबगढ़ गांव के लोगों ने पूरी रात दहशत में गुजारी। ग्रामीणों का आरोप है कि सुरक्षा इंतजामों की कमी के कारण हर बारिश में खतरा बढ़ जाता है। चमोली में पहले भी बादल फटने और भारी मलबे की घटनाएं सामने आ चुकी है और इस बार मानसून के शुरुआत में हालात डराने लगे। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में लगातार बारिश जारी है। तीन दिनों से हो रही बारिश का असर अब अलकनंदा नदी पर दिखाई दे रहा है। खतरा लगातार बना हुआ है, नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और अलकनंदा उफान पर बह रही है। हालांकि खराब मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था कायम है। बारिश के बीच भी यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। यात्रा मार्ग फिलहाल सुचारू है लेकिन पहाड़ों के बदलते मौसम के बीच खतरा लगातार बना हुआ है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बारिश ने चार धाम यात्रा की रफ्तार रोक दी। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर खांकुरा के पास पहाड़ दरक गया। भारी भरकम बोल्डर सड़क पर आ गिरे और देखते ही देखते हाईवे बंद हो गया। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। कई यात्री घंटों तक रास्ता खुलने का इंतजार करते रहे। बारिश के मौसम में पहाड़ों की यात्रा एक बार फिर चुनौती बन गई है। नैनीताल में लगातार लगभग 8 घंटे हुए मूसलाधार बारिश के बाद 7 नंबर स्थित आलमक कॉटेज और जिला पंचायत रोड क्षेत्र में भूधसाव तेज हो गया। पहाड़ी का बड़ा हिस्सा खिसक कर नीचे नाले में जा गिरा जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। सड़क के ऊपर बने 5 और नीचे स्थित 7 परिवारों के मकान खतरे की जद में। स्थानीय लोगों का कहना है कि अभी समय रहते सुरक्षा कार्य करा दिए गए होते तो आज ये स्थिति पैदा नहीं होती।
20: उनके क्षेत्र में लगातार वर्षा हो रही है, इसी संबंध में आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया गया। तो सर प्रथम जो 7 नंबर का हमारा लैंड स्लाइडिंग एरिया है उसको आज विजिट किया गया और वहां पर उस निरीक्षण में एक्सियन पीडब्ल्यूडी और एक्सियन इरीगेशन भी मौजूद थे। एक्सियन इरीगेशन को पूर्व में भी आयुक्त महोदय के द्वारा जो है DPR उस एरिया की गठित करके तत्काल काम कराने के लिए निर्देशित किया गया है। तो उसी के क्रम में आज हम लोगों के द्वारा निरीक्षण किया गया और ये देखा गया कि वहां पर तात्कालिक तौर पर भी कुछ कार्य कराए जाने की आवश्यकता है जिसको इरिगेशन विभाग कल से ही टेकअप करेगा।
16: मौसम विभाग की तरफ से उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और कुमाऊं क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर के लिए रेड अलर्ट, देहरादून, पौड़ी, चंपावत, हरिद्वार, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली और नैनीताल जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए। पूरे उत्तराखंड में 117 सड़कें अब भी बंद हैं। बहरहाल ये मॉनसून की पहली किश्त ने जिसने पहाड़ों पर हाहाकार मचा रखा है, मौसम विभाग की माने तो अभी आसमान से आफत थमने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक बारिश अपने साथ मुश्किलें लाई है, वहां पर कैसे हालात हैं रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिंदुस्तान का ये नक्शा बता रहा है कि जुलाई के 9 दिनों में मॉनसून लगभग पूरे देश पर छा गया है, लेकिन देश के 49% जिले ऐसे हैं जहां अभी भी सामान्य से कम बारिश हुई। इनमें सबसे ज्यादा जिले यूपी बिहार के नजर आते हैं। ये नक्शा बता रहा है कि मध्य और पश्चिमी भारत में तो सामान्य से ज्यादा बारिश हो गई है, लेकिन अभी पूर्वोत्तर और पूर्वी हिस्से में ठीक से बारिश होना बाकी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में तो लगातार बारिश के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। संजौली इलाके में भूस्खलन के खतरे के चलते कई परिवार घरों से बाहर रहने को मजबूर हैं। लोगों को डर है कि कमजोर हो चुकी जमीन कब धस जाए और कब कोई बड़ा हादसा हो जाए। वहीं न्यू शिमला के राजाना गांव में भी लैंडस्लाइड ने कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है।
21: डर का माहौल है जी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे आप देख रहे हैं, आपने अभी फोटोज भी ली हैं, यहाँ पे जो सारा एरिया है अभी डर के माहौल में। हम पूरे एक साल से डर के साथ ही जी रहे हैं। लास्ट ईयर 28 जून 2025 को सुबह 4:30 बजे के करीब ये जो लैंडस्लाइड हुआ था, जिससे कि सब कुछ यहाँ पे हमारी बिल्डिंग की सीढ़ियां वगैरह सब कुछ टूट गया था। और तब से लेकर हम लोग तो डर डर के ही जी रहे हैं। बार बार हम रिक्वेस्ट करने पर भी यहाँ पे कुछ नहीं, जैसे ही बरसातें शुरू होती है इनका काम भी स्टार्ट होता है। और हमारा तो ये कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इनका बैन किया जाए इसको।
16: जम्मू कश्मीर के पुंछ में बारिश के बाद अचानक बाढ़ ने हालात बिगाड़ दिए। तेज बहाव में कई लोग फंस गए। प्रशासन और राहत टीमों ने लगभग 25 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। पानी का वेग इतना तेज था कि लोगों की जिंदगी कुछ घंटों के लिए खतरे में आ गई।
22: हो गया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि हमने पिछले साल भी यहाँ SDM साहब भी मौके पर आए थे, उन्होंने बोला था कि हम आपको क्रेडिट देंगे, अभी तक ना उन्होंने कोई क्रेडिट दिया ना इस पुल का कोई इंतजाम किया।
23: सिचुएशन यहाँ पे हुई है, इसमें तकरीबन 8 से 10 घर जो है वो इफेक्टेड हुए हैं। मैं मुकामी लोगों का और मेरी जो हमारी यहाँ पर पुलिस पोस्ट अड़ी है, इमीडिएट जो रेस्पॉन्डर है वो ये खुद थे, इन्होंने जो है वो लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया, जिसमें तकरीबन 20 से 25 सोल्स हैं और कुछ लाइव स्टॉक पोल्ट्री बोर्ड को जो है वो रेस्क्यू किया गया।
16: सहारनपुर में तो गजब हो गया, भारी बारिश की वजह से कब्रिस्तान में पानी भर गया और इसकी वजह से कई कब्रें क्षतिग्रस्त हो गई। ये गागल हेड़ी के सैयद माजरा गाँव के कब्रिस्तान की घटना है। मिट्टी धंसने से कुछ शव कफन समेत बाहर दिखाई देने लगे हैं। ग्रामीणों ने पुलिस की मौजूदगी में धार्मिक रीति रिवाजों और पूरे सम्मान के साथ शवों को दोबारा सुपुर्द खाक किया। इधर महाराष्ट्र में अब बारिश तो रुक गई है, लेकिन पुणे के एक वेस्ट प्लांट में जो हादसा हुआ था वहां भी 8 लोगों के दबे होने की आशंका है। पुणे के मोशी के वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में हादसे के 48 घंटे के बाद भी सभी लोगों का रेस्क्यू नहीं हुआ है। इस प्लांट में कूड़े के पहाड़ सिर्फ एक इमारत पर नहीं गिरा, उसने कई परिवारों की उम्मीदें भी मलबे में दबा दी। जहरीली मीथेन गैस और कूड़े का विशाल ढेर रेस्क्यू ऑपरेशन को लगातार मुश्किल बना रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर खतरे का अंदाजा था तो कूड़े के ढेर के पास इमारत क्यों बनाई गई।
2: तो बारिश हुई थी, बहुत ज्यादा बारिश हमारे शहर में हुई थी, उसकी वजह से पूरे शहर में पानी का स्तर बढ़ गया था हमेशा के जैसे हालात नहीं थे, और इसी के वजह से ये जो कचरे का मलबा था वो पूरा बिल्डिंग के ऊपर गिर गया। उसमें जो कर्मचारी थे एंटनी के वो फंस गए, लेकिन उनको निकालने का काम पूरे प्रयास पूरे जोरों शोर से और पूरे मेहनत से पहले दिन से हम सब कर रहे हैं, आज के दिन उनको निकाला जाएगा।
3: 40 घंटे हुए हैं अभी तक निकाले गए नहीं।
2: आपने पहले दिन आए तो कंडीशन देखी होती तो आपको पता चलता, क्योंकि पहले जो जीवित व्यक्ति थी उनको जिनका आवाज बाहर आ रहा था, प्रशासन को आ रहा था, उनको बाहर निकालना जरूरी था, उनको पहले दिन के रात को बाहर निकाला गया।
16: कई गंभीर सवाल हैं और सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि जो लोग फंसे हुए थे उनके तरफ से रिस्पांस आना भी बंद हो गया है। कुल 23 लोग यहाँ फंसे थे जिनमें से 14 लोगों को निकाला गया था और एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। अभी भी जो 8 लोग हैं उनकी क्या स्थिति है ये पता नहीं है।
3: पुणे स्थित मोशी में जो इंसिडेंट हुआ था इसको लेकर 45 घंटों के बाद भी NDRF टीम की रेस्क्यू जारी है। अभी हम मोशी स्थित कचरा डेपो में है, यहाँ पर देख सकते हैं कि JCB से जहाँ पर वेस्ट टू एनर्जी बिल्डिंग है जो ढही थी, देख सकते हैं कि JCB से जहाँ पर वेस्ट टू एनर्जी बिल्डिंग है जो ढही थी उसके आजू बाजू में कचरा निकालने का काम जारी है। 2 दिन पहले यही जो कचरे का ढेर है वो वेस्ट टू एनर्जी बिल्डिंग के ऊपर एक की डेथ हुई है, तो 8 लोग अभी भी मौजूद है, उनसे कोई रिस्पॉन्स नहीं है, लेकिन उनको निकालने की कोशिश NDRF द्वारा जारी है। पिछले कुछ घंटों से इस काम में तेजी आई है, JCB ज्यादा लगाए हैं, लेकिन जहां मतलब ग्राउंड फ्लोर में जो लोग अटके हुए हैं, जो मलबे में हैं, उनके रिश्तेदार यहां पे कई घंटों से हैं और उनको आस है कि हमारे जो अंदर अटके हुए लोग हैं वो शायद जिंदा हो।
16: प्रशासन कह रहा है कि बिल्डिंग के अंदर कचरे की वजह से मीथेन गैस है जिसकी वजह से पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में समस्याएं आ रही हैं। अब पूरी इमारत तोड़कर इन लोगों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है।
4: अभी जो लास्ट फेज ऑफ रेस्क्यू ऑपरेशन है वो बहुत क्रिटिकल हो रहा है,

0: रिस्की रहता है ऑपरेशन में। अभी एनडीआरएफ ने जो मल जो कचरा है जो अंदर जा रहा है उसको निकालने की पूरे प्रयास कर रहे हैं। उसके आसपास बिल्डिंग का ऑलमोस्ट 80-90% उन्होंने निकाल लिया है। उसके बाद में अभी वो बिल्डिंग खोल के मतलब उनके इक्विपमेंट्स का यूज करके वो तोड़ के अंदर जाके जहां ये लोग फंसे हुए हैं।
1: पालघर की ये तस्वीर देखिए, कैसे घर के नीचे सैलाब के बाद पूरा परिवार छत पर है, जिसमें महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं, जिनके चेहरे पर खौफ आसानी से देखा जा सकता है। आज तक ब्यूरो। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

0: यूपी में 27 का घमासान तेज। मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पार्टी पर बोला हमला का इनका इतिहास, राम भक्तों के खून से सना भारत की विरासत और आस्था को किया अपमानित। दतिया से टिकट कटने के बाद आज तक से बोले बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा राजनीति में ये चलता है, पार्टी का फैसला सही, मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिले। आमिर खान की तीसरी शादी पर भड़के नीतीश राणे, बताया लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर, युवाओं से की आमिर की फिल्में सोच समझकर देखने की अपील। वियतनाम में भारतीय पर्यटकों से भरी नाव पलटी, अब तक 15 लोगों की मौत, फुकोक द्वीप के पास हादसा, राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने जताई संवेदना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जारी किया आदेश, कहा अगर मेरी हत्या हुई तो ईरान को मिटा दें, जेडी विंस को सौंपी फैसला लेने की जिम्मेदारी। अब बात करते हैं यूपी में चुनाव से पहले छिड़े धर्म युद्ध की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर चढ़ावा चोरी ने पूरी तरह से सियासी रंग ले लिया है, जिसके बाद अब योगी आदित्यनाथ विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को पिछला इतिहास गिना रहे हैं, तो वहीं विपक्ष राम मंदिर के मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा।
1: यूपी में राम मंदिर से शुरू हुआ घमासान अब धर्म की राजनीति तक पहुंच गया है। योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी का इतिहास खंगाल रहे हैं।
2: मंदिरों पे कब्जा करवाते थे लोग, मंदिरों पे कब्जा करवाते थे, और अब कब्जा नहीं, अब उन मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है, और पहले मंदिरों के नाम पर आने वाला पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर खर्च हो जाता था। यही तो करती थी समाजवादी पार्टी।
1: कल योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी में इफ्तार का जिक्र करके समाजवादी पार्टी को घेरा था, तो आज विपक्ष योगी पर गुमराह करने का आरोप लगा रहा है।
3: कैसे नमाज पढ़ सकता है कोई आदमी वहां? ये एजेंडा जो है ये तमाम चीजों से ध्यान भटकाने का है। कैसे नमाज पढ़ सकता है? हम तो कह रहे हैं कि आप सड़क पे नमाज ना पढ़े, चूंकि सड़क सरकार की और सरकार मना कर रही है तो आपकी नमाज जायज नहीं होगी। मैं तो बार बार बोलता हूं, जिस प्रॉपर्टी का ओनर अगर उसको इजाजत नहीं देता तो वहां नमाज ही नहीं हो सकती।
1: 2027 के चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा अब थमता नहीं दिख रहा है। इस बीच राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के कलंक पर अब समिति से जुड़े लोग दुख जता रहे हैं।
4: राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है, व्यवस्था में सुधार होगा, मुझे पूरा विश्वास है।
1: एक और ताबड़तोड़ जांच और एक्शन जारी है, तो वहीं राम भक्तों का भरोसा जीतने की कोशिश भी की जा रही है। चढ़ावा विवाद के बीच राम मंदिर ट्रस्ट जल्द ही सीईओ की नियुक्ति करने जा रहा है, जिसके लिए समिति का गठन भी कर दिया गया है। सीईओ को मंदिर के प्रशासन और वित्तीय प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जिसका उद्देश्य मंदिर के संचालन को अधिक पेशेवर, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। इसके साथ ही सीईओ चढ़ावे के प्रबंधन, श्रद्धालुओं की सुविधाओं, आधारभूत

0: मूलभूत ढांचे के रखरखाव और प्रशासनिक व्यवस्था की भी निगरानी रखेंगे। साफ है कि एक ओर सरकार बार बार भरोसा जताने की कोशिश कर रही है कि वो भक्तों के साथ धोखा करने वालों को बख्शेगी नहीं, वहीं विपक्ष सरकार की पूरी जांच को कटघरे में खड़ा कर रही है। आज तक ब्यूरो। राम मंदिर जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं और इस बीच में मंदिर प्रशासन के सामने चुनौती सिस्टम को सुधारने की भी है, जिस पर लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। चढ़ावा चोरी के गंभीर आरोपों की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे सामने आते जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से अब सामने आया है कि मंदिर में काम करने वाले कुछ पूर्व सैनिकों पर कुछ भी बोलने पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसके लिए बकायदा सभी पूर्व सैनिकों को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा गया था। कहा गया था कि कोई कुछ भी पूछे बोलना नहीं है। जिस मैसेज पर सवाल उठ रहे हैं उस मैसेज का स्क्रीनशॉट भी आज तक के पास मौजूद है। इसे साफ है कि चढ़ावा चोरी के खुलासे के बाद मामले को छिपाने की कोशिश की गई। इधर अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के दो और आरोपियों को पुलिस जल्द ही रिमांड पर लेगी। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव से पुलिस पूछताछ करेगी। टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई गई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र की 7 दिनों की कस्टडी मांगी है।
1: अयोध्या पुलिस ने अब रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में 7 दिन की अर्जी डाली है। इन दोनों की पुलिस कस्टडी रिमांड बेहद अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि जहां रामशंकर यादव के पास डोनेशन बॉक्स की चाबियां होती थी, वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद उस कमरे के इंचार्ज थे जहां से चढ़ावा चोरी हो रहा था। ऐसे में इन दोनों से की गई पूछताछ से पुलिस पता लगाने की कोशिश में लगी है कि आखिर यह चोरी हो रही थी तो उनके संज्ञान में क्यों नहीं आई, पकड़ी भी गई तो क्यों उन पर कार्रवाई नहीं हुई।
0: इस बीच राम मंदिर में चढ़ावे की गणना के लिए नया टाइम टेबल लागू कर दिया गया है। पहले 2 पालियों में होने वाली गिनती अब एक ही शिफ्ट में की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चढ़ावे की गिनती होगी। नई समय सारणी लागू होने के बाद कुछ गणना कर्मियों ने काम छोड़ दिया है। उधर राम मंदिर में VIP पास की प्रक्रिया भी रोकी गई है क्योंकि जिन लोगों की ID का इस्तेमाल इस काम के लिए किया गया था उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में जारी घटनाक्रम के बीच गोपाल राव ने निर्मोही अखाड़ा पहुंचकर ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास से मुलाकात की। दोनों के बीच बंद कमरे में काफी देर तक एकांत में चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में ट्रस्ट से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। इस मुलाकात में ट्रस्ट के भीतर चल रहे विवादों के बीच डैमेज कंट्रोल की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हालांकि बैठक में इस चर्चा के संबंध में आधिकारिक रूप से कोई जानकारी साझा नहीं की गई। अयोध्या से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। यूपी में राम मंदिर पर घमासान जारी तो मध्य प्रदेश में लड़ाई बीजेपी बनाम बीजेपी की दिख रही है, जहां दतिया में हो रहे उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा और इसके बाद से कार्यकर्ता भड़क गए।
2: दतिया में टिकट को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा ऐसा फूटा कि वो अपनी ही सरकार की पुलिस से भिड़ गए। मध्य प्रदेश के दतिया में 30 जुलाई को उपचुनाव है। बीजेपी ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। दतिया से आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाने की घोषणा होते ही नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। नेशनल हाईवे पर जाम लग गया, घंटों तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही, पुलिस पर पथराव हुए और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए।
3: मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए, पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं, ऐसा कोई कार्य न करे।
2: आखिर दतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट क्यों कटा? बताया जा रहा है कि दिल्ली के स्तर पर कराए गए सर्वे में नरोत्तम मिश्रा की स्थिति उम्मीद के मुताबिक मजबूत नहीं पाई गई। 2023 में बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को टिकट दिया था लेकिन वो विधानसभा का चुनाव हार गए। केंद्रीय नेतृत्व ने स्थानीय संगठन और भविष्य की राजनीति स्वीकारता का भी आकलन कराया। इसमें नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी फिट बैठे, जिसके बाद उन्हें दतिया से टिकट दिया गया। बीजेपी ने एक ब्राह्मण नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर दूसरे ब्राह्मण आशुतोष तिवारी को टिकट दिया है। इससे जातिगत और सामाजिक संतुलन बरकरार है। उधर पार्टी का संदेश साफ है कि बीजेपी हाईकमान फिलहाल झुकने के मूड में नहीं है।
4: पार्टी इस प्रकार के सोच समझ के निर्णय लेती है। से हम डंके की चोट जीतेंगे और नरोत्तम जी भी काम करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं नरोत्तम जी को जानता हूँ व्यक्ति।
5: नरोत्तम जी मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता, तो उनको कट्टू साइज तो करनी था, कर दिया।
2: दतिया में अब लड़ाई बीजेपी के सामने अपनों से है, जहां अभी तक कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। भोपाल से रवीश पाल के साथ आज तक ब्यूरो।
6: इस पूरे मामले में हमारे सहयोगी रवीश पाल ने खास बातचीत की नरोत्तम मिश्रा से।
7: फैसले को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि मान के तो चला जा रहा था कि आप ही इकलौते उम्मीदवार हैं वहां से भाजपा के।
8: पार्टी का फैसला जो होता है वो ठीक ही होता है, उसको अच्छे रूप में ही लेना चाहिए, खराब रूप में नहीं लेना चाहिए, ऐसा मेरी मान्यता है।
7: आप के तो सकारात्मक भाव है, लेकिन आपके जो समर्थक थे जो महीनों से इंतजार कर रहे थे कि जो प्रकरण आया राजन भारती का, मामला कोर्ट में गया, फिर वहां से विधायक की गई, सदस्यता गई, सबको उम्मीद थी, लेकिन जब ये फैसला आया तो उनका गुस्सा साफ तौर पर सामने मिला। हाईवे जाम हो गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ हो गई, पथराव हो गया।
8: हाँ, छड़े का आवेश था, मैंने कल भी फिर उनसे निवेदन किया था, आज भी किया मैंने। जाम वाम की स्थिति नहीं होना चाहिए। कार्यकर्ता वो पेट्रोल डाल रहे थे, वो मुझे दिखाए विजुअल फुटेज, पट्टी का तेल डालते हुए का। धैर्य और संयम का समय यही होता है, यही परीक्षा की घड़ी होती है।
7: आप भोपाल जा रहे हैं तो भोपाल में कोई कार्यक्रम आला नेताओं से आपकी मुलाकात है क्या, प्रदेश अध्यक्ष से या मुख्यमंत्री से या किसी से?
8: अभी तो नहीं, अभी तो बताऊंगा निश्चित। आप
7: आशुतोष तिवारी को आशीर्वाद रहेगा आपका?
8: सभी को क्यों नहीं रहेगा, कैसी बात कर रहे हैं।
7: हालांकि कैलाश जी ने कहा है कि वो बहुत अच्छे से जानते हैं आपको, उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ नरोत्तम जी को, पार्टी के फैसले को हमेशा से स्वीकार करते हैं और हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहे।
8: बिल्कुल सही कहा, मैं सहमत हूँ।
7: आपके लिए भावुक क्षण है?
8: नहीं, राजनीति में ये सब चलने वाली चीज है।
7: लेकिन एक आखिरी सवाल नरोत्तम जी, चुनाव हुआ 2023 का, फिर लोकसभा आया, फिर राज्यसभा चुनाव आए, फिर कई दूसरी जिम्मेदारियां भी थी, हालांकि न्यू ज्वाइनिंग टोली का आपको संयोजक बनाया गया था, तब काफी लोग जुड़ के आए थे कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में, अब तो भाजपा में
8: लगातार लोकसभा राज्यसभा अध्यक्ष जो भी आप बात कर रहे हैं, ये अंतर्मुखी होकर स्वयं के चिंतन के लिए पार्टी अवसर दे रही है, हमें चिंतन करना भी चाहिए, अच्छी बात है।
6: बांकीपुर उपचुनाव में टिकट को लेकर सियासत तेज है, जहां बीजेपी ने एक दिन के अंदर अपने प्रत्याशी को बदल दिया, जिस पर अब विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है।
9: बांकीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी की ओर से पहले अभिषेक कुमार का नामांकन हुआ, फिर एक दिन बाद ही अचानक अभिषेक ने नामांकन वापस ले लिया और नीरज कुमार को नया उम्मीदवार घोषित किया गया। जिस अभिषेक को सामान्य कार्यकर्ता बताकर बीजेपी ने नितिन नवीन वाली सीट के लिए प्रत्याशी बनाया, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी को अपना प्रत्याशी बदलना पड़ा?
10: पौराणिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं, मैं कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा।
9: अब सवाल ये कि जिस पारिवारिक मामले का हवाला देकर अभिषेक ने नामांकन वापस लिया, वही परिवार एक दिन पहले अभिषेक को आशीर्वाद देते हुए भावुक हो गया था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अभिषेक बंटी के पिता रविंद्र प्रसाद सिन्हा चारा घोटाले में दोषी रहे। वो मगध केमिकल्स कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी में मैनेजर थे। इस कंपनी पर चारा घोटाले में फर्जी बिल के आधार पर सप्लायर बनाने का आरोप था। फर्जी बिलों के जरिए सरकारी खजाने से पैसा निकालने का मामला रविंद्र प्रसाद सिन्हा पर चला था। सूत्रों के मुताबिक दूसरी बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि अभिषेक सिन्हा बंटी ने नामांकन पत्र में गलत जानकारी भी दी थी, उन्होंने पढ़ाई से जुड़ी कुछ जानकारियां छिपाई थी, ऐसे में भी अभिषेक बंटी का नॉमिनेशन रद्द होने की आशंका थी। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी ने कोई जोखिम नहीं लेते हुए अभिषेक बंटी का नामांकन वापस कराने का फैसला लिया, यानी पार्टी को डर था कि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लालू परिवार को घेरते रहे हैं, उसी भ्रष्टाचार में अभिषेक के पिता आरोपी हैं। लेकिन अब बीजेपी के नए प्रत्याशी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नीरज कुमार सिन्हा के उम्मीदवार घोषित होने के बाद बीजेपी ने उनका बायोडेटा जारी किया, इसमें उनके जन्म तिथि 1 जुलाई 1994 बताई गई। इसी बायोडेटा में लिखा गया कि उन्होंने 2006 में बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता लेकर अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की, यानी बीजेपी ज्वाइन करने के वक्त उनकी उम्र सिर्फ 12 साल थी, जबकि किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने की न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल होती है। इसके कुछ समय बाद बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा का संशोधित बायोडेटा जारी किया। नए बायोडेटा में उनकी जन्म तिथि पहले की तरह 1 जुलाई 1994 ही रखी गई, लेकिन 2006 में बीजेपी की सदस्यता लेने का उल्लेख हटा दिया गया। संशोधित बायोडेटा में ये नहीं बताया गया कि उन्होंने पार्टी की सदस्यता कब ली। बीजेपी ने ये भी नहीं बताया कि पहले और दूसरे बायोडेटा में ये बदलाव क्यों किया गया, लेकिन दो दिन के अंदर हुए इस घटनाक्रम ने विपक्ष को घेरने का एक मौका जरूर दे दिया।
11: ये पहली बार हुआ है कि नामांकन करने के बाद कोई बीजेपी का प्रत्याशी नाम वापस ले रहा हो। विपक्ष के सामने बीजेपी के उम्मीदवार टिक ही नहीं पा रहे हैं। अब जिस दूसरे उम्मीदवार नीरज सिन्हा को बनाया है उनके ऊपर भी विवाद है।
12: विपक्ष इस बात के लिए चिंता करे कि नीचे से फर्स्ट कौन करिएगा। मुकाबला में तो खैर नहीं है, मुकाबला में बहुत ही अंतराल है।
9: बहरहाल बीजेपी की इस पारंपरिक सीट पर प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, जहां बीजेपी के फैसले को और बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी है। शशि भूषण कुमार के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक।
6: पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस में तकरार देखने को मिल रहे हैं, जहां चन्नी की बगावती तेवर आलाकमान की टेंशन बढ़ा रहे हैं। भूपेश बघेल को पंजाब कांग्रेस की नाराजगी दूर करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन अभी भी तकरार खत्म होती नहीं दिख रही।
13: ये तस्वीरें पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान को खत्म करने की हैं, जहां कांग्रेस के पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने चन्नी गुट के नेताओं के साथ करीब 2 घंटे लंबी बैठक की। बैठक खत्म होने के बाद बघेल ने किसी भी तरह की नाराजगी से इनकार किया।
14: हमारे सीनियर लीडर हैं, उन्होंने आमंत्रित किया और राणा साहब के हाथ में अनेक बार आया हूं, भोजन किया हूं। तो हमारा राणा साहब से तो अलग ही इस तरह का संबंध है, प्रेम का, भाई का संबंध है, तो उन्होंने आखिरी में मुझे आमंत्रित किया।
13: भले ही बघेल सब कुछ ठीक होने की बात कर रहे हो, लेकिन सूत्रों की माने तो बैठक में कुछ खास नतीजा नहीं निकला।
15: जो अंदर बात हुई है वो भावना जो है वो सबके सामने रख दी गई है, और उस भावना की कदर करते हुए बोला भी बाहर इसके अलावा कोई बात नहीं करनी। भी जो लीडरशिप है उसको हमने अपनी ए टू जेड बड़ी क्लियरली एक एक बात, एक एक रीजन लॉजिक के साथ आगे रख दिया है, और उम्मीद करते हैं भी वो जो बात है वो बड़ी क्लियरली बघेल साहब हाईकमांड तक।
13: दरअसल कांग्रेस में चन्नी गुट राजा वर्डिंग को अध्यक्ष बनाए जाने से नाराज चल रहा है, जिसे लेकर चन्नी गुट पहले बैठक कर चुका है। हालात बिगड़ते देख बघेल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज हुई बैठक में भी राजा वर्डिंग को लेकर नेताओं से राय ली गई, लेकिन इस पर आखिरी मुहर दिल्ली से लगनी है। पिछले चुनाव से पहले कांग्रेस की अंदरूनी कलह ने उसे सत्ता से बाहर कर दिया था, ऐसे में एक बार फिर बगावत ने आलाकमान की टेंशन बढ़ा दी है।
16: पार्टी सोर्सेज जो बताते हैं कि अंदर ये वॉइस उठाई गई कि राजा वड़िंग की प्रधानगी मौजूद नहीं, हमें मंजूर नहीं है। और इसके अलावा जब सुखजिंदर रंधावा बाहर आए तो उन्होंने बोला कि हमने साफ डिमांड रखी है, पहली डिमांड ये है कि जो है जो 2027 का इलेक्शन है वो कांग्रेस जीते, और लड़ाई ऐसा लीडर लड़े जो कॉम्प्रोमाइज ना हो। हालांकि किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अब हाईकमान के पाले में गेंद जाएगी जिस तरह की ये सिचुएशन लग रही है। तो पंजाब कांग्रेस ने जिसने भूपेश बघेल ने एक अटेम्प्ट किया था कि बैठ के डेडलॉक टूटे, तो ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि उन्होंने बोला एप्रीहेंशंस अब टेकअप की जाएंगी। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन मुजीद के साथ असीम बस्सी, आज तक।
6: बाद मानसून की मार की मानसून भले ही देर से आया हो, लेकिन आने के साथ ही तबाही मचा रखी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है।
17: आसमान से बरसती आफत और जमीन पर जिंदगी बचाने की जद्दोजहद, कहीं पहाड़ तड़प रहे हैं तो कहीं पानी जिंदगी को अपनी चपेट में ले रहा है। मानसून की बारिश अब सिर्फ मौसम नहीं रही, कई इलाकों में ये डर दहशत और तबाही की वजह बन चुकी है। हिमाचल से उत्तराखंड तक बारिश ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया है कि लोग घर छोड़ने, रास्ते छोड़ने और जिंदगी बचाने को मजबूर हैं। उत्तराखंड में भी बारिश लगातार आफत बनकर बरस रही है। टिहरी गढ़वाल में लगातार तीसरे दिन बारिश जारी है। बारिश के चलते टिहरी झील का जलस्तर बढ़ रहा है। नदी किनारे रहने वाले लोगों में डर का माहौल लगातार बना हुआ है।
18: और काफी बारिश से अस्त व्यस्त जीवन हो रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं घनसाली में काफी बारिश लगातार हो रही है।
19: तो नदी के किनारे लोग रह रहे हैं, सभी घरों के जो है नोटिस चस्पा कर दिया और समय समय पर जैसे बारिश होती है सायरन भी जो है प्रशासन द्वारा जो है बजाया जाता है और अपने अधिकारी भी कर्मचारी भी लगाए हुए हैं कि जो नदी किनारे अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अगर पानी बढ़ता है तो अन्यत्र जो है अपनी व्यवस्था करें। तो लोग सतर्क हैं और क्योंकि मेरा घर भी नदी के किनारे है हमें भी नोटिस गवर्नमेंट से आया है।
20: प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। दो दिन की छुट्टी के बाद स्कूल खुले लेकिन बारिश के बीच बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों की चिंता भी सामने आई। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे हालात में एहतियात और ज्यादा जरूरी है।
21: बद्रीनाथ धाम में बीते तीन दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। जहां अब मानसून पहाड़ों में पैर पसार रहा है वहीं बद्रीनाथ धाम में लगातार बारिश हो रही है। तो बद्रीनाथ धाम में बहने वाली अलकनंदा में अपना विकराल रूप धीरे धीरे जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जो यहाँ पे नरसिंह शिला बारह शिला है वो लगातार पानी में डूबती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी मानसून के दौरान ये पूरी शिला बद्रीनाथ धाम की जो अलकनंदा है उसमें डूब जाती है लेकिन अब धीरे धीरे उफान पर अलकनंदा बह रही है। पूरा पानी बढ़ता जा रहा है, पल पल बारिश के साथ ही जो पानी है जलस्तर है वो बढ़ रहा है। वो हालांकि मार्ग बाधित होने की जो आशंका है वो बनी हुई है क्योंकि मानसून का दौर है, बारिश तेज होती है। तो अलग अलग जगहों पे खासकर पीपल कोठी के भनेर पानी में और जो गुलाब कोठी है हेलंग के समीप वहां पे लगातार भूस्खलन का दौर बन रहा है।
20: चमोली के थराली क्षेत्र में बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार हो रही बारिश के बाद घाघली गदेरे में भारी मात्रा में मलबा आ गया जिसके चलते थराली देवाल और थराली कुराड़ मार्ग प्रभावित हुए। एक रास्ता खोल दिया गया है लेकिन कई इलाकों में अब भी लोगों की मुश्किलें बनी हुई हैं। उफनते नाले के किनारे बसे राडीबगढ़ गांव के लोगों ने पूरी रात दहशत में गुजारी। ग्रामीणों का आरोप है कि सुरक्षा इंतजामों की कमी के कारण हर बारिश में खतरा बढ़ जाता है। चमोली में पहले भी बादल फटने और भारी मलबे की घटनाएं सामने आ चुकी हैं और इस बार मॉनसून के शुरुआत में हालात डराने लगे। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में लगातार बारिश जारी है। तीन दिनों से हो रही बारिश का असर अब अलकनंदा नदी पर दिखाई दे रहा है। खतरा लगातार बना हुआ है, नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और अलकनंदा उफान पर बह रही है। हालांकि खराब मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था कायम, बारिश के बीच भी यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। यात्रा मार्ग फिलहाल सुचारू है लेकिन पहाड़ों के बदलते मौसम के बीच खतरा लगातार बना हुआ है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बारिश ने चार धाम यात्रा की रफ्तार रोक दी। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर खांकुरा के पास पहाड़ दरक गया। भारी भरकम बोल्डर सड़क पर आ गिरे और देखते ही देखते हाईवे बंद हो गया। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। कई यात्री घंटों तक रास्ता खुलने का इंतजार करते रहे। बारिश के मौसम में पहाड़ों की यात्रा एक बार फिर चुनौती बन गई है। नैनीताल में लगातार लगभग 8 घंटे हुए मूसलाधार बारिश के बाद 7 नंबर स्थित आलमग कॉटेज और जिला पंचायत रोड क्षेत्र में भूधसाव तेज हो गया। पहाड़ी का बड़ा हिस्सा खिसक कर नीचे नाले में जा गिरा जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। सड़क के ऊपर बने 5 और नीचे स्थित 7 परिवारों के मकान खतरे की जद में। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते सुरक्षा कार्य करा दिए गए होते तो आज ये स्थिति पैदा नहीं होती।
22: इनके क्षेत्र में लगातार वर्षा हो रही है, इसी संबंध में आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया गया। तो सर्वप्रथम जो 7 नंबर का हमारा लैंड स्लाइडिंग एरिया है उसको आज विजिट किया गया और वहाँ पर उस निरीक्षण में एक्सियन पीडब्ल्यूडी और एक्सियन इरिगेशन भी मौजूद थे। एक्सियन इरिगेशन को पूर्व में भी आयुक्त महोदय के द्वारा जो है DPR उस एरिया की गठित करके तत्काल काम कराने के लिए निर्देशित किया गया है। तो उसी के क्रम में आज हम लोगों के द्वारा निरीक्षण किया गया और ये देखा गया कि वहाँ पर तात्कालिक तौर पर भी कुछ कार्य कराए जाने की आवश्यकता है जिसको इरिगेशन विभाग कल से ही टेकअप करेगा।
20: मौसम विभाग की तरफ से उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और कुमाऊं क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर के लिए रेड अलर्ट है। देहरादून, पौड़ी, चंपावत, हरिद्वार, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली और नैनीताल जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए। पूरे उत्तराखंड में 117 सड़कें अब भी बंद हैं। बहरहाल ये मानसून की पहली किश्त ने जिसने पहाड़ों पर हाहाकार मचा रखा है मौसम विभाग की माने तो अभी आसमान से आफत थमने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
6: महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक बारिश अपने साथ मुश्किलें लाई है, वहां पर कैसे हालात हैं रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
20: हिंदुस्तान का यह नक्शा बता रहा है कि जुलाई के 9 दिनों में मॉनसून लगभग पूरे देश पर छा गया है, लेकिन देश के 49% जिले ऐसे हैं जहां अभी भी सामान्य से कम बारिश हुई है। इनमें सबसे ज्यादा जिले यूपी बिहार के नजर आते हैं। ये नक्शा बता रहा है कि मध्य और पश्चिमी भारत में तो सामान्य से ज्यादा बारिश हो गई है, लेकिन अभी पूर्वोत्तर और पूर्वी हिस्से में ठीक से बारिश होना बाकी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में तो लगातार बारिश के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। संजौली इलाके में भूस्खलन के खतरे के चलते कई परिवार घरों से बाहर रहने को मजबूर हैं। लोगों को डर है कि कमजोर हो चुकी जमीन कब धंस जाए और कब कोई बड़ा हादसा हो जाए। वहीं न्यू शिमला के राजाना गांव में भी लैंडस्लाइड ने कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है।
0: डर का माहौल है जी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे आप देख रहे हैं, आपने अभी फोटोज भी ली है, यहाँ पे जो सारा एरिया है अभी डर के माहौल में। हम पूरे एक साल से डर के साथ ही जी रहे हैं। लास्ट ईयर 28 जून 2025 को सुबह 4:30 बजे के करीब ये जो लैंडस्लाइड हुआ था, जिससे कि सब कुछ यहाँ पे हमारी बिल्डिंग की सीढ़ियां वगैरह सब कुछ टूट गया था। और तब से लेकर हम लोग तो डर डर के ही जी रहे हैं। बार बार हम रिक्वेस्ट करने पर भी यहाँ पे कुछ नहीं, जैसे ही बरसातें शुरू होती है इनका काम भी स्टार्ट होता है। और हमारा तो ये कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इनका बैन किया जाए इसको।
20: जम्मू कश्मीर के पुंछ में बारिश के बाद अचानक बाढ़ ने हालात बिगाड़ दिए। तेज बहाव में कई लोग फंस गए। प्रशासन और राहत टीमों ने लगभग 25 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। पानी का वेग इतना तेज था कि लोगों की जिंदगी कुछ घंटों के लिए खतरे में आ गई।
1: चाव हो गया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि हमने पिछले साल भी यहाँ एसडीएम साहब भी मौके पर आए थे, उन्होंने बोला था कि हम आपको क्रेडिट देंगे, अभी तक ना उन्होंने कोई क्रेडिट दिया ना इस पुल का कोई इंतजाम किया।
3: सिचुएशन यहाँ पे हुई है, इसमें तकरीबन 8 से 10 घर जो है वो इफेक्टेड हुए हैं। मैं मुकामी लोगों का और मेरी जो हमारी यहाँ पर पुलिस पोस्ट अड़ी है, इमीडिएट जो रेस्पॉन्डर है वो ये खुद थे। इन्होंने जो है वो लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया, जिसमें तकरीबन 20 से 25 सोल्स हैं और कुछ लाइव स्टॉक पोल्ट्री बोर्ड को जो है वो रेस्क्यू किया गया।
20: सहारनपुर में तो गजब हो गया, भारी बारिश की वजह से कब्रिस्तान में पानी भर गया और इसकी वजह से कई कब्रें क्षतिग्रस्त हो गई। ये गागल हेड़ी के सैयद माजरा गाँव के कब्रिस्तान की घटना है। मिट्टी धंसने से कुछ शव कफन समेत बाहर दिखाई देने लगे हैं। ग्रामीणों ने पुलिस की मौजूदगी में धार्मिक रीति रिवाजों और पूरे सम्मान के साथ शवों को दोबारा सुपुर्द खाक किया। इधर महाराष्ट्र में अब बारिश तो रुक गई है, लेकिन पुणे के एक वेस्ट प्लांट में जो हादसा हुआ था वहां भी 8 लोगों के दबे होने की आशंका है। पुणे के मोशी के वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में हादसे के 48 घंटे के बाद भी सभी लोगों का रेस्क्यू नहीं हुआ है। इस प्लांट में कूड़े का पहाड़ सिर्फ एक इमारत पर नहीं गिरा, उसने कई परिवारों की उम्मीदें भी मलबे में दबा दी। जहरीली मीथेन गैस और कूड़े का विशाल ढेर रेस्क्यू ऑपरेशन को लगातार मुश्किल बना रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर खतरे का अंदाजा था तो कूड़े के ढेर के पास इमारत क्यों बनाई गई।
23: तो बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश हमारे शहर में हुई थी, उसकी वजह से पूरे शहर में पानी का स्तर बढ़ गया था, हमेशा के जैसे हालात नहीं थे। और इसी के वजह से ये जो कचरे का मलबा था वो पूरा बिल्डिंग के ऊपर गिर गया, उसमें जो कर्मचारी थे एंटनी के वो फंस गए, लेकिन उनको निकालने का काम पूरे प्रयास पूरे जोरों शोर से और पूरे मेहनत से पहले दिन से हम सब कर रहे हैं, आज के दिन उनको निकाला जाएगा।
24: 40 घंटे हुए हैं अभी तक निकाले गए नहीं।
23: आपने पहले दिन आए तो कंडीशन देखी होती तो आपको पता चलता, क्योंकि पहले जो जीवित व्यक्ति थी उनको, जिनका आवाज बाहर आ रहा था, प्रशासन को आ रहा था, उनको बाहर निकालना जरूरी था, उनको पहले दिन के रात को बाहर निकाला गया।
20: कई गंभीर सवाल हैं और सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि जो लोग फंसे हुए थे उनके तरफ से रिस्पॉन्स आना भी बंद हो गया है। कुल 23 लोग यहाँ फंसे थे, जिनमें से 14 लोगों को निकाला गया था और एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। अभी भी जो 8 लोग हैं उनकी क्या स्थिति है ये पता नहीं है।
24: पुणे स्थित मोशी में जो इंसिडेंट हुआ था इसको लेकर 45 घंटों के बाद भी एनडीआरएफ टीम की रेस्क्यू जारी है। अभी हम मोशी स्थित कचरा डेपो में है, यहाँ पर देख सकते हैं कि जेसीबी से जहाँ पर वेस्ट टू एनर्जी बिल्डिंग है जो ढही थी उसके आजू बाजू में कचरा निकालने का काम जारी है। दो दिन पहले यही जो कचरे का ढेर है वो वेस्ट टू एनर्जी बिल्डिंग के ऊपर गिरने से बिल्डिंग ढही थी और उसमें 23 लोग अटके हुए थे, उसमें से 14 लोगों को निकाल लिया गया है और एक की डेथ हुई है, तो 8 लोग अभी भी मौजूद है, उनसे कोई रिस्पॉन्स नहीं है, लेकिन उनको निकालने की कोशिश एनडीआरएफ द्वारा जारी है। पिछले कुछ घंटों से इस काम में तेजी आई है, जेसीबी ज्यादा लगाए हैं, लेकिन जहां मतलब ग्राउंड फ्लोर में जो लोग अटके हुए हैं, जो मलबे में हैं, उनके रिश्तेदार यहां पे कई घंटों से हैं और उनको आस है कि हमारे जो अंदर अटके हुए लोग हैं वो शायद जिंदा हो।
20: प्रशासन कह रहा है कि बिल्डिंग के अंदर कचरे की वजह से मीथेन गैस है, जिसकी वजह से पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में समस्याएं आ रही हैं। अब पूरी इमारत तोड़कर इन लोगों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है।
2: अभी जो लास्ट फेज ऑफ रेस्क्यू ऑपरेशन है वो बहुत क्रिटिकल हो रहा है। जैसे आप देख रहे हो कि ये कैंटिलीवर फॉल है, तो एनडीआरएफ के कहने के मुताबिक ये जहाँ कैंटिलीवर फॉल होता है बिल्डिंग का, वो बहुत क्रिटिकल और बहुत रिस्की रहता है ऑपरेशन में। अभी एनडीआरएफ ने जो कचरा है जो अंदर जा रहा है उसको निकालने की पूरे प्रयास कर रहे हैं। उसके आसपास बिल्डिंग का ऑलमोस्ट 80-90% उन्होंने निकाल लिया है। उसके बाद में अभी वो बिल्डिंग खोल के मतलब उनके इक्विपमेंट्स का यूज करके वो तोड़ के अंदर जाके जहाँ ये लोग फंसे हुए हैं।
20: पालघर की ये तस्वीर देखिए, कैसे घर के नीचे सैलाब के बाद पूरा परिवार छत पर है, जिसमें महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं, जिनके चेहरे पर खौफ आसानी से देखा जा सकता है। आज तक ब्यूरो
6: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

0: यूपी में 27 का घमासान तेज। मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पार्टी पर बोला हमला का इनका इतिहास, राम भक्तों के खून से सना भारत की विरासत और आस्था को किया अपमानित। दतिया से टिकट कटने के बाद आज तक से बोले बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा राजनीति में ये चलता है, पार्टी का फैसला सही, मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिले। आमिर खान की तीसरी शादी पर भड़के नीतीश राणे, बताया लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर, युवाओं से की आमिर की फिल्में सोच समझकर देखने की अपील। वियतनाम में भारतीय पर्यटकों से भरी नाव पलटी, अब तक 15 लोगों की मौत, फुकोक द्वीप के पास हादसा, राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने जताई संवेदना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जारी किया आदेश, कहा अगर मेरी हत्या हुई तो ईरान को मिटा दें, जेडी विंस को सौंपी फैसला लेने की जिम्मेदारी। अब बात करते हैं यूपी में चुनाव से पहले छिड़े धर्म युद्ध की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर चढ़ावा चोरी ने पूरी तरह से सियासी रंग ले लिया है, जिसके बाद अब योगी आदित्यनाथ विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को पिछला इतिहास गिना रहे हैं, तो वहीं विपक्ष राम मंदिर के मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा।
1: यूपी में राम मंदिर से शुरू हुआ घमासान अब धर्म की राजनीति तक पहुंच गया है। योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी का इतिहास खंगाल रहे हैं।
2: मंदिरों पे कब्जा करवाते थे लोग, मंदिरों पे कब्जा करवाते थे, और अब कब्जा नहीं, अब उन मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है, और पहले मंदिरों के नाम पर आने वाला पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर खर्च हो जाता था। यही तो करती थी समाजवादी पार्टी।
1: कल योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी में इफ्तार का जिक्र करके समाजवादी पार्टी को घेरा था, तो आज विपक्ष योगी पर गुमराह करने का आरोप लगा रहा है।
3: कैसे नमाज पढ़ सकता है कोई आदमी वहां? ये एजेंडा जो है ये तमाम चीजों से ध्यान भटकाने का है। कैसे नमाज पढ़ सकता है? हम तो कह रहे कि आप सड़क पर नमाज ना पढ़े, चूंकि सड़क सरकार की और सरकार मना कर रही है तो आपकी नमाज जायज नहीं होगी। मैं तो बार बार बोलता हूं, जिस प्रॉपर्टी का ओनर अगर उसको इजाजत नहीं देता तो वहां नमाज ही नहीं हो सकती।
1: 2027 के चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा अब थमता नहीं दिख रहा है। इस बीच राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के कलंक पर अब समिति से जुड़े लोग दुख जता रहे हैं।
4: राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है, व्यवस्था में सुधार होगा, मुझे पूरा विश्वास है।
1: एक ओर ताबड़तोड़ जांच और एक्शन जारी है, तो वहीं राम भक्तों का भरोसा जीतने की कोशिश भी की जा रही है। चढ़ावा विवाद के बीच राम मंदिर ट्रस्ट जल्द ही सीईओ की नियुक्ति करने जा रहा है, जिसके लिए समिति का गठन भी कर दिया गया है। सीईओ को मंदिर के प्रशासन और वित्तीय प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जिसका उद्देश्य मंदिर के संचालन को अधिक पेशेवर, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। इसके साथ ही सीईओ चढ़ावे के प्रबंधन, श्रद्धालुओं की सुविधाओं, आधारभूत ढांचे के रखरखाव और प्रशासनिक व्यवस्था की भी निगरानी रखेंगे। साफ है कि एक ओर सरकार बार बार भरोसा जताने की कोशिश कर रही है कि वो भक्तों के साथ धोखा करने वालों को बख्शेगी नहीं, वहीं विपक्ष सरकार की पूरी जांच को कटघरे में खड़ा कर रही है। आज तक ब्यूरो।
0: राम मंदिर जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, और इस बीच में मंदिर प्रशासन के सामने चुनौती सिस्टम को सुधारने की भी है, जिस पर लगातार फैसले लिए जा रहे हैं।
1: चढ़ावा चोरी के गंभीर आरोपों की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे सामने आते जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से अब सामने आया है कि मंदिर में काम करने वाले कुछ पूर्व सैनिकों पर कुछ भी बोलने पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसके लिए बकायदा सभी पूर्व सैनिकों को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा गया था। कहा गया था कि कोई कुछ भी पूछे बोलना नहीं है। जिस मैसेज पर सवाल उठ रहे हैं उस मैसेज का स्क्रीनशॉट भी आज तक के पास मौजूद है। इसे साफ है कि चढ़ावा चोरी के खुलासे के बाद मामले को छिपाने की कोशिश की गई। इधर अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के दो और आरोपियों को पुलिस जल्द ही रिमांड पर लेगी। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव से पुलिस पूछताछ करेगी। टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई गई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र की 7 दिनों की कस्टडी मांगी है।
5: अयोध्या पुलिस ने अब रामशंकर यादव, टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में 7 दिन की अर्जी डाली है। इन दोनों की पुलिस कस्टडी रिमांड बेहद अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि जहां रामशंकर यादव के पास डोनेशन बॉक्स की चाबियां होती थी, वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र उस कमरे के इंचार्ज थे जहां से चढ़ावा चोरी हो रहा था। ऐसे में इन दोनों से की गई पूछताछ से पुलिस पता लगाने की कोशिश में लगी है कि आखिर यह चोरी हो रही थी तो उनके संज्ञान में क्यों नहीं आई, पकड़ी भी गई तो क्यों उन पर कार्रवाई नहीं हुई।
1: इस बीच राम मंदिर में चढ़ावे की गणना के लिए नया टाइम टेबल लागू कर दिया गया है। पहले 2 पालियों में होने वाली गिनती अब एक ही शिफ्ट में की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चढ़ावे की गिनती होगी। नई समय सारणी लागू होने के बाद कुछ गणना कर्मियों ने काम छोड़ दिया। उधर राम मंदिर में VIP पास की प्रक्रिया भी रोकी गई क्योंकि जिन लोगों की ID का इस्तेमाल इस काम के लिए किया गया था उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में जारी घटनाक्रम के बीच गोपाल राव ने निर्मोही अखाड़ा पहुंचकर ट्रस्टी महंत दीनेन्द्र दास से मुलाकात की। दोनों के बीच बंद कमरे में काफी देर तक एकांत में चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में ट्रस्ट से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। इस मुलाकात में ट्रस्ट के भीतर चल रहे विवादों के बीच डैमेज कंट्रोल की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हालांकि बैठक में इस चर्चा के संबंध में आधिकारिक रूप से कोई जानकारी साझा नहीं की गई। अयोध्या से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: यूपी में राम मंदिर पर घमासान जारी तो मध्य प्रदेश में लड़ाई बीजेपी बनाम बीजेपी की दिख रही है, जहां दतिया में हो रहे उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा और इसके बाद से कार्यकर्ता भड़क गए।
6: दतिया में टिकट को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा ऐसा फूटा कि वो अपनी ही सरकार की पुलिस से भिड़ गए। मध्य प्रदेश के दतिया में 30 जुलाई को उपचुनाव है। बीजेपी ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। दतिया से आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाने की घोषणा होते ही नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। नेशनल हाईवे पर जाम लग गया, घंटों तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही, पुलिस पर पथराव हुए और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए।
7: मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए, पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं, ऐसा कोई कार्य न करे।
6: आखिर दतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट क्यों कटा? बताया जा रहा है कि दिल्ली के स्तर पर कराए गए सर्वे में नरोत्तम मिश्रा की स्थिति उम्मीद के मुताबिक मजबूत नहीं पाई गई। 2023 में बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को टिकट दिया था लेकिन वो विधानसभा का चुनाव हार गए। केंद्रीय नेतृत्व ने स्थानीय संगठन और भविष्य की राजनीति स्वीकारता का भी आकलन कराया। इसमें नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी फिट बैठे, जिसके बाद उन्हें दतिया से टिकट दिया गया। बीजेपी ने एक ब्राह्मण नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर दूसरे ब्राह्मण आशुतोष तिवारी को टिकट दिया है। इससे जातिगत और सामाजिक संतुलन बरकरार है। उधर पार्टी का संदेश साफ है कि बीजेपी हाईकमान फिलहाल झुकने के मूड में नहीं है।
8: पार्टी इस प्रकार के सोच समझ के निर्णय लेती है और इसलिए हम डंके की चोट जीतेंगे और नरोत्तम जी भी काम करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं नरोत्तम जी को जानता हूँ व्यक्तिगत।
9: नरोत्तम जी मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता, तो उनको कट्टू साइज तो करनी था, कर दिया।
6: दतिया में अब लड़ाई बीजेपी के सामने अपनों से है, जहां अभी तक कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। भोपाल से रवीश पाल के साथ आज तक ब्यूरो।
0: इस पूरे मामले में हमारे सहयोगी रवीश पाल ने खास बातचीत की नरोत्तम मिश्रा से।
10: फैसले को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि मान के तो चला जा रहा था कि आप ही इकलौते उम्मीदवार हैं वहां से भाजपा के।
11: पार्टी का फैसला जो होता है वो ठीक ही होता है, उसको अच्छे रूप में ही लेना चाहिए, खराब रूप में नहीं लेना चाहिए, ऐसा मेरी मान्यता है।
10: आप के तो सकारात्मक भाव हैं, लेकिन आपके जो समर्थक थे जो महीनों से इंतजार कर रहे थे कि जो प्रकरण आया राजन भारती का, मामला कोर्ट में गया, फिर वहां से विधायक की गई, सदस्यता गई, सबको उम्मीद थी, लेकिन जब ये फैसला आया तो उनका गुस्सा साफ तौर पर सामने मिला। हाईवे जाम हो गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ हो गई, पथराव हो गया।
11: हाँ, छड़े का आवेश था, मैंने कल भी फिर उनसे निवेदन किया था, आज भी किया मैंने, जाम बाम की स्थिति नहीं होना चाहिए। कार्यकर्ता वो पेट्रोल डाल रहे थे, वो मुझे दिखाए विजुअल फुटेज, मट्टी का तेल डालते हुए था। धैर्य और संयम का समय यही होता है, यही परीक्षा की घड़ी होती है।
10: आप भोपाल जा रहे हैं तो भोपाल में कोई कार्यक्रम आला नेताओं से आपकी मुलाकात है क्या, प्रदेश अध्यक्ष से या मुख्यमंत्री से या किसी से?
11: अभी तो होगी तो बताऊंगा निश्चित। आप
10: आशुतोष तिवारी को आशीर्वाद रहेगा आपका?
11: सभी को क्यों नहीं रहेगा, कैसी बात कर रहे हैं।
10: हालांकि कैलाश जी ने कहा है कि वो बहुत अच्छे से जानते हैं आपको, उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूं नरोत्तम जी को, पार्टी के फैसले को हमेशा से स्वीकार करते हैं और हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहे हैं।
11: बिल्कुल सही कहा, मैं सहमत हूं।
10: आपके लिए भावुक क्षण है?
11: नहीं, राजनीति में ये सब चलने वाली चीज है।
10: लेकिन एक आखिरी सवाल नरोत्तम जी, चुनाव हुआ 2023 का, फिर लोकसभा आया, फिर राज्यसभा चुनाव आए, फिर कई दूसरी जिम्मेदारियां भी थी। हालांकि न्यू ज्वाइनिंग टोली का आपको संयोजक बनाया गया था, तब काफी लोग जुड़ के आए थे कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में। अब तो भाजपा में
11: लगातार लोकसभा राज्यसभा अध्यक्ष जो भी आप बात कर रहे हैं, ये अंतर्मुखी होकर स्वयं के चिंतन के लिए पार्टी अवसर दे रही है। हमें चिंतन करना भी चाहिए, अच्छी बात है।
0: बांकीपुर उपचुनाव में टिकट को लेकर सियासत तेज है, जहां बीजेपी ने एक दिन के अंदर अपने प्रत्याशी को बदल दिया, जिस पर अब विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है।
1: बांकीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी की ओर से पहले अभिषेक कुमार का नामांकन हुआ, फिर एक दिन बाद ही अचानक अभिषेक ने नामांकन वापस ले लिया और नीरज कुमार को नया उम्मीदवार घोषित किया गया। जिस अभिषेक को सामान्य कार्यकर्ता बताकर बीजेपी ने नितिन नवीन वाली सीट के लिए प्रत्याशी बनाया, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी को अपना प्रत्याशी बदलना पड़ा?
12: पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। मैं कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा।
1: अब सवाल ये कि जिस पारिवारिक मामले का हवाला देकर अभिषेक ने नामांकन वापस लिया, वही परिवार एक दिन पहले अभिषेक को आशीर्वाद देते हुए भावुक हो गया था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अभिषेक बंटी के पिता रविंद्र प्रसाद सिन्हा चारा घोटाले में दोषी रहे। वो मगध केमिकल्स कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी में मैनेजर थे। इस कंपनी पर चारा घोटाले में फर्जी बिल के आधार पर सप्लायर बनाने का आरोप था। फर्जी बिलों के जरिए सरकारी खजाने से पैसा निकालने का मामला रविंद्र प्रसाद सिन्हा पर चला था। सूत्रों के मुताबिक दूसरी बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि अभिषेक सिन्हा बंटी ने नामांकन पत्र में गलत जानकारी भी दी थी, उन्होंने पढ़ाई से जुड़ी कुछ जानकारियां छिपाई थी। ऐसे में भी अभिषेक बंटी का नॉमिनेशन रद्द होने की आशंका थी। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी ने कोई जोखिम नहीं लेते हुए अभिषेक बंटी का नामांकन वापस कराने का फैसला लिया, यानी पार्टी को डर था कि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लालू परिवार को घेरते रहे हैं, उसी भ्रष्टाचार में अभिषेक के पिता आरोपी हैं। लेकिन अब बीजेपी के नए प्रत्याशी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नीरज कुमार सिन्हा के उम्मीदवार घोषित होने के बाद बीजेपी ने उनका बायोडेटा जारी किया। इसमें उनकी जन्म तिथि 1 जुलाई 1994 बताई गई। इसी बायोडेटा में लिखा गया कि उन्होंने 2006 में बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता लेकर अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की, यानी बीजेपी ज्वाइन करने के वक्त उनकी उम्र सिर्फ 12 साल थी, जबकि किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने की न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल होती है। इसके कुछ समय बाद बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा का संशोधित बायोडेटा जारी किया। नए बायोडेटा में उनकी जन्म तिथि पहले की तरह 1 जुलाई 1994 ही रखी गई, लेकिन 2006 में बीजेपी की सदस्यता लेने का उल्लेख हटा दिया गया। संशोधित बायोडेटा में ये नहीं बताया गया कि उन्होंने पार्टी की सदस्यता कब ली। बीजेपी ने ये भी नहीं बताया कि पहले और दूसरे बायोडेटा में ये बदलाव क्यों किया गया, लेकिन दो दिन के अंदर हुए इस घटनाक्रम ने विपक्ष को घेरने का एक मौका जरूर दे दिया।
13: ये पहली बार हुआ है कि नामांकन करने के बाद कोई बीजेपी का प्रत्याशी नाम वापस ले रहा हो। विपक्ष के सामने बीजेपी के उम्मीदवार टिक ही नहीं पा रहे हैं। अब जिस दूसरे उम्मीदवार नीरज सिन्हा को बनाया है उनके ऊपर भी विवाद है।
14: विपक्ष इस बात के लिए चिंता करे कि नीचे से फर्स्ट कौन करिएगा। मुकाबला में तो खैर नहीं है, मुकाबला में बहुत ही अंतराल है।
1: बहरहाल बीजेपी की इस पारंपरिक सीट पर प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, जहां बीजेपी के फैसले को और बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी है। शशि भूषण कुमार के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक।
0: बाद अब मानसून की मार की मानसून भले ही देर से आया हो लेकिन आने के साथ ही तबाही मचा रखी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है।
1: आसमान से बरसती आफत और जमीन पर जिंदगी बचाने की जद्दोजहद, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं पानी जिंदगी को अपनी चपेट में ले रहा है। मानसून की बारिश अब सिर्फ मौसम नहीं रही, कई इलाकों में ये डर दहशत और तबाही की वजह बन चुकी है। हिमाचल से उत्तराखंड तक बारिश ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया है कि लोग घर छोड़ने, रास्ते छोड़ने और जिंदगी बचाने को मजबूर हैं। उत्तराखंड में भी बारिश लगातार आफत बनकर बरस रही है। टिहरी गढ़वाल में लगातार तीसरे दिन बारिश जारी है। बारिश के चलते टिहरी झील का जलस्तर बढ़ रहा है। नदी किनारे रहने वाले लोगों में डर का माहौल लगातार बना हुआ है
15: और काफी बारिश से अस्त व्यस्त जीवन हो रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं घनसाली में काफी बारिश लगातार हो रही है।
16: तो नदी के किनारे लोग रह रहे हैं, सभी घरों के जो है नोटिस चस्पा कर दिया और समय समय पर जैसे बारिश होती है सायरन भी जो है प्रशासन द्वारा जो है बजाया जाता है और अपने अधिकारी भी कर्मचारी भी लगाए हुए हैं कि जो नदी किनारे अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अगर पानी बढ़ता है तो अन्यत्र जो है अपनी व्यवस्था करें। तो लोग सतर्क हैं और क्योंकि मेरा घर भी नदी के किनारे है, हमें भी नोटिस गवर्नमेंट से आया है।
1: प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। दो दिन की छुट्टी के बाद स्कूल खुले लेकिन बारिश के बीच बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों की चिंता भी सामने आई। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे हालात में एहतियात और ज्यादा जरूरी है।
17: बद्रीनाथ धाम में बीते तीन दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। जहां अब मानसून पहाड़ों में पैर पसार रहा है वहीं बद्रीनाथ धाम में लगातार बारिश हो रही है। तो बद्रीनाथ धाम में बहने वाली अलकनंदा में अपना विकराल रूप धीरे धीरे जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जो यहां पे नरसिंह शिला बारह शिला है वो लगातार पानी में डूबती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी मानसून के दौरान ये पूरी शिला बद्रीनाथ धाम की जो अलकनंदा है उसमें डूब जाती है लेकिन अब धीरे धीरे उफान पर अलकनंदा बह रही है, पूरा पानी बढ़ता जा रहा है। पल पल बारिश के साथ ही जो पानी है जलस्तर है वो बढ़ रहा है। वो हालांकि मार्ग बाधित होने की जो आशंका है वो बनी हुई है क्योंकि मानसून का दौर है, बारिश तेज होती है तो अलग अलग जगहों पे खासकर पीपलकोठी के भनेर पानी में और जो गुलाबकोठी है हेलंग के समीप वहां पे लगातार भूस्खलन का दौर बन रहा है।
1: चमोली के थराली क्षेत्र में बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार हो रही बारिश के बाद घाघली गदेरे में भारी मात्रा में मलबा आ गया जिसके चलते थराली देवाल और थराली कुराड़ मार्ग प्रभावित हुए। एक रास्ता खोल दिया गया है लेकिन कई इलाकों में अब भी लोगों की मुश्किलें बनी हुई है। उफनते नाले के किनारे बसे राडीबगढ़ गांव के लोगों ने पूरी रात दहशत में गुजारी। ग्रामीणों का आरोप है कि सुरक्षा इंतजामों की कमी के कारण हर बारिश में खतरा बढ़ जाता है। चमोली में पहले भी बादल फटने और भारी मलबे की घटनाएं सामने आ चुकी है और इस बार मानसून के शुरुआत में हालात डराने लगे। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में लगातार बारिश जारी है। तीन दिनों से हो रही बारिश का असर अब अलकनंदा नदी पर दिखाई दे रहा है। खतरा लगातार बना हुआ है, नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और अलकनंदा उफान पर बह रही है। हालांकि खराब मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था कायम, बारिश के बीच भी यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। यात्रा मार्ग फिलहाल सुचारू है लेकिन पहाड़ों के बदलते मौसम के बीच खतरा लगातार बना हुआ है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बारिश ने चार धाम यात्रा की रफ्तार रोक दी। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर खांकुरा के पास पहाड़ दरक गया। भारी भरकम बोल्डर सड़क पर आ गिरे और देखते ही देखते हाईवे बंद हो गया। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। कई यात्री घंटों तक रास्ता खुलने का इंतजार करते रहे। बारिश के मौसम में पहाड़ों की यात्रा एक बार फिर चुनौती बन गई है। नैनीताल में लगातार लगभग 8 घंटे हुई मूसलाधार बारिश के बाद 7 नंबर स्थित आलमग कॉटेज और जिला पंचायत रोड क्षेत्र में भूधसाव तेज हो गया। पहाड़ी का बड़ा हिस्सा खिसक कर नीचे नाले में जा गिरा जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। सड़क के ऊपर बने 5 और नीचे स्थित 7 परिवारों के मकान खतरे की जद में, स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते सुरक्षा कार्य करा दिए गए होते तो आज ये स्थिति पैदा नहीं होती।
18: उनके क्षेत्र में लगातार वर्षा हो रही है, इसी संबंध में आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया गया। तो सर्वप्रथम जो 7 नंबर का हमारा लैंड स्लाइडिंग एरिया है उसको आज विजिट किया गया और वहां पर उस निरीक्षण में एक्सियन पीडब्ल्यूडी और एक्सियन इरीगेशन भी मौजूद थे। एक्सियन इरीगेशन को पूर्व में भी आयुक्त महोदय के द्वारा जो है DPR उस एरिया की गठित करके तत्काल काम कराने के लिए निर्देशित किया गया है। तो उसी के क्रम में आज हम लोगों के द्वारा निरीक्षण किया गया और ये देखा गया कि वहां पर तात्कालिक तौर पर भी कुछ कार्य कराए जाने की आवश्यकता है जिसको इरिगेशन विभाग कल से ही टेकअप करेगा।
1: मौसम विभाग की तरफ से उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और कुमाऊं क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर के लिए रेड अलर्ट है। देहरादून, पौड़ी, चंपावत, हरिद्वार, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली और नैनीताल जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए। पूरे उत्तराखंड में 117 सड़कें अब भी बंद हैं। बहरहाल ये मानसून की पहली किश्त ने जिसने पहाड़ों पर हाहाकार मचा रखा है, मौसम विभाग की माने तो अभी आसमान से आफत थमने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक बारिश अपने साथ मुश्किलें लाई है, वहां पर कैसे हालात हैं रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
1: हिंदुस्तान का ये नक्शा बता रहा है कि जुलाई के 9 दिनों में मानसून लगभग पूरे देश पर छा गया है, लेकिन देश के 49% जिले ऐसे हैं जहां अभी भी सामान्य से कम बारिश हुई। इनमें सबसे ज्यादा जिले यूपी बिहार के नजर आते हैं। ये नक्शा बता रहा है कि मध्य और पश्चिमी भारत में तो सामान्य से ज्यादा बारिश हो गई है, लेकिन अभी पूर्वोत्तर और पूर्वी हिस्से में ठीक से बारिश होना बाकी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में तो लगातार बारिश के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। संजौली इलाके में भूस्खलन के खतरे के चलते कई परिवार घरों से बाहर रहने को मजबूर हैं। लोगों को डर है कि कमजोर हो चुकी जमीन कब धस जाए और कब कोई बड़ा हादसा हो जाए। वहीं न्यू शिमला के राजाना गांव में भी लैंडस्लाइड ने कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है।
19: डर का माहौल है जी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे आप देख रहे हैं, आपने अभी फोटोज भी ली हैं, यहाँ पे जो सारा एरिया है अभी डर के माहौल में। हम पूरे एक साल से डर के साथ ही जी रहे हैं। लास्ट ईयर 28 जून 2025 को सुबह 4:30 बजे के करीब ये जो लैंडस्लाइड हुआ था, जिससे कि सब कुछ यहाँ पे हमारी बिल्डिंग की सीढ़ियां वगैरह सब कुछ टूट गया था। और तब से लेकर हम लोग तो डर डर के ही जी रहे हैं। बार बार हम रिक्वेस्ट करने पर भी यहाँ पे कुछ नहीं, जैसे ही बरसातें शुरू होती है इनका काम भी स्टार्ट होता है। और हमारा तो ये कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इनका बैन किया जाए इसको।
1: जम्मू कश्मीर के पुंछ में बारिश के बाद अचानक बाढ़ ने हालात बिगाड़ दिए। तेज बहाव में कई लोग फंस गए। प्रशासन और राहत टीमों ने लगभग 25 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। पानी का वेग इतना तेज था कि लोगों की जिंदगी कुछ घंटों के लिए खतरे में आ गई।
20: चाव हो गया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि हमने पिछले साल भी यहाँ SDM साहब भी मौके पर आए थे, उन्होंने बोला था कि हम आपको क्रेडिट देंगे, अभी तक ना उन्होंने कोई क्रेडिट दिया ना इस पुल का कोई इंतजाम किया।
21: सिचुएशन यहाँ पे हुई है, इसमें तकरीबन 8 से 10 घर जो है वो इफेक्टेड हुए हैं। मैं मुकामी लोगों का और मेरी जो हमारी यहाँ पर पुलिस पोस्ट अड़ी है, इमीडिएट जो रेस्पॉन्डर है वो ये खुद थे। इन्होंने जो है वो लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया, जिसमें तकरीबन 20 से 25 सोल्स हैं और कुछ लाइव स्टॉक पोल्ट्री बोर्ड को जो है वो रेस्क्यू किया गया।
1: सहारनपुर में तो गजब हो गया, भारी बारिश की वजह से कब्रिस्तान में पानी भर गया और इसकी वजह से कई कब्रें क्षतिग्रस्त हो गई। ये गागल हेड़ी के सैयद माजरा गाँव के कब्रिस्तान की घटना है। मिट्टी धंसने से कुछ शव कफन समेत बाहर दिखाई देने लगे। ग्रामीणों ने पुलिस की मौजूदगी में धार्मिक रीति रिवाजों और पूरे सम्मान के साथ शवों को दोबारा सुपुर्द खाक किया। इधर महाराष्ट्र में अब बारिश तो रुक गई है, लेकिन पुणे के एक वेस्ट प्लांट में जो हादसा हुआ था वहां भी 8 लोगों के दबे होने की आशंका है। पुणे के मोशी के वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में हादसे के 48 घंटे के बाद भी सभी लोगों का रेस्क्यू नहीं हुआ है। इस प्लांट में कूड़े का पहाड़ सिर्फ एक इमारत पर नहीं गिरा, उसने कई परिवारों की उम्मीदें भी मलबे में दबा दी। जहरीली मीथेन गैस और कूड़े का विशाल ढेर रेस्क्यू ऑपरेशन को लगातार मुश्किल बना रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर खतरे का अंदाजा था तो कूड़े के ढेर के पास इमारत क्यों बनाई गई।
22: तो बारिश हुई थी, बहुत ज्यादा बारिश हमारे शहर में हुई थी,
2: उसकी वजह से पूरे शहर में पानी का स्तर बढ़ गया था हमेशा के जैसे हालात नहीं थे, और इसी के वजह से ये जो कचरे का मलबा था वो पूरा बिल्डिंग के ऊपर गिर गया। उसमें जो कर्मचारी थे एंटनी के वो फंस गए, लेकिन उनको निकालने का काम पूरे प्रयास पूरे जोरों शोर से और पूरे मेहनत से पहले दिन से हम सब कर रहे हैं, आज के दिन उनको निकाला जाएगा।
3: 40 घंटे हुए हैं अभी तक निकाले गए नहीं।
2: आपने पहले दिन आए तो कंडीशन देखी होती तो आपको पता चलता, क्योंकि पहले जो जीवित व्यक्ति थी उनको जिनका आवाज बाहर आ रहा था प्रशासन को आ रहा था उनको बाहर निकालना जरूरी था, उनको पहले दिन के रात को बाहर निकाला गया।
1: कई गंभीर सवाल हैं और सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि जो लोग फंसे हुए थे उनके तरफ से रिस्पांस आना भी बंद हो गया है। कुल 23 लोग यहाँ फंसे थे जिनमें से 14 लोगों को निकाला गया था और एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। अभी भी जो 8 लोग हैं उनकी क्या स्थिति है ये पता नहीं है।
3: पुणे स्थित मोशी में जो इंसिडेंट हुआ था इसको लेकर 45 घंटों के बाद भी NDRF टीम की रेस्क्यू जारी है। अभी हम मोशी स्थित कचरा डेपो में है, यहाँ पर देख सकते हैं कि JCB से जहाँ पर वेस्ट टू एनर्जी बिल्डिंग है जो ढही थी उसके आजू बाजू में कचरा निकालने का काम जारी है। 2 दिन पहले यही जो कचरे का ढेर है वो वेस्ट टू एनर्जी बिल्डिंग के ऊपर गिरने से बिल्डिंग ढही थी और उसमें 23 लोग अटके हुए थे, उसमें से 14 लोगों को निकाल लिया गया है और एक की डेथ हुई है, तो 8 लोग अभी भी मौजूद है, उनसे कोई रिस्पॉन्स नहीं है, लेकिन उनको निकालने की कोशिश NDRF द्वारा जारी है। पिछले कुछ घंटों से इस काम में तेजी आई है, JCB ज्यादा लगाए हैं, लेकिन जहां मतलब ग्राउंड फ्लोर में जो लोग अटके हुए हैं जो मलबे में हैं उनके रिश्तेदार यहां पे कई घंटों से हैं और उनको आस है कि हमारे जो अंदर अटके हुए लोग हैं वो शायद जिंदा हो।
1: प्रशासन कह रहा है कि बिल्डिंग के अंदर कचरे की वजह से मीथेन गैस है जिसकी वजह से पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में समस्याएं आ रही हैं। अब पूरी इमारत तोड़कर इन लोगों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है।
22: अभी जो लास्ट फेज ऑफ रेस्क्यू ऑपरेशन है वो बहुत क्रिटिकल हो रहा है। जैसे आप देख रहे हो कि ये कैंटिलीवर फॉल है, तो NDRF के

0: कचरा है जो अंदर जा रहा है उसको निकालने की पूरे प्रयास कर रहे हैं। उसके आसपास बिल्डिंग का ऑलमोस्ट 80-90% उन्होंने निकाल लिया है। उसके बाद में अभी वो बिल्डिंग खोल के मतलब उनके इक्विपमेंट्स का यूज करके वो तोड़ के अंदर जाके जहां ये लोग फंसे हुए हैं।
1: पालघर की ये तस्वीर देखिए, कैसे घर के नीचे सैलाब के बाद पूरा परिवार छत पर है जिसमें महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं जिनके चेहरे पर खौफ आसानी से देखा जा सकता है। आज तक ब्यूरो रुक रहे, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

0: यूपी में 27 का घमासान। तेज मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पार्टी पर बोला हमला काहिन का इतिहास, राम भक्तों के खून से सना भारत की विरासत और आस्था को किया अपमानित। दतिया से टिकट कटने के बाद आज तक से बोले बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्र, राजनीति में यह चलता है, पार्टी का फैसला सही, मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिले। आमिर खान की तीसरी शादी पर भड़के नितेश राणे, बताया लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर, युवाओं से की आमिर की फिल्में सोच समझकर देखने की अपील। वियतनाम में भारतीय पर्यटकों से भरी नाव पलटी, अब तक 15 लोगों की मौत, फुकोक द्वीप के पास हादसा, राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने जताई संवेदना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जारी किया आदेश, कहा अगर मेरी हत्या हुई तो ईरान को मिटा दें, जेडी विंस को सौंपी फैसला लेने की जिम्मेदारी। अब बात करते हैं यूपी में चुनाव से पहले छिड़े धर्म युद्ध की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर चढ़ावा चोरी ने पूरी तरह से सियासी रंग ले लिया है, जिसके बाद अब योगी आदित्यनाथ विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को पिछला इतिहास गिना रहे हैं, तो वहीं विपक्ष राम मंदिर के मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा।
1: यूपी में राम मंदिर से शुरू हुआ घमासान अब धर्म की राजनीति तक पहुंच गया है। योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी का इतिहास खंगाल रहे हैं।
2: मंदिरों पे कब्जा करवाते थे लोग, मंदिरों पे कब्जा करवाते थे, और अब कब्जा नहीं, अब उन मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है, और पहले मंदिरों के नाम पर आने वाला पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर खर्च हो जाता था। यही तो करती थी समाजवादी पार्टी।
1: कल योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी में इफ्तार का जिक्र करके समाजवादी पार्टी को घेरा था, तो आज विपक्ष योगी पर गुमराह करने का आरोप लगा रहा है।
3: कैसे नमाज पढ़ सकता है कोई आदमी वहां? ये एजेंडा जो है ये तमाम चीजों से ध्यान भटकाने का है। कैसे नमाज पढ़ सकता है? हम तो कह रहे हैं कि आप सड़क पे नमाज ना पढ़े, चूंकि सड़क सरकार की और सरकार मना कर रही है तो आपकी नमाज जायज नहीं होगी। मैं तो बार बार बोलता हूं, जिस प्रॉपर्टी का ओनर अगर उसको इजाजत नहीं देता तो वहां नमाज ही नहीं हो सकती।
1: 2027 के चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा अब थमता नहीं दिख रहा है। इस बीच राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के कलंक पर अब समिति से जुड़े लोग दुख जता रहे हैं।
4: राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है, व्यवस्था में सुधार होगा, मुझे पूरा विश्वास है।
1: एक और ताबड़तोड़ जांच और एक्शन जारी है, तो वहीं राम भक्तों का भरोसा जीतने की कोशिश भी की जा रही है। चढ़ावा विवाद के बीच राम मंदिर ट्रस्ट जल्द ही सीईओ की नियुक्ति करने जा रहा है, जिसके लिए समिति का गठन भी कर दिया गया है। सीईओ को मंदिर के प्रशासन और वित्तीय प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जिसका उद्देश्य मंदिर के संचालन को अधिक पेशेवर, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। इसके साथ ही सीईओ चढ़ावे के प्रबंधन, श्रद्धालुओं की सुविधाओं, आधारभूत ढांचे के रखरखाव और प्रशासनिक व्यवस्था की भी निगरानी रखेंगे।

0: साफ है कि एक ओर सरकार बार बार भरोसा जताने की कोशिश कर रही है कि वो भक्तों के साथ धोखा करने वालों को बख्शेगी नहीं, वहीं विपक्ष सरकार की पूरी जांच को कटघरे में खड़ा कर रही है। आज तक ब्यूरो। राम मंदिर जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं और इस बीच में मंदिर प्रशासन के सामने चुनौती सिस्टम को सुधारने की भी है, जिस पर लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। चढ़ावा चोरी के गंभीर आरोपों की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे सामने आते जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से अब सामने आया है कि मंदिर में काम करने वाले कुछ पूर्व सैनिकों पर कुछ भी बोलने पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसके लिए बकायदा सभी पूर्व सैनिकों को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा गया था। कहा गया था कि कोई कुछ भी पूछे बोलना नहीं है। जिस मैसेज पर सवाल उठ रहे हैं उस मैसेज का स्क्रीनशॉट भी आज तक के पास मौजूद है। इसे साफ है कि चढ़ावा चोरी के खुलासे के बाद मामले को छिपाने की कोशिश की गई। इधर अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के दो और आरोपियों को पुलिस जल्द ही रिमांड पर लेगी। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव से पुलिस पूछताछ करेगी। टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई गई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र की 7 दिनों की कस्टडी मांगी है।
1: अयोध्या पुलिस ने अब रामशंकर यादव और टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में 7 दिन की अर्जी डाली है। इन दोनों की पुलिस कस्टडी रिमांड बेहद अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि जहां रामशंकर यादव के पास डोनेशन बॉक्स की चाबियां होती थी, वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र उस कमरे के इंचार्ज थे जहां से चढ़ावा चोरी हो रहा था। ऐसे में इन दोनों से की गई पूछताछ से पुलिस पता लगाने की कोशिश में लगी है कि आखिर यह चोरी हो रही थी तो उनके संज्ञान में क्यों नहीं आई, पकड़ी भी गई तो क्यों उन पर कार्रवाई नहीं हुई।
0: इस बीच राम मंदिर में चढ़ावे की गणना के लिए नया टाइम टेबल लागू कर दिया गया है। पहले 2 पालियों में होने वाली गिनती अब एक ही शिफ्ट में की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चढ़ावे की गिनती होगी। नई समय सारणी लागू होने के बाद कुछ गणना कर्मियों ने काम छोड़ दिया है। उधर राम मंदिर में VIP पास की प्रक्रिया भी रोकी गई क्योंकि जिन लोगों की ID का इस्तेमाल इस काम के लिए किया गया था उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में जारी घटनाक्रम के बीच गोपाल राव ने निर्मोही अखाड़ा पहुंचकर ट्रस्टी महंत दीनेन्द्र दास से मुलाकात की। दोनों के बीच बंद कमरे में काफी देर तक एकांत में चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में ट्रस्ट से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। इस मुलाकात में ट्रस्ट के भीतर चल रहे विवादों के बीच डैमेज कंट्रोल की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हालांकि बैठक में इस चर्चा के संबंध में आधिकारिक रूप से कोई जानकारी साझा नहीं की गई। अयोध्या से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
2: यूपी में राम मंदिर पर घमासान जारी तो मध्य प्रदेश में लड़ाई बीजेपी बनाम बीजेपी की दिख रही है, जहां दतिया में हो रहे उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा और इसके बाद से कार्यकर्ता भड़क गए।
3: दतिया में टिकट को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा ऐसा फूटा कि वो अपनी ही सरकार की पुलिस से भिड़ गए। मध्य प्रदेश के दतिया में 30 जुलाई को उपचुनाव है। बीजेपी ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। दतिया से आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाने की घोषणा होते ही नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। नेशनल हाईवे पर जाम लग गया, घंटों तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही, पुलिस पर पथराव हुए और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए।
4: मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए, पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं, ऐसा कोई कार्य न करे।
3: आखिर दतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट क्यों कटा? बताया जा रहा है कि दिल्ली के स्तर पर कराए गए सर्वे में नरोत्तम मिश्रा की स्थिति उम्मीद के मुताबिक मजबूत नहीं पाई गई। 2023 में बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को टिकट दिया था लेकिन वो विधानसभा का चुनाव हार गए। केंद्रीय नेतृत्व ने स्थानीय संगठन और भविष्य की राजनीति स्वीकारता का भी आकलन कराया। इसमें नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी फिट बैठे, जिसके बाद उन्हें दतिया से टिकट दिया गया। बीजेपी ने एक ब्राह्मण नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर दूसरे ब्राह्मण आशुतोष तिवारी को टिकट दिया है। इससे जातिगत और सामाजिक संतुलन बरकरार है। उधर पार्टी का संदेश साफ है कि बीजेपी हाईकमान फिलहाल झुकने के मूड में नहीं है।
5: पार्टी इस प्रकार के सोच समझ के निर्णय लेती है और इसलिए हम डंके की चोट जीतेंगे। और नरोत्तम जी भी काम करेंगे, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं नरोत्तम जी को जानता हूँ व्यक्ति।
6: नरोत्तम जी मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता, तो उनको कट्टू साइज तो करनी था, कर दिया।
3: दतिया में अब लड़ाई बीजेपी के सामने अपनों से है, जहां अभी तक कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। भोपाल से रवीश पाल के साथ आज तक ब्यूरो।
2: इस पूरे मामले में हमारे सहयोगी रवीश पाल ने खास बातचीत की नरोत्तम मिश्रा से।
7: फैसले को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि मान के तो चला जा रहा था कि आप ही इकलौते उम्मीदवार हैं वहां भाजपा के।
8: पार्टी का फैसला जो होता है वो ठीक ही होता है, उसको अच्छे रूप में ही लेना चाहिए, खराब रूप में नहीं लेना चाहिए, ऐसा मेरी मान्यता है।
7: आप के तो सकारात्मक भाव है, लेकिन आपके जो समर्थक थे जो महीनों से इंतजार कर रहे थे कि जो प्रकरण आया राजन भारती का, मामला कोर्ट में गया, फिर वहां से विधायक की गई, सदस्यता गई, सबको उम्मीद थी, लेकिन जब ये फैसला आया तो उनका गुस्सा साफ तौर पर सामने मिला। हाईवे जाम हो गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ हो गई, पथराव हो गया।
8: हाँ, छड़े का आवेश था, मैंने कल भी फिर उनसे निवेदन किया था, आज भी किया मैंने। जाम वाम की स्थिति नहीं होना चाहिए, कार्यकर्ता वो पेट्रोल डाल रहे थे, वो मुझे दिखाए विजुअल फुटेज, पट्टी का तेल डालते हुए का। धैर्य और संयम का समय यही होता है, यही परीक्षा की घड़ी होती है।
7: आप भोपाल जा रहे हैं तो भोपाल में कोई कार्यक्रम, आला नेताओं से आपकी मुलाकात है क्या, प्रदेश अध्यक्ष से या मुख्यमंत्री से या किसी से?
8: अभी तो होगी तो बताऊंगा निश्चित। आप
7: आशुतोष तिवारी को आशीर्वाद रहेगा आपका?
8: सभी को क्यों नहीं रहेगा, कैसी बात कर रहे हैं।
7: हालांकि कैलाश जी ने कहा है कि वो बहुत अच्छे से जानते हैं आपको, उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ नरोत्तम जी को, पार्टी के फैसले को हमेशा से स्वीकार करते हैं और हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहे हैं।
8: बिल्कुल सही कहा, मैं सहमत हूँ।
7: आपके लिए भावुक क्षण है?
8: नहीं, राजनीति में ये सब चलने वाली चीज है।
7: लेकिन एक आखिरी सवाल, नरोत्तम जी चुनाव हुआ 2023 का, फिर लोकसभा आया, फिर राज्यसभा चुनाव आए, फिर कई दूसरी जिम्मेदारियां भी थी, हालांकि न्यू ज्वाइनिंग टोली का आपको संयोजक बनाया गया था, तब काफी लोग जुड़ के आए थे कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में, अब तो भाजपा में
8: लगातार लोकसभा राज्यसभा अध्यक्ष जो भी आप बात कर रहे हैं, ये अंतर्मुखी होकर स्वयं के चिंतन के लिए पार्टी अवसर दे रही है, हमें चिंतन करना भी चाहिए, अच्छी बात।
2: बांकीपुर उपचुनाव में टिकट को लेकर सियासत तेज है, जहां बीजेपी ने एक दिन के अंदर अपने प्रत्याशी को बदल दिया, जिस पर अब विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है।
9: बांकीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी की ओर से पहले अभिषेक कुमार का नामांकन हुआ, फिर एक दिन बाद ही अचानक अभिषेक ने नामांकन वापस ले लिया और नीरज कुमार को नया उम्मीदवार घोषित किया गया। जिस अभिषेक को सामान्य कार्यकर्ता बताकर बीजेपी ने नितिन नवीन वाली सीट के लिए प्रत्याशी बनाया, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी को अपना प्रत्याशी बदलना पड़ा?
10: पौराणिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं, मैं कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा।
9: अब सवाल ये कि जिस पारिवारिक मामले का हवाला देकर अभिषेक ने नामांकन वापस लिया, वही परिवार एक दिन पहले अभिषेक को आशीर्वाद देते हुए भावुक हो गया था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अभिषेक बंटी के पिता रविंद्र प्रसाद सिन्हा चारा घोटाले में दोषी रहे। वो मगध केमिकल्स कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी में मैनेजर थे। इस कंपनी पर चारा घोटाले में फर्जी बिल के आधार पर सप्लायर बनाने का आरोप था। फर्जी बिलों के जरिए सरकारी खजाने से पैसा निकालने का मामला रविंद्र प्रसाद सिन्हा पर चला था। सूत्रों के मुताबिक दूसरी बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि अभिषेक सिन्हा बंटी ने नामांकन पत्र में गलत जानकारी भी दी थी, उन्होंने पढ़ाई से जुड़ी कुछ जानकारियां छिपाई थी, ऐसे में भी अभिषेक बंटी का नॉमिनेशन रद्द होने की आशंका थी। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी ने कोई जोखिम नहीं लेते हुए अभिषेक बंटी का नामांकन वापस कराने का फैसला लिया, यानी पार्टी को डर था कि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लालू परिवार को घेरते रहे, उसी भ्रष्टाचार में अभिषेक के पिता आरोपी हैं। लेकिन अब बीजेपी के नए प्रत्याशी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नीरज कुमार सिन्हा के उम्मीदवार घोषित होने के बाद बीजेपी ने उनका बायोडेटा जारी किया, इसमें उनकी जन्म तिथि 1 जुलाई 1994 बताई गई। इसी बायोडेटा में लिखा गया कि उन्होंने 2006 में बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता लेकर अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की, यानी बीजेपी ज्वाइन करने के वक्त उनकी उम्र सिर्फ 12 साल थी, जबकि किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने की न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल होती है। इसके कुछ समय बाद बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा का संशोधित बायोडेटा जारी किया। नए बायोडेटा में उनकी जन्म तिथि पहले की तरह 1 जुलाई 1994 ही रखी गई, लेकिन 2006 में बीजेपी की सदस्यता लेने का उल्लेख हटा दिया गया। संशोधित बायोडेटा में ये नहीं बताया गया कि उन्होंने पार्टी की सदस्यता कब ली। बीजेपी ने ये भी नहीं बताया कि पहले और दूसरे बायोडेटा में ये बदलाव क्यों किया गया, लेकिन 2 दिन के अंदर हुए इस घटनाक्रम ने विपक्ष को घेरने का एक मौका जरूर दे दिया।
11: ये पहली बार हुआ है कि नामांकन करने के बाद कोई बीजेपी का प्रत्याशी नाम वापस ले रहा हो। विपक्ष के सामने बीजेपी के उम्मीदवार टिक ही नहीं पा रहे हैं। अब जिस दूसरे उम्मीदवार नीरज सिन्हा को बनाया है उनके ऊपर भी विवाद है।
12: विपक्ष इस बात के लिए चिंता करे कि नीचे से फर्स्ट कौन करिएगा। मुकाबला में तो खैर नहीं है, मुकाबला में बहुत ही अंतराल है।
9: बहरहाल बीजेपी की इस पारंपरिक सीट पर प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, जहां बीजेपी के फैसले को और बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी है। शशि भूषण कुमार के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक।
2: पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस में तकरार देखने को मिल रहे हैं, जहां चन्नी की बगावती तेवर आलाकमान की टेंशन बढ़ा रहे हैं। भूपेश बघेल को पंजाब कांग्रेस की नाराजगी दूर करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन अभी भी तकरार खत्म होती नहीं दिख रही।
13: ये तस्वीरें पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान को खत्म करने की हैं, जहां कांग्रेस के पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने चन्नी गुट के नेताओं के साथ करीब 2 घंटे लंबी बैठक की। बैठक खत्म होने के बाद बघेल ने किसी भी तरह की नाराजगी से इनकार किया।
14: हमारे सीनियर लीडर हैं, उन्होंने आमंत्रित किया और राणा साहब के हाथ में अनेक बार आया हूं, भोजन किया हूं। तो हमारा राणा साहब से तो अलग ही इस तरह का संबंध है, प्रेम का, भाई का संबंध है, तो उन्होंने आखिरी में मुझे आमंत्रित किया।
13: भले ही बघेल सब कुछ ठीक होने की बात कर रहे हो, लेकिन सूत्रों की माने तो बैठक में कुछ खास नतीजा नहीं निकला।
15: जो अंदर बात हुई है वो भावना जो है वो सबके सामने रख दी गई है, और उस भावना की कदर करते हुए बोला भी बाहर इसके अलावा कोई बात नहीं करनी। ये जो लीडरशिप है उसको हमने अपनी ए टू जेड बड़ी क्लियरली एक एक बात, एक एक रीजन लॉजिक के साथ आगे रख दिया है, और उम्मीद करते हैं भी वो जो बात है वो बड़ी क्लियरली बघेल साहब हाईकमांड तक।
13: दरअसल कांग्रेस में चन्नी गुट राजा वर्डिंग को अध्यक्ष बनाए जाने से नाराज चल रहा है, जिसे लेकर चन्नी गुट पहले बैठक कर चुका है। हालात बिगड़ते देख बघेल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज हुई बैठक में भी राजा वर्डिंग को लेकर नेताओं से राय ली गई, लेकिन इस पर आखिरी मुहर दिल्ली से लगनी है। पिछले चुनाव से पहले कांग्रेस की अंदरूनी कलह ने उसे सत्ता से बाहर कर दिया था, ऐसे में एक बार फिर बगावत ने आलाकमान की टेंशन बढ़ा दी है।
16: पार्टी सोर्सेज जो बताते हैं कि अंदर ये वॉइस उठाई गई कि राजा वड़िंग की प्रधानगी मौजूद नहीं, हमें मंजूर नहीं है, और इसके अलावा जब सुखजिंदर रंधावा बाहर आए तो उन्होंने बोला कि हमने साफ डिमांड रखी है। पहली डिमांड ये है कि जो है जो 2027 का इलेक्शन है वो कांग्रेस जीते, और लड़ाई ऐसा लीडर लड़े जो कॉम्प्रोमाइज ना हो। हालांकि किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अब हाईकमान के पाले में गेंद जाएगी जिस तरह की ये सिचुएशन लग रही है। तो पंजाब कांग्रेस ने जिसने भूपेश बघेल ने एक अटेम्प्ट किया था कि बैठ के डेडलॉक टूटे, तो ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि उन्होंने बोला अप्रीहेंशंस अब टेकअप की जाएंगी। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन मुंजीत के साथ असीम बस्सी, आज तक।
2: मादम मानसून की मार के मानसून भले ही देर से आया हो, लेकिन आने के साथ ही तबाही मचा रखी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है।
17: आसमान से बरसती आफत और जमीन पर जिंदगी बचाने की जद्दोजहद, कहीं पहाड़ तड़प रहे हैं तो कहीं पानी जिंदगी को अपनी चपेट में ले रहा है। मानसून की बारिश अब सिर्फ मौसम नहीं रही, कई इलाकों में ये डर, दहशत और तबाही की वजह बन चुकी है। हिमाचल से उत्तराखंड तक बारिश ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया है कि लोग घर छोड़ने, रास्ते छोड़ने और जिंदगी बचाने को मजबूर हैं। उत्तराखंड में भी बारिश लगातार आफत बनकर बरस रही है। टिहरी गढ़वाल में लगातार 3rd दिन बारिश जारी है। बारिश के चलते टिहरी झील का जलस्तर बढ़ रहा है। नदी किनारे रहने वाले लोगों में डर का माहौल लगातार बना हुआ है।
18: और काफी बारिश से अस्त व्यस्त जीवन हो रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं घनसाली में काफी बारिश लगातार हो रही है।
19: तो नदी के किनारे लोग रह रहे हैं, सभी घरों के जो है नॉट ईस्ट चस्पा कर दिया और समय समय पर जैसे बारिश होती है सायरन भी जो है प्रशासन द्वारा जो है बजाया जाता है और अपने अधिकारी भी कर्मचारी भी लगाए हुए हैं कि जो नदी किनारे अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अगर पानी बढ़ता है तो अन्यत्र जो है अपनी व्यवस्था करें। तो लोग सतर्क हैं और क्योंकि मेरा घर भी नदी के किनारे है हमें भी नोटिस गवर्नमेंट से आया है।
9: प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। दो दिन की छुट्टी के बाद स्कूल खुले लेकिन बारिश के बीच बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों की चिंता भी सामने आई। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे हालात में एहतियात और ज्यादा जरूरी है।
20: बद्रीनाथ धाम में बीते तीन दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। जहां अब मानसून पहाड़ों में पैर पसार रहा है वहीं बद्रीनाथ धाम में लगातार बारिश हो रही है। तो बद्रीनाथ धाम में बहने वाली अलकनंदा में अपना विकराल रूप धीरे धीरे जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जो यहाँ पे नरसिंह शिला बारह शिला है वो लगातार पानी में डूबती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी मानसून के दौरान ये पूरी शिला बद्रीनाथ धाम की जो अलकनंदा है उसमें डूब जाती है लेकिन अब धीरे धीरे उफान पर अलकनंदा बह रही है। पूरा पानी बढ़ता जा रहा है, पल पल बारिश के साथ ही जो पानी है जलस्तर है वो बढ़ रहा है। हालांकि मार्ग बाधित होने की जो आशंका है वो बनी हुई है क्योंकि मानसून का दौर है, बारिश तेज होती है तो अलग अलग जगहों पे खासकर पीपल कोठी के भनेर पानी में और जो गुलाब कोठी है हेलंग के समीप वहां पे लगातार भूस्खलन का दौर बन रहा है।
9: चमोली के थराली क्षेत्र में बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार हो रही बारिश के बाद घाघली गदेरे में भारी मात्रा में मलबा आ गया जिसके चलते थराली देवाल और थराली कुराड़ मार्ग प्रभावित हुए। एक रास्ता खोल दिया गया है लेकिन कई इलाकों में अब भी लोगों की मुश्किलें बनी हुई है। उफनते नाले के किनारे बसे राडीबगढ़ गांव के लोगों ने पूरी रात दहशत में गुजारी। ग्रामीणों का आरोप है कि सुरक्षा इंतजामों की कमी के कारण हर बारिश में खतरा बढ़ जाता है। चमोली में पहले भी बादल फटने और भारी मलबे की घटनाएं सामने आ चुकी है और इस बार मॉनसून के शुरुआत में हालात डराने लगे। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में लगातार बारिश जारी है। तीन दिनों से हो रही बारिश का असर अब अलकनंदा नदी पर दिखाई दे रहा है। खतरा लगातार बना हुआ है, नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और अलकनंदा उफान पर बह रही है। हालांकि खराब मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था कायम, बारिश के बीच भी यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। यात्रा मार्ग फिलहाल सुचारू है लेकिन पहाड़ों के बदलते मौसम के बीच खतरा लगातार बना हुआ है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बारिश ने चार धाम यात्रा की रफ्तार रोक दी। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर खांकुरा के पास पहाड़ दरक गया। भारी भरकम बोल्डर सड़क पर आ गिरे और देखते ही देखते हाईवे बंद हो गया। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। कई यात्री घंटों तक रास्ता खुलने का इंतजार करते रहे। बारिश के मौसम में पहाड़ों की यात्रा एक बार फिर चुनौती बन गई है। नैनीताल में लगातार लगभग 8 घंटे हुए मूसलाधार बारिश के बाद 7 नंबर स्थित आलमक कॉटेज और जिला पंचायत रोड क्षेत्र में भूधसाव तेज हो गया। पहाड़ी का बड़ा हिस्सा खिसककर नीचे नाले में जा गिरा जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। सड़क के ऊपर बने 5 और नीचे स्थित 7 परिवारों के मकान खतरे की जद में। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते सुरक्षा कार्य करा दिए गए होते तो आज ये स्थिति पैदा नहीं होती।
21: उनके क्षेत्र में लगातार वर्षा हो रही है, इसी संबंध में आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया गया। तो सर प्रथम जो 7 नंबर का हमारा लैंड स्लाइडिंग एरिया है उसको आज विजिट किया गया और वहां पर उस निरीक्षण में एक्सियन पीडब्ल्यूडी और एक्सियन इरीगेशन भी मौजूद थे। एक्सियन इरीगेशन को पूर्व में भी आयुक्त महोदय के द्वारा जो है DPR उस एरिया की गठित करके तत्काल काम कराने के लिए निर्देशित किया गया है। तो उसी के क्रम में आज हम लोगों के द्वारा निरीक्षण किया गया और ये देखा गया कि वहां पर तात्कालिक तौर पर भी कुछ कार्य कराए जाने की आवश्यकता है जिसको इरिगेशन विभाग कल से ही टेकअप करेगा।
9: मौसम विभाग की तरफ से उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और कुमाऊं क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर के लिए रेड अलर्ट, देहरादून, पौड़ी, चंपावत, हरिद्वार, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली और नैनीताल जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए। पूरे उत्तराखंड में 117 सड़कें अब भी बंद हैं। बहरहाल ये मानसून की पहली किश्त ने जिसने पहाड़ों पर हाहाकार मचा रखा है
2: मौसम विभाग की माने तो अभी आसमान से आफत थमने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक बारिश अपने साथ मुश्किलें लाई है, वहां पर कैसे हालात हैं रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिंदुस्तान का यह नक्शा बता रहा है कि जुलाई के 9 दिनों में मॉनसून लगभग पूरे देश पर छा गया है, लेकिन देश के 49% जिले ऐसे हैं जहां अभी भी सामान्य से कम बारिश हुई है। इनमें सबसे ज्यादा जिले यूपी बिहार के नजर आते हैं। ये नक्शा बता रहा है कि मध्य और पश्चिमी भारत में तो सामान्य से ज्यादा बारिश हो गई है, लेकिन अभी पूर्वोत्तर और पूर्वी हिस्से में ठीक से बारिश होना बाकी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में तो लगातार बारिश के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। संजौली इलाके में भूस्खलन के खतरे के चलते कई परिवार घरों से बाहर रहने को मजबूर हैं। लोगों को डर है कि कमजोर हो चुकी जमीन कब धस जाए और कब कोई बड़ा हादसा हो जाए। वहीं न्यू शिमला के राजाना गांव में भी लैंडस्लाइड ने कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है।
0: डर का माहौल है जी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे आप देख रहे हैं, आपने अभी फोटोज भी ली हैं, यहाँ पे जो सारा एरिया है अभी डर के माहौल में। हम पूरे एक साल से डर के साथ ही जी रहे हैं। लास्ट ईयर 28 जून 2025 को सुबह 4:30 बजे के करीब ये जो लैंडस्लाइड हुआ था, जिससे कि सब कुछ यहाँ पे हमारी बिल्डिंग की सीढ़ियां वगैरह सब कुछ टूट गया था, और तब से लेकर हम लोग तो डर डर के ही जी रहे हैं। बार बार हम रिक्वेस्ट करने पर भी यहाँ पे कुछ नहीं, जैसे ही बरसातें शुरू होती है इनका काम भी स्टार्ट होता है, और हमारा तो ये कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इनका बैन किया जाए इसको।
2: जम्मू कश्मीर के पुंछ में बारिश के बाद अचानक बाढ़ ने हालात बिगाड़ दिए। तेज बहाव में कई लोग फंस गए। प्रशासन और राहत टीमों ने लगभग 25 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। पानी का वेग इतना तेज था कि लोगों की जिंदगी कुछ घंटों के लिए खतरे में आ गई।
1: चौक हो गया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि हमने पिछले साल भी यहाँ एसडीएम साहब भी मौके पर आए थे, उन्होंने बोला था कि हम आपको क्रेडिट देंगे, अभी तक ना उन्होंने कोई क्रेडिट दिया ना इस पुल का कोई इंतजाम किया।
22: सिचुएशन यहाँ पे हुई है, इसमें तकरीबन 8 से 10 घर जो है वो इफेक्टेड हुए हैं। मैं मुकामी लोगों का और मेरी जो हमारी यहाँ पर पुलिस पोस्ट अड़ी है, इमीडिएट जो रेस्पॉन्डर है वो ये खुद थे, इन्होंने जो है वो लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया, जिसमें तकरीबन 20 से 25 सोल्स हैं और कुछ लाइव स्टॉक पोल्ट्री बोर्ड को जो है वो रेस्क्यू किया गया।
2: सहारनपुर में तो गजब हो गया, भारी बारिश की वजह से कब्रिस्तान में पानी भर गया और इसकी वजह से कई कब्रें क्षतिग्रस्त हो गई। ये गागल हेड़ी के सैयद माजरा गाँव के कब्रिस्तान की घटना है। मिट्टी धंसने से कुछ शव कफन समेत बाहर दिखाई देने लगे हैं। ग्रामीणों ने पुलिस की मौजूदगी में धार्मिक रीति रिवाजों और पूरे सम्मान के साथ शवों को दोबारा सुपुर्द खाक किया। इधर महाराष्ट्र में अब बारिश तो रुक गई है, लेकिन पुणे के एक वेस्ट प्लांट में जो हादसा हुआ था वहां भी 8 लोगों के दबे होने की आशंका है। पुणे के मोशी के वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में हादसे के 48 घंटे के बाद भी सभी लोगों का रेस्क्यू नहीं हुआ है। इस प्लांट में कूड़े के पहाड़ सिर्फ एक इमारत पर नहीं गिरा, उसने कई परिवारों की उम्मीदें भी मलबे में दबा दी। जहरीली मीथेन गैस और कूड़े का विशाल ढेर रेस्क्यू ऑपरेशन को लगातार मुश्किल बना रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर खतरे का अंदाजा था तो कूड़े के ढेर के पास इमारत क्यों बनाई गई।
23: तो बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश हमारे शहर में हुई थी, उसकी वजह से पूरे शहर में पानी का स्तर बढ़ गया था, हमेशा के जैसे हालात नहीं थे, और इसी के वजह से ये जो कचरे का मलबा था वो पूरा बिल्डिंग के ऊपर गिर गया। उसमें जो कर्मचारी थे एंटनी के वो फंस गए, लेकिन उनको निकालने का काम पूरे प्रयास पूरे जोरों शोर से और पूरे मेहनत से पहले दिन से हम सब कर रहे हैं, आज के दिन उनको निकाला जाएगा।
24: 40 घंटे हुए हैं अभी तक निकाले गए नहीं।
23: आपने पहले दिन आए तो कंडीशन देखी होती तो आपको पता चलता, क्योंकि पहले जो जीवित व्यक्ति थी उनको जिनका आवाज बाहर आ रहा था, प्रशासन को आ रहा था, उनको बाहर निकालना जरूरी था, उनको पहले दिन के रात को बाहर निकाला गया।
2: कई गंभीर सवाल हैं और सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि जो लोग फंसे हुए थे उनके तरफ से रिस्पॉन्स आना भी बंद हो गया है। कुल 23 लोग यहाँ फंसे थे, जिनमें से 14 लोगों को निकाला गया था और एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। अभी भी जो 8 लोग हैं उनकी क्या स्थिति है ये पता नहीं है।
24: पुणे स्थित मोशी में जो इंसिडेंट हुआ था इसको लेकर 45 घंटों के बाद भी एनडीआरएफ टीम की रेस्क्यू जारी है। अभी हम मोशी स्थित कचरा डेपो में है, यहाँ पर देख सकते हैं कि जेसीबी से जहाँ पर वेस्ट टू एनर्जी बिल्डिंग है जो ढही थी उसके आजू बाजू में कचरा निकालने का काम जारी है। दो दिन पहले यही जो कचरे का ढेर है वो वेस्ट टू एनर्जी बिल्डिंग के ऊपर गिरने से बिल्डिंग ढही थी और उसमें 23 लोग अटके हुए थे, उसमें से 14 लोगों को निकाल लिया गया है और एक की डेथ हुई है, तो 8 लोग अभी भी मौजूद है, उनसे कोई रिस्पॉन्स नहीं है लेकिन उनको निकालने की कोशिश एनडीआरएफ द्वारा जारी है। पिछले कुछ घंटों से इस काम में तेजी आई है, जेसीबी ज्यादा लगाए हैं लेकिन जहां मतलब ग्राउंड फ्लोर में जो लोग अटके हुए हैं, जो मलबे में हैं, उनके रिश्तेदार यहां पे कई घंटों से हैं और उनको आस है कि हमारे जो अंदर अटके हुए लोग हैं वो शायद जिंदा हो।
17: प्रशासन कह रहा है कि बिल्डिंग के अंदर कचरे की वजह से मीथेन गैस है जिसकी वजह से पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में समस्याएं आ रही हैं। अब पूरी इमारत तोड़कर इन लोगों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है।
3: अभी जो लास्ट फेज ऑफ रेस्क्यू ऑपरेशन है वो बहुत क्रिटिकल हो रहा है। जैसे आप देख रहे हो कि ये कैंटिलीवर फॉल है, तो एनडीआरएफ के कहने के मुताबिक ये जहाँ कैंटिलीवर फॉल होता है बिल्डिंग का वो बहुत क्रिटिकल और बहुत रिस्की रहता है ऑपरेशन में। अभी एनडीआरएफ ने जो कचरा है जो अंदर जा रहा है उसको निकालने की पूरे प्रयास कर रहे हैं। उसके आसपास बिल्डिंग का ऑलमोस्ट 80-90% उन्होंने निकाल लिया है। उसके बाद में अभी वो बिल्डिंग खोल के मतलब उनके इक्विपमेंट्स का यूज करके वो तोड़ के अंदर जाके जहां ये लोग फंसे हुए हैं।
17: पालघर की ये तस्वीर देखिए, कैसे घर के नीचे सैलाब के बाद पूरा परिवार छत पर है जिसमें महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं जिनके चेहरे पर खौफ आसानी से देखा जा सकता है। आज तक ब्यूरो। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

0: यूपी में 27 का घमासान तेज। मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पार्टी पर बोला, हमला काइन का इतिहास राम भक्तों के खून से सना, भारत की विरासत और आस्था को किया अपमानित। दतिया से टिकट कटने के बाद आज तक से बोले बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्र, राजनीति में यह चलता है, पार्टी का फैसला सही, मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिले। आमिर खान की तीसरी शादी पर भड़के नितेश राणे, बताया लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर, युवाओं से की आमिर की फिल्में सोच समझकर देखने की अपील। वियतनाम में भारतीय पर्यटकों से भरी नाव पलटी, अब तक 15 लोगों की मौत, फुकोक द्वीप के पास हादसा, राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने जताई संवेदना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जारी किया आदेश, कहा अगर मेरी हत्या हुई तो ईरान को मिटा दें, जेडी विंस को सौंपी फैसला लेने की जिम्मेदारी। अब बात करते हैं यूपी में चुनाव से पहले छिड़े धर्म युद्ध की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर चढ़ावा चोरी ने पूरी तरह से सियासी रंग ले लिया है, जिसके बाद अब योगी आदित्यनाथ विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को पिछला इतिहास गिना रहे हैं, तो वहीं विपक्ष राम मंदिर के मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा।
1: यूपी में राम मंदिर से शुरू हुआ घमासान अब धर्म की राजनीति तक पहुंच गया है। योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी का इतिहास खंगाल रहे हैं।
2: मंदिरों पे कब्जा करवाते थे लोग, मंदिरों पे कब्जा करवाते थे, और अब कब्जा नहीं, अब उन मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है, और पहले मंदिरों के नाम पर आने वाला पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर खर्च हो जाता था। यही तो करती थी समाजवादी पार्टी।
1: कल योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी में इफ्तार का जिक्र करके समाजवादी पार्टी को घेरा था, तो आज विपक्ष योगी पर गुमराह करने का आरोप लगा रहा है।
3: कैसे नमाज पढ़ सकता है कोई आदमी वहां? ये एजेंडा जो है ये तमाम चीजों से ध्यान भटकाने का है। कैसे नमाज पढ़ सकता है? हम तो कह रहे हैं कि आप सड़क पर नमाज ना पढ़े, चूंकि सड़क सरकार की और सरकार मना कर रही है तो आपकी नमाज जायज नहीं होगी। मैं तो बार बार बोलता हूं, जिस प्रॉपर्टी का ओनर अगर उसको इजाजत नहीं देता तो वहां नमाज ही नहीं हो सकती।
1: 2027 के चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा अब थमता नहीं दिख रहा है। इस बीच राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के कलंक पर अब समिति से जुड़े लोग दुख जता रहे हैं।
4: राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेदी नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है, व्यवस्था में सुधार होगा, मुझे पूरा विश्वास है।
1: एक और ताबड़तोड़ जांच और एक्शन जारी है, तो वहीं राम भक्तों का भरोसा जीतने की कोशिश भी की जा रही है। चढ़ावा विवाद के बीच राम मंदिर ट्रस्ट जल्द ही सीईओ की नियुक्ति करने जा रहा है, जिसके लिए समिति का गठन भी कर दिया गया है। सीईओ को मंदिर के प्रशासन और वित्तीय प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जिसका उद्देश्य मंदिर के संचालन को अधिक पेशेवर, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। इसके साथ ही सीईओ चढ़ावे के प्रबंधन, श्रद्धालुओं की सुविधाओं, आधारभूत ढांचे के रखरखाव और प्रशासनिक व्यवस्था की भी निगरानी रखेंगे। साफ है कि एक ओर सरकार बार बार भरोसा जताने की कोशिश कर रही है कि वो भक्तों के साथ धोखा करने वालों को बख्शेगी नहीं, वहीं विपक्ष सरकार की पूरी जांच को कटघरे में खड़ा कर रही है। आज तक ब्यूरो।
0: राम मंदिर जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, और इस बीच में मंदिर प्रशासन के सामने चुनौती सिस्टम को सुधारने की भी है, जिस पर लगातार फैसले लिए जा रहे हैं।
1: चढ़ावा चोरी के गंभीर आरोपों की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे सामने आते जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से अब सामने आया है कि मंदिर में काम करने वाले कुछ पूर्व सैनिकों पर कुछ भी बोलने पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसके लिए बकायदा सभी पूर्व सैनिकों को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा गया था। कहा गया था कि कोई कुछ भी पूछे बोलना नहीं है। जिस मैसेज पर सवाल उठ रहे हैं उस मैसेज का स्क्रीनशॉट भी आज तक के पास मौजूद है। इससे साफ है कि चढ़ावा चोरी के खुलासे के बाद मामले को छिपाने की कोशिश की गई। इधर अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के दो और आरोपियों को पुलिस जल्द ही रिमांड पर लेगी। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव से पुलिस पूछताछ करेगी। टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई गई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र की 7 दिनों की कस्टडी मांगी है।
5: अयोध्या पुलिस ने अब रामशंकर यादव, टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में 7 दिन की अर्जी डाली है। इन दोनों की पुलिस कस्टडी रिमांड बेहद अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि जहां रामशंकर यादव के पास डोनेशन बॉक्स की चाबियां होती थी, वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र उस कमरे के इंचार्ज थे जहां से चढ़ावा चोरी हो रहा था। ऐसे में इन दोनों से की गई पूछताछ से पुलिस पता लगाने की कोशिश में लगी है कि आखिर यह चोरी हो रही थी तो उनके संज्ञान में क्यों नहीं आई, पकड़ी भी गई तो क्यों उन पर कार्रवाई नहीं हुई।
1: इस बीच राम मंदिर में चढ़ावे की गणना के लिए नया टाइम टेबल लागू कर दिया गया है। पहले 2 पालियों में होने वाली गिनती अब एक ही शिफ्ट में की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चढ़ावे की गिनती होगी। नई समय सारणी लागू होने के बाद कुछ गणना कर्मियों ने काम छोड़ दिया। उधर राम मंदिर में VIP पास की प्रक्रिया भी रोकी गई क्योंकि जिन लोगों की ID का इस्तेमाल इस काम के लिए किया गया था उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में जारी घटनाक्रम के बीच गोपाल राव ने निर्मोही अखाड़ा पहुंचकर ट्रस्टी महंत दीनेन्द्र दास से मुलाकात की। दोनों के बीच बंद कमरे में काफी देर तक एकांत में चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में ट्रस्ट से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। इस मुलाकात में ट्रस्ट के भीतर चल रहे विवादों के बीच डैमेज कंट्रोल की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हालांकि बैठक में इस चर्चा के संबंध में आधिकारिक रूप से कोई जानकारी साझा नहीं की गई। अयोध्या से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: यूपी में राम मंदिर पर घमासान जारी तो मध्य प्रदेश में लड़ाई बीजेपी बनाम बीजेपी की दिख रही है, जहां दतिया में हो रहे उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा और इसके बाद से कार्यकर्ता भड़क गए।
6: दतिया में टिकट को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा ऐसा फूटा कि वो अपनी ही सरकार की पुलिस से भिड़ गए। मध्य प्रदेश के दतिया में 30 जुलाई को उपचुनाव है। बीजेपी ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। दतिया से आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाने की घोषणा होते ही नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। नेशनल हाईवे पर जाम लग गया, घंटों तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही, पुलिस पर पथराव हुए और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए।
7: मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए, पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं ने, ऐसा कोई कार्य न करे।
6: आखिर दतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट क्यों कटा? बताया जा रहा है कि दिल्ली के स्तर पर कराए गए सर्वे में नरोत्तम मिश्रा की स्थिति उम्मीद के मुताबिक मजबूत नहीं पाई गई। 2023 में बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को टिकट दिया था लेकिन वो विधानसभा का चुनाव हार गए। केंद्रीय नेतृत्व ने स्थानीय संगठन और भविष्य की राजनीति स्वीकारता का भी आकलन कराया। इसमें नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी फिट बैठे, जिसके बाद उन्हें दतिया से टिकट दिया गया। बीजेपी ने एक ब्राह्मण नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर दूसरे ब्राह्मण आशुतोष तिवारी को टिकट दिया है। इससे जातिगत और सामाजिक संतुलन बरकरार है। उधर पार्टी का संदेश साफ है कि बीजेपी हाईकमान फिलहाल झुकने के मूड में नहीं है।
8: पार्टी इस प्रकार के सोच समझ के निर्णय लेती है और इसलिए हम डंके की चोट जीतेंगे और नरोत्तम जी भी काम करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं नरोत्तम जी को जानता हूँ व्यक्तिगत।
9: नरोत्तम जी मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता है तो उनको कट्टू साइज तो करनी था, कर दिया।
6: दतिया में अब लड़ाई बीजेपी के सामने अपनों से है, जहां अभी तक कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। भोपाल से रवीश पाल के साथ आज तक ब्यूरो।
0: इस पूरे मामले में हमारे सहयोगी रवीश पाल ने खास बातचीत की नरोत्तम मिश्रा से।
10: फैसले को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि मांग के तो चला जा रहा था कि आप ही इकलौते उम्मीदवार हैं वहां से भाजपा के।
11: पार्टी का फैसला जो होता है वो ठीक ही होता है, उसको अच्छे रूप में ही लेना चाहिए, खराब रूप में नहीं लेना चाहिए, ऐसा मेरी मान्यता है।
10: आप के तो सकारात्मक भाव है लेकिन आपके जो समर्थक थे जो महीनों से इंतजार कर रहे थे कि जो प्रकरण आया राजन भारती का, मामला कोर्ट में गया, फिर वहां से विधायक की गई, सदस्यता गई, सबको उम्मीद थी लेकिन जब ये फैसला आया तो उनका गुस्सा साफ तौर पर सामने मिला। हाईवे जाम हो गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ हो गई, पथराव हो गया।
11: हाँ, छड़े का आवेश था, मैंने कल भी फिर उनसे निवेदन किया था, आज भी किया मैंने, ये जाम बाम की स्थिति नहीं होना चाहिए। कार्यकर्ता वो पेट्रोल डाल रहे थे, वो मुझे दिखाए विजुअल फुटेज, मिट्टी का तेल डालते हुए का। धैर्य और संयम का समय यही होता है, यही परीक्षा की घड़ी होती है। आप भोपाल जा रहे
0: बाकीपुर उपचुनाव में टिकट को लेकर सियासत तेज है, जहां बीजेपी ने एक दिन के अंदर अपने प्रत्याशी को बदल दिया, जिस पर अब विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है।
1: बाकीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी की ओर से पहले अभिषेक कुमार का नामांकन हुआ, फिर एक दिन बाद ही अचानक अभिषेक ने नामांकन वापस ले लिया और नीरज कुमार को नया उम्मीदवार घोषित किया गया। जिस अभिषेक को सामान्य कार्यकर्ता बताकर बीजेपी ने नितिन नवीन वाली सीट के लिए प्रत्याशी बनाया, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी को अपना प्रत्याशी बदलना पड़ा?
12: वैवाहिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। मैं कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा।
1: अब सवाल यह कि जिस पारिवारिक मामले का हवाला देकर अभिषेक ने नामांकन वापस लिया, वही परिवार एक दिन पहले अभिषेक को आशीर्वाद देते हुए भावुक हो गया था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अभिषेक बंटी के पिता रविंद्र प्रसाद सिन्हा चारा घोटाले में दोषी रहे। वो मगध केमिकल्स कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी में मैनेजर थे। इस कंपनी पर चारा घोटाले में फर्जी बिल के आधार पर सप्लायर बनाने का आरोप था। फर्जी बिलों के जरिए सरकारी खजाने से पैसा निकालने का मामला रविंद्र प्रसाद सिन्हा पर चला था। सूत्रों के मुताबिक दूसरी बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि अभिषेक सिन्हा बंटी ने नामांकन पत्र में गलत जानकारी भी दी थी। उन्होंने पढ़ाई से जुड़ी कुछ जानकारियां छिपाई थी, ऐसे में भी अभिषेक बंटी का नॉमिनेशन रद्द होने की आशंका थी। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी ने कोई जोखिम नहीं लेते हुए अभिषेक बंटी का नामांकन वापस कराने का फैसला लिया, यानी पार्टी को डर था कि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लालू परिवार को घेरते रहे, उसी भ्रष्टाचार में अभिषेक के पिता आरोपी हैं। लेकिन अब बीजेपी के नए प्रत्याशी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नीरज कुमार सिन्हा के उम्मीदवार घोषित होने के बाद बीजेपी ने उनका बायोडेटा जारी किया। इसमें उनकी जन्म तिथि 1 जुलाई 1994 बताई गई। इसी बायोडेटा में लिखा गया कि उन्होंने 2006 में बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता लेकर अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की, यानी बीजेपी ज्वाइन करने के वक्त उनकी उम्र सिर्फ 12 साल थी, जबकि किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने की न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल होती है। इसके कुछ समय बाद बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा का संशोधित बायोडेटा जारी किया। नए बायोडेटा में उनकी जन्म तिथि पहले की तरह 1 जुलाई 1994 ही रखी गई, लेकिन 2006 में बीजेपी की सदस्यता लेने का उल्लेख हटा दिया गया। संशोधित बायोडेटा में ये नहीं बताया गया कि उन्होंने पार्टी की सदस्यता कब ली। बीजेपी ने यह भी नहीं बताया कि पहले और दूसरे बायोडेटा में यह बदलाव क्यों किया गया, लेकिन 2 दिन के अंदर हुए इस घटनाक्रम ने विपक्ष को घेरने का एक मौका जरूर दे दिया।
13: ये पहली बार हुआ है कि नामांकन करने के बाद कोई बीजेपी का प्रत्याशी नाम वापस ले रहा हो। विपक्ष के सामने बीजेपी के उम्मीदवार टिक ही नहीं पा रहे हैं। अब जिस दूसरे उम्मीदवार नीरज सिन्हा को बनाया है उनके ऊपर भी विवाद है। विपक्ष
0: बाद मानसून की मार के मानसून भले ही देर से आया हो, लेकिन आने के साथ ही तबाही मचा रखी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है।
1: आसमान से बरसती आफत और जमीन पर जिंदगी बचाने की जद्दोजहद, कहीं पहाड़ तड़प रहे हैं तो कहीं पानी जिंदगी को अपनी चपेट में ले रहा है। मानसून की बारिश अब सिर्फ मौसम नहीं रही, कई इलाकों में यह डर दहशत और तबाही की वजह बन चुकी है। हिमाचल से उत्तराखंड तक बारिश ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया है कि लोग घर छोड़ने, रास्ते छोड़ने और जिंदगी बचाने को मजबूर हैं। उत्तराखंड में भी बारिश लगातार आफत बनकर बरस रही है। टिहरी गढ़वाल में लगातार तीसरे दिन बारिश जारी है। बारिश के चलते टिहरी झील का जलस्तर बढ़ रहा है। नदी किनारे रहने वाले लोगों में डर का माहौल लगातार बना हुआ है
14: और काफी बारिश से अस्त व्यस्त जीवन हो रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं घनसाली में काफी बारिश लगातार हो रही है।
15: तो नदी के किनारे लोग रह रहे हैं, सभी घरों के जो है नॉट चस्पा कर दिया और समय समय पर जैसे बारिश होती है सायरन भी जो है प्रशासन द्वारा जो है बजाया जाता है और अपने अधिकारी भी कर्मचारी भी लगाए हुए हैं कि जो नदी किनारे अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अगर पानी बढ़ता है तो अन्यत्र जो है अपनी व्यवस्था करें। तो लोग सतर्क हैं और क्योंकि मेरा घर भी नदी के किनारे है, हमें भी नोटिस गवर्नमेंट से आया है।
1: प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। दो दिन की छुट्टी के बाद स्कूल खुले, लेकिन बारिश के बीच बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों की चिंता भी सामने आई। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे हालात में एहतियात और ज्यादा जरूरी है।
16: बद्रीनाथ धाम में बीते तीन दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। जहां अब मानसून पहाड़ों में पैर पसार रहा है, वहीं बद्रीनाथ धाम में लगातार बारिश हो रही है। तो बद्रीनाथ धाम में बहने वाली अलकनंदा में अपना विकराल रूप धीरे धीरे जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जो यहाँ पे नरसिंहशिला बारहशिला है वो लगातार पानी में डूबती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी मानसून के दौरान ये पूरी शिला बद्रीनाथ धाम की जो अलकनंदा है उसमें डूब जाती है, लेकिन अब धीरे धीरे उफान पर अलकनंदा बह रही है, पूरा पानी बढ़ता जा रहा है। पल पल बारिश के साथ ही जो पानी है, जलस्तर है, वो बढ़ रहा है। हालांकि मार्ग बाधित होने की जो आशंका है वो बनी हुई है, क्योंकि मानसून का दौर है, बारिश तेज होती है। तो अलग अलग जगहों पे खासकर पीपलकोठी के भनेर पानी में और जो गुलाबकोठी है हेलंग के समीप, वहां पे लगातार भूस्खलन का दौर बन रहा है।
1: चमोली के थराली क्षेत्र में बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार हो रही बारिश के बाद घाघली गदेरे में भारी मात्रा में मलबा आ गया, जिसके चलते थराली देवाल और थराली कुराड़ मार्ग प्रभावित हुए। एक रास्ता खोल दिया गया है, लेकिन कई इलाकों में अब भी लोगों की मुश्किलें बनी हुई है। उफनते नाले के किनारे बसे राडीबगढ़ गांव के लोगों ने पूरी रात दहशत में गुजारी। ग्रामीणों का आरोप है कि सुरक्षा इंतजामों की कमी के कारण हर बारिश में खतरा बढ़ जाता है। चमोली में पहले भी बादल फटने और भारी मलबे की घटनाएं सामने आ चुकी है, और इस बार मॉनसून के शुरुआत में हालात डराने लगे। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में लगातार बारिश जारी है। तीन दिनों से हो रही बारिश का असर अब अलकनंदा नदी पर दिखाई दे रहा है। खतरा लगातार बना हुआ है, नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और अलकनंदा उफान पर बह रही है। हालांकि खराब मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था कायम, बारिश के बीच भी यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। यात्रा मार्ग फिलहाल सुचारू है, लेकिन पहाड़ों के बदलते मौसम के बीच खतरा लगातार बना हुआ है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बारिश ने चार धाम यात्रा की रफ्तार रोक दी। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर खांकुरा के पास पहाड़ दरक गया। भारी भरकम बोल्डर सड़क पर आ गिरे और देखते ही देखते हाईवे बंद हो गया। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। कई यात्री घंटों तक रास्ता खुलने का इंतजार करते रहे। बारिश के मौसम में पहाड़ों की यात्रा एक बार फिर चुनौती बन गई है। नैनीताल में लगातार लगभग 8 घंटे हुए मूसलाधार बारिश के बाद 7 नंबर स्थित आलमग कॉटेज और जिला पंचायत रोड क्षेत्र में भूधसाव तेज हो गया। पहाड़ी का बड़ा हिस्सा खिसक कर नीचे नाले में जा गिरा, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। सड़क के ऊपर बने 5 और नीचे स्थित 7 परिवारों के मकान खतरे की जद में। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते सुरक्षा कार्य करा दिए गए होते तो आज ये स्थिति पैदा नहीं होती।
17: इनके क्षेत्र में लगातार वर्षा हो रही है, इसी संबंध में आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया गया। तो सर्वप्रथम जो 7 नंबर का हमारा लैंड स्लाइडिंग एरिया है उसको आज विजिट किया गया, और वहाँ पर उस निरीक्षण में एक्सियन पीडब्ल्यूडी और एक्सियन इरिगेशन भी मौजूद थे। एक्सियन इरिगेशन को पूर्व में भी आयुक्त महोदय के द्वारा जो है DPR उस एरिया की गठित करके तत्काल काम कराने के लिए निर्देशित किया गया है। तो उसी के क्रम में आज हम लोगों के द्वारा निरीक्षण किया गया और ये देखा गया कि वहाँ पर तात्कालिक तौर पर भी कुछ कार्य कराए जाने की आवश्यकता है, जिसको इरिगेशन विभाग कल से ही टेकअप करेगा।
1: मौसम विभाग की तरफ से उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और कुमाऊं क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर के लिए रेड अलर्ट है। देहरादून, पौड़ी, चंपावत, हरिद्वार, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली और नैनीताल जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए। पूरे उत्तराखंड में 117 सड़कें अब भी बंद हैं। बहरहाल ये मानसून की पहली किश्त ने जिसने पहाड़ों पर हाहाकार मचा रखा है। मौसम विभाग की माने तो अभी आसमान से आफत थमने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक बारिश अपने साथ मुश्किलें लाई है, वहां पर कैसे हालात हैं रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
1: हिंदुस्तान का ये नक्शा बता रहा है कि जुलाई के 9 दिनों में मानसून लगभग पूरे देश पर छा गया है, लेकिन देश के 49% जिले ऐसे हैं जहां अभी भी सामान्य से कम बारिश हुई। इनमें सबसे ज्यादा जिले यूपी बिहार के नजर आते हैं। ये नक्शा बता रहा है कि मध्य और पश्चिमी भारत में तो सामान्य से ज्यादा बारिश हो गई है, लेकिन अभी पूर्वोत्तर और पूर्वी हिस्से में ठीक से बारिश होना बाकी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में तो लगातार बारिश के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। संजौली इलाके में भूस्खलन के खतरे के चलते कई परिवार घरों से बाहर रहने को मजबूर हैं। लोगों को डर है कि कमजोर हो चुकी जमीन कब धस जाए और कब कोई बड़ा हादसा हो जाए। वहीं न्यू शिमला के राजाना गांव में भी लैंडस्लाइड ने कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है।
18: डर का माहौल है जी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे आप देख रहे हैं, आपने अभी फोटोज भी ली हैं, यहाँ पे जो सारा एरिया है अभी डर के माहौल में। हम पूरे एक साल से डर के साथ ही जी रहे हैं। लास्ट ईयर 28 जून 2025 को सुबह 4:30 बजे के करीब ये जो लैंडस्लाइड हुआ था, जिससे कि सब कुछ यहाँ पे हमारी बिल्डिंग की सीढ़ियां वगैरह सब कुछ टूट गया था। और तब से लेकर हम लोग तो डर डर के ही जी रहे हैं। बार बार हम रिक्वेस्ट करने पर भी यहाँ पे कुछ नहीं, जैसे ही बरसाते शुरू होती है इनका काम भी स्टार्ट होता है। और हमारा तो ये कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इनका बैन किया जाए इसको।
1: जम्मू कश्मीर के पुंछ में बारिश के बाद अचानक बाढ़ ने हालात बिगाड़ दिए। तेज बहाव में कई लोग फंस गए। प्रशासन और राहत टीमों ने लगभग 25 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। पानी का वेग इतना तेज था कि लोगों की जिंदगी कुछ घंटों के लिए खतरे में आ गई।
19: चाव हो गया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि हमने पिछले साल भी यहाँ एसडीएम साहब भी मौके पर आए थे, उन्होंने बोला था कि हम आपको क्रेडिट देंगे, अभी तक ना उन्होंने कोई क्रेडिट दिया ना इस पुल का कोई इंतजाम किया।
20: सिचुएशन यहाँ पे हुई है, इसमें तकरीबन 8 से 10 घर जो है वो इफेक्टेड हुए हैं। मैं मुकामी लोगों का और मेरी जो हमारी यहाँ पर पुलिस पोस्ट अड़ी है, इमीडिएट जो रेस्पॉन्डर है वो ये खुद थे। इन्होंने जो है वो लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया, जिसमें तकरीबन 20 से 25 सोल्स हैं और कुछ लाइव स्टॉक पोल्ट्री बोर्ड को जो है वो रेस्क्यू किया गया।
1: सहारनपुर में तो गजब हो गया। भारी बारिश की वजह से कब्रिस्तान में पानी भर गया और इसकी वजह से कई कब्रें क्षतिग्रस्त हो गई। ये गागल हेड़ी के सैयद माजरा गाँव के कब्रिस्तान की घटना है। मिट्टी धंसने से कुछ शव कफन समेत बाहर दिखाई देने लगे हैं। ग्रामीणों ने पुलिस की मौजूदगी में धार्मिक रीति रिवाजों और पूरे सम्मान के साथ शवों को दोबारा सुपुर्द खाक किया। इधर महाराष्ट्र में अब बारिश तो रुक गई है, लेकिन पुणे के एक वेस्ट प्लांट में जो हादसा हुआ था वहां भी 8 लोगों के दबे होने की आशंका है। पुणे के मोशी के वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में हादसे के 48 घंटे के बाद भी सभी लोगों का रेस्क्यू नहीं हुआ है। इस प्लांट में कूड़े के पहाड़ सिर्फ एक इमारत पर नहीं गिरा, उसने कई परिवारों की उम्मीदें भी मलबे में दबा दी। जहरीली मीथेन गैस और कूड़े का विशाल ढेर रेस्क्यू ऑपरेशन को लगातार मुश्किल बना रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर खतरे का अंदाजा था तो कूड़े के ढेर के पास इमारत क्यों बनाई गई?
21: तो बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश हमारे शहर में हुई थी, उसकी वजह से पूरे शहर में पानी का स्तर बढ़ गया था, हमेशा के जैसे हालात नहीं थे। और इसी के वजह से ये जो कचरे का मलबा था वो पूरा बिल्डिंग के ऊपर गिर गया। उसमें जो कर्मचारी थे एंटनी के, वो फंस गए, लेकिन उनको निकालने का काम पूरे प्रयास पूरे जोरों शोर से और पूरे मेहनत से पहले दिन से हम सब कर रहे हैं, आज के दिन उनको निकाला जाएगा।
22: 40 घंटे हुए हैं अभी तक निकाले गए नहीं।
21: आपने पहले दिन आए तो कंडीशन देखी होती तो आपको पता चलता, क्योंकि पहले जो जीवित व्यक्ति थी उनको, जिनका आवाज बाहर आ रहा था, प्रशासन को आ रहा था, उनको बाहर निकालना जरूरी था, उनको पहले दिन के रात को बाहर निकाला गया।
1: कई गंभीर सवाल हैं और सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि जो लोग फंसे हुए थे उनके तरफ से रिस्पॉन्स आना भी बंद हो गया है। कुल 23 लोग यहाँ फंसे थे, जिनमें से 14 लोगों को निकाला गया था और एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। अभी भी जो 8 लोग हैं उनकी क्या स्थिति है ये पता नहीं है।
22: पुणे स्थित मोशी में जो इंसिडेंट हुआ था, इसको लेकर 45 घंटों के बाद भी एनडीआरएफ टीम की रेस्क्यू जारी है। अभी हम मोशी स्थित कचरा डिपो में है, यहाँ पर देख सकते है की जेसीबी से जहाँ पर वेस्ट टू एनर्जी बिल्डिंग है जो ढही थी, उसके आजू बाजू में कचरा निकालने का काम जारी है। 2 दिन पहले यही जो कचरे का ढेर है वो वेस्ट टू एनर्जी बिल्डिंग के ऊपर गिरने से बिल्डिंग दहित थी और उसमें 23 लोग अटके हुए थे, उसमें से 14 लोगों को निकाल लिया गया है और एक की डेथ हुई है, तो 8 लोग अभी भी मौजूद है, उनसे कोई रिस्पॉन्स नहीं है, लेकिन उनको निकालने की कोशिश NDRF द्वारा जारी है। पिछले कुछ घंटों से इस काम में तेजी आई है, JCB ज्यादा लगाए हैं, लेकिन जहां मतलब ग्राउंड फ्लोर में जो लोग अटके हुए हैं, जो मलबे में हैं, उनके रिश्तेदार यहां पे कई घंटों से हैं और उनको आस है कि हमारे जो अंदर अटके हुए लोग हैं वो शायद जिंदा हो।
1: प्रशासन कह रहा है कि बिल्डिंग के अंदर कचरे की वजह से मीथेन गैस है, जिसकी वजह से पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में समस्याएं आ रही हैं। अब पूरी इमारत तोड़कर इन लोगों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है।
2: अभी जो लास्ट फेज ऑफ रेस्क्यू ऑपरेशन है वो बहुत क्रिटिकल हो रहा है। जैसे आप देख रहे हो कि ये कैंटिलीवर फॉल है, तो NDRF के कहने के मुताबिक ये जहाँ कैंटिलीवर फॉल होता है बिल्डिंग का, वो बहुत क्रिटिकल और बहुत रिस्की रहता है ऑपरेशन में। अभी NDRF ने जो जो कचरा है जो अंदर जा रहा है उसको निकालने की पूरे प्रयास कर रहे हैं। उसके आसपास बिल्डिंग का ऑलमोस्ट 80-90% उन्होंने निकाल लिया है। उसके बाद में अभी वो बिल्डिंग खोल के मतलब उनके इक्विपमेंट्स का यूज करके वो तोड़ के अंदर जाके जहां ये लोग फंसे हुए हैं।
1: पालघर की ये तस्वीर देखिए, कैसे घर के नीचे सैलाब के बाद पूरा परिवार छत पर है, जिसमें महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं, जिनके चेहरे पर खौफ आसानी से देखा जा सकता है। आज तक ब्यूरो। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।